0: सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जवाबदेही नहीं है, ये कवर अप है।
1: सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीएसई जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि सीबीएसई वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी सीबीएसई ने की, वही ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी सीबीएसई बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सीबीएसई ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा और फिर सीबीएसई के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवर जाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक सीबीएसई फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने सीबीएसई से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवेल्यूएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है, सीबीएसई ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
3: CLFEPJ वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स।
2: तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
4: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया। मैंने अपने फोन पे 2 बारी ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में, जब मैंने 3 बारी ट्राई किया था एंड तब, लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी, तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है।
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
4: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बारी डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी।
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से सीबीएसई करा नहीं पाई और फिर री इवेल्यूएशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इसीलिए सीबीएसई के चेयरमैन सचिव को हटाकर ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई।
0: 4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं। टीएमसी में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई, मतलब 2 घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था। धरने में टीएमसी के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे। पांच बजे ही चली गई, मतलब दो घंटे पहले ही ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया था। धरने में टीएमसी के सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे थे।
5: लड़ेंगे या मरेंगे?
6: यही तो मरेंगे।
5: हाँ मरेंगे।
6: अगर जिएंगे
5: या मरेंगे?
7: लड़ेंगे।
6: अब जिएंगे तो बीजेपी को हटा
8: देंगे।
9: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने, सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
10: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकता है तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर।
9: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए। जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई हैं? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही, क्या उसी विधानसभा में जल्द दो दो तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
11: टू थर्ड मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और दो चार पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे।
9: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा। ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है। तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया। लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा। इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी।
6: गद्दारी करছে তৃণমূলটাকে ভাঙার জন্য, আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান।
9: ममता मान रही है कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं। इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे, तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती है और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में
12: बंगाल में हरा कर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही। उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
13: আমরা কেউ কিন্তু বাকি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসেনি। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা সখি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসেনি। একজন 70 বয়সী ভদ্র মহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে। ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
12: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना आम बात रहा है, लेकिन इस बार ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला हमेशा रहा है, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो और जनता की सहानुभूति को बटोर लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने पर पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल ही नहीं हुए।
8: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे, तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे। और तब क्या होगा, एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
12: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए? सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं?
11: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था, तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
12: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा?
14: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
12: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
14: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक साइड में जाना पड़ता था।
12: ऋतव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल
14: अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
12: ऋतव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ, उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी हैं।
14: ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी के खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
12: ममता की पार्टी के ऋतव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गयी।
11: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी है, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस है तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
12: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
13: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
11: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला।
0: बंगाल में हार का ठीकरा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दें? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
12: जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
15: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
12: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
16: चोर चोर चोट्टा अभिषेक भी सीधा चोर ममता दूर हटो दूर हटो दूर हटो घोटाला बाज ममता दूर हटो दूर हटो दूर हटो कलंकारी ममता दूर हटो दूर हटो दूर हटो चोर ममता दूर हटो दूर हटो दूर हटो चोर चोर चोट्टा अभिषेक भी सीधा चोर चोर चोट्टा अभिषेक भी सीधा चोर चोर चोट्टा अभिषेक भी सीधा
17: दे हैव बिकम इनह्यूमन इट्स अ ब्रूटालिटी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यू फॉरगेट नाउ इवन पीपल कैनॉट गेट द ट्रीटमेंट।
12: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है, इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन वित्तव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैये नेता दावा है कठमनी

0: रहे हैं। वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुंचाने के बदले वसूली जाती थी, पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कटमनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे।
1: এবং আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই।
0: इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कटमनी वसूलने वाला ये शख्स 5,000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5,000 रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना दूसरी किश्त के बदले में ये कटमनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई, लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। लाभार्थियों में से एक विकास मंडल ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 60,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी थी और उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जब दूसरी किस्त का समय आया तो पंचायत सदस्य ने दावा है 5,000 रुपए की कटमनी मांगी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब पैसा वापस करना इन नेताओं ने शुरू कर दिया। बंगाल में कटमनी वापस करते कथित टीएमसी नेता का वीडियो बताता है वोट की असली ताकत क्या है। ममता सरकार में कटमनी वसूलने के आरोप लगातार लगते थे, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाता था। सरकार बदली तो इस काले धंधे में लगे लोग खुद ही जनता को पैसा वापस लौटाने लगे। इसकी एक बड़ी वजह शुभेंदु सरकार में कटमनी से जुड़े नेताओं की पूरे राज्य में जनता के हाथों होती पिटाई भी है। अलग अलग जिलों में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं की जनता ने अच्छे से खबर ली है, उन्हें खबरदार किया है, जिसने शायद कटमनी वसूलते रहे लोगों को डराया है और उन्हें अब सबके सामने आकर पैसा वापस लौटाने में अपनी भलाई नजर आने लगी है।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: क्या होता है मूल नक्षत्र? मूल नक्षत्र में जन्म लेना क्या अशुभ होता है? मूल नक्षत्र में जन्म लेने पर क्या उपाय करना आवश्यक है? क्या मूल नक्षत्र के लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते? क्या है मूल नक्षत्र का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
5: To thrive in today's tech world, you need more than coding tutorials. That's why WGU's computer science degree teaches you the building blocks behind AI and automation, like algorithms, data structures, architecture, and more. You'll earn multiple industry certifications, gain real experience, and graduate with a degree employers trust. Plus, it's flexible, affordable, and online. Move your tech career forward at wgu.edu.
6: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

आज तक की मुहिम का बड़ा असर, सीबीएसई ओएसएम विवाद में चेयरमैन और सचिव को पद से हटाया गया। पीएम के दखल के बाद एक्शन हुआ, लोखंडे प्रशांत को जिम्मेदारी दी गई।

भी आज 13 के साथ शपथ लेंगे डीके शिवकुमार। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। ज्योतिषों की सलाह पर बदला स्टेज का नक्शा। बंगाल हारने के बाद अकेली पड़ी ममता बनर्जी। धरने में साथ देने पहुंचे सिर्फ 9 विधायक। टीएमसी पर कब्जे की तैयारी में बाकी। ममता ने कहा सम्मति दे भगवान। सूरत में 2 यात्री बसों में भीषण टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत, 40 यात्री घायल। टक्कर के बाद बस में लगी आग। और मानसून से पहले मौसम की तबाही वाला ट्रेलर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से कई घर तबाह। पिथौरागढ़ में भूस्खलन, जान बचाकर भागे लोग।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। क्या पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हैं? दरअसल इसका जवाब मिला है अब से थोड़ी देर पहले आई उन तस्वीरों से और खबरों से जहां ईरानी मीडिया ये कह रही है कि ईरान ने अमेरिका के पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया है। बहरीन में अमेरिकन नेवी की फिफ्थ फ्लीट है जिस पर थोड़ी देर पहले मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी मीडिया के IRGC के हवाले से यह दावा किया गया है कि केशम द्वीप पर अमेरिका ने जो हमला किया था उसकी जवाबी कार्रवाई ईरान की IRGC की ओर से की गई है। पांचवें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना ने ईरान के दावों का खंडन किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड अपने बयान में ईरान के दावों को झूठा बता रहा है, लेकिन IRGC कह रही है कि उसने हमले किया। और ये हमले सिर्फ बहरीन नहीं बल्कि कुवैत में भी थोड़ी देर पहले इंटरसेप्शन हुए हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं। बहरीन और कुवैत को ईरान ने निशाना बनाया है, अमेरिका ने कशम आइलैंड को निशाना बनाया है जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई है। तो बहरीन में एयर सायरन अलर्ट हुआ है, तो कुवैत में वहां पर जो है मिसाइल्स गिरे हैं, ड्रोन से हमला किया गया है। और अब रुख करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर का। CBSE को अब नया बॉस मिल गया है। लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन बनाया गया है। लोखंडे प्रशांत राहुल सिंह की जगह कमान दी गई है। पीएम मोदी के दखल की वजह से राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद OSM सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो जवाबदेही नहीं है, ये तो कवर अप है।
1: CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया। CBSE के सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया। CBSE जिसे बड़ा पारदर्शी तरीका बताती थी, उस OSM सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बन गई। ये सब कुछ दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जाकर हो पाए, क्योंकि CBSE वालों ने यह हाल कर दिया था कि अब भी इनको ना हटाते तो पता नहीं क्या ही ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ करते। क्योंकि जहां बच्चों के साथ कॉपी जांचने के सिस्टम के नाम पर अंधेरगर्दी CBSE ने की, वही OSM प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा भी उसी CBSE बोर्ड के तहत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने किया। 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत तो मंगलवार दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई छात्र अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि CBSE ने पहले तो धुंधली कॉपी स्कैन करा के बच्चों का भविष्य धुंधला करना चाहा, और फिर CBSE के री इवेल्युएशन पोर्टल में लगातार दिक्कतें ही आती रही। एक ऐसा पोर्टल जिसका छात्र न्याय पाने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा पोर्टल जिसमें घंटों नहीं बल्कि 4 दिनों की देरी हुई, एक ऐसा पोर्टल जिससे उन छात्रों को नंबर के भंवरजाल में किनारा मिलने की उम्मीद थी जो अपने अंकों के वेरिफिकेशन और आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन की मांग कर रहे थे। लेकिन उसकी जगह सोमवार से मंगलवार तक CBSE फिर फेल हो गई।
2: कल देश भर में देखा गया कि लाखों विद्यार्थी जिन्होंने CBSE की 12वीं की परीक्षा पास की है, अपनी आंसर शीट्स जिन्होंने CBSE से निकलवाई हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज 2 जून है। CBSE ने आज सुबह ट्वीट कर और प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि आज जो पोर्टल है वो खुल गया है, चालू है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर CBSE की वेबसाइट खोल रखी है, जहां से आप अगर मेन वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे और जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक हेयर फॉर टू अप्लाई यहां पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप एक ऐसी विंडो पर जाएंगे जहां लॉगिन एंड अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो तब आप रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। और इसी पोर्टल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी ने पहले ही जो अपनी डिटेल्स हैं वो भर रखी हैं, पर अभी भी हजारों विद्यार्थी जो देश भर में हैं वो इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो
1: जो छात्र पोर्टल को एक्सेस करने की कोशिश करते थे उनका कहना है कि उन्हें लॉगिन में दिक्कतें आती रही। दूसरे छात्रों ने बताया कि क्रेडेंशियल डालने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ छात्रों ने बताया कि वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए जरूरी मुख्य विकल्प या तो मौजूद नहीं या ठीक से काम नहीं कर रहा।
3: CLFEPJ
2: वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स। तो आप सुबह से ट्राई कर रही हैं, आपने फोन पर ट्राई किया और कहाँ कहाँ ट्राई किया?
3: मैंने अपने फोन पर ट्राई किया था एंड यहाँ पे भी मैंने अराउंड 6 टाइम्स ट्राई किया। मैंने अपने फोन पे 2 बारी ट्राई किया था एंड मॉर्निंग में पहले क्रेडेंशियल्स इनवैलिड दिखा रहा था मॉर्निंग में जब मैंने 3 बारी ट्राई किया था एंड तब, लेकिन मेरे क्रेडेंशियल्स सही थे एंड देन आई थॉट कि मे बी गलती होगी, तो मैंने फिर से अब जब ट्राई किया तब वो वेरिफिकेशन ही फेल्ड दिखा रहा है, तो वो फिर मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो वो साइट की तरफ से गलती है।
2: आपने अपना रोल नंबर, आधार नंबर सब चेक किया?
3: हाँ, मैंने वेरीफाई किया एंड मैंने अगर 6 बारी डाला तो आई डोंट थिंक सो कि 6ठी बारी में गलती होगी।
1: और जब पहले मूल्यांकन ढंग से CBSE करा नहीं पाई और फिर री इवेल्युएशन तक में देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड फेल हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया खेल वही है, तो फिर सरकार ने समझ लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इसीलिए CBSE के चेयरमैन, सचिव को हटाकर OSM सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच कमेटी बना दी गई।
0: अब खबर पश्चिम बंगाल से। 4 मई के बाद बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं। TMC में टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन दांव इसलिए उल्टा पड़ा क्योंकि मंगलवार दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे चली गई। 2 घंटे पहले ममता का धरना खत्म हो गया। TMC के सिर्फ 9 विधायक पहुंचे थे।
1: इकहत्तर साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने, सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं।
4: अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं, तो अब क्यों वो हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर।
1: लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए। जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई है? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही, क्या उसी विधानसभा में जल्द 2-2 तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है?
5: 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे।
1: ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती है और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा। ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है। तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया। लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा। इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी।
6: গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সত্য সুমতি দে ভগবান।
1: মমতা মান রহী হ্যাঁ কি পার্টি মে বগাওত হো রহী হ্যাঁ জিসকি শুরুয়াত নতিজো কে সাথ হি দিখনে লগি। 4 মই কো তৃণমূল কংগ্রেস সত্তা সে বাহার হোতি হ্যাঁ, উসকে 80 বিধায়ক জিততে হ্যাঁ इसके दो दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे, तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है। 4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने।
7: আমরা কেউ কিন্তু বাকি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্রমহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে, ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোন সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
1: পশ্চিম বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ বিপক্ষী দল কে কার্যকর্তাও কা সত্তাধারী পার্টি মে শামিল হোনা আম বাত রাহা হ্যায়, লেকিন ইস বার ইয়ে কাম বহুত তেজি সে হো রাহা হ্যায়। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे संतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है।
0: सत्ता का चरित्र भी ऐसा ही होता है, जब जो पार्टी हार जाती है उसके नेता कहां जाएंगे, वो वहां का रुख करते हैं जहां सत्ता हो। ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई, उनका एक बेहद कामयाब फॉर्मूला रहा, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो, जनता की सहानुभूति बटोरो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से फिलहाल कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने में पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल नहीं हुए, बावजूद उसके ममता बनर्जी सड़क पर उतरी।
8: आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे, तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे। और तब क्या होगा, एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है।
1: ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए। सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं।
5: जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था, तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा, पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को।
1: तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा।
9: ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है।
1: ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं।
9: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी का लीडरशिप में जो नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
10: ऋतव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी है।
9: मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं 16 तारीख 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे, ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी के खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
10: ममता की पार्टी के ऋतव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गईं।
11: तीन मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है।
10: तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं।
12: ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए, अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है।
11: जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दो चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था, ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन उनके पार्टी में 50 विभीषण है उनको पता नहीं चला।
0: पश्चिम बंगाल में हार का ठीकरा टीएमसी के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दें? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं?
10: जहां तक 49 साल के ऋतव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है।
13: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला।
10: 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए, अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा।
14: They have become inhuman. It's a brutality. Murder of democracy, you forget. Now even people cannot get the treatment.
10: इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है।
0: ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे तो उन्हीं के पार्टी के छुटभैये नेताओं का दावा है कि कट मनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले बंगाल में नेता सत्ता के दम पर जनता से सरकारी योजनाओं की किश्त पाने के बदले में कट मनी लिया करते थे, अब वो राजनीतिक परिवर्तन के बाद हाथ जोड़कर वही कट मनी लौटा रहे हैं।
10: पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत बताने वाली तस्वीर है ये।
15: किंतु हमी नाम बोलछी ना तारा अवश्य ये जगह जाना बिन। अर्चना मंडल, रामगोपाल मंडल, रामनारायण मंडल माने विकास बाबूर दो छेले, अभिमन्यु मंडल, जयदेव पात्र, नीताई पात्र, गोविंद पात्र, राधाश्याम पात्र, मधुसूदन पात्र, शक्तिपद सीट बाड़ी पे किंतु ओनार काछ थेके टाका नेवा हयनी।
10: जगह है दक्षिण 24 परगना, जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ।
16: আমাদের ঘরের টাকা
17: এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন?
16: রাজালয় আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকা বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5,000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব।
10: यहाँ पर क्या हो रहा है पहले आप ये जान लीजिए। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता कट मनी लौटा रहे हैं, वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुँचाने के बदले वसूली जाती थी। पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कट मनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे।
15: ফিরত দিতে চাই এবং আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই।
10: इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कट मनी वसूलने वाला ये शख्स 5,000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5,000 रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना दूसरी किश्त के बदले में ये कट मनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई, लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। लाभार्थियों में से एक विकास मंडल ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 60,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी थी और उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जब दूसरी किस्त का समय आया तो पंचायत सदस्य ने दावा 5,000 रुपए की कट मनी मांगी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब पैसा वापस करना इन नेताओं ने शुरू कर दिया। बंगाल में कट मनी वापस करते कथित टीएमसी नेता का वीडियो बताता है वोट की असली ताकत क्या है। ममता सरकार में कट मनी वसूलने के आरोप लगातार लगते थे, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाता था। सरकार बदली तो इस काले धंधे में लगे लोग खुद ही जनता को पैसा वापस लौटाने लगे। इसकी एक बड़ी वजह शुभेंदु सरकार में कट मनी से जुड़े नेताओं की पूरे राज्य में जनता के हाथों होती पिटाई भी है। अलग अलग जिलों में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं की जनता ने अच्छे से खबर ली है, उन्हें खबरदार किया है, जिसने शायद कट मनी वसूलते रहे लोगों को डराया है और उन्हें अब सबके सामने आकर पैसा वापस लौटाने में अपनी भलाई नजर आने लगी है।
0: उधर नेपाल की सत्ताधारी पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष राबी लामिछा ने नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत नेपाल के बीच संबंधों को लेकर चर्चा हुई। राजनीतिक युवाओं की क्षमता प्रतिभा के इस्तेमाल को लेकर के भी विचार विमर्श हुआ। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरएसपी चीफ को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं में अद्भुत पकड़ है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सोच, आकांक्षा, भाषा और ऊर्जा को प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए जब वो मिलेनियल से मिलते हैं तो उनसे ज्यादा मिलेनियल्स दिखाई पड़ते हैं। जब वो जेनजी के साथ संवाद करते हैं तो वो जेनजी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को हमेशा विकास के केंद्र में रखा है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
19: होता है मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र में जन्म लेना क्या अशुभ होता है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने पर क्या उपाय करना आवश्यक है, क्या मूल नक्षत्र के लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, क्या है मूल नक्षत्र का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ
20: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
18: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.

0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, सीबीएसई ओएसएम विवाद में चेयरमैन और सचिव को पद से हटाया गया। पीएम के दखल के बाद एक्शन हुआ, लोखंडे प्रशांत को जिम्मेदारी दी गई। कर्नाटक में नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरी, आज 13 के साथ शपथ लेंगे डीके शिवकुमार। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषों की सलाह पर बदला स्टेज का नक्शा। बंगाल हारने के बाद अकेली पड़ी ममता बनर्जी, धरने में साथ देने पहुंचे सिर्फ 9 विधायक। टीएमसी पर कब्जे की तैयारी में बाकी, ममता ने कहा सम्मति दे भगवान। सूरत में दो यात्री बसों में भीषण टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, 40 यात्री घायल, टक्कर के बाद बस में लगी आग। और मानसून से पहले मौसम की तबाही वाला ट्रेलर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से कई घर तबाह, पिथौरागढ़ में भूस्खलन, जान बचाकर भागे लोग। मानसून से पहले ही मौसम के तेवर बिगड़ने लगे हैं। 48 डिग्री के टॉर्चर के बाद अब आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में आंधी तूफान और बारिश मुसीबत बनकर टूट रहे हैं। तो कहीं पर बादल फटे हैं, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। तो अलवर राजस्थान में सोचिए, मई जून के महीने में तेज बारिश हो रही है। गुजरात के पाटन में बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज उत्तर भारत में भी बदला है, तो उत्तराखंड के देहरादून में तेज आंधी तूफान के बाद पेड़ गिरे, मूसलाधार बारिश जारी है, तो कहीं तेज बारिश के साथ घना कोहरा। तो अब तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक मौसम अपना खतरनाक ट्रेलर दिखा रहा है। 4 तारीख को जहां पर अब एंट्री होनी है मॉनसून की, उसके ठीक पहले विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव, और जून के महीने में कहीं मौसम राहत लेकर के आई तो कहीं मौसम आफत बन के आई। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश के दौरान अचानक बादल फटे, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
1: जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भारी बारिश के बाद बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। ये तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं, जहां बादल फटने के बाद पानी की बेकाबू रफ्तार ने कई आशियाने तबाह कर दिए। सबसे ज्यादा असर किश्तवाड़ डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर हुआ है, जो फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर बंद हो गया है। कई गाड़ियां भी फ्लैश फ्लड की चपेट में आई हैं। पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट ली है और कई शहरों में बादल मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। कुपवाड़ा में भी तेज आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरे। बारिश और आंधी तूफान इतना तेज था कि श्रीनगर में बड़े बड़े दरखत जमींदोज हो गए हैं, जिससे कई अहम रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां कैलाश मानसरोवर मोटर मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टाने दरक कर सड़क पर आने लगी। लोग अपनी जान बचाकर गाड़ियों से निकलकर भागते नजर आए। मौसम की मार और दहशत की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: एक बड़ी खबर आ रही गुजरात से। सूरत में दो यात्री बसों में जबरदस्त टक्कर हुई है, हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हादसा सूरत के बारडोली इलाके में हुआ है। नेशनल हाईवे पर महाराष्ट्र पासिंग वे के दौरान दो यात्री बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा पानी के एक टैंकर से जुड़े ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश में हुआ। ड्राइवर ने अचानक बस मोड़ने की कोशिश की और दूसरी बस में वो जा टकराया, तो महाराष्ट्र की तरफ से जा रही बस सीधे खाई में गिर गई, उसमें आग लग गई। हाईवे पर आमने सामने इन बसों के बीच बेहद जबरदस्त टक्कर हुई और इस टक्कर के चलते 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जबकि 40 यात्री घायल हुए हैं और उनमें से कईयों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बेहद गंभीर हादसा, ये भयावह हादसा। हाईवे पर एक ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश में बस ने मोड़ने की कोशिश की और सीधे सामने से आ रही बस से आमने सामने की हाईवे पर ये टक्कर हुई, उसके बाद बस में आग लग गई। तो गुजरात के बाद आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं और ये जो तस्वीर है ना, इसको देख करके आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। हम बर्फ इस्तेमाल करते हैं, घर लाते हैं, तो भोपाल में खुले में रखी बर्फ पर कुत्तों के घूमने का वीडियो सामने आया जिसके बाद हड़कंप मच गया। तो भोपाल में बैरसिया रोड का इलाका है, काजी कैंप इलाके में एक शोरूम है, उसके पास ये मामला दिखा। यहां बर्फ रखी थी, बिना ढके रखी थी, यहां पर कुत्ते घूमते नजर आए, गंदगी करते नजर आए। आप सोचिए कि यही बर्फ लोगों के इस्तेमाल के लिए बेची जा रही थी, हम और आप यही बर्फ खरीद कर घर लेकर के आएंगे। कई बार इंडस्ट्रीज में जाती हैं और इसी बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है कई बार चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, या कई बार इस बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े कैटरिंग सेवाओं द्वारा, ताकि वहां पर आपकी कोल्ड ड्रिंक ठंडी रह सके, और तो और सीधे खाने पीने में भी इस्तेमाल हो जाता है। नगर निगम की टीम पहुंची, 2000 रुपये का चालान किया और पूरे दूषित बर्फ को नष्ट करवा। सोचिए जिस बर्फ पर ये कुत्ते गंदगी कर रहे हैं, चाट रहे हैं, ऐसी ही बर्फ आपको बर्फ के गोले दुकानों पर मिलते हैं, जो आप 10 या 20 रुपए 50 रुपए का गोला खाते हैं वो ऐसी बर्फ होती है। अब यहाँ देखिए, ये भोपाल का एक इलाका है जहाँ पर उसी बर्फ को कुत्ते गंदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद आपको ले चलते पंजाब। जालंधर के हंसराज स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते समय एक खिलाड़ी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उसी समय वहां मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत स्थिति संभाली और बिना देर किए CPR देकर इलाज शुरू कर दिया। मेडिकल टीम आने से पहले ही डॉक्टरों ने मौके पर प्राथमिक उपचार की, खिलाड़ी की जान बचाने की कोशिश की और बाद में मेडिकल टीम के पहुंचने पर खिलाड़ी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया जहां उसका इलाज जारी है। समय पर उसे मदद मिली। डॉक्टरों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। एक खिलाड़ी जो कल देश के लिए काम आ सकता था, उसकी जान डॉक्टरों ने बचा ली। और इसीलिए कहा जाता है कि CPR जैसी कुछ बुनियादी मेडिकल ऐसी तकनीक है जिसे हमको आपको जरूर सीखना चाहिए। पंजाब के बाद अब खबर छत्तीसगढ़ से। वहां के पेंड्रा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार JCB ने स्कूटी सवार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। वहां CCTV कैमरा था तो तस्वीरें भी उसमें कैद हो गई। JCB की लापरवाही देखिए इसमें साफ साफ नजर आ रही है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जो स्कूटी सवार था उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इतना दर्दनाक हादसा था ये। मृतक बिलासपुर के इलाके का रहने वाला था। बांदा मुड़ के पास जब अपने घर के पास वो गुजर रहे थे तब सामने से एक JCB आती है। पुलिस ने JCB चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन ये सड़कों पर आमतौर पर कमर्शियल वाहनों द्वारा हो रही लापरवाही की तस्वीरें बयां करते हैं। खबर गुजरात से। वडोदरा के आजवा रोड से दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर पैदल जा रही एक बुजुर्ग महिला को पीछे से जोरदार टक्कर मार देती है। पूरी घटना भी CCTV में कैद हो गई। साफ दिख रहा है कि कार चालक ने कुछ ही सेकंड में महिला को टक्कर मारी, उसे हवा में उड़ा दिया। बुजुर्ग महिला की हादसे के बाद मौके पर ही मौत हो गई। लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। लोगों ने शिकायत की तो पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की और अब बताया जा रहा है कि कार सवार जो लोग थे वो जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं और एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसे संतान न होने की वजह से उसके साथ मारपीट प्रताड़ना की जा रही थी। पीड़िता का कहना है कि पति द्वारा मारपीट की घटना घर में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई और संभवतः ये उसी CCTV कैमरे की तस्वीरें हैं, घर के अंदर की, घर के बाहर की भी, जहां उस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है। अब उस महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। अरब खबरें उत्तर प्रदेश की सियासत से, जहां 80 बनाम 20 की नई राजनीति देखने को मिल रही है। चुनाव में 9 महीने का वक्त है। अटकलें चल रही हैं कि क्या चुनाव जल्द यूपी में हो सकते हैं।
2: 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है।
3: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए 80 बनाम 20 वाले सियासी नैरेटिव को धार देना बहुत तेजी से शुरू कर दिया? जहां अखिलेश यादव के पीडीए और राहुल गांधी के पिछड़ों को लेकर साधी जाति सियासत के विरुद्ध में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, रावण कंस जैसी दुर्गति, खरदूषण के खिलाफ अस्त्र उठाओ, माफिया हिंदू को धमका नहीं सकता, जो बोली से नहीं मानता गोली से मानेगा ऐसे बयान देते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं, तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80 बनाम 20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा।
4: वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है।
3: जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को गोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखी, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे, अब मैं अपराध नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो, मैं भविष्य में कोई अपराध ना करने की कसम खाता हूं।
5: अब तो नहीं काम कर रहा कोई
3: क्योंकि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि ये सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है।
6: सारी चीजों की डिटेलिंग की जा रही है, ये अच्छे बैठ में सभी की मीटिंग की जा रही है और उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही ये शपथ भी ले रहे हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से ये दूर रहेंगे।
3: असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी जहां भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके, और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
4: अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: पूरे देश के साथ साथ यूपी में भी मौलाना, धर्मगुरु, ये तमाम लोग योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं और साथ साथ सरकार से मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्होंने चैलेंज भी दिया तो अब योगी ने तल्ख होकर जवाब दिया है, कहा कि गाय माता नहीं है, पशु नहीं है माता है। इसके बाद मौलाना, मौलवी, मुस्लिम धर्मगुरुओं को योगी ने चैलेंज दे दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मौत पर ये लोग मौन क्यों रहते हैं।
4: एक भी मौलाना ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है।
3: बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया,
7: जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं।
3: बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ योगी का संदेश हमेशा जाति में बटकर नहीं बल्कि हिंदू वोट के एकजुट होकर साथ आने का रहा। क्या इसीलिए अब हिंदू वोट की जमीन को 2027 से पहले मजबूत करने में योगी जुटे हैं? आप कहेंगे कैसे? तीन तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर गाजियाबाद की है जहाँ माफिया के कब्जे से गरीब का घर छुड़वा कर प्रशासन उन्हें सौंपता है। दूसरी तस्वीर बिजनौर की है जहाँ 1600 से ज्यादा उन परिवारों को जमीन का हक योगी सरकार देती है जो परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए। और तीसरी तस्वीर संभल की जहाँ अवैध कब्रिस्तान को तोड़कर खाली कराई गई जमीन अब दंगा पीड़ित हिंदू परिवार को दी जानी है। तो क्या यही वो हिंदू वोट की जमीन है जो हिंदू वोट की मशीन बनकर 2027 में चल सकती है?
4: याद रखना हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है।
3: कानून का शस्त्र उठता है तो समाज के खरदूषण का इलाज कैसे होता है इसकी गवाही सबसे पहले गाजियाबाद से देखिए।
8: अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अपने दो लड़के और पोते का रह रहे हैं किराए पे। हाँ? ले आना उनको वहीं पे।
9: हाँ?
8: ठीक है, चलो
10: चलिए चलिए।
3: जिस ताले को खोलकर चंचल कुमारी अब गाजियाबाद के डीएम और प्रशासन के दूसरे अफसरों के साथ बेखौफ भीतर दाखिल हो पा रही हैं, ये घर इन्हीं का है जिन्होंने 29 मई को प्रशासन से शिकायत की। बताया कि ताज मोहम्मद नाम के आरोपी ने 1.5 लाख रुपए की उधारी के बदले 7 लाख रुपए का ब्याज लगाकर इनके घर पर कब्जा कर लिया है। जाँच में आरोपी पहले भी कई मकानों पर कब्जे का खेल करता पाया गया। इसके बाद गाजियाबाद के जिला अधिकारी पहुंचे और खुद घर खाली करा के चंचल कुमारी को दे दिया।
11: दबाव बना के इनकी जो प्रॉपर्टी लगभग 30 से 35 लाख रुपए की है, उसपे एक दूसरे व्यक्ति को बेच के कब्जा करा दिया और इनको बदले में एक जमीन का वादा किया जो LMC की जमीन थी। जिस प्रकार से फ्रॉड हुआ था उसको लेकर ही मुझे मिली थी। आज हमने 2 दिन में निर्णय लिया जांच के बाद में कि इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। आज जो मुमीन नामक व्यक्ति था, ताज मोहम्मद था, दोनों यहाँ से चले गए हैं। दोनों को समझा दिया गया था और इन महिला को वापस उनका कब्जा दिला दिया गया।
12: ताज मोहम्मद जी तो गाली गलौज पे उतारू रहते थे और उन्होंने मेरा मकान भी आगे सेल कर दिया था। मैं उस पार्टी से ही बात करती थी तो वो भी मतलब मेरे से अभद्र व्यवहार वगैरह करते थे। इस हेतु मुझे डीएम सर के पास जाना पड़ा। प्रशासन ने मेरी बहुत बहुत जल्दी से ही मेरी बहुत मदद की है। मैं इसलिए तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह का, जिला अधिकारी, बाकी सब टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
3: कब्जे से घर छुड़वा कर दिया गया तो बिजनौर में मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से आकर दशकों से विस्थापित की जिंदगी गुजारते हिंदू और सिख नागरिकों को जमीन सौंपी है। इन्हीं में से मिल्खा सिंह, गुरमुख सिंह और बलकार सिंह के परिवार तक आज तक पहुंचता है ये समझने के लिए कि आखिर पाकिस्तान से भारत आने के बावजूद भारतीय होकर भी जो दंश बिना जमीन के ये पहले झेलते रहे, क्या वो अब दूर होंगे?
9: तीन पीढ़ी गुजर गई, अब परिवार जो इतने बैठा आके सामने जो भी योगी जी ने करा बढ़िया करा।
10: बढ़िया क्या?
9: हाँ।
10: कितनी जमीन मिली है?
9: एक एकड़।
10: एक एकड़ जमीन?
9: हाँ जी।
10: इससे पहले कुछ नहीं मिलता था?
9: ना जी, कुछ नहीं मिला।
13: जब जगह नहीं मिली इधर आके थोड़ी बहुत जमीन जंगलवाद करके अपनी जगह रहने के लिए हमने बनाई अपना रहे, जिसके बाद में अब लोग अपनी जिंदगी जैसे भी काटी, हल्की मड़ी जैसे भी कटी अपने कटते रहे। अब यो है आगे गवर्नमेंट एक एक एकड़ दे रही है, बड़ी खुशी हो रही है उसे कि आगे के लिए हमारे पैर जम जाएंगे अपने रहने के लिए। जगह थोड़ी बहुत जो भी मिल दे रही है अपने योगी सरकार आए थे कि बता रहे हमारा भी नंबर कागजों में चढ़ चुका है।
3: जो सुकून अब विस्थापित परिवारों को बिजनौर में मिलने लगा, वही शांति अब संभल में 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के संभल में 10 महीने पहले कब्रिस्तान के अवैध कब्जे से कब्जा मुक्त हुई सरकारी जमीन की 100 वर्ग मीटर हिस्से पर अब संभल के 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को बसाया जाएगा। जिस जमीन पर बुधवार को हवन पूजन करके दंगा पीड़ित परिवार को उनके हक की जमीन दी जाएगी।
14: संभल में 10 महीने पहले कब्रिस्तान से कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर अब संभल के 1978 के दंगा पीड़ित परिवार को बसाया जाएगा। इसके लिए संभल के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और आज संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में उसी दंगा पीड़ित परिवार को इस जमीन का पट्टा देंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी जमीन पर है जो कि इस वक्त शेरखा सराय इलाके में स्थित है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यही वो पूरी जमीन है जिसको यहाँ पर जो है बीते 10 महीने पहले प्रशासन के द्वारा कब्रिस्तान की कब्रों को हटा करके जो यहाँ पर जो है कब्जा मुक्त जो है कराया गया था।
3: इस परिवार को जमीन देने का वायदा खुद मुख्यमंत्री ने किया था। इस परिवार से बात करने आज तक पहुँचता है ये राम सरनदास रस्तोगी का परिवार है, जिनकी निर्मम हत्या 1978 के दंगे में कर दी गई। शव को कहते हैं कि तराजू से बांध कर कुएं में फेंक दिया गया था। ये परिवार आज तक को बताता है कैसे 48 साल बाद जाकर कोई सरकार इनकी सुध ले रही है।
15: जो लोहे के गेंदाले होते हैं उससे उनके टांगों पर भी कई बार करे और फिर उन पर इतने चाकू के बार करे कि पोस्टमार्टम में भी 109 चाकू पाए गए हैं। और फिर उनकी हत्या करने के बाद में दुकान को लूट कर और जो भी मतलब उनका सपना उसे दुकान के तराजू के पल्लों से बांधकर और बाट बांधकर दुकान के सामने वाले कुएं में फेंक दिया गया था। उस समय की जो सरकारें थी उनके कान पर ना जू रहेंगी। आज तक 48 साल से ये फाइल बंद थी, योगी जी ने सुध ली।
3: इसी परिवार को जमीन दिलाने के लिए जब संभल में अवैध कब्जा करके बने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक सवाल उठाते थे।
16: कब्रिस्तान के ऊपर जो 100 साल 150 साल पुराना कब्रिस्तान उसके ऊपर बिना किसी उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, उससे पहले संभल के अंदर पुलिस की गोलियों से मौतें हुई है और नाम किसी के पुलिस वाले पर लिखकर जनता

काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी, लेकिन सलमान खान नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज हो। सलमान खान ने काला हिरण फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है, कानूनी नोटिस भेजा है। तो आइए देखते हैं क्यों सलमान खान फिल्म काला हिरण की रिलीज से डर रहे हैं।

0: सलमान खान का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जिस काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान आज भी जमानत पर हैं, फिर से काले हिरण का जिन जैसे बाहर निकल आया है। जी हां, सलमान खान का 1998 का ब्लैक बक शिकार मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। साल 1998 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर ब्लैक बक यानी काले हिरण के शिकार का आरोप है। इस मामले में अब फिल्म बनने जा रही है। प्रोड्यूसर अमित जानी ब्लैक बक के शिकार पर फिल्म काला हिरण लेकर आ रहे हैं। इस मामले में सलमान खान ने फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडे को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में काला हिरण नाम की प्रस्तावित फिल्म के प्रोडक्शन और प्रमोशन को तुरंत रोकने की मांग की गई है। 24 अप्रैल 2026 को भेजे गए इस नोटिस में कहा गया है कि ये फिल्म कथित तौर पर सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित है। सलमान की लीगल टीम का दावा है कि इस फिल्म से उनकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, चल रही लीगल प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और उनके पर्सनल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। सलमान की लीगल टीम का कहना है कि एक्टर ने अपने नाम, पहचान या उससे जुड़े किसी भी कथित घटनाक्रम के इस्तेमाल की कोई अनुमति नहीं दी है और अब सलमान के नोटिस का जवाब फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने दिया है।
1: ऐसा कोई मामला नहीं है कि साहब मैं तो बरी हो गया हूं और आप मेरे विषय पे फिल्म नहीं बना सकते। यहाँ कितने कोर्टरूम ड्रामे बने हैं जिसमें हमने भट्टा पारसोल से लेके बाकी सब पे जीत की फिल्म के जरिए दिखाई है। या अजमल का साहब के 26/11 फिल्म बनी है, यहाँ पे भगत सिंह की फांसी फिल्म बनती है, जितने रियल इंसिडेंट है अभी हमने धुरंधर में देखा कि नोटबंदी दिखाई गई है और अतीक अहमद का हमने पूरा काला चिट्ठा उसमें दिखाया है। तो तमाम चीजें जो है फिल्मों में दिखती हैं। तो सलमान खान कोई अछूत थोड़ी है कि हम उनकी जिस घटना में नामजदगी है उस घटना को पर्दे पे नहीं ला सकते हैं। 363 लोगों ने, बिश्नोईयों ने खेजड़ली गांव में मां अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपनी गर्दन कटा ली, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। जो उनका वन्य जीवों से और हिरणों से प्रेम है, उस प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको हमने पर्दे पे उतारने का काम किया है। हमने सलमान खान को ना इसमें जो है गलत तरीके से दिखाया है, ना हमने उनका ग्लोरिफिकेशन किया है। वो जो है पूरा मामला वो पूरा जो है पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं सलमान खान ब्लैक बक सलमान खान एक ही बात है। तो ऐसे में लीगल नोटिस भेजना, वो पोस्टर जारी होने पे मुझे लगता है बहुत जो है ये छोटी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोस्टर ही जारी हुआ है, अभी फिल्म का ट्रेलर भी नहीं आया है, 20 जून को आएगा वो, और एकदम से जो है लीगल नोटिस भेजना बिना बातचीत के, यानी कि कोर्ट में ही मिलना चाहते हैं भाईजान।
0: रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में कोर्ट रूम ड्रामे से लेकर सलमान खान की गिरफ्तारी और बिश्नोई समाज की नाराजगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टकराव की पूरी कहानी को दिखाया गया है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा संभल, मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में शूट किया गया है। बता दें कि सलमान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले पर आधारित फिल्म काला हिरण का पोस्टर शुक्रवार को जारी किया गया था। वहीं कहा गया था कि फिल्म का फर्स्ट लुक और टीजर 20 जून को जारी किया जाएगा।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: होता है मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र में जन्म लेना क्या अशुभ होता है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने पर क्या उपाय करना आवश्यक है, क्या मूल नक्षत्र के लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, क्या है मूल नक्षत्र का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
5: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आज तक की मुहिम का बड़ा असर सीबीएसई ओएसएम विवाद में चेयरमैन और सचिव को पद से हटाया गया प्रधानमंत्री के दखल के बाद एक्शन लोखंडे प्रशांत को जिम्मेदारी कर्नाटक में नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरी आज 13 के साथ शपथ लेंगे डीके शिवकुमार परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम ज्योतिषियों की सलाह पर स्टेज का भी नक्शा बदला बंगाल हारने के बाद अकेली पड़ी ममता बनर्जी धरने में साथ देने पहुंचे सिर्फ 9 विधायक

नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए नक्षत्रों पर विचार किया जाता है और इन 27 नक्षत्रों में मूल नक्षत्र को अलग से देखा जाता है, अलग से समझा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में और इसकी महिमा के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आज हम आपको बता रहे हैं मूल नक्षत्रों के बारे में। मूल नक्षत्र क्या हैं और ज्योतिष में इनका महत्व क्या है। देखिए, ज्योतिष की सटीक व्याख्या के लिए और सही फलों को जानने के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। 27 नक्षत्र सामान्यतः ज्योतिष में माने जाते हैं। नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और नक्षत्रों के अलग अलग फल भी होते हैं। कुछ नक्षत्र कोमल स्वभाव के होते हैं, कुछ नक्षत्र कठोर स्वभाव के होते हैं और कुछ नक्षत्र उग्र स्वभाव के होते हैं। उग्र और तेज स्वभाव वाले, तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र, सत्ताईसा या गंडांत नक्षत्र कहा जाता है। जब कोई बच्चा, लड़का या लड़की इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उसके जीवन पर इसके विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। और इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव पर और उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। मूल नक्षत्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,

कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान दें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। देखिए 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र मूल नक्षत्र नहीं है, 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र हैं। तो कौन कौन से हैं मूल नक्षत्र और उनका प्रभाव क्या है? मूल एक नक्षत्र का खुद नाम ही मूल है, तो मूल ज्येष्ठा और आश्लेषा ये मुख्य मूल नक्षत्र हैं। अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है

स्वास्थ्य सेंसिटिव हो जाता है। माना जाता है कि जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो उसके पिता को जन्मे हुए बच्चे का मुंह तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक इसकी शांति ना करा ली जाए। लेकिन वास्तविकता में केवल नक्षत्र के आधार पर सारा निर्णय नहीं लेना चाहिए, पूरी तरह से कुंडली देखिए, उसका वर्ग देखिए, उसके चंद्रमा को देखिए, तब बच्चे के जीवन का क्या प्रभाव पड़ रहा है परिवार के लोगों पर या बच्चे के ऊपर, तब आप उसका निर्णय ले पाएंगे। मूल नक्षत्र पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

तो होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपिका शर्मा ने हमें लिखा है और दीपिका शर्मा हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 फरवरी 1993। जन्म का समय सुबह के 9:42 और जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। दीपिका कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से एक विवाह करना चाहती हूं लेकिन उसमें बहुत अड़चन आ रही है, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा? दीपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और साल 2026 के अंत में आपके विवाह होने की संभावना प्रबल रूप से बन रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विवाह के पहले बालक की कुंडली मिला लें और अगर उसमें कुछ कमी है तो पहले से उसका उपाय कर लें, तब विवाह करें ताकि आगे मुश्किल ना हो। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन सुंदर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी भी बच्चे का, लड़की का या लड़के का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले ये देखिए कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आने वाले समय में उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से उसमें समस्या हो सकती है, नक्षत्र का स्वामी और उपस्वामी कौन है और इसका प्रभाव क्या है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि बच्चे के जन्म का उनके ऊपर उस नवजात के जन्म का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अगर बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। चंद्रमा अगर पक्ष बली है, बृहस्पति केंद्र में है, चंद्रमा या लग्न को प्रभावित कर रहा है तो मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार से अगर पिता के, माता के, परिजनों के ग्रह ठीक हैं तो चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई भी समस्या माता पिता के जीवन में आती है तो माता पिता का अपना प्रारब्ध है, उनका अपना संस्कार है, किसी बच्चे का इसमें दोष नहीं होता। और अगर आपके घर में बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो गया है तो आप टेंशन मत पालिए कि अब घर में बुरा होगा, बच्चे के साथ बुरा होगा, खराब होगा, ये सब तनाव पालने की जरूरत नहीं है। कुंडली को अच्छी तरह से देखिए और कुंडली के हिसाब से जो सही उपाय किए जा सकते हैं वो सही उपाय करिएगा। मूल नक्षत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी।
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और उसका दुष्प्रभाव तुरंत पड़ने की संभावना है तो क्या करेंगे? बच्चे के जन्म के 27 दिन के बाद वही नक्षत्र रिपीट होगा, तो 27 दिन के बाद वही नक्षत्र आने पर जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसकी शांति करा लीजिए। और जब तक बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता तब तक बच्चे की माता या उसके पिता बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता हो या बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो तो जब तक बच्चा 8 साल या 12 साल का ना हो जाए तब तक बच्चे की माता को पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। देखिए, मूल नक्षत्र का असर बच्चे के स्वास्थ्य, उसकी मानसिक स्थिति और उसके स्वभाव पर पड़ता है नकारात्मक। तो अगर बच्चे के स्वभाव, स्वास्थ्य या जीवन पर मूल नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है तो क्या उपाय किया जाए? अगर बच्चे की राशि मेष है और नक्षत्र तो अश्विनी होगा, मूल नक्षत्र होगा, तो बच्चे की राशि मेष और नक्षत्र अश्विनी है तो बचपन से बच्चे को हनुमान जी की पूजा करने की आदत डलवाइए, उसको नियमित रूप से हनुमान मंदिर ले जाइए, हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डलवाइएगा। अगर बच्चे की राशि सिंह है, नक्षत्र अगर मूल होगा तो मघा होगा, यानी नक्षत्र मघा और राशि सिंह है तो बच्चे को आदत डलवाइए कि बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए या तैयार होकर विद्यालय जाने लगे तो सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य को नमस्कार करे और बड़ा होने पर सूर्य देव को जल चढ़ाए।
अगर बच्चे की राशि धनु है और मूल नक्षत्र है उसका, मूल में जन्म हुआ है, तो गुरु और गायत्री की उपासना करवाइए। अगर कोई गुरु हैं आप लोगों के तो उनकी पूजा करवाइए, या अपने बच्चे को रोज सुबह 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ने को बोलिए। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप गायत्री मंत्र पढ़कर उसको लगातार सुनाते रहिए। अगर बच्चे की राशि कर्क है और मूल में जन्म हुआ है तो नक्षत्र होगा आश्लेषा। तो अगर बच्चे की राशि कर्क और नक्षत्र आश्लेषा है तो शिव जी की उपासना उत्तम होगी। बच्चे के हाथ से जितने दिन भी कर सकें शिवलिंग पर जल चढ़वाइए और बचपन से बच्चे को नमः शिवाय पढ़ने की आदत डलवाइए या नमः शिवाय पढ़ करके सुनाइएगा। अगर बच्चे की राशि वृश्चिक है और मूल में जन्म हुआ है तो नक्षत्र होगा ज्येष्ठा। तो अगर बच्चे की राशि वृश्चिक है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो हनुमान जी की उपासना बच्चे को करवाइएगा। हनुमान जी का दर्शन करें, बचपन से हनुमान चालीसा सुने और बड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ेगा। अगर बच्चे की राशि मीन है और मूल नक्षत्र का जन्म है तो उसका नक्षत्र होगा रेवती। तो अगर बच्चे की मीन राशि और रेवती नक्षत्र है तो गणेश जी की उपासना बच्चे को बचपन से करवाइएगा। बच्चा नियमित रूप से गणेश जी को प्रणाम करके विद्यालय जाए और जब भी मौका मिले गणपति के मंदिर में ले जाकर गणेश जी के दर्शन उसको करवाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप बच्चे को उपाय करवाएं तो बच्चे के ऊपर मूल नक्षत्र का लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी।

समस्या हो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

का किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जिनका जन्म मूल नक्षत्र में होता है वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, हमेशा बीमार रहते हैं, सफलता नहीं मिलती है। क्या ऐसा है? देखिए, मूल नक्षत्र में जन्म लेने पर स्वास्थ्य की और मानसिक स्थिति जरूर ही संवेदनशील हो जाती है, जिसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग भी जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं और काफी सफलता प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग सफलता नहीं पाते। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में सुधार होगा। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, मानसिक चिंता हो सकती है। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दिन बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक

हुए काम पूरे होंगे। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव बढ़ सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: सीबीएसई की परीक्षा गड़बड़ी में चेयरमैन और सचिव ओएसएम गड़बड़ी पर एक्शन हुआ है। लोखंडे प्रशांत को अब नई जिम्मेदारी मिली है। छात्रों की नाराजगी के बीच सीबीएसई पर बड़ा फैसला लिया गया। सत्यापन और रीवैल्युएशन में देरी के आरोपों की भी पड़ताल होगी। ओएसएम सिस्टम विवाद में एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। एस राधा चौहान एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। सीबीएसई विवाद पर सियासी घमासान भी हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि जवाबदेही नहीं है बल्कि मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। सीबीएसई के शीर्ष अधिकारियों का तबादला किया गया है लेकिन विपक्ष ने सवाल पूछा है कि क्या इससे छात्रों को इंसाफ मिलेगा। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। डीके शिवकुमार के साथ 13 मंत्री शपथ लेंगे। शैतेंद्र जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा से लेकर प्रियंका खड़गे तक कई बड़े चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। डीके शिवकुमार के शपथ समारोह में परंपरा भी बदली गई। शपथ मंच की दिशा बदल दी गई। पश्चिम की जगह पूर्व दिशा की ओर होगा मंच। लोकभवन में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी की गई है। हजारों समर्थकों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में होगा शक्ति प्रदर्शन। लोकभवन में शपथ समारोह की भव्य तैयारियां पूरी। वीवीआईपी एंट्री, अलग से मंच, सख्त सुरक्षा। हाईटी कार्यक्रम के शपथ के बाद अपनी जीप ओपन जीप से मुख्यमंत्री विधानसभा जाएंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का तृणमूलाइजेशन नहीं होगा और बागी नेताओं को जगह नहीं मिलेगी। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं के पार्टी में आने की खबरों को गलत बताया है। कहा पार्टी साफ सुथरी राजनीति पर चलेगी। कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना जारी। पोस्ट पोल हिंसा के आरोप पर टीएमसी ने विरोध जताया। धरने में टीएमसी के कई विधायक और सांसद नहीं पहुंचे जिससे पार्टी में अंदरूनी मतभेद की चर्चा अब शुरू होने लगी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, आंदोलन अब दिल्ली तक ले जाया जाएगा। कोलकाता में मेसी इवेंट मामले में पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को समन भेजा गया है। अनियमितताओं की जांच शुरू की गई। नैनीहाटी में पूर्व टीएमसी विधायक सनातन डे पर हमला हुआ। भीड़ ने विरोध में नारे लगाए, पत्थर फेंके। हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को संभाला, हालात नियंत्रण में। बीजेपी टीएमसी के बीच सियासी टकराव और गहरा चुका। आरोप प्रत्यारोप से बंगाल की राजनीति में अब गर्मी बढ़ने लगी है। कोलकाता से लेकर नॉर्थ 24 परगना तक घटनाओं से तनाव। सुरक्षा और राजनीतिक हालात तो प्रशासन की कड़ी नजर है। योगी आदित्यनाथ ने अपराध को लेकर के फिर अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, वो माफिया और मच्छर का सफाया किया।
1: इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: योगी सरकार ने फाजिल नगर का नाम बदला, पावागढ़ होगा अब इसका नया नाम। अखिलेश यादव ने अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों को देखकर अंडरग्राउंड हो गया गृह मंत्रालय। लखनऊ में आज शाम सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। तमिलनाडु में अन्नावलाई के बागावती संघ के दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। पंजाब के अमृतसर में स्कूल फीस के दबाव से परेशान 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या की, अस्पताल में दम तोड़ा। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल के खिलाफ जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में राबड़ी देवी को बंगले को लेकर के घमासान अभी भी जारी है। सम्राट चौधरी बोले, हर कीमत पर बंगला खाली करना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि कानून सबके लिए समान है, मैं भी सीएम से हटने के बाद झोला उठाकर चला जाऊंगा।
2: सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा।
0: नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। राजनीति में जेन जी की भूमिका और युवाओं की बदलती सोच पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी की युवा कनेक्ट की तारीफ की। विशाल मामले में पति और सास की सीबीआई कोर्ट में पेशी की गई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट में तुषा की सास ने अपना पक्ष खुद रखा। मीडिया ट्रायल को लेकर के आपत्ति भी जताई। भोपाल की सेंट्रल जेल में भेजे गए हैं पति और सास, अब उन्हें अलग जेल में रखा जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा में दूसरे दिन भी यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी रहा। संदिग्ध घरों में पहचान की गई, लोगों से पूछताछ की गई। गाजियाबाद में मदरसे को सील किया गया, अवैध तौर पर चलाने का आरोप है। कुछ और अवैध मदरसों को भी अब चिन्हित किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा, किश्तवाड़ डोडा हाईवे प्रभावित हुआ, कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए। बादल फटने के बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया, जानमाल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के भलेसा में मूसलाधार बारिश हुई, सड़कों पर फिसलन बढ़ी जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के बीच भारी बारिश से भूस्खलन बढ़ा, बिगड़े मौसम के कारण प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। बांदीपोरा गुरेज मार्ग पर स्थित राजदान दर्रे पर बर्फबारी हुई, पर्यटकों के चेहरे खिले, कैमरों में लोगों ने नजारे कैद किए। हिमाचल के चंबा में लगातार सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों के सुहाने मौसम का मजा उठाने आ रहे हैं लोग। पारंपरिक हिमाचली पोशाकों में टूरिस्ट तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं और उनके आने से स्थानीय कारोबारी भी बेहद खुश हैं। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में आंधी तूफानी के बीच बारिश ने लोगों को राहत की सांस दी है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। गुजरात के पाटन जिले में आंधी और तेज हवाओं के साथ मानसून की धमाकेदार एंट्री, राधनपुर में 1 इंच बारिश। बनासकांठा में मौसम बदल चुका है, तेज तूफान और बारिश ने हवा में कई कोल्ड स्टोरेज की टीमें जो है उड़ती नजर आई। दिल्ली में आज 37.7 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम दर्ज किया जा सकता है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम होने की संभावना है। देहरादून में भारी बारिश और आंधी के बाद तबाही देखने को मिली, कई जगहों पर पेड़ गिरे। महाराष्ट्र के बीड में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, जामुन और केले की फसलें बर्बाद हुई। मदुरई में मूसलाधार बारिश हुई, जनजीवन प्रभावित लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कोयम्बटूर में भी मूसलाधार बारिश हुई, इलाके में घना कोहरा देखने को मिला। क्लीन एंड ग्रीन पंचायत में देश भर में आदर्श बनी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की ग्राम पंचायत लोहारनी, देश भर में इसे 3रा स्थान मिला है। मुंबई में विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत पिंक ई रिक्शा सहायता पहल का शुभारंभ किया गया, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस इसमें शामिल हुई। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का अनोखा अंदाज भी दिखा, अमृता ने चलाया ऑटो रिक्शा। आईआरटीसी का एक शानदार तोहफा, 3 ज्योतिर्लिंगों के साथ शिरडी साई बाबा के दर्शन के लिए एक हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में फिटजी को बड़ी राहत मिली है, अदालत की टिप्पणी के बाद ईडी ने अपनी विवादित प्रेस रिलीज वेबसाइट से हटाई है, संस्थापक डीके गोयल ने फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में गोलीबारी में घायल 17 साल के साई की मौत, परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में बंगाली मुस्लिम महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बीफ को लेकर शुभेंदु अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी दर्ज की थी। उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल ट्रैक पर लापता युवती का 5वें दिन सुराग नहीं मिला, सेना आईटीबीपी के साथ 150 सदस्यीय टीम तलाश में जुटी। सूरत में मां ने अपने 4 महीने के बेटे को तेजाब पिलाया, फिर खुद भी पी लिया, दोनों की मौत हुई। सूरत के बारडोली में 2 सरकारी बसें आपस में टकरा गईं, 6 यात्रियों की हादसे में मौत हुई। भोपाल में खुले में रखी बर्फ पर कुत्तों के घूमने का वीडियो वायरल हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जालंधर में बैडमिंटन खेलते समय खिलाड़ी को हार्ट अटैक आया, डॉक्टरों ने CPR देकर समय रहते उसकी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में तेज रफ्तार JCB ने एक युवक को टक्कर मारी, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बिहार के आरा में घर के बाहर खड़ी महिला की गोली मारकर हत्या की गई, बच्चों के विवाद में पड़ोसी समेत 4 लोगों पर FIR। हापुड़ में विवाहिता ने पति और ससुराल पर मारपीट प्रताड़ना के आरोप लगाए, CCTV में कैद हुई घटना, पुलिस ने जांच शुरू की। कंगना रनौत की अगली फिल्म भारत भाग्य विधाता का दमदार ट्रेलर बाहर आ चुका है, 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। शाहिद, कृति और अश्मिता की मच वेटेड फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया, 14 साल बाद कॉकटेल का सीक्वल आ रहा है। रामचरण की आगामी फिल्म पेदी का नया गाना मासा मासा रिलीज हो चुका है, जिसमें उनके पहलवान अवतार की झलक दिख रही है। अजय देवगन की दृश्यम 3 की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी। 3 इडियट्स की कहानी से अब पर्दा उठ चुका है, सेकेंड पार्ट में 3 नहीं बल्कि 4 इडियट्स होने वाले हैं, राजकुमार हिरानी जल्द ही स्क्रिप्ट फाइनल करेंगे। अपने पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहे रणदीप हुड्डा बेटे को कहानी सुनाते नजर आए, शेयर की फैमिली फोटो सोशल मीडिया पर। सैयारा के बाद आहान पांडे और अनिल पद्दा की जोड़ी फिर पर्दे पर लौटेगी, मोहित सूरी के साथ नई लव स्टोरी पर काम करेंगे। हॉलीवुड की हॉरर ड्रामा फिल्म ऑब्सेशन का तहलका देखने को मिला, 4 दिन में 28.57% का प्रॉफिट हुआ, इंडिया नेट कलेक्शन 9 करोड़ के पार। सुपरस्टार यश का दिल छू लेने वाला एक अंदाज सामने देखने को मिला, यश ने कैंसर से जूझ रहे अपने एक फैन सुनील को वीडियो कॉल करके सरप्राइज किया। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सागो सील कर दिया गया, निर्माण के में नियम के तहत उल्लंघन के चलते कार्रवाई हुई। खबरें पश्चिम एशिया से, ईरान मीडिया का बड़ा दावा है कि यूएस फ्लीट मुख्यालय पर हमले किए गए हैं, क्षेत्र में अभी से तनाव बढ़ने लगा है। आईआरजीसी ने अमेरिका द्वारा केशन द्वीप हमले के बदला लेने का दावा किया, जबकि जवाबी कार्रवाई की बात सामने आई है। ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इससे हलचल तेज होने लगी है। अमेरिकी सेना ने ईरान के दावों को खारिज किया, कहा किसी बेस पर हमला नहीं हुआ, सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। ईरान और अमेरिका के दावों में बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है, लेकिन हालात अब पश्चिम एशिया में फिर से एक बार तनाव की ओर बढ़ने लगे हैं। लेबनन में इसराइल की सैन्य कार्रवाई से ईरान भड़का हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की फिर से धमकी दी। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच वाशिंगटन डीसी में इसराइल और लेबनन के राजदूतों ने मुलाकात की है। बैठक में सीमा क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरानी शासन की नींव कमजोर हो चुकी है, उनका पतन अब तय होने वाला है। कट्टर यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा में भर्ती को लेकर के यरूशलम में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूक्रेनी राजधानी कीव समेत डनिप्रो पर रूस का बड़ा हमला हुआ, मंगलवार को हुए हमलों में दो बच्चों समेत 18 लोगों की मौत। डेनमार्क की सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मेटे फ्रेडरिकसन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जनवरी 2024 के बाद अब यह सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। पोलैंड के स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है सरकार, ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने और अश्लील सामग्री को सीमित करने की पहल की जा रही है। लंदन में मेट्रो ट्रेन चालकों की हड़ताल से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, काम में घंटों के बदलाव में प्रस्ताव के विरोध में कर्मचारियों ने 24 घंटे की हड़ताल की। अब यूरोप में भयंकर गर्मी में संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने कहा कि आने वाले महीनों में एल नीनो के असर से दुनिया भर में होगी भीषण गर्मी।

0: मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरत में डालेगी। दरअसल वहां सड़क पर रखी खुली बर्फ पर कुत्तों के घूमने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के बाद हड़कंप मच गया। भोपाल का बैरसिया रोड इलाके में दरअसल एक शोरूम के पास ये मामला सामने आया, जहां खुली बर्फ रखी थी। ये वही बर्फ है जिसका आप गोला खाते हैं, जो आप घरों में ले जाते हैं, खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। अब उस पर आवारा कुत्ते और गंदगी करते नजर आए। सीधे लोगों के इस्तेमाल के लिए बर्फ बेची जा रही थी, जिसको कुत्ते गंदा कर रहे थे। शिकायत मिली तो नगर निगम की टीम पहुंची, 2000 का चालान किया और दूषित बर्फ को नष्ट करवाया गया। खबर पंजाब के जालंधर से, जहां हंसराज स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते समय खिलाड़ी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उसी समय वहां मौजूद दो डॉक्टरों ने तुरंत स्थिति संभाली। बिना देरी किए सीपीआर दिया, इलाज शुरू किया गया। मेडिकल टीम आने से पहले डॉक्टरों ने मौके पर प्राथमिक उपचार देकर खिलाड़ी की जान बचाने की कोशिश की। खबर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा इलाके से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार जेसीबी ने स्कूटी सवार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें जेसीबी की लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। उधर वडोदरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पैदल जा रहे बुजुर्ग महिला को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना भी सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें दिख रहा कि कार कुछ ही सेकंड में महिला को टक्कर मारकर उड़ा देती है। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर ली और पता चला कि गाड़ी में बैठे सारे लोग जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं और पास ही के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां हापुड़ में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि संतान न होने की वजह से उसके साथ लगातार मारपीट प्रताड़ना की जा रही थी। जब वीडियो सामने आया है तो अब शिकायत मिली और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें आज तक पर लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। इफ जैक सीज DIY बज कट्स एज अ सेविंग स्ट्रेटजी, वेल्स फार्गो इज राइट बिहाइंड हिम। एंड विद देयर मोबाइल ऐप, ट्रैकिंग हिज सेविंग्स इज इजी। आउच। हाउएवर यू मेक मनी वर्क, we can work with that.
4: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
5: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
7: You're listening to MSNBC.
5: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
2: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल
0: हिंड बड़े आराम से विमल बोलो जुबा केसरी
3: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या ट्विशा केस में सीबीआई के हाथ कोई अहम सुराग लगा है? क्या 5 दिनों की रिमांड में समर्थ और गिरिबाला ने ट्विशा केस को लेकर कोई बड़ा खुलासा किया है? क्या ट्विशा के परिवार वालों के आरोपों में वाकई सच्चाई है? क्या ट्विशा की मौत की असल वजह जल्द सामने आ सकती है? ये सवाल दोनों आरोपियों की 5 दिनों की सीबीआई रिमांड के बाद उठ रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक समर्थ सिंह और गिरिबाला ने ट्विशा से मारपीट के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ट्विशा शर्मा से उनके संबंध सामान्य थे। दोनों ने परिवार में किसी गंभीर तनाव या विवाद की बात से भी इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ससुराल में सब कुछ सामान्य था, रिश्तों में तनाव नहीं था, तो आखिर ट्विशा शर्मा ने खुदकुशी जैसे कदम क्यों उठाया? सीबीआई की पूछताछ में समर्थ ने ट्विशा के ड्रग एडिक्ट होने की बात कही है। दावा है कि इसी वजह से ट्विशा के व्यवहार में अचानक बदलाव होता था। समर्थ सिंह और गिरिबाला दोनों ने ही उन आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया है जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। तमाम सवालों पर पूछताछ के बाद आज सीबीआई ने ट्विशा केस के दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। ट्विशा मौत मामले की जांच के दौरान सामने आई एक गंभीर लापरवाही ने शुरुआती जांच की दिशा ही बदल दी थी। सीबीआई हर पहलू की पड़ताल कर रही है ताकि ट्विशा केस का सच सामने आ सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

महंगाई की मार से राहत मिलने का इंतजार कर रहे लोगों की नजर आरबीआई की पॉलिसी पर टिकी है। घर की ईएमआई से लेकर बिजनेस की उधारी तक हर जेब पर असर डालने वाला फैसला आने वाला है। लेकिन इस बार कहानी केवल ब्याज दरों की नहीं है, इस बार तस्वीर में कमजोर रुपया, महंगा होता क्रूड ऑयल और मानसून की चिंता भी शामिल हो चुकी है। ऐसे माहौल में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने जा रही है। बाजार और ज्यादातर एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन आने वाले संकेतों पर इस बार पैनी नजर रहेगी क्योंकि महंगाई और ग्रोथ के अनुमान में बदलाव की संभावना है। दरअसल पिछले करीब 100 दिनों से जारी पश्चिम एशिया संकट ने आर्थिक समीकरण बदल दिए हैं। क्रूड ऑयल की सप्लाई, शिपिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर तो दबाव बढ़ ही गया है, साथ ही कंपनियों की लागत और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी दबाव में इजाफा हुआ है। इसी बीच मौसम भी आरबीआई की चिंता बढ़ा रहा है और आईएमडी के मुताबिक 2026 में सामान्य से कमजोर मानसून की आशंका है। अल नीनो के असर से बारिश कम रहेगी जिससे खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा है। इन चुनौतियों के बीच कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई अपने महंगाई अनुमान को बढ़ा सकता है और ग्रोथ के अनुमान में कटौती कर सकता है। महंगाई के साथ रुपया भी आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस साल भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा कमजोर हुई है, जो एक दशक की सबसे खराब गिरावट मानी जा रही है। मई में रुपया एक वक्त तो 96.83 प्रति डॉलर तक पहुंच गया था। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से रुपए पर दबाव पड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई रुपए को संभालने के लिए दूसरे रास्ते अपनाएगा। इसमें फॉरेक्स मार्केट में दखल और लिक्विडिटी मैनेजमेंट जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। भारत के पास करीब 680 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद रिजर्व में करीब 47 अरब डॉलर की कमी आई है। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्तर पर बना हुआ है। बॉन्ड मार्केट भी आने वाले समय की चिंता दिखाने लगा है। सरकारी बॉन्ड यील्ड हाल के हफ्तों में ऊपर गई है, जिससे निवेशकों के बीच महंगाई को लेकर सतर्कता बढ़ी है। आरबीआई की पिछली रिपोर्ट में चालू कारोबारी साल के लिए 6.9% ग्रोथ और 4.6% महंगाई का अनुमान दिया गया था, लेकिन बदलते वैश्विक हालात के बीच इन आंकड़ों पर दोबारा नजर पड़ सकती है। लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि आरबीआई आने वाले महीनों में महंगाई, रुपया और आर्थिक रफ्तार को लेकर क्या संकेत देता है, क्योंकि वही तय करेगा कि ईएमआई का बोझ कितना रहेगा और जेब पर दबाव कितना बढ़ेगा। आदित्य के राणा आज तक।

0: शिव कुमार परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। ज्योतिषियों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। पार्टी में टूट की खबरों के बीच आंदोलन में अकेली पड़ी ममता बनर्जी। धरने में आए सिर्फ 8 एमएलए। बागियों ने कहा हमें असली टीएमसी, पार्टी सिंबल और नेता विपक्ष पद पर दावा। ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर आखिरकार हुई सीबीएसई चेयरमैन और सचिव की छुट्टी। पीएम की दखल के बाद एक्शन। लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी, आज तक की मुहिम का असर। सूरत में दो यात्री बसों में भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 40 यात्री घायल। टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर, सुबह के 8 बजे। और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। जी हां, इस बुलेटिन में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के नई सीरीज की खबर। कर्नाटक में होने वाले शपथ ग्रहण की भी दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे अलग थलग पड़ रही है ममता बनर्जी। बताएंगे बंगाल में सत्ता बदलते ही क्यों टीएमसी नेताओं में खलबली मची है। साथ ही सीबीएसई पर उठे सवाल और एक्शन की खबर पर भी अपडेट आपको देंगे। कुछ खबरें क्राइम की भी होंगी, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही पटना में खानसर के कोचिंग सेंटर में बवाल आखिर क्यों हुआ, इस खबर पर भी होगी बात। प्रयागराज में करोड़पति फैमिली की मर्डर मिस्ट्री की दिल दहला देने वाली खबर भी आपको बताएंगे। और मौसम का अपडेट आपको देंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर में आसमानी तबाही मची है। सबसे पहली खबर ईरान से जुड़ी। दरअसल ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका के बहरीन स्थित 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमले का दावा किया है। ईरानी मीडिया ने आईआरजीसी के हवाले से दावा किया है कि केशम द्वीप पर अमेरिका के हमले के जवाब में बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया। लेकिन अमेरिकी सेना ने ईरान के दावों का खंडन किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में ईरान के दावों को झूठा बताया है। मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, ऐसा ईरान दावा कर रहा है, जिसका खंडन अमेरिका लगातार कर रहा है। दरअसल ईरान के हमले के दावे को लेकर अमेरिका मना कर रहा है। अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया गया, ऐसा ईरान का कहना है। तो इसी खबर पर अब एक अपडेट आपको दे देते हैं। जो हमला किया गया है ईरान के द्वारा, उसको लेकर अमेरिका मना कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं, ईरान ने यूएस के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया, ईरान दावा कर रहा है। अमेरिका इसको खारिज करते हुए कह रहा है कि सभी ईरानी हमले नाकाम साबित हुए हैं। वहीं अमेरिका ने कहा है कि सेना अलर्ट पर है, जवाब देने को तैयार है। वहीं ईरान का कहना है कि मिसाइल ड्रोन से हमला किया गया है। मिडल ईस्ट में जंग को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बहरीन के साथ साथ ईरान ने कुवैत पर भी हमला किया है। कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। वहीं मिसाइल और ड्रोन से बेस पर हमला किया गया, जिससे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि कई ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। साथ ही कुवैत की सरकार ने लोगों से आसमान से गिरे किसी भी मलबे, छर्रे या फिर किसी अज्ञात चीज को बिल्कुल ना छूने उसकी सलाह दी है, और ना ही उसके पास जाने की अपील भी की है। कुवैत तो हमारे सहयोगी प्रणय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय बताइएगा, देखिए एक तरफ ईरान हमले का दावा कर रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका का जवाबी एक्शन का दावा, तो ऐसे में ताजा कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है प्रणय?
2: देखिए पूजा, बीते 48 घंटों के दौरान पश्चिम एशिया के आसमान में एक बार फिर इन चलती हुई मिसाइलों की तस्वीरें नजर आना शुरू हो गई हैं। ड्रोन चल रहे हैं और दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। जहां तक ईरान की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर अमेरिका के दावों का सवाल है, अमेरिका का कहना है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें चलाई जरूर गई कुवैत और बहरीन के खिलाफ, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया है. उन्हें बहरीन की डिफेंस फोर्सेस ने और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां लगा हुआ है उसने नाकाम कर दिया है. यानी कोई भी मिसाइल टारगेट पर नहीं गिर पाई. इसके अलावा कुवैत में भी बीते 48 घंटों के दौरान ये दूसरा मौका था जब कुवैत में जो अमेरिकन बेसिस हैं उनको टारगेट किया गया. और ईरान का कहना है कि उसने उन जगहों को टारगेट किया है जहां से उसके खिलाफ जो हमले हैं उनकी शुरुआत हुई थी. यानी कुवैत और बहरीन को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वहां से अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. कशम आइलैंड जो है वहां पर भी बीते 48 घंटों के दौरान दूसरी बार कार्रवाई की तस्वीर सामने आ रही है. रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका ने वहां टारगेट किया है. इसके अलावा जो बोत्सवाना फ्लैग्ड एक टैंकर था अलेक्सी उसको भी टारगेट किया गया है अमेरिका की तरफ से. और बताया जा रहा है कि हेलफायर मिसाइल दागी गई है. ये सारी स्थिति तब को रही है पूजा जब बीते 90 से ज्यादा दिनों के बाद किसी तरीके का न तो कोई कूटनीतिक समाधान निकल पाया है न जो बैक चैनल टॉक्स चल रही थी उसके अंदर किसी तरीके की कोई कामयाबी नजर आई है और अभी तक कोई भी समाधान का फॉर्मूला नहीं नजर आया है. और दुनिया जो है वो चिंता के साथ देख रही है क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अभी भी बाधित है. अभी भी जहाज वहां से जो है वो पूरी तरह से यानी उस सुगमता से नहीं निकल पा रहे हैं.
0: सबसे तो देखिए यही लग रहा है कि तनाव अभी भी बड़ा हुआ है. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए. उधर बढ़ते तनाव का असर एक बार फिर से दिखने लगा है. बहरीन कुवैत और यूएई में उड़ानें पूरी तरह से निलंबित कर दी गई है. ये जानकारी प्रेस टीवी के हवाले से आ रही है. मॉनिटरिंग सिस्टम की तस्वीरों से भी दिख रहा है कि उड़ानें बंद हो चुकी है. ये तस्वीरें आप देखिए बहरीन कुवैत यूएई में उड़ानें निलंबित है. प्रेस टीवी द्वारा ये जानकारी दी गई है और ये तस्वीरें मॉनिटरिंग सिस्टम की है जिससे ये साफ दिख रहा है कि उड़ानें बंद कर दी गई है. अमेरिका में तनाव का साफ तौर पर असर दिख रहा है. तो ईरान अमेरिका में बातचीत तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के सर्वोच्च नेता मूसवा खामेनेई को लेकर बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि खामेनेई किसी न किसी स्तर पर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. इसके संकेत मिल रहे हैं.
3: Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the supreme leader, and understand that at the end of the day, the supreme leader in their system is, there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is a theological office.
0: खबर सियासत की. कर्नाटक में आज डीके शिवकुमार सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है. ऐसे में बेंगलुरु में लोकभवन में शपथ ग्रहण होगा और इसकी तैयारी जारी है. खबरों के मुताबिक डीके शिवकुमार कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ साथ 13 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं. आज शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा. काफी माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं और इसमें कई अहम चेहरे हैं. शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और खड़गे भी मौजूद रहेंगे. सीएम पद की शपथ लेंगे आज डीके शिवकुमार, जिसके साथ 13 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं. शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह. तो संभावित मंत्री कौन है वो आपको समझाते थे. शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा. उनके साथ कई मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं. देखिए डीके शिवकुमार आज शपथ लेंगे. इनके साथ यतेंद्र परमेश्वर, माना जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, केजे जॉर्ज, कृष्णा बायरेगौड़ा और साथ ही एमबी पाटिल और प्रियांक खड़गे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. सतीश जारकीहोली और साथ ही रामलिंगा रेड्डी ये भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. संभावित मंत्री आपको बता रहे हैं जो आज डीके शिवकुमार के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे. तो केजे जॉर्ज इनका नाम भी आगे है और वहीं कृष्णा बायरे का नाम भी सामने आ रहा है. कल काफी माथापच्ची हुई है, कई बैठकें हुई कांग्रेस के साथ और ऐसे में कुछ ये नाम सामने आए हैं. अब खबर बंगाल की सियासत से जुड़ी, जहां पर टीएमसी टूट के कगार पर जा पहुंची है. कोलकाता में धरने के दौरान ज्यादातर टीएमसी विधायक नदारद रहे और अब टीएमसी से निष्कासित रिजु दत्ता ने दावा किया है कि 50 बागी विधायक ममता को दरकिनार कर टीएमसी पर ही कब्जे की तैयारी में है.
4: ये है बंगाल में चल रहे खेला 2.0 की तस्वीर. लेकिन इस बार मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी बनाम टीएमसी का है. पार्टी की अहम बैठक में विधायकों की अनुपस्थिति से शुरू हुआ विवाद अब संभावित बगावत तक पहुंचता नजर आ रहा है। निलंबित टीएमसी नेता रिजु दत्ता ने दावा किया है कि हाल ही में करीब 50 टीएमसी विधायकों ने एक गुप्त बैठक की है। बताया जा रहा है कि ये सभी पार्टी से निष्कासित विधायक रतोब्रता बनर्जी के समर्थन में है।
5: ऋतोब्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है।
4: कोलकाता में ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन में केवल 8 विधायकों और 6 सांसदों की मौजूदगी ने पार्टी के भीतर की दरार को और भी उजागर कर दिया है। पार्टी में चल रही टूट फूट और असंतोष के लिए टीएमसी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि बीजेपी फिलहाल तृणमूल के बागी नेताओं को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं दिख रही है।
6: हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था।
4: रिजु दत्ता का दावा है कि टीएमसी के 50 विधायक बागी हो चुके हैं और वे खुद को असली तृणमूल के रूप में पेश करने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 4 साल पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ और 3 साल पहले शरद पवार के साथ जो हुआ, क्या 2026 में बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी वैसा ही खेला होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो ममता सरकार से नाराजगी रखने वालों में खुद उनके भाई स्वपन बनर्जी भी शामिल हैं। आज तक से बातचीत में उनका दर्द खुलकर सामने आया। देखिए,
7: आप कह रहे थे कि 2013 से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तृणमूल के साथ।
8: ना, हम 1981 साल से पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं,
7: लेकिन 2013 से आपको काम नहीं करने दिया।
8: 2013 साल से मेरा को काम करने नहीं देता है।
7: क्यों
8: काम करने नहीं देता है? कोई काम में नहीं देता है। मैं बंगाल ओलंपिक का सेक्रेटरी था, चिट्ठी देता है, चिट्ठी फेंक देता है। मैं 2020 साल में चिट्ठी दिया, चिट्ठी छोड़ा दिया, 2022 में दिया, 23 में दिया, 24 में मेरा को बैठा के हटा दिया। ये ठीक नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत गलती हुआ। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं पार्टी पॉलिटिक्स का काउंसलर नहीं है, मैं एमएलए नहीं है, मैं एमपी नहीं है, मैं कोई कुछ नहीं है,
7: लेकिन आप
8: स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है। इसको लेके काम करना। मैं इंडियन ओलंपिक का मेंबर था, मैं बंगाल ओलंपिक का प्रेसिडेंट था, मैं बंगाल ओलंपिक का सेक्रेटरी था, मैं बंगाल ओलंपिक का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। तो हमारे लिए क्या किया ये लोग, हमारा बहुत खराब लगा है। उसलिए हम ये लोग के बारे में सोचेगा। हमको छोड़ा के अपना भाई सौरभ विश्वास को लेके चल रहा है बंगाल ओलंपिक में, काहे क्या हुआ? ये कोई दिन वो ही नहीं था, पोस्ट कोड मान के नहीं आया, वो आईएफए का वाइस प्रेसिडेंट था, यहाँ पे लेके सब कुछ काम करा है।
7: तो ये दीदी को पता नहीं था?
8: देखिए, दीदी के बारे में हम पोस्ट के बारे में क्रीड़ा मंत्री को बताएगा, हम दीदी को कैसे बताएं?
7: क्रीड़ा मंत्री तो ममता बनर्जी को ही रिपोर्ट करती थी।
8: बोलना जरूरी है, 100% सबको मालूम है इस बारे में,
7: कुछ नहीं।
0: तो बीजेपी में सत्ता में आते ही टीएमसी नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और एक तरफ जनता का गुस्सा फूट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार एक्शन में है। हालात ये है कि कटमनी लोगों को लौटाकर उनसे माफी मांगी जा रही है।
4: सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां टीएमसी के पूर्व विधायक सनत डे के दफ्तर पर जमकर पथराव किया गया और उन पर अंडे फेंके गए। सनत डे कुछ बैग लेकर वहां पहुंचे थे। खबर फैली कि वे कुछ दस्तावेज ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बस फिर क्या था, हंगामा मच गया और टीएमसी नेता को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। दूसरी तस्वीर टीएमसी नेता जावेद शेख के घर की है, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। जीवन तल्ला इलाके में यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। गोलियां तो बरामद हो गईं, लेकिन टीएमसी नेता अभी भी फरार बताया जा रहा है। तीसरी तस्वीर कोलकाता की है, यहाँ सुरेंद्रनाथ कॉलेज के कमरे से बड़ी मात्रा में दीमक लगे नोट मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह कमरा तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन से जुड़े यूनियन रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जन आक्रोश ने टीएमसी नेताओं को घुटनों पर ला दिया है। ये तस्वीर दक्षिण 24 परगना के शिवरामपुर ग्राम पंचायत की, जहां बांग्ला आवास योजना के लाभार्थियों से कथित तौर पर कटमनी वसूलने वाला टीएमसी नेता पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। दावा किया जा रहा है कि वसूली गई रकम लोगों को वापस लौटा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो बिहार पुलिस की बहाली में सबसे ज्यादा कोचिंग के छात्रों के चयनित होने का जश्न मना चुके खान सर एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल पटना में उनके कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ भी की गई है।
9: ये तस्वीरें खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर की है। देर शाम कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला कर दिया। हमले के वक्त खान सर कोचिंग सेंटर में मौजूद थे।
10: इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो गया।
11: कितना राउंड गोली चला है?
10: 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर
12: गोलीबारी भी हुई है।
10: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
9: हमले में कोचिंग सेंटर पर तैनात गार्ड घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खान सर का आरोप है कि उन पर ये हमला सस्ती फीस की वजह से हुआ है। कोचिंग संचालक खान सर और उनके पड़ोस में स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और इसी विवाद में ये हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब खबर प्रयागराज की, जहां पर एक करोड़पति परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। दरअसल मौके से पुलिस को सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन एक तख्ती पर लिखा था कि बंटी बबली और बहू ने मारा है।
9: प्रयागराज की यह वही इमारत है जिसकी पहली मंजिल से एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इस इमारत में नीचे दुकान है और ऊपर परिवार रह रहा था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो रविंद्र वैश, उनकी पत्नी और बेटी के शव बरामद हुए। बेटा अभिषेक लापता था, लेकिन छानबीन शुरू हुई तो ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकान से एक शव मिला। माना जा रहा है कि ये लाश रविंद्र वैश्य के बेटे की है। पुलिस के मुताबिक हत्या किसी भारी चीज से मार कर की गई है। घर से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन एक तख्ती मिली जिस पर लिखा था बंटी बबली और बहू ने मारा।
13: दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई, उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
9: पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बंटी बबली और बहू कौन है, उनका इस मामले से क्या संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो सीबीएसई सवालों के घेरे में है। 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन वाले सिस्टम ओएसएम को लेकर जब सवाल उठे तो एक्शन का दौर शुरू हुआ। सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया है और दोनों पदों के लिए नई नियुक्ति भी कर दी गई है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है।
4: ओएसएम प्रक्रिया जिसकी वजह से छात्रों के रिजल्ट खराब हुए, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई, छात्रों के सामने कई मुश्किलें आईं, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम के लिए जिम्मेदार कंपनी पर सवाल उठे। छात्रों की चिंता और सियासी शोर शराबे के बाद सरकार ने मामले में बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। नए चेयरमैन के रूप में लोखंडे प्रशांत सीताराम की नियुक्ति कर दी गई, तो वहीं वरुण भारद्वाज नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। खबर है कि पीएम मोदी की दखल के बाद ये एक्शन लिया गया। लगातार नाकामी को लेकर पीएम ने तुरंत अफसरों को हटाने के निर्देश दिए, साथ ही पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात भी कही है। सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी की प्रमुख एस राधा चौहान बनाई गई है। सरकार के एक्शन के बीच सीबीएसई ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के बाद से बीती रात 10 बजे तक 28,000 से ज्यादा छात्रों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
0: तो इस सब एक्शन के बाद राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। अब सीबीएसई को लेकर एक्शन मोड में सरकार है और तबादले भी किए गए। इसके बाद राहुल गांधी ने लिखा है कि अधिकारियों को हटा दिया गया, मंत्री को बचा लिया गया, ये जवाबदेही नहीं स्वीकार की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि लगातार राहुल गांधी इस चीज की मांग कर रहे हैं, बर्खास्त कर स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये राहुल गांधी का बयान इस तबादले के बाद सामने आया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया, वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का ट्रांसफर करके सरकार ने लाखों बच्चों और साथ ही अभिभावकों के घाव पर नमक छिड़का है। और ये केजरीवाल का बयान आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अभिभावकों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है सरकार ने तबादले करके। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मानसून की। मानसून से पहले ही मौसम के तेवर बिगड़ने लगे हैं। 48 डिग्री के टॉर्चर के बाद अब आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में आंधी तूफान और बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर मौसम बदल चुका है और कहर बनकर मौसम टूट रहा है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश के दौरान अचानक से बादल फट गए, वहीं पर पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं।
11: जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भारी बारिश के बाद बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। ये तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं, जहां बादल फटने के बाद पानी की बेकाबू रफ्तार ने कई आशियाने तबाह कर दिए। सबसे ज्यादा असर किश्तवाड़ डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर हुआ है, जो फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर बंद हो गया है। कई गाड़ियां भी फ्लैश फ्लड की चपेट में आई हैं। पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट ली है और कई शहरों में बादल मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। कुपवाड़ा में भी तेज आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरे। बारिश और आंधी तूफान इतना तेज था कि श्रीनगर में बड़े बड़े दरखत जमींदोज हो गए हैं, जिससे कई अहम रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां कैलाश मानसरोवर मोटर मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें दरक कर सड़क पर आने लगी। लोग अपनी जान बचाकर गाड़ियों से निकलकर भागते नजर आए। मौसम की मार और दहशत की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: अब खबर लखनऊ के केजीएमयू की, जहां पर करोड़ों के दवा घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल इस घोटाले को लेकर आज तक पर खबर दिखाए जाने का असर हुआ। केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में दवा घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। यूरोलॉजी के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अपुल गोयल को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। मामले की जांच के लिए कुलपति ने जांच समिति का गठन किया था, जिसमें यूरोलॉजी विभाग के भीतर सरकारी वित्त पोषित योजनाओं के संचालन और साथ ही दवाओं की खरीद आपूर्ति में गंभीर अनियमितताओं एवं कई खामियां देखने को मिली, जिसकी पुष्टि भी हुई है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर विभाग अध्यक्ष को हटा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है फटाफट का। पश्चिम वर्धमान में दरबांगा अजय नदी घाट पर बालू खनन के दौरान बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, कामकाज को रुकवाया, अवैध तरीके से खनन का आरोप। भोपाल में खुले में रखी बर्फ पर कुत्तों के घूमने का वीडियो हुआ वायरल, नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए का चालान किया। जालंधर में बैडमिंटन खेलते समय खिलाड़ी को अचानक से आया हार्ट अटैक, डॉक्टर्स ने मौके पर सीपीआर देकर बचाई जान। बेंड्रा में तेज रफ्तार जेसीबी ने स्कूटी सवार को सामने से जोरदार टक्कर मारी, सीसीटीवी में कैद हादसे में इलाज के दौरान हुई मौत। वडोदरा में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही बुजुर्ग महिला को पीछे से मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हादसे में मौके पर मौत, पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में विवाहिता ने पति और ससुराल पर लगाए मारपीट और प्रताड़ना के आरोप, संतान न होने पर उत्पीड़न का दावा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस जांच में जुटी। भोजपुर में सोन नदी में बड़ा हादसा, एक को बचाने में 6 बच्चे डूबे, 3 की मौत, गांव में पसरा मातम, चौरी थाना क्षेत्र के अंधारी गांव में हुआ हादसा। वहीं आगरा हाईवे पर चलती बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से 54 यात्रियों की जान बची, बस पूरी तरह से जलकर खाक। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसे।
14: इन एसोसिएशन विद भारत।
15: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
16: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
18: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
19: मैं करता हूँ ना,
20: मैं करूँगा।
21: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
19: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
21: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
19: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
21: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
7: Take a date, not bites.
8: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, not bites.
7: Lion date, not bites.
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहां खबर वहां खबरदार।
17: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: बाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: पर ईरान का ड्रोन हमला, बहरीन में गूंजे सायरन, अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों को बनाया निशान। कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिवकुमार, परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। पार्टी में टूट की खबरों के बीच आंदोलन में अकेली पड़ी ममता बनर्जी, धरने में आए सिर्फ 8 एमएलए, बागियों ने कहा हम हैं असली टीएमसी, पार्टी सिंबल और नेता विपक्ष पद पर दावा। ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर आखिरकार हुई सीबीएसई चेयरमैन और सचिव की छुट्टी, पीएम की दखल के बाद एक्शन, लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी, आज तक की मुहिम का असर। सूरत में 2 यात्री बसों में भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 40 यात्री घायल, टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: आज तक की मुहिम का बड़ा असर, पीएम मोदी की दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव, ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन, लोखंड प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। छात्रों की नाराजगी के बीच सीबीएसई पर बड़ा फैसला, सत्यापन और री इवेल्युएशन में देरी के आरोपों की होगी पड़ताल। ओएसएम सिस्टम विवाद में 1 सदस्य जांच समिति गठित, सुराधा चौहान 1 महीने में सौंपेंगी रिपोर्ट। सीबीएसई विवाद पर सियासी घमासान तेज, राहुल गांधी बोले जवाबदेही नहीं, मामले पर पर्दा डालने की कोशिश। सीबीएसई के शीर्ष अधिकारियों का तबादला, लेकिन विपक्ष का सवाल क्यों, इससे छात्रों को मिलेगा इंसाफ। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, डीके शिवकुमार के साथ 13 मंत्री भी लेंगे शपथ। जितेंद्र जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा से लेकर प्रियंक खड़गे तक कई बड़े चेहरे कल मंत्री पद की लेंगे शपथ। डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह में बदली परंपरा, शपथ मंच की बदली गई दिशा, पश्चिम की जगह पूर्व दिशा और होगा मंच। लोकभवन में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी हो चुकी है, हजारों समर्थकों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में होगा शक्ति प्रदर्शन। लोकभवन में शपथ समारोह की भव्य तैयारियां पूरी, वीवीआईपी एंट्री, अलग मंच, सख्त सुरक्षा और हाईटी कार्यक्रम के साथ शपथ के बाद ओपन जीप से मुख्यमंत्री जाएंगे विधानसभा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर हमला किया, कहा बीजेपी का ट्रिमुलाइजेशन नहीं होगा और बागी नेताओं को जगह नहीं मिलेगी। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं के पार्टी में आने की खबरों को गलत बताया, कहा पार्टी साफ सुथरी राजनीति पर चलेगी। कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना जारी, पोस्ट पोल हिंसा के आरोपों पर टीएमसी ने विरोध जताया। धरने में कई टीएमसी विधायक और सांसद नहीं पहुंचे, जिससे पार्टी में अंदरूनी मतभेद की चर्चा शुरू हुई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, कहा लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। कोलकाता में मेसी इवेंट मामले में पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास को समन भेजा गया, अनियमितताओं की जांच शुरू। नैनहाटी में पूर्व टीएमसी विधायक सनाथ डे पर हमला, भीड़ में विरोध में नारे लगाए गए और पत्थर भी फेंके गए। हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के ने इलाकों को संभाला और हालात नियंत्रण में लिए। बीजेपी टीएमसी के बीच सियासी टकराव और गहराया, आरोप प्रत्यारोप से बंगाल की राजनीति में गर्मी बढ़ी। कोलकाता से लेकर नॉर्थ 24 परगना तक घटनाओं से तनाव, सुरक्षा और राजनीतिक हालात पर प्रशासन की कड़ी नजर। योगी आदित्यनाथ ने अपराध को लेकर फिर से किया अखिलेश पर तंज, बोले माफिया और मच्छर का किया सफाया।
3: वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
0: योगी आदित्यनाथ ने बदला फाजिल नगर का नाम, पावागढ़ होगा नया नाम। अखिलेश यादव ने अपराध को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले अपराधियों को देखकर अंडरग्राउंड हुआ गृह मंत्रालय। लखनऊ में आज शाम सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। तमिलनाडु में अन्नामलाई के बगावती संकेत, दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। अमृतसर में स्कूल फीस के दबाव से परेशान 12वीं की छात्रा ने सुसाइड किया, अस्पताल में तोड़ा दम। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज, पंजाब शिक्षा मंत्री ने कहा स्कूल के खिलाफ जांच के बाद होगी कार्रवाई। बिहार में राबड़ी देवी को बंगले को लेकर घमासान जारी, सम्राट चौधरी बोले हर कीमत पर खाली करना होगा बंगला। सम्राट चौधरी ने कहा कानून सबके लिए समान, मैं भी सीएम से हटने के बाद झोला उठाकर चला जाऊंगा।
4: चाहते हैं।
5: सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा।
0: नेपाल के सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष रवि से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात। राजनीति में जेंजी की भूमिका और युवाओं की बदलती सोच पर हुई विस्तृत चर्चा। नितिन नवीन ने पीएम मोदी की युवा कनेक्ट की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जेंजी की आकांक्षाओं को समझते हैं और उनकी भाषा बोलते हैं और युवाओं के साथ युवाओं जैसे दिखते हैं। तुषा मामले में पति और सास की सीबीआई कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट में तुषा की सास ने रखा अपना पक्ष, मीडिया ट्रायल को लेकर जताई आपत्ति। भोपाल की सेंट्रल जेल में भेजे गए पति और सास, अलग जेल में रखा जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा में दूसरे दिन भी यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, संदिग्ध घरों की पहचान, लोगों से पूछताछ। गाजियाबाद में सील किया गया मदरसा, अवैध तौर पर चलाने का आरोप, कुछ और अवैध मदरसों को किया गया चिन्हित। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, किश्तवाड़ डोडा हाईवे हुआ प्रभावित, कई जगहों में रास्ता बंद। बादल फटने के कारण लोगों का रेस्क्यू किया गया, जानमाल का नहीं हुआ अभी तक नुकसान। जम्मू कश्मीर के भलेसा में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर बढ़ी फिसलन, जनजीवन प्रभावित। तेज हवाओं के बीच भारी बारिश से बढ़ा भूस्खलन का खतरा, बिगड़े मौसम के कारण प्रशासन ने सावधानी बरतने की दी सलाह। बांदीपोरा गुरेज मार्ग पर स्थित राजदान दर्रे पर हुई बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे, कैमरे में कैद हुआ नजारा। हिमाचल के चंबा में लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या, मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों के सुहाने मौसम का मजा उठाने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। पारंपरिक हिमाचली पोशाकों में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं सैलानी, टूरिस्ट के आने से स्थानीय कारोबारों में खुशी। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में आंधी तूफान के बीच भारी बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस, तापमान में गिरावट दर्ज। गुजरात के पाटन जिले में आंधी और तेज हवाओं के साथ मॉनसून की धमाकेदार एंट्री, राधनपुर में 1 इंच बारिश। बनासकांठा में अचानक से बदला मौसम, तेज तूफान और बारिश के बीच तेज हवा में उड़ी कई कोल्ड स्टोरेज की टीम की छतें। दिल्ली में आज 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान, जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री कम। देहरादून में भारी बारिश और आंधी के बाद तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़। महाराष्ट्र के बीड में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, जामुन और केले की फसलें बर्बाद। मदुरई में मूसलाधार बारिश, जनजीवन प्रभावित, लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज। कोयम्बटूर में भी मूसलाधार बारिश हुई, इलाके में दर्ज किया गया घना कोहरा। क्लीन एंड ग्रीन पंचायत में देशभर में आदर्श बनी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की ग्राम पंचायत लोहाड़ी, देशभर में मिला है तीसरा स्थान। मुंबई में विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत पिंक ई रिक्शा सहायता पहल का शुभारंभ, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस हुई शामिल। सीएम फडणवीस की पत्नी का दिखा अनोखा अंदाज, अमृता ने चलाया ऑटो रिक्शा। भक्तों को आईआरसीटीसी की तरफ से शानदार तोहफा, 3 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए लॉन्च कर रहा हवाई टूर पैकेज। दिल्ली हाईकोर्ट में एफआईआईटी जेईई को बड़ी राहत, अदालत की टिप्पणी के बाद ईडी ने अपनी विवादित प्रेस रिलीज वेबसाइट से हटाई, संस्थापक डीके गोयल ने फैसले का स्वागत किया। दिल्ली के अमर कॉलोनी गोलीबारी में घायल 17 साल के साई की मौत हुई, परिवार वालों का प्रदर्शन। गुरुग्राम में बंगाली मुस्लिम महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बीफ को लेकर शुभेंदु अधिकारी पर की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पर लापता युवती का 5वें दिन भी सुराग नहीं मिला, सेना और आईटीबीपी के साथ 150 सदस्य टीम तलाश में जुटी। सूरत में मां ने अपने 4 महीने के बेटे को तेजाब पिलाया और फिर खुद भी पी लिया, दोनों की मौत। सूरत के बारडोली 2 सरकारी बसें आपस में जाकर टकराई, 7 यात्रियों की मौत। भोपाल में खुले में रखी बर्फ पर कुत्तों के घूमने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, इलाके में मचा हड़कंप। जालंधर में बैडमिंटन खेलते समय खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक, डॉक्टर्स ने सीपीआर देकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में तेज रफ्तार जेसीबी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। आरा में घर के बाहर खड़ी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बच्चों के विवाद में पड़ोसी समेत 4 पर आरोप। वहीं हापुड़ में विवाहिता ने पति और ससुराल पर लगाए मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कंगना की फिल्म भारत भाग्य विधाता का दमदार ट्रेलर आउट, 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। शाहिद, कृति और रश्मिका की मच अवेटेड फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर जारी, करीब 14 साल बाद आ रहा है कॉकटेल का सीक्वल। रामचरण की आगामी फिल्म पेडी का नया गाना मसा मसा रिलीज हुआ, जिसमें उनके पहलवान अवतार की दिख रही है झलक। अजय देवगन की दृश्यम 3 की शूटिंग पूरी हुई, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। 3 इडियट्स की कहानी से उठ गया है पर्दा, सेकंड पार्ट में 3 नहीं बल्कि होने वाले हैं 4 इडियट्स। राजकुमार हिरानी जल्द ही फाइनल कर लेंगे स्क्रिप्ट। पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहे रणदीप हुड्डा बेटी को कहानी सुनाते आए नजर, शेयर की क्यूट सी फैमिली फोटो। सैयारा के बाद फिर से लौटेगी आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी, मोहित सूरी संग शुरू करेंगे नई लव स्टोरी। हॉलीवुड की हॉरर ड्रामा फिल्म ऑब्सेशन का तहलका, 4 दिन में कमाया 28.57% प्रॉफिट, इंडिया नेट कलेक्शन 9.75 करोड़ पहुंचा। सुपरस्टार यश का दिल छू लेने वाला अंदाज आया सामने, यश ने कैंसर से जूझ रहे अपने एक फैन सुनील को किया वीडियो कॉल। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सागो सील हुआ, निर्माण में नियम उल्लंघन के तहत हुई कार्रवाई। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, यूएस 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमले की बात कही गई, क्षेत्र में तनाव बढ़ा। आईआरजीसी ने केशम द्वीप पर हमले का बदला लेने का दावा किया, जवाबी कार्रवाई की बात आई सामने। ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज। अमेरिकी सेना ने ईरान के सभी दावों को खारिज किया, कहा किसी भी बेस पर हमला नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका के दावों में बड़ा विरोधाभास, हालात को लेकर तनाव और बढ़ा। लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई से भड़का ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की दी धमकी। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच वॉशिंगटन डीसी में इजराइल और लेबनान के राजदूतों ने की मुलाकात, बैठक में सीमा क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा मुद्दों पर हुई चर्चा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, ईरानी शासन की नींव हो चुकी है कमजोर, उनका पतन तय। कट्टर यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा में भर्ती को लेकर यरूशलम में हुआ हिंसक विरोध प्रदर्शन। यूक्रेनी राजधानी कीव समेत डनिप्रो में रूस का बड़ा हमला, मंगलवार को हुए हमलों में 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत। डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मेटे लगातार तीसरी बार बनी देश के प्रधानमंत्री। अमेरिका के राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार में दर्ज की गई भारी गिरावट, जनवरी 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार। पोलैंड के स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार, ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने और अश्लील सामग्री को सीमित करने की पहल। लंदन में मेट्रो ट्रेन चालकों की हड़ताल से बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें, काम के घंटों में बदलाव के प्रस्ताव के विरोध में कर्मचारियों ने किया 24 घंटे की हड़ताल। यूरोप में भयंकर गर्मी, संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने कहा कि आने वाले महीनों में एल नीनो के असर से दुनिया भर में होगी और भीषण गर्मी।

का आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। राशि

बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी।

सुंदर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान दें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

शक्ति होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, करियर में लापरवाही ना करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: सीबीएसई 12वीं परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल और सियासत का सामना कर रहा है।
1: सरकार को ये बता रहे हैं सीबीएसई के दफ्तर के बाहर बैठ के आंखों को बंद करके जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
0: एक तरफ छात्रों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का हवाला देता विपक्ष लगातार हमलावर है। सीबीएसई के बहाने उनके निशाने पर सरकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं।
2: And how many questions normally will someone apply for?
3: I guess अभी जो problem आ रही है, they can apply for all the questions.
2: So how many total questions?
3: 30-35 around questions होते हैं.
2: So huge amount of money.
3: Huge amount of money is involved. If evaluation is not happening properly, why I have to give money for re-evaluation?
0: CBSE 12वीं के जिन छात्रों के result इस बार आए हैं, उनकी कई शिकायतें रही हैं। दरअसल मूल्यांकन के लिए कॉपी की स्कैनिंग सही से नहीं की गई। कई मामलों में कॉपी अदला बदली की भी शिकायत है। कुछ छात्रों का आरोप है कि उनके उत्तर सही थे फिर भी नंबर कम आए। और बड़ी शिकायत डिजिटल मार्किंग के लिए जिस कंपनी COEMPT को टेंडर दिया गया उस पर है। तमाम सवालों के बीच आज CBSE ने अपना पोर्टल शुरू कर दिया। दो बार तारीख टाले जाने के बाद आखिरकार पोर्टल की शुरुआत हो गई। छात्र 6 जून तक शिकायत या आवेदन कर सकते हैं। CBSE ने बताया कि गायब पेज, गायब सप्लीमेंट्री शीट या मैप ग्राफिक्स, ब्लर पेज या गलत उत्तर पुस्तिका को लेकर शिकायत की जा सकती है। मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने संसद भवन एनेक्सी में मीटिंग की। इसमें 12वीं की परीक्षा में OSM तकनीक का इस्तेमाल और उससे बड़ी मुश्किलों को लेकर समीक्षा की गई। पैनल की मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सचिव और CBSE के चेयरमैन भी जवाब देने पहुंचे। छात्रों के कुछ प्रतिनिधि भी बैठक में बुलाए गए थे। खबर तो ये भी है कि ऑनलाइन मार्किंग प्रक्रिया पर उठे सवालों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने COEMPT कंपनी को दिए ठेके पर रिपोर्ट तलब की। साथ ही कंपनी की तकनीकी पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। छात्रों की नाराजगी, सियासत और सुधार की पहल के बीच ये मामला अदालत में पहुंच गया। गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में NSUI ने जनहित याचिका दाखिल की है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: बम बारूद मिसाइलों से फिर थर्राया मिडल ईस्ट। कुवैत के यूएस बेस पर ईरान का ड्रोन हमला। बहरीन में गूंजे सायरन। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हार के बाद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होंगी ममता बनर्जी। पार्टी में टूट की खबरों के बीच अकेली पड़ी। धरने में आए सिर्फ 8 एमएलए। बागियों ने कहा हमें असली टीएमसी। कर्नाटक में आज से नई सरकार। 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। ज्योतिषों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर आखिरकार हुई सीबीएसई चेयरमैन और सचिव की छुट्टी। पीएम की दखल के बाद एक्शन। लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। आज तक की मुहिम का असर। सूरत में दो यात्री बसों में भीषण टक्कर। हादसे में 7 की मौत। 40 यात्री घायल। टक्कर के बाद बस में लगी आग।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with Bharat.
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। वाराणसी में मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान पर आधी रात को बुलडोजर एक्शन। पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। टीएमसी के एक और नेता पर उतरा भीड़ का गुस्सा। क्यों लोगों का दबा हुआ गुस्सा निकल रहा है या इसके पीछे है कोई और वजह। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर। डोडा और किश्तवाड़ से आई बादल फटने की तस्वीर। पूरी खबर इसी बुलेटिन में दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें पश्चिम बंगाल के साथ, जहां पर सत्ता से बेदखल होने के बाद टीएमसी नेताओं पर हमले का सिलसिला जारी है। उत्तर 24 परगना में कल टीएमसी के पूर्व विधायक सनत डे पर भीड़ ने अंडे फेंक कर अपना गुस्सा जताया। सनत डे कुछ बैग लेकर वहां पहुंचे थे। खबर फैली कि वो कुछ दस्तावेज ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या था, हंगामा मच गया तो टीएमसी नेता को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी समेत टीएमसी कई नेताओं पर हमला हो चुका है।
2: पश्चिम बंगाल में बवाल की ये नई तस्वीर है। टीएमसी नेताओं पर हमले की कड़ी में अब उत्तरी 24 परगना से विधायक रहे सनक डे भी शामिल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक बैग के साथ सनत डे पार्टी दफ्तर आने की खबर जैसे ही लगी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को लगा कि सनत डे कोई महत्वपूर्ण चीज हटाने आए हैं। टीएमसी के पूर्व विधायक जैसे ही दफ्तर से बाहर निकले लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। चोर चोर के नारे लगाते हुए लोगों ने उन पर अंडे फेंके। सनत डे गए तो भीड़ का गुस्सा टीएमसी के झंडे बैनर और वहां खड़ी बाइक पर उतरा। भीड़ एक शख्स को पीटती हुई भी नजर आई। लोग पुलिस पर भी गुस्सा दिखाते नजर आए कि उन्होंने टीएमसी के पूर्व विधायक को क्यों सुरक्षित जाने दिया। बंगाल में चुनाव से पहले जितना बवाल था चुनाव के बाद वो जारी है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। हैरान करने वाली ये तस्वीर कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज से आई है। दीमक लगे इन नोटों को कॉलेज स्थित टीएमसी छात्र यूनियन के कमरे से बरामद करने का दावा किया गया है। अब ये तस्वीरें देखिए। दीमक ने नोट को इस कदर बर्बाद कर दिया है कि वो इस्तेमाल करने लायक ही नहीं रह गए। नोट करीब 1 करोड़ के बताए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज में इसे किसने और किस मकसद से रखा था। तहकीकात जारी है। कॉलेज के दूसरे लॉकरों को भी खोलकर तलाशी का काम शुरू हो गया है। इस बीच उत्तरी 24 परगना से कमरहाटी से ये तस्वीर आई है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टीएमसी के दफ्तर और क्लब पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आसनसोल के बर्नपुर में टीएमसी के पूर्व पार्षद विनोद कुमार यादव के कार्यालय पर भी बुलडोजर चला। कोलकाता के कॉलेज से दीमक लगे नोट मिले तो दक्षिण 24 परगना के कालिकताला इलाके में टीएमसी नेता के घर से बड़ी तादाद में कारतूस और बम बनाने के सामान बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये बरामदगी टीएमसी नेता जावेद शेख के घर से हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: तो अभी आपने रिपोर्ट में देखा और फिर से वो आपको खबर बता दें कि कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज के टीएमसी छात्र यूनियन के कमरे से बड़ी मात्रा दीमक लगे नोट को बरामद किया गया है। दीमक ने नोट को इस कदर बर्बाद कर दिया था कि वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहे। नोट करीब 1 करोड़ के करीब बताए जा रहे हैं। ये पता नहीं लग पाया कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज में इसे किसने और किस मकसद से रखा था। टीएमसी यूनियन की कमरे से ये नोटों का जखीरा मिला है। नोटों की हालत देखिए, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, इस्तेमाल के लायक नहीं है। तकरीबन 1 करोड़ इनकी कीमत बताई जा रही है। तापस मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, इन नोटों के बारे में जानकारी कैसे हासिल हुई है?
3: जी देखिए, काफी दिनों से जो यूनियन रूम है सुरेंद्रनाथ कॉलेज का, वो बंद पड़ा था। तकरीबन कह सकते हैं कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तब से यूनियन रूम, और उससे भी पहले से ये बताया जा रहा है कि ये यूनियन रूम बंद था। और कल जब कॉलेज के अधिकारी यूनियन रूम को खोलने की कोशिश कर रहे थे, फिर ताला तोड़कर उस यूनियन रूम के अंदर जाया गया, तब ये देखा गया कि दो सूटकेसेस में काफी ज्यादा तादाद में कैश, जो नगद पैसा है, तकरीबन माना जा रहा है 1 करोड़ से ऊपर, जो दीमक लगा हुआ था, जो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, उन्हें बरामद किया गया। उसके बाद जब और भी कुछ सर्चिंग किया गया, एक वन शॉटर गन उसे भी बरामद किया गया है। तो इस बारे में अभी तहकीकात शुरू की है पुलिस ने, फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जो इशारा है, कहीं ना कहीं कॉलेज अथॉरिटीज भी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट लीडर्स जो रहे हैं वो इसके पीछे थे। तो अभी उन लोगों से पूछताछ करने का सिलसिला होगा। लेकिन उत्तर कोलकाता के एक प्रभावशाली एक नेता और उनके बेटे का ये नेक्सस बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है, किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया नहीं है, बयान को रिकॉर्ड किया गया है। आज भी पुलिस की एक टीम कॉलेज पहुंचेगी और अलग अलग जगहों पर तलाशी करने का।
0: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो एक तरफ टीएमसी नेताओं पर मुसीबत है, कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं छापेमारी हो रही है, और इन खबरों के बीच बड़ी खबर टीएमसी के अंदरूनी खींचतान को लेकर है। कल ममता बनर्जी के धरने में सिर्फ 9 विधायक और 6 सांसद पहुंचे, तो अटकलें ये तेज हो गई कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है।
2: ममता का धरना, अपनी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ कल ममता बनर्जी धरने पर तो बैठी, लेकिन इस धरने में टीएमसी में जारी खींचतान बुरी तरह सामने आ गई। ममता का साथ देने के लिए टीएमसी के सिर्फ 9 विधायक और 6 सांसद सामने आए, जबकि लोकसभा के 28 और राज्यसभा के 13 सांसदों को मिलाकर टीएमसी के कुल 41 सांसद हैं। विधायकों की बात करें तो ये संख्या 80 है। कल धरने में जो विधायक पहुंचे उसमें शामिल हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय, मदन मित्रा, अशोक देव, आसिमा पात्रा, विमान बनर्जी, फिरहाद हकीम और कुणाल घोष, जबकि सांसदों में डोला सेन, कल्याण बनर्जी, डेरिक ओब्रायन, समीरुल इस्लाम, मेनका गुरुस्वामी और नदीमुल हक मौजूद रहे। लेकिन पार्टी के भीतर मचे घमासान के बीच ममता अलग जगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ममता ऐसा कर पाएंगी? पार्टी में उनके भतीजे और नंबर 2 कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी को लेकर भयंकर असंतोष है। टीएमसी से निकाले गए ऋतुव्रत बनर्जी ने तो मानो मोर्चा ही खोल दिया है।
4: पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरे तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
2: सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि टीएमसी में जारी खींचतान से पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के मुताबिक कल पार्टी से निष्कासित किए गए 2 टीएमसी विधायकों ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया। भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। ममता को भी शायद इसका एहसास हो गया है। ताजा घटनाक्रमों में साफ है कि ममता अपने सियासी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही हैं। तो क्या वो संकट से पार पा सकेंगी? कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक की।
0: निलंबित टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि हाल ही में लगभग 50 टीएमसी विधायकों ने एक गुप्त बैठक की। ये सभी पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के समर्थन में।
5: बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है।
0: तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, ये जो अलग गुट हो गया है टीएमसी से, अब इनकी नाराजगी है हर तरीके से, और ये भी कहा जा रहा है कि ये अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, कब तक इस बारे में फैसला हो जाएगा कि ये अब ममता बनर्जी से पूरी तरीके से अलग थलग हो गए हैं और जो गुप्त मीटिंग है उसमें क्या कुछ हुआ था?
3: जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन फिलहाल संदीपन साहा और ऋतुब्रत तो इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने आकर सामने कई बार बोला है और ये भी बताया जा रहा है कि कई सारे नेता और विधायक जो है चुने हुए विधायक वो सारे उनके संपर्क में है। लेकिन फिलहाल कल ऋतुब्रत तो गए थे विधानसभा, लेकिन स्पीकर नहीं होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हुई। ये बताया जा रहा है कि शायद इसी हफ्ते इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या बाकी जो विधायक तृणमूल कांग्रेस के जीते हुए विधायक है वो तृणमूल के साथ रहेंगे या पार्टी छोड़ेंगे। अगर पार्टी छोड़ते हैं तो क्या उसके बाद एक और विकल्प होगा नया पार्टी बनाना, इस बारे में अभी भी असमंजस बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई, इससे बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को आगे जाकर काफी ज्यादा राजनीतिक परेशानी होगा, क्योंकि एक के बाद एक विधायक उनका साथ छोड़ रहे। कल हमने देखा था कि जब लगातार इस तरीके से कल धरने पर बैठी ममता बनर्जी, तब चुनिंदे कुछ पुराने जो नेता रहे हैं, एक समय पे ऐसा हो गया था कि मदन मित्रा जैसे नेताओं को दरकिनार कर दिया गया था पार्टी से, वही पुराने नेता ममता के साथ खड़े हुए थे कल। लेकिन बाकी जो नए नेताओं को ममता बनर्जी ने मौका दिया था वो कहीं ना कहीं नहीं दिखे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज बुरे दौर से जब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस समय गुजर रही है, तब कहीं ना कहीं जो बड़े नेता और जो विधायक है वो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आए। लेकिन ये देखना होगा कि आगे जाकर क्या नई पार्टी बनती है या रणनीति कुछ और होती है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ममता के खेमे में फूट और बगावत की खबरों के बीच बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि टीएमसी के किसी बागी नेता को बीजेपी नहीं लेगी। हमारी सहयोगी मारिया शकील से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए।
6: क्या टीएमसी के बागियों को बीजेपी में जगह मिलेगी, ये सवाल आपसे, क्योंकि आप अध्यक्ष।
7: भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है, बिना तृणमूल कांग्रेस से उधार लिए तृणमूल कांग्रेस को अपने पार्टी में शामिल नहीं करके भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल किया है। और ये जनता का जो फैसला है, जनता का जो वर्डिक्ट है, वो तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ है। इट्स अ क्लियर मैंडेट अगेंस्ट तृणमूल मिसडीड एंड मिसरूल। तृणमूल कांग्रेस और करप्शन, ये सिनोनिमस था।
0: खबर है वाराणसी से, जहां पर आधी रात को बुलडोजर एक्शन हुआ। न केवल मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर बल्कि नजदीकी एक मंदिर पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। देर रात की कार्रवाई वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल टर्मिनल स्टेशन की परियोजना के तहत किया गया। आदमपुर क्षेत्र के राजघाट पुलिस चौकी के नजदीक सबसे पहले रेलवे की जमीन पर बने हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चला, जिसके बाद अजगैब शहीद मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। लगभग एक घंटे से भी कम वक्त में रेलवे की भूमि पर बने सभी निर्माण को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया।
8: वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार और विस्तार की परियोजना के तहत आज देर रात आदमपुर क्षेत्र के इस भदौं चुंगी इलाके में हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं यहां पर लगभग 300 वर्षों पुराना एक अजगैब शहीद मस्जिद जमींदोज किया गया है, साथ ही साथ कब्रिस्तान भी बताया जा रहा है। तो वहीं सैकड़ों साल पुराना एक हनुमान मंदिर भी बताया जा रहा है और ये पूरी कवायद हो रही है लगभग 37.75 एकड़ के विस्तार में, क्योंकि यहाँ लगभग 4 से 6 लेन रेलवे ट्रैक की बनाई जाएगी। तो उसके अलावा तमाम रेलवे की बड़ी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी और हमारे ठीक सामने देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है, जेसीबी मशीन है, लगातार मस्जिद के मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। चूंकि देर रात ये कार्रवाई हो रही है और इस पूरे क्षेत्र में विस्तार और विकास जीर्णोद्धार को लेके ये परियोजना प्रस्तावित थी, विरोध ना हो सके, विरोध ना आगे बढ़ सके, जिसको लेकर इस तरह की कवायद न केवल रेलवे पुलिस, स्थानीय प्रशासन सहित तमाम जो वाराणसी में सुरक्षा बल है उनके अगुवाई में की जा रही है और अजगैब शहीद मस्जिद ये बताई जा रही है जो अब जमींदोज हो गई है। तमाम देख सकते हैं कि देर रात का वक्त है, तमाम पुलिस कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है मीडिया कर्मियों को सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि तमाम मशीनें यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं।
0: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, देर रात यानी लगभग 12 बजे के आसपास ये कार्रवाई की गई, मंदिर मस्जिद क्योंकि इसमें शामिल है जिन्हें जमींदोज किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है ताकि वहां पर कोई भी गड़बड़ी की आशंका, कोई हिंसा, ये सब कुछ ना हो?
9: देखिए न्याय, सबसे बड़ी बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट का मतलब कोर्ट में भी ऑर्डर था उसको भी इम्प्लीमेंट कराया है, क्योंकि ये माना गया है कि यहाँ पर इलीगल लैंड पर ये मॉस्क यानी मस्जिद बनाई गई थी, जिसके बाद इसको डिमोलिश किया गया है। सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि इस मस्जिद को बताया गया कि 200 वर्ष पुरानी है, लेकिन जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है बनारस में उसको लेकर भी ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर रेलवे का एक्सपेंडेशन होना है, साथ ही साथ एक ओवरब्रिज भी बनना है जिस पर रेल और कह सकते हैं कि ट्रैफिक बराबर चलेगा, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी की थी। पैरामिलिट्री फोर्स, उसके साथ पुलिस फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के वो सभी लोग शामिल थे जब इसको गिराया गया, क्योंकि देर रात इसलिए भी गिराया गया क्योंकि किसी भी प्रकार का क्योस ना हो और वहां पर कोई भीड़ ना इकट्ठा हो पाए। इस वजह से ही मान के चलिए तकरीबन जो मस्जिद गिराई गई वो 30 मिनट ही लगा उसको पूरा जमींदोज करने में, और इसी वजह से जब बुलडोजर चलाया गया तो वहां पर सारे जो अधिकारी थे वो मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेशन था वो मौजूद था, किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति ना खड़ी हो पाई। हालांकि इससे पहले मस्जिद कमेटी कोर्ट भी गई थी लेकिन वहां से रेमेडी नहीं मिली और उसके बाद इस तरीके का एक्शन भी लिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरा एक्शन एक डेवलपमेंट वर्क जो नमो घाट के पास स्थित है वहां पर लिया गया, जो काफी महत्वपूर्ण है, और वहां पर जो डेवलपमेंट वर्क्स है वो कंटिन्यूअस।
0: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात कर्नाटक की करेंगे जहां पर आज डीके शिवकुमार सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बेंगलुरु के लोक भवन में यह आयोजन किया जा रहा है, इसकी तैयारी जारी है। खबरों के मुताबिक डीके शिवकुमार कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उनके साथ साथ 13 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। आज शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। काफी माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं और इनमें कई अहम चेहरे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और खड़गे भी मौजूद रहेंगे। तो 24वें सीएम के रूप में डीके शिवकुमार शपथ ग्रहण करेंगे। शाम लगभग 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। संभावित मंत्रियों के नाम आपको दिखा रहे हैं, यतीन परमेश्वर, इसके अलावा केजे जॉर्ज, कृष्ण गौड़ा, एमबी पाटिल और प्रियांक खड़गे, सतीश जारकीहोली, रामलिंगा रेड्डी, दिनेश गुंडूराव। अपूर्वा मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। अपूर्वा, किस तरह की तैयारियां हैं शाम के शपथ ग्रहण की?
10: जैसे आप देख सकते हैं हम अभी डीके शिवकुमार के घर के बाहर है और सारे के सारे जो डीके के सपोर्टर्स है यहाँ पे आ चुके हैं और ये लोग भी अभी वेट कर रहे हैं कि कुछ ही समय में अभी डीके शिवकुमार बाहर आ जाएंगे और लोगों से मिलने के लिए भी जो तैयारियां हो रही है। आज शाम को लगभग 4 बजे से लेके लोक भवन में ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा उसके लिए सारी की सारी तैयारियां हो चुके हैं। कल रात देर रात तक जो डिस्कशंस हुए थे दिल्ली में डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया दोनों में इस डिस्कशंस में हाईकमान के साथ दिल्ली में थे और उसमें से अभी हाईकमान ने 11 नाम को फाइनलाइज किया है। जो इन 11 नामों में से सारे के सारे लोग जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी डीके शिवकुमार के साथ आज ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसी में शामिल होंगे और स्वेरिंग भी हो जाएंगे मिनिस्टर्स की तरह। इसके बाद ये जो 11 नाम फिलहाल के लिए चुना गया है, इन 11 नामों भी सीनियर वेटरन लीडर्स भी है जो पिछले सिद्धरामैया के कैबिनेट में भी थे और इनके जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा उसके बाद भी आगे जाके भी कुछ ही दिनों के बाद डीके शिवकुमार फिर से दिल्ली जाएंगे और बाकी का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी का के बाद जो कार्यक्रम होगा उसके लिए भी भी सारी की सारी तैयारियां रेडी है। फिलहाल के लिए आज शाम जो शुभ टाइम माना जाएगा, शुभ मुहूर्त होगा, वो है लगभग 4 to 5 के बीच में। और
0: शुभ मुहूर्त में डीके शिव कुमार आज सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, उनके साथ अन्य मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। अब बात सीबीएसई के ओएसएम विवाद की, जिसे लेकर सरकार एक्शन में है। सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया है, दोनों पदों के लिए नई नियुक्ति भी हो गई है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है।
11: ओएसएम प्रक्रिया जिसकी वजह से छात्रों के रिजल्ट खराब हुए, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई, छात्रों के सामने कई मुश्किलें आईं, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम के लिए जिम्मेदार कंपनी पर सवाल उठे, छात्रों की चिंता और सियासी शोर शराबे के बाद सरकार ने मामले में बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। नए चेयरमैन के रूप में लोखंडे प्रशांत सीताराम की नियुक्ति कर दी गई, तो वहीं वरुण भारद्वाज नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। खबर है कि पीएम मोदी की दखल के बाद ये एक्शन लिया गया। लगातार नाकामी को लेकर पीएम ने तुरंत अफसरों को हटाने के निर्देश दिए, साथ ही पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात भी कही है। सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी की प्रमुख एस राधा चौहान बनाई गई है। सरकार के एक्शन के बीच सीबीएसई ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के बाद से बीती रात 10 बजे तक 28,000 से ज्यादा छात्रों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात बिहार की, जहां की पुलिस की बहाली में सबसे ज्यादा कोचिंग के छात्रों को चयनित होने का जश्न मना चुके खान सर एक बार फिर चर्चा में। पटना में उनके कोचिंग सेंटर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की है।
12: ये तस्वीरें खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर की हैं। देर शाम कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला कर दिया। हमले के वक्त खान सर कोचिंग सेंटर में मौजूद थे।
13: इन लोगों का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो
14: गया। राउंड गोली चला है
13: 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर
15: गोलीबारी भी हुई है।
13: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है, जो हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
12: हमले में कोचिंग सेंटर पर तैनात गार्ड घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खान सर का आरोप है कि उन पर यह हमला सस्ती फीस की वजह से हुआ है। कोचिंग संचालक खान सर और उनके पड़ोस में स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और इसी विवाद में यह हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, विपक्ष पर योगी का हमला लगातार जारी है। कल लखनऊ में भी कार्यक्रम के दौरान योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कभी भी बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि बीमारू उसका राजनीतिक नेतृत्व था।
16: ये यूपी की बीमारूपन वैसे दूर नहीं हुआ है, ये बीमारू यूपी नहीं था, यहां का राजनीतिक नेतृत्व बीमारू था, उसकी मानसिकता बीमारू थी, उसने अपनी बीमार मानसिकता से यूपी को बीमार बनाया था। यूपी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था, अनिर्णय की स्थिति, गुंडों के पीछे दुम दबाकर के चलने की प्रवृत्ति, उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होने वाला राजनीतिक नेतृत्व यूपी को बीमारू बनाया था। यूपी बीमार नहीं था, यूपी को उस बीमार मानसिकता ने बीमारों की श्रेणी में ला करके खड़ा किया था। और जब स्वस्थ मानसिकता के साथ संचालित करने वाली डबल इंजन की सरकार आई, आज यूपी बीमारू नहीं, आज यूपी देश का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन चुका है।
0: और इस बीच जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर मौसम का कहर लगातार जारी है। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में बादल फटने और मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। इलाके में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन प्रभावित किया है। डोडा के ठठरी क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की घटना सामने आई, जबकि किश्तवाड़ डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 244 कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सड़क पर फंसे कई वाहन को नुकसान पहुंचा है, यातायात ठप है। प्रशासन और राहत दल तत्काल बचाव कार्य में जुट गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, जबकि राजमार्ग और संपर्क मार्गों से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। किश्तवाड़ के सरथल और माचीपाल इलाकों में भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति है। उधर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में केरन इलाके में तेज आंधी और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं के कारण एक विशाल पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया, जिससे नियंत्रण रेखा यानी LOC की ओर जाने वाले मार्ग बाधित हो गए। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने और फसलों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। बात गुजरात की, जहां पर सूरत में एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। बारडोली के पास हाईवे पर दो यात्री बसों की आमने सामने से टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सूरत से महाराष्ट्र जा रही बस एक ट्रैक्टर टैंकर को बचाने के प्रयास में डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बस खाई में गिरकर आग की चपेट में आ गई। पुलिस, दमकल और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया।
17: सड़क पर उठता गहरा काला धुआं, आग की लपटें, बिखरा हुआ मलबा, क्षतिग्रस्त बस। ये मंजर सूरत के बारडोली के पास हुए भयंकर सड़क हादसे का है। बारडोली के पास हाईवे पर एक पानी के टैंकर से जुड़े ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश में सूरत से महाराष्ट्र की तरफ जा रही बस डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क की दूसरी लेन में जा घुसी और महाराष्ट्र से सूरत की तरफ सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई थी। दोनों बसों के बीच इतनी भीषण टक्कर हुई कि महाराष्ट्र की तरफ से आ रही बस सीधे हाईवे के नीचे खाई में जाकर गिरी और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। कई यात्री बस से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ लोग इस भीषण हादसे में अपनी जान गंवा बैठे।
18: ये जो दुर्घटना हुई है उसमें तीन व्हीकल इन्वॉल्व है। एक जो ट्रैक्टर है वो पानी का टैंकर के साथ वो जा रहा था, उसके साथ जो सूरत से महाराष्ट्र बस जा रही थी वो उनका टकराव हुआ और वो बस इम्बेलेंस होने की वजह से जो बस महाराष्ट्र से सूरत जा रही थी उनके साथ वो टकरा गई। वो बस जो वो पूरा डिवाइडर कूद के सामने की साइड आ गई है और टकराव जो है वो गंभीर टकराव था। और जो महाराष्ट्र से बस आ रही थी वो रोड के साइड में नीचे पलटी मार गई और उसके बाद उसमें आग लगी है।
17: हादसे की सूचना मिलते ही सूरत ग्रामीण पुलिस, तापी पुलिस, दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव अभियान चलाकर बसों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया था। घायलों को बारडोली, व्यारा और सूरत के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
19: ये आप यहाँ पर मंजर देख सकते हैं कि 7 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके पुलिस आगे की तहकीकात शुरू कर रही है। इस मामले की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। खुद सूरत के जो कलेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, SP भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो बड़े सुपरविजन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे घटना की अब विस्तृत रूप से जाँच की जाएगी कि आखिर हादसे की असली वजह क्या है। संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक।
0: और बात प्रयागराज की, जहां पर एक करोड़पति परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन एक तख्ती पर लिखा था, बंटी, बबली और बहू ने मारा है।
20: प्रयागराज की ये वही इमारत है जिसकी पहली मंजिल से एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इस इमारत में नीचे दुकान है और ऊपर परिवार रह रहा था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो रविंद्र वैश, उनकी पत्नी और बेटी के शव बरामद हुए। बेटा अभिषेक लापता था, लेकिन छानबीन शुरू हुई तो ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकान से एक शव मिला। माना जा रहा है कि ये लाश रविंद्र वैश्य के बेटे की है। पुलिस के मुताबिक हत्या किसी भारी चीज से मार कर की गई है। घर से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन एक तख्ती मिली जिस पर लिखा था, बंटी, बबली और बहू ने मारा।
21: दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी, बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई, उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
20: पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बंटी, बबली और बहू कौन है, उनका इस मामले से क्या संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
2: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: बम बारूद मिसाइल से फिर थर्राया मिडिल ईस्ट। कुवैत के यूएस बेस पर ईरान का ड्रोन हमला। बहरीन में गूंजे सायरन। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। कार के बाद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होंगी ममता। पार्टी में टूट की खबरों के बीच अकेली पड़ी धनी। में सिर्फ 8 एमएलए। बागियों ने कहा हम हैं असली टीएमसी। कर्नाटक में आज से नई सरकार। 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। ज्योतिषों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर आखिरकार सीबीएसई चेयरमैन और सचिव की छुट्टी। पीएम के दखल के बाद एक्शन। लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। आज तक की मुहिम का असर। बदनाली कोचिंग में गोलीबारी वाले बयान से पलटे खान सर। कहा गार्ड ने जो बताया वही कहा। पुलिस ने भी किया फायरिंग से इनकार। दो कोचिंग सेंटर्स के बीच लड़ाई का मामला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का। हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: पिथौरागढ़ में आदि कैलाश सड़क में पहाड़ से हुआ लैंडस्लाइड। यात्रियों ने भागकर बचाई जान। चंबा में 500 मीटर खाई में कार गिरने से माँ बाप और दो बेटे की मौत। 8 लोगों की मौत। नोएडा में मेट्रो स्टेशन में बड़ा हादसा टला। मेट्रो ट्रैक पर कूदा व्यक्ति सुरक्षित बचाया गया। सूरत के बारडोली में हुई दो बसों की टक्कर में 7 की मौत 40 घायल। संभल में गंगा स्नान के दौरान हादसा। कलश विसर्जन करने आए 3 युवक तेज बहाव में डूबे। 2 युवकों की मौत। 1 को सुरक्षित बचाया गया। वाराणसी में बुलडोजर कार्रवाई। मल्टी मॉडल टर्मिनल परियोजना के लिए रेलवे भूमि से मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान क्षेत्र में ध्वस्तीकरण। कड़ी सुरक्षा के बीच चला अभियान। राजघाट क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बने ढांचों को हटाया गया। मीडिया की एंट्री रोकी गई। 47 एकड़ परियोजना से जुड़ा है मामला। विवादित भूमि पर कार्रवाई के बाद अजगैब शहीद मस्जिद कब्रिस्तान और हनुमान मंदिर क्षेत्र में मलबा हटाने का काम पूरा। यूपी में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक। एस्मा के तहत सरकार ने जारी की अधिसूचना। सरकारी विभागों निगमों और स्थायी निकायों पर लागू होगा आदेश। जनहित का हवाला देकर हड़ताल पर लगी रोक। लखनऊ केजीएमयू में करोड़ों के दवा खरीद घोटाले का खुलासा। असाध्य योजना में फर्जी मरीजों के नाम पर खरीदी गई महंगी दवाएं। 45 लाख के दवा बिल ने खोली पोल। यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अपुल गोयल हटाए गए। फार्मासिस्ट सस्पेंड। केजीएमयू दवा घोटाले के बीच मरीजों के परिजन का आरोप। कैंसर कार्ड के बावजूद बाहर से खरीदनी पड़ रही है महंगी दवाएं। कैंसर मरीज की मौत के बाद परिवार ने उठाए सवाल। बोले अस्पताल में उपलब्ध नहीं कराई गई जरूरी दवाएं। लखनऊ में आज शाम सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। संभल में 1100 बीघा विलुप्त झील के पुनर्जीवित करने की शुरुआत। प्रशासन ने कब्जा मुक्त कर सीएसआर फंड से शुरू कराया पुनर्स्थापन कार्य। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। चिलुआ ताल पर्यटन विकास के करीब 21 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ ने बदला फाजिल नगर का नाम। पावागढ़ होगा नया नाम। तीसरे दिन भी पुलिस का एक्शन जारी। खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप तेज। 3 मदरसे सील। 1 पर नोटिस चस्पा। मेरठ में असद एनकाउंटर को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई के बाद मांगी माफी। सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्राट सरकार का बड़ा फरमान। लेट पहुंचने पर कटेगी सैलरी। बायोमेट्रिक हाजिरी होगी अनिवार्य। 10 लाख राज्य कर्मियों को वर्क कल्चर सुधारने का अल्टीमेटम। समय पर दफ्तर पहुंचना तय समय तक काम करना होगा जरूरी। लंच ब्रेक पर सरकार की सख्ती। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक ही मिलेगा आधे घंटे का लंच ब्रेक। बिहार में भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों पर शिकंजा। 1 हफ्ते में 23 सीओ और कर्मियों पर कार्रवाई। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा एक्शन। रिश्वत जमीन हेराफेरी और अनियमितताओं के आरोप में 8 अधिकारियों पर नई कार्रवाई। आज तक की मुहिम का बड़ा असर। पीएम मोदी के दखल के बाद हटाए गए सीबीएसई चेयरमैन और सचिव। ओएसएम में गड़बड़ी पर एक्शन। लोखंडे प्रशांत को मिली नई जिम्मेदारी। छात्रों की नाराजगी के बीच सीबीएसई पर बड़ा फैसला। सत्यापन और री इवैल्यूएशन में देरी के आरोपों की होगी पड़ताल। ओएसएम सिस्टम विवाद में 1 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। 1 राधा चौहान 1 महीने में सौंपेंगी रिपोर्ट। सीबीएसई विवाद पर सियासी घमासान तेज। राहुल गांधी बोले जवाबदेही नहीं। मामले पर पर्दा डालने पर की कोशिश। सीबीएसई के शीर्ष अधिकारियों का तबादला। लेकिन विपक्ष का सवाल क्या इससे छात्रों को मिलेगा इंसाफ। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, डीके शिव कुमार के साथ 13 मंत्री भी लेंगे शपथ। शैतेंद्र जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा से लेकर प्रियांक खड़गे तक कई बड़े चेहरे आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण में बदला परंपरा, शपथ मंच की बदली गई दिशा, पश्चिम की जगह पूर्व दिशा की ओर होगा मंच। लोक भवन में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज, हजारों समर्थक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने से होगा शक्ति प्रदर्शन। लोक भवन में शपथ समारोह की भव्य तैयारियां, वीवीआईपी एंट्री, अलग मंच, सख्त सुरक्षा, हाई टी कार्यक्रम के साथ शपथ के बाद ओपन जीप से मुख्यमंत्री जाएंगे विधान सौध। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर हमला किया, कहा बीजेपी का क्रिमिनलाइजेशन नहीं होगा और बागी नेताओं को जगह नहीं मिलेगी। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं के पार्टी में आने की खबरों को गलत बताया, कहा पार्टी साफ सुथरी राजनीति पर चलेगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, कहा लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। राजून में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगी ममता, अभिषेक बनर्जी रहेंगे मौजूद। इंडिया ब्लॉक की रणनीतिक बैठक पर नजरें, ममता समेत विपक्षी नेताओं की होगी अहम चर्चा। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, किश्तवाड़ डोडा हाईवे हुआ प्रभावित, कई जगहों पर रास्ता बंद। बादल फटने के बाद लोगों का रेस्क्यू, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के भलेसा में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर बड़ी फिसलन, जनजीवन प्रभावित। तेज हवाओं के बीच भारी बारिश से बड़ा भूस्खलन का खतरा, बिगड़े मौसम के कारण प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। बांदीपुरा गुरेज मार्ग पर स्थित राजदान दर्रे पर हुई बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे, कैमरों में कैद किया नजारा। हिमाचल चंबा में लगातार बढ़ रही है सैलानियों की संख्या, मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों में सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं सैलानी। पारंपरिक हिमाचली पोशाक में तस्वीरें खिंचवा रहे सैलानी, टूरिस्ट के आने से स्थानीय कारोबारी खुश। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में आंधी तूफान के बीच भारी बारिश ने लोग को राहत दी, तापमान में गिरावट दर्ज। गुजरात के पाटन जिले में आंधी और तेज हवाओं के साथ मानसून की एंट्री, राधनपुर में 1 इंच बारिश। बनासकांठा में अचानक बदला मौसम, तेज तूफान और बारिश के बीच तेज हवा में उड़ी कई कोल्ड स्टोरेज की टीम की छतें। देहरादून में भारी बारिश और आंधी के बाद तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़। महाराष्ट्र की भीड़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, जामुन और केले की फसलें बर्बाद। मदुरई में मूसलाधार बारिश, जनजीवन प्रभावित, लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज। कोयम्बटोर में हुई मूसलाधार बारिश, इलाके में दर्ज किया गया घना कोहरा। क्लीन एंड ग्रीन पंचायत में देश भर में आदर्श बनी, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की ग्राम पंचायत लोहारड़ी देश भर में मिला है तीसरा स्थान। मुंबई में विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत पिंक की रिक्शा सहायता पहल का शुभारंभ, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस शामिल। सीएम फडणवीस की पत्नी का दिखा अनोखा अंदाज, अमृता ने चलाया ऑटो रिक्शा। भक्तों को आरसीटीसी की तरफ से शानदार तोहफा, 3 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए लॉन्च किए जा रहे हवाई टूर पैकेज। दिल्ली हाईकोर्ट में फिजी को बड़ी राहत, अदालत की टिप्पणी के बाद ईडी ने अपनी विवादित प्रेस रिलीज वेबसाइट हटाई, संस्थापक डीके गोयल ने फैसले का स्वागत किया। दिल्ली के अमर कॉलोनी गोलीबारी में घायल 17 साल की साईं की मौत, परिवार वालों का हुआ प्रदर्शन। गुरुग्राम में बंगाली मुस्लिम महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, डी को लेकर शुभेंदु अधिकारी पर की आपत्ति टिप्पणी। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पर लापता युवती का 5वें दिन भी सुराग नहीं, सेना और आईटीबीपी के साथ 1300 सदस्य टीम तलाश में जुटी। सूरत मां ने अपने 4 महीने के बेटे को तेजाब पिलाया, खुद भी पी लिया, दोनों की मौत। भोपाल में खुले में रखी बर्फ पर कुत्तों के घूमने का वीडियो वायरल, इलाके में मचा हड़कंप। जलंधर में बैडमिंटन खेलते समय खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक, डॉक्टरों ने सीपीआर देकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में तेज रफ्तार जेसीबी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। आधा में घर के बाहर खड़ी महिला को गोली मारकर हत्या, बच्चों के विवाद में पड़ोसी समेत 4 पर आरोप। हापुड़ में विवाहिता ने पति और ससुराल पर लगाया प्रताड़ना और मारपीट के आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का दमदार ट्रेलर आउट, 12 जून 2026 को सिनेमाघर में होगी रिलीज। शाहिद, कृति और रश्मिका की मास्टरपीस फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर जारी, 14 साल बाद आ रहा है कॉकटेल का सीक्वल। रामचरण की आगामी फिल्म पेद्दी का नया गाना मासा मासा रिलीज। अजय देवगन की दृश्यम 3 की शूटिंग पूरी, 2 अक्टूबर को सिनेमाघर में होगी लॉन्च। थ्री इडियट्स की कहानी से उड़ गया पर्दा। सेकंड पार्ट में तीन नहीं बल्कि होने वाले चार इडियट्स। राजकुमार ईरानी जल्द फाइनल करेंगे स्क्रिप्ट। सैयारा की बात फिर लौटेगी। आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी मोहित सूरी संग शुरू करेंगी नई लव स्टोरी। हॉलीवुड की हॉरर ड्रामा फिल्म ऑब्सेशन का तहलका। चार दिन में कमाया 28.57% प्रॉफिट। इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 10 करोड़। सुपरस्टार यश का दिल छू लेने वाला अंदाज सामने आया। यश ने कैंसर जूझ रहे अपने एक फैन सुनील को किया वीडियो कॉल। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सागर सील। निर्माण में नियम उल्लंघन के तहत हुई कार्रवाई। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। यूएस में फ्लीट मुख्यालय पर हमले की बात कही। क्षेत्र में तनाव बढ़ा। आरजीसी ने केशम द्वीप हमले का बदला लेने का दावा किया। जवाबी कार्रवाई की बात आई सामने। ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज। अमेरिकी सेना ने ईरान के सभी दावों को खारिज किया। किसी भी देश पर हमला नहीं हुआ है। ईरान अमेरिका के दावों में बड़ा विरोधाभास। हालात को लेकर तनाव और बढ़ा। लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई से भड़का ईरान। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच वॉशिंगटन डीसी में इसराइल और लेबनान के राजदूतों ने मुलाकात की। बैठक में सीमा क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा। इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा। ईरानी शासन की नींव हो चुकी है कमजोर। उनका पतन तय है। कट्टर यहूदियों को अनिवार्य सैन सेवा की भर्ती को लेकर यरूशलम में हुआ हिंसक विरोध प्रदर्शन। यूक्रेनी राजधानी की समेत जिनिप्रो पर रूस का बड़ा हमला। मंगलवार हुए हमलों में 2 बच्चों समेत 18 लोगों की गई जान। डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नेता मटे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार बनी देश की प्रधानमंत्री। अमेरिका के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में दर्ज की गई भारी गिरावट। जनवरी 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। पोलैंड के स्कूल में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार। ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने और अश्लील सामग्री को सीमित करने की पहल। लंदन के मेट्रो चालकों की हड़ताल से बड़ी यात्रियों की मुश्किल। काम के घंटों में बदलाव के प्रस्ताव के विरोध में कर्मचारियों ने किया 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान। यूरोप में भयंकर गर्मी। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने कहा आने वाले महीनों में एल नीनो के असर से दुनिया भर में होगी भीषण गर्मी।

और बात मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की करेंगे। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका के बहरीन स्थित पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर हमले का दावा किया। ईरानी मीडिया ने IRGC के हवाले से दावा किया कि केशम द्वीप पर अमेरिका के हमले के जवाब में बहरीन में अमेरिका के पांचवें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिकी सेना ने ईरान के दावों का खंडन किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में ईरान के दावों को झूठा बताया। तो मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है, ईरान दावा कर रहा है। हालांकि इस दावे को लगातार डिनाय किया जा रहा है अमेरिका द्वारा। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। अमेरिका ने पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया है, ईरान का कहना है। लेकिन अमेरिका इसे लगातार नकार रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर एक और बड़ी खबर है। बहरीन के साथ साथ ईरान ने कुवैत पर हमला किया है। कुवैत में मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन से बेसिस पर हमला किया गया, जिसे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा, कई ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। कुवैत की सरकार लोगों से आसमान से गिरे किसी भी मलबे, छर्रे या किसी अज्ञात चीज को बिल्कुल ना छूने का फरमान जारी किया है, ना कि उसके पास जाने की भी सलाह दी गई है। तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि अभी भी शांति की ओर नहीं है, युद्ध के हालात बने हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम किया है, वहीं ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की भी ओर से हमला किया गया है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। कुवैत सरकार ने अब अलर्ट भी जारी कर दिया है। और अब बात मिडिल ईस्ट जंग की एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि IRGC ने अमेरिकी बेसिस पर हमला एक वीडियो जारी कर दिया है। अमेरिका के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली गई। ये तस्वीरें, ये वीडियोस जारी की गई हैं ताकि पुष्टि की जा सके कि हमला किया गया है। अमेरिकी पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर हमले की जिम्मेदारी ली गई है। ताजा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो जारी किया गया है IRGC द्वारा। मिसाइल्स और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं और वीडियो के जरिए इनकी पुष्टि की जा रही है।

उधर बढ़ते तनाव का असर एक बार फिर से दिखने लगा है। बहरेन, कुवैत और यूएई में उड़ानें पूरी तरह से लंबित हो गई हैं। ये जानकारी प्रेस टीवी के हवाले से आ रही है। मॉनिटरिंग सिस्टम की तस्वीरें भी दिख रही हैं कि उड़ानें बंद हैं। ईरान अमेरिका में तनाव का असर दिख रहा है। बहरेन, कुवैत, यूएई में उड़ानें लंबित कर दी गई हैं। प्रेस टीवी ने इस बात की पुष्टि की है। अघोषित जंग शुरू हो चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच, जिसमें वीडियोस के जरिए यह बताया जा रहा है कि लगातार हमले जारी हैं दोनों ओर से, और अब इनका असर उड़ानों पर भी पड़ रहा है।

0: ईरान का यह दावा है कि अमेरिका के पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया गया है, मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। लगातार ये हमले अमेरिका की ओर से किए जा रहे हैं। क्वेशम द्वीप के दक्षिण में अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया है, वहीं अमेरिका के पांचवें बेड़े के मुख्यालय पर हमला हुआ है। ईरान अमेरिका में तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई को लेकर बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि खामेनेई किसी न किसी स्तर पर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, इसके संकेत भी मिल रहे हैं।
1: Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the supreme leader, and understand that at the end of the day, the supreme leader in their system is, there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is a theological office.
0: इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर ट्यून इन हैज द म्यूजिक टू मैच फ्रॉम टुडेज हिट्स
5: समबडी सेव मी
4: टू टाइमलेस फेवरेट्स
5: like
4: एंड न्यू डिस्कवरीज It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: You and that's so much more than a history.
3: Sokudo.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: In association with
5: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: Samakool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakool Cooler, life banaye wonderful.
4: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार की तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।

क्या ट्विशा केस में सीबीआई के हाथ कोई अहम सुराग लगा है? क्या 5 दिनों की रिमांड में समर्थ और गिरिबाला ने ट्विशा केस को लेकर कोई बड़ा खुलासा किया है? क्या ट्विशा के परिवार वालों के आरोपों में वाकई सच्चाई है? क्या ट्विशा की मौत की असल वजह जल्द सामने आ सकती है? ये सवाल दोनों आरोपियों की 5 दिनों की सीबीआई रिमांड के बाद उठ रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक समर्थ सिंह और गिरिबाला ने ट्विशा से मारपीट के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ट्विशा शर्मा से उनके संबंध सामान्य थे। दोनों ने परिवार में किसी गंभीर तनाव या विवाद की बात से भी इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ससुराल में सब कुछ सामान्य था, रिश्तों में तनाव नहीं था, तो आखिर ट्विशा शर्मा ने खुदकुशी जैसे कदम क्यों उठाया? सीबीआई की पूछताछ में समर्थ ने ट्विशा के ड्रग एडिक्ट होने की बात कही है। दावा है कि इसी वजह से ट्विशा के व्यवहार में अचानक बदलाव होता था। समर्थ सिंह और गिरिबाला दोनों ने ही उन आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया है जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। तमाम सवालों पर पूछताछ के बाद आज सीबीआई ने ट्विशा केस के दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। ट्विशा मौत मामले की जांच के दौरान सामने आई एक गंभीर लापरवाही ने शुरुआती जांच की दिशा ही बदल दी थी। सीबीआई हर पहलू की पड़ताल कर रही है ताकि ट्विशा केस का सच सामने आ सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: महंगाई की मार से राहत मिलने का इंतजार कर रहे लोगों की नजर आरबीआई की पॉलिसी पर टिकी है। घर की ईएमआई से लेकर बिजनेस की उधारी तक हर जेब पर असर डालने वाला फैसला आने वाला है। लेकिन इस बार कहानी केवल ब्याज दरों की नहीं है। इस बार तस्वीर में कमजोर रुपया, महंगा होता क्रूड ऑयल और मानसून की चिंता भी शामिल हो चुकी है। ऐसे माहौल में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने जा रही है। बाजार और ज्यादातर एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन आने वाले संकेतों पर इस बार पैनी नजर रहेगी क्योंकि महंगाई और ग्रोथ के अनुमान में बदलाव की संभावना है। दरअसल पिछले करीब 100 दिनों से जारी पश्चिम एशिया संकट ने आर्थिक समीकरण बदल दिए हैं। क्रूड ऑयल की सप्लाई, शिपिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर तो दबाव बढ़ ही गया है, साथ ही कंपनियों की लागत और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी दबाव में इजाफा हुआ है। इसी बीच मौसम भी आरबीआई की चिंता बढ़ा रहा है और आईएमडी के मुताबिक 2026 में सामान्य से कमजोर मानसून की आशंका है। अल नीनो के असर से बारिश कम रहेगी जिससे खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा है। इन चुनौतियों के बीच कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई अपने महंगाई अनुमान को बढ़ा सकता है और ग्रोथ के अनुमान में कटौती कर सकता है। महंगाई के साथ रुपया भी आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस साल भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा कमजोर हुई है जो एक दशक की सबसे खराब गिरावट मानी जा रही है। मई में रुपया एक वक्त तो 96.83 प्रति डॉलर तक पहुंच गया था। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से रुपए पर दबाव पड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई रुपए को संभालने के लिए दूसरे रास्ते अपनाएगा। इसमें फॉरेक्स मार्केट में दखल और लिक्विडिटी मैनेजमेंट जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। भारत के पास करीब 680 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद रिजर्व में करीब 47 अरब डॉलर की कमी आई है। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्तर पर बना हुआ है। बॉन्ड मार्केट भी आने वाले समय की चिंता दिखाने लगा है। सरकारी बॉन्ड यील्ड हाल के हफ्तों में ऊपर गई है जिससे निवेशकों के बीच महंगाई को लेकर सतर्कता बढ़ी है। आरबीआई की पिछली रिपोर्ट में चालू कारोबारी साल के लिए 6.9% ग्रोथ और 4.6% महंगाई का अनुमान दिया गया था, लेकिन बदलते वैश्विक हालात के बीच इन आंकड़ों पर दोबारा नजर पड़ सकती है। लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि आरबीआई आने वाले महीनों में महंगाई, रुपया और आर्थिक रफ्तार को लेकर क्या संकेत देता है, क्योंकि वही तय करेगा कि ईएमआई का बोझ कितना रहेगा और जेब पर दबाव कितना बढ़ेगा। आदित्य के राणा आज तक।

बम बारूद मिसाइलों में फिर थर्राया मिडल ईस्ट। कुवैत के यूएस बेस पर ईरान का ड्रोन हमला। बहरेन में गूंजे सायरन। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हार के बाद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होंगी ममता बैनर्जी। पार्टी में टूट की खबरों के बीच अकेली पड़ी। धरने के लिए आए सिर्फ 8 एमएलए। बागियों ने कहा हम हैं असली टीएमसी। कर्नाटक में आज से नई सरकार। 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ज्योतिषों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर आखिरकार हुई सीबीएसई चेयरमैन और सचिव की छुट्टी। प्रधानमंत्री के दखल के बाद एक्शन। लोखंडे प्रशांत को मिली जिम्मेदारी। आज तक की मुहिम का असर।

0: लिए सिरदर्द बना कोचिंग माफिया, गोलीबारी वाले बयान से पलटे खान। पहले कहा था गोली चली, दो कोचिंग सेंटर्स में वर्चस्व की लड़ाई का मामला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आज सुबह से ही खबरों में भारी हलचल है और हम हलचलों के साथ साथ कुछ और खबर भी आपके लिए लेकर आए हैं। खबरों के लिहाज से बंगाल में जबरदस्त हलचल है। टीएमसी में टूट का खतरा दिख रहा है। ममता बैनर्जी के खिलाफ असंतोष साफ साफ सामने आने लगा है। ममता की बैठकों से और कार्यक्रम से दूर रहने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कल पार्टी के धरने में मुट्ठी भर नेता ही आए। दूसरा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कर्नाटक से है, जहां डीके शिवकुमार की सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है। नई सरकार में कौन आ रहे हैं और कौन कौन छूट रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स आपको बाद में देंगे। उधर पटना में कोचिंग संस्थान की लड़ाई में खान सर ने बयान बदल दिया है। अब क्या बोले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले बात करते हैं ममता बैनर्जी की और टीएमसी के, क्योंकि उनके लिए अब अच्छी खबर नहीं आ रही है। ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत के शोले भड़कते हुए दिख रहे हैं, तो टीएमसी नेताओं पर हमले का सिलसिला भी लगातार जारी है। उत्तर 24 परगना में कल टीएमसी के पूर्व विधायक सनत डे पर भीड़ ने अंडे फेंककर अपना गुस्सा जताया। सनत डे एक बैग लेकर वहां पहुंचे थे अपने दफ्तर के पास, और खबर यह फैली कि वो कुछ दस्तावेज ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बस फिर क्या था, हंगामा मच गया, तो टीएमसी नेता को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी समेत टीएमसी के कई नेताओं पर हमला हो चुका है। कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज के टीएमसी छात्र यूनियन के कमरे से बड़ी मात्रा में दीमक लगे हुए नोट भी बरामद किए गए हैं। दीमक ने नोट को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि वो इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं रह गए हैं। नोट करीब 1 करोड़ के बताए जा रहे हैं। अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज में इसे किसने और किस मकसद के साथ रखा था। तो रुक करते हैं बड़ी खबर का। एक तरफ ममता बैनर्जी के खिलाफ पार्टी में बगावत फूट रही है, तो दूसरी तरफ खुद ममता बैनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता दिखा रही हैं। ममता बैनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आ रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उनके साथ अभिषेक बैनर्जी भी होंगे। दिल्ली में 8 जून को होने वाली है इंडिया ब्लॉक की ये बैठक, जिसमें दोनों नेता शिरकत करेंगे। ममता बैनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो खुद वहां मौजूद होंगी और साथ में उनके अभिषेक बैनर्जी भी पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त, एक तरफ टूट की खबरें आ रही हैं टीएमसी के अंदर, दूसरी तरफ वहां टीएमसी के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। लेकिन इसके सब बीच ममता बैनर्जी राष्ट्रीय राजनीति का दामन नहीं छोड़ रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए हैं। अमित, एक तरफ कोलकाता में बंगाल में भूचाल आया हुआ है, सियासी भूचाल आया हुआ है, टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन ममता बैनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए आ रही हैं, इसके बारे में हम क्या जानते हैं और इससे क्या पता चलता है?
1: अंजलि, देखिए बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया गठबंधन के हिसाब से, क्योंकि लंबे समय से इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई थी, तो 8 जून को बैठक तय हो गई है। इस पे मुहर लगती है, इस खबर पे मुहर लग रही है, और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी इस बैठक में, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगी, और तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी भी शामिल होंगे। आपको ध्यान हो कि बीते हफ्ते अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ था, भीड़ ने उनके साथ मारपिटाई की थी, पत्थर तक फेंकने का वीडियो सामने आया था, और इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस जो इंटरनल फैक्शनलिज्म है उससे भी जूझ रही है। न्यू तृणमूल बनाने की बात, न्यू ग्रुप बनाने की बात बंगाल में और कलकत्ता में चर्चा में है इस वक्त। ऐसे में ममता बनर्जी ना केवल कलकत्ता की राजनीति को, बंगाल की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, बल्कि उनको पता है कि अब इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह जो उन्होंने सालों से स्ट्रगल करके बनाई है उसको वो जाने नहीं देना चाहती है, और यही वजह है कि वो खुद इस बार इन पर्सन मीटिंग के लिए दिल्ली आएंगी। अगस्त में पिछले साल जब इस तरह की बैठक हुई थी, राहुल गांधी के घर पे डिनर मीटिंग हुई थी, वोट चोरी कैंपेन राहुल गांधी शुरू कर रहे थे उस वक्त, तो अभिषेक बैनर्जी को ममता बैनर्जी ने भेजा था उस बैठक के लिए। लेकिन इस बार अभिषेक बैनर्जी के साथ साथ ममता बैनर्जी भी दिल्ली में बैठक के लिए खुद मौजूद रहेंगी। अंजलि
0: जी, अमित शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ टीएमसी नेताओं पर मुसीबत, कहीं हमले हो रहे हैं तो कहीं छापे पड़ रहे हैं। इन खबरों के बीच बड़ी खबर टीएमसी की अंदरूनी खींचतान की है। कल ममता बैनर्जी के धरने में सिर्फ 8-9 विधायक पहुंचे और 6 सांसद पहुंचे तो अटकलें तेज हो गई कि टीएमसी में सब कुछ ठीक है या नहीं। ममता का साथ देने के लिए टीएमसी के सिर्फ 9 विधायक और 6 सांसद सामने आए, जबकि लोकसभा के 28 और राज्यसभा के 13 सांसदों को मिलाकर टीएमसी के कुल 41 सांसद हैं। विधायकों की बात करें तो ये संख्या 80 की है। कल धरने में जो विधायक पहुंचे उनमें शामिल हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय, मदन मित्रा, अशोक देव, आसिमा पात्रा, विमान बैनर्जी, फिरहाद हकीम और कुणाल घोष, जबकि सांसदों में डोला सेन, कल्याण बैनर्जी, डेरेक ओब्रायन, समीरुल इस्लाम, मेनका गुरुस्वामी और नदीमुल हक मौजूद रहे। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हमले के विरोध में ममता बैनर्जी ने जब विधायकों की आपात बैठक बुलाई थी तब भी मुट्ठी भर विधायक ही पहुंचे थे, जिसकी वजह से ममता बैनर्जी को बैठक कैंसिल करनी पड़ी थी। तो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें, किस तरीके से मुट्ठी भर विधायक और सांसद वहां पहुंचे। ये तस्वीरें जहां पर एक वो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर कह रहे थे कि जिएंगे नहीं तो मरेंगे, लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे, और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो सांसद थे या विधायक थे जो वहां पहुंचे। तो ममता बैनर्जी वहां पर भी इन सबके बीच में विद्रोह की अग्नि जलाने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी से लड़ने का नारा लगातार वो देती रही, लेकिन साफ है कि बस मुट्ठी भर लोग वहां पहुंचे तो पार्टी में अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र का। अनुपम, तादाद विधायकों की और सांसदों की कम नहीं है टीएमसी के पास, लेकिन जो पहुंचते हैं वो बहुत कम नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या संकेत मिल रहे हैं और आपको टीएमसी के सोर्सेस से क्या पता चल रहा है, सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ गई हैं?
2: जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की चिंता बहुत ज़्यादा है इस वक्त और वो साफ झलक भी रहा है। और उनकी जो मीटिंग हुई है कल, पहली बार वो हारने के बाद आज कल मैदान में उतरी, सड़क पर उतरी, लेकिन उनके साथ बहुत कम कार्यकर्ता, सिर्फ 6 विधायक और 8 विधायक और 6 MP शामिल रहे, जबकि इतनी बड़ी संख्या है उनके विधायकों की, जब 2 को निष्कासित किया गया है उसके बावजूद 78 विधायक हैं, लेकिन 78 में से सिर्फ 8 का पहुंचना और 42 MPs में से सिर्फ 6 MPs का पहुंचना, ये साफ दर्शा रहा है कि ज्यादातर MP और ज्यादातर विधायक अभी ममता बनर्जी के साथ आने में कतरा रहे हैं। अब ऐसे में शोभनदेव चट्टोपाध्याय से, हाँ, कल हमने बात की थी कि क्यों इतने कम संख्या में लोग आए हैं, तो उनका कहना था कि हमने किसी को बुलाया नहीं है, ये नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। इससे पहले भी जब रविवार को ममता बनर्जी के आवास पर बैठक हुई थी तो वहां पर भी 60 विधायक गायब थे, नदारद थे, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी और बाद में कहा गया कि वो अपने इलाकों में व्यस्त थे इस वजह से नहीं आ पाए। तो ऐसे में लगातार ये जो अनुपस्थिति है और इतनी बड़ी संख्या में अनुपस्थित हो रहे हैं लोग, जबकि इससे पहले ममता बनर्जी जब कहीं धरना प्रदर्शन करती थी तो नेताओं की भरमार रहती थी, यहाँ तक कि जो टॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं उनकी भी भरमार रहती थी, लेकिन इस बार तो कोई भी सेलिब्रिटीज उनके साथ नहीं दिखाई दिए। उनके खुद के नेता, खुद के पुराने नेता अरूप राय जैसे नेता वो नहीं थे, शायनी घोष, महुआ मोइत्रो, कोई वहां पर नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे में एक बात तो साफ झलक रही है कि ममता बनर्जी के संकट काल में उनके साथ रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है और ये बहुत बड़ी चिंता है फिलहाल टीएमसी के लिए, किस तरह से इसको रोका जाए ये फिलहाल बहुत बड़ा सवाल है।
0: जी, एक चुनाव हारा तो संगी साथियों ने साथ छोड़ दिया, शुक्रिया आपका अनुपम। तो ममता बनर्जी के सामने संकट साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ममता ऐसा जाहिर कर रही है जैसे वो इतनी जल्दी परास्त होने नहीं वाली।
3: आज के गद्दारी করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান।
0: টিএমসি में 2 नेताओं को निकाला गया और फिर बगावत की जंग खुलकर सामने आ गई।
4: ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था, ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
5: আমরা কেউ কিন্তু বাকি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন সত্তর বয়সী ভদ্রমহিলা, সত্তর বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসছি এখানে। ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে, তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে।
0: মমতা ব্যানার্জি কে সমর্থক আর পূর্ব বিধায়ক শোভন দেব কে রে হ্যাঁ পার্টি মে সব কুছ ঠিক ঠাক হ্যায়।
6: মমতা ব্যানার্জি বোলা হাম লোগ শামিল হো গিয়া, কিয়া হোগা ইসকে বাদ মমতা ব্যানার্জি বোলেগে হামকো লিডার হ্যায়, উসি কে লিডারশিপ মে ইতনা দিন হ্যায় হাম লোগ, আর ফির আগে দিন জব তক চলেঙ্গে উসকি কে লিডারশিপ মে রহেগি।
2: এক এক জো অভি বাত সামনে আ রহি হ্যায়, বহুত কম জো বিধায়ক হ্যায় ও শামিল হো রহে হ্যায়, আজ ভি দেখা গিয়া কি কাফি কম বিধায়ক শামিল হুয়ে, শনিবার কো ভি দেখা গিয়া।
6: আজ কা কোই ইনফরমেশন নোটিফিকেশন কোই এমএলএ কো নেই দিয়া, নেই দিয়া হাম লোগ, যদি এক এক মাস মিটিং হ্যায় নেই দিয়া হ্যায়। দেখতে দিজিয়ে না, মমতা ব্যানার্জি আউট হয়ে প্রোগ্রাম করলে কা বাদ ক্যা হোতা হ্যায়।
2: और पार्टी में जो टूट फूट की बात चल रही है, जो तोड़ने की बात चल रही है, रितो प्रोतो वगैरह, उस पर क्या कहेंगे?
6: कोशिश करने दीजिए ना, कोशिश करने दीजिए।
0: মমতা ব্যানার্জি সরকার সে নারাজগি রাখনে ভালো মে খুদ উনকে আপনে ভাই স্বপ্ন ব্যানার্জি ভি শামিল হ্যায়। আজ তক সে বাতচিত মে উনকা দর্দ খুলকর সামনে আয়া।
7: आप कह रहे थे कि 2013 से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तृणमूल के साथ?
8: ना, हम 1981 साल से पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं।
7: लेकिन 2013 से आपको काम नहीं करने दिया?
8: जो 13 साल से मेरा को काम करने नहीं देते हैं।
7: क्यों
8: काम करने नहीं देता है? कोई काम में नहीं देता। मैं बंगाल ओलंपिक का सेक्रेटरी था, चिट्ठी देता है चिट्ठी फेंक देता है। मैं 2020 साल में चिट्ठी दिया दी छोड़ा दिया, 2022 में दिया, 23 में दिया, 24 में मेरा को बैठा के हटा दिया। ये ठीक नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत गलती हुआ। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं पार्टी पॉलिटिक्स का काउंसलर नहीं है, मैं एमएलए नहीं है, मैं एमपी नहीं है, मैं कोई कुछ नहीं है।
7: लेकिन आप
8: स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको लेके काम करना। मैं इंडियन ओलंपिक का मेंबर था, मैं बंगाल ओलंपिक का प्रेसिडेंट था, मैं बंगाल ओलंपिक का सेक्रेटरी था, मैं बंगाल ओलंपिक का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। तो हमारे लिए क्या किया ये लोग, हमारा बहुत खराब लगा है, उसलिए हम इन लोग के बारे में सोचेगा। हमको छोड़ा के अपना भाई स्वरूप विश्वास को लेके चल रहा है बंगाल ओलंपिक में, काहे क्या हुआ? ये कोई दिन वो ही नहीं था, पोस्टकोड मान के नहीं आया, वो आईएफए का वाइस प्रेसिडेंट था, यहाँ पे लेके सब कुछ काम करा है।
7: तो ये दीदी को पता नहीं था?
8: देखिए दीदी के बारे में, हम पोस्ट के बारे में क्रीड़ा मंत्री को बताएगा, हम दीदी को कैसे बताएं?
7: क्रीड़ा मंत्री तो ममता बनर्जी को ही रिपोर्ट करते थे,
8: बोलना जरूरी है, 100% सबको मालूम है इस बारे में।
0: टीएमसी अंदरूनी कलह से जूझ रही है, तो बीजेपी ऐलान कर रही है कि टीएमसी के बागियों के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य ने आज कहा कि टीएमसी नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं।
9: अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था हम लोग एकदम नीचे से किया था, चार्जशीट निकाला वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ, जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।
0: तो क्या वाकई में बंगाल के लोगों में टीएमसी के नेताओं के खिलाफ गुस्सा है? अब जरा विस्तार से टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमले की बात करते हैं, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तो बड़ी खबर यह आ रही है कि टीएमसी नेताओं पर हमलों का सिलसिला जारी है। अगर बात करें तो सिर्फ अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर ही हमले नहीं हुए, सनत डे पर भारी भीड़ ने अंडे फेंके हैं। दरअसल हुआ क्या कि उत्तर 24 परगना में सनत डे एक बैग के साथ पहुंचे, दिखाई दिए अपने दफ्तर पर टीएमसी के, तब उन पर लोगों ने हमला बोल दिया। लोगों को लगा कि शायद वो कुछ लाना ले जाना चाह रहे हैं, कुछ दस्तावेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में वहां पर जुटी हुई कुछ भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया, उन पर अंडे फेंके और सनत डे को पुलिस को वहां से निकालना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पूरा गुस्सा फूट रहा है ये आम लोग ही है या ये राजनीति है। लेकिन लगातार इस तरह के हमले नजर आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के खिलाफ। उधर कुछ और अजीबोगरीब चीजें भी सामने आ रही हैं, जैसे दीमक लगे नोट और वो भी 1 करोड़ रुपए। कोलकाता के कॉलेज में टीएमसी छात्र यूनियन के दफ्तर में दीमक लगे 1 करोड़ के नोट मिल रहे हैं और इसकी जांच भी चल रही है। अब तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये नोट आए कहां से। तस्वीरों में देखिए, ये नोट किसी लायक नहीं है, बर्बाद हो चुके हैं, दीमक लगे हैं, लेकिन मिले कहां से, ये यूनियन के दफ्तर में से मिले हैं। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज के यूनियन के दफ्तर में आखिर ये नोट क्या कर रहे थे। 2 अटैची में बंद ये नोट बरामद किए गए हैं और जांच चल रही है। और बात कर्नाटक की, जहां नए दौर का आगाज हो रहा है। कर्नाटक में आज डीके शिवकुमार सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। बेंगलुरु में लोक भवन में ये शपथ ग्रहण होगा, जिसकी तैयारी जारी है। खबरों के मुताबिक डीके शिवकुमार कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ साथ करीब 13 मंत्री भी आज शपथ लेंगे। आज शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। काफी माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं। इसमें कई अहम चेहरे शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सगय राज। सगय, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो शामिल रहेंगे, क्योंकि पहले ये कह रहे थे कर्नाटक के नेता कि जो लिस्ट मीडिया में चल रही है वो पक्की नहीं है, क्या अब पक्की लिस्ट सामने आई है?
1: ना, अभी तक पक्की लिस्ट सामने नहीं आया है। जो भी लिस्ट डीके शिवकुमार को भेजा गया है वो लोक भवन को भेज दिए है, और शायद हमको अभी आधा घंटा एक घंटा में पता चलेगा कौन सा एमएलए को कैबिनेट बर्थ मिला है। पक्की लिस्ट तो अभी डिस्कशन हो रहा है, मगर सूत्रों के अनुसार हमने जाना है कि यतीन्द्र सिद्धरामैया, प्रियंका खड़गे, केजे जॉर्ज, सतीश जारकिहोली, रामलिंग रेड्डी, जो भी स्टॉलवर्ट्स है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स है, वो ऑलरेडी जो मंत्री पद में थे उन्हीं लोगों को अभी भी दे रहे हैं। मगर ये पहला लिस्ट है। दूसरा लिस्ट शायद एक 10-20 दिन के बाद हमको पता चलेगा। अभी सूत्रों के अनुसार सतीश जारकिहोली जो केपीसीसी प्रेसिडेंट के लिए भी फ्रंट रनर थे, उन्होंने कैबिनेट बर्थ मांगा था, केपीसीसी प्रेसिडेंट को रिफ्यूज कर दिया था। शायद बीके हरिप्रसाद जो ओबीसी लीडर है उनको।
0: जी बिल्कुल, कई नाम है सामने और उन पर चर्चा भी चल रही है, लेकिन पक्के नाम जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। खान सर गोलीबारी वाले अपने बयान से अब पलट गए हैं। खान सर ने कल देर रात जो बयान दिया उसके मुताबिक 10 बज रहे थे, ऑनलाइन बैच चल रहा था जब उनके गार्ड को मारा गया। ये दावा उन्होंने किया कि सिर भी फोड़ दिया गया उनके गार्ड का। वो कह रहे हैं कि हमलावर वहां आए और उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर कोचिंग को उड़ा देंगे, बच्चों को पढ़ाते हैं हम। ये दावा है खान सर का, और वो कहते हैं कि जो उनके कोचिंग सेंटर पे हुआ वो एक बचकाना हरकत है। वो कह रहे हैं कि गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कि कोचिंग वाले ही कोई ये लोग थे, पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तारी भी करेगी। उनका ये दावा है कि पहले जो बयान आया था कि गोलीबारी हुई है उससे अब पलट गए, उनका कहना है ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि नामजद FIR की गई है और पहले ये दावा था कि बम चला है, गोलीबारी हुई है, लेकिन अब इस दावे से पलट गए हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है। तो दरअसल सच क्या है ये सवाल बन रहा है। CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें झड़प, हाथापाई नजर आ रही है। गार्ड के ऊपर हमला हुआ है या नहीं, ये भी सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह जुड़ गए, सीधा रुख उन्हीं का करते हैं। रोहित, तोड़फोड़ तो हुई है, हमला हुआ है, ये तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन क्या वहां गोलीबारी हुई या नहीं, इसका क्या पता चल रहा है?
10: जी देखिए, इस वक्त हम खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर ही मौजूद हैं। मुसल्लमपुर हाट पटना में स्थित है और इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर कल देर रात तकरीबन 10 बजे के समय जो है खान सर ने आरोप लगाया कि यहाँ पर पास के ही एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाने वाले हैं ज्ञान बिंदु अकेडमी, उनके लोग यहाँ पर आए थे, मारपीट की और 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की गई है। उन्होंने खान सर ने कहा कि उनके आँख के सामने जो है फायरिंग की घटना घटी, लेकिन जब पुलिस के आला अधिकारी जब मौके पर जाँच करने पहुँचे तो फिर खान सर जो है अपने बयान से पलट गए और उन्होंने गोलीबारी या फायरिंग की किसी भी घटना से जो है उससे अनभिज्ञता जताई। उन्हें नहीं पता है फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जो है वो जांच कर रही है। और अब जो ये ताज़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ज्ञान बिंदु अकेडमी का जो एक सिक्योरिटी गार्ड है चुनचुन, वो जो है अपने कुछ साथियों के साथ आकर कल उसी ने यहाँ पर मारपीट की है और खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो तैनात गार्ड था उसके साथ मारपीट की है। और फिर रात भर पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही थी और फिलहाल आज सुबह की तस्वीरें ये है कि खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आज बंद है, आज खुला नहीं है, क्योंकि माहौल बहुत यहाँ गरमाया हुआ तनावपूर्ण है। खान सर भी रह रहकर अपने संस्थान से बाहर निकल के बालकनी में आकर लोगों से कह रहे हैं, छात्रों से कह रहे हैं कि इस इलाके को खाली कर दें। पुलिस भी अपील कर रही है खान सर से कि भाई रास्ता को आप खाली करवाइए, अपने छात्रों को बोलिए, लेकिन इसके बावजूद भी जो छात्र हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर ये बात लग रहा है कि ये आपसी रंजिश, आपसी वर्चस्व की लड़ाई दो संस्थानों के बीच जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच उसकी लड़ाई है। लेकिन खान सर पर सवाल खड़ा हो रहा है कि खान सर ने आखिर पहले क्यों फायरिंग जैसी मतलब कह सकते हैं संवेदनशील मामले की बात कही कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई उनके आँख के सामने और उसके बाद फिर अचानक वो अपने बयान से जो है वो पलट गए और एक अनभिज्ञता जताई कि उन्हें पता नहीं है कि फायरिंग हुई कि नहीं।
0: जी बिल्कुल, और इस वक्त जान लेते हैं कि किस तरीके से ये ट्विस्ट आया, किस तरह से खान सर अपने गोलीबारी वाले बयान से पलटे हैं, सुनिए।
11: इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो
12: गया। राउंड गोली चला है
11: 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर
13: गोलीबारी भी हुई है।
11: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसे।
0: तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
15: East of the Pacific, making histories of Asian American art. On view now through August 16th at the Columbus Museum of Art. Featuring more than 60 works of artists of Asian descent, the exhibition explores how migration across the Pacific has shaped American art and culture. Experience the stories, perspectives, and artistic contributions that continue to influence our world. Don't miss East of the Pacific, making histories of Asian American art, now through August 16th. Plan your visit today at columbusmuseum.org.
16: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
18: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
19: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
20: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
21: सोच बदलो और बैंक भी।
22: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
23: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
24: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
22: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
25: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
23: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
22: जहां खबर वहां खबरदार।
26: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
27: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: वाराणसी में बुलडोजर कार्रवाई, मल्टीमोडल टर्मिनल परियोजना के लिए रेलवे की जमीन से मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान को हटाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच वाराणसी में चला बुलडोजर, राजघाट क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बने थे कई ढांचे, मीडिया की एंट्री पर भी रोक। 47 एकड़ परियोजना से जुड़ा है वाराणसी का मामला, विवादित भूमि पर कार्रवाई के बाद शाहिद मस्जिद, कब्रिस्तान और हनुमान मंदिर क्षेत्र में मलबा हटाने का काम पूरा। यूपी में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक, एस्मा के तहत सरकार ने जारी की अधिसूचना। सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा आदेश, जनहित का हवाला देकर हड़ताल पर लगी रोक। लखनऊ केजीएमयू में करोड़ों की दवा खरीद घोटाले का खुलासा, सरकारी योजना में फर्जी मरीजों के नाम पर खरीदी गई महंगी दवाएं। 45 लाख की दवा के बिल ने खोली केजीएमयू घोटाले की पोल, यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अपुल गोयल हटाए गए, फार्मासिस्ट सस्पेंड। केजीएमयू दवा घोटाले के बीच मरीज के परिजनों का आरोप, कैंसर कार्ड के बावजूद बाहर से खरीदनी पड़ी महंगी दवाएं। कैंसर मरीज की मौत के बाद परिवार ने उठाए सवाल, बोले अस्पताल में उपलब्ध नहीं कराई गई जरूरी दवाएं। लखनऊ में आज शाम सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। संभल में 1100 बीघा विलुप्त झील के पुनर्जीवन की शुरुआत, प्रशासन ने कब्जा मुक्त कर सीएसआर फंड से शुरू कराया पुनर्स्थापन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, चिलुआताल पर्यटन विकास की करीब 21 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। चुनाव से पहले यूपी में नाम बदलने का सिलसिला शुरू, योगी आदित्यनाथ ने बदला फाजिल नगर का नाम, अब पावागढ़ से जाना जाएगा। अपराध के खिलाफ गाजियाबाद में तीसरे दिन भी पुलिस का एक्शन, खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप तेज, अब तक 3 मदरसे सील, एक पर नोटिस चस्पा। मेरठ में असद एनकाउंटर को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस कार्रवाई के बाद मांगी माफी। आजमगढ़ में यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े युवक को किया गिरफ्तार, महिला नेता की हत्या की साजिश का दावा, आरोपी के पास से पिस्टल बरामद। पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के लिए काम करने और टारगेट किलिंग की तैयारी का आरोप, 9 mm पिस्टल के साथ गिरफ्तारी, हथियारों का जखीरा भी बरामद। मथुरा में स्वयंभू आईआईटी बाबा गिरफ्तार, युवतियों को ब्रेन वॉश कर शोषण करने का आरोप, पीड़िता के बयान पर रेप का मुकदमा दर्ज, पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी। प्रयागराज का एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी, बंद मकान में कारोबारी पत्नी, बेटे और बेटी के खून से लथपथ शव बरामद। बंटी बबली बहू ने मारा, लिखे कार्ड ने बढ़ाई प्रयागराज मर्डर मिस्ट्री, संपत्ति विवाद और करीबी लोगों की भूमिका समेत कई एंगल पर जांच तेज।

0: पाकिस्तान में धुरंधर ने आतंकियों से लेकर भारत के मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जीना मुहाल कर दिया है। धुरंधर का साया ऐसा छाया है कि दाऊद इब्राहिम अब बुरी तरह बौखलाया है। दाऊद गैंग मुंबई से लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना आतंक फैलाने की साजिशें रच रहा है।
1: दाऊद पर धुरंधर का साया डॉन बुरी तरह बौखलाया। मुंबई में सीक्रेट नेटवर्क एक्टिव डी कंपनी का प्लान क्या है? दिल्ली में आईएसआई और अंडरवर्ल्ड आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश। 9 आतंकी गिरफ्तार, उड़ाने वाले थे एयरपोर्ट और पावर प्लांट। विदेशी हथियार और विस्फोटक बरामद, दाऊद गैंग की बड़ी साजिश। धुरंधर ने पाकिस्तानी आतंकी हमजा को निपटाया। धुरंधर ने एक एक करके पाकिस्तान में कई आतंकियों को मौत के मुंह तक पहुंचाया और अब धुरंधर से बौखलाया हुआ है भारत का मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। जी हां, जिस तरह से फिल्म धुरंधर में दाऊद यानी बड़ा साहब को बीमार और बिस्तर पर लेटे हुए आतंकी आखा के तौर पर दिखाया और ये भी दिखाया कि कैसे दाऊद अब कमजोर हो गया है और उसकी पकड़ घट रही है। धुरंधर 2 में दिखाया गया कि दाऊद पाकिस्तान के एक पौश इलाके में रहता है। कहानी में राकेश बेदी के किरदार जमील जमाली ने उसे जहर दे दिया, इसलिए वो लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। फिल्म धुरंधर के इस सीन से दाऊद गैंग बुरी तरह से भड़का हुआ है। वैसे तो फिल्म धुरंधर पाकिस्तान और खाड़ी देशों में बैन हो गई, लेकिन वहां टॉरेंट पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली फिल्मों में से एक बन गई, जिसके बाद दाऊद के गैंग ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया और अब दाऊद इब्राहिम अपने आप को जिंदा और एक्टिव साबित करने के प्लान में जुट गया है। दाऊद गैंग के भीतर ये संदेश देने की कोशिश शुरू हुई है कि दाऊद अभी भी जिंदा है और उसका नेटवर्क सक्रिय है और मुंबई में दाऊद गैंग के नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि नए लोगों की भर्ती कर किसी बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही है और टारगेट पर थे पावर प्लांट, बिजली उत्पादन और वितरण केंद्र, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और दूसरे रणनीतिक महत्व वाले संस्थान, सुरक्षा बलों के जवानों को भी निशाना बनाने।
0: और अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। पंजाब में सियासी हलचल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब खबर माफ कीजिएगा बंगाल में सियासी हलचल बढ़ती ही जा रही है। खबर आ रही है कि इस वक्त ऋतव्रत बैनर्जी, वही एमएलए जो बागी हो चुके थे टीएमसी के, वो इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं और सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि उनके पास समर्थन है। कहा जा रहा है कि करीब 50 विधायकों का समर्थन है, तो क्या जो दूसरे गुट की बात कही जा रही थी वो अब वाकई में होता हुआ नजर आ रहा है? ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में क्या एक और टीएमसी खड़ी की जा रही है? बागी टीएमसी एमएलए ऋतव्रत बैनर्जी ने खुलकर बयान कर दिए थे, साथ ही संदीपन साहा भी, जिनको निष्कासित किया गया था, वो भी बंगाल की विधानसभा पहुंच गए हैं। आपको याद होगा 2 एमएलए निष्कासित कर दिए गए थे। वजह क्या थी? इन दोनों ने ये शिकायत की थी कि इनके हस्ताक्षर जो थे, दस्तावेज जो सबमिट किया गया था कि एलओपी कौन होगा, उसमें उस दस्तावेज पर जाली थे। इस शिकायत के बाद ये कहा गया सुविंदु अधिकारी द्वारा कि बहुत बड़ी जालसाजी हुई है। और अब बड़ी खबर जो आ रही है, सीधा रुख करते हैं अनुपम मिश्र का यह जानने के लिए कि क्या चल रहा है बंगाल में। अनुपम, ये क्या सियासी चक्र चल रहा है?
2: ये देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। फिलहाल हम लोग पश्चिम बंगाल विधानसभा जो है उसके ठीक सामने हैं और यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके जो टीएमसी विधायक है वो काले कांच की रोशनी में निकल रहे हैं, काले कांच की उसमें निकल रहे हैं। और
0: जी जैसा कि हमें अनुपम बता रहे हैं और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक एक करके एमएलए की कार्स, विधायकों की गाड़ियां, आप देख सकते हैं कि विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रही हैं। चलिए वापस अनुपम से कोशिश करते बात करने की। अनुपम बताइए,
3: बिल्कुल देखिए यहाँ पर असेंबली में एक एक करके जो टीएमसी के एमएलए हैं वो एक एक करके निकल घुस रहे हैं और अभी तक तीन से चार जो विधायक हैं वो काले कांच की गाड़ियों में भीतर आ रहे हैं। जो डेवलपमेंट है, जो बात समझ में आ रही है कि ऋतुप्रतो बैनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में एक अलग धड़ा टीएमसी का वो अलग होने की कोशिश में है और वो हो सकता है कि 50 या 60 विधायकों के सिग्नेचर लेके आज असेंबली में वो दावा करें असली तृणमूल कांग्रेस होने का। तो तृणमूल कांग्रेस दो टुकड़ों में बट सकती है, उसकी पूरी पूरी आशंका जो कल परसों से ही दिखाई दे रही थी वो इस वक्त यहाँ पर नजर होती आ रही है। एक एक करके एमएलएज इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, अब तक लगभग तीन से चार एमएलएज असेंबली में पहुंच चुके हैं और आपको मैं विजुअल्स भी दे रहा हूँ। और ये देखिए, ये असेंबली है पश्चिम बंगाल असेंबली और फिलहाल रिपोर्टर्स जो कैमरामैन है वो भीतर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तीन से चार विधायक असीमा पात्र, ऋतुप्रतो बैनर्जी और भी एक दो लोग भीतर पहुंचे हैं। काले कांच की गाड़ियों में दो तीन लोग गए हैं, तो कौन लोग हैं, टीएमसी के एमएलए हैं लेकिन काले कांच की गाड़ियों में घुसे हैं, तो तीन से चार विधायक ऑलमोस्ट यहां पर पहुंच चुके हैं। तो नया डेवलपमेंट वो सामने आ रहा है वो यही है कि ऋतुप्रतो बैनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में कई लोग जो टीएमसी के विधायक हैं जो अनुपस्थित रह रहे थे, आपको मालूम होगा कि कालीघाट में रविवार को ममता बनर्जी के आवास पर एक मीटिंग हुई थी जहां 60 विधायक अनुपस्थित थे, सिर्फ 20 विधायक आए थे और उनमें से ज्यादातर लोगों के संभावना है कि यहां पर उनके सिग्नेचर्स लेकर जो बात सुनी जा रही है कि ऋतुप्रतो भट्टाचार्य बैनर्जी भीतर पहुंचे और असेंबली में उन्होंने वो देने की कोशिश करें, ये बात अभी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ये बात ऋतुप्रतो के मुंह से हमें सुननी बाकी है लेकिन अटकलें इसी पर चल रही है।
0: बिल्कुल अनुपम, और यहां तक बात पहुंची है, इससे पहले एक लंबा सिलसिला चला है मीटिंग्स का, बैठकों का, एमएलए हॉस्टल हो या फिर होटल में मीटिंगें हुई हो, गुप्त मीटिंग्स किस किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से चली थी थोड़ा जानकारी दें।
3: जी देखिए, सबसे पहले कुणाल घोष ने दावा किया, ये भी देखिए काले कांच की गाड़ी में, ये देखिए एक और विधायक काला कांच है इस गाड़ी के ऊपर। यहाँ पर एक एक करके जो विधायक है टीएमसी विधायक पहुंच रहे हैं और जो सबसे पहले टीएमसी के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, उनके मुंह से निकला था कि होटल गेटवे में एक गुप्त मीटिंग हुई थी जहां पर लगभग 20 विधायक थे और इसके बाद सिग्नेचर्स लेने के लिए सभी विधायकों को फोन किया जा रहा था। तो ये दो तीन दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था और आपको घटनाक्रम पूरी तरह से मालूम है। सबसे पहले ऋतुप्रतो बैनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाला गया, लेकिन उन्हें पार्टी से निकालने से पहले शुभेंदु अधिकारी जब असेंबली हॉल में थे स्पीकर के चैम्बर में, तब संदीपन साहा और ऋतुप्रतो ने वहां पर मीटिंग की थी, एक बैठक भी की थी जिसमें वो शामिल हुए थे और 15-20 मिनट तक ये बैठक चली थी। उसके बाद से ही अटकलें शुरू हो गई थी और इसके बाद एक गुप्त मीटिंग हुई जिसकी सूचना गेटवे होटल में होने की बात सामने आ रही थी। यहां पर देखिए कई सारी गाड़ियां, गतिविधियां तेज हो गई हैं आज असेंबली में। असेंबली में एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं जो टीएमसी के विधायक हैं और ये जो गुप्त मीटिंग की बात सामने आ रही थी ये कुणाल घोष ने सबसे पहले कही थी और उसके बाद से ही अटकलों का बाजार बहुत तेज हो गया था कि टीएमसी का एक धड़ा जहां पर 50 से 60 विधायक हैं वो अपने साथ एक साथ होकर टीएमसी से अलग नहीं, खुद को ही असली टीएमसी हो सकता है, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था वैसी एक संभावना, वैसी एक आशंका शुरू हुई थी। और ये देखिए, ये एक और गाड़ी घुस रही है, पहुंच रही है। यहाँ पर देखिए एक एक करके लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, टीएमसी के विधायक एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं, तो कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है लेकिन सब भीतर पहुंच रहे हैं। तो ये खेला हो गया है, जो अभी तक समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी के साथ खेला हो चुका है और यहां पर टीएमसी के जो असंतुष्ट विधायक जो पिछले कई दिनों से टीएमसी के साथ नहीं दिख रहे थे, ममता बनर्जी के साथ नहीं दिख रहे थे, वो एक अलग धड़ा बनाने की जो अटकलें तेज हो रही थी उन पर लगभग मोहर लगती दिख रही है।
0: जी बिल्कुल अनुपम, आप बने रहे, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये फूट की जो खबर है इसके बारे में आज तक नहीं आपको सबसे पहले दिखाया था, और ये तस्वीरें भी हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त एक और कार घुस रही है विधानसभा के अंदर, और वहां पहुंचे हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा। अनुपम, असंतोष क्या है इन सभी एमएलए, इन सभी विधायकों के अंदर, किस वजह से ये इतना बड़ा गुट ताश के पत्तों की तरह ढह रही है टीएमसी, क्या वजह है इसके पीछे?
3: देखिए, प्राइमरली जो समझ में आ रहा है, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी आगे चल रही थी, आईपैक को जो पूरा का पूरा भार दिया गया था, उसके खिलाफ इससे पहले भी कई बार आवाज उठी थी, लेकिन जब तक टीएमसी सत्ता में थी, टीएमसी के विधायक और टीएमसी के नेता मंत्री इस बारे में बहुत कम बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही टीएमसी की हार हुई, ये सारी बातें सामने आनी शुरू हुई। किस तरह से लोग अभिषेक बनर्जी से मुलाकात तक नहीं कर पाते थे, उनसे फोन पर बातचीत नहीं हो पाती थी, एक छत्र एक तरह से राज चल रहा था अभिषेक बनर्जी का। तो मूलतः प्राइमरली जो अभी तक समझ में आ रहा है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये गुस्सा था, और अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से पार्टी में तरजीह दी गई, उनकी उम्र काफी कम होने के बावजूद उनको पार्टी में दूसरे नंबर का स्थान दिया गया, जो बहुत सारे टीएमसी विधायक जो उम्र में उनसे बड़े थे, अनुभव में उनसे ज्यादा थे, उनको तरजीह नहीं दी गई। ऐसे में देखिए एक और गाड़ी प्रवेश कर रही है, तो मूलतः जो समझ में आ रहा है कि इसी वजह से ये जो गुस्सा था वो धीरे धीरे पनपा और अलग तरीके से निकलने लगा।
0: बिल्कुल, और गाड़ियों की झड़ी लग गई है इस वक्त। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त कौन सी बड़ी खबर आई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई, जो हम आपको बता रहे हैं, टीएमसी के बागी एमएलए ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा बंगाल विधानसभा पहुंच रहे हैं। बंगाल की राजनीति में भारी हलचल है, बागी टीएमसी विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, एक एक करके कार प्रवेश कर रही है विधानसभा के परिसर में, और राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। माना यही जा रहा है कि सूत्र कहते हैं कि 50 से अधिक विधायक एक गुट बनाकर समर्थन हासिल करके अपने आप को टीएमसी घोषित करना चाहते हैं। तो अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी रिधि दत्ता हमारे साथ टीएमसी के पूर्व नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं से सवाल पूछते हैं, क्या वजह लग रही है आपको कि इस तरह से टूट इतनी जल्दी होती हुई नजर आ रही है? चंद दिन हुए हैं बंगाल का चुनाव हारे हुए और ये हालत हो गई है टीएमसी की।
4: देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि एक तीन टाइम की पार्टी जो तीन टाइम सत्ता में रही है 15 साल, 215 सीटें थी उनके पास, वो उनको 80 विधायक मिले, और उसके बाद भी अगर घर ऐसे टूटता है तो सवाल तो नेतृत्व पे खड़ा होता है। ये खबर मैंने ही बोला था, ब्रेक किया था नेशनल मीडिया में 2 दिन पहले, जो आज सही हो रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये पार्टी चला रही थी एक बाहर की संस्था जिसका नाम था आईपैक। ये लोग पैसे देके पंचायत के टिकट बेच रहे थे, जिला परिषद के टिकट बेच रहे थे, विधानसभा के टिकट बेच रहे थे। हजारों बार बहुत लोगों ने आवाज उठाया, किसी को किसी की बात दबाई दी गई, किसी को चमकाया गया, किसी को धमकाया गया, कोई एक हेड कल्चर पार्टी के अंदर चल रहा था। विधायक सांसद जो पार्टी के युवराज हैं, उन्होंने विधायक सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सबको नौकर और नौकर से भी बदतर तरीके से उनके साथ सलूक किया गया। अगर पार्टी के खिलाफ कोई जाता तो उनके ऊपर आर्म्स केस, गांजा केस, नारकोटिक्स केस, ये सब दिया जाता था। तो इस हेड कल्चर में सभी चुप थे। अभी जब सत्ता परिवर्तन हो गया, भय मुक्त हो गए सब, अब सब बोल रहे हैं। आज अगर विधानसभा में एंटी डिफेक्शन लॉ से बचना है तो 52 विधायकों का साइन चाहिए। अगर 52 से ज्यादा विधायक साइन करके एक असली तृणमूल का गठन होता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक दिन का बात नहीं है, ये सालों का गुस्सा है जो बाहर आ रहा है। कोई ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, मैं आपको अभी भी आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, पर ममता बनर्जी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि उनके पीछे क्या हो रहा है। पार्टी उनकी थी, कमान उनके हाथ में रखना चाहिए था दीदी को।
0: क्यों, भतीजे का मोह था क्या? दत्ता साहब, आपको क्या लगता है क्यों किया ऐसा दीदी ने?
4: इंग्लिश में एक बहुत पुराना शेक्सपियरन कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। क्या कहें इसके बाद। हम दीदी के ऊपर, देखिए हम दीदी को इतना सम्मान करते हैं, दीदी के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, बट जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है। ऐसे नहीं चल सकता था, ऐसे नहीं चल सकता था। ये तो शिवसेना मॉडल चल रहा है ना अभी बंगाल में, और इसमें अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये तो चलिए आप देख रहे हैं कि लेजिस्लेटर्स जाके साइन कर रहे हैं, पार्टी टूट रही है, कोई दूसरा नेता प्रतिपक्ष बनेगा, आने वाले दिन में तृणमूल के सिंबल के ऊपर हक जताया जाएगा, ये सब होगा। पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दीदी को अभी भी नहीं पता कि दीदी के साथ अभी भी 2-3 हमजा लगारी घूम रहे हैं।
0: दत्ता साहब, आपको क्या लगता है आज क्या ये 52 का आंकड़ा पार हो जाएगा? क्योंकि जो सूत्र कह रहे हैं वो 50 से अधिक ऐसा कह रहे हैं। आपके दोस्त होंगे, कुछ आपके जानने वाले होंगे इन विधायकों में, क्या 52 का आंकड़ा पार हो जाएगा? क्या वाकई में आज टीएमसी का स्वरूप बदल जाएगा?
4: देखिए मैं एक सीधी बात कहता हूँ, इन विधायकों में जो लोग हैं सभी मेरे जान पहचान के हैं, क्योंकि मैंने 15 साल इनके साथ एक ही पार्टी की है, तो इसमें तो कोई अनजान व्यक्ति नहीं है और सबके साथ मेरा अच्छा रिश्ता है। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आज और कल में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए पिछले दिन स्पीकर साहब नहीं थे, वो दिल्ली गए थे शायद होम मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो स्पीकर साहब आज विधानसभा में रहेंगे
0: जी।
4: अब अगर फ्लोट टेस्ट होता है तो फ्लोट टेस्ट होगा, पर आपको इतना बता दूं कि अगर तृणमूल तोड़ना है तो मिनिमम 52 विधायक चाहिए
0: जी,
4: और 52 विधायक जब होंगे तभी लोग स्पीकर के पास जाएंगे, है ना
0: जी। बिल्कुल दत्ता साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से रिजू दत्ता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आत्मविश्वास होगा 52 का, तभी विधानसभा का रुख किया है। तो सीधा हम भी विधानसभा का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र लगातार मौजूद है। अनुपम, अब तो काले शीशे नीचे होते जा रहे हैं और खुलकर चेहरा दिखा रहे हैं, विधानसभा पहुंच रहे ये सभी विधायक।
3: जी बिल्कुल, कई विधायक अब तक लगभग 8 से 10 विधायक टीएमसी के भीतर पहुंच चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इनके साथ हैं। हालांकि अभी तक खुलकर साफ तौर पर स्पष्ट कोई नहीं कर रहा है कि इनके साथ कितने विधायक हैं, क्या इनके पास चिट्ठी है 59 या 60 जितने भी नंबर से उनकी, ये अभी तक खुलासा कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो अचानक से बढ़ी गतिविधि है, ये साफ दर्शा रही है कि कुछ न कुछ तो भीतर चल रहा है, अचानक से इनके इतने विधायकों का भीतर घुसना। लेकिन अभी भी संख्या कम है, क्योंकि अगर आपको डिफेक्ट होना है, अलग होना है, तो काफी संख्या में 52 से ज्यादा चाहिए। तो ऐसे में जो संख्या अभी तक हम देख रहे हैं, 8 से 10 लोग अभी भीतर पहुंचे हैं, धीरे धीरे एक एक करके पहुंच भी रहे हैं। ये एक गाड़ी नहीं, ये दूसरी गाड़ी है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या 50 से ज्यादा टीएमसी के विधायक यहां आते हैं, या जो चिट्ठी अगर जो बात कही जा रही है अगर है कि नहीं है, अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है उस पर, क्या उस पर दस्तखत हैं 50 से ज्यादा लोगों के, या 60, या जैसे की बात हो रही है 59। तो ये सब अभी खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो गतिविधियां हैं उनसे एक तरफ तो साफ पता चल रहा है कि भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है, इतने विधायक अचानक से भीतर पहुंच रहे हैं।
0: जी अनुपम, इस खबर पर रखेंगे हम अपनी नजर। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां टीएमसी में फूट पड़ने की खबर है। कहा जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल करके बागी खेमे के नेता ऋतुव्रत बैनर्जी विधानसभा पहुंच गए। उनके साथ संदीपन साहा दूसरे निष्कासित नेता हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। तो 50 से ज्यादा नेताओं की अगर लिस्ट उनके पास रहती है, उनका समर्थन रहता है, तो हो सकता है कि वो ये दावा कर दें कि वही असली टीएमसी है। एलओपी के पद पर वो अपना हक जताना चाहते हैं। एक एक कर सभी बागी नेता खुलकर अब बोलने भी लगे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Consider

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: वन सेकंड, यू आर एंजॉयिंग योर फर्स्ट डे ऑफ इन फॉरएवर. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
6: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने की तैयारी।
1: हार के बाद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होंगी ममता बनर्जी। पार्टी में टूट की खबरों के बीच में अकेली पड़ी, धरने में आए सिर्फ 8 एमएलए, बागियों ने कहा हम हैं असली टीएमसी।
0: कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिवकुमार। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। ज्योतिषियों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा।

0: बारी वाले बयान से पलटे खान, पहले कहा था गोली चली, दो कोचिंग सेंटर्स में वर्चस्व की लड़ाई का मामला आया।
1: बम बारूद मिसाइल से फिर तराया मिडल ईस्ट, कुवैत के यूएस बेस पर ईरान का ड्रोन हमला, बहरीन में गूंजे सायरन, अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर है। टीएमसी के बागी एमएलए वित्रत बैनर्जी और संदीप अंसार बंगाल विधानसभा पहुंचे हैं। और बड़ी खबर आपको दे रहे, टीएमसी के बागी गुट के 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल होने हैं। जी हां, 50 से ज्यादा विधायकों का जानकारी मिल रहे हैं। बागी खेमे की ओर से ऋतुपत बैनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं।
0: तो ये पहले से सुगाहट तेज थी कि अलग हो सकते हैं ये टीएमसी से, और आज इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसको अमली जामा बनाने की तैयारी, क्या कुछ कह रहे हैं बागी एमएलए, सुनिए।
2: সেইটা দেখুন দেখুন, আমাদের মিটিংটা হোক, মিটিংটা না হলে কিছু বলতে পারবেন না। মিটিংটা হোক, দেখতে পারবেন, সংখ্যাটা দেখতে পারবেন, মোর দ্যান টু থার্ড,
3: মোর দ্যান টু থার্ড।
4: সন্দীপের সাথে মেরা পার্সোনাল কাম হ্যায়, মেয়ে অন্দর যা রা হুম, জানে দিজিয়ে, উসকে বাদ আনে কে টাইম বতা দুঙ্গা কিয়া হুয়া কি নিয়ে। ঠিক
5: আছে, ঋতুব্রত ইয়া ফির সন্দীপ দা সে কোই বাত হুই আপকি?
4: নাই, ও লোক তো মেরা কলিগ থে, দো দিন পহলে ভি থে। হর বক বাত চলতা থা, হো রা হ্যায়, লেকিন ক্লিয়ার কুছ বাত নাই হুয়া। আবি
6: দাদা এক সওয়াল, ইয়াহা পে 52 লোগো সে জ্যাদা কা সিগনেচার হোনে সে তভি তো হো সকতা হ্যায় না?
4: अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया, सुन रहा हूँ, लेकिन
6: आपने किया है?
4: मेरा भी सिग्नेचर है उसमें।
6: आपने कर दिया?
4: जी जी।
6: तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये?
4: नहीं, मेरे पर्सनल उसे
5: विरोध मेनली
6: अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक की
4: वजह से? नहीं, दल के खिलाफ नहीं है। मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर, एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में सुविधा होगा।
6: ठीक, दादा एक सवाल है, क्या आज हिंदी में दादा, आज तक
7: हम बताइए
6: क्या स्थिति है, कितने लोग आप लोगों के साथ हैं?
7: विधानसभा में जा रहा हूँ, विधायक हूँ, तो उससे कुछ काम है, बाकी जो बात है।
6: कुछ लोग तो बोल रहे हैं साइन हो गया है, 59 लोगों का सिग्नेचर मिल चुका है।
7: जो बोल रहा है उनसे पूछ लीजिए।
6: आपने किया है क्या सिग्नेचर?
7: अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहूंगा।
6: हाँ।
7: विधानसभा में जा रहा हूँ, कुछ काम है, काम के बाद जो है।
6: ये गुस्सा किसके, अभिषेक के खिलाफ है? आप लोग पहुँच भी नहीं रहे हैं दीदी,
7: बाद में बात करेंगे। चलो
8: বাদ মে জানেন আপনি, আধ ঘন্টা বাদ ই পরিষ্কার হয়ে যায়গা।
6: আপনি
8: বলে আধ ঘন্টা বাদ পরিষ্কার হয়ে যায়গা।
6: 52 লোকের সে জ্যাদা হ্যায় ক্যা?
8: अरे बोलिए तो, हम तो बोल रहा है।
6: इन मीटिंग में कौन कौन रहेंगे सर?
8: चलो चलो चलो,
6: मीटिंग में कौन कौन रहेंगे?
9: साइन किया क्या
6: आपने? साइन किया है?
8: हाँ किया किया किया किया।
0: विधानसभा पहुंचे हैं बागी टीएमसी एमएलए ऋतुव्रत बैनर्जी, जो नेता प्रतिपक्ष यानी कि एलओपी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ये कहना है उनके पास 50 से ज्यादा एमएलए। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, 50 से ज्यादा 59 संख्या माने या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से आपने बातचीत की, कुछ बागी विधायकों से, वो अलग अलग वर्जन दे रहे हैं, क्या हो सकता है नंबर?
10: जी देखिए, अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो बात जो बागी विधायक कह रहे हैं कि 59 के आसपास उनके पास नंबर्स हैं, ये बात एक दो एमएलए जैसे भरतपुर के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि 59 एमएलए हमारे साथ हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। जब मैंने पूछा था कि 50 से ज्यादा 52 से ज्यादा होने चाहिए, तब उन्होंने कहा कि 59 एमएलए हमारे साथ हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स हैं। ऑलरेडी 15 से 20 टीएमसी विधायक इस वक्त असेंबली के भीतर पहुंच चुके हैं, और ये असेंबली मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं। लगभग आधा घंटा 40 मिनट पहले से ये गतिविधियां शुरू हुई। ऋतुव्रतो भट्टाचार्य बैनर्जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। ऋतुव्रतो सबसे पहले असेंबली पहुंचे, ऋतुव्रतो के असेंबली पहुंचने के ठीक बाद ही एमएलए का तांता लगना शुरू हो गया। लगभग 15 से 20 विधायक लगातार धीरे धीरे करके घुस रहे हैं। कुछ लोगों के जो गाड़ी हैं उनके कांच काले हैं, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से विधायक हैं, लेकिन काफी सारे विधायक जो हमें पता हैं वो भीतर पहुंच चुके हैं। 15 से 20 विधायकों की संख्या तो ऑलरेडी हमने यहां से देखी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या सभी विधायक जो
1: अनुपम ऋतुव्रत दावा कर रहे हैं अब उनके साथ हैं या नहीं, ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना भी तय है कि ममता बनर्जी के साथ वो नहीं है, क्योंकि ममता ने जब बैठक के लिए बुलाया, जब धरने पर बुलाया तो कोई भी नहीं आया, जो आए बड़ी कम संख्या में थे। अब सवाल ये है कि जो ये बागी हैं या जो नाराज हैं, इनका मकसद क्या सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करना या पार्टी और सिंबल पर भी ये दावा ठोकेंगे?
10: जी देखिए, अभी तक तो वो पूरी तरह से साफ नहीं है कि क्या असली मकसद क्या है। एक विधायक से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हम ठीक ठाक तरीके से असेंबली में बैठ सकें, असेंबली चला सकें, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो प्राइमरी तौर पर एक तो असंतुष्ट हैं, ये तो साफ बात है। दूसरा, क्या वो पार्टी लोगों के लिए भी दावा करेंगे? क्या असली तृणमूल वो है, इस तरह का दावा करेंगे जैसा कि हमने कुछ साल पहले महाराष्ट्र में जो हुआ था वो देखा था? तो ये सब
0: क्लैरिटी की तर्ज पर यहां पर टीएमसी दो फाड़ हो जाएगी, दो दलों में बट जाएगी, नाम वही रहेगा, पार्टी सिंबल वही रहेगा जैसा कि शिवसेना में हुआ था।
1: और इस बीच में यह बड़ी खबर है कि 15 से 20 जो बागी हैं, आप नाराज कह सकते हैं, अभी वो विधानसभा पहुंच गए हैं। संदीपन ऋतुव्रत जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अब अदा करते दिख रहे हैं वो भी पहुंच गए हैं। अनुपम, अभी 15 से 20 ही पहुंचे हैं, और क्या ये सभी जो नाराज हैं क्या ये एक साथ ठहरे हैं या अपने अपने जगहों पर हैं, सबको एक साथ बुलाया गया विधानसभा में, कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है इनके साथ?
10: जी देखिए, अभी तक जो जानकारी है, ऋतुव्रतो बनर्जी और संदीपन साहा ये दोनों ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फोन पर बातचीत हुई है, कुछ एमएलए जो एमएलए हॉस्टल है कोलकाता में वहां ठहरे हुए हैं, कुछ अपने घर से आ रहे हैं। अब जैसे बाहर के जो विधायक हैं वो एमएलए हॉस्टल में थे, एमएलए हॉस्टल से यहां निकल कर आ रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन का जो काम हुआ है, जो अभी तक जो जानकारी है वो संदीपन साहा और ऋतुव्रतो के नेतृत्व में हुआ है। अब जैसे देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता टीएमसी के जावेद खान वो भी भीतर पहुंचे हैं, हालांकि उन्होंने कुछ बातचीत नहीं की और उनका मतलब वो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं। तो कद्दावर नेता भी इस वक्त जो है ममता के खिलाफ हैं और वो भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये संख्या कितनी जाती है वो देखने वाली बात होगी। और जहां तक अभी तक पता चल रहा है, जो जिस तरह की गतिविधियां हम देख रहे हैं, एक बात तो साफ है कि टीएमसी दोफाड़ होने का जो संकेत है वो पूरी तरह से साफ है।
0: इसके अलावा अनुपम, मेरा आपसे वही सवाल था कि महाराष्ट्र की तर्ज पर ये तैयारी हो रही है टीएमसी द्वारा, जैसा कि वहां देखा था हमने?
10: जी देखिए, महाराष्ट्र की तर्ज पर ही जाता हुआ मामला फिलहाल तो दिख रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब ये जो नाराज विधायक हैं इनके पास संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी हो रही है। ये जैसा कि दावा कर रहे हैं 59 इनके पास संख्या है, ऐसे में अब जब 59 हो जाते हैं इनकी संख्या तो टीएमसी विधायक बहुत कम रह जाएंगे जो ओरिजिनल टीएमसी है। तो ऐसे में क्या ये अपने को ओरिजिनल टीएमसी के लिए दावा करेंगे, क्या वो लोगों के लिए दावा करेंगे, चुनाव चिन्ह का जो है उस पर दावा ठोकेंगे, पार्टी का ठोकेंगे, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल तो एक बात स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस दो हिस्सों में बंटने जा रही है, उसके पूरे पूरे संकेत
1: तो दिख रहे हैं। लेकिन अनुपम, बड़ा सवाल यह है कि जिस तृणमूल कांग्रेस पर ममता बनर्जी की डोमिनेंस रहती थी, वो ममता बनर्जी इतनी बेबस आखिर कैसे दिखाई दे रहे हैं? जो बाकी नेता है जो पहले कभी नहीं बोलते थे, अब खुलकर बोलने लगे, एक बार सुना देते हैं कह क्या रहे हैं बाकी नेता।
4: अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया, सुन रहा हूँ, लेकिन
10: आपने किया है?
4: मेरा भी सिग्नेचर है,
10: आपने कर दिया?
4: जी जी।
10: तो ये मीटिंग कहाँ, गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये?
4: नहीं, मेरे पास सुना उनसे।
10: विरोध मेनली, विरोध मेनली अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक की वजह से?
4: नहीं नहीं, दल के खिलाफ नहीं है। मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर, वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए, इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में सुविधा होगा।
3: দাদা গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় আপনাদের দেখা গেল না, আজকে হঠাৎ বিধানসভায় কি কারণে?
9: না না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিটিং এ আমি
11: কি কাজ বলতে হবে?
12: না
11: না না না আমার কাজ আছে, পার্সোনাল কাজ আছে, আমার সমস্ত সব ডকুমেন্টস নিতে হবে, আই কার্ড গুলো নিতে হবে।
0: अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जब आपने सवाल पूछा कि समर्थन पत्र पर कितनों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो कुछ ने ठीक ठाक हाँ या ना में जवाब दे दिया, किसी ने गोलमोल कर दिया, आखिरकार हुए कितने हस्ताक्षर हैं इस पर कोई जानकारी? और दूसरा सवाल मेरा ये कि नाराजगी दरअसल किससे है? ममता बैनर्जी से प्रमुख तौर पर नाराजगी है, अभिषेक बैनर्जी से नाराजगी है, या फिर ओवरऑल ये कहें क्योंकि एक बड़ी हार हुई है और एक कहावत है कि सुख के साथी सब हैं, दुख में सुमिरन न कोई, यानी कि जब हार हुई पार्टी की तो सब अलग थलग पड़ गए।
10: जी देखिए, अभी तक सूत्रों से जो पता चल रहा है कि जो नंबर्स हैं वो 59 के आसपास इनके पास हैं। ऐसे में कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है जो कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि 59 उनके पास नंबर्स हैं। अब सवाल दूसरा आ रहा है कि किससे नाराजगी है। देखिए, प्राइमरीली जो नाराजगी है अभिषेक बैनर्जी से नाराजगी है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो है कि इतनी बड़ी हार, और ये अप्रत्याशित हार थी, टीएमसी के लोगों ने संभवतः सोचा भी नहीं था कि इस तरह की हार होगी। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जो नेतृत्व के दौरान जो गुस्सा था, जो रोष था, वो अब बाहर निकल के आना शुरू हुआ। कुछ लोग आईपैक को भी दोष दे रहे हैं कि और आईपैक को लाने के पीछे अभिषेक बनर्जी थे, अभिषेक बनर्जी से मिलने तक को समय नहीं मिल पाता था, ऐसी बातें भी अब सामने आ रही हैं। तो ये सब फैक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल लग रहे हैं। तो मुख्य फैक्टर फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व।
1: हैरत यह भी होती है कि ये वो पार्टी है जो साथ में कुछ दिनों पहले तक चुनाव लड़ रही थी और के भीतर इतना संतोष था, मतलब एकाएक वो उबाल फूट सा पड़ा है। मेरा सवाल ममता बनर्जी के लीडरशिप को लेकर भी है कि ममता क्या बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है कि वो इसे रोक नहीं पा रहे हैं?
10: देखो के स्पीकर, देखिए देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं जो स्पीकर हैं, जो स्पीकर कल दिल्ली गए हुए थे, असेंबली स्पीकर, वो अब यहां पर पहुंच रहे हैं, अंदर पहुंच रहे हैं। तो जो कड़ियां हैं वो अब मिलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि कल ही एक खबर आई थी कि कल ही ये सब हो सकता है, लेकिन कल चूंकि असेंबली स्पीकर दिल्ली में थे इस वजह से वो नहीं हो पाया, और आज असेंबली स्पीकर के असेंबली में आने की बात थी, तो ऐसे में असेंबली स्पीकर अब भीतर पहुंच रहे हैं, उन्होंने कुछ बातचीत नहीं की है। और आप देखिए, कड़ियां अब मिलनी शुरू हो गई हैं, असेंबली स्पीकर के पास जाकर दावा ठोका जा सकता है, चिट्ठी दिखाई जा सकती है। ऐसे में जब थोड़ी देर में बाहर आएंगे विधायक, तो वो चिट्ठी कितने हस्ताक्षर हैं वो कितने महत्वपूर्ण होगा देखना कि उनके पास कितने नंबर्स हैं, भीतर में क्या हुआ, इसके बाद वो किस तरह की।
0: एक बार तस्वीरें भी दिखाइए वहां की, क्योंकि हलचल तेज है वहां पर अनुपम, एक एक करके वहां पर विधायकों का सिलसिला आने का जारी है, आप प्रतिक्रियाएं भी ले रहे थे, एक बार पूरी तस्वीर दिखाइए इस वक्त।
10: जी देखिए, बिल्कुल, मैं अभी विधानसभा के बाहर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां गतिविधियां काफी तेज हैं। अभी अभी जो विधानसभा का स्पीकर हैं वो भीतर पहुंचे हैं, इससे पहले हमने देखा एक जो असेंबली के लिए
1: लेजिस्लेटिव। अनुपम, आपके पास लौटते हैं, आप जो जानकारी दे रहे थे एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि बंगाल विधानसभा में स्पीकर पहुंच गए और बहुत ज्यादा हलचलें तेज हैं, क्योंकि बाकी विधायक भी अभी 15 से 20 की संख्या में बताया जा रहा है कि पहुंच गए हैं, और ये संख्या भी अब लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या होगा टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा? साल 1998 में बनी पार्टी और एक लंबी लड़ाई लड़ी, 2011 में सत्ता में आए, मतलब इतने आंदोलन टीएमसी ने किए, एकजुट किया, और एकाएक जब चुनाव हारती है सत्ता में बने रहने के बाद इतने सालों के बाद, और उसके बाद इतनी बड़ी टूट हो जाती है, इतने बड़े बड़े जो नेता हैं वो एकाएक नाराजगी जाहिर करने लगते हैं।
0: तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, आपके पास क्या अपडेट है, कितने हैं बागी, कितने नंबर्स हैं, कितनों ने हस्ताक्षर किए हैं?
12: देखिए तकरीबन 59 जो नंबर है ये सामने आ रहा है। कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी संदीपन साहा के साथ और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2/3 से ज्यादा लोग उनके साथ हैं, यानी वो क्लेम कर सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। कुछ ही देर पहले ठीक 11:15 पे असेंबली के स्पीकर भी आ पहुंचे हैं। अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जितने सारे विधायक अभी तक तृणमूल कांग्रेस के पहुंचे, कई सारे कद्दावर नेता पहुंच चुके हैं जो विधायक जो स्पीकर से मिलेंगे और मिलने के बाद अपना दावा ठोकेंगे और उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन है विपक्ष के नेता उन्हें चुना जाएगा और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नाम पे ही ये कहा जाएगा कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को। आप देख सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक विधायक जो है वो आप पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता जो है आप पहुंच रहे हैं और इनमें से ज्यादातर अगर नाम कहा जाए तो अरूप रॉय, रथीन घोष, ये लोग सारे कद्दावर नेता रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ शुरू से पहले दिन से ही वो सड़कों पर थे। पार्टी जब से बनी है तब से थे, लेकिन लोगों में यही नाराजगी थी कि जिस तरीके से पार्टी 2021 के बाद से चलना शुरू हुआ, पार्टी के आला कमान के पास पहुंचना ही लगभग नामुमकिन हो गया था। अभिषेक बनर्जी इस तरीके से
1: जैसे अनुपम आप बात भी कर रहे थे जो वहां पर जा रहे हैं बागी विधायक, जैसे मुस्तफिजुर कह रहे थे कि हमें पार्टी नहीं चाहिए, हम तो नेता प्रतिपक्ष का पद लेना चाहते हैं, लेकिन इस पर भरोसा कैसे किया जाए कि सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का पद चाहते हैं? और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का ही पद क्यों चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि टीम सी हर जगह रहे, स्ट्रांग रहे, तो फिर तो आपको पार्टी भी लेनी चाहिए, लेकिन सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का पद कहना, सिर्फ ये कहने के लिए क्या ये बात कही जा रही?
10: जी बिल्कुल, फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि ये कहने के लिए ये बात कही जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अभी थोड़ी देर में इन सब पूरी बातों का खुलासा होगा। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 59 विधायक इनके साथ हैं, इनके पास उनकी चिट्ठी है, हस्ताक्षर है, तो ये जो प्रक्रिया है ये असेंबली स्पीकर को देंगे। असेंबली स्पीकर उसके बाद क्या निर्णय लेता है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये लोग आके क्या बोलते हैं कि क्या ये नई पार्टी फॉर्म कर रहे हैं या फिर तृणमूल जो असली तृणमूल है उसकी दावेदारी ठोक रहे हैं, किस तरह से आगे ये कार्यवाही करेंगे, इस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वो क्या रणनीति तय कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो जो दो नेता हैं ऋतुव्रत और संदीपन साहा, इन दोनों के नेतृत्व में ही ये सब हो रहा है, लेकिन बाकी जो 2-3 और कद्दावर नेता हैं जैसे जावेद खान, अरूप रॉय, ये काफी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, तो इनकी भूमिका क्या होगी ये सब भी तय होना बाकी है और ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। अभी फिलहाल इसके बारे में तो बताना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई और बहुत जल्दी टूट गई, जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ममता बनर्जी, जिन्होंने एक अग्निकन्या या लड़ाकू नेत्री के तौर पर अपनी पूरी इमेज बनाई, पूरी पार्टी को खड़ा किया, इतने 15 सालों तक राज किया और 15 सालों के बाद मतलब मुश्किल से 1.5 महीने भी नहीं लग रहे हैं कि पार्टी टूट जा रही है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी में भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा असंतोष था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा मतभेद और मनभेद था, जिसके चलते आज ये हालत हुई है।
0: ठीक है, जब तक सत्ता में थे तब तक मतभेद और मनभेद सामने नहीं आए थे, लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं बीता है काउंटिंग को, 4 मई को काउंटिंग हुई थी, आज 3 जून है और उससे पहले ही सबने अपना संतोष जाहिर कर दिया है, अलग पार्टी बना रहे हैं। पहले ममता बनर्जी के सामने टीएमसी के टूट से संकट साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ममता ऐसा दिखा रही जैसे वो इतनी जल्दी परास्त नहीं होने वाली
13: है। आज के गद्दारी করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান।
1: तो ये ममता बनर्जी का आपने बयान सुना अनुपम, ममता बनर्जी का बयान, मेरा सवाल ये है क्योंकि आप लंबे समय से टीएमसी को देख रहे हैं, क्या ममता बनर्जी दूसरे लीडर्स के साथ संवाद ही नहीं करती थी कि उनको पता ही नहीं चला कि संगठन में इतनी नाराजगी उनके खिलाफ या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पनप रही है और इतना बड़ा कुछ निर्णय ले सकते हैं कि एक साथ इतने विधायक एकजुट हो सकते हैं, ये दर्शाता है कि वो पूरी तरह से क्या कट थी पूरे सिस्टम से, संगठन से।
10: देखिए, हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की जो हार हुई है उसके ठीक बाद से घटनाक्रम बहुत तेजी से पलटे हैं। मतलब जो असंतोष, जो रोष, जो गुस्सा था वो अचानक से बाहर निकल के आया है, उभर के आया है। और एक बात तो तय है कि ये हो सकता है कि इसका अंदाजा ममता बनर्जी को रहा हो, लेकिन इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई हो, या हो सकता है कि भतीजे के प्रेम में, अभिषेक बनर्जी के प्रेम में उन्होंने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया। बहुत सारी बातें अभी सामने आने वाली हैं, लेकिन जो प्राइमरीली जो अभी तक फैक्टर नजर आ रहा है कि ये जो असंतोष, ये जो गुस्सा था, ये इसको ठीक तरह से एड्रेस किया ही नहीं गया। और बीच बीच में हमने देखा था कि युवा वर्सेस वरिष्ठ टीएमसी नेताओं के बीच मतभेद मनभेद की बातें, खबरें आई, कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी के साथ पास थे, जबकि अभिषेक बनर्जी का कहना था कि जो युवा हैं उनको बढ़ाया जाए। तो ऐसे में एक मतभेद तो था ही, एक रिफ्ट चल रहा था, लेकिन ये रिफ्ट
1: जो अनुपम टीएमसी में चल रहा है, बीजेपी बड़े जो है इसको देख रहे हैं, और अब शायद बीजेपी को बड़ा लुत्फ भी आ रहा है क्योंकि बीजेपी जीती है और एक लंबा समय बीजेपी ने काफी कुछ पश्चिम बंगाल में झेला भी है। आपको सुनाते हैं, दिलीप घोष से जब खास बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है।
14: आज बंगाल में जो चल रहा था सरकार, जिस पार्टी का, उस पार्टी का ना आगे ना पीछे ना कोई विचारधारा ना कुछ है, केवल एक परिवार का इच्छा का उनका चलता था, और वहां से पार्टी को निकालने के उन्हीं के लोग ही प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि निकल भी जाएगा, उसी प्रकार होगा। अभी इंतजार करना पड़ेगा, घटना प्रभाव किधर जाता है। आज बंगाल में जो चल रहा था सरकार, जिस पार्टी का, उस पार्टी का ना आगे ना पीछे ना कोई विचारधारा ना कुछ है, केवल एक परिवार का इच्छा का उनका चलता था, और वहां से पार्टी को निकालने के उन्हीं के लोग ही प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि निकल भी जाएगा, उसी प्रकार होगा। अभी इंतजार करना पड़ेगा, घटना प्रभाव किधर जाता है।
0: अनुपम, मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, देखिए परिस्थिति को समझना होगा। पहले बीजेपी ने साफ कर दिया कि हमारे दरवाजे बागी विधायकों के लिए बंद हैं, तृणमूलीकरण हम नहीं होने देंगे अपनी पार्टी का। तो ऐसे में विकल्प सिर्फ यही बचा था जो आज तस्वीर दिखाई दे
15: रही है। आज के विधानसभा गतकाल মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনারা ছিলেন না, আজকে বিধানসভা আসলেন, কারণটা কি?
16: না, গতকাল ছিলাম না, মানে অন্য কাজ ছিল বলে ছিলাম না, আজকে এসছি অন্য মিটিং এ বেরোবা যখন তখন
15: আজকের এই বৈঠক সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় ডাকা নয়, দলের যে বৈঠক নয় এটা, তাহলে কে ডেকেছে আজকের বৈঠক?
16: আমি এসছি আমার পেট বিলটা নিতে, নিয়ে দেখি কি হয়, বেরোবার সময় উত্তর
17: দিদি একবার হিন্দি মে বলছে।
1: तो आप बागी विधायकों को सुन रहे थे जो एक एक करके जा रहे हैं। अनुपम, एक बार जल्दी से विधानसभा की मौजूदा परिस्थिति बताएं, कितने विधायक चले गए हैं भीतर, कितनों का और इंतजार हो रहा है, क्योंकि स्पीकर तो चले गए, 15-20 पहले चले गए थे, क्या संख्या बढ़ गई अब?
10: जी देखिए, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, अभी तुरंत एक विधायक भीतर घुसे हैं, हालांकि बहुत सारे विधायक काले कांच में जा रहे हैं, तो 20 से ज्यादा संख्या अभी तक हम कह सकते हैं कि टीएमसी के जो बागी विधायक हैं वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। रतिंद्र बोस जो स्पीकर हैं, असेंबली स्पीकर हैं, वो भी भीतर पहुंच चुके हैं, तो चर्चा दोनों तरफ से हो रही होगी भीतर में, या हो सकता है कि और इंतजार कर रहे हों, चिट्ठी अगर उनके पास है तो चिट्ठी लेकर वो बैठे होंगे, लेकिन 20 से ज्यादा संख्या इस वक्त तो हम कह सकते हैं कि हो चुकी है टीएमसी के बागी विधायकों की, जो भीतर पहुंच चुके हैं।
0: अनुपम, ये तो अब जाहिर सी बात है कि पहले ममता बनर्जी को लोगों का, जनता का समर्थन हासिल नहीं हुआ, और अब अपने ही विधायक वो बागी हो गए हैं, और साथ ही अब उनके बगावत का पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, क्योंकि आपने बताया कि 59 के करीब ये नंबर हो सकता है। लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी कि किस तरीके से यह असंतोष जागा है, सिर्फ ये हारने का असंतोष है, या जिस तरीके से पार्टी की गतिविधियां थी, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, अभिषेक बनर्जी अवेलेबल नहीं होते थे किसी मीटिंग में, इन सभी से नहीं मिलते थे, उनके लिए अलग से बहुत लंबी कवायद के बाद टाइम निकल पाता था, तो क्या ये सब धीरे धीरे जमा हो रहा था और अब ज्वालामुखी की तरह फटा है?
10: जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें थी पिछले 15 वर्षों के भीतर, जो आखिरी के 5 वर्ष थे उनमें ये असंतोष बहुत ज्यादा पनपा है, खास तौर पर जो युवा और जो कम उम्र के जो टीएमसी के विधायक थे, उनको जो बात समझ में आ रही है कि अभिषेक बनर्जी के साथ मिलने के लिए भी उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, जो उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इसके अलावा आईपैक की एक बात सामने आ रही कि आईपैक के प्रति भारी नाराजगी थी, खासतौर पर चुनाव के वक्त में जो शेड्यूल तय हो रहा था उसमें आईपैक के लोग तय कर रहे थे और वरिष्ठ नेताओं का क्या शेड्यूल होगा, किस तरह से उनको काम करना है, ये उनको बताया जा रहा था, जो उनको बहुत नागवार बहुत बुरा लग रहा था कि हमें 40-50 साल हो गए हैं राजनीति में, हम अपने बूते पर यहां आए हैं और कल का लड़का, एक संस्था का लड़का, वो आके हमें राजनीति सिखा रहा है, बता रहा है। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आ रही थी। ममता बनर्जी ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया, सही समय पर एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, और इसके बाद जब हार हुई तो हार के बाद का जो सदमा था और उसके बाद क्या रहा है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया था। क्योंकि बीजेपी के पास जो नंबर्स आए हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स आए हैं, 208 विधायक, क्योंकि
1: बिल्कुल ये ह्यूज नंबर है, बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर ये भी है बागियों का। अब सवाल ये है कि अब ममता बनर्जी के क्या हाथ से बात निकल गई है, क्या कुछ भी उनके बस में रहा नहीं है, अब जो भी तय करेंगे ये बागी विधायक ही तय करेंगे, या वो भी कुछ अभी एफर्ट कर रहे हैं इंटरनली?
10: जी देखिए, ममता बनर्जी के हाथ से बात निकल चुकी है, ये तो स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी के आवास पर मीटिंग बुलाई जाए और एमएलए नदारद रहें, ये इससे पहले नहीं देखा गया था। और ये इसकी शुरुआत हुई पहली मीटिंग से, जो 6 या 7 जून को मई को हुई ममता बनर्जी के आवास पर, वहां पर महज 9 विधायक अनुपस्थित थे, बाकी सभी आए थे। लेकिन जो दूसरी मीटिंग बुलाई गई 19 मई को बुलाई गई, उसमें लगभग 30 से 35 विधायक अनुपस्थित रहे, और जो पिछले रविवार को बुलाई गई मीटिंग, उसमें तो लगभग 60 विधायक अनुपस्थित हो गए। तो ऐसे में स्पष्ट होता जा रहा था कि ममता बनर्जी के हाथ से पकड़ अब निकलती जा रही है, और चूंकि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार चुकी थी, तो ऐसे में ये सारा का कंबाइंड एक इफेक्ट देखने को मिल रहा था कि ममता बनर्जी की जो पकड़ इतने वर्षों तक पार्टी पर रही, वो अचानक से वो उनके हाथ से निकल गई। तो अब जब पकड़ी हाथ से निकल गई, तो जो खुले मतलब एक तरह से छूट मिल गई विधायकों को, तो अब वो तय करने लगे कि हमें किस ओर जाना है, किस राह में जाना है। तो ऐसे में ये देखिए, एक और विधायक काले कांच की गाड़ी से एक और विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एमएलए लिखी हुई गाड़ी है, काला कांच है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विधायक भीतर पहुंच रहे हैं, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये असंतोष बहुत दिनों से था, हार के बाद ये अचानक से फूट कर बाहर आया है, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग अब मुखर हुए, और ऐसे में एक दूसरे से जब बात की होगी उन्होंने, तो एकजुटता हुई होगी और उन्होंने अपने लिए फैसला लिया है, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है।
0: ठीक है, इस बीच अब विधायकों का पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है, तस्वीरें लगातार अनुपम हम तक पहुंचा रहे हैं, नंबर लगभग 59 के आसपास है, इतना तो कम से कम यहां पर साफ हो चुका है। लेकिन लगभग एक घंटे माने अनुपम, 1-2 घंटे में ये पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है इन बागी विधायकों के मन में। हालांकि इन्होंने ये साफ किया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो तय करना था वो हो चुका है और इसी कवायद में लगे हुए हैं।
10: जी देखिए, मुझे लग रहा है 1-2 घंटे में स्थिति और साफ हो जाएगी कि कौन इनका नेता हो रहा है, किस तरह से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली कितने नंबर्स इनके पास हैं, असल में असंतोष की क्या वजह थी, वो सब धीरे धीरे खुलकर सामने आएगा। फिलहाल हमें, मुझे लगता है कि 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। भीतर में जो प्रक्रिया चल रही है, भीतर में विधायक अपने आप आपस में बातचीत भी कर रहे होंगे, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा मसला आगे बढ़ रहा है, जो रणनीति है किस तरह से तय की जा रही है। फिलहाल तो एक रणनीति समझ में आ रही है कि ये विधायक मुख्य जो तृणमूल है उससे अलग होकर, बागी होकर अपना एक गुट बनाने की तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं, अलग होने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। तो ऐसे में ये खुद को असली तृणमूल होने का दावा ठोकेंगे, जैसा कि महाराष्ट्र में हमने देखा था। उद्धव
0: ठाकरे, आपको इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अलग पार्टी नहीं बन रही है, ये कम से कम स्पष्ट हो गया है। अपने आप को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं तमाम बागी विधायक। टीएमसी में जारी बगावत को लेकर ये खबर आ रही है कि अलग पार्टी नहीं बनाई जाएगी, बागी विधायक असली टीएमसी का दावा करेंगे।
1: ये बहुत बहुत बड़ी खबर इसे मैं आपको दे दें, टीएमसी में जारी बगावत को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जो इनका इनका मकसद है वो क्लियर दिखाई दे रहा है कि अलग पार्टी तो नहीं बनाने वाले, अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, बल्कि टीएमसी पर एक तरीके से अब कंट्रोल, अब होल्ड वो चाहते हैं, बागी विधायक असली टीएमसी का दावा करेंगे।
0: अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुपम, जिस टीएमसी पार्टी की पहचान ही ममता बनर्जी थी, ये दरअसल एक सिनोनिम की तरह था। अगर ममता बनर्जी है तो टीएमसी है, टीएमसी है तो ममता बनर्जी है। उस टीएमसी की पार्टी का दावा ही अब ये बागी विधायक करने लगे हैं, यानी कि ममता को पूरी तरह से खारिज करना, वो ममता जिन्होंने इतने साल तक शासन किया पश्चिम बंगाल पर।
10: जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी इतने सालों तक एक दूसरे के पर्यायवाची रहे। तृणमूल माने ही ममता बनर्जी समझा जाता था, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो बेहद अप्रत्याशित है, खासतौर पर बंगाल की राजनीति में, और ममता बनर्जी के लिए तो बेहद ही अप्रत्याशित होगा। जिन्होंने पार्टी का गठन किया, फॉर्मेशन किया, उन्होंने और मुकुल रॉय ने, जो दिवंगत हो चुके हैं, दोनों ने पार्टी का गठन किया था, तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था कांग्रेस से अलग होकर, और इतने सालों तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, यानी ममता बनर्जी की पार्टी के तौर पर देखा और समझा जाता था, वो अब अचानक से छिटक के बागी विधायकों के हाथ में चली जाएगी, तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनकी राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। और सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी को इसका आभास कुछ महीने पहले तक भी नहीं हुआ
1: तो
10: था?
1: अनुपम, बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी का क्या होगा अगर असली टीएमसी ये बन जाएंगे। अगर मान लीजिए इनके पास नंबर है, आप थोड़ा इस टेक्निकलिटी में भी आइए कि सिर्फ विधायकों का समर्थन काफी है या सांसदों की संख्या भी चाहिए, और कितने सांसद इनके साथ हैं, और उसके बाद ममता बनर्जी क्या इस टीएमसी में रहेंगी या नहीं।
10: जी देखिए, इतना तो साफ है कि ममता बनर्जी इस टीएमसी, अगर ये टीएमसी अलग फॉर्म करते हैं, अलग टीएमसी का दावा ठोकते हैं, असली टीएमसी का दावा ठोकते हैं, तो ममता बनर्जी इनके साथ नहीं जाएंगे, इतना तय है। ममता बनर्जी अलग थलग पड़ चुकी हैं, उनके साथ कल भी हमने देखा कई जो पुराने लोग थे सिर्फ वही बचे हुए हैं, सिर्फ 8 विधायक वहां मौजूद थे, मदन मित्र, शोभन देव चट्टोपाध्याय, कुणाल घोष, जो शुरू से ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए थे, सिर्फ वही लोग वहां पहुंचे। 42 एमपी हैं इनके पास, 42 राज्यसभा और विधानसभा लोकसभा मिलाकर 42 सांसद हैं टीएमसी के पास, लेकिन सिर्फ 6 सांसद इनके पास पहुंचे। तो ऐसे में देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में। अभी देखिए, आने वाला चुनाव कॉरपोरेशन का है, पंचायत का चुनाव है, उसके बाद 2 साल में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में जितनी बड़ी जीत हुई थी, 29 लोगों के साथ जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी पश्चिम बंगाल में टीएमसी, और पिछले कई सालों से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, तो 29 सांसद हैं इनके पास, उस पर फर्क पड़ जाएगा। ममता बनर्जी के करियर पर फर्क पड़ जाएगा, ममता बनर्जी को फिर से स्क्रैच से शुरू करना होगा। आज से सालों पहले जब उन्होंने शुरुआत की थी, ठीक वैसी ही स्थिति में ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, लेकिन अब उनकी उम्र उनके आड़े आ रही है, ये बात भी सच्चाई है।
0: लेकिन अनुपम, क्या ऋतुव्रत को यहाँ बंगाल का शिंदे कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर तो लड़ाई सत्ता की थी, यहाँ पर लड़ाई एलओपी की है, टीएमसी का भविष्य क्या है अब आगे?
10: देखिए, टीएमसी अगर ये लोग नई पार्टी, टीएमसी असली पार्टी का दावा ठोकते हैं और इनको सब कुछ मिल जाता है, तो टीएमसी यही हो जाएगी, वो दूसरी पार्टी बन जाएगी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ। तो अभी उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है महाराष्ट्र में, लगभग वैसी ही स्थिति ममता बनर्जी की रहेगी, कम लोग रहेंगे उनके साथ, और उनको उनकी जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जबकि ये जो संगठन है, ये जो गुट है, ये अब ये किस तरह की रणनीति लेकर आगे बढ़ता है, किस तरह की योजना के साथ आगे बढ़ता है, इसके क्या मकसद उद्देश्य होते हैं, क्योंकि जो तृणमूल ममता बनर्जी की पर्यायवाची रही उसके अलग मायने थे, उसकी रणनीति अलग थी, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति अलग थी, लेकिन ऋतुप्रतो संदीप
1: बिल्कुल अलग राजनीति थी, और अभी अलग मोड़ पर टीएमसी आ गया। अनुपम, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन 15 साल से ज्यादा समय तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सत्ता संभाली, ममता बनर्जी राज करती रही, अपने वादों के दम पर उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा और 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब हालात तेजी से बदले हैं,
0: और इस साल आई बीजेपी की सुनामी टाइप जीत में टीएमसी मानो उड़ सी गई, पार्टी की करार ही हार हुई, और अब उसका साइड इफेक्ट भी दिख रहा है, पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई।
13: आज के गद्दारी करछे तृणमूलटाके भांगबार जन्य, आमी बोली ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान।
18: पहले टीएमसी की सत्ता छीनी और अब उसकी सियासत पर चोट है, ममता की दुखती रग पर टीएमसी के बागियों ने नमक छिड़का है। जब ममता को अपने पार्टी नेताओं से सबसे ज्यादा समर्थन और साथ की जरूरत थी, तब एक एक कर टीएमसी नेता दूरी बना रहे हैं। शिवेंदु सरकार में आने के बाद से टीएमसी में टूट की आहट होने लगी है। ममता और टीएमसी ने एक लड़ाई महज एक महीने पहले बीजेपी से लड़ी थी, उसमें पार्टी की करारी शिकस्त हुई। अब तक उस हार का सदमा पार्टी भूल भी नहीं पाई है कि पार्टी के अंदर से बगावत और टूट की आहट ने ममता को बेचैन कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अब बागियों के लिए सद्बुद्धि की कामना कर रही हैं।
13: लड़ेंगे
16: या मरेंगे?
13: नहीं तो मरेंगे।
16: हाँ मरेंगे।
13: अगर जिएंगे
16: या मरेंगे?
19: लड़ेंगे।
13: अब जिएंगे तो बीजेपी को हटा देंगे। आज के गद्दारी करछे तृणमूल के मोती देव भगवान।
18: कोलकाता में एक दिन पहले ममता ने मोर्चा खोला। मुद्दा पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले का विरोध जताना था, शुभेंदु सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना था, लेकिन ममता मानो अलग थलग पड़ गई। पहले उन्हें चुनावों में झटका लगा था। 2021 में 213 सीटें जीतने वाली टीएमसी इस बार महज 80 सीटों पर सिमट गई, और जब मंगलवार को ममता धरने पर पहुंची तो उनके सांसद गायब और विधायक भी गैर हाजिर। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर टीएमसी के 82 सांसद हैं, लेकिन ममता के धरने में पहुंचे महज 8 सांसद। वहीं इस बार ममता के चेहरे पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे 80 में से महज 8 विधायकों ने ही कल धरना में हाजिरी दी। धरने के दौरान ममता समर्थकों का इरादा भांपती रही, लेकिन करीबी नेताओं का घेरा नहीं दिखा। ममता मायूस थी।
13: लड़ेंगे
16: या मरेंगे?
13: नहीं तो मरेंगे।
16: हाँ मरेंगे।
13: अगर जिएंगे
16: या मरेंगे?
18: 4 मई के नतीजों से पहले तक ममता के समर्थकों का मजबूत घेरा था, अब वो नहीं दिख रहा। सायोनी घोष पहले ममता के साथ साथ दिखती थी, कल वो भी धरने से दूर रही। ममता के करीबियों में जानी जाने वाली महुआ मोइत्रा ने भी दूरी बना ली। ये सिर्फ कुछ गिने चुने नेता हैं जो कोलकाता से दिल्ली तक टीएमसी के तेवर का चेहरा बन चुके हैं, लेकिन वो भी गैर हाजिर रहे। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, उसके 80 विधायक जीते। इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में 10 विधायक गायब रहे, जो 13 मई की बैठक में बढ़कर 35 हो गए। 31 मई तक आते आते ये संख्या 80 में 60 हो गई, और ममता के धरने से 80 में 72 विधायकों ने दूरी बना ली। टीएमसी के संकट की बात यही नहीं रुकती। एक तरफ ममता से नेताओं की दूरी, तो दूसरी तरफ पार्टी में अंदरूनी कलह ने उन्हें परेशान कर दिया है।
20: कोई दिन वो ही नहीं था, पोस्टकोड मन के नहीं आया, वो आईएफए का वाइस प्रेसिडेंट था, यहाँ पे लेके सब कुछ काम करे।
21: तो ये दीदी को पता नहीं था?
20: देखिए, दीदी के बारे में, पोस्ट के बारे में क्रीड़ा मंत्री को बताएगा, हम दीदी को कैसे बताएं?
21: क्रीड़ा मंत्री तो ममता बनर्जी को रिपोर्ट करती थी,
20: बोलना जरूरी है, 100% सबको मालूम है इस बारे में।
18: टीएमसी को यकीन हो गया है कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही शुरू हो गई थी। निलंबित टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि हाल ही में करीब 50 टीएमसी विधायकों ने एक गुप्त बैठक की है, वो सभी पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के समर्थन में है।
22: तो बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है।
18: बागी गुट का चेहरा बन गए हैं ऋतव्रत बनर्जी। 2 दिन पहले ही टीएमसी ने ऋतव्रत और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया। तब से खबर है कि इन दोनों विधायकों ने पार्टी के और कई विधायकों से संपर्क किया, कुछ विधायकों की बैठक भी हुई।
23: ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
18: रिजु दत्ता का दावा है कि टीएमसी के 50 विधायक बागी हो चुके हैं और खुद को वास्तविक तृणमूल बताने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 4 साल पहले जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, और 3 साल पहले जो शरद पवार के साथ हुआ, क्या 2026 में वो बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के साथ होने वाला है? तमाम उठापटक ने उन आशंकाओं को बल दे दिया है। तापस सेनगुप्ता के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
1: तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बिल्कुल महाराष्ट्र की चाल चल पड़ी है, और अब ऐसा लगता है कि उसी तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जो शिवसेना के साथ हुआ, जो एनसीपी के साथ हुआ, और अब तृणमूल कांग्रेस के साथ भी सूत्रों के मुताबिक अलग पार्टी नहीं बनाएंगे बागी विधायक, उन्होंने क्लियर कर दिया। और वो ये जो तृणमूल इस समय है, जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी है, जो उन्होंने फॉर्म की, वो उस पर एक तरीके से अब होल्डर एक तरह से अधिकार चाहते हैं।
0: तो बागी विधायकों के दावा है कि हमारे पास दो तिहाई विधायक मौजूद हैं, यानी कि सफिशिएंट नंबर है एलओपी के लिए दावा ठोकने का। ऋतव्रत संभावित तौर पर एलओपी हो सकते हैं। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ऋतव्रत और साहा की अगुवाई में ये सब कुछ चल रहा है या कुछ और अहम नाम भी हैं जिन्होंने ये सब कुछ इनिशिएट किया है और अब इसको मकाम तक पहुंचाएंगे?
10: जी देखिए, ऋतुव्रत और संदीपन साहा की अनुयायी में ये सब हो रहा है, लेकिन इसमें इस अगुवाई में दो तीन और लोग भी हैं, जैसे जावेद खान बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे हैं टीएमसी सरकार में, वो हैं। अरूप राय हैं, वो भी मंत्री रहे हैं, वो हैं। तो कई लोग इस पूरी मुहिम में शामिल थे, इतना तो पता चल रहा है। फिलहाल जो भीतर से खबर आ रही है कि अभी तक स्पीकर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लगभग 30 के आसपास विधायक भीतर पहुंच चुके हैं, रेजोल्यूशन लिखा जा रहा है, इसके बाद वो स्पीकर से मुलाकात करेंगे। तो इसमें लगता है कि और थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिलहाल जो ये जानकारी सामने आ रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अभी रेजोल्यूशन लिखा जा रहा है, 30 के आसपास विधायक पहुंच चुके हैं, स्पीकर से मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर में स्पीकर के रूम में ये सभी विधायक पहुंचेंगे ऋतुव्रतो और संदीपन के नेतृत्व में।
1: ठीक है अनुपम, आप हमारे साथ बन रहे, आपके पास हम लौटते हैं। तो इस समय जबरदस्त हलचल है और 4 मई को जो नतीजे आए थे पश्चिम बंगाल में, उसने बंगाल की सियासत का जो तस्वीर है, जो मिजाज है, वो बदल दिया और उसमें रिजल्ट में वो बदलाव भी दिखा। बीजेपी के लहर में टीएमसी काफी पीछे चले गए और इसके साथ ही शुरू हो गया संकटों का दौर। चुनाव बीता, शुभेंदु की सरकार बनी, फिर वादों के मुताबिक शुरू हो गई कार्रवाई
0: और उसका नतीजा ये हुआ कि ममता के नेता उनसे दूरी बनाने लगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इंडिया गठबंधन के साथ ममता अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे?
2: शुभेंदु के सत्ता में आने से पहले बीजेपी का वादा और इरादा बेहद साफ था। ममता की सियासत को मटियामेट करने की सियासी चुनौती दे डाली थी। भ्रष्टाचार पर चोट का वादा भी बीजेपी ने पहले ही किया था और शुभेंदु सरकार ने सत्ता संभालते ही उन वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। 11 मई को पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार किए गए। 20 मई को विधाननगर में टीएमसी पार्षद रंजन पोद्दार की गिरफ्तारी हुई। 23 मई को विधाननगर में ही टीएमसी पार्षद समर्थ बरुआ को भी पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप हिंसा और जबरन उगाही का था। 26 मई को बदुरिया नगर निगम के चेयरमैन टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी होती है। उनके आवास से 80 लाख कैश मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई। 27 मई को गोबरडांगा से टीएमसी नेता अजीत साह गिरफ्तार किए गए। 2 जून को पार्टी नेता आशीष चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो गई। एक्सटॉर्शन और धमकाने का आरोप है। ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से टीएमसी में हड़कंप मच गया है। पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पार्टी नेताओं में अपने ऊपर कार्रवाई का डर सता रहा है, तो कई नेता माहौल भांपकर रुख बदल रहे हैं। पार्टी को लगे झटके के बीच ममता आरोप लगा रही हैं कि राज्य में अत्याचार बढ़ा है।
13: बंगाल में क्यों 177 सीट में आप लोगों ने काउंटिंग लीक किया, हमारा क्षेत्रों में भी।
2: कोलकाता में धरने के दौरान ममता ने हार तो कबूली, लगे हाथ शुभेंदु सरकार पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया।
13: अरे चोरी करके आया तो ठीक है, आप संभालो, शांति रक्षा करना किसका काम है? हम शांति रक्षा कर रहे हैं और आप लॉलेसनेस कर रहे हैं।
2: ऐसी बयानबाजी के बीच टीएमसी में टूट की आशंकाओं को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी में टीएमसी के बागियों की नो एंट्री है।
5: भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। बिना तृणमूल कांग्रेस से उधार लिए तृणमूल कांग्रेस को अपने पार्टी में शामिल नहीं करके भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल किया है और ये जनता का जो फैसला है, जनता का जो वर्डिक्ट है, वो तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ है। इट्स अ क्लियर मैंडेट।
2: लेकिन ऐसे संकट में अब ममता क्या करेंगी? चुनाव में करारी शिकस्त और अब अंदरूनी कलह की खबरों के बीच ममता 8 जून को दिल्ली पहुंच रही हैं। ममता के साथ अभिषेक बनर्जी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बंगाल के नतीजों के बाद से इंडिया गठबंधन के दल लगातार ममता का समर्थन करते रहे हैं। ऐसे में 8 जून को दिल्ली में होने वाली गठबंधन की बैठक कई मायनों में अहम है। तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
1: तीन जून को ही तस्वीर बदलने की यहां सूरत लग रही है और 8 जून को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में मचे हुए हड़कंप के बीच में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े और ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की पार्टी है वो नेताओं की पार्टी नहीं है, इसीलिए बागियों की पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
5: देखिए, ममता बनर्जी क्या बोल रही है और तृणमूल कांग्रेस क्या कर रहे हैं इसका ऊपर जनता की कोई भी आग्रह नहीं है। पीपल आर नॉट रेडी टू हियर तृणमूल कांग्रेस एनी मोर, तो इसका ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे। ममता जी का पार्टी बिखर रहे है, टूट रहे, वो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। ममता जी का पार्टी का मालिक ममता जी खुद थी, खुद है, और उसका बाद उसका परिवार के किसी लोग उसका पार्टी का जो ओनरशिप है जो है वो ले लेंगे।
0: और अब रुक करेंगे दिल्ली के मालवीय नगर का, जहां पर एक इलाके में रेस्टोरेंट में भीषण आग की खबर आई है। इस घटना में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है।
1: ये बड़ी खबर इस समय, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर बताया जा रहा कि मौजूद हैं, लेकिन ये भी दिल्ली का एक पॉश एरिया माना जाता है मालवीय नगर, वहां रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, 4 लोगों की जिंदगी चली गई। किन परिस्थितियों में आग लगी, क्या फायर सेफ्टी के उपकरणों ने काम नहीं किया या

0: उसका परिवार के किसी लोग उसका पार्टी का जो ओनरशिप है जो है वो ले लेंगे।
1: और अब रुक करेंगे दिल्ली के मालवीय नगर का, जहां पर एक इलाके में रेस्टोरेंट में भीषण आग की खबर आई है। इस घटना में चार लोगों के मारे जाने की खबर है।
2: ये बड़ी खबर इस समय, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर बताया जा रहा कि मौजूद हैं, लेकिन ये भी दिल्ली का एक पॉश एरिया माना जाता है मालवीय नगर, वहां रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, चार लोगों की जिंदगी चली गई। किन परिस्थितियों में आग लगी, क्या फायर सेफ्टी के उपकरणों ने काम नहीं किया या थे ही नहीं, ये तमाम तरह के सवाल। लेकिन तीन लोगों को बताया जा रहा है कि बेसमेंट से रेस्क्यू भी किया गया है। ये आग की विकराल तस्वीरें आप देखेंगे तस्वीरें।
3: फायर ब्रिगेड की यहां पर पहुंची थी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती से भी हमारी अब से थोड़ी देर पहले बात हुई, तो उन्होंने बताया कि 27 से 28 लोगों को यहां से निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुटे हुए हैं। नीचे जो बेसमेंट है वहां से कई लोगों को निकाला गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चार लोगों की अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौत हो चुकी है और अभी भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, आग को जो है बुझा लिया गया है फायर ब्रिगेड के द्वारा। अब कोशिश यह किया जा रहा है कि जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उनको निकाला जाए, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है लोकल्स जो यहां पर मौजूद है उनके मुताबिक जो यहां जब आग लगी उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो निकल नहीं पा रहे थे, तो आसपास गद्दे डाल करके उनको ऊपर से जो लोग कूद रहे थे उनको बचाया गया है। तो इस तरीके की कोशिश लगातार यहां पर की गई है। लेकिन ये जो सिचुएशन है यहां पर आप देखिए कि फायर ब्रिगेड के लोग तमाम
1: इसका नाम पता चला है, कौन इसके मालिक है।
3: देखिए अभी इसका डिटेल जो है वो निकाला जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट में नीचे रहने का भी यहां पर इंतजाम था, क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉरेनर्स भी हैं उनकी जानकारी मिल रही है। वो इसमें फंसे हुए थे, वो वैसे फॉरेनर्स जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, उन लोगों को जो है यहां पर रूम दिए गए थे जिसमें वो फंस गए थे, जिसके चलते ये बड़ा जो है यहां पर हादसा हुआ है। और ये आग लगने के बाद उसमें से बहुत सारे लोग निकल नहीं पाए जिनको कि काफी नुकसान हुआ है। और आप देखिए यहाँ तस्वीरों में कि जो नीचे का बेसमेंट है उसका दरवाजा भी तोड़ा गया है, और जहाँ ये पूरा रेलिंग्स लगी हुई है उनको भी तोड़ करके तो लोगों को निकाला गया है।
2: आप तो जितेंद्र जो जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर फॉरेनर्स भी रुके हुए थे, या होटल था, रेस्टोरेंट था, या फिर अवैध तरीके से वहां पर उसको एक तरीके से होटल भी बना रखा था।
3: देखिए तमाम चीजों को लेकर के अभी छानबीन की जा रही है, लेकिन यहां पर यह पता चल रहा है कि रुकने का भी स्थान, ठहरने का भी स्थान था, जिसमें बेसमेंट में कुछ लोग जो हैं, जो फॉरेनर्स हैं जो कि यहां पर इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं, वो लोग रुके हुए थे, और उसके बाद जो है उन लोगों को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसमें फंसे रहे जिसकी वजह से उनकी जान का नुकसान हुआ। तो यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग जो है अभी भी यहां फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, और ये छोटी जगह है, थोड़ा सा यहां से जो लोगों को निकालना उस समय काफी
1: ठीक है। जितेंद्र, एनआई के हवाले से खबर आ रही है कि इस आग हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है।
2: ये बहुत बड़ी खबर है एएनआई के हवाले से, न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली रेस्टोरेंट हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर वो जानकारी भी वहां पर दे रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग ठहरे हुए थे। और अब ये बड़ी खबर कि 10 लोगों की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि हो गई है, ये बहुत बहुत दुखद खबर है। हमारे साथ जितेंद्र लगातार जुड़े। जितेंद्र, 10 लोगों की मौत में क्या इनमें फॉरनर भी शामिल है? आप बता रहे कि वो रुके हुए थे वहां पे।
3: बिल्कुल राजीव, इसमें जो हमको यहाँ पर बातचीत से ये पता चला है, जो लोकल लोग यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे जब बातचीत हमने किया तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया कि किस तरीके से। सर ये बताइए कि कितने लोगों को हताहत हुए, कितने लोगों?
4: अब ये अब गिनती बता नहीं सकता, अभी उस टाइम बिजी थे, मैं बता नहीं सकता कुछ।
3: विदेशी भी लोग थे इसमें? नाइजीरिया
4: जी, बाहर के थे।
3: कितने लोग?
4: अब ये बता नहीं सकता, क्लियर मैं नहीं बता सकता।
3: तो राजीव यहाँ पर जो तस्वीरें साफ तरीके से आ रही हैं, इसमें विदेशी लोग भी थे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो लोग मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर ठहरने के लिए उनको रखा गया था, और वो बहुत सारे लोग बेसमेंट में, और कुछ लोग जो ऊपर, ये पूरा जला हुआ जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जो है वो लोग रुके हुए थे। यहाँ एक ये भी जानकारी मिली है कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने

0: जहाँ बगल में गद्दे की दुकान है, उन लोगों ने गद्दे डाल करके जो ऊपर से लोग कूद रहे थे उस को उनको बचाया है। सर आप ये बताइए कि कितने लोगों को, कितने लोग हताहत? जी राजीव, तो यहाँ पर तस्वीरों में पुलिस जो है पूरी तरीके से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और जो जला हुआ पार्ट है, एरिया है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कराया जा रहा है, साफ कराया जा रहा है। आग पर काबू तो पाया गया है। 10 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची थी और ये भी कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा यहां पर
1: पूरा हो गया और अब कूलिंग का काम चल रहा है या अब भी कुछ लोग फंसे हुए हैं या सब निकाल लिए गए हैं? कोई घायल भी है?
0: देखिए राजीव, अब घायल जो लोग हैं उनको मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 27 से 28 लोगों को मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ जो ये जला हुआ पूरा पार्ट है इसको यहाँ पर कूलिंग किया जा रहा है और अब जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, या तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस पूरे एरिया में, ये पूरा जो एरिया दिखाई पड़ रहा है आपको, ये नीचे का है, लोअर बेसमेंट भी इसके नीचे है और वहां पर भी लोग रुके हुए थे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि ये रेस्टोरेंट था, होटल था, या फिर किस तरीके से यहां पर ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी।
1: अगर वहां आसपास में लोग हैं तो अगर आप उनसे बातचीत कर सके, उनसे जाने की क्या हुआ एग्जैक्टली, जब वहां पर लोग फंसे हुए थे क्या किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? फायर सेफ्टी के उपकरण थे नहीं थे?
0: और देखिए, हमने अब से थोड़ी देर पहले जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सोमनाथ भारती, उनसे बातचीत किया। हालांकि वो अभी इस एरिया के विधायक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दिया वो कह रहे थे कि हमने 8:15 बजे के आसपास उनकी सारी टीम यहां पर पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोकल्स जो लोग हैं यहां पर जानते हैं कि आप ये बताइए कि किस तरीके से यहां पर शुरुआत में
2: आया? मैं तो अभी आया, मुझे तो पता नहीं
3: है।
4: सर मैं खुद मीडिया से।
0: जी जी, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर उनको जानकारी अभी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों से जब इस सिचुएशन को देखें तो आए, लेकिन जो यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन है वो काफी गंभीर है क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग है ऊपर से लेकर के नीचे तक वो जल गई है और इसके साथ साथ जो बेसमेंट में जहाँ पर रेस्टोरेंट की बात बताई जा रही है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे एरिया में ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें नाइजीरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं या फिर दूसरे अन्य कंट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग यहां पर रुके हुए थे और उसके बाद उनकी बॉडीज जो है यहां से निकली हैं। प्रत्यक्षदर्शी इस तरीके की जानकारी दे रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर अभी किसी तरीके का बयान जो है पुलिस का नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर क्या फायर सेफ्टी के किसी भी तरीके के उपकरण नहीं लगे हुए थे जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और पूरी बिल्डिंग।
1: अगर फायर सेफ्टी के उपकरण होते तो शायद 10 लोगों की जिंदगी नहीं जाती, 10 लोगों की मौत हो गई है। सवाल

0: रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारे देश में, खासतौर पर दिल्ली में जो अधिकारी हैं, जब तक घटना नहीं होती है वो चेकिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। कोई भी जो है जांच करना उनका पैमाना है ना कुछ, ना कोई भी ग्राउंड पर जाकर जांच करता ही नहीं है। जांच करता तो 10 लोगों की जान नहीं जाती। जितेंद्र,
1: और बिल्कुल इसी तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन इस पूरे इलाके में दिखाई पड़ रही है, आप देखिए तस्वीरों में एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो अभी इस पूरे एरिया का असेसमेंट कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से यहां पर आग लगी। शुरुआती और प्रत्यक्षदर्शी जिनसे हमने बातचीत किया तो उनके मुताबिक यहां पर पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद जो पहले बेसमेंट और उसके बाद ऊपर की तरफ आग लगी, फिर नीचे जो बेसमेंट था जहां पर लोग ठहरे हुए थे वहां पर आग फैल गई। बहुत सारे लोग जो है उस वक्त सुबह का वक्त था, सो रहे थे और उनको जो है बिस्तर पर उस समय सो रहे थे, जिस वजह से उनको हटने में काफी दिक्कत हुई।
0: कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था वहां पर, क्योंकि ये भी नियमों के तहत होना चाहिए। रेस्टोरेंट होटल चल रहा था तो क्या इमरजेंसी एग्जिट नहीं था कि लोगों को समय ही नहीं निकलने का मिला?
1: देखिए यहाँ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो चैनल है ये इसको काट करके निकाला गया है। इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है कि इस चैनल में ताला लगा हुआ था उस दौरान और इससे निकलने में लोगों को दिक्कत हुई, तो इसको काटने के बाद जो है फिर उसके बाद इसको बाहर खोला गया, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एग्जिट गेट होना चाहिए था। रेस्टोरेंट अगर चल रहा है और रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ पर होटल भी जहाँ पर ठहरने के लिए लोगों के लिए निवास बनाया गया है, अगर ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था? ये तमाम सवाल जो जरूर है यहाँ पर उठते हैं। ये एक बड़ा पूरा एरिया है जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ऊपर से लेकर के नीचे तक ये कंप्लीट जल चुका है। ये बताइए सर, आप दिल्ली पुलिस से हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो है आग लगी? जब
2: कुछ नहीं कह सकते, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
1: कौन कौन लोग हैं सर? अभी किसी को और फंसे हुए हैं सर?
2: अभी सर्च चल रहा है, ऊपर सर्च चल रहा है, सब चल रहा है,
1: ऊपर के टॉप फ्लोर में,
2: हाँ सब जगह पूरे में सर्च चल रहा है।
1: फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के लोग तमाम लोग
2: सर चल रहा है, फायर ब्रिगेड दिल्ली पुलिस से सर चल रहा
1: है। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए जो लोग हैं, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के लोग हैं, ऊपर का जो महला है आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में।
0: जितेंद्र आपके पास हम लौट रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बने हुए। आगे बढ़ने से पहले एक बार दर्शकों को हेडलाइंस दिखाते हैं।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

कुमार परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषियों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बना कोचिंग माफिया, गोलीबारी वाले बयान से पलटे खान, पहले कहा था गोली चली, दो कोचिंग सेंटर्स में वर्चस्व की लड़ाई का मामला।

छल 50 विधायकों के समर्थन के दावे के साथ विधानसभा पहुंचे बागी विधायक ऋतव्रत और शाह, नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने की तैयारी। हार के बाद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होंगी ममता बैनर्जी, पार्टी में टूट की खबरों के बीच पड़ी अकेली, धरने में आए सिर्फ 8 MLA, बागियों ने कहा हम हैं असली TMC। कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे DK शिव।

0: 12 बजे 12 रिपोर्टर देखना है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल, लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली और मालवीय नगर से दिल्ली के बहुत बड़ी खबर है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। एक रेस्टोरेंट और होटल आप कह सकते हैं, वहां पर आग लगी, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि ठहरने की व्यवस्था थी। वहां पर सिर्फ दिल्ली के नहीं, भारत के नहीं, बल्कि कुछ विदेशी भी बताया जा रहा है कि रुके हुए थे, जो इलाज के लिए यहां पहुंचे हुए थे। मैक्सिमम उनका इलाज चल रहा था और 10 लोगों की जान चली गई है। मालवीय नगर, जो कि दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है, यहां पर दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त ही मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी इस समय बता रहे हैं कि हम वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया। लेकिन जब आग की लपटें उठी तो इसमें 10 जिंदगियों को निकलने का समय तक नहीं मिला, बचने का समय तक नहीं मिला। इमरजेंसी एग्जिट दूर दूर तक नहीं दिखा, लोगों को वहां गेट काटना पड़ा। सिर्फ 3 लोग बचाए जा सके। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास ही आग लगी, लेकिन 10 लोगों को बचाया नहीं जा सका। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, अब आप देखिए कैसे कूद कूद कर अपनी जान बचाते हुए लोग दिखाई दिए। एक महिला अपनी जान बचाते दिखाए। होटल में आग लगी हुई थी, नीचे से आग की लपटें उठ रहे थे, धुएं का काला गुबार था, सांस लेना मुश्किल था। ऐसे में बगल में बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री भी है गद्दों की, तो वहां से कुछ गद्दे लाए गए तो वो नीचे बिछा दिए गए, ऊपर से जो लोग कूदे ताकि वो बच सके। ये तो आलम था, ये उस समय का आलम था। लोगों को कूदना पड़ा, इसका मतलब फायर ब्रिगेड की टीमें भी उस समय मौके पर तत्काल नहीं पहुंच सकी। जितेंद्र हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जितेंद्र, देश की राजधानी और राजधानी में एक पॉश इलाके में, एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में आग लगती है और लोग कूद कर अपनी जान बचाते हैं, क्या फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय पर नहीं पहुंची?
1: और देखिए राजीव, जिस तरीके की जानकारी मिल रही उसके मुताबिक जब आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड को जब यहां पर बुलाया गया तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि इस पूरे एरिया में आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल हैं उन्होंने शुरुआत से ही यहां पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। सबसे पहले आपको वो बिल्डिंग दिखाते हैं कि जहां पर सुबह यहां पर आग लगी थी करीब 8:30 बजे के आसपास, और पूरी बिल्डिंग जो है ये जल करके खाक हो चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए कि ऊपर से लेकर के नीचे बेसमेंट तक जो है पूरी तरीके से जो है बिल्डिंग जली हुई है। और इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ फॉरनर्स भी मौजूद थे जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए यहां पर आते हैं और वो रुकते हैं यहां पर, उसके बाद उनके जो है शव भी बरामद हुए हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही। 10 लोगों की मौत हो गई है, इस तरीके की जानकारी मिल रही। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड पर ये तमाम लोग जैसे ही यहां पर आग लगी उसके तुरंत बाद जो है ये लोग फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर यहां पर पहुंचे थे। आप ये बताइए कि सबसे पहले आपने क्या देखा और किस तरीके की तस्वीरें यहां पर मौजूद?
2: सबसे पहले जो हमने देखा, जो ग्राउंड फ्लोर है ना उसमें आग बहुत ज्यादा थी, जब उसको तोड़ा गया शीशे को तो उससे आग ऊपर की तरफ गई है, जो इस धुएं की स्मोक की वजह से लोगों की अनकॉन्सियस हो गए हैं या अभी तक डिक्लेयर करा नहीं है तो हम तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब यहां से निकाला गया तो मोस्टली अनकॉन्सियस थे वो, उनको सीपीआर देकर अगर हॉस्पिटल सेफ कर सकता तो कर दे, अदरवाइज कुछ लोग जो हैं जो हमारे सामने ब्रॉड डेड थे, जिनको हम बेसिकली ब्रॉड डेड बोलते हैं, वो मर गए होंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा क्लियरिटी अभी नहीं है, जो कोई भी बीट देगा कि मर चुके हैं तो ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है।
1: आप लोगों ने
2: बहुत किया गया है, अराउंड 30-35 लोग हैं, उसमें फायर फाइटिंग टीम है, दिल्ली पुलिस है या हम लोकल्स हैं जिन्होंने मेहनत की है, सबने एज अ टीम काम किया है और इसकी वजह से आए हैं। और इवन मैक्स हॉस्पिटल की जो फायर फाइटिंग टीम है वो भी यहाँ पर अवेलेबल।
1: जो फॉरनर लोग हैं वो लोग किस तरीके से, क्या यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर जो था उसमें होटल था, रुकने का भी स्थान?
3: जिस हिसाब से सर हमने अंदर देखा था तो रूम से होटल ही टाइप का लग रहा है।
0: जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार सोमनाथ भारती को सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो पूर्व एमएलए रहे हैं, इसी सीट से पहले जीते हैं, और इस बार सतीश उपाध्याय को सुनाते हैं। सोमनाथ भारती जो कि पूर्व एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो हमलावर हैं, और इस समय जितेंद्र उस समय ग्राउंड पर है। जितेंद्र, एक बार मैं चाहता हूं कि आप पूरे इलाके को भी दिखाएं, क्या तंग गलियां हैं, मालवीय नगर का कौन सा एग्जैक्टली ये इलाका है उसके बारे में बताएं, क्या आने जाने में दिक्कतें तो नहीं हुई फायर ब्रिगेड को?
1: देखिए राजीव, यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और एक बार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रास्ता जो है वो मेन रोड की तरफ जाता है, और ये जो दूसरा रास्ता है यहाँ से आगे मैक्स हॉस्पिटल की तरफ ये रास्ता जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता तो चौड़ा है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है मेन रोड पर लगी हुई हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर जिस वक्त पहुंची उस वक्त ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से राजीव जल रही थी और अब तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग ये जल करके खाक हो चुकी है। इसमें ये जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग जो फॉरेनर भी रहे हैं वो तमाम लोग यहां पर इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं और ये जो मैक्स हॉस्पिटल में इनको रखा गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से जब उनको निकाला गया तो उन लोगों की बहुत सारे लोगों की बॉडीज भी निकाली गई। इसके साथ साथ जो यहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उनके द्वारा यह भी जानकारी दी जा रही है कि यहां पर दिक्कतें उस वक्त हो रही थी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश लगातार चाहे फायर ब्रिगेड हो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इन लोगों ने सुबह से ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इसके साथ साथ लोकल्स जो हैं ये सामने की जो शॉप आपको दिख रही है मसूरी कॉटन शॉप यहां पर गद्दे बनाने की दुकान है। जानकारी ये मिल रही है कि यहां से जो है गद्दे डाल करके जो ऊपर से लोग कूद रहे थे उनको बचाया गया हालांकि वो वीडियो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। किस तरीके से लोगों को इस दुकान में गद्दे डाल करके बचाया?
4: ये हमारी अपनी दुकान है हमारे अंकल है इन्होंने गद्दे दिए तो वो पूरी रोड पे गद्दे बिछाए तो थर्ड फ्लोर से बंदे कूदे हैं
1: थर्ड फ्लोर से
4: कूदे हैं सीधे फोड़ के और बाकी जो हम ऊपर पहुंचे हम तीनों भाई ऊपर ही थे ऊपर गेट जैसे ही खोला है तो दो तीन नाइजीरियन थे वो डेड कर गए थे।
3: काउंटिंग हमने कोई करी नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट सब जगह थे लोग सब अनकॉन्शियस थे बिल्कुल अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं
1: धुएं की वजह से
3: पूरा धुएं की वजह से मोस्टली अनकॉन्शियस थे क्योंकि जब फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस टीम आ गई थी फायर फाइटिंग टीम ने जब इसको बुझा दिया है बुझने के बाद जब हम अंदर घुसे टीम के साथ तो हमसे भी घुसा नहीं जा रहा था तो हालत हमारी भी खराब थी उन लोगों की भी खराब थी बस सबने इंक्लूडिंग लोकल थाना जो है हमारा मालू नगर का उनके लोगों ने सबने मिलकर हम अंदर घुसे।
1: तो राजीव जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग अनकॉन्सियस थे उस दौरान ये बिल्डिंग जो है एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है लोहे का इस चैनल को काटा गया है क्या जानकारी मिल रही क्या ताला बंद था क्या
4: ये लोग था वो फायर वाले आए थे उन्होंने कैंची दी थी उससे काटा है फिर
1: जब होटल था यहाँ पर तो आखिर इसको चैनल को बंद क्यों ताला क्यों लगा
4: ये इतना आइडिया नहीं है लेकिन ये बंद था फिर इन्हों को चैनल से काटा उससे कैंची से जो फायर वालों ने दिया फिर अंदर घुसे
3: फायर फाइटिंग के पास
4: उससे काटा फिर हम अंदर घुसे
3: लोग अंदर घुसे
4: फिर ये भी घुसे इनको थोड़ी जानकारी थी सांस वास के लिए तो इनको
1: हाँ बिल्कुल राजीव जो तस्वीरें हैं और जो कि यहाँ पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो कि लोकल लोग हैं उनके द्वारा
0: मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जरा सिलसिलेवार दर्शकों को बताएं कितने बजे आग लगी कितने बजे जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे दमकल विभाग को कब सूचित किया गया वो कितने जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स किया वो कैसे पहुंचे और इस होटल में एंट्री गेट तो दिख रहा है क्या दूसरे और गेट भी है निकलने का?
1: देखिए राजू शुरुआत से बताते हैं कि 8:15 बजे के आसपास जो है यहां पर आग की कॉल सीधे फायर ब्रिगेड को दिया गया और 8:50 के आसपास जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची। जो जानकारी मिल रही है लोकल्स के द्वारा और जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं उनके द्वारा जो जानकारी मिल रही है राजीव वो लोग सबसे पहले यहां पर पहुंचे थे। एक बार तस्वीरों में आपको आज तक के दर्शकों को दिखाते हैं कि ये जो सामने की तरफ चैनल है ये पहले शुरुआत में बंद था और इसमें ताला लगा हुआ था। आखिर क्यों ताला लगा हुआ था जब यहां लोग रह रहे हैं होटल में और उसके साथ साथ ऊपर जो है रेस्टोरेंट भी है तो ताला आखिर क्यों लगाया गया था? इसकी वजह से जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाए और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची उन्होंने जो है इस जगह के सीधे जो सामने की तरफ ताला है उसको तोड़ा गया तो ये ताले को तोड़ने के बाद जो है फिर जो यहां पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर लोकल लोग मौजूद थे उसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड और
0: जितेंद्र चैनल आप बता रहे कि पूरा बंद था ताला लगा हुआ था काटना पड़ा वो तो तस्वीर भी आप दिखा रहे स्थानीय लोगों से पूछे कि क्या एकमात्र रास्ता ही रह गया था अंदर जाने का कि वो चैनल को काटना पड़ा तब जाके अंदर जा पाए कोई और रास्ता ही नहीं था निकलने और अंदर जाने का?
1: बिल्कुल बिल्कुल राजीव यहां पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि यहां पर जो ताला बंद था क्या यही एक रास्ता था अंदर जाने के लिए या फिर इसकी वजह से काफी दिक्कत
5: अंदर से रास्ता और भी है अंदर है रास्ता लेकिन बेसमेंट में जाने के लिए ये शटर था और ये शटर बेसिकली लॉक था तो जब फायर ब्रिगेड की टीम आई है उन्होंने कटर से इसको काटा है, तो वो टीम और हम लोकल्स तब हम अंदर जा पाए, ठीक है, तब हम अंदर घुस पाए, अदरवाइज हम नहीं जा पाते क्योंकि इसका दूसरा रास्ता कोई ऐसा नहीं है कि जो वहां से एंट्रेंस हो।
1: आखिर जब नीचे लोग थे, रह रहे थे, तो क्यों ताला बंद हुआ था, क्या वजह?
5: मैं बताता हूँ, ये तो जी यहाँ के जो ऑनर है या यहाँ के जो स्टाफ है वो ही बता पाएगा कि ये इन्होंने क्यों लॉक किया था, क्योंकि इसका हम अंदाजा नहीं है। सुबह 8:30 बजे यहाँ आग लगी थी, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे लोकल लोग हैं वो आए थे, लोकल थाने की बहुत मदद है, ठीक है, फायर ब्रिगेड ने बहुत मदद, दिनेश भाई थे जिनकी बीट है, उन्होंने बहुत मदद किया, उन्होंने बल्कि हमारे साथ अंदर जाकर रेस्क्यू भी किया।
0: बिल्कुल, स्थानीय लोगों ने बताया, लेकिन जितेंद्र ये हैरान करने वाली जानकारी मिल रही है कि बेसमेंट में लोग रह रहे थे और बेसमेंट में जाने का एक ही रास्ता था और उस पर भी ताला लगा दिया गया था, यानी कि बाहर से किसी ने जानबूझकर ताला लगाया।
5: मालनगर से SHO साहब भी टाइम,
1: बिल्कुल राजीव, मैं यहाँ आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखाता हूँ उस चैनल को कि जहाँ पर बेसमेंट में जाने का रास्ता था और उस रास्ते के उस तरफ जो नीचे की तरफ है बहुत सारे लोग रुके हुए थे, इस तरीके की जानकारी मिल रही है, और जिसमें जीने पर भी लोग बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और इसमें ताला लगा हुआ था, पहुंच रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इस तरीके से बयान कर रही
0: हैं। चूंकि जिस तरफ आप कैमरा पैन कर एक बार दिखा, क्या वहां पतली गली भी है, क्या उस साइड भी एक सिरा है इस होटल का, या जो फ्रंट जिस साइड आप खड़े हैं वही एकमात्र फ्रंट है और वही गेट है, बस बैक साइड में भी क्या कोई गेट है दूसरी गली की तरफ जो खुलता हो?
1: देखिए राजीव, दो रास्ते हैं यहाँ पर, एक तो रास्ता ये है जो मुख्य रास्ता जाता है मुख्य सड़क की तरफ, और जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता पीछे की तरफ है, वो पतली गली जहाँ पर आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स और फायर ब्रिगेड के जो तमाम कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, ये रास्ता जाता है, पतला रास्ता है ये थोड़ा सा, इसमें अंदर से जाना मुश्किल होता है, तो दो रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जिट का जो होटल के अंदर से बाहर जाने का जो रास्ता है सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता था, जिसमें जब आग लग गई तो उसके बाद लोग ऊपर की तरफ चले गए, ऊपर की तरफ जाने के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और वहां से निकल नहीं पा रहे थे। जो जानकारी यहां के लोकल्स से जो हमारी बातचीत हुई है वो ये कह रहे थे कि कुछ लोग जो है टॉयलेट के अंदर भी बैठे हुए थे, वहां पर छिपे हुए थे, उस वजह से उन लोगों को बचने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन जब ऊपर की जो खिड़कियां आपको सामने तस्वीरों में दिखाई पड़ रही हैं वहां
0: जितेंद्र, क्योंकि वहां नाम मिट गया, तो एक बार प्लीज आप उन लोगों से पूछें कि इस होटल का नाम क्या है, कौन है इसका ओनर, कितने साल से ये होटल चल रहा था यहाँ पर।
1: देखिए राजीव, मैं यहाँ पर लोकल्स जो है इनसे बातचीत करते हैं, जो होटल के ओनर हैं इनके बारे में क्या है और होटल का नाम क्या है यहाँ पर,
3: कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि पूरा जला हुआ है, ओनर का तो सर हमें पता नहीं,
1: होटल जो है
6: हमें पता नहीं, नाम तो ध्यान नहीं है मेरा, ओनर क्या है,
7: ओनर का फ्लोरिस स्टे फ्लोरिस स्टे करके नाम है इस होटल का,
1: होटल का नाम फ्लोरिस स्टे है ना,
7: फ्लोरिस स्टे करके नाम है इसका।
1: ओनर कौन?
7: ओनर बाहर के हैं, गाँव के नहीं है कोई भी, वो बाहर के लोग हैं,
6: वो ये बता सकता है सर, क्योंकि हमें नहीं पता शायद लीज पे दे रखा है या ओनर का है, वो यहाँ नहीं आता कभी, हमने देखा नहीं,
1: लेकिन क्या एग्जिट रूट इसमें किसी भी तरीके का नहीं था, सिर्फ
6: यही तो है सर, मैं नहीं है बस, ये
1: सामने की तरफ रास्ता है और इसके साथ जो लोग बेसमेंट में थे
6: उसमें ज्यादा लोग लेटे बेसमेंट वाले में, हाँ क्योंकि आगे रास्ता ये बंद था इधर से होटल का, मेन रास्ता था ना ये वाला, बीच वाला रास्ता है ये वाला,
8: हाँ इसी में मेन रास्ते में ही आग लगी थी, जो मेन रास्ता है, फिर यालाकाश टूटा, फिर यहाँ की इनकी जो शॉप है यहाँ से गद्दे डाले, फिर लोग नीचे से कूदे।
0: जितेंद्र आपको रोक रहा हूँ, इस समय दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, मालवीय नगर में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपके पास इस घटना के संबंध में क्या इन्फॉर्मेशन है?
9: देखिए मुझे ऐसी जानकारी है कि 8:25 या 8:40 के आसपास इसकी जानकारी फायर विभाग को मिली थी, 4-5 जगह से फायर की गाड़ियां यहां पहुंची, भयंकर धुएं के बीच में तीन तरफ से फायर ब्रिगेड ने वहां काम किया है। मुझे प्राप्त इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं रास्ते में हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में मैं वहां नहीं पहुंचा था, 37 लोगों को वहां से फायर ने निकाल के हॉस्पिटल भेजा है, हमारे फायर ब्रिगेड के लोग हॉस्पिटल के साथ संपर्क में है, हमारे

0: हर ग्रेड के लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं और वहां से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। 10 मिनट के अंदर मैं भी मौके पर पहुंचने वाला हूं और जो भी उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहे हैं वो जैसे ही समाप्त होंगे तो हम सारी जानकारी
1: आप बता रहे हैं कि 10 मिनट में आप भी पहुंचने वाले हैं। आशीष जी, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है?
0: मैंने आपको बताया, मेरे पास प्राप्त जानकारी में 37 लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल में पहुंचाया गया है। फायर के लोग वहां पर है। प्रारंभिक डॉक्टरी जांच के बाद जब डॉक्टर हमें सूचित करेंगे तभी मैं आपको कोई आधिकारिक जानकारी दे पाऊंगा।
1: आशीष जी, हमारे पास जानकारी आ गई है, 20 लोगों की हमें जाने की खबर मिल रही है। ये बहुत बहुत चिंताजनक है।
0: मैं आपके पास जो जानकारी आई है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दुखद घटना है। जब तक मुझे डॉक्टरों के माध्यम से आधिकारिक जानकारी नहीं मिलेगी मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मौके पर पहुंच के आपसे दोबारा बात करता हूँ।
1: जी, एक आशीष जी, एक आखिरी सवाल ही बता दें, क्या उनसे संपर्क शायद टूट गया है? आशीष सूद जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो कह रहे हैं कि वो खुद घटनास्थल पर जा रहे हैं, लेकिन अब 20 लोगों की जिंदगी चली गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक होटल में आग लगी और 20 लोग जल जाते हैं, 20 लोगों की जान चली जाती है। सवाल ये है कि होटल चल कैसे रहा था? क्या अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी इस तरह की सिचुएशन बनी तो निकलने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए थे। मुख्य द्वार पर बताया जा रहा है कि ताला लगा हुआ था, लोग बाहर निकल नहीं सके। जान बचाने के लिए लोगों को जान दांव पर लगानी पड़ी, उनको छतों से 3-3 फ्लोर ऊपर से नीचे कूदना पड़ा और कुछ लोग तो उसी समय बताया जा रहा है कि खत्म हो गए। अब 20 लोगों की जान चली गई। देश की राजधानी दिल्ली का सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। मालवीय नगर पौश इलाका, उसका हाल आपको बता रहे हैं। वहां एक होटल चल रहा था जहां पर स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से आकर लोग रह रहे थे। उस जगह पर एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में आग लग जाती है। फ्लरिश स्टे नाम बताया जा रहा है इस होटल का जिसमें यह आग लगी। होटल फ्लरिश स्टे, उसमें यह आग लगी और उसके बाद आग ऐसी लगी कि जो लोग भीतर थे वो बाहर निकल नहीं पाए, उनका दम घुटता चला गया। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जितेंद्र, 20 लोगों की जान चली गई है, यानी कि भारी अनियमितताएं हुई है, लोगों को बचने का समय नहीं मिला, बहुत बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है यहाँ तो।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया जा रहा है। सतीश उपाध्याय जी भी,
3: कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर गद्दे रख करके, उस समय जब तक टीम आई थी तो लोग निश्चित रूप से ऊपर से उनको, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की है क्योंकि धुआं होता है तो उस समय रेस्क्यू जैसे आप कर सकते हैं, वॉट एवर बेस्ट इज पॉसिबल, सरकार के लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने मिलकर के गद्दे नीचे रख करके निश्चित रूप से ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि जैसे ही घटना हुई तो तुरंत एकदम ऑपरेशन शुरू हो गया। ये 8:51 की घटना है और इसलिए 9 बजे ऑपरेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया था, तो इसलिए ये जितना जो हो सकता था उसका बेस्ट
4: कैजुअल्टी बहुत 20 बता रहे हैं।
3: देखिए अब ये मैंने कहा ना, ये तो अब इस समय मैं आपको कोई कारण बता दूं कैजुअल्टी का, इट इज नॉट पॉसिबल और ये सही भी नहीं है, लेकिन क्या कारण हुआ है, नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ, ये तो जांच का विषय है, शॉर्ट सर्किट हुआ।
2: सतीश जी, लेकिन जो जानकारी मिल रही कि इसमें बेसमेंट की तरफ जो चैनल था उसमें ताला लगा हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे और उसको जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची तो उसको काट करके उस चैनल को खोला गया।
3: निश्चित रूप से यहां पर जो ये जो होटल बना हुआ है इस पर BNB का कोई लाइसेंस था इसके पास और उसके कारण से यहाँ जो सामने मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं और उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। ये 9:51 की घटना है और उसी के बाद से हम सब लोग 8:51 की घटना है, उसी के बाद से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय नागरिकों ने और फायर ब्रिगेड ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने और खासकर इनका जो बेसमेंट का एक रास्ता
2: था। सर, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, फायर सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं थी, चैनल बंद था, उसके बावजूद भी इतने लोग यहाँ पर रह रहे थे।
3: मेरा ये कहना है कि सवाल उठाना आपका काम है और सवाल आप उठाएंगे ही। मेरा काम, पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो है राहत के कार्य, मेरी प्रायोरिटी है पहले लोगों को बचाना, मेरी प्रायोरिटी है लोगों को यहाँ से निकालना और वही काम हम कर रहे हैं। अब ये सवाल जवाब जांच के विषय हैं वास्तव में, जहां जो जिसने जो कमी की होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से रूथलेसली करनी चाहिए और इसमें किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने भी कोई गलत तरीके से कार्य किया है हम किसी भी गलत चीज के साथ नहीं, लेकिन पहले ही मेरी प्राथमिकता यहाँ पर बचाव का कार्य, राहत का कार्य और अपना जो काम करना है वो काम हम कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, तो बचाव एवं राहत का कार्य जो है इस पूरे इलाके में किया जा रहा है। एक बार फिर से आज तक के दर्शकों को तस्वीर दिखाते हैं पीछे की तरफ की, किस तरीके से आप सामने देख रहे हैं कि ये पूरी जो बिल्डिंग है ये धू धू करके 8:30 बजे के आसपास ये पूरी जली और इसके अंदर इमारत के अंदर करीब 37 से 38 लोग उस दौरान मौजूद थे, जिसमें से रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड के द्वारा करीब 8:50 के आसपास जो है ये चलाया गया। और ये सामने की तरफ जो बेसमेंट है ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि बेसमेंट में जो ये बना हुआ चैनल है इसको पूरी तरीके से ताले से बंद किया गया था, जैसा कि यहां के लोकल्स बता रहे हैं, और इसमें नीचे लोग फंसे हुए थे, उनको निकालना काफी मुश्किल हुआ और जिसके चलते कई इसमें फॉरनर्स जो है जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए
1: जितेंद्र खुद मंत्री जानकारी दे रहे हैं कि 37 लोग वहां से निकाले गए, 20 लोगों की तो जान चली गई है। 10 मिनट में मंत्री आशीष सूद भी पहुंच रहे हैं आपके पास, हम लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने भी ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है और ये बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस समय ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि ये बहुत बहुत बहुत दुखद ये घटना है और जो भी इसमें जान गए हैं ये बहुत हमारे दुखद है। फायर इंसिडेंट जो हुआ मालवीय नगर में, हम दिल से संवेदनाएं प्रकट करते हैं। हम आपको ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ट्वीट है, इस ट्वीट में वो संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो घायल हैं उनकी रिकवरी, जल्द से वो स्वस्थ हो जाए ये प्रार्थना कर रहे हैं इमीडिएटली हमने। लेकिन अगर आप गूगल पर इस समय सर्च करेंगे इस होटल के बारे में, 25 कमरे चल रहे थे, तमाम दूसरी तरह की एम्यूनिटीज का दावा, आपको कोई भी वेबसाइट ले लीजिए जो इस समय आप देखेंगे सब वेबसाइट में इसकी जानकारी है, 6 कमरे की इजाजत यानी कि BNB की इजाजत थी, जैसा कि सतीश उपाध्याय जो विधायक हैं वहीं से मालवीय नगर से वो बता रहे हैं कि इसके पास ये BNB की इजाजत थी, लेकिन वहां होटल चल रहा था, इतने ज्यादा कमरे चल रहे थे, लापरवाही प्रशासनिक सरकारी स्तर पर दिख रही है। सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत, लेकिन वहां पर ज्यादा कमरे चल रहे थे, 25 कमरे चल रहे थे, कोई देखता नहीं है। हमारे साथ जितेंद्र, हमारे संवाददाता जितेंद्र, 6 कमरे बनाने की इजाजत, 25 कमरे संचालित हो रहे थे, अभी भले ही सरकारी लोग ये कह दें, नेता लोग ये कह दें कि अभी हमारी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन करने में है, उनको बचाने में है, सवाल यह कि आपने चेक ही नहीं किया, 6 कमरों वालों को आपने 25-25 कमरे बनाने दिए और आपने देखा तक नहीं, या फिर उन्होंने शायद इतना खिला दिया हो किसी को, अधिकारियों को, कि जरूरत ही नहीं पड़ी, देखा ही नहीं जानबूझकर।
2: देखिये राजीव, इस तरीके के सवाल हमेशा से उठते हैं जब भी कहीं पर आग लगती है। हमने इससे पहले भी देखा कि किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो वहां पर ना तो फायर सेफ्टी का इंतजाम किसी भी तरीके से होता है और ना ही वहां पर जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहां पर भी 6 कमरों की इजाजत थी लेकिन 25 कमरे जो है वो बने हुए थे और उनको जो है यहां पर बाकायदे किराए पर उठाया जा रहा था। जानकारी ये भी है कि रेस्टोरेंट था, उसके साथ साथ जो अलग अलग फ्लोर्स बने हुए थे, यहां आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक बेसमेंट में भी लोगों के रुकने का जगह यहां पर बनाई गई थी, जिस वजह से जो लोग बेसमेंट में फंसे हुए थे और आखिर इसमें ताला क्यों लगाया गया था, एक ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब लोग आ जा रहे थे उनका मूवमेंट होता था तो ताला आखिर क्यों लगा हुआ था। इसमें जो लोग फंसे हुए थे उनको बचा पाना काफी मुश्किल था और फायर ब्रिगेड या फिर जो लोकल लोग यहां पर जब काम कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई तो उस दौरान उनके द्वारा ये आज तक को जानकारी दिया गया कि यहां पर ताला लगा हुआ था और कटर के जरिए बाकायदे इसको काटा गया, काटने के बाद यहां से लोगों को निकाला जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल जरूर उठता है कि ऐसी बिल्डिंग जहां पर सिर्फ 5 कमरे को उठाने के लिए या फिर यहां पर रूम्स जो है देने की सुविधा या परमिशन दी गई थी उसमें 25-25 कमरे आखिर किस वजह से चल रहे थे, यहां पर क्या पुलिस प्रशासन ने देखा नहीं या फिर इलीगल तरीके से यहां पर कंस्ट्रक्शन
1: किया है। बिल्कुल, बेड एंड ब्रेकफास्ट BNB, जितेंद्र देखा होता तो ये हालत नहीं होती ना, देखा होता तो 25 कमरे नहीं बनते, नहीं देखा था। नहीं देखा था और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी भीषण आग लगी और 20 जिंदगियां चली गई और ये संख्या बढ़ सकती है। अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, छत से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए उनको कूदना पड़ा, जान दांव

0: पर लगानी पड़ी, यानी कि उनको मजबूर किया गया सिस्टम के द्वारा। जितेंद्र, एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आप जरा तस्वीरें भी दिखा दें, अगर वहां मेरी आवाज आपको मिल रही हो। मैक्स हॉस्पिटल से कितना दूरी पर है, मेन जो मालवीय नगर जो हाईवे है उस हाईवे से कितनी एग्जैक्ट दूरी पर है ये होटल?
1: बिल्कुल राजीव, मैं एक बार आपको तस्वीर भी दिखाता हूं, और यहां से मैक्स हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। नजदीक होने की वजह से ही बहुत सारे लोग यहां पर रूम लेकर के रहते थे। ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग है या छोटे छोटे होटल्स जो हैं यहां बने हुए हैं, जहां पर लोग कमरा लेकर के इस वक्त रह रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, और विदेश से जो लोग आते हैं खास तौर पर वो लोग यहां पर रह करके इलाज कराते हैं। एक बार तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं इस तरफ से कि सामने जो पूरी ये बिल्डिंग है ये किस तरीके से जली हुई है। ऊपर तक आप देखिए कि जितने भी फ्लोर हैं सारे फ्लोर में पूरी तरीके से आग लग गई थी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब नीचे रिसेप्शन एरिया से आग लगी तो उसके बाद जो है पूरी तरीके से धुआं ऊपर तक फैलता गया, तो बहुत सारे लोग जो उसमें जो रूम में रह रहे थे वो तमाम लोग जो है वो कोई टॉयलेट में जाकर के छिपा, तो कोई जो है साइड में जाकर के दीवारों की तरफ, क्योंकि एग्जिट का दरवाजा नहीं था, बाहर निकलने का दूसरा कोई दरवाजा नहीं था, इस वजह से बहुत सारे लोग जो है फंस गए। जब फायर टेंडर यहां पर करीब करीब 8:50 के आसपास पहुंची तो उसके बाद जो है यहां से लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि वन वे रास्ता था, निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था राजीव, इस वजह से ये काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हुई। और इसमें जो ट्रेजेडी हुई है 20 लोगों के मारे जाने की,
2: जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया, और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है, हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है।
3: सर कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है, कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं?
2: देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअल्टी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को सर
3: कितनी डेथ्स अभी तक क्लियर
2: हुई? डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितनी कैजुअल्टी डेथ में कन्वर्ट हुई है और कितनी कैजुअल्टी हुई है।
3: सर क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी, क्या कुछ काम हो रहा था, कमीशन थी रेजिडेंसी?
2: देखिए ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है, और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ये पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे ये अभी मेरे पास डाटा नहीं है, हमें कुछ बारे में जानकारी नहीं है।
3: सर फॉरनर्स भी रह रहे थे कुछ?
2: हाँ फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं जो हमने, जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया है कुछ फॉरनर्स भी थे। स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था, अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है, बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया बिल्डिंग।
0: तो चीफ फायर ऑफिसर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम मौके पर पहुंच गए थे, हमने कुछ लोगों को वहां पर बचाया भी, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हमने वहां पर चलाया, लेकिन ये जो होटल फ्लरिश स्टे है जिसमें ये आग लगी वो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वेबसाइट पर अपने आप को कुछ इस तरह से प्रसारित करता है कि हम तत्काल अलग अलग तरह की सुविधाएं देते हैं, हम कुतुब मीनार कितने पास हैं, लोटस टेम्पल, लोधी गार्डन, हुमायूं टॉम्ब, इन सबसे बहुत नजदीक है, और उससे सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल का नजदीक होना। मैक्स हॉस्पिटल के सबसे नजदीक था, इसे एक प्लस पॉइंट के रूप में दिखाता था, और जब ज्यादा ग्राहक मिलते थे तो 6 की परमिशन थी लेकिन 25 कमरे बना दिए गए थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र है। जितेंद्र, क्या इस होटल मालिक ने कोई प्रयास किया अब तक वहां पर आने का, या शायद उसको जानकारी मिल गई होगी कि बहुत बड़ी गलती हुई है, शायद वो भी अब उसको एक बड़ा मौका मिल गया होगा भागने का, 6 की इजाजत 25 कमरे बना दिए गए?
1: देखिए राजीव, होटल मालिक के बारे में जब हमने यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे पूछने का प्रयास किया तो उनको भी उनके ना तो नाम के बारे में जानकारी मौजूद है और ना ही उनके बारे में किसी भी तरीके से जानते हैं। अभी भी यहाँ पर जो होटल मालिक हैं वो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर परमिशन दी गई थी सिर्फ 6 कमरों को बनाने के लिए करके, अब यहाँ पर 25 से जो है 26 कमरे बना दिए गए थे। जो यहाँ पर घटना घटित हुई है, जब आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी रूम के जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी अभी भी यहाँ पर खाली कराने के लिए जो है लोगों को लाया जा रहा है। बहुत सारी जो ट्रैफिक पुलिस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो मशीनरी है उसको भी लाया जा रहा है कि इसको कूलिंग ऑफ किया जाए इस पूरे इलाके को, और सही तरीके से यहाँ पर अगर कोई बचा हुआ है या फिर उसको छानबीन करके देखा जाए। तो इस तरीके की पूरा रास्ता जो है उसको इस वक्त क्लियर किया जा रहा है दिल्ली पुलिस ट्रैफिक के द्वारा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग यहाँ के हैं वो इस तरीके की जानकारी भी दे रहे हैं कि क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल है और इसके साथ साथ आसपास बहुत सारे जो है टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इस वजह से
0: यही मेरा सवाल है। मैं जितेंद्र ये बताएं, जहाँ पर जब एक होटल है तो ऑब्वियस है, बगल में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं तो और भी होटल होंगे। एक बार मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस गली में जो है दर्शकों को दिखाएं, क्या एकमात्र यहाँ पर होटल था, बीएनबी था, या और भी यहाँ पर लाइन इस तरह से होटल बने हुए?
1: ये होटल है, इसके साथ साथ इसके बगल में माइक्सा रूम्स जो लिखा हुआ है अवेलेबल
4: जाते हैं
5: बिल्कुल। और देखिए अभी मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जब ये जो बिल्डिंग बिजली वो काटी गई है बिजली डिपार्टमेंट के जनरल लोकेशन से, आप देखिए यहाँ पर तो कुछ इस तरीके का ये इलाका है इसका।
0: ये उस समय की तस्वीरें सुबह की जब आग लगी थी हम दिखा रहे हैं, और हमारे संवाददाता अभी ग्राउंड जीरो पर हैं, हम जो आवाज सुन रहे थे हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी वहां पर हैं। लेकिन जितेंद्र एक बार फिर से आपके पास आते, मैं चाहता हूं कि एक बार जो तस्वीर दिखाएं, कुल कितने होटल चल रहे हैं और क्या सबको वही लाइसेंस है बीएनबी का?
1: और बिल्कुल राजीव, यहाँ की एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो पूरा रास्ता है ये सामने की तरफ जाता है मैक्स हॉस्पिटल की तरफ, और इस वजह से क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल यहाँ पर नजदीक है, कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो यहाँ पर नजदीक हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है वो दूसरे होटल्स भी बने हुए हैं। और आप तस्वीरों में यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सामने जिस होटल में आग लगी है उसमें दूसरा माइक्सा इन करके जो रूम अवेलेबल है इस तरीके का यहाँ पर दूसरा होटल बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लेमन ग्रीन इन ये भी यहाँ पर रूम्स मौजूद हैं, तो इस तरीके की जानकारी है यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे लोकेशन यहाँ पर दी गई हैं जिसके आधार पर यहाँ पर होटल दिए गए हैं। इस होटल की अगर बात करें जिसमें आग लगी है और इतने लोगों की मौत हुई है, इसके बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि 6 रूम केवल यहाँ पर उसको इजाजत मिली थी यहाँ पर, लेकिन 25 से 26 रूम को है उनके द्वारा दिया गया था यहाँ पर, ये लोग उठाते थे और उसको जो है बुक किया जाता था इनके द्वारा, तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो नॉर्म्स का उल्लंघन पूरी तरीके से इस पूरे इलाके में किया गया है, यही वजह है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो होटल के मालिक हैं वो आखिर कहाँ पर हैं। हालांकि रेस्क्यू और जो रिलीफ ऑपरेशन यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जो ऊपर तक आग लगी हुई थी उसको पूरी तरीके से बुझा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो होटल के ओनर हैं वो यहां पर किसी भी तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमने जैसा कि बताया था आपको कि माइक्सा इन
0: जितेंद्र नजर बनाए रखे, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जो तस्वीर एक एक तस्वीर दिल्ली सरकार से सवाल पूछती हुई है कि आप सिस्टम बदलने के लिए आए थे, लेकिन क्या सिस्टम बदला? जिसको परमिशन 6 कमरों की होती है वो 25 कमरे बनाकर वहां होटल संचालित कर रहा था, आखिर कैसे? अरविंद ओझा इस समय ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हैं। अरविंद, तस्वीरें भी दिखाएं और जो उठते हुए सवाल हैं, मैं चाहता हूं आपकी आवाज बड़ी बुलंद है, सरकार से सवाल भी, क्या क्या सवाल उठ रहे हैं इस पूरे हादसे से जुड़े हुए?
5: देखिए, ये जो सिस्टम है ये एक दशकों से चल रहा है दिल्ली में, और मैं सीधे आपको तस्वीर ही दिखाता हूं। देखिए, ये फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया है, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाऊं। ये देखिए, ये बिल्डिंग के नीचे अगर आप देखें तो रजाई गद्दा पड़ा हुआ है और कांच जो है वो टूटा हुआ है। दरअसल जब ये बिल्डिंग, ये जो पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जब आग लगी तो उसके बाद पैनिक फैल गया, जो बिल्डिंग से लोग कूदने लगे। तस्वीरें भी आज तक के पास है जिसमें लोग

0: से कूद कर अपनी जान बचाने लगे, तब नीचे गद्दा लोकल लोग हैं उन्होंने बिछाया ताकि लोगों को चोट न लगे। बावजूद इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी थोड़ी देरी हुई और 35 लोग इसमें घायल हुए, जिसमें से 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाकी लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली के 3 अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया है। बेसमेंट पर रेस्टोरेंट चल रहा था। अब इस रेस्टोरेंट में की एनओसी किसने दी? क्या एमसीडी यहाँ पर नहीं आती? क्या फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं आती? क्या दिल्ली पुलिस यहाँ पर नहीं आती? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसकी जाहिर सी बात है हर हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं। पहले क्यों नहीं इस तरह के जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं या बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा है, होटल चल रहे हैं, उनकी जांच परख की जाती है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के एक इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, 6 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ, लेकिन नतीजा क्या निकला? सवाल ये है कि ये रेस्टोरेंट बेसमेंट में कैसे चल रहा था? क्या फायर की एनओसी इसको मिली हुई थी? एनओसी मिली तो किसने एनओसी दे दी? और ये पूरा जो इलाका है इसको देखिए फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया।
1: अरविंद, कुछ टेक्निकल इशू भी आवाज में, लेकिन लेकिन एमसीडी पर भी सीधा सीधा सवाल है। आपने व्यापार की इजाजत कैसे दी? सवाल एनओसी को लेकर, कोई आया चेक करने के लिए? क्या फायर सेफ्टी के उपकरण थे, नहीं थे? क्या किसी ने चेक किया बेसमेंट में, वहां पर कमरे संचालित हो रहे थे? क्या कोई देखने के लिए आया? सवाल अब यह रह नहीं गया कि क्या कोई देखने के लिए आया, कोई देखने के लिए आया ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या उन दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी अब, जिनकी जिनके अंडर में था पूरा का पूरा एरिया जहां पर यह व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गया था, 6 कमरों की जगह 25 कमरे खुल गए थे। अरविंद, अगर आवाज मिल रही है तो प्लीज ये भी बताएं कौन है इस होटल का मालिक, जो कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया में, तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसने कहीं पर भी अपने आप को BNB नहीं बताया है, होटल बताया है।
0: बिल्कुल, देखिए, और मैं पहले आपको एक तस्वीर दिखा दूं, यहाँ कुछ अधिकारी हैं इंक्वायरी करने के लिए। साथ ही साथ देखिए, जब भी इस तरह का हादसा होता है तो होता ही है कि कुछ इंजीनियर एमसीडी के असिस्टेंट वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं और उसके नाम पर खाना पूर्ति होती है। प्रॉपर पूरे दिल्ली में एमसीडी ड्राइव क्यों नहीं चलाती? क्यों फायर डिपार्टमेंट कोई ड्राइव नहीं चलाता कि जिस तरह से जो अवैध तरीके से या जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते वो रेस्टोरेंट बंद कराया जाए? वो सब कुछ होता नहीं है। जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद जो मालिक है उसको गैर इरादतन हत्या में गिरफ्तार किया जाता है, कुछ महीनों बाद उसको जमानत मिल जाती है। यही सब कुछ दिल्ली में चलता है और बीते कई सालों से चल रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वक्त आ चुका है कि सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर दिखाते हुए हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर 20 लोगों का जिम्मेदार कौन है? क्या फायर डिपार्टमेंट?
1: अरविंद, सवाल बिल्कुल, अरविंद बहुत सारे हैं। और क्या अब हत्या का मुकदमा उन अधिकारियों पर नहीं चलना चाहिए जो इस तरह से अवैध गतिविधियां होने देते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं? वो तनख्वाह तो पूरी लेते हैं आम आदमी के जेब के, आम आदमी के टैक्स के पैसों की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पैसा दिया जाता है, उन टैक्स की मोटी गाढ़ी कमाई तो लेते हैं वो, लेकिन अपना काम नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। वो इन तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी पैसा लेते हैं और एमसीडी का करप्शन तो किसी से छिपा ही नहीं है। एमसीडी का करप्शन कभी बदल नहीं सकता, ये तो दिल्लीवासी कहते हैं कि यहां पर काम करना यानी कि बहुत पैसा आपकी जेब में होना चाहिए। यही वजह है कि बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश का ऐसा है जो युवा है, जो व्यापार नहीं कर पाता क्योंकि इतना पैसा रखना पड़ता है अपने साथ में जब उनको इस तरह से व्यापारिक प्रतिष्ठान की शुरुआत करनी होती है। जिनके पास पैसा होता है उनकी तो मौज होती है क्योंकि उनको सारे काम की इजाजत मिल जाती है, अवैध काम करने की भी इजाजत मिल जाती है। और मालवीय नगर की यह घटना इस बात की तस्दीक करता है, बयां करता है कि अवैध तरीके से सब कुछ हो सकता है दिल्ली में। दिल्ली का सबसे पॉश इलाकों में से एक माना जाता है मालवीय नगर, जो मोटी आसामी है दिल्ली के, वो लोग यहां पर रहते हैं और उस जगह पर यह होटल संचालित हो रहा था। एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पर इलाज के लिए विश्व भर से लोग आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, लोग आते हैं यहां पर इलाज के लिए। और वहां पर एक होटल था क्योंकि वहां पर बिल्कुल नजदीक में मिल जाता है होटल के लोगों को रहने के लिए कमरे, तो उसने पहले 6 कमरे, फिर कमरों की संख्या बढ़ाता चला गया। हमारे संवाददाता अरविंद लगातार हमारे साथ है। अरविंद, पैसों के लालच में क्या क्या नहीं हो जाता है? अब एक बार अगर आपके पास इस ओनर के संबंध में अगर कोई डिटेल है तो प्लीज वो भी बताएं कि कौन है ये ओनर, कितने साल पहले उसने ये होटल बनाया था।
0: देखिए, मैं जो आपने पूछा सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ क्या मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज होती है, क्यों नहीं जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है? बीते वक्त में देखा गया जब भी कोई हादसा होता

0: अधिकारियों पर का एक्शन के नाम पर खानापूर्ति है और होती है और उनको ट्रांसफर किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। अब जरूरी है कि वो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, उनके खिलाफ भी
1: तो बहुत नुकसान हुआ है।
2: अरविंद, लौटते हैं हम आपके पास, लेकिन दिल्ली में चीख पुकार मची है। क्या ये चीख पुकार उन नेताओं के कान तक पहुंच रही है? क्या ये चीख पुकार, ये दर्द क्या उन अधिकारियों के कान तक पहुंच रहा है जिन्होंने उन फाइलों पर साइन कर दिए कि यहां पर सब कुछ ठीक है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 20 लोगों की जिंदगी चली गई है। इस सिस्टम की लापरवाही की वजह से 20 लोगों की जिंदगी चली गई है। इस सिस्टम के करप्शन की वजह से 20 लोगों की जिंदगी चली गई है। संख्या बढ़ सकती है। अभी सवाल यह कि कब तक लोगों को मरता हुआ देखा जाए? कभी बिल्डिंग गिर जाती है, कभी लोगों को चाकू छुरा घोंप दिया जाता है, कभी इस तरह से होटल में आग लग जाती है। हर तरफ आम आदमी मारा जा रहा है। कब तक आम आदमी इस तरह से मारा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर बार अग्निकांड होते, क्या कोई पहला मामला है? ये कोई पहला मामला नहीं है। हमने गोवा में इतना बड़ा अग्निकांड देखा, इसी तरह से अवैध रूप से गतिविधि हो रही थी। क्या सीखा हमने? अधिकारियों ने कुछ भी नहीं
3: तो
2: सीखा।
3: हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअल्टी इसमें काफी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। ठीक है, आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअल्टी इसमें काफी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया।
2: अधिकारियों को आपने सुना कि हमने पूरी बिल्डिंग को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन एक और चीज क्लियर हुई है, 20 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आशीष, वो भी थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर पहुंचने वाले आज तक से जुड़े थे। उन्होंने बताया कि अभी मृतकों की संख्या नहीं बता सकते, अभी हमारी प्राथमिकता अभी रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, रेस्क्यू ऑपरेशन देंगे, लेकिन प्राथमिकता यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करें। अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, अब आकर जवाब देना चाहिए, अधिकारियों को भी जवाब देना चाहिए, एमसीडी को भी जवाब देना चाहिए। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है मंत्रियों की तरफ से।
4: ये बताइए कि शुरुआत में कितने बजे जब आग लगी और उसके बाद कितने लोगों को अब तक
5: अराउंड 7:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी। उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए, तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है, और भी सेफ लोगों को निकाला और कुछ लोग कैजुअलिटीज हैं।
4: तो यहाँ पर
6: 8 बजे आग लगी थी, तो यहाँ पर जो समाज सेवी हाजी गल्लू जी सबसे पहले वो पहुंचे थे, उसके बाद आमिर, वसीम, शुएब, इसरार भाई, अनीस, ये लोग आए थे, मैं इनके बाद आया था। तो इन लोगों ने, और एक फजल था, इन्होंने गद्दे निकाल के सामने शॉप से यहाँ बिछाए थे, ऊपर थर्ड फ्लोर से 3 नाइजीरियन 4 नाइजीरियन कूदे थे, जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो जब तक, उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा, फायर की टीम आई है, गेट शटर काटा है, शटर काटने के बाद
7: अंदर घुसे, वहाँ पे हमें ब्रॉड डेड पेशेंट जो बिल्कुल ही थे, बिल्कुल जले हुए थे, वो भी लेके आए हम, और जो अनकॉन्शियस थे जिनको हमने खुद अपने हाथ से एम्बुलेंस में CPR दे देके मैक्स में नियर बाय यहाँ मैक्स किया, उसमें शिफ्ट किया था।
4: डेड बॉडी यहाँ से आप लोगों ने निकाला और कितना लोग जो है हॉस्पिटल में इस समय पर?
7: ऐसे सर, ब्रॉड डेड को डेड बॉडी तो नहीं बता सकते, मतलब हम ये बता सकते हैं टोटल पेशेंट हमने अराउंड 30 के आसपास, हमने मैक्स में 30-35 के आसपास उसमें शिफ्ट करें, जिसमें से अनकॉन्शियस भी थे और कुछ होश में भी थे।
8: घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है, कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअल्टीज भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है, हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला, ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं और खास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ जो इन्होंने बताया कि BNB बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं, तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी, प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें।
9: ये आप मानेंगे ये इलीगल चीज है और बीते कई सालों से चल रही है, इस पर कार्रवाई की जरूरत है?
8: देखिए,

0: बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो किसी एक लाइसेंस के नाम पर, मान लीजिए एयरबीएनबी या बीएनबी का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तंग गलियां हैं, छोटी जगह हैं, यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा के जो मानक हैं, फायर सेफ्टी के जो जरूरी इंतजाम हैं, वो अगर नहीं है तो उस हिसाब से किसी को भी लाइसेंस देना नहीं चाहिए।
1: नहीं, आग तो लगी 8 बजे, ये मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र का बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है ये, और एक होटल है ये, जहाँ की मेजरली ना जो मैक्स में इलाज कराने आते हैं, फॉरेन से भी लोग आते हैं, गल्फ कंट्रीज के हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के हैं, उनके परिवार यहाँ ठहरते हैं। ये सारे पूरा इलाका मेरे ख्याल होटल ही होटल होगा, आपको कमरे कमरे मिलेंगे रहने को। अब 8 बजे आग लगी है, बाहर जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, तारें जो तारों का जंजाल होता है, वहां से किचन में पकड़ा है, और किचन से फिर फ्लोर पे, फ्लोर से फिर और मंजिलों पे पकड़ लिया। वो शुक्र है क्षेत्रीय लोगों का, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। कुछ बच्चे तो यहाँ पे सीपीआर के एक्सपर्ट दिखे मुझे, जो बॉडी निकाल निकाल खुद ही सीपीआर दे रहे हैं, कईयों को रिवाइव किया उन्होंने। 27 बॉडी तो अभी तक निकली है, उसमें कह रहे हैं कि 7 तो जा चुके हैं, और कुछ नहीं तो अंदर 50 लोग तो होंगे ही होंगे, कह रहे हैं कि वो 15 से 18 कमरे अंदर थे। और मुझे जितने लोग दिखे,
2: बड़ी खबर दे देते हैं कि मरने वालों का आंकड़ा फिर बढ़ गया, और यह आंकड़ा अब 21 पहुंच गया है। मरने वालों का आंकड़ा 21 पहुंच गया है। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई, इसमें कुछ विदेशी भी हैं। एग्जैक्ट विदेशी लोगों की संख्या कितनी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये 21 लोग हैं जिनकी जान चली गई। हमने आपको बयान भी सुनाए, नेताओं के बयान भी सुनाए, जो स्थानीय विधायक है सतीश उपाध्याय, उनका बयान भी सुनाए, वो भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए कि बीएनबी का लाइसेंस था, ज्यादा कमरे कैसे बना दिए। सवाल ये है कि क्या विधायक और मंत्री भी सिर्फ सवाल उठाएंगे? उनका काम क्या निगरानी करना नहीं था? 1 साल से ज्यादा का समय सरकार को हो गया, आपने क्या बदलाव किए? मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर अब 21 लोगों की जान चली गई, लगभग 37 लोग थे भीतर जिनको निकाला गया, जिसमें से कुछ तो कुछ की जान तो उसी समय चली गई थी, कुछ को अस्पताल ले जाया गया था, और अभी 21 लोग कुल जिनकी जान चली गई है, संख्या अभी भी बढ़ सकती है।
3: वहां जो नीचे से आग लगी थी वो पूरी तरीके से धुएं से भरी हुई थी, और उस वजह से दम घुटने की वजह से इतने लोग हताहत हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहां पर जो जानकारी मिल रही है, रूम अवेलेबिलिटी सिर्फ जो है जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें 5 से 6 रूम देने की इजाजत उनको दी गई थी, लेकिन 25 जो कमरे हैं वो उनके द्वारा बना लिए गए। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया, इस बात को लेकर के सवाल जरूर खड़ा हो रहा है।
2: मालवीय नगर, वहां पर यह आग लगी, और इस आग में आपको बता दें कि अब 21 लोगों की जान चले गए हैं। आग से खुद को बचाने के लिए, उन लपटों से खुद को बचाने के लिए लोगों को आग में कूदना पड़ा, उन लपटों से कूदना पड़ा ताकि जमीन तक पहुंच सके, जहां पर एक हवा उनका इंतजार कर रही हो। नीचे कुछ लोगों ने गद्दे बिछा दिए थे, लेकिन वो गद्दे काफी नहीं थे। कुछ लोग कूदे, उनको स्वाभाविक चोट लगी है। जो समय अस्पताल में 21 लोगों की जान चली गई है, सिस्टम की लापरवाही फिर से उजागर हुई है, लेकिन फिर से क्या सिस्टम आंखें मूंद देगा? तो इसका जवाब है हां, क्योंकि हर बार हादसों के बाद एक कार्रवाई दिखाने के लिए कर दी जाती है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे, कुछ कार्रवाई कर देंगे, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी। कुल मिला के तस्वीर अगर बदलती है तो यहीं तक बदलती है, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन काम करने का तौर तरीका नहीं बदलता। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े। जितेंद्र, इस सिस्टम ने कितना मजबूर कर दिया लोगों को कि उनको अपनी जान बचाने के लिए जान दांव पर लगानी पड़ी, उन लपटों पे कूदना पड़ा कि किसी तरह क्या पता अगर नीचे गिरकर बच सकते हैं हम, ऊपर तो नहीं बचेंगे।
3: बिल्कुल राजीव, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो साफ ये बयां करती हैं कि जब नीचे रिसेप्शन का एरिया था वहां पर आग लगी, और आग लगने के बाद लोग जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगे। ऊपर जो धुआं था उसकी वजह से दम घुटने के चलते नीचे जो यहाँ पर एक कॉटन की दुकान थी जहां पर रजाई और गद्दे बनाए जाते हैं, उन रजाई और गद्दों को नीचे जो है यहाँ का के जो लोकल्स हैं उन लोगों ने उसको नीचे बिछाया और उसके बाद नीचे लोग कूद रहे हैं। इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर जो लोग जिनको की दम घुट रही थी, लोकल्स जो यहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे

0: जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये जानकारी दिया कि बहुत सारे लोग जब वो लोग निकाल रहे थे अंदर से तो टॉयलेट में भी फंसे हुए थे, उनकी दम घुटने की वजह से वहां पर वो बेहोश थे, टॉयलेट के अंदर से लोगों ने निकाला तो लोग लगातार सांस लेने की कोशिश ऊपर की तरफ कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई थी वैसे में निकलना काफी मुश्किल था क्योंकि एक ही रास्ता था।
1: सिस्टम ने बिल्कुल मुश्किलों में डाला और हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, दिल्ली की तस्वीर सुधरनी चाहिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो गया हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: जैक एफएम नाउ प्लेइंग व्हाट वी वांट कमर्शियल फ्री ऑन ट्यून इन प्रीमियम।
5: What you got for me, Jack?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
6: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
7: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
8: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT by Ekdam Solid.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
6: सोच बदलो और बैंक भी.
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
7: जहाँ खबर वहाँ खबरदार.
0: In association with
11: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
12: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर पिछले दो तीन दिनों से यही प्रक्रिया

0: दोबारा देखने को मिल रही है, एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
1: ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोप के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक हाकिमपुर।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste.
0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
5: What you got for me, Jack?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Complete oral health ka sach.
7: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
8: Money, money, money, money, every month.
9: Soch badlo aur bank bhi.
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद
15: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
16: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने की तैयारी। नई सरकार 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। ज्योतिषियों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। पटना पुलिस के सिरदर्द बना कोचिंग माफिया। गोलीबारी वाले बयान से पलटे खान। पहले कहा था गोली चली। दो कोचिंग सेंटर्स में वर्चस्व की लड़ाई का मामला।

होटल में भीषण आग, 21 लोगों की झुलसकर मौत, 40 लोगों को बचाया गया। होटल में रुके थे कई विदेशी नागरिक। मालवा नगर अग्निकांड के पीछे घोर लापरवाही के सुराग, 6 कमरों की परमिशन लेकर होटल में चलाए जा रहे थे 25 कमरे, हादसे के वक्त लॉक था बेसमेंट का एक गेट। बंगाल में बहुत बड़ी सियासी हलचल, बागी विधायकों ने 60 एमएलए के समर्थन

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। नॉन स्टॉप कवरेज जारी है दिल्ली में भीषण अग्निकांड का। मालवीय नगर से ये दर्दनाक खबर अब से कुछ ही देर पहले आई। दिल्ली के होटल में लगी आग से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है। 40 लोगों को सकुशल होटल से बचा लिया गया है। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों को इमारत से बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल भेजा गया है, लेकिन कई लोग धुएं और आग की चपेट में आ गए और आग इतनी जोरदार थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से ये आग लगी है जाहिर तौर पर घोर लापरवाही, और अगर जो लोग उस एरिया से वाकिफ हैं वहां पर क्लस्टर में घर बने हुए हैं एक के बाद एक, बीच में जगह भी नहीं है, ऐसे में आग फैल भी सकती थी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता था, और हो सकता है इस तरह के अवैध अनैतिक तरीके से और भी हॉस्टल्स और होटल चलाए जा रहे हैं उसी इलाके में।
1: हमारे साथ हैं
2: जो है,
0: ठीक है, जितेंद्र की आवाज नहीं आ रही है। अरविंद, अगर आपने मेरा सवाल सुनाओ।
3: आप बिल्कुल देखिए, आप नेहा, बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में आ रही है और 8:48 पर ये आग लगी थी। शुरू में जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है उसने 10 गाड़ी,
4: देखिए आज से 3 महीने पहले पालम में आग लगी, फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, लोगों ने कहा कि फायर ब्रिगेड के पास इक्विपमेंट नहीं था, सरकार ने झूठ बोला, सरकार ने कहा कि हमने कमेटी बना दी डीएम की, 1 महीने में 1.5 महीने में रिपोर्ट आएगी, आज 3 महीने हो गए रिपोर्ट तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जवाबदेही से जो है लोग भागना चाहते हैं। फिर विवेक विहार में आग लगी, वहां फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं था, प्रेशर नहीं था, उस पर भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। तो जब कार्रवाई ही नहीं होगी तो आप कैसे बचाएंगे? यहाँ भी जो बेचारे यहाँ के लोकल लोग हैं, फौजरानी के लोग हैं, उन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए तो लोग कूदे और उसके बाद लोगों को बचाया गया, और हम सब ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्हीं का दोष है।
5: सर, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो यहाँ पर बेसमेंट में लोग रह रहे थे वो रूम में रुकते थे, वो पूरा चैनल बंद हुआ था, उसको ताला काट करके और ग्रिल काट करके जो है उसको निकाला गया है लोगों को। वहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, 5 रूम 6 रूम की यहाँ पर इजाजत थी, 25 रूम बने हुए।
4: देखिए ये तो सरकार का टूल किट है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये एक टूल किट सूत्रों के नाम से डालती है। क्यों डालती है? आप ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये जो लोग मरे हैं ना, ये खुद ही इनके ऊपर ही दोष डाल दिया जाए, ऐसे कोई ना होता है। थोड़ी तो यार अपने अंदर मानवता रखो।
5: लेकिन सर, बिल्डिंग का जो
4: सरकार का कोई दोष है,
5: रास्ता है,
4: आप मुझे बताओ सरकार का कोई दोष
5: तो जो लोग जिम्मेदार है उनका सबका दोष
4: कौन है? सरकार में किसका दोष है? मंत्री का दोष है?
5: सभी लोगों का दोष है, जो यहाँ का लोकल प्रशासन है जिन्होंने इजाजत दी है, जो मंत्री है सबका दोष,
4: मंत्री का दोष।
5: आपकी सरकार जब थी तो उस समय भी सब,
4: हमारी सरकार का छोड़ दो, हमारी तो अब नहीं है। अभी आशीष सूद का दोष है ना कि बार बार आग लग रही है, क्यों नहीं उसके ऊपर काम हो रहा? आप लोग चाहते हैं अरे गरीब आदमी है इसी के ऊपर दोष डाल दो, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे होटल बन रहे हैं तो आप ही लोगों ने तो चलवा रखे हैं, आप और बड़े बड़े होटल बना दो, लोग बड़े बड़े होटलों में चले जाएंगे, लोगों के पास नहीं है जगह इसलिए लोग यहाँ रहते हैं।
5: लेकिन प्रारंभिक जो छानबीन या जांच करना या प्रशासन का काम होता है, मीडिया उस पर नजर रखता है, और आप इस तरीके के सवाल,
4: सूत्र की समस्या क्या है?
5: सूत्र नहीं, ऑथेंटिक जानकारी।
4: आपका चैनल
0: सवाल करिए, जितेन इनसे ये सवाल करिए कि परमिशन आज तो नहीं ली गई, कुछ महीने पहले तक तो इनकी सरकार थी, जो ये उल्टा मीडिया पर चढ़ाई कर रहे हैं, परमिशन तो इनके राज में भी ली जा सकती है ना, उसके बाद 6 कमरे की इजाजत और फिर 25 बन गए वहां पर, ये एकाएक रातों रात तो नहीं हुआ है ना?
4: नहीं, हमारा तो एमसीडी का भी नहीं था, तो एमसीडी का काम है, एमसीडी तो इनके पास 17 साल से इनके पास है।
5: तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण से तो होगा नहीं, जिम्मेदारी सर किसकी तय हो?
4: हमारा तो नाम ही नहीं है, जिसकी सरकार है उससे बात करो ना, हमारा लेना देना क्या है इसके अंदर? आप समस्या क्या है, आज तक की समस्या क्या है कि आप सरकार के टूल किट का हिस्सा हो?
5: नो, ये गलत है, तो कोई टूल किट का हिस्सा नहीं होता। जो भी जानकारी होती है वो जो सटीक और सत्य जानकारी होती है आज तक सबसे पहले।
4: आप तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं।
5: नो, गलत है, ये गलत है।
0: दोषारोपण से कुछ हासिल नहीं होगा सौरभ भारद्वाज को, सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि इनकी सरकार में भी कई ऐसी चीजें हो रही थी, कई ऐसी चीजें वहां पर चल रही थी जिसकी वजह से लोगों की जान संकट में थी। वहां की तस्वीरें दिखाइए, इन्हें छोड़ दीजिए, ये इसी तरह के दोषारोपण करते रहेंगे क्योंकि जवाब किसी के पास भी नहीं है। वहां पर तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात है अभी, क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है? मुझे लगता है जितेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, सौरभ भारद्वाज का ये कहना कि सारी गलती मौजूदा सरकार की है, आशीष सूद को देखना चाहिए, ये वाकई सच नहीं है क्योंकि आप और हम भी जानते हैं कि दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं और खासतौर पर ये क्लस्टर की समस्या है वहां पर, सिर्फ मालवीय नगर में इस लोगों की होती है, 60 लोग पाए जाते हैं, तो ऐसे में कार्रवाई किस पर और कब तक होगी? क्योंकि अब 20 लोगों की मौत हो गई है तब ये मामला सामने आया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, और देखिए अभी 21 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं नेहा, और उस पर राजनीति भी शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको साफ यहां पर कर दूं कि आप जो ये पूरा हादसा हुआ है, ये जो जमी जमाई व्यवस्था है, ये कई दशकों से दिल्ली में चल रही है। ये जो होटल है ये आज 1 महीने 2 महीने पहले

0: मौत की जंग लड़ रहे हैं नेहा, और उस पर राजनीति भी शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको साफ यहां पर कर दूं कि आप जो ये पूरा हादसा हुआ है, ये जो जमी जमाई व्यवस्था है, ये कई दशकों से दिल्ली में चल रही है। ये जो होटल है, ये आज 1 महीने 2 महीने पहले शुरू नहीं हुआ है, ये कई सालों से चल रहा है। और इसको फायर की एनओसी मिली थी नहीं मिली थी, इसकी अब जांच होगी। लेकिन ये कह देना कि अभी 1-2 दिन में शुरू हुआ है, ऐसे कई हादसे हुए हैं और सालों से इस तरह के हादसे होते रहे हैं दिल्ली में। पूरी दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे आप मेहरोली में भी कुछ दिन पहले 6 लोगों की मौत हुई, और अब ये जानकारी भी आ रही है नेहा कि जो 21 लोग मरे हैं उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं।
1: ठीक
0: अधिकारी है, उनकी लापरवाही भी है, फायर
1: है, सभी
0: डिपार्टमेंट
1: की
0: की
1: लापरवाही
0: लापरवाही है।
1: सामने आती है। उसके बाद कुछ दिन मामला जब जस का तस हो जाता है, उसके बाद फिर इस तरह का एक हादसा हो जाता है, फिर ये मामला संज्ञान में आता है। वहां पर किस तरह के हालात हैं अभी जितेंद्र बने हुए? क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है?
0: ये कई सालों से चल रहा है, और इसको फायर की एनओसी मिली थी नहीं मिली थी, इसकी अब जांच होगी। लेकिन ये कह देना कि अभी 1-2 दिन में शुरू हुआ है, ऐसे कई हादसे हुए हैं और सालों से इस तरह के हादसे होते रहे हैं दिल्ली में। पूरी दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे आप मेहरोली में भी कुछ दिन पहले 6 लोगों की मौत हुई, और अब ये जानकारी भी आ रही है नेहा कि जो 21 लोग मरे हैं उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं।
1: ठीक
0: अधिकारी है, उनकी लापरवाही भी है, फायर
1: है, सभी
0: डिपार्टमेंट
1: की
0: की
1: लापरवाही
0: लापरवाही है।
1: सामने आती है। उसके बाद कुछ दिन मामला जब जस का तस हो जाता है, उसके बाद फिर इस तरह का एक हादसा हो जाता है, फिर ये मामला संज्ञान में आता है। वहां पर किस तरह के हालात हैं अभी जितेंद्र बने हुए? क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है? कहां पर एंट्री पॉइंट था, कहां एग्जिट थी? और अगर हो सके तो वो बेसमेंट तक पहुंचे जहां पर भीषण आग लगी, जिसका एग्जिट पॉइंट ही बंद था, यानी कि निकलने का कोई रास्ता
2: है वो सिर्फ जला है। ऐसे ही सीरीज में यहाँ पर इस तरीके की होटल्स हैं। नेहा आप यहाँ पर देखिए कि लेमन ग्रीन इन ये दूसरी होटल है, और ये हौज खास इलाके का जो मालवी नगर है, इस पूरे इलाके में इस तरीके के होटल्स बने हुए हैं, लोग यहाँ पर रूम लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह से लोगों को निकलना था, एंट्री पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही था, जहां से अंदर लोग जा सकते थे रिसेप्शन तक, उसके बाद वहां पर रूम वो लोग बुक कराते थे और यहां पर रुकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पॉइंट कहीं पर भी नहीं बनाया गया था, और बेसमेंट का जो रास्ता नेहा था वो काफी तंग रास्ता था, पतला रास्ता है, जिसमें कि वहां पर शटर लगा करके ग्रिल लगाया हुआ था और उसको पूरी तरीके से बंद किया था। जो स्थानीय लोग हैं, जब हमने उनसे बातचीत किया सुबह सुबह जब हम यहां पर पहुंचे, तो यहां की सिचुएशन काफी खराब थी। बता ये रहे हैं कि जो ग्रिल लगी हुई थी लोहे की, उसको जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं कटर लेकर के आए, उसको काटा तो देखा उसके नीचे भी जो रूम बने हुए थे उसमें लोग ठहरे हुए थे। तो इस तरीके का इलीगल कंस्ट्रक्शन, बेसमेंट में रुकने की व्यवस्था की हुई थी इस होटल के अंदर, और ये काफी
1: स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करिए, कुछ प्रत्यक्षदर्शी अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद हो जिन्होंने ये घटना होते हुए देखी, किस तरीके से वहां पर लोगों को बाहर निकाला गया, कितनी देर में वहां पर मदद पहुंची, ये तमाम बातें अब चिंता का विषय है।
2: बिल्कुल नेहा, एक बार तस्वीरें दिखाते हैं और यहीं पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। तस्वीरों में हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से जो शटर वाला इलाका है उसको काट करके यहां से निकाला गया लोगों को, और यहीं पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं बेसमेंट के नीचे वहां पर फंसे हुए थे। जो स्थानीय लोग हैं यहां पर जो सबसे पहले पहुंचे थे प्रत्यक्षदर्शी, आज तक से इन्होंने पहले भी बातचीत किया। आप लोगों ने क्या देखा सर यहां पर उस समय?
3: विदेशी मत बोलिए, आप बोलिए कि हेल्पर हम लोगों ने,
2: आपने जब उस दौरान हेल्प के लिए यहां पर पहुंचे तो क्या क्या देखा उस समय घटना?
3: जब लगती अफरा तफरी का माहौल होता है, आपको बुझाने के बाद हमने रेस्क्यू किया है फायर फाइटिंग के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलके।
2: अच्छा।
3: जिन लोगों को निकाला था मैंने पहले ही बताया था कि सब अनकॉन्सियस थे, मोस्टली उनमें से जो एक्सपायर हो गए क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था। इवन बिल्डिंग में अपर हिस्से में आग नहीं गई है, नीचे ही है, लेकिन वो पूरा धुएं से ब्लैक,
2: तो ऊपर धुआं गया है उसकी वजह से लोग, बहुत सारे लोग टॉयलेट में भी फंसे हुए थे।
3: लास्ट में जब हम रेस्क्यू कर रहे थे, लास्ट राउंड जब हमने लिया था फायर फाइटिंग टीम के साथ, तो मैंने वो दरवाजा खोला लास्ट नीचे वॉशरूम का, ग्राउंड फ्लोर का, तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे। इवन जैसे फिल्मों में होता है कि एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के वो पोर्ट पर बैठी हुई थी, आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट बट आई एम नॉट कन्फर्म, और वो चेयर डाल के उसके बराबर में, और वो दोनों एक्सपायर।
2: ये जो चैनल जो कि जिसमें ताला लगा हुआ था, इसको फायर बेसमेंट की तरफ रास्ता जाता है, उसमें भी लोग रुके हुए?
3: हाँ ये बेसमेंट एरिया था, इसको फायर फाइटिंग ने ही काटा था हमसे मिलके, उनके पास कटर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं अच्छे खासे, तो उन्होंने ही काट के लोगों को बाहर निकाला था। सात लोग के आसपास थे,
2: सात से आठ

0: लोग वहाँ पर, वहाँ रूम्स बने हुए थे नीचे की तरफ?
1: हाँ, रूम्स बने हुए हैं।
0: अच्छा, तो बेसमेंट में जो रूम बनाना इस पूरे एरिया में तो काफी
2: क्रिटिकल, मतलब जो वॉक नहीं कर सकते उस टाइप के पेशेंट है, मोस्टली पेशेंट्स है यहाँ पर ना,
0: व्हील चेयर
2: वाले पेशेंट्स थे।
0: सेंट मैक्स हॉस्पिटल के?
2: हाँ हाँ, 99% मैक्स हॉस्पिटल के ही होंगे।
3: जो पेशेंट हमने निकाले हैं, एक पेशेंट तो पूरा ऑपरेट हुआ पड़ा था, पूरा ऑपरेट हुआ होता है यहाँ से, उससे पता चल रहा था, जो फीमेल थी वो पूरा का पूरा ऑपरेट हुआ पड़ा था उसका, और वहाँ फाइलें भी पड़ी हुई थी मैक्स हॉस्पिटल की। जब निकाले हमने बाहर सीपीआर दिया, सीपीआर देते देते हम लोग मैक्स तक छोड़े, उसके बाद उनकी क्या कंडीशन थी हमें नहीं पता, बट सीपीआर तक उनको कोई होश नहीं आया था।
2: हाँ, कुछ लोगों को होश आया था जब हमने सीपीआर दिया था, रिकवरी करी थी, वहां जाके क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि फिर तो रिकवरी तो एक बार कर जाता है, अगर लंग्स में धुआं चला गया तो फिर बहुत मुश्किल है।
0: बिल्कुल नेहा, तो ये सारे लोग जो हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, आसपास जो लोग हैं यहाँ ये लोग रहते हैं और ये सबसे पहले ये लोग पहुंचे थे यहाँ, इन्होंने अपनी पूरी जानकारी
4: की मदद से भी कई लोगों की जान बचाई जा सकी। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी भी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, सबसे अहम बात यह है कि ये महज एक जगह नहीं है रुकने की, वहां पर कई ऐसी जगह हैं जिन्हें शायद 6 कमरे 8 कमरे का एनओसी मिला हो, परमिशन मिली हो, लेकिन वहां पर अवैध रूप से इस तरह का कई बहुमंजिला इमारत वाला होटल चलाया जा रहा है, कई लोगों की और जान खतरे में भी कभी भी पड़ सकती है। इन पर कब तक कार्रवाई होगी और क्या इन पर इमिजिएटली ताला डालने जाने की जरूरत है?
5: देखिए नेहा, आपको दिखा दूं कि इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है। मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूं जहां पर यह आग लगी सुबह, और इस पूरी बिल्डिंग को इनिशियल इंक्वायरी में बताया जा रहा है कि एग्जिट एंट्री महज एक थी, बहुत छोटी छोटी विंडोज आप देख सकते हैं इस इमारत में, जिसकी वजह से जब आग लगी तो धुआं निकलने की जगह नहीं थी। तो फायर एनओसी किस तरह से मिला, इतने इस इमारत में इतने सारे कमरे बनाए गए, और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है नेहा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि इसको परमिशन थी लगभग 6 कमरों की, लेकिन यहां पर बेसमेंट को मिलाकर और तमाम अलग अलग इलाकों को मिलाकर और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन सबको मिलाकर लगभग 3 दर्जन कमरे यहां पर बनाए गए, और ये यहां पर चलाया जा रहा था। और ये जो विसिनिटी है इसकी, यहां पर एक अस्पताल है, बहुत सारे लोग जब इलाज कराने आते हैं वो आसपास रुकते हैं। दिल्ली में बहुत लोग कई जगहों से आते हैं इलाज कराने के लिए, वो लोग भी यहां पर रुके हुए थे, उनमें से कुछ बीमार लोग भी थे। बेसमेंट का जो इलाका था वहां पर एक्सेस नहीं था जब ये आग लगी है सुबह, जब लोगों को पता चला तो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की। हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से यहां पर आग लगी और लोग फर्स्ट फ्लोर की इमारत से भी भागते हुए दिखाई दिए। आप देखिए इस वक्त अगर हम तस्वीरों में दिखाएं कि इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर, हालांकि इस पूरे इलाके को अब सील किया हुआ है, फायर ब्रिगेड सर्विसेज यहां पर अब भी मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग यहां से रेस्क्यू किए गए हैं अलग अलग अस्पतालों में उन्हें ले जाया जाए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही है कि जब कोई दुर्घटना होती है उसके बाद ये सवाल उठते हैं, किस तरह से इस तरह का एक परमिशन मिला, कैसे ये एयरबीएनबी यहां पर चलाया जा रहा था बिना किसी इंतजाम के। और ये कोई पहली घटना नहीं है नेहा, लगातार चाहे वो सड़क पर खुदे हुए गड्ढे में गिरने से किसी की मौत हो या फिर इस तरह के फायर इंसिडेंट में लोगों की जान जाए, तो बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे इस पर चेक्स नहीं लगे और कैसे यहां पर ये इमारत चल रही थी। और ये जो पूरा इलाका है, अगर कोशिश करें हम दिखाने की, संकरी गलियां हैं यहां पर, तार का पूरा एक जमावड़ा है, जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, ट्रांसफार्मर यहां पर पास में है, आप देखिए पूरा जाल है इन बिल्डिंग्स के आसपास इन इलेक्ट्रिक केबल्स का, तो बहुत ज्यादा प्रोन है इस तरह की घटना के लिए, कभी भी कोई घटना कोई भी हादसा हो सकता है। इसके अलावा भी जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वो यहां पर चल रही हैं, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग यहां पर हैं, मंत्री यहां पर मौजूद रहे, तो रेस्क्यू का काम चल रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर किस तरह से अनुमति मिलती है, किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोगों की जो जान है उसको यहां पर हथेली पर रखकर यहां पर इस तरह के होटल्स चलाए जा रहे हैं और लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जैसा कि आज के इस इंसिडेंट में हुआ है नेहा, 21 लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं अलग अलग अस्पतालों में, लगभग 3 से 4 अस्पताल हैं, चाहे वो एम्स का ट्रॉमा सेंटर हो या फिर दूसरे अस्पताल हो, मालवीय नगर में ही कोई हॉस्पिटल है, मैक्स साकेत है, वहां पर इन लोगों को ले जाया गया। और अब बिल्डिंग की हालत देखिए पूरी तरह से काली दिखाई दे रही है, यानी जो धुआं वहां से निकला उसको चोक कर दिया, जो लोग अंदर थे पूरी तरह से चोक हो गए, उनको सांस नहीं आया। और जो भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं, जो मैक्सिमम डेथ्स होती हैं, फिलहाल तफ्तीश की जाएगी, जो कॉज ऑफ डेथ है वो मैक्सिमम चोकिंग की वजह से बताया जाता है, क्योंकि सांस नहीं ले पाते लोग। एग्जिट नहीं कर पाते हैं और इस तरह की बिल्डिंग में जहां पर कोई भी एग्जिट पॉइंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई बालकनी आपको दिख रही है, छोटी छोटी खिड़कियां आपको दिख रही है वो भी बंद थी। नीचे एक एग्जिट पॉइंट है, वहीं से एग्जिट और एंट्री हुआ करती थी और वो भी पूरी तरह से खुली हुई नहीं थी, एक हिस्सा उसका बंद बताया जा रहा है। बेसमेंट का जो एक्सेस था वो भी बहुत सकरा था। तो आप देखिए कि लगातार इस तरह की बिल्डिंग्स यहां पर चल रही हैं जिसमें होटल्स हैं, एनओसी लिए हैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स के, लेकिन धड़ल्ले से 40-50 कमरे हर एक इमारत में है जिसमें लोगों को होटल बनाकर यहां पर बिजनेस किया जा रहा है। नेहा,
4: जितेंद्र मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, आप बताए थे कि बेसमेंट में ग्रिल थी जो बंद थी, क्या मैक्सिमम डेथ्स वहीं पर हुई हैं उस बेसमेंट में, क्योंकि लोग समय रहते निकल नहीं पाए बाहर?
0: देखिए नेहा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेसमेंट जो था उसमें 7 से 8 लोग थे जो कि हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले लोग थे। प्रत्यक्षदर्शी और जो यहां पर लोकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं जो बता रहे हैं, उनके मुताबिक उनके सर पर एक जो व्यक्ति था उनके सर पर चोट भी थी। उसमें क्या था, किस वजह से आखिर ग्रिल जो है उसको बंद किया हुआ था, एक बार तस्वीरों में भी आपको दिखा देते हैं। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वो जो ग्रिल है वो बंद थी पूरी तरीके से, और जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें ताला लगा हुआ था जहां पर अभी पुलिस के लोग यहां पर खड़े हुए हैं। ये रिसेप्शन से बगल का रास्ता है और इसी में जो है ग्रिल लगी थी जिसको कि कटर से काट करके निकाला गया। इसमें जो जानकारी मिल रही है 6 से 7 लोग अंदर मौजूद थे जिनको कि यहां जो लोकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर यहां पर पहुंचे पुलिस के साथ मिल करके, फायर ब्रिगेड के साथ मिल करके उन्होंने इसको काटा। तो इस तरीके की जानकारी जो है यहां पर मिल रही है। अब आखिर इसमें ताला क्यों लगा हुआ था, किस वजह से इस तरीके से लोगों को ताले के अंदर रखा गया था, क्यों उनको छिपा करके रखा गया था, ये जानकारी अभी साफ नहीं हो पा रही है। जांच का विषय है और इसको लेकर के लोकल प्रशासन जो यहां का है दिल्ली सरकार के द्वारा, उसके द्वारा पूरी तरीके से जांच कराई जाएगी। क्योंकि हमने जो सतीश उपाध्याय यहां के स्थानीय विधायक हैं उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि डीएम एसपी जो इस पूरे इलाके के हैं उनसे बातचीत हुई है।
4: मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंजलि, 21 नंबर है मरने वालों की संख्या है, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, एक ऐसा नंबर है जो अब कई स्तर पर एक अलार्म रेज होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कभी दोबारा हो ही ना। और हर बार जब ये होता है तो यही प्रण लिया जाता है, कहा जाता है कार्रवाई की जाएगी, एक दो दिन होता है कुछ, उसके बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं। अब यही इस इलाके के साथ भी हुआ है। यहां पर ये नहीं है कि किसी को मालूम नहीं था कि अवैध तरीके से 6 की जगह 25 कमरे चलाए जा रहे हैं, और ऐसा एक होटल नहीं, कई होटल है। कब तक होगी दंडात्मक कार्रवाई, कब तक इस तरह के होटल्स पर ताला लग पाएगा ताकि कोई भी मासूम जान ना जाए?
5: जी बिल्कुल नेहा, आप जो कह रही हैं वो सही है, और यही सवाल लगातार दिल्ली वाले भी पूछने आए हैं, जर्नलिस्ट तो पूछते ही हैं। सवाल ये भी है कि मंत्री साहब भी आए, मंत्री साहब ने तो बात नहीं की किसी से यहाँ पे, और पुलिस ने इतना तगड़ा कॉर्डन लगा दिया है कि आगे कोई जा नहीं सकता, मीडिया वाला भी, तो सवाल कैसे पूछे, सवाल उनसे कैसे पूछे जो पदों पे बैठे हैं, औहदों पे बैठे हैं, और उनसे कैसे सवाल किया जाए कि आखिर ये जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। लेकिन हम सवाल यहाँ पहुंच रहे हैं उन लोगों से जानने के लिए जो यहाँ रहते भी हैं आसपास के इलाकों में, जिनकी चिंताएं थी उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या सोचते हैं। जब ये हादसा आज हुआ है, क्या आपको पहले कभी लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है?
1: हो सकता था।
5: क्यों लगता था?
1: क्योंकि यहाँ पर क्राउड ज्यादा है, भीड़ ज्यादा था, एक एक घंटे के पैसे सब चार्ज करते थे, एक एक दिन के पैसे सब चार्ज करते थे।
5: हाँ। आप यहीं आसपास रहते हैं, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम दिनेश सिंह है।
5: दिनेश सिंह, तो दिनेश सिंह, ये कितने सालों से यहाँ पे ये कारोबार चल रहा है, क्योंकि सब इस इलाके को जानते हैं?
1: 5-6 साल से चल रहा था ये।
5: ये क्या लाल डोरा इलाका आता है?
1: हाँ, लाल डोरा आता है।
5: यहाँ नेहा बहुत अहम हो जाता है लाल डोरा का इलाका, दिल्ली के अगर आप मास्टर प्लान से वाकिफ हो तो लाल डोरा के इलाके में व्यवसायिक काम और रिहायश दोनों एक साथ होती रहती है, तो यहाँ पे ये एक अकेला तो होगा नहीं, बहुत सारे चल,
1: बहुत सारे हैं, बहुत जी हैं, बहुत बिल्डिंग है यहाँ पे,
5: तो खतरे का अंदेशा,
1: खतरे का अंदेशा है।
5: आप लोगों ने कभी जताया?
1: लेकिन नहीं चल सकता सुनते बात का,
5: किसको किसको जताने की कभी?
1: भाई कई बार कोशिश, सब मिली भगत होती है, क्या बोला जाए, किसी कोई सुनने को राजी नहीं है।
5: जो एमएलए हैं, पुराने एमएलए आपके काफी लंबे टाइम तक रहे, उनके उनको बताया कभी, या जो नए एमएलए?
1: बताया, सबको पता है, सब चलती उन्हीं की है।
5: किनकी?
1: जो पुराने महकमे में रह चुके हैं।
5: तो ये जो आज जो आग लगी, इसके बारे में आपको कब पता चला
6: और सर आप भी इसी इलाके के हैं सर? चलिए, तो आम लोग भी यहाँ पे इस बारे में बात करने से अभी इस वक्त ज्यादा खुश नहीं है, वो भी कतरा रहे हैं, क्योंकि समझना ये जरूरी है, ये इलाका लाल डोरे का इलाका है और लाल डोरे को लेकर के हम लोग शुरुआत से ही जब भी दिल्ली में रिपोर्टिंग करते आए हैं, एक बात साफ रहती कि यहाँ खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि एमसीडी के बायलॉज यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। ऐसे में अगर अनियमित तौर पे कोई भी कार्रवाई होती है, कुछ भी इमारत बनती है, तो सब उसको नजरअंदाज कर देते हैं, ना एमसीडी ध्यान देती है, ना दिल्ली सरकार देती है, ना पुलिस ज्यादा चिंता करती है, क्योंकि जब इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है या इस तरह से बेतरतीबी से चीजें बढ़ती हैं, तो पुलिस का भी काम होता है खबर देना एमसीडी को।
4: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अंजलि, वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार लापरवाही से 21 जिंदगियां गई हैं, अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखते रहिए आज।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत।
8: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
9: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
10: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
11: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
5: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
7: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
8: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
11: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
14: Jack, come home. It's supper time.
13: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
15: Hey Jack, could you play that one song with the words?
13: Jack FM, playing what we want.

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंड, बड़े आराम से. विमल, बोलो जुबां केसरी.
4: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी. वेयर आर यू?
5: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है, और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की, और अब गिरिबाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है. यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई. कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी. लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्विशा की सास, समर्थ की माँ, गिरिबाला सिंह को फिलहाल सीबीआई अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है. रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: दिल्ली के मालवा नगर के होटल में भीषण आग, 21 लोगों की झुलसकर मौत, 40 लोगों को बचाया गया। होटल में रुके थे कई विदेशी नागरिक। पीछे घोर लापरवाही के सुराग, 6 कमरों की परमिशन लेकर होटल में चलाए जा रहे थे 25 कमरे, हादसे के वक्त लॉक था बेसमेंट का एक गेट। बंगाल में बहुत बड़ी सियासी हलचल, बागी विधायकों ने 60 एमएलए के समर्थन की चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी, नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने की तैयारी। कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिव कुमार, परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ज्योतिषों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। पटना पुलिस के सरदर्द बना कोचिंग माफिया, गोलीबारी वाले बयान से पलटे खान, पहले कहा था गोली चली, 2 कोचिंग सेंटर्स में वर्चस्व की लड़ाई का मामला।
1: हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें समय लगा है।
2: बहुत मंजिल पे से कूदे, फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया मामला,
3: पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है।
4: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल, आज तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के उस इलाके में जहां आज सुबह 8:20 के आसपास एक भयंकर आग लगी। कहा यह जा रहा है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लोगों को यहां से बचाया गया। एक पीछे जो बिल्डिंग जिसमें एक होटल चल रहा था, जिसे इजाजत तो सिर्फ करीब 5 कमरों की थी, लेकिन 25 कमरों का वो पूरा ये होटल चल रहा था, जिसमें बाहर के देशों से आए लोग जो अपने परिजनों का इलाज कराने आए थे, वो इस आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इस वक्त हम लोकेशन पर मौजूद हैं, मीडिया का जमावड़ा है और ये शख्स सर, संजय जी आपसे मैं एक बार फिर से बात करूंगी, संजय जी से हमारी मुलाकात हुई, ये सुबह 8:20 से यहीं पर मौजूद है और लगातार, संजय जी एक बार आपके हाथ और इनके हाथ ये बयां करते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे थे। सुबह से ये लगे हुए, इन्होंने मदद की लोगों की, इनके साथ दमकल के कर्मचारी, पुलिस वाले, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं और सबकी कोशिश यही थी कि किसी न किसी तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। संजय जी आपसे यही पहले जानना चाहेंगे कि सुबह जब आप यहाँ आए थे तो किस तरह का मंजर था?
5: 8:20 पर जब मैं यहाँ पर आया अपनी शॉप खोलने के लिए, तो मुझे यहाँ दूर से धुएं का ऐसा आया कि मेरा दम घुट रहा था। मैंने फल वाले से पूछा, भाई ये क्या आगे हो रहा है धुएं का गुबार, तो वहां पर उसने बोला कि आग लग गई है। तो फिर मैंने दुकान खोलना छोड़ करके मैं चला गया यहाँ पे, लोगों के साथ मिलके हमने लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। हमारे साथ दिनेश यादव बीट कांस्टेबल था, उसके हाथ में उसने हथौड़ी अरेंज करी, कहीं से हथौड़ी से हमने खिड़कियां तोड़ी और पत्थर मार मार के सारे विंडोज तोड़े, और जो विदेशी नागरिक हमारे यहाँ पे आए हुए थे उनको हमने बचाया यहाँ से। 15-20 लोगों को जंपिंग कराया, जिसमें एक छोटी बिटिया भी थी, 4-5 लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, अफ्रीका के, केन्या के, सोमालिया के, अलग अलग देश से लोग आए हुए थे मैक्स में अपना इलाज कराने के लिए, तो उन सबको यहाँ पे से बचाया गया। और जब फायर ब्रिगेड को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस प्रशासन को फोन किया, तो वो सभी लोग अपने समय के हिसाब से आ गए थे और सभी लोगों ने मिलकर के टीम वर्क की तरह सब लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ यहाँ पर जो है बचाव कार्य, तेजी के साथ बचाव कार्य किया गया है। और हमने जब उसके बाद पुलिस वालों ने, फायर ब्रिगेड वालों ने अंदर से जाकर के, वो एक रियाजुद्दीन भाई है उनसे चद्दर लेकर के अंदर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर और बेसमेंट से लोगों को रेस्क्यू किया है, जिनकी सांसें चल रही थी, दिल की धड़कनें चल रही थी, और नर्सेज और डॉक्टर्स जो उनकी टीम आई हुई है अभी भी मौजूद।
4: कौन है ये नर्सेज और डॉक्टर जो आए हैं?
5: इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैक्स हॉस्पिटल से आए थे शायद ये लोग।
4: इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि जो होटल के मालिक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सवाल यही है कि आखिरकार ये जो शख्स था, इसको जब परमिशन नहीं थी तो वो क्यों, माफ कीजिएगा, जो खबर आ रही है वो ये कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो सवाल यही है कि जब उसके पास परमिशन नहीं थी तो क्यों वो चला रहा था? लालच, पैसे की भूख इंसान को इस कदर गिरा देती है कि वो जो भी कानून है उनको ताक पे रख देता है, वो कानून जो बना ही इसलिए गए हैं ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे। और याद रखिएगा, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो सिर्फ इसीलिए आए हुए थे कि किसी तरीके से वो अपने परिजनों का इलाज करा सके। उनके परिजन अस्पतालों में शायद भर्ती थे, क्योंकि ये मैक्स हॉस्पिटल के पास है, बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ से फॉरेन मेडिकल टूरिज्म, जिसे हिंदुस्तान में कहा जाता है, उसके कई शख्स आते हैं जो यहाँ पे अपना इलाज कराते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं, जो इसी लोकेशन पर मौजूद है। मैं एक छोर पे हूँ, वो दूसरे छोर पे हैं और दोनों तरफ से हम आपके लिए हर पल की खबर ला रहे हैं। जितेंद्र, वहां पर अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि मंत्री साहब भी आए, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अरेस्ट हो सकता है, उस पर क्या जानते हैं आप?
6: देखिए अंजलि, जो जानकारी मिल रही है, इस होटल के जो मालिक हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और वो तस्वीरें जो कि पूरे देश के लोगों का दिल झकझोर दे रही है कि किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से आग लगी, और सुबह से ही मैं यहां पर मौजूद हूं जब से इस पूरी घटना यहां पर हुई। सबसे ज्यादा जो है यहां पर विदेश सोमालिया से, नाइजीरिया से, युगांडा से, अलग अलग कंट्रीज से लोग आ करके यहां पर इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, उनके परिजन यहां पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी और उसमें जो होटल के मालिक ने 25 से 26 कमरे जो हैं वो बना रखे हैं, यहां तक कि बेसमेंट में भी कमरे बने हुए हैं जहां पर लोग रुके हुए थे। और यहां एक प्रत्यक्षदर्शी और जो कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर यहां मौजूद थे, उन्होंने जानकारी दिया और ये बताया
4: कि जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ अरविंद ओझा भी मौजूद है जो कि इसी लोकेशन पर मौजूद है, आज तक की पूरी टीम मौका वारदात पर मौजूद है। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे स्थिति अभी इस वक्त जिस छोर पर आप हैं वहां पे कैसी है, रेस्क्यू का काम तो कब का खत्म हो चुका था, लेकिन जो गिरफ्तारी है उसको भी लेके बताइए कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है।
7: देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि जो 21 मरने वाले हैं उनमें ज्यादातर विदेशी हैं, साथ ही साथ जो घायल हैं उनमें भी ज्यादातर विदेशी हैं। मालिक को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रेड कर रही है, साथ ही साथ इसको एनओसी थी या नहीं थी इसकी भी जानकारी। लेकिन मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी। अगर सामने की तरफ नीचे देखेंगे तो आपको गद्दा दिखाई देगा, जूम करके रितेश मिश्रा आपको दिखा रहे हैं गद्दा। तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और जब इस इमारत से लोग नीचे की तरफ कूद रहे थे, चीख पुकार मच रही थी, आज तक के पास वो तमाम तस्वीरें भी है, तो स्थानीय लोगों ने ये मोटा गद्दा नीचे की तरफ रखा जिससे जो होटल से लोग अगर कूदे तो उनको ज्यादा चोट ना आए। तो पहली तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं और जो कांच है वो देखिए कितना टूटा हुआ है, क्योंकि जो ये पूरा होटल है, जरा तस्वीर आप दिखाइए नीचे से ऊपर तक, ये जो पूरा होटल है ये होटल है, इसी होटल के नीचे फ्लोर पर आग लगी थी और धीरे धीरे जो आग है वो फैलते हुए पूरा जो होटल है उसमें आप देख रहे हैं कालीख लगी हुई है। और वो जो खिड़की दिखाई है रितेश मिश्रा, ये जो खिड़की है इसको तोड़ा गया है, तोड़ते हुए की भी तस्वीरें हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो खिड़की है इसको तोड़ा गया है पूरी तरह से और इसके अंदर से लोगों को निकाला गया है। न सिर्फ निकाला बल गया है बल्कि लोग कूद भी रहे थे। एक आई विटनेस हमारे साथ मौजूद है, तस्वीर आप दिखाते रहिए। क्या नाम आपका?
8: MD शरीफ।
7: हाँ, क्या हुआ था सुबह के वक्त आप
8: बगल? 8:15 बजे जब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, मजदूर है तो यहाँ पर काम करते थे, धुआं बहुत ज्यादा निकलने लगा इधर से। अच्छा। इस खिड़की से तो देखा कि इसमें आग लगा हुआ था बहुत ज्यादा, नीचे से आग लगा हुआ, पहले नीचे से ऊपर आग गया, कुछ आदमी 30-40 आदमी छत के ऊपर था जो टॉप पे था, वहां से फिर और कुछ आदमी
7: इधर आ जाइए। आप देखिए, ये साथ ही साथ मैं आपको समझाता भी रहूं, देखिए सामने की तरफ होटल के बेहद नजदीक आज तक खड़ा है, ठीक ये एक फ्लोर है उसके पास हम खड़े हैं, सामने की तरफ ये होटल दिखाई दे रहा है, ये एक फैक्ट्री है जहां पर लोग काम करते हैं। साथ ही साथ जो शरीफ साहब है वो बताते रहेंगे क्या हुआ था, आराम से पूरा सिलसिलेवार बताइए सुबह के वक्त।
8: सुबह 8:15 बजे इसमें आग लगी और धुआं बहुत ज्यादा निकलने लगा, तो हम लोग भी अपने जगह रूम से निकल के गैलरी में यहाँ पर से देखे तो पूरा एकदम धुआं निकल रहा था और कुछ आदमी खिड़की तोड़ के अंदर में, जो होटल के अंदर रहते थे विदेशी, वो खिड़की तोड़ के जेंट्स लेडीज ये सब बहुत लटक रहे थे, वो लटक रहे थे, ये पाइप जो है मकान में पाइप पकड़ के लटक रहे थे और हेल्प मांग रहे थे। तो यहाँ पर जितने भी लोकल बंदे थे उन्होंने हेल्प किया, वो गद्दा बिछाया, उसको बोला जंप करो नीचे, आप कितना जंप किया, किसी में सर में चोट लगा, किसी का हाथ टूट गया, बहुत कम से कम 10-12 आदमी जंप करके बचाया उसको, और कुछ आदमी छत के ऊपर गया, वो पल्ली तरफ उधर में लकड़ी का जीना लगा के उस तरफ पार हो गया।
7: बड़ी कवाई है और मैं क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, चूंकि आज तक होटल के पास करीब है, ये जो माला है इस माले से सामने की तरफ होटल है, बेहद नजदीक है। कुछ
4: जी अरविंद हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये आग लग रही थी और एक शख्स आप इस तस्वीर में देख पाएंगे जैसे कि आपके साथ जो मौजूद चश्मदीद है वो भी बता रहे हैं कि वो होटल की छत पे खड़ा है, वहाँ वो फंसा हुआ है। आप सोचिए बेबसी उस वक्त की, जो शख्स एक जलती बिल्डिंग की छत पे खड़ा है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, इस छत से क्या कहाँ जाएगा इंसान। और यही हुआ कि कई लोगों ने छलांग मार दी और नीचे जो गद्दे आप लोगों को दिखाए गए हैं उस पतले गद्दों में उसके जरिए ही किसी तरह से लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की है, आसपास के स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इसी बिल्डिंग की है जिसकी छत पर ये शख्स मौजूद था। चलिए रुक करते हैं इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी जितिन का जो इस लोकेशन पर मौजूद है। जितेंद्र, ये जो शख्स हमें दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है अभी तक?
6: हाँ देखिए अंजलि, जो तस्वीर इस वक्त सामने आई है उसमें मैं उसी बिल्डिंग के सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और वो जो सामने की खिड़की दिखाई पड़ रही है वही की वो तस्वीर है जिसमें से वो शख्स बाहर कूदने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से जो लोकल लोग हैं उन्होंने गद्दे बिछा रखे थे और गद्दे बिछाने के बाद उसको नीचे उतारा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को जब वो नीचे की तरफ कूद रहे थे तो स्थानीय लोग, यहाँ पर मसूरी कॉटन शॉप है जहां से उन लोगों को गद्दे ला करके यहां पर दिया गया और उसके बाद जो है उस गद्दे में वो लोग नीचे उतरे और निकलने के बाद उनको बचाया गया। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो सामने की तरफ बेसमेंट है, यहां पर जो बेसमेंट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस बेसमेंट के अंदर 6 से 7 लोग फंसे हुए थे और ये बेसमेंट के अंदर जो लोग फंसे हुए थे वो एक सबसे बड़ी घटना हुई है और इसको लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर बेसमेंट के अंदर रूम किस तरीके से बनाए गए थे और उनको आखिर बेसमेंट के अंदर क्यों रोका गया था। तो इस तरीके के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और जिसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो होटल का मालिक है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। यहाँ पर
4: क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि फायर का एनओसी नहीं था होटल के मालिक के पास और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद ओझा का। अरविंद, फायर का एनओसी नहीं था फिर भी इतनी बड़ी बिल्डिंग चल रही थी?
7: बिल्कुल, और इसीलिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं साथ साथ। शरीफ जो आई विटनेस है हिमांशु कहीं उनको भेजे हैं आप हमारे पास। अब मैं आपको बताऊं ये फायर की एनओसी नहीं थी और अब पूरी तरह से जो नियम है नियमों की अनदेखी यहां पर की जा रही थी और इसीलिए हम बता रहे हैं इनके पास इन्होंने कई वीडियो भी बना रखे हैं। ये चश्मदीद है, सबसे बड़े इस हादसे के चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है क्योंकि ये सामने की तरफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ठीक सामने है। शरीफ, क्या हुआ था, क्या देखा था आपने, बताइए।
8: बहुत ज्यादा आग लगा हुआ था, बहुत ज्यादा पूरे अंदर ग्राउंड में सबसे ज्यादा आग लगा हुआ था, इसीलिए आदमी जो थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी थे वो तो कूद गए खिड़की से और जो कमजोर होगा अंदर में रहते हुए होटल में वो बच पर नहीं पाया।
7: विदेशी थे
8: ज्यादा, जितने भी कूदे हैं सारे विदेशी कूदे हैं।
7: अच्छा,
8: हफ्सी लोग थे ज्यादातर, जो अच्छा, भी कंट्री का हो, अफ्रीका को, अमेरिका को, जहाँ का हम तो उतना नहीं जानते, लेकिन सारे विदेशी थे जितने भी कूदे थे।
7: ये विदेशी थे और सीधे, चूंकि हम बेहद करीब है होटल के और मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, ये वो खिड़की है जो तोड़ी गई थी और पूरी तरह से नियमों की अनदेखी यहाँ पर की गई थी। ये खिड़की थी और जिस तरह से चश्मदीद है जो आज तक पर बता रहे हैं कि कई विदेशी नागरिक थे जो ये देखिए तमाम, अगर आप देखेंगे होटल का लगभग, ये देखिए ये तस्वीर देखिए, ये होटल की बेहद करीब से दिखाइए रितेश, ये तमाम खिड़कियां टूटी हुई हैं। आज तक पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको, ये जो होटल है होटल की अगर आप देखेंगे तो ये खिड़की दूसरे माले पर, तीसरे माले पर, दोनों तमाम खिड़कियां टूटी हुई हैं, कांच की ये खिड़की थी सब टूटी हुई और इन खिड़कियों को तोड़कर जो विदेशी नागरिक है वो नीचे की तरफ आ रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, होटल का बैक साइड जो खिड़की जहां पर लगी हुई थी और तमाम जो खिड़कियां यहां पर सभी टूटी हुई आपको यहां पर दिखाई देंगे, क्लोज करके रितेश मिश्रा आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर है, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था और हादसे के बाद क्या अफरा तफरी मची हुई थी। एक एक खिड़की की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नीचे से, पूरी खिड़की तोड़ी गई है, कुछ फायर डिपार्टमेंट ने तोड़ी है और कुछ जो लोग थे उन्होंने तोड़ी। ये खिड़की कैसे टूटी थी, क्या मंजर देखा?
8: खिड़की हम यहाँ पर लोकल आदमी जितने थे सब ईटा पत्थर से तोड़ा है खिड़की। जो अंदर जो फंसे हुए आदमी जो हेल्प मांग रहा था वो कह रहा था बाहर निकालो मुझे, तो तोड़ के लोकल आदमी ने उसके बाद आदमी को बाहर निकाला है।
7: तस्वीर हम खिड़की की दिखा रहे हैं, ये होटल की तमाम जो खिड़कियां हैं वो टूटी हुई हैं। खिड़की नंबर अगर आप देखेंगे एक, उसके नीचे दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, लगभग सभी जो खिड़कियां हैं कांच की उनको तोड़ा गया था और तोड़ करके तब लोगों को निकाला गया। खुद तो कुछ लोगों ने खुद तोड़ा था। तो ये नीचे की तरफ आप देखिए, तस्वीर हम आपको दिखाएं, पुलिस की ये हालत है, ये इलाके की पुलिस, ये पुलिस है। अब देखिए चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी है। यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए? तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं। होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिलीभगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिलीभगत तो नहीं हो सकती एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिलीभगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। अवैध तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट।
4: अरविंद, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अरविंद, सवाल यही बनता है कि आखिर ये जो इलाके हैं दिल्ली में, जो गांव पहले थे, जो पॉकेट्स बनी हुई है, जो लाल डोरा के इलाके हो जाते हैं और वो फिर उसके आसपास के इलाकों में भी इसी तरीके से बेतरतीबी से रिहाइश बढ़ती जाती है या कमर्शियल काम होने लग जाता है। आप लंबे समय से क्योंकि कवर करते आए, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे एमसीडी के बायलॉज को तोड़ना, उन नियम कानूनों को ताक पे रखना, ये कितना आम है दिल्ली के ऐसे इलाकों में?
7: बहुत आम है, बहुत आसान है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद बात बीत जाती है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, 20 लोगों की जान चली गई और देखिए दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुंच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुंची?
9: जी, घर है इनका, पर्सनल घर है,
7: पर्सनल घर है, तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर। और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को। और यकीन जानिए, जैसा आपने पूछा, अगर मेगा ड्राइव चलाया जाएगा तो कई रिहायशी इलाकों में जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, वो बंद किए जा सकते हैं। कई की जो एनओसी है वो नहीं मिली है, लेकिन जब हादसा हो जाता है उसके बाद कवरेज होती है, तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं, आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका। लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया, क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक हैं और कई ऐसे घायल हैं जो विदेशी हैं। तो ये मंजर है यहाँ का। होटल मालिक को गिरफ्तार करने के लिए फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम रेड कर रही है, लेकिन ये जो हादसा है, कम से कम अब जो स्थानीय सरकार है, जो एमसीडी है, उसको अब कम से कम सबक लेना चाहिए। सिर्फ कुछ इंजीनियर को सस्पेंड करने से, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने से बात बनने वाली नहीं है। अगर इसी तरह से सिलसिला चला तो आने वाले दिनों में और भी हादसे होते रहेंगे। अंजलि
4: जी,
10: कोई उपाय नहीं बचता क्योंकि आप देखिए उनको।
4: जी बिल्कुल अरविंद, आप सही कह रहे हैं। और जो बात आप कह रहे थे कि पुलिस ने पूरा इलाका जो है, एक बार हम दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा ब्लॉक किया गया है। हम इस छोर पे हैं और जो दूसरा छोर आपको नजर आ रहा है, जहां ऑरेंज कपड़ों में यूनिफॉर्म में लोग नजर आ रहे हैं, वहां पे हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त मौजूद है। इस छोर से हम उस छोर तक नहीं जा सकते, वो इस तरफ नहीं आ सकते, और बीच में वो जली हुई इमारत है जिसका मलबा आपको शायद नजर आए, लेकिन इमारत नजर नहीं आ रही है सही तरीके से, पर मलबा जमीन पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। अरविंद और जितेंद्र हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है। चलिए सीधा जितेंद्र का अब हम रुक करते हैं। जितेंद्र, ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो छोटे छोटे हैं, स्नैक बाइट करके शायद, या स्नैक लाइट करके ऐसा कोई नाम था जो यहाँ पे चल रहा था किचन, वहीं पे वहां उसके पास ही जब ये आग लगी है तो ये पूरा अफरा तफरी का माहौल बैठा है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट चलते हैं या होटल चलते हैं, इनके लिए क्या किसी परमिशन की जरूरत होती है, और क्या कभी ऐसा देखा जाता है कि जो निगम है या निगम के कर्मचारी हैं या बीट के कांस्टेबल हैं, वो आके चेक करें कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं?
6: हाँ बिल्कुल, जो भी होटल या फिर रेस्टोरेंट इस पूरे इलाके में चलते हैं उसके लिए बाकायदे एक नियम कानून है और उसके तहत परमिशन यहाँ पर दी जाती है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके में इन परमिशन का उल्लंघन किया गया है। एमसीडी का परमिशन होना चाहिए, लोकल जो पुलिस है उसका परमिशन होना चाहिए, जो लोकल प्रशासन है उसका परमिशन होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ की तस्वीरें हैं, आपको एक जो होटल जली हुई है वो तो दिखा ही रहे हैं, दूसरा भी होटल उसके बगल में है, मिकासा इन, आप देखिए कि वो दूसरी तस्वीर है जो कि आधी उसकी होटल का जो पूरा एरिया है वो चुका है। तो वही तीसरी तस्वीर इसी लाइन में आपको दिखाते हैं कि लेमन ग्रीन इन होटल भी इसी लाइन में है, जहां पर भी रूम दिए जाते हैं। तो ये रिहायशी इलाका है, इस इलाके में आखिर रूम की अवेलेबिलिटी इस तरीके से कैसे हो सकती है, क्यों आखिर यहां पर कमरे दिए जाते हैं, रेस्टोरेंट बड़े बड़े जो है वो क्यों खोले जा रहे हैं, क्या फायर का यहां पर किसी तरीके से जो नियम कानून है उसका पालन किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और उसी होटल के एकदम सबसे नजदीक मैं मौजूद हूं, जहां से ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से नियमों का उल्लंघन हुआ है। नीचे से एक ही रास्ता सिर्फ जाने का है और यही रास्ता आने का है वापसी का, तो इससे क्या है कि फायर एग्जिट किसी भी तरीके से इस जगह पर नहीं बनाया गया था, जो कि इस बड़े हादसे का कारण बन रहा है। और तस्वीर सबसे बड़ी यहां की ये भी है कि जब हमने यहां के लोकल से बात किया तो उनकी तरफ से यही कहा गया लगातार कि बेसमेंट जो है उसमें 6 से 7 लोगों को उन्होंने निकाला है, बेसमेंट में जो ग्रिल थी उसको काट करके उन्होंने निकाला, कि आखिर ताला यहां पर क्यों बंद था, इस तरीके के सवाल जरूर उठ रहे हैं। जब होटल के मालिक की गिरफ्तारी होगी, हालांकि पुलिस के द्वारा उनकी तफ्तीश बड़े लेवल में की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी जब होगी तो उसके बाद ही यह तय होगा।
4: हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज तक की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और हमारी महाकवरेज जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ।
13: वन सेकंड, यू आर एंजॉयिंग योर फर्स्ट डे ऑफ एंड फॉरएवर. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
14: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
15: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
16: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
12: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
14: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
17: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

मालवीय नगर में होटल में भीषण आग, 21 लोगों की झुलसकर मौत, 40 लोगों को बचाया गया। होटल में रुके थे कई विदेशी नागरिक। मालवीय नगर अग्निकांड के पीछे घोर लापरवाही के सुराग, 6 कमरों की परमिशन लेकिन होटल में चलाए जा रहे थे 25 कमरे। हादसे के वक्त लॉक लगा था बेसमेंट के गेट पर।

प्रतिपक्ष का पद हासिल करने की है तैयारी। कर्नाटक में आज से नई सरकार, 13 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिवकुमार। परमेश्वर बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। ज्योतिषियों की सलाह पर बदला गया स्टेज का नक्शा। पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बना कोचिंग माफिया। गोलीबारी वाले बयान से पलटे खान। पहले कहा था गोली चली, दो कोचिंग सेंटर्स में वर्चस्व की लड़ाई का है मामला।

0: सुबह के 8:30 के करीब एक भयावह मंजर देखने को मिला है इस इलाके में। यह है मालवीय नगर का इलाका जहां हम खड़े हैं और एक होटल के अंदर आग लगी। आग ऐसी भीषण थी कि लोगों ने भागने की कोशिश की, छतों तक पहुंच गए लेकिन वहां से भाग न पाए। और पीछे जो ये गली आप देख रहे हैं उसी में पुलिस की तैनाती के आगे पड़ा है मलबा। इस मलबे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बहुमंजिला इमारत है इसमें भीषण आग लगी और किस तरीके से वहां पर लोगों ने भागने की कोशिश की। वहां पे पड़े हैं कुछ गद्दे भी जो ये बयां करते हैं कि लोग इतनी ऊंचाइयों से कूदकर भागने को तैयार थे अपनी जान बचाने के लिए। वो इस वक्त ये भी ना उन्होंने सोचा कि ये कितनी ऊंचाई है। आसपास के लोग उसी वक्त शोर सुन धुआं देख वहां पहुंच गए। हथौड़े, पत्थर, ईंट जो जिसके हाथ में आया उसकी साथ मदद करने की कोशिश की, खिड़कियां तोड़ी गई। और इस वक्त भी यहां पर पुलिस की तैनाती है। मंत्री आए, आकर देखकर चले गए, कुछ ज्यादा हमसे बात नहीं की। इसके साथ ही बड़े बड़े आला अफसर भी आए, चाहे पुलिस के हो, दमकल के हो, सबने यहां पर इस वक्त तैनाती की हुई है। पुलिस लगातार यहां पर घूम रही है। सर, डेथ की काउंट का कुछ फाइनल?
1: नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई मैडम।
0: आप लोगों के पास कोई?
1: नहीं।
0: कब तक आप लोग यहां पे नाकेबंदी रखेंगे?
1: अभी देखते हैं, अभी सिचुएशन अंदर की सेटल हो जाती है, देख लेते हैं।
0: सेटल मतलब आग के
1: कर लेते हैं।
0: और ये चेकिंग कब होगी?
1: चेकिंग अभी कर रहे हैं, अंदर गए हुए हैं।
0: कौन कौन अफसर आए हैं?
1: बहुत सारे हैं, बीएससीएस से, एल से, सारे डिपार्टमेंट है, पुलिस से।
0: अभी मंत्री कौन आए थे?
1: मंत्री सूद सर थे, स्वास्थ्य मंत्री हैं जो दिल्ली सरकार।
0: चलिए, ये हमने इनसे सवाल पूछने की कोशिश की, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे तैनाती लगातार सभी अफसरों की है, सभी विभागों की है, डिपार्टमेंट की है। कुछ देर पहले यहाँ से दमकल के कर्मचारी भी निकले थे और कोशिश यही है कि इस वक्त जो आग है, जो हीट निकलती रहती है, एक गर्मी जो बाद में आग के खत्म होने के बाद निकलती रहती है, उसे कहीं ना कहीं जब वो खत्म हो जाती है तो मामले को फिर उसके बाद देखा जाए कि क्या हो सकता है। अब आपको ये बता दें कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता ले जाता है आपको उस बिल्डिंग तक जहां ये आग लगी थी। ये रास्ता उस बिल्डिंग तक जाता है जिसकी कोई एनओसी नहीं थी फायर की। ये बड़ी खबर हमारे पास आई है कि एनओसी मालिक के पास नहीं थी। इस मालिक की अभी दबिश चल रही है, दिल्ली पुलिस की टीमें रेड कर रही है, कोशिश की जा रही है कि इस तक पहुंचा जाए कि आखिर इस शख्स ने जिस बिल्डिंग में सिर्फ 6 कमरे चलाने की उसके पास इजाजत थी, कैसे 25 कमरे चलाए, किराए पे चढ़ाए, और उनको जो लोग इस देश के थे भी नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं, यहाँ कैसे वो रह रहे थे, उनको भाषा नहीं आती, और वो किस तरीके से यहाँ अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे, बड़ा सवाल है। ये रास्ता आपको ले जाता है उस बिल्डिंग तक जहाँ का अंदर जाने का और बाहर जाने का पूरा रास्ता बिल्कुल संकीर्ण है। और आसपास हम कोशिश करते हैं अगर कोई इस वक्त चश्मदीद मौजूद हो। हालांकि आपको बता दें कि यहां से ज्यादातर लोगों को हटा दिया गया है, अभी यहां मीडिया का जमावड़ा है और जो लोग कूद कूद कर जिन्होंने अपनी जान बचाई और यहां पर मौजूद है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं उस वक्त की और उन लोगों की जिन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई। तो सोचिए कैसा भयावह मंजर रहा होगा जब लोगों को इस तरीके से कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी। लेकिन ये इलाके का अकेला होटल नहीं है, ये इलाके का अकेला ऐसा कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जहां पे कोई किचन चल रहा था या लोग रह रहे थे या किराए पे कमरे दिए जा रहे थे। हमारे सहयोगी सुशांत ने आसपास के इलाकों में जो इसी तरह से होटल चल रहे हैं, गेस्ट हाउस चल रहे हैं, बीएनबी चल रहे हैं, उनका रियलिटी चेक किया और जानने की कोशिश की है कि कितने सुरक्षित हैं ये।
2: मारो, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अग्निकांड में जिस तरीके से 21 लोगों की जान गई है, उसके बाद हम मालवीय नगर के उस गलियों में हैं जहां पर आपको अलग अलग तमाम तरीके के रेस्टोरेंट्स होटल्स जो है वो नजर आएंगे। अभी आप देखेंगे कि ये ग्रीन रेजिडेंसी करके एक होटल है, रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट है सर, होटल है? ये बंदर की तरफ है, ये भी एक होटल है, रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। आप सब यहीं से हैं होटल से सर? कहाँ आप होटल से हैं सर? लाइसेंस है आपके पास?
3: सर ये वो तो सर लोग बताएंगे ना, हमारा जो स्टाफ है, हम तो हम काम करते हैं।
2: ये आप काम से करते हैं, मगर लाइसेंस तो होगा ना? ये क्या है, लाइसेंस है क्या, दिखाइए। कितने कमरे का लाइसेंस है?
3: अब वो देख लीजिए सर, हमको पता नहीं है।
2: लाइसेंस दिखाइए, वो भी दिखाइए, वो क्या है, दिखाइए वो क्या है। ये तो ऑर्डर है दिल्ली सरकार का, बेड एंड ब्रेकफास्ट का ऑर्डर है, ठीक है। आपको एक वो मिला हुआ है। अच्छा, कितने कमरे हैं यहाँ पे?
3: सर ये भी नहीं, हम तो काम करते हैं, हम आए हैं इधर।
2: एक रूम तो होंगे ना, देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें कि मालवीय नगर के अंदर है 4-6 रूम्स, और 6 रूम फॉर फर्स्ट फ्लोर, 3 रूम्स फॉर ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। अब ये इजाजत जो है वो दी गई है, लेकिन कितने कमरे हैं उसकी भी हम पड़ताल करते हैं कि कितने कितने कमरे जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। अब ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा है, इसके अलावा एक कमरा यहाँ पर है, एक कमरा यहाँ पर है, 3 कमरे हैं। इसके अलावा और भी कितने कमरे हैं वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो इजाजत है, जिस तरीके से जिस होटल में आग लगी, 6 कमरों की इजाजत थी टोटल, लेकिन बनाए गए थे 25। अगर आप यहां देखेंगे, अब यहां पर आइए कि ग्राउंड फ्लोर पर भी 3 कमरों की इजाजत है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक रूम है यहां पे आपको नजर आएगा, ये 102, दूसरा कमरा नंबर नजर आएगा, और ये एक तीसरा कमरा आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर आपको हमने देखा कि 3 कमरे वहाँ हैं, और 4, और ये 5, 105, यानी कि इस फ्लोर पर भी 5 कमरे, जबकि इजाजत जो है वो 3 कमरों की है। इसके अलावा इससे ऊपर भी चलेंगे, 5 कमरे यहाँ पर, 6 कमरों की इजाजत है, 5 कमरे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर, 3 कमरे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर। अब इसके बाद इससे ऊपर आएंगे तो यहां पर भी आपको रूम नंबर 201, 202, 203 में अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं बकायदा कि इस सेकंड फ्लोर पर भी तकरीबन जो इजाजत है 3 कमरों की, वहां पर भी इस तरीके से 5-5 कमरे जो है वो बनाए गए हैं, 204, 205। अब आप देखिए कि अगर कोई फायर का इंसिडेंट हो जाए, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ओपन वायर आपको यहाँ पर नजर आएगी, अगर कहीं आग लग जाए तो ये जो रूम है इसके बाहर बालकनी होगी, उस बालकनी से भी आप बाहर जो है वो नहीं निकल सकते, ये रूम भी पूरी तरीके से लॉक है। किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग घूमने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं, उनके लिए किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम है, इसको कौन देखेगा, किसकी जिम्मेदारी है, ये किसी को नहीं पता। अब इसके बाद इसके ऊपर फ्लोर पे जाते हैं, इस फ्लोर पर भी आपको इतने ही कमरे जो हैं वो नजर आएंगे, 5 कमरे यहां पर हैं, इजाजत सिर्फ 6 कमरों की है, यहाँ पेंट्री जो है वो बनाई गई है, और अभी आप देखेंगे एक पर्सन है वो यहाँ पर गेस्ट जो है वो रह रहे हैं, उसके पीछे विंडो है। और आप देखिए कि अगर कोई हादसा इस पूरी बिल्डिंग में हो जाए तो किसी प्रकार के फायर के कहीं से भी कोई इंतजाम जो है वो यहाँ पर नहीं किए गए हैं, ऐसे में जब हादसा होता है तो लोगों की जान जाती है।
0: तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा रुख करते हैं उसी का। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आसपास रहने वाले लोगों ने जिस वक्त यह हादसा हुआ है उन्होंने बार बार धमाकों की आवाज सुनी। कुछ देर पहले हमने भी एक चश्मदीद से बात की थी जिन्होंने यहाँ पर मदद की। उन्होंने भी कहा कि आवाज आई, धमाका हुआ, गुबार उठा धुएं का और उसकी तरफ तब वो भागे। तो खबर इस वक्त जो आ रही है वो यही है कि जिस वक्त का यह हादसा है, करीब 8:20 से लेकर के 8:30 साढ़े 8 के बीच का यह हादसा, तब लोगों को यहाँ धमाकों की आवाज आई और गुबार उठा धुएं का, जिसके बाद आसपास के स्थानीय लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर कहाँ हुआ है ये, क्या हुआ है, और फिर वो जुटे इस होटल के पास लोगों की मदद के लिए। ये अहम बात रही है इस इलाके में कि आसपास के स्थानीय लोगों ने झट से आकर के यहाँ पर हथौड़ी, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, शीशे तोड़कर लोगों को नीचे लाना और गद्दे लगा के उन्हें कूदने के लिए मदद करना, ये सब कोशिश की। आइए सुनते हैं चश्मदीद इस पूरे मामले पे क्या कह रहे हैं।
4: ये जो आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है लोहे का, इस चैनल को काटा गया है, क्या जानकारी मिल रही, क्या ताला बंद था, क्या
5: ये लोग था लगा हुआ था, वो फायर वाले आए थे, उन्होंने कैंची दी थी, उससे काटा है।
4: जब होटल था यहाँ पर तो आखिर इसको चैनल को बंद क्यों, ताला क्यों लगा,
5: ये इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बंद था, फिर इन्होंने चैनल से काटा, उससे कैंची से जो फायर वालों ने दिया, फिर अंदर घुसे
6: फायर फाइटिंग के पास,
5: उससे काटा, फिर हम अंदर घुसे,
6: अंदर घुसे
7: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए, तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है, और भी सेफ लोगों को निकाला और कुछ लोग कैजुअलिटीज हैं।
8: थर्ड फ्लोर से तीन नाइजीरियन, चार नाइजीरियन कूदे थे, जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी, तो जब तक उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा, फायर की टीम आई है, गेट शटर काटा है।
0: आज तक की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग कोने और छोर से हम आपको रिपोर्टिंग करते हुए दिखा रहे हैं। एक शॉट हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो टॉप एंगल से लिया हुआ है, जिसमें आप इस होटल को भी देख सकते हैं, आसपास की बिल्डिंग्स को भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तारों का जाल, पतली गलियां, लोगों का हुजूम, ये जो इलाका है यहाँ पर बेतरतीबी से रिहाइश है, व्यवसायिक काम भी चल रहा है और इस इलाके में ये इमारत जो थी मल्टी लेवल की इमारत, बहुमंजिला इमारत, इसमें आग लगी थी। तो ये टॉप एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस इलाके का लेआउट। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं पहले सुशांत का, और सुशांत आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कुछ हलचल यहाँ हो रही है। त्रिवेंद्र यादव आए हैं इस वक्त, आइए सीधा कोशिश करते हैं बात करने की, जरा रास्ते से हटे त्रिवेंद्र जी। चलिए पहले आप बताइए सुशांत, इस इलाके में किस तरह की रिहाइश है, व्यवसाय किस तरह का है, आपने क्या देखा जब आपने ग्राउंड चेक किया?
9: देखिए मैं आपको तस्वीर,
0: रियलिटी चेक किया, ग्राउंड चेक किया और जी हाँ,
9: बीजेपी के सतीश उपाध्याय यहाँ से विधायक है, लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि इस पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि पास ही में ही मैक्स हॉस्पिटल है और तमाम जो लोग हैं, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। हाँ देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कई सारे यहाँ पर इस तरीके के होटल्स और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, क्योंकि इसका लाइसेंस टूरिज्म डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का देता है, जिस लाइसेंस को कहा जाता है बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस। 6 कमरों की इजाजत होती है। हमने अभी जहाँ ये पूरा हादसा हुआ वहां पर तकरीबन अगर कहा जाए तो 100 कदम की दूरी पर ग्रीन करके एक होटल था, उसका रियलिटी चेक किया, 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन बनाए गए 18 कमरे, हर फ्लोर पर 18 कमरे, कोई एग्जिट फायर एग्जिट नहीं था, अगर कोई हादसा हो जाए तो बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ सीढ़ियां हैं, वो भी बीच में रास्ते में, अगर आप देखेंगे तो लाइन से यहाँ पर आपको यहाँ पर होटल जो है वो नजर आएंगे। एक और होटल है यहाँ पर गेस्ट हाउस के जो है वहां पर अभी आप देखिए रूम्स अवेलेबल, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं वो इस तरीके के होटल्स में जाते हैं। अभी आप ये देखिए कि इस होटल का अगर आप फ्रंट देखेंगे तो लगभग 10 फीट का ये पूरा फ्रंट है, लेकिन इस पूरे होटल्स पे अगर आप देखेंगे चारों तरफ शीशे से पूरी तरीके से पैक है। अगर कोई हादसा हो तो उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, कोई तरीका, कोई सिक्योरिटी के जो मेजर्स है वो नहीं अपनाए गए। अगर आप देखेंगे इस होटल में घुसते के साथ ही यहाँ पर आपको ये शीशा अगर ओपन करते हैं तो किसी प्रकार की बेसमेंट, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए, यहाँ आपको बेसमेंट जो है वो यहाँ पर नजर आएगी। इस तरीके की बिल्डिंग्स में किसी प्रकार के बेसमेंट की इजाजत जो है वो नहीं होती है, लापरवाही एमसीडी की कि आखिरकार इस तरीके की बिल्डिंग्स को किस तरीके से इजाजत जो है वो दी गई। बेसमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है और सिर्फ सीढ़ी यहाँ पर आपको नजर आएगी और इसके अलावा लिफ्ट नजर आएगी। अगर लिफ्ट खराब हो जाए या सीढ़ियां हो जाए तो उसके लिए क्या है, आप आगे ऊपर की तरफ चलते हैं और भी कई सारे होटल जो है वो यहाँ पर हैं, कितने कमरे जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। अब ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर अब ये रिसेप्शन है, इस पर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से बातचीत करें कि किस तरीके की लापरवाही जो है वो पूरी दिल्ली में इस वक्त जो है वो देखी जा रही है। रिसेप्शन पर फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मालवीय नगर के अंदर आपको
0: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुक करते हैं। दिल्ली के मैक्स होटल से एक बयान आया है और ये जो हादसा है, मैक्स हॉस्पिटल माफ कीजिएगा, उसका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में लाए गए थे 39 मरीज, ये मैक्स का कहना है, 39 में से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पुष्टि मैक्स की तरफ से आ रही है, ये आधिकारिक पुष्टि है, अस्पताल ने ये बयान जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त है ये कि उनके पास पहुंचे लोगों में 18 की मौत हो चुकी है, गंभीर हालत में 15 लोग हैं जो कि आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं। चिंता उन्हीं की हालत को लेकर बनी हुई है और जो खबर है उसके मुताबिक 15 में से 8 मरीज अभी वेंटिलेटर पर हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त यही आई है कि 29 लोग जो उनके पास पहुंचे थे उनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सब मैक्स अस्पताल ले जाए गए थे, यहीं से करीब में है मैक्स हॉस्पिटल, और इनमें से कई ऐसे ही थे जो शायद इस अस्पताल में ही अपना या अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए आए थे। और ये पता चल रहा है कि गंभीर हालत में 15 लोग आईसीयू में अभी भी भर्ती हैं, जिसमें से 8 मरीज अभी वेंटिलेटर पर हैं, जो कि बेहद चिंताजनक बात है। तो 39 मरीज जो है वह लाए गए थे जिनमें से 18 की मौत हो चुकी है, ये आधिकारिक बयान आया है मैक्स अस्पताल की तरफ से। तो मौत का आंकड़ा जो ओवरऑल है आधिकारिक, वो अभी पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से आएगा और हमें पता चल पाएगा कि कुल मिलाकर कितने लोगों की इस मामले में मौत हुई है। लेकिन अब तक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 21 लोगों की मौत की खबरें आई हैं। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त वो मैक्स हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हैं। सीधा रुक करते हैं अमित, अस्पताल का जो बयान आया है वो बेहद चिंताजनक है, क्या क्या पता चल रहा है इस बयान के जरिए?
10: जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 18 डेड बॉडीज इस वक्त मॉर्चरी में रखी गई हैं। 39 लोगों को यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पर लेकर आया गया था, जब डॉक्टर्स ने उनको देखा, इमरजेंसी क्लिनिकल रिस्पांस दिया, तो उसमें से 18 लोगों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उनमें से ज़्यादातर जो विक्टिम्स हैं, डेड बॉडीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वो मॉर्चरी में रखे गए हैं। 15 लोगों का इलाज इस वक्त आईसीयू में चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम सब जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर है वो देने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि जो मैक्स साकेत अस्पताल है वो हौजरानी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ घटना हुआ है वहाँ से बिल्कुल सामने है, और कई सारे लोग तो इस इलाके में इस वजह से रहते हैं क्योंकि मैक्स साकेत में एक इंटरनेशनल स्तर का जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल होता है। तो ऐसी आपको दिल्ली में कई सारे ऐसे हब्स दिखाई देंगे, जैसे जसोला में अपोलो की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं जिन्हें मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है वो आके रहते हैं वहाँ पे, अस्पताल में इलाज कराते हैं। वैसी स्थिति हौजरानी मालवीय नगर में होती है, जहाँ पर कई देशों के लोग बड़ी संख्या में मैक्स साकेत में इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। तो जो लिस्ट भी हम देख रहे हैं, संभवतः थोड़ी देर में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी, जो विक्टिम्स हैं उसमें से क्या कई सारे लोग ऐसे थे जो इस अस्पताल में इलाज करा रहे थे लंबे समय तक, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई, और 15 लोगों की जिनकी जान गई है उन्हें मॉर्चरी में यहाँ रखा गया। अंजलि,
0: जी बिल्कुल, और चिंताजनक बात यही है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वहां पहुंचे उनमें से 18 की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ पता चल पाया है ये लोग कौन थे जो वहां पहुंचे, जिनको पहुंचाया स्थानीय लोगों ने, क्या ये विदेशी ही थे सब, इनके बारे में कुछ भी जानकारी अभी आ पा रही है क्या, इनके परिजनों को इनके देशों तक किसी तरीके से कोई जानकारी भेजी जा रही है?
11: हमारे रोज लगे हैं, 365 दिन लगे हैं, एक दिन बाहर आए वाली।
12: आपने उन्होंने सिग्नल किया?
0: चलिए हम अमित से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं उसी इलाके में, आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन। सर सर सर सर एक सेकंड बात कीजिए। चलिए, कॉर्पोरेशन के लोग तो बात करने से कतरा रहे हैं, वो बात नहीं करना चाहते और करेंगे भी क्यों? आपको समझना होगा कि ये अगर लापरवाही है तो सबसे पहले इसमें निगम और सरकारों की लापरवाही भी गिनी जाएगी। देखिए, कानून तोड़ना, कई बार ये ऐसा होता है कि कानून तोड़ा जाता है। और आइए आपको एक बयान जो एमसीडी की तरफ से आ रहा है उसके बारे में बता दें। अब एमसीडी ये दावा कर रही है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई क्या की जाएगी ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन अब कार्रवाई की जाएगी जब 21 लोगों की जान जा चुकी है, जब इतने सारे लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, और वो जो हमारे मेहमान थे, हमारे देश के मेहमान थे, अपना इलाज कराने आए थे, वो अस्पतालों में भर्ती हैं, उसके बाद एमसीडी कहती है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इससे ज्यादा सादा बयान और हो नहीं सकता है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। तो एमसीडी के लोग भी यहाँ आए थे, अभी आपके सामने हमने दिखाया कैसे निकल के यहाँ से गए हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, हो सकता है कि उन्हें बात करने की इजाजत ना हो उनके महकमे से, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब ये जो पूरा आप मलबा भी सामने देख रहे हैं, इसको हटाने का काम भी किया जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, रिहाइश है, स्थानीय लोग हैं, उनको भी दिक्कतें आएंगी। कब तक आप इस तरीके से इस इलाके को बंद रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। आइए ये सुनते हैं कि एमसीडी इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही है।
13: दिए गए जैसा ही,
14: नेग्लिजेंस हुई है,
13: जैसा ही होता है, जांच के आदेश है,
14: ऐसी सक्रिय गलियों में होटल की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी,
13: बिल्कुल नहीं,
14: लापरवाही हुई है एमसीडी से,
13: एमसीडी से नहीं, सभी डिपार्टमेंट
14: सबसे एक्शन लेंगे आप।
13: अभी अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पर जरूर कार्रवाई होगी, जो भी उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल।
14: और मैम, अब इसके बाद बहुत सारी बिल्डिंग और भी होंगी,
13: बिल्कुल सभी पर कार्रवाई
15: होगी, लापरवाही लग रही
13: है,
15: लापरवाही
13: सभी पर कार्रवाई
15: लग रही है, लापरवाही है। कब तक जांच पूरी हो जाएगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा?
13: विद इन वीक।
14: ये तो सीधे तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था?
13: बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जब भी जांच के बाद
0: छोटे सबरे का आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत।
17: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of 5-star reviews?
18: Where did you see all this?
17: Online at APGE.com.
18: Watson, you're always so plugged in.
19: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads, classic rock, plus enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with premium upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
20: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
13: In association with Monte Carlo, it's the way you make me feel. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: कानपुर की धरती से गूंजेगी यूपी के विकास की बुलंद आवाज। यूपी की तरक्की का क्या है रोड मैप? जनता के सवालों का सटीक जवाब, दिग्गजों के साथ सबसे बड़ा संवाद। विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ यूपी तक पर।
15: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से हम आ रहे हैं आपके पास और सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद ओझा का, जो यही मौजूद है और आपको नजारा दिखा सकते हैं। अरविंद दिखाइए ये जो पूरा इलाका है और साथ ही में जिस बिल्डिंग में आग लगी वो किस स्थिति में है, एक बार इसका भी नजारा दिखाइए।
16: देखिए आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है हम, तकरीबन ये समझ लीजिए होटल के बहुत चंद फासलों पर है। और ये देखिए हमको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं फ्लोरिस इन, इस होटल की पूरी जो होटल है वो जल करके खाक हो चुकी है। और फ्रंट गेट से देखिए पहले माले पर ये जो कांच है इसको तोड़ा गया है, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की जद्दोजहद रही होगी। ये पूरा होटल रितेश मिश्रा ऊपर से नीचे तक आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत फासले पर इस होटल के हम हैं और जो इस बिल्डिंग की मालिक है जहां हम खड़े हैं अंजुम जी, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और बड़ी बात यह है कि एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था। अब सवाल है कि एंट्री एग्जिट गेट एक ही था तो फिर आखिर कैसे इसको NOC मिली? NOC मिल नहीं सकती। अब जरा ऊपर की तरफ टॉप एंगल से आप दिखाएंगे रितेश, ये फ्रंट गेट है पूरे होटल का जहां पर आग लगी थी, फ्लोरिस होटल। और अब बैक साइड से दिखाएंगे चारों तरफ की जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियां टूटी हुई। रितेश मिश्रा इधर मेरे करीब आई, आप इधर से यहां से दिखाइए, ये फ्रंट गेट देखिए, ये बैक देखिए। अंजुम जी इस पूरे अग्निकांड की सबसे बड़ी गवाह है, इनका घर भी इस आग की चपेट में आ सकता था क्योंकि एस्टैब्लिश करिए रितेश जी जहां इस वक्त हम खड़े हैं, आज तक की टीम यहां पर खड़ी है, अंजुम जी इस बिल्डिंग की मालकिन है। और यहां से कितना फासला होगा ये देखिए इस होटल का। अंजुम जी सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की, अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी क्या देखा, कैसे पूरा हादसा हुआ?
17: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है,
16: ठीक है।
17: तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है,
16: ठीक है।
17: तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं,
16: ठीक है।
17: देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा। तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
16: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
17: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
16: फोर्थ फ्लोर
17: से लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए बुरी तरह, बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे
16: देखिए
17: ये खिड़की, देखिए खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस है जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं। कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
16: देखिए आज तक हम आपको फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं, समझने की जरूरत है कि हम बेहद इस होटल से कितने करीब है। अंजुम जी है ये सामने
17: यहां
16: की तरफ
17: पहले खादी शिल्प होता था, उसके बाद यहाँ पे आलू वालिया कंस्ट्रक्शन किसी ने ये बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद ये इन्होंने किसी बाजार से।
16: एक बात बताइए, एनओसी मिल सकती
17: इस होटल को? एनओसी इसलिए नहीं मिल सकती, इन्होंने 5-6 कमरे एक फ्लोर पे बनाए तो भी ठीक है, उन्होंने 25-25 कमरे से बना रखे, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट इन्होंने नहीं बताया। एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है। लेकिन मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा, ट्विटर पे देखा कि यहाँ पे देखिए मिकासा है, ये इसके बगल में एक होटल है, इसके बगल में एक लेमन ग्रीन है। तो जो सोशल मीडिया पे जो गलत खबरें दिखाई जा रही है,
16: ये देखिए अंजुम जी यहाँ पे खड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने की तरफ ये होटल है, बेहद करीब होटल।
17: सोशल मीडिया पे जितनी खबरें आई है सारी गलत आई है, ये उस होटल को दिखाया गया है लेमन ग्रीन को, बट लेमन ग्रीन यहाँ से थर्ड होटल है, ये फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस इन।
16: इस होटल का नाम फ्लोरेंस इन है,
17: ना कि लेमन ग्रीन।
16: अच्छा अंदर क्या विदेशी थे? कांच
17: बहुत ज्यादा, यहाँ पे जितने भी होटल्स रहते हैं यहाँ पे ज्यादातर फॉरेनर्स लोग होते हैं, जैसे कि नाइजीरियन हो गए, अफगानी हो गए, या फिर सोमालिया के लोग हुए, या श्रीलंकन हो गए, वो सारे
16: जो सामने। जब आप चूंकि आपका घर भी चपेट में आ जाता है आप लोग,
17: हाँ क्योंकि मेरे फादर तो चल ही नहीं सकते, ही इज बेड रिडन, हमें समझ नहीं आ रहा था हम उनको कैसे लेके जाए।
16: तो यहाँ क्या अफरा तफरी मच गई थी, खिड़कियाँ कैसे टूटी हुई
17: थे, ऊपर से कूद रहे थे। हाँ
16: तो ये देखिए, और आपके पास वीडियो तस्वीरें भी हैं?
17: हाँ मेरे पास सारी तस्वीरें, मैं आपको दूंगी।
16: देखिए अभी कुछ देर बाद हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहले नीचे की तरफ हम दिखाते हैं जहाँ तमाम मीडिया पुलिसकर्मी अधिकारी खड़े हैं। ये नीचे की तस्वीर है जो अब तक आपने देखी होगी, और आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। पहले आप नीचे की तरफ देखेंगे, एंट्री एग्जिट गेट इस होटल का एक है, पूरा राउंड करके हम दिखा रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। पहले दिखाइए रितेश मिश्रा, ये फ्रंट गेट है, अब यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट कहाँ हो सकता है आप अंदाजा लग सकते हैं।
17: नीचे वाला है
16: एंट्री एग्जिट, नीचे
17: यही सेम गेट है।
16: अब देखिए, अब दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो कोई एग्जिट गेट नहीं है।
17: आग भी इनके बेसमेंट में लगी है, बेसमेंट से शुरू हुई है, क्योंकि इनका ग्राउंड फ्लोर पे इनका ये इनका कैफेटेरिया था, केक एंड बाइट्स, एंड उसके बाद ये बेसमेंट में ये बनाते थे, कुछ करते थे, वहां से इतने लोगों को निकाला गया और बेसमेंट में आग लगी, जबकि बेसमेंट में तो आप खाना बनाने का काम कर ही नहीं सकते।
16: फिर हम आपको ये बता रहे हैं कि आज तक उस होटल के बेहद करीब खड़ा है, इस घर को भी चपेट में ये आग ले सकता था। और फ्रंट गेट ये है, ये होटल आपको फ्लोरेंस इन होटल दिखा रहे हैं रितेश मिश्रा, ये दिखाइए, ये होटल है, एग्जिट एंट्री गेट ही है। अब अगर अदर साइड दिखाएंगे, एग्जिट एंट्री गेट नहीं है, खिड़की दिखाइए जरा रितेश मिश्रा, हर खिड़की टूटी हुई है। ज्यादातर विदेशी नागरिक थे, नाइजीरियन थे, साउथ अफ्रीका के, सोमालिया के, वो इस होटल में थे। और जो हमें जानकारी मिली, जो तस्वीर आपने देखी छत पर, ये छत दिखाइए जरा आप, छत पर
17: आग बेसमेंट में लगी है,
16: छत के ऊपर भी लोग खड़े थे,
17: छत के ऊपर भी लोग जान में चाह गए, पर वो कैसे आएंगे, वो कूद के ही आ रहे थे। और यहाँ पे बेसमेंट इन्होंने इल्लीगल तरीके से बनाया है,
16: इल्लीगल तरीके
17: से बेसमेंट से ही आग शुरू हुई है,
16: बेसमेंट से आग शुरू हुई है। सबसे बड़ी चश्मदीद इस हादसे की अंजुम जी आज तक पर मौजूद है और वो पूरा खुलासा कर रही है। होटल की तस्वीरें हम आपको करीब से दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त होटल में दाखिल होना वो खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि होटल के अंदर तक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जरा आप वो दिखाइए, ये चौथा माला ये,
17: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
16: ये देखिए चौथा माला के अंदर की क्लोज जूम करके दिखाने की कोशिश करिए, किस तरह से जो खिड़की है उसको तोड़ा गया, ये देखिए इसको तोड़ा गया है, इसके अंदर से लोग कूदे हैं, उसके बाद नीचे की तरफ रितेश जी आइए, नीचे की तरफ आइए, इस खिड़की को भी तोड़ा गया है, इसके अंदर से लोग तोड़ करके नीचे आए, उसके बाद ठीक नीचे आइए, इस खिड़की को भी तोड़ा गया है। और वो तस्वीरें भी आज तक के पास है जब लोग इसके अंदर से कूदते, चीखते, चिल्लाते दिखाई दिए। हालत ये रही कि लोगों ने गद्दा बिछा दिया, वो गद्दा नीचे की तरफ, रितेश हमने पहले भी दिखाया था, आपको दिखाएंगे,
17: बंदे जो गिरे वो गद्दे के ऊपर गिरे। दूसरा, ये जो लाइन सामने जा रही है, आप इसको फोकस कीजिए, इस लाइन को, ये लाइन फोकस कीजिए, ये वाली सामने
16: देखिए, ये सामने
17: सामने, ये सारे होटल्स में कन्वर्टेड है, यहाँ पे सारे पर डे चार्ज करते हैं ये लोग, और इन्होंने कोई एनओसी नहीं है, कोई इसमें सेफ्टी सेफगार्ड्स नहीं है कुछ,
16: तो
17: ना
16: अगर कोई... सरकार, दिल्ली सरकार सुन रही है, एमसीडी सुन रही है, तो सीधे ये स्थानीय नागरिक हैं, होटल से बेहद करीब हैं, आग में इनका घर भी जो चपेट में है वो आ सकता था। तो आज तक पर खुद जब अंजुम जी इस पूरे इलाके का खुलासा कर रही है, क्योंकि ये देखिए, ये घर है जहां इस वक्त हम खड़े हैं, सामने की तरफ ये होटल है, अंजुम जी का ये घर है, इनके घर में भी भगदड़ मच गई। और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा है, आपको दिखाई देगा। तो आप इस इलाके के बारे में बता रही थी, रितेश जी जरा ये दिखाइए आप, ये जो खिड़कियाँ क्यों टूटी हुई है, जरा एक्सप्लेन करिए।
17: ये खिड़कियाँ यहाँ पे, ये लोग यहाँ से गिर रहे थे,
16: यहाँ से गिर रहे
17: जान बचाने के लिए, क्योंकि एग्जिट नहीं था इनके पास कुछ भी।
16: अच्छा,
17: एग्जिट नहीं था, निकलने जाने का रास्ता एक था, इनकी जो सीढ़ियां थी वो पैक्ड थी, लोग कहां से निकले, लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदना शुरू किया।
16: तो देखिए, ये पूरा खुलासा आज तक पर हम कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच करेगी, क्या एमसीडी आएगी, लेकिन ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन आज तक पर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं कि ये होटल है, इस होटल के ठीक सटे छत पर आज तक की टीम खड़ी है। हमारे साथ इस हादसे की सबसे बड़ी चश्मदीद अंजुम जी मौजूद है, जो बता रही हैं। हाँ जी बताइए।
17: और ये किस पार्किंग से शुरू हुआ था, इन्होंने ये लोग कॉल भी कर रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले या पुलिस वाले कोई आया नहीं। अगर टाइम से अगर इनका एक्शन लिया जाता, कोई सुन लेता, यहाँ पे लोग आ जाते, तो इतने लोगों की कैजुअलिटी हम बचा सकते थे। तो इस वजह से ये
16: क्या मंजर रहा होगा उस वक्त, आप
17: बहुत ज्यादा, हम खुद रो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे फादर बेड रिडन है, हम उनको उठा नहीं पा रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने फादर को कैसे लेके नीचे आऊं।
16: तो देखिए, ये चश्मदीद है अंजुम जी, सामने की तरफ फ्लोरिस होटल है, और छत जो है, छत के भी कई वीडियो आए, उस छत पे लोग खड़े थे, विदेशी वहां से कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग तो ऐसे थे जो इस छत से कूदे हैं, इस वजह से उनकी जान चली गई, सफोकेशन की वजह से। और जरा हाँ, एक्सप्लेन करते हैं, इस तस्वीर को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, एक्सप्लेन करिए। ये देखिए, होटल है, एग्जिट एंट्री गेट एक है। अब अगर हम दूसरा सिरा इस होटल का देखते हैं, तो यहाँ पर कोई एग्जिट एंट्री गेट नहीं है। रितेश जी मुझसे आइए और ये एस्टेब्लिश करिए। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है। अब जरा खिड़कियों को देखिए, खिड़कियों को एक्सप्लेन करिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है, और लापरवाही की वजह से 21 लोगों की जान चली गई, जिसमें
17: इट कैन बी मोर देन 21, इट कैन बी मोर देन 20 दैट आई हैव काउंटेड माइसेल्फ।
16: तो ये देखिए, ये बता रही है कि और कैजुअल्टी हो सकती है, और 40 लोग घायल है इस मामले में, और इस वजह से ऑन द स्पॉट आज तक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब अंजुम जी और जो हम सामने देख पा रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अपने आप में सब कुछ बताती है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। होटल में एग्जिट एंट्री एक अगर एक ही है, तो फायर एनओसी नहीं दे सकता, नंबर एक। तो ऑन द स्पॉट ये क्लियर है। होटल में अगर आप देखिए, तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, बल्कि दूसरा एक बगल में होटल है, उसको भी अपनी चपेट में ले लिया। और जरा एस्टेब्लिश करिए इस पूरे इलाके को आप, जरा सा रितेश जी। हाँ देखिए, अगर एंट्री गेट की तरफ देखिए, फॉरेंसिक की टीम अंदर जा रही है, अभी अंदर जाते हुए फॉरेंसिक की टीम, ये एग्जिट एंट्री गेट दोनों है, जहां की हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, और यहां से ये पूरा होटल है। कितने माले का होटल है मैडम?
17: 4 माले, और बेसमेंट भी है, ग्राउंड माला, ग्राउंड बेसमेंट एंड देन फोर
16: तो जाहिर सी बात है, फिर तो इसको एनओसी किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। अच्छा, यहाँ किस तरह की, कितने होटल चल रहे हैं आपका?
17: हजारों हैं यहाँ पे, हर गली में लोगों ने अपने घर को, अब यहाँ के लोग शिफ्ट हो गए कहीं और। हाँ। और उन्होंने अपनी बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया होटल में, बिकॉज ऑफ मैक्स,
16: क्योंकि एनओसी वगैरह मिली भगत होती है, सबको कटिंग जाता है,
17: सब कुछ कटिंग जाता है, सब कुछ गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं होती। पुलिस को ये लोग इतनी देर से फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे थे, 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे आया, 8 बजे से इन्होंने कॉल स्टार्ट करना किया, शुरू किया, 9:40 पे यहाँ पे गाड़ी आई है।
16: तो ये देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हमने पहले जब आपको दिखाया था कुछ दूरी से, जरा वो देखिए, गद्दा देखिए, ये गद्दा स्थानीय लोगों ने ही,
18: पेशेंट्स ने, जिनसे हम बात कर सके, जिन्होंने हिस्ट्री दी है, बहुत पेशेंट्स जो थे जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला वो अनकॉन्शियस थे, कोई उनसे हिस्ट्री नहीं मिली है, बट जो पेशेंट्स जिनको ज्यादा सीवियर इंजरीज नहीं थी, जो वेंटिलेटर पर नहीं थे और जो कॉन्शियस थे, उनमें से काफी ने ये हिस्ट्री दी है कि हम थर्ड फ्लोर से जंप आ रहे हैं, हमने तो किसी का हार्ट टूटा हुआ था, किसी के पैर टूटे हुए थे, किसी के पेल्विक इंजरीज थी, तो वो बोनी इंजरीज थी, बट वो मोस्टली स्टेबलाइज कर लिए जाएंगे। जो
19: मेल कितने
18: जिनकी डेथ हुई है 18 पेशेंट्स की, वो बराबर की नो थे, नो मेल्स थे, नो फीमेल्स थे। एस्फिक्सिएशन वही बेसिकली होता क्या है, बर्न से पहले, फायर पहुंचने से पहले स्मोक पहुंच जाता है, तो वो आदमी जब स्मोक इनहेल करता है उसकी वजह से एक तो क्या होता है, बॉडी में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसी ऑक्सीजन कमी हो जाती है वो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरा, बिकॉज ये जब बर्न होता है तो पीवीसी टॉक्सिक मटेरियल्स बहुत होते हैं, प्लास्टिक, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब गैसेस आदमी इनहेल करता है, इससे भी इंजरी हो। तीसरा, जो ये जो फ्यूम्स होते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसकी वजह से थर्मल टेम्परेचर इंजरी हो जाती है लंग्स में। तो ये तीन मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे लंग्स में इमीडिएट इंजरी हो जाती है, और ऑक्सीजन कमी से आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, और इसमें वही टाइम क्रिटिकल होता है कि जितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें उस वो पेशेंट्स को टाइमली मैनेज कर सकते हैं।
19: तो
18: मैं बता रहा हूँ, जो वेंटिलेटर पे है वो वेंटिलेटर पे है, इसका मतलब वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, तो वो क्रिटिकल हैं, 7-8 पेशेंट जो है, बट उस पर भी पूरी मेहनत चल रही है। बाकी जो वेंटिलेटर पे नहीं है, आईसीयू में है, वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। मिक्स्ड है, वो नंबर मुझे अभी नहीं मालूम है, बट मैं बता रहा हूँ कि फॉरनर्स भी हैं, क्योंकि वो तो अब कई पेशेंट्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, तो अब वो एग्जैक्ट उनकी मैं नहीं कह पाऊंगा,
19: लेकिन
18: हाँ वो सारे, वो तो पुलिस जो है वो तो सारा मैनेज कर ही रही है, सारे मेडिकल लीगल केसेस है, तो स्टूडेंट्स तो नहीं है।
19: एज कितनी होगी सर? कुछ
18: एज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मतलब जितने मैंने देखे हैं वो आप लेके चले 20 साल से लेके 50-60 साल, इसके सेम यही 20 से 40 से लेके 50 30 से 50 की बीच में रेंज में है सर। हमारे यहाँ कोई नहीं लाएगा। नहीं देखिए, जो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक ही बर्न का केस था जिसमें हमारी इनिशियल, ऐसा होता है कि इनिशियल असेसमेंट में कई बार आप एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते, वो थोड़ा जब स्किन स्कैल्डिंग होती है, तो एक पेशेंट था जो वेंटिलेटर पे था जिसका मैं इनिशियल असेसमेंट में 25% के करीब बर्न इंजरी थी, और हम अपने हॉस्पिटल में 10% से ऊपर फिर स्टेबलाइज करके रेफर करते हैं, तो फिर वो हमने सफदरजंग पेशेंट जब इस पेशेंट को जब रेफर किया हमने सफदरजंग, ट्रांसफर हमने करवाया अपने, उसपे वो पेशेंट वैसे स्टेबल था बट बर्न्स ज्यादा थे, वेंटिलेटर पे था इसलिए शिफ्ट किया।
15: तो ये मैक्स अस्पताल की तरफ से बयान जारी की जा रहा था, ये संदीप बुद्धिराजा थे डॉक्टर साहब जो बता रहे थे। तो आइए एक बार फिर से लोकेशन पे आपको ले आते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त ऐसे ही इलाके में मौजूद है, ऐसी जगह पे मौजूद है जहां से उनको साफ नजर आ रही है बिल्डिंग। अरविंद आप दिखाइए उस वक्त क्या हुआ, और इस वक्त ये जो तस्वीर जो इस इमारत की है वो भी दिखाइए और बताइए क्या हुआ था उस वक्त और क्या बता रहे हैं चश्मदीद।
16: देखिए सबसे पहले बताऊं, दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन का हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, मालिक की पहचान भी हो गई है और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक पर सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होटल का लेआउट कैसा था, कैसा बना हुआ था। तो ये फ्लोरिस होटल है और आप देखिए अगर टॉप एंगल से पूरा दिखाइए, चौथे माले से 4 मंजिल बनाया गया था, सब कुछ अवैध तरीके से था, फायर एनओसी तो मिल ही नहीं सकती थी। हाँ देखिए, अब जो मालिक है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली गई है और कुछ देर बाद उसके मालिक के नाम का खुलासा हम करने वाले हैं। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, होटल पूरी तरह से अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, फायर की एनओसी को मिली नहीं सकती क्योंकि एग्जिट एंट्री गेट था, और ये पूरे इलाके को अगर आप दिखाएंगे दूर से तो यहाँ पर कई होटल है, जैसा की आज तक पर हादसे की सबसे बड़ी चश्मदीद अंजुम जी ने बताया कि यहाँ पर कई होटल है, लेकिन इस होटल को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो पूरी तरह से ये अवैध था, और जब हादसा हुआ उसके बाद जितनी भी खिड़कियां थी सारे खिड़कियों को तोड़ा गया, कोई लोग कूद कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इतना दर्दनाक हादसा था कि इसमें 21 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक है। तो सबसे बेहद करीब से आज तक आपको इस होटल की पूरी तस्वीर दिखा रहा है और ऑन द स्पॉट आज तक की इन्वेस्टिगेशन है, ऑन द स्पॉट हम इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ये होटल पूरी तरह से अवैध, दिल्ली पुलिस जब जांच करेगी तो जब जांच करेगी, आज तक ऑन द स्पॉट ये जांच करके आपको बता रहा है कि इसको फायर की एनओसी नहीं मिल सकती इस होटल को, ये होटल पूरी तरह से अवैध तरीके से चल रहा था क्योंकि एग्जिट एंट्री गेट इसमें एक ही था, निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, तो इसको फायर की एनओसी कैसे मिल सकती है। जवाबदेही किसकी फिक्स होगी? क्या सिर्फ दो तीन अधिकारियों को ट्रांसफर करने से, तबादला करने से बात बन जाएगी? गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने से बात बन जाएगी? या फिर जो जिम्मेदार अफसर है उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी? आज तक यही सवाल पूछ रहा, और हम सबसे करीब से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अंजुम जी, आप कुछ बताने वाली थी, आप क्या बता रही हैं? आप क्या खुलासा?
17: बता दिया मैंने, ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी।
16: अच्छा, मालिक के बारे में कुछ पता चला है?
17: नहीं, ये पहले तो ये आलू वाले कंस्ट्रक्शन का था, शायद किसी रिंकू बजाज का है ये।
16: अच्छा, देखिए अभी जानकारी मिल रही है, कुछ देर बाद हम और इसके मालिक का खुलासा करेंगे, लेकिन एक बात साफ है, और बगल में एक और होटल है, ये बगल में होटल भी है मैडम, निकासा है एक, देखिए होटल और है, उसको भी आग के उतारी से बात है, वो भी उसमें भी अवैध ही होगा वो। तो देखिए यहाँ पर, और जो हमें ये जानकारी मिली, आसपास पहले कई घर थे, चूंकि आसपास मैक्स हॉस्पिटल है, इस वजह से मैक्स हॉस्पिटल भी दिखाई आप, देखिए ये सामने जो मैक्स हॉस्पिटल है, इस मैक्स हॉस्पिटल की वजह से लोगों को लगा कि यहाँ और पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए अपने घर को होटल में तब्दील कर दिया। तो सामने मैक्स हॉस्पिटल जहाँ घायलों को ले जाया गया, कई घायल यहाँ इस अस्पताल में ले जाए गए, और इस मैक्स हॉस्पिटल की वजह से यहाँ आसपास, पैन करिए जरा साहब, यहाँ आसपास जो घर थे उनको धीरे धीरे करके होटल में तब्दील किया गया, और उसी होटल में से एक होटल है ये होटल जिसमें आग लगी, और आग में झुलसने से दर्दनाक तरीके से 21 लोगों की मौत हो गई, कुल मिलाकर 40 लोग घायल थे, मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं। लेकिन आज तक इंडिया टुडे की टीम ऑन द स्पॉट ये इन्वेस्टिगेशन करके बता रही है कि होटल पूरी तरह से फर्जी था, फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था, फायर की UNOC इसको नहीं मिल सकती थी, तो MCD के अधिकारी कौन इस इलाके के हैं, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, क्या फायर के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, आज तक पर ये बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जब भी इमारत गिरती है, आग लगती है, जो बिल्डिंग मालिक होता है उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, चाहे 20 मरे चाहे 50 मरे, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, कुछ देर बाद अदालत से जमानत मिल जाती है, कुछ इंजीनियर निलंबित कर दिए जाते हैं हालांकि उनको सैलरी मिलती रहती है। तो ये किस तरह का एक्शन है? एक्शन लेने की अब जरूरत है, दिल्ली सरकार को जागना चाहिए, क्योंकि ये होटल पूरी तरह से अवैध तरीके से चल रहा था और खचाखच भरा हुआ था, और जैसा जो हादसे की सबसे बड़ी चश्मदीद है अंजुम, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आसपास कई होटल हैं जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनको NOC नहीं मिली है लेकिन होटल चलाए जा रहे हैं। तो कम से कम इस 21 मौत के बाद अगर मेगा ड्राइव दिल्ली सरकार चलाती है तो ये माना जाएगा, अगर होटलों को जो अवैध तरीके से चल रहे हैं उनको सील किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा, तो यह माना जाएगा कि सरकार की नींद टूटी है, वरना इस तरह के हादसे होते रहेंगे।
15: जी जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है ये कि किस तरीके से सरकार अब कदम उठा सकती है, क्योंकि अगर हम याद करें तो दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन जितनी भी होती है उसके खिलाफ शायद पिछली बार जब कोई ड्राइव चली थी तो वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत ही चली थी। हमारी दिल्ली में कोई भी निगम या कोई भी अथॉरिटी अपनी तरफ से कोई ड्राइव नहीं चलाती है, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी बन जाता है अरविंद कि सिर्फ निगम या सिर्फ सरकार ही नहीं, ये पूरी एजेंसियों को एक साथ मिलकर नेटवर्क बना करके साथ में काम करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसा कि आपकी छात्र जो चश्मदीद है अंजू बता रही है कि यहाँ बेसमेंट में खाना पकाया जा रहा था, यानी किचन चल रहा था, तो क्या यहाँ के बीट कांस्टेबल को उसकी जानकारी नहीं थी? पिछले वाला जो मामला हमने दिल्ली में देखा है जहाँ बिल्डिंग गिरी, वहाँ बीट कांस्टेबल ने कंप्लेन की थी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें गड़बड़ी है, तो इस तरह की क्या कार्रवाई यहाँ पे भी हो रही थी? इस तरह के सवाल भी बनते हैं अरविंद।
16: देखिए दिल्ली में सब कुछ मिली भगत से चलता है, बीट कांस्टेबल से लेकर या फिर MCD के अधिकारी तक। अगर ये होटल इतना बड़ा होटल है, अगर देखिए 4 मंजिल बना दिया होटल को, और यहाँ विदेशी नागरिक अगर ठहर रहे, तो जाहिर सी बात है लोकल पुलिस को भी इस होटल के बारे में पूरी जानकारी होगी, MCD को भी पूरी जानकारी होगी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब हादसा हो गया तो दिल्ली सरकार की तरफ से शोक जताया जा रहा है, जरूरी यह है कि कड़े कदम उठाएं, और जैसा अंजलि आपने कहा, एक मेगा ड्राइव दिल्ली में चलाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अभी 4 दिन हुए, 6 लोगों की जान चलेगी, जिसमें कुछ MBBS के डॉक्टर थे, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे, उन लड़कों की मौत हुई है मेहरौली इलाके में।
15: बिल्कुल, और इस ड्राइव की, इस मुहिम की शायद हम सभी को इसका इंतजार रहेगा और दरकार है दिल्ली को इसकी। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
21: इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
20: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
21: इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
20: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
23: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
24: एसआईआर की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं खास तौर पर दलालों को पैसा देकर पिछले दो तीन दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है एक पैनिक क्रिएट हो गया है इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश आने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं
25: ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में खासकर इन घुसपैठियों में एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोक के साथ तपस सिंह गुप्ता आज तक हाकिमपुर
26: अफ्रीका में इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के मरीजों की संख्या 320 का आंकड़ा पार कर चुकी है कांगो में इबोला से पीड़ित करीब 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं वहीं पड़ोसी देश युगांडा में एक मौत की पुष्टि हुई है WHO प्रमुख ने कांगो के इबोला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राष्ट्रपति को इस प्रकोप के बारे में जानकारी दी WHO ने चेतावनी दी है कि यह इबोला के मरीजों का आंकड़ा अब तक सामने आए मामलों से ज्यादा बड़ा हो सकता है इबोला वायरस को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक प्रयास तेज हो गए हैं भारत ने इस संकट से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भेजी है इसमें सुरक्षात्मक उपकरण निदान एवं निगरानी उपकरण संक्रमण रोकथाम सामग्री और दवाएं शामिल हैं। ये इबोला वायरस का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हमला है जिससे कांगो और युगांडा जूझ रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती दौर में इसका पता नहीं चल पाया जिससे अब बीमारी को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है ब्यूरो रिपोर्ट आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में भीषण आग, 21 लोगों की झुलसकर मौत, 40 लोगों को बचाया गया, 15 मरीज आईसीयू में, 8 वेंटिलेटर पर, होटल में रुके थे कई विदेशी नागरिक। आज तक ने खोली मालवीय नगर अग्निकांड की पोल, 6 कमरों की परमिशन लेकर बनाए गए 25 कमरे, एंट्री एग्जिट के लिए था सिर्फ एक दरवाजा, ग्राउंड जीरो एक्सक्लूसिव पड़ताल। होटल में लगी आग के बाद दिल्ली सरकार की एजेंसी हरकत में, जिम्मेदारों पर एक्शन की तैयारी, जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों के प्रति पीएम मोदी ने जताई संवेदना। बंगाल में बहुत बड़ी सियासी हलचल, बागी विधायकों ने 60 एमएलए के समर्थन की चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी, नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने की तैयारी। कर्नाटक में थोड़ी देर में नई सरकार का शपथ, 14 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे, डीके शिव कुमार परमेश्वरन बन सकते हैं डिप्टी सीएम।
1: अग्निशमन दल हे सगळेच जण अशातुर्काच्या हॉटेलला इथे तशा प्रकारे चालू येत होते, हा देखील एक मोठा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी और इससे 21 लोगों की जान चले गई, 21 लोग मारे गए हैं, 15 लोग इस समय आईसीयू में हैं, 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं। पूरी व्यवस्था को बदलने का दावा करके दिल्ली की सरकार में बीजेपी आई थी, लेकिन क्या व्यवस्था बदली, क्या दिल्ली की सूरत बदली? नहीं, दिल्ली की सूरत नहीं बदली है। आप इस तस्वीर को देखिए, इस होटल को देखिए, बीएनबी की परमिशन लेकर, 6 कमरों की परमिशन लेकर 25 कमरे बना दिए गए, लेकिन प्रशासन सोता रहा। ऐसा नहीं था कि प्रशासन को जानकारी नहीं रही होगी, प्रशासन इस देश की राजधानी दिल्ली का सब कुछ जानता है, लेकिन कई बार चीजें अनसुनी की जाती हैं, जानबूझकर अनसुनी की जाती है, क्योंकि उसके पीछे उनके अपने हित होते हैं। और ये जो आप समय तस्वीर देख रहे हैं, अब फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची हुई है, ये टीम इस समय जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल करके ये कुरेदना का प्रयास होगा कि आखिर हुआ ये कि अवैध तरीके से सारी चीजें संचालित की गई, यहां पर बीएनबी की परमिशन लेकर होटल बना दिया गया, 21 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, अभी कुछ और लोगों की मौत हो सकती है, सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार। हमारे साथ दो सहयोगी मेरे, अंजलि और साथ ही साथ हिमांशु भी हमारे साथ है। अंजलि, अब आप जिस हिस्से से हैं, उस हिस्से से इस पूरे मामले के, इस पूरे हादसे को आप भी एक्सपोज कीजिए, और जो सवाल उठते हैं उन सुलगते हुए सवालों से दिल्ली सरकार को भी, सिस्टम को भी अवगत करवाना जरूरी है।
2: जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राजीव, और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आप इस गली को देखिए, इस गली में ऊपर जो तारों का जंगला है उसे देखिए, आप उस अंत में जो बिल्डिंग नजर आ रही है उसके नीचे गिरे मलबे को देखिए।

0: वहाँ पर पुलिस की तैनाती को देखिए, वहाँ पर फायर सर्विस की तैनाती को देखिए, और इस सबके बीच सवाल यही उठता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये होटल चल रहा था, लाइसेंस कुछ और, काम कुछ और। और जवाब क्या मिलता है, जवाब निगम से पूछते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों चल रहा था, जवाब मिलता है कि अब कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई क्या सिर्फ हादसा होने के बाद होती है, जब 21 लोग झुलसकर मर जाते हैं, वो लोग जो अपने परिवार वालों का इलाज कराने के लिए एक अस्पताल पहुंचे, आज वही लोग खुद उस अस्पताल में भर्ती हैं, 18 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है, 5 वेंटिलेटर पर हैं। आखिर सवाल यही उठता है कि किस तरीके से ये पूरा होटल चल रहा था, और होटल की बेसमेंट में किचन चल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यही है जो अरविंद ओझा ने एक चश्मदीद से बात की और पता चला कि बेसमेंट में खाना पकाने का काम चल रहा था, और दिल्ली के जो बॉय लॉस है वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित का, जो इस मौके पर मौजूद है। हिमांशु, ओवर टू यू।
1: इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अब बिल्कुल अंजलि, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो भी बता दे, गैर इरादतन हत्या का मामला यहाँ पर दर्ज हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको आज तक पर बता रहा हूँ, और हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर इस वक्त फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो डॉक्टर्स की टीम पैनल पूरा मौजूद है, और आप वहां देखिए, वहां पर डॉक्टर्स की टीम हाथों में ग्लव्स पहने हुए है, और हर एक सबूत को यहाँ पर जुटाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो पुलिस मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, वो हर एक साक्ष्य को यहाँ पर जुटा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। पूरी बिल्डिंग आप यहां पर देख रहे हैं, पूरा होटल यहां पर जल चुका है, और यहां पर आप सोचिए कि 21 लोगों की मौत हो चुकी, ना जाने कितने लोग थे जो तड़प तड़प कर, जिन लोगों ने जान गंवा दी, धुआं इतना ज्यादा भर गया था कि लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे, हालात उनके खराब हो गए थे, कंजेस्टेड एरिया था, फायर ब्रिगेड को पहुंचने में यहां पर बड़ी दिक्कत हुई, होटल को फायर का एनओसी नहीं था, लापरवाही जो आपने बताया, जो राजीव ने बताया, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहां पर साक्ष्य बटोरे जा रहे हैं, यहां पर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जीती जाती लापरवाही की तस्वीरें हैं कि खुलेआम यहां पर सारे नियम, सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाती है, और उसका परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ये निकलता है किस लोगों की मौत हो गई, और हो सकता है कि आंकड़ा यहां पर रुके नहीं, हो सकता है कि आगे और ज्यादा बढ़ जाए, और लोगों की यहां पर जान जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। सीधे आपको ले जाते हैं हमारे सहयोगी राजीव ढोंडियाल के पास। राजीव,
2: हिमांशु आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सिस्टम इस समय जांच कर रहा है, सिस्टम जांच करेगा, लेकिन जब सिस्टम को पता चलेगा इसमें तो हमारी ही कमी है, तो सिस्टम क्या करेगा, क्या अपने ऊपर कार्रवाई करेगा, क्या आज तक की कभी नहीं की, लेकिन क्या आप करेगा, सवाल आज तक लगातार पूछता रहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी जुड़े हैं। अरविंद, आप इतने लंबे समय से इस तरह के हादसों को देखते रहे, देश की राजधानी दिल्ली में भी सरकारें आई बदलती रही, लेकिन ये घटनाएं क्यों नहीं बदल पाती, यानी कि काम करने का तरीका बदलता ही नहीं है अधिकारियों का।
3: देखिए राजीव, आपने बहुत सवाल सही पूछा, और ये कोई एक दो सरकारों की बातें नहीं है, ये सिलसिला कई दशकों से चलता चला रहा है, क्योंकि इसके पीछे है कट मनी, सबके पैसे चाहिए, और पैसे लेकर इस तरह की लापरवाही वो बढ़ती जाती है। कुछ देर पहले इस पूरे हादसे
1: को ये देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अचानक से ऊपर से बल्ब अभी भी गिर रहा है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए मलबा अभी भी यहाँ से गिर रहा है, और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद थी, वो डॉक्टर की टीम आप देखिए अंदर मौजूद है, और यहाँ पर मलबा अभी भी गिर रहा है, और पूरा सील कर दिया गया है एरिया, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। ये आप देखिए कि जो फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, अब वो भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऊपर वो आप देख रहे हैं वो कई शीशे ऐसे हैं जो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं, चटक चुके हैं। अब ऐसे में डॉक्टर्स की, जिसमें कई महिला डॉक्टर्स है, पुरुष डॉक्टर्स है, फॉरेंसिक की टीम है, कैमरामैन है, वो देखिए ये सब भागते हुए अपने ऊपर अपने आपको बचाते हुए, क्योंकि ऊपर से ये मलबा गिर रहा है, या ऊपर से ये शीशे कांच चकनाचूर हो रहा है, तो ऐसे में ये भागते हुए, देखिए पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद हैं, कई लोगों ने यहां पर एडमिट लगाया हुआ है ताकि वो अपने आप को बचा सके अगर ऊपर से कोई मलबा गिरता है तो। अब वहां पर जो फॉरेंसिक की टीम जा रही थी उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी ये जो इमारत है ये जर्जर हो चुकी है, यहां हालात खराब हो चुके हैं, अगर कोई यहां पर जा रहा है तो पूरी सुरक्षा के साथ जा रहा है, क्योंकि ऊपर जो मलबा आप जो देख रहे हैं कि शीशे यहां पर लगाए गए थे, वो शीशे कभी भी चटक कर यहां पर गिर सकते हैं, और इसीलिए अब सभी जितने भी ये देखिए सीएफएसएल की टीम दिल्ली की, अब इनको यहां से हटा दिया गया है, और अब अंदर कोई भी नहीं जा रहा है, अब सबसे पहले यहां पर ये देखा जाएगा कि पूरी तरह से सुरक्षित है कि नहीं है। है, क्योंकि आप वो शीशा देखिए वो अभी भी निकला हुआ है और वो कभी भी गिर सकता है। तो ऐसे में अगर
2: एके मलिक साहब भी हिमांशु लौटते हैं, एके मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एके मलिक साहब, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में इस तरह डिप्टी फायर ऑफिसर इस समय साथ है। मलिक साहब, कितनी चुनौतियां होती है जब इतनी कंजेस्टेड जगह पर आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है, अब इस मामले में आप बताएं कि क्या जितनी भी कार्रवाई है क्या वो त्वरित हुई, सही टाइम पर आप लोग पहुंच गए थे?
4: जी हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए थे। जो शुरू में हमें कॉल मिली थी 8:50 पे और 8:51 पे हमने 7 गाड़ियां इस पर रिस्पॉन्ड करी थी। हमारे पास कॉल थी कि एक रेस्टोरेंट में आग है और जैसे जैसे वहां से हमें सीन से कॉल ज्यादा आई कंट्रोल के पास हमारे, तो और भी गाड़ियां इस पर टर्न आउट करी गई और हमारी जो टीम वहां पर पहुंची थी सबसे पहले उसने वहां पर जाते ही दोनों ऑपरेशन शुरू कर दिए। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू दोनों ऑपरेशन एक साथ साइमल्टेनियसली किए हमारी टीम ने और ग्राउंड फ्लोर पे फायर को बुझाया गया और बेसमेंट से 7-7 6 आदमियों को रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हमने ग्राउंड फ्लोर की आग को
2: बहुत तरह के सवाल हैं, अब आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए। सर आप बताएं, जब आपकी टीम यहां पर पहुंचे किस कंडीशन में थे उस समय, लोग किस कंडीशन में किस किस फ्लोर पर थे उस समय जब आपकी टीम पहुंची?
4: देखिए जब हमारी टीम पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो फायर में इन्वॉल्व थे, बेसमेंट में धुआं भरा हुआ था, पूरी बिल्डिंग धुएं से फिल्ड थी कम्प्लीटली। तो इनिशियली हमने दोनों ऑपरेशन शुरू करे, फायर फाइटिंग हमने शुरू करी ग्राउंड फ्लोर पर और बेसमेंट से हमने रेस्क्यू करना शुरू करा। बेसमेंट से हमने 6 आदमी रेस्क्यू करे, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर को नॉकडाउन करके फ्लेम को हमारी टीम अंदर एंटर हुई और उसके बाद आग को बुझाते हुए ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, फोर्थ फ्लोर से, हर फ्लोर से हमने रेस्क्यू करके आदमियों को निकाला है, उतार के लाए हैं हम लोग।
2: सर आप थोड़ा सा फ्लोर दर फ्लोर और एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेसमेंट की कंडीशन क्या थी, वहां कितने कमरे थे, कोई एग्जिट गेट था या नहीं था?
4: बेसमेंट में एंट्री लेने के 2 स्टेयरकेस हैं, एक तो फ्रंट रोड से ही था और एक साइड अंदर से एक जीना उसके अंदर जा रहा था और बेसमेंट में 2 कमरे बने हुए थे और वहां से हमने 6 आदमियों को रेस्क्यू करा। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ एलपीजी के सिलेंडर वगैरह हमें मिले, उस वक्त तो हमें ये आभास हुआ कि इसमें शायद कुछ रेस्टोरेंट या कुछ किचन वगैरह कुछ यहाँ रही होगी और वहां पर भी 2 कमरे बने हुए थे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे 5 कमरे थे, सेकंड थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे भी 5-5 कमरे थे, फिफ्थ फ्लोर के ऊपर 5वीं मंजिल के ऊपर 4 कमरे थे जिसमें से 2 स्टोर के लिए यूज हो रहे थे। तो हमने हर फ्लोर से लोग जो उसमें अंदर थे।
2: सर एक और सवाल कि अगर आपकी टीम सब समय से पहुंच गई थी तो लोगों को कूदना क्यों पड़ा, नीचे गद्दे क्यों बिछाने पड़े, आप तो रेस्क्यू करवा सकते थे आराम से ऊपर से लोगों को?
4: इसमें 2 चीज है, पहली चीज ये है कि कॉल लगी कितने बजे। अभी मैं टीवी आपके चैनल पे देख रहा था, कोई आपकी लेडी है वो कह रही थी कि सुबह 8 आग लगी, लेकिन हमें जो कॉल मिली है वो 8:50 में मिली है। तो अगर हमें कॉल ही 50 मिनट बाद मिलेगी तो 50 मिनट के बीच में जो हुआ उनको तो फायर सर्विस जाकर के नहीं बचा पाएगी।
2: ठीक है सर, हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हैं, वो कुछ सवाल आपसे करेंगे। अरविंद
3: सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं होटल के बेहद करीब हूं, आप हमें क्या बता सकते हैं कि इस होटल को फायर की एनओसी मिली थी या नहीं मिली थी? सर
4: हमने रिकॉर्ड चेक किया है, डिपार्टमेंट द्वारा इसको कोई फायर एनओसी नहीं दी गई है। नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि जो बिल्डिंग अथॉरिटी है वो हमें बिल्डिंग रेफर करती है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए, या जो लाइसेंसिंग एजेंसी है वो हमारे पास भेजती है कि इस बिल्डिंग को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस केस में B&B का जो ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट का इन्होंने कोई लाइसेंस लिया हुआ था टूरिज्म डिपार्टमेंट से, टूरिज्म मिनिस्ट्री से, तो वहां से हमें जो है ना इस एजेंसी है, तो ये बिल्डिंग हमारे पास रेफर होकर कभी आई नहीं और हमने इसको कोई FSC इशू नहीं किया हुआ है।
3: दूसरा मेरा सवाल है सर, चूंकि हम ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यहाँ कई आसपास होटल हैं जैसा लोग बता रहे हैं, क्या यहाँ जो आसपास होटल हैं उनमें से कई को एनओसी है, फायर की एनओसी मिली हुई है, ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल सर,
4: नहीं हमें इस एरिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि हमने किसी को एनओसी दी हुई है, और आज माननीय मंत्री जी आशीष सूद जी वहां पहुंच गए थे, गृह मंत्री जो हैं दिल्ली के, उन्होंने जो है कंसर्न डीसी को और कंसर्न एसडीएम को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं बनी हुई हैं जो अवैध तरीके से बन गई हैं या जिनमें अवैध कारोबार हो रहा है, इनकी जो है जांच करें और इनको सील करें।
3: सर तीसरा मेरा आखिरी सवाल है, इस होटल का एंट्री एग्जिट गेट एक था, नॉर्म्स क्या है, अगर किसी होटल को फायर की एनओसी मिलती है तो क्या देखते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर प्लीज।
4: देखिए इसमें दो चीज हैं, एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ बीइंग ए फायर एक्सपर्ट, इस बिल्डिंग में मैं गया हूँ, मैं खुद सीन पे था, इस बिल्डिंग में जो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स हैं यानी कि ये 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है, तो इसमें नॉर्मली 2 स्टेयरकेस की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि इस बिल्डिंग में जो हमने ऑब्जर्व किया कि इस बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, सारी खिड़कियां टोटली सील्ड करी हुई थी जिससे कि कहीं से धुआं और हीट निकलने का कोई जगह ही नहीं थी। जिस इस तरह की बिल्डिंग में जब कभी फायर होती है तो बहुत तेजी से फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और लोगों को निकलने के लिए बिल्कुल बहुत कम समय मिलता है।
3: तो देखिए बड़ी चीज मैं कहूंगा, जो आपने बात कही वो ऑन द स्पॉट आज तक ने उसका खुलासा किया भी था, और जो आप बोल रहे हैं कि इसमें एग्जिट के लिए कोई जो गेट नहीं था जो आप बता रहे थे खिड़की की, तो हम खिड़की भी साथ साथ सर दिखा रहे हैं आज तक पर कि ये जो पूरी खिड़की पैक थी इन्हीं को तोड़ा गया है, जूम करके दिखाइएगा। और आज तक पर जो फायर चीफ है उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा किया है, पहला खुलासा ये कि इस बिल्डिंग को फायर की एनओसी नहीं मिली थी, दूसरा खुलासा ये कि जिस तरह से रियलिटी चेक हमारे सहयोगी सुशांत ने भी किया था और चश्मदीद अंजुम ने भी बताया था कि आसपास कई होटल हैं, किसी को होटल को भी फायर की एनओसी नहीं है, यानी यहाँ पर जितने भी होटल है ज्यादातर होटल खासतौर से इस इलाके में वो अवैध तरीके से चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवैध तरीके से ये होटल चलाया जा रहा था तो क्या उसके बावजूद भी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा? सर क्या फायर डिपार्टमेंट कोई ड्राइव चलाता है दिल्ली में चेकिंग के लिए कि किस होटल को किस रेस्टोरेंट को फायर की एनओसी है या नहीं है, ये ड्राइव चलाना किसका काम है? तो ये बड़ा, तो अंजलि देखिए, अंजलि देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा, अंजलि अपने आप में ये बड़ा खुलासा किया है आज तक पर जो फायर डिपार्टमेंट के चीफ हैं कि इस होटल को फायर की एनओसी नहीं थी, नंबर दो इस इलाके में जो होटल है उनको फायर की एनओसी नहीं मिल सकती, तो अब इसकी एक्शन कौन लेगा, कौन ड्राइव चलाएगा? और जो एक्सप्लेन किया है फायर चीफ ने वो हम सीधे तस्वीरों के जरिए भी दिखा दे सकते हैं, एंट्री एग्जिट एक नहीं है, ये पूरा टर्न अबाउट पूरा लेआउट आज तक पर एक्सक्लूसिव देखिए, आगे एग्जिट एंट्री गेट है और कुछ देर पहले इसी खिड़की का एक कांच का जो कांच है वो नीचे की तरफ गिरा जिसकी वजह से अंदर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे वो बाहर की तरफ निकल गए। लेकिन अब पूरे होटल के लेआउट को देखिए तो फ्रंट गेट की तरफ 4 मंजिल थी जैसा फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने आज तक को बताया, पहली मंजिल पर ये देखिए पूरी तरह से पैक दिए, ये खिड़की जरा दिखाइए पूरी तरह से ये पैक्ड है, अब ये किस तरह का, ये पूरी तरह से अवैध। और जब आग लगी और जैसा जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी बता रहे थे कि इस तरह अगर एग्जिट एंट्री गेट एक हो खिड़की पैक्ड हो तो आग तेजी से फैलती, और शायद यही वजह है कि आग इस होटल में तेजी से फैली, किसी को बचने का मौका नहीं मिला, लोगों ने कूद कूद कर जान बचाई। और एक एक तस्वीर हम आज तक पर दिखा रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि ऑन द स्पॉट आज तक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिस पर अब फायर डिपार्टमेंट के चीफ ने ऑन एयर मोहर भी लगा दी है किसको एनओसी नहीं मिला था, साथ ही साथ आसपास जितने होटल है उनको भी फायर की एनओसी नहीं है। लेकिन धड़ल्ले से यहाँ पर कई होटल चल रहे हैं, कम से कम अब उन होटलों पर जो कार्रवाई है वो जो कंसर्न अधिकारी करेंगे ये बहुत जरूरी है, क्या एक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए पूरा इलाका दिखाइए जरा आप, ये पूरा इलाका रितेश मिश्रा दिखाइए, यहाँ चारों तरफ आपको दिखाई देगा। जी जी राजीव राजीव देखिए ये अपने आप में बड़ा खुलासा है जी, और
5: भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों पर आपको इस तरह की चीजें मिल जाएगी, आपको कार्रवाई होती दिखेगी।
6: बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और आज तक इन खुलासों पर लगातार सवाल पूछता रहेगा, सिस्टम को लगातार हम जो है सवाल पूछकर जागरूक करने का प्रयास करते रहेंगे कि अब नहीं तो कब, इतने सालों से कुछ भी नहीं बदला। हम एक बार फिर से उस जगह की तस्वीर दिखाते हैं, ये वो होटल है। अब आप देखिए किस जगह पर ये लोकेटेड है, सामने की तरफ पूरी तरह से गली बंद, हाँ बगल में एक बिल्कुल पतली सी गली जाती है, और शायद ऐसा लगा होगा इस होटल मालिक को कि यहाँ कौन ही देखने के लिए आ रहा है, और सिस्टम तो अपनी जेब में है, सिस्टम जेब में है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, ऐसा तो चलता भी आ रहा है हमारे समाज में बहुत समय से, हमारे सिस्टम में। और यही यही सबसे बड़ी समस्या के कारण भी है कि यही इस तरह की अनियमितताओं को बढ़ावा देता है, यही इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है, तब सवाल खड़े होते हैं, तब सिस्टम को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी घटना होगी, अब हमको सक्रिय होना चाहिए, हमको जागना चाहिए। हिमांशु, जगाने के कई मौके आए हैं, दिल्ली में भी आए हैं, पहले भी आग की घटनाएं हुई है, लेकिन ये सिस्टम तब भी नहीं जागा, क्या इन 21 मौतों के बाद जागेगा?
7: On the left hand side, which is certainly showing that the kind of damage which has been caused to the structure.
1: सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका जवाब अभी तक ना इसका मिल पाया हो, ना ही शायद आने वाले वक्त में मिल पाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी राजीव हम लगातार दिखा रहे हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में कैसे एक के बाद एक आग हुई, और ऐसी नहीं कि छोटी मोटी आग लगी हो, आप यहां पर देखेंगे कि कितनी बड़ी आग लगी हो, इससे पहले भी कई बार आग लग चुकी है जहां पर कई लोगों की जान गई है। अब ज्यादातर क्या होता है दिल्ली में, आप देखेंगे इस तरह की तंग बस्तियां हैं, आप तारों का मकरजाल यहां पर देख सकते हो, और ऐसा नहीं हर जगह पर, आप जैसे यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, ये इस जगह पर आप देखेंगे तो इस तरह से तारों का मकरजाल जगह जगह लगा रहता है। अब ये ऐसी तंग गलियां हैं, इन तंग गलियों में से लोगों का आना जाना यहां पर रहता है, और जब इस तरह से हादसा होता है तो फिर आग बुझाने में बहुत दिक्कत आती है, और दिक्कत ऐसी आती है कि अगर आप थोड़ा सा आगे देखें, ये फॉरेंसिक की टीम जो आप देख रहे हैं यहां पर, CDSL की टीम है, उसके ठीक आगे आप यहां पर देखिए कि वो सीढ़ियां लगाकर जो ऊपर जो नुकसान हुआ है या फिर जो मलबा लगातार गिर रहा है उसको ढाने की कोशिश की जा रही है, और वो जो गद्दे वद्दे हैं ये आप देख सकते हैं कि यहां पर इतनी तंग गलियों में जहां तारों का मकरजाल है, ऐसी जगह पर जब एम्बुलेंस आती है आग लगती है, वो भी आग कब लगती है, जब इतनी लापरवाही के बाद, जब NOC नहीं मिल पाती, जब कहीं कोई दिक्कत, जब कोई नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं किया जाता, और फिर जब आग लगती है तो फिर लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब लोगों को बचाना मुश्किल हो जाता है तो उस वक्त आप देखेंगे कि अभी अभी यहां पर कह दिया गया है कि दिल्ली पुलिस की सीमा है, इसके पार कोई नहीं जा सकता, लेकिन यहां पर कई लोग रह रहे थे, वो लोग थे जिनके अपने अस्पताल में इस वक्त इलाज चला रहे थे, और अब देखिए नहीं रहे, 21 लोगों की जान जा चुकी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी वेंटिलेटर पर हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में हैं। अब यहां पर सभी साक्ष्यों को यहां पर समेटा गया, ये देखिए ये CDSL फॉरेंसिक की टीम यहां पर मौजूद है, और एक बार फिर राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव आपके पास क्या खबर है?
8: नीचे गिर रही है अभी, पूरी तरह सेटल नहीं हुआ, जब ये सेटल हो जाएगा तो हम इसको एग्जामिन करके दोबारा रिपोर्ट देंगे।
6: सर एक चीज सर अच्छा, बेसमेंट में कई सारे लोग फंस गए थे, बेसमेंट में क्या हाल, क्या था वहाँ?
8: बेसमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे इसमें, हम कल पहुंचेंगे वहां पर।
6: अच्छा एक और बड़ी खबर हिमांशु, हमने फॉरेंसिक के अधिकारियों से बातचीत की है जो अभी अंदर से काम करके निकले हैं, अभी आपने भी एक तस्वीर दिखाई थी, ऊपर से कांच टूट कर गिर रहा था, फॉरेंसिक के अधिकारी भी यही बता रहे हैं कि ऊपर से कांच टूट कर गिर रहा है, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है अभी, वो ये भी कह रहे हैं कि अभी आज कंप्लीट नहीं हुआ काम, कल एक बार फिर से आएंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे, शायद वो उम्मीद करे होंगे कि चीजें थोड़ी सी स्टेबल हो जाएं, जो भी टूटना बिखरना गिरना होगा वो एक साथ गिर जाएगा, शायद वो इसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने ये सवाल भी पूछा कि बेसमेंट की क्या सिचुएशन थी, आप गए थे तो
1: बता रहे थे,
6: यानी कि फॉरेंसिक की इतनी टीम, इतने अधिकारी पहुंचे, उनको भी अभी इतना समय लग रहा है, कई घंटे वो भीतर थे फॉरेंसिक की टीम। हिमांशु और हमारे साथ जी हिमांशु, जी हिमांशु,
1: राजीव जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वही मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वो देखिए आप येलो कलर की जो सीढ़ी लगाई गई है, और वो आसपास में जो भी आप देख रहे हैं कि फायर फाइटर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं वो वहां पर यही देख रहे हैं, क्योंकि सामने वाली गली में यहाँ पर आप देखेंगे लोग रहते हैं तो उनको वहां पर बचाना है, क्योंकि कोई नीचे ना, बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हैं, तो ऊपर से अगर कोई मलबा गिरे और किसी को चोट ना लगे तो अभी सावधानी ये बरती जा रही है, इसीलिए इस पूरे इलाके को पूरा सील कर दिया है, सिर्फ वही लोग हैं, और उनमें भी आप देखेंगे पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज करने के बाद वो लोग वहां पर पहुंचे हैं कि अगर ऊपर से कुछ गिरता तो यहां पर उसको हटाया जा सके, नसेनी लगाकर सीढ़ी लगाकर उसको हटाया जा रहा है, और लोगों को बिल्कुल आवाजाही यहां पर बंद कर दी गई है, अब ये पूरा इलाका घेर लिया गया है। जो आप यहां पर बता रहे थे, जो जानकारी आप दे रहे थे कि लापरवाही तो हुई है, और ये लापरवाही अभी नहीं पहले से होती आई है, लेकिन बंद हो जाएगी इसका जवाब अभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर दिल्ली में थोड़ा सा अगर आप कहीं पर भी चले जाएंगे वहां पर ऐसी तंग गलियां हैं, वहां पर ऐसी छोटी बस्तियां हैं, वहां पर 5 कमरों के नाम पर 20-20, 15-15 कमरों के होटल खोल दिए गए हैं, और ये सिर्फ साकेत हॉस्पिटल की बात नहीं है, एम्स और और आसपास के इलाकों में आप जाएंगे जहां पर बड़े हॉस्पिटल है, दूर दराज से लोग जहां पर आते हैं इलाज कराने के लिए, उनके परिवार के लिए कई दिनों तक जिनका इलाज चलता है वो इसी जगह पर रहते हैं, ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं, तो उसके बाद कहीं वो छोटे इलाकों में रहते हैं, छोटे होटलों में रहते हैं, एक एक कमरे में चार चार पांच पांच लोग रहते हैं, तो वहां पर अगर इस तरह की लापरवाही, क्यों? क्योंकि मुनाफाखोरी करनी है, पैसा कमाना है, और ऐसे में फिर यहां पर व्यवस्थाएं नहीं देनी है, निकलने के लिए जाने के लिए अलग रास्ता होना चाहिए, वो यहां पर नहीं था, और इसीलिए अब यहां पर देखा जा रहा है कि जगह जगह आग लग गई, और उसके बाद क्या हो रहा है, अब यहां पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वीवीआईपी आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ, और अब क्या किया जा सकता है, अफसोस यहां पर जताया जा सकता है, लेकिन पुराने हादसों से सबक लेकर एक नई तस्वीर, एक नया भविष्य बनाने पर जब बात होती है तो यही कहा जाता है कि हां ठीक है, अब जो पुराने लोग, जो पुराने मामले हैं उनके बारे, उनसे सबक लेकर अब आगे कुछ किया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, फिर टीम आती है, लोगों को जाने से मना कर दिया जाता है, मीडिया को रोक दिया जाता है, पुलिस वाले यहां पर बोल देते हैं कि अब यहां आगे कोई नहीं जाएगा, वीआईपी जाते हैं, देखते हैं कि क्या हाल है, लोगों से बात करते हैं, फोरेंसिक की टीम आती है, जो अभी तक होता आया है वो अभी भी हो रहा है, वही आ गया। एक बार फिर अरविंद के पास जाते हैं, अरविंद दोजा हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए, अरविंद और क्या जानकारी आ रही है आपके पास?
3: देखिए इस पूरे हादसे में 10 लोग घायल है, 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं हिमांशु। अभी अभी जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनके जरिए जानकारी आई, उनको एम्स में भर्ती कराया गया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था इसमें। और जरा मैं आपको डिस्टेंस से जरा आप ये देखिए, चूंकि फायर चीफ ने इस बात का खुलासा किया है तो जरा मैं आपको दिखाता हूं कि होटल के अंदर का जरा नजारा देखिए। आप जरा खिड़की अंदर से कोशिश करिए रितेश जी, ये सेकेंड फ्लोर की जो खिड़की है वो दिखाने की कोशिश करें, लोग किस तरह से जो खिड़की है उसको तोड़े हैं। फायर चीफ ने आज तक पर ऑन एयर कुछ देर पहले जो हमने हादसे की सबसे बड़ी चश्मदीद अंजुम के साथ इन्वेस्टिगेशन की थी उस पर मोहर लगाई है। फायर चीफ ने कहा इस होटल को फायर की एनओसी नहीं थी, साथ ही ये भी कहा कि इस होटल को फायर की एनओसी मिल ही नहीं सकती क्योंकि एंट्री एग्जिट गेट एक था, जो विंडोज थे पूरी तरह से पैक थे, और अगर इस तरह का लेआउट, इस तरह का होटल बनता है तो अगर उसमें आग लगती है तो आग तेजी से फैल जाएगी। दूसरी बड़ी मोहर जो हादसे की सबसे बड़ी चश्मदीद अंजुम ने बताया था कि आसपास कई होटल खुल गए हैं, फायर चीफ ने उस पर कहा कि किसी भी होटल को एनओसी नहीं मिली हुई है, तो अपने आप में बड़ा खुला है।
2: बिल्कुल अरविंद, सवाल बहुत सारे हैं और एक्सपोज कर दिया है, अब खुद अधिकारियों ने ऑन कैमरा एक्सपोज कर दिया, कोई जो है एनओसी था नहीं, अब एनओसी नहीं था तो कैसे चल रहा था होटल, कब होगी कार्रवाई, सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन हो गया हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत।
10: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU सोच बदलो और बैंक भी।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
4: In association with
5: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: Summer cool cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
4: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार की तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से. विमल, बोलो जुबां केसरी.
4: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी. वेयर आर यू?

0: नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता सिंह। इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर, देश की राजधानी में ही सारे नियम तोड़कर चलते होटल में लगी आग। 21 लोगों की जान चली गई है, मरने वालों में विदेशी नागरिक भी हैं। देश की राजधानी में ही आम लोगों को जीवन बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदना पड़ा है। अब जांच, गिरफ्तारी, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं वाला दावा शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, आज तक के सवाल पर डिप्टी फायर चीफ की तरफ से कहा गया है कि होटल के पास फायर का एनओसी नहीं था। फायर एनओसी नहीं था, दमकल विभाग की तरफ से यह आधिकारिक बयान आज तक पर ही आया है। यहां तक कि उस इलाके में बाकी किसी इमारत को भी एनओसी होने की सूचना से उन्होंने इनकार किया है, यानी कि बड़े पैमाने पर अब आगे कार्रवाई की आवश्यकता है। मालवीय नगर में एक ऐसी घटना जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि दिल्ली में हो सकती है। हमारे साथ इस समय अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं और हिमांशु दीक्षित जुड़ रहे हैं। अरविंद, पहले आपसे, क्योंकि फायर के डिप्टी चीफ ने आपके ही सवाल पर आज तक पर यह कहा है कि इस इमारत में, इस होटल को एनओसी नहीं था फायर का, और दूसरा ये भी कि यहां पर और भी जो बाकी हैं उन्हें भी नहीं है एनओसी।
1: बिल्कुल, देखिए, और आज तक पर ये खुलासा किया है जो फायर चीफ है उन्होंने कि ये जो होटल है, ये खूनी होटल जिसमें आग लगने से झुलसे लोग 40 लोग और जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, इस खूनी होटल को एनओसी नहीं था। और एनओसी नहीं होने के बावजूद 20 सालों से ये होटल चल रहा था और इस होटल को एनओसी मिल भी नहीं सकता अगर परमिशन मांगा जाए तो। ये होटल में जो फायर चीफ है उसने खुलासा किया है। दूसरा बड़ा खुलासा ये किया है कि आसपास जो आप रितेश मिश्रा दिखाइए, आसपास जो कई होटल हैं उन सभी होटलों को फायर की एनओसी नहीं मिली है। तो कम से कम अब जो स्थानीय प्रशासन है उसकी नींद टूटे, बाकी होटलों पर कार्रवाई। और श्वेता, देखिए, कुछ देर पहले जब फायर जो चीफ है उन्होंने बताया है, उसके पहले आज तक पर ऑन द ग्राउंड हमने इन्वेस्टिगेशन किया। जो हादसे की सबसे बड़ी चश्मदीद अंजुम, जो जिस बिल्डिंग में खड़ा हूं उस बिल्डिंग की मालकिन है, उन्होंने एक एक करके सारे खुलासे कर दिए और उस खुलासे पर फायर चीफ की मोहर लग गई है। और अंजुम का घर कितना करीब है उस होटल से ये अंदाजा लगाइए। जहां मैं खड़ा हूं ये ठीक सटा हुआ होटल है, और जरा लेआउट समझने की कोशिश करते हैं। 4 मंजिल ये होटल बनाया गया था, नीचे बेसमेंट भी था, और एनओसी को क्यों नहीं मिल सकती ये भी हम आपको श्वेता समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जिट एंट्री गेट सिर्फ एक है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम ऊपर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो खिड़कियां हैं, पूरी तरह से पैक्ड है। अब अगर एग्जिट एंट्री गेट एक हो और खिड़की पूरी तरह से पैक्ड हो तो आग आसानी से लगती है और तेजी से लगती है और फैलती है, यही फायर चीफ ने कहा, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इस वजह से आग लगी, तेजी से फैली और उसके बाद एक एक करके तमाम खिड़कियों को तोड़ना पड़ा। पहले अगर देखिए, चौथी मंजिल की खिड़की तोड़ी गई है, अंदर जो विदेशी लोग थे उन्होंने ये खिड़की तोड़ी है, चीख पुकार मच रही थी और यहां से कूद रहे थे। उसके बाद दूसरे मंजिल की खिड़की देखिए, वो भी तोड़ी गई, वहां से भी चीख पुकार मच रही थी और वहां से भी लोग कूदे। उसके अलावा बैक साइड से आइए आप, ये देखिए, ये जो होटल है, इस होटल का ये बैक साइड है। बैक साइड में रितेश जी आपको दिखाएंगे यहां से आकर कि हर खिड़की का जो कांच है वो तोड़ा गया है। वो अंदर जो लोग फंसे थे वो चीख पुकार रहे थे, वो तोड़े और उसके बाद नीचे कूदे। अब नीचे कूदने लगे तो स्थानीय लोगों ने थोड़ी सूझबूझ दिखाई और गद्दा रखा। गद्दा हम आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये गद्दा है, ये गद्दा यहाँ पर स्थानीय लोगों ने रखा। दरअसल सामने गद्दे की दुकान थी तो उन लोगों ने सूझबूझ दिखाई और देखा कि लोग चीख पुकार रहे हैं और बकायदा कूद रहे हैं, इस वजह से क्यों ना उनकी जान बचाने के लिए ये गद्दा रखा जाए। और गद्दा रखा गया और इस गद्दे पर कुछ लोग कूदे तो शायद इस वजह से उनको कुछ कम चोट लगी, लेकिन हादसा इतना भयावह था कि इसमें 21 लोगों की जान चली गई और ज्यादातर विदेशी हैं। अब आसपास होटल क्यों खुले हैं ये भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। श्वेता, सामने की तरफ मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स अस्पताल है। जब से ये अस्पताल खुला है यहाँ पर इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं, और इस वजह से यहाँ आसपास कई होटल नियमों की अनदेखी करके, जरा पैन करके दिखाइए आप, यहाँ आसपास कई होटल खुल गए हैं जिनमें से एक होटल ये था। अब इन तमाम होटलों को एनओसी नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी नियम ताक पर रखकर कट मनी के जरिए ये होटल चलाया जा रहा है। इस वजह से आज तक पर हम ये कह रहे हैं कि अब प्रशासन की नींद टूटनी चाहिए। सिर्फ ये न हो कि हादसा हुआ हो, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो जाए, मालिक को गिरफ्तार कर ले, बाद में उसको बेल मिल जाए, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाए।
0: ये बात बहुत आसान है कह देना कि एनओसी नहीं था, और केवल एक डिपार्टमेंट की नहीं, मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट से अगर हम पूछेंगे तो उनकी तरफ से यही कहा जाएगा कि अरे हमने तो केवल 5 कमरे का दिया था, यहाँ पर 25 कैसे बन गए। तो ये सारी चीजें हिमांशु यहाँ पर है, लेकिन आखिर तो समय समय पर आपको ही जाकर उन्हीं विभागों को जाकर निरीक्षण करना होगा ना कि क्या चल रहा है। आग लगने के बाद 21 लोगों की जान जाने के बाद तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, ओवरक्राउडिंग भी थी, अवैध संचालन भी थी, निगरानी भी यहां पर नहीं की गई थी। मैं कुछ तस्वीरें यहां पर पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अभी यहां पर क्या हो रहा है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले यहां से जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहां से चली गई है। फॉरेंसिक की टीम यहां पर थी, अब वो क्यों चली गई, अभी जांच पड़ताल अधूरी क्यों, वो मैं आपको बता देता हूं। जिस जगह पर आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के सील लगाया गया, लेबल लगाया गया, यहां से आगे वो जाने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर से शीशे कांच मलबा लगातार गिरता आ रहा था, और इसीलिए अब यहां पर किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। आगे आप उस गली में देखेंगे जिस गली के बारे में अभी हमारे सहयोगी अरविंद भी बता रहे थे, वहां पर वो गद्दे रखे, आप देखेंगे सीढ़ियां वहां पर लगाई गई हैं और ऊपर से लगातार मलबा गिरता आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर सावधानी बरतते हुए और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ, ये देखिए सामने मीटर्स बिजली सब बंद कर दी गई है, यहां पर जो भी काम किया जा रहा है ठीक उसके सामने जो लोग यहां पर रहते थे वहां पर बिजली बंद कर दी गई है, लोगों को यहां से हटा दिया गया है, क्योंकि रात में अगर या फिर थोड़ी देर बाद कहीं पर कुछ भी होता है अप्रिय घटना तो उससे बचा जा सके। वायर्स, ये जो मकर जाल इस वक्त ये तारों का यहां पर बिछा हुआ है, और ये अलग अलग जगह पर आपने देखा होगा दिल्ली की तंकलियों में, इसको भी यहां पर हटाया जा रहा है। अब जो आपने लापरवाही की बात की, एनओसी परमिशन की अनदेखी हुई, ओवरक्राउडिंग और अवैध संचालन हुआ, ज्यादा पर्यटक खासतौर पर विदेशी को ठहराया गया जबकि लाइसेंस और सेफ्टी के हिसाब से क्षमता से ज्यादा लोग थे, प्रशासनिक निगरानी की कमी यहां पर हुई, लोकल अथॉरिटीज एमसीडी फायर डिपार्टमेंट की तरफ से नियमित इंस्पेक्शन और चेकिंग नहीं हुई जिससे अवैध निर्माण और सेफ्टी वायोलेशन लंबे समय से चल रहा था। और श्वेता, आपने भी कई बार कई जगह रिपोर्टिंग करके ये बताया है, अरविंद ने भी बताया है, दिल्ली में ये पहली बार नहीं है और मैं फिर कह रहा हूं कि आखिरी बार भी नहीं होगा, क्योंकि जब जब जिम्मेदारों को जरूरत होती है ये सुनिश्चित करने की कि तंग गलियों में इस तरह से अवैध निर्माण ना हो, अवैध तरीके से होटल ना चले, और एक अस्पताल नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर गरीब लोग आते हैं और अस्पतालों में इलाज कराते हैं, कुछ के पास पैसे नहीं होते, छोटे छोटे कमरों में वो तीन तीन चार चार लोग रहते हैं इस तरह की तंग गलियों में। अब वहां पर एक दरवाजा रहता है, वो दरवाजा आज आप देख लीजिए आज बिल्कुल तरह से काला पड़ चुका है, क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ मलबा है, ना निकलने की जगह ना जाने की जगह, एक सकरी सी सीढ़ियां होती है, मुश्किल से मुश्किल 6 से 8 इंच की ऐसी सीढ़ियां होती है, उससे ऊपर चढ़ा जाता है, और ये अलग अलग जगह पर ऐसा है जहां पर अस्पताल होंगे और वहां पर आप देखेंगे वहां पर इसी तरह का होगा। और अब बाद में अस्पताल में जो मतलब बाद में जो अधिकारी आते हैं, बाद में प्रशासनिक अधिकारी नेता आते हैं, इस तरह से हाथ में हाथ धरे देखते हैं, थोड़ी देर शांत रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, चेहरा उनका मायूस होता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर 5 महीने बाद 6 महीने बाद 1 साल बाद फिर एक घटना होती है, फिर वही लोग दोबारा से आते हैं, फिर कहते हैं कि लापरवाही वालों, जिसने भी लापरवाही किया उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है। और देखिए अब ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, जब देखते हैं कि इन गलियों में इसी तरह का तारों का मकरजाल फैला, आप यहां देखिए ना, ये एक एग्जांपल देखिए, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये तारों का मकरजाल देखिए यहां पर ये फैला हुआ, और ये कितनी छोटी छोटी गलियां हैं, उन छोटी छोटी गलियों से हम निकल के, क्योंकि पुलिस ने यहां पर आने नहीं दिया था पत्रकारों को, तो इस तरह की छोटी छोटी गलियों से हम होकर आए हैं, और आप इन छोटी गलियों में आएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि कैसे लोग यहां पर रह रहे हैं और कैसे यहां पर इंतजाम किए गए हैं। यहां फिर भी थोड़ी बहुत बड़ी जगह आप देख सकते हैं लोगों को जाने की, अब देखिए कितने लोग हैं वहां पर, ये सारे तारों को अब वहां पर हटाया जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, या आसपास की पूरी इमारत की बिजली काट दी गई है। अब जो लोग ये यहां पर रहते, वो देखिए वो बालकनी से जो कुछ महिलाएं यहां पर कुछ बच्चियां झांक रही हैं, जब यहां पर आग लगी होगी तो ऐसा नहीं है कि एक की लापरवाही का खामियाजा कितने लोग भुगतेंगे, वहां जो आप छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं जो अभी भी वहां पर हैं, उन सबको उस आग का, उस भयावह आग का हरजाना भुगतना पड़ता है। और ऐसा एक जगह नहीं, हर जगह हो रहा है। अरविंद जब यहां पर आए थे, यहां पर जब बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर हटाया जा रहा था फॉरेंसिक टीम, उनकी जान को यहां पर खतरा बना हुआ था, क्योंकि ऊपर से अचानक शीशे टूट रहे थे। तो ये लापरवाही चलती आ रही है और ये लापरवाही आगे भी देखने को मिलेगी, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं लगेगी। आज यहां पर हुआ है, कल कहीं और पर होगा, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल,
0: सरकारें बदल जाती हैं, सिटी पर नियंत्रण बदल जाता है, अलग अलग विभागों की जवाबदेही बदल जाती है, लेकिन ये तस्वीरें आप याद करिए, हर साल कम से कम ऐसी एक तस्वीर सामने आ जाती है जहां पर मौत का आंकड़ा ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक गहमा गहमी जरूर रहती है, लेकिन उसके आगे नतीजा सिफर। हम आपको दिखाते हैं ये आग कैसे लगी है, किस तरह का ये विभत्स गठजोड़ है जिसने आज 21 जाने ले ली।
3: फर्स्ट फ्लोर पे इनके आग लगी थी, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बंदे थे, वो कोई निकल नहीं पाया।
4: करना चालू किया, यहाँ पे 940 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने को।
5: वो चैनल को बंद क्यों, ताला क्यों लगा?
6: ये
5: इसमें फॉरनर्स भी है, उनकी जानकारी मिल रही है।
1: बेसमेंट में रेस्टोरेंट चला था, अब इस रेस्टोरेंट में की एनओसी किसने दी, क्या एमसीडी यहाँ पर नहीं आती, क्या फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं आती?
7: जिसने जो कमी की होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से रूथलेसली करनी चाहिए।
8: सरकार को क्या कहना चाहिए, सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है।
9: देश की संसद से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर धू धू कर जलती ये इमारत नहीं, ये वो बिल्डिंग है जो बताती है कि जनता की जान को आग में झोंक देने का खुल्लम खुल्ला लाइसेंस देने वाला खेल देश की राजधानी में चलती दिल्ली की सरकार, सरकारी विभाग और विभाग के अफसर करते हैं। जहां दिल्ली की विधानसभा से केवल 24 किलोमीटर दूर चादरों में लपेट कर उन नागरिकों को ले जाया जा रहा है जिन्हें भरोसा होता है कि कम से कम सरकारों के दावे भारत की राजधानी में तो दम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, दिल्ली के मालवीय नगर से सटे हौजरानी गांव में 6 मंजिला इमारत में ऐसी आग लगी, चंद मिनट के भीतर मौत का आंकड़ा 20 के पार पहुंच जाता है।
1: ये होटल है, एग्जिट एंट्री गेट एक है, अब अगर हम दूसरा सिरा इस होटल का देखते हैं तो यहाँ पर कोई एग्जिट एंट्री गेट नहीं है। रितेश जी मुझसे आइए और ये एस्टेब्लिश करिए, ये देखिए ये दूसरा पार्ट है, अब जरा खिड़कियों को देखिए, खिड़कियों को एक्सप्लेन करिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है।
5: यहाँ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ऊपर का सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है यहाँ से लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद रहे थे, तो उनको इन गद्दों में जो नीचे की तरफ आ रहे थे उनको बचाया गया।
10: सर संजय जी आपसे मैं एक बार फिर से बात करूंगी, संजय जी से हमारी मुलाकात हुई, ये सुबह 8:20 से यहीं पर मौजूद है और लगातार संजय जी एक बार आपके हाथ और इनके हाथ ये बयां करते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे थे, सुबह से ये लगे हुए, इन्होंने मदद की लोगों की, इनके साथ दमकल के कर्मचारी पुलिस वाले वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं और सबकी कोशिश यही थी कि किसी न किसी तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके।
9: ये तस्वीर विचलित कर देती लेकिन देखना आपको जरूरी, जहाँ जलती हुई इमारत से जान बचाने को लोग ऊपर से नीचे उन गद्दों पर आखिरी बार कूदते रहे जो गद्दे स्थानीय लोगों ने बचाने के लिए रखे, मौत की आग से जिंदगी बचाने की ये छलांग शर्मनाक धब्बा है उस सरकार के दावों के लिए जहां जनता की जान की फिक्र किसी को नहीं थी। फिक्र अगर सरकार को होती तो जरा इस चेहरे को देखिए, आशीष सूद दिल्ली के गृह मंत्री, लाल रंग के चमचमाते सुरक्षा हेलमेट पहनकर घटना स्थल पर पहुंचे, इनके साथ खड़े अधिकारियों को देखिए, इनके सिर पर वो हेलमेट जो शायद पहले कभी ये लोग लगाकर ग्राउंड पर निकले तक नहीं होंगे, निकले होते तो इनके हेलमेट इतने चमचमाते नहीं। लेकिन दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद का झक सफेद कुर्ता और अधिकारियों की पैंट शर्ट की क्रीज तक जहां मुड़ी नहीं दिखती, ये तस्वीर बताती है कि जनता की जान जाने के बाद ही नींद इन लोगों की टूटती है जिन्हें सिंगल डबल और ट्रिपल इंजन की ताकत जनता ने दे दी। सुनिए अब जरा मंत्री आशीष सूद की बात।
11: और जिनके अंदर जरा सी भी वॉयलेशन है हमारा सरकार दिल्ली सरकार का पानी बिजली का कनेक्शन तो तुरंत कट पाएंगे। इस बिल्डिंग को एनओसी की जरूरत थी, एनओसी दी हुई है इस
9: अब जो कबूलनामा मंत्री सुन रहे हैं वही सच है, ऐसा सच जहां भारत की राजधानी में दिल्ली की सरकार और सरकारी विभाग ने ये हालात कर दिए कि आम आदमी लपटों में घिरा रहा। आप कहेंगे कैसे सरकार की गलती है तो सुन लीजिए, दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग जिसने बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति के तहत गेस्ट हाउस चलाने का लाइसेंस दिया, नियम के तहत यहाँ 6 कमरे होने थे लेकिन 25 कमरे बनाकर चलते रहे। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा जिनके विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर जूनियर असिस्टेंट तक 11 लोग काम करते हैं, लेकिन सब सोते रहे और 6 कमरे की जगह 25 कमरे बनाकर चलता गेस्ट हाउस आग का गोला बनकर मौत बांध देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रिपल इंजन तो एमसीडी तक में बीजेपी का राज है। एमसीडी के ए और जे सब सोते रहे क्योंकि पता चला इस बिल्डिंग का नक्शा तक पास नहीं था। सोता रहा दिल्ली का फायर विभाग, जिसने कभी ये देखा ही नहीं कि एनओसी ली गई है या नहीं ली गई। सोती रही दिल्ली की पुलिस क्योंकि बिना एनओसी के रेस्टोरेंट तक यहाँ इसी बिल्डिंग में चलता रहा।
0: हिमांशु, एक तरीके से कहा जाए तो रस्म अदायगी रह गई है। एनओसी की बात हमेशा आती है और जब भी एक इमारत में आग लगती है कहा जाता है कि यहां पर एनओसी नहीं थी। और होटलों को केवल मालवीय नगर इलाके नहीं, न जाने कितने इलाकों में, अगर हम दिल्ली के देखें, कहीं पर अस्पताल के कारण, कहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कारण, कहीं पर स्टूडेंट्स के लिए, कहीं पर टूरिस्ट के लिए, ऐसे छोटे छोटे होटल नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं जहां पर कोई निगरानी नहीं हो रही है। केवल होटल मालिक को जिम्मेदार नहीं, वरना तो वहां पर पूरी जो सड़कें हैं, गलियां हैं, जहां पर एक के बाद एक आपको रहने की ऐसी व्यवस्था दिख जाएगी या फिर पढ़ने की ऐसी व्यवस्था दिख जाएगी स्टूडेंट्स की, जो अपनी जान हथेली पर लेकर रोज जा रहे होते हैं उस इमारत में।
2: मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो विजय हैं वो थोड़ा सा आगे आए ताकि मैं आपको वो तस्वीरें दिखा सकूं। आप ये देखिए, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा, अब आपने जो बताया कि जो गलियों के बारे में आपने जिक्र किया, मैं एक गली आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं और आप यहां पर देखिए, ये देखिए, ये ठीक उस होटल के सामने वाली गली है और आप उधर इस साइड, उस साइड आप जूम करके देखिए, थोड़ा सा इधर आइए प्लीज, थोड़ा सा इधर आइए और अब आप सामने देखिए यहां पर कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, और आगे आप जाकर देखेंगे तो आपको वो तारों का मकड़जाल आपको नजर आएगा। इन्हीं गलियों से होते हुए लोग निकलते हैं, इन्हीं गलियों से होते हुए यहां पर लोग आते हैं, वो सारा मकड़जाल देखिए। अब मुझे एक बात बताइए श्वेता, अगर यहां पर कोई हादसा होता, ये देखिए सामने ही आपको गीजर भी दिखेगा और यहां पर लाइट भी लगी है, तार भी, अगर यहां पर कहीं कोई हादसा होगा तो कैसे फायर ब्रिगेड की टीम उस कोने तक जाएगी, कैसे यहां पर लोगों की जान बचाई जाएगी। जब इस रोड पर, ये जो आप पीछे देख रही हैं, यहां पर आप देखिए, जब इस रोड पर एक होटल में जो अवैध तरीके से बनाया गया, जिसमें 6 कमरे बनाने थे लेकिन 25 बना दिए गए, जब यहां पर ऐसी आग लगती है कि अभी भी यहां पर मलबा गिर रहा है, पुलिस अभी अंदर नहीं जा रही है, ना फॉरेंसिक की टीम अंदर जा रही है, ये देखिए कांच का मलबा कैसे बिखरा हुआ पड़ा है, हर जगह हालात खराब है, तो आप सोचिए कि इन गलियों का यहां पर क्या होगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, आपको याद होगा कि जहां पर कोचिंग संचालक होते हैं, जहां पर कोचिंगें चलाई जाती हैं, वहां पर भी इसी तरह से जो छात्र हैं, छात्र भी इसी तरह से तंग बस्तियों में रहते हैं, ऐसे ही तारों के जाल मकर जाल ऊपर से जाते हैं और ऐसे ही फिर कहीं ना कहीं पर आग लगती है, कहीं ना कहीं पर हादसा होता है, कहीं ना कहीं पर पानी भर जाता है बेसमेंट में, कोचिंग में, ये आपने देखा होगा दिल्ली में ऐसे मामले सामने आए थे, तो एक जगह से नहीं हर जगह से। अब ये तारों को हटाने का काम किया जा रहा है ऊपर से, ये सीढ़ियां लगाकर अब ये तारों को हटाने का काम किया जा रहा है, अब यहां पर पुलिस विभाग भी है, अब यहां पर बिजली विभाग भी है, अब यहां पर जो जल विभाग है वो भी यहां पर आए हैं, काम अब यहां पर सारे काम होंगे, ये तारे ये देखिए ये लटक रहे हैं, अब ये सब यहां पर सारे काम होंगे। लेकिन जब यहां पर होना था तब वहां पर क्यों नहीं हुआ, जब यहां पर लापरवाही की जा रही थी, अवैध निर्माण, ज्यादा कमरे बनाए जा रहे थे, 24-25 कमरे बना दिए गए थे, बेसमेंट में भी कमरे चलाए जा रहे थे नियमों के खिलाफ, तो ये देखिए बेसमेंट, ये जगह जो जाने की जो आप देख रहे हैं सामने, यही वो जगह है जहां पर पूरा वो क्रॉस बना दिया गया है, जहां पर कोई नहीं जा रहा है आगे, फायर सेफ्टी की पूरी कमी इमारत में, जैसा कि अरविंद भी बता रहे थे, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं, एक ही सकरा एग्जिट जो आपके सामने है इस वक्त, कोई पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं, धुएं से लोगों का दम घुटा, फायर एग्जिट या सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी यहां पर बताई जा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो आपने देख ही लिया, एनओसी परमिशन की अनदेखी, वो भी हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन अभी तो सारी टीमें यहां पर मौजूद है ना, अभी तो सब यहां पर हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या था। और ये एक फिर हम कह रहे हैं, हम ये फिर कह रहे हैं, रास्ता की फिर कह रहा है कि ना ये पहला था ना ये आखिरी होगा। इससे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों के अंदर, सालों के अंदर कितने लोगों की जान गई, कितनी ऐसी इमारतें हैं जो आग की चपेट में आई, जहां पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई, सकरी गलियां थी। होता क्या है, आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, एक दूसरे पर आरोप लगा देंगे, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। एक साल बाद फिर से ऐसा कोई हादसा होगा, फिर से कुछ लोगों की जान चली जाएगी, फिर से आंसू बहाए जाएंगे, फिर से दुख अपना बताया जाएगा, मुआवजा भी दे दिया जाएगा, परिवारों को सांत्वना भी दे दी जाएगी, लेकिन क्या ऐसे हादसे रुकेगी, इस बात की गारंटी दी जाएगी, मतलब खतरा तो उनको भी है ना। ये आप देखिए यहां पर ये एक इंसान अगर अवैध काम कर रहा था, जो 3 मार्टर बताए जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अकेला है, और भी कई जगह उनके ऐसे ऐसे होटल हैं जहां पर कई लोग रुकते हैं, वो भी अवैध तरीके से बनाए गए होंगे। बताया गया है ना, तीन पार्टनर है, आज तक का ये चला है। अब यहां पर ये सोचिए कि अगर एक जगह लापरवाही की गई तो ये सामने वालों की क्या गलती है जो इन घरों में रहते हैं। एक जगह से लापरवाही की गई जो उनके ठीक पीछे रहते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि एसी का वेंट लगा हुआ है, उनकी क्या लापरवाही थी। इसी तरह से अगर निगरानी सही टाइम पे रखी जाए, विभाग अपना काम करे, जो आज कर रहे हैं हादसा होने के बाद, वो बोलते हैं ना कि सोते हुए को आप जगा सकते हैं, अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है आप उसको नहीं जगा सकते हैं, तो यही यहां पर दिल्ली पर भी हो रहा है। और इसीलिए आम लोग बार बार ये पूछते हैं कि जब उनकी जान की बात आती है, जब उनके अपनों की बात आती है, तब बाद में उनको सिर्फ सांत्वना मिल जाती है, बाद में मुआवजा मिल जाता है,
0: एक्शन लिया जाए उनके ऊपर या किसी भी तरह का एक्शन लिया जाए, लेकिन 21 जाने तो जा चुकी हैं, विदेशी नागरिक भी रह रहे थे इसमें, और अब हर कोई यही जानना चाहता है कि राजधानी में इस तरह की अगर अनदेखी, इस तरह की लापरवाही, इस तरह का क्रिमिनल नेग्लिजेंस चल रहा था तो उसका अंत आखिर कैसे होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
12: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
14: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
15: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
16: Oh, ouch.
15: However you make money work, we can work with that.
17: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
18: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

क्या ट्विशा केस में सीबीआई के हाथ कोई अहम सुराग लगा है? क्या 5 दिनों की रिमांड में समर्थ और गिरिबाला ने ट्विशा केस को लेकर कोई बड़ा खुलासा किया है? क्या ट्विशा के परिवार वालों के आरोपों में वाकई सच्चाई है? क्या ट्विशा की मौत की असल वजह जल्द सामने आ सकती है? ये सवाल दोनों आरोपियों की 5 दिनों की सीबीआई रिमांड के बाद उठ रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक समर्थ सिंह और गिरिबाला ने ट्विशा से मारपीट के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ट्विशा शर्मा से उनके संबंध सामान्य थे। दोनों ने परिवार में किसी गंभीर तनाव या विवाद की बात से भी इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ससुराल में सब कुछ सामान्य था, रिश्तों में तनाव नहीं था, तो आखिर ट्विशा शर्मा ने खुदकुशी जैसे कदम क्यों उठाया? सीबीआई की पूछताछ में समर्थ ने ट्विशा के ड्रग एडिक्ट होने की बात कही है। दावा है कि इसी वजह से ट्विशा के व्यवहार में अचानक बदलाव होता था। समर्थ सिंह और गिरिबाला दोनों ने ही उन आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया है जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। तमाम सवालों पर पूछताछ के बाद आज सीबीआई ने ट्विशा केस के दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। ट्विशा मौत मामले की जांच के दौरान सामने आई एक गंभीर लापरवाही ने शुरुआती जांच की दिशा ही बदल दी थी। सीबीआई हर पहलू की पड़ताल कर रही है ताकि ट्विशा केस का सच सामने आ सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेद।

0: दल मालिक की तलाश तेज, पीड़ित परिवारों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना। बंगाल में सियासी हलचल तेज, बागी विधायकों ने 60 एमएलए के समर्थन की चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी, नेता विपक्ष का पद हासिल करने की तैयारी। कर्नाटक में थोड़ी देर में नई सरकार का शपथ ग्रहण, 14 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे डीके शिव कुमार, परमेश्वर बन रहे हैं उप मुख्यमंत्री।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां ग्लास हाउस लोक भवन में अब से थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीके शिव कुमार शपथ लेंगे।
1: नानो सन्मान्य राज्यपाल रिगे, सन्मान्य डीके शिव कुमार साहेबरु, बुके कोट्टु स्वागत बेकागी केळ्कोळ्ता इदीनि। ಮನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಮನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ಕೆ।
0: तो ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ जो 64 वर्ष के हैं, नए मुख्यमंत्री होंगे लगभग दो वर्ष के समय के लिए, और राज्यपाल को उन्होंने एक बुके दिया। 64 वर्ष उनकी आयु है। अब तक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे डीके शिवकुमार, 34वें मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर हैं, प्रियांक खड़गे का भी शपथ ग्रहण अब से थोड़ी देर में होगा बतौर कैबिनेट मंत्री। 13 कैबिनेट मंत्री होंगे।

0: नाडगीते द स्टेट एंथम प्लीज कीप स्टैंडिंग।
1: तो ये इस समय डीके शिव कुमार, जिनको कांग्रेस पार्टी का चीफ ट्रबल शूटर भी कहा जाता है, डीके शी द रॉक ऑफ कांग्रेस, कोई भी राज्य हो और किसी भी राज्य में कोई भी समस्या हो तो डीके शिव कुमार को ही सब लोग बुलाते हैं कि वही उस समस्या का समाधान लेकर आएंगे। लेकिन उनके लिए अपने आप ही मुख्यमंत्री बनना एक बड़ी चुनौती बन गया था। ढाई ढाई साल के जिस अग्रीमेंट की वो चर्चा करते थे उसमें भी कुछ और समय लगा, लेकिन जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग धर्म गुरु भी यहां मौजूद हैं उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, उनके शपथ ग्रहण समारोह में। मुख्यमंत्री के तौर पर जी परमेश्वर ये उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और उसके अलावा सिद्धरमैया के सुपुत्र यतीन्द्र सिद्धरमैया भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और यूटी खादर जो पहले स्पीकर थे असेंबली के वो अब एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इसके बाद अगले दो वर्ष यानी 2028 के चुनाव से पहले डीके शिवकुमार के कंधों पर वो जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए कर्नाटक एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य होगा जीतना, जिसके लिए महत्वपूर्ण और अहम होगा। वैसे अगर आपने स्टेज पर अभी दो मिनट पहले तस्वीरें देखी भी होंगी तो तीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस समय यहां पर मौजूद हैं। वीडी सतीशन है, रेवंत रेड्डी हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्कू है मेरे सहयोगी। सगाई राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सगाई, आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई डीके शिव कुमार के लिए उनके शपथ ग्रहण के लिए, क्योंकि पहले ये था कि होगा नहीं होगा, लेकिन अब हो ही रहा है ये।
2: संजय, 4 घंटे के लोकभवन।
3: हाँ जी बिल्कुल, बहुत साल इंतजार था डीके शिव कुमार की, क्योंकि 223 में उनको बहुत ज्यादा फाइट था सिद्धरामैया के साथ, जहाँ पे उनको कंपटीशन था, जब उन्होंने बोला था वो भी सीएम के रेस में है, मगर उनके बीच एक पैक था जहाँ पे दोनों भी टू एंड हाफ ईयर शेयर करेंगे, मगर अभी 3 साल के बाद डीके शिव कुमार को ये वर प्राप्त हुआ है जहां पे कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनेंगे।
1: अच्छा, इन तस्वीरों को देखें तो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, मतलब सिद्धरमैया भी मंच पर हैं और अब उस शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ रहे हैं नए मुख्यमंत्री। 34वें मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक राज्य के, 8 बार से एमएलए हैं, और ये ऐतिहासिक तस्वीरें अगर आप देखें, सिद्धरमैया जो मुख्यमंत्री थे 33वें मुख्यमंत्री कर्नाटक के, अहिंदा राजनीति के बहुत ही प्रखर वो चेहरा थे, और उनसे अब 34वें मुख्यमंत्री के रूप में अब शपथ ले रहे हैं डीके
2: स्वागत
1: शिव कुमार। उनका जो इलाका है ये चीफ जस्टिस वहां पर, और कर्नाटक हाईकोर्ट, और तस्वीरों में आप वीडी सतीशन, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी मौजूद है यहाँ पर।
2: विरोध पक्ष नायक राज्यसभा कूड़ा स्वागत कोर अंत विनती।
1: मल्लिकार्जुन खड़गे नेता कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं। सगैराज, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बीच में तो कुछ लोगों ने उनका भी नाम चला दिया था, हालांकि उनके सुपुत्र वो भी कैबिनेट मंत्री इस बार बन रहे हैं, 9वें नंबर पे उनका भी नाम है प्रियांक खड़गे का। और राहुल गांधी बड़े तपाक से गले मिले डीके शिव कुमार और राहुल गांधी। कहा यह गया कि राहुल गांधी से दोनों ही अलग अलग मिलने भी आए, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, और वीडी सतीशन केरला के मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सगाई ये एक शक्ति प्रदर्शन है
2: श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू।
1: सगाई राज,
3: बिल्कुल स्टेज के ऊपर पूरे उनका कांग्रेस का अलायंस पार्टीज भी मौजूद है, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद है और जो भी लीडर्स ऑपोजिशन में कांग्रेस का वो भी यहाँ पे स्टेज के ऊपर मौजूद है। शायद जैसे आपने कहा था ये कि बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि आपको पूरे साउथ इंडिया में देखना चाहिए अभी बदलाव हुआ है, क्योंकि केरला में हो, तमिलनाडु में हो, जहाँ पे तमिलनाडु में कांग्रेस का अलायंस पार्टनरशिप है, केरला में कांग्रेस का पार्टी है और हमारा सूत्रों के अनुसार आंध्र में भी कांग्रेस एक बहुत बड़े नेता के साथ बातचीत भी कर रही है और यहाँ पे कर्नाटक में भी सियासत को बदला दिया है। यहाँ पे पता चल रहा है कि बहुत बड़ा प्लान है कांग्रेस का 2029 लोकसभा इलेक्शन के लिए, शायद उनका एक रोड सेट कर रहे हैं, शायद इसी वजह से ये पूरा बदलाव कर्नाटक और पूरे दूसरे स्टेट्स में भी दिखाई दे रहा है।
1: जी अच्छा, जिन मुख्यमंत्रियों की भी यहाँ बात की जाए, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश से आए हों या रेवंत रेड्डी आए हों तेलंगाना से, वीडी सतीशन केरला से, कभी भी कांग्रेस में किसी को कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो डीके शिवकुमार हमेशा एक शिला की तरह, रॉक की तरह वहां पहुंच जाते थे और समस्या का समाधान करते थे। सगई
3: जी बिल्कुल, स्पेशली तेलंगाना इलेक्शन में आपको देखना चाहिए कि डीके शिवकुमार और रेवंत रेड्डी एक साथ काम कर रहे थे और रेवंत रेड्डी हमेशा जब इलेक्शन से पहले हमेशा बहुत ज्यादा कर्नाटक में थे, वो उनका बातचीत डीके शिवकुमार के साथ था और जब भारत जोड़ो का यात्रा शुरू हुआ था साउथ इंडिया में उसी टाइम पे भी रेवंत रेड्डी और डीके शिवकुमार एक साथ दिखाई दे रहे थे। और जब आप एमएलए का बात कर रहे हो, राज्यसभा इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन
1: शपथ ग्रहण
3: तकलीफ होता है वो तुरंत डीके शिवकुमार को।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में भीषण आग, 21 मरने वालों में 18 विदेशी नागरिक, 23 घायल। एलजी ने शाम 5 बजे बुलाई बैठक। आज तक से बातचीत में दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ का खुलासा, इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं, 6 कमरों की जगह बने थे 25 कमरे, 10 पुलिसकर्मी भी जख्मी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में खलबली,

किया गया भंग। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देसी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए भी कई नई स्कीमें।

0: भयंकर आग, 21 जिंदगियां खाक। जब भड़की ज्वाला छत से कूदे लोग, बेसमेंट में घुटता दम, भड़की आग फैला धुआं भीषण, मच गई चीख पुकार, बचाने दौड़े लोग भी लाचार। एक ही एग्जिट, एक ही एंट्री, भयंकर लापरवाही। 6 कमरों की इजाजत, होटल में बनाए 18 कमरे। न फायर की एनओसी, न सुरक्षा के इंतजाम। ये सिस्टम के हाथों नरसंहार नहीं तो क्या है? होटल मालिक कसूरवार तो एमसीडी के अफसर क्यों नहीं जिम्मेवार? अगर हर टेबल का कमीशन तय है तो अफसर सजा के क्यों नहीं हकता? पूछता है आज तक, देश की राजधानी में बेकसूरों की मौत कब तक?
1: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश की राजधानी दिल्ली, मालवीय नगर, पॉश इलाकों में से एक, उस जगह पर मौजूद हैं सतीश उपाध्याय, बीजेपी के बड़े नेता हैं, यहां से विधायक हैं, सोमनाथ भारती पूर्व विधायक हैं, उस जगह पर जहां मैक्स जैसा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए भारत से नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, इस उम्मीद में कि हमें सेहत मिलेगी, हम स्वस्थ होकर यहां से अपने अपने देश लौटेंगे। लेकिन जब वो यहां पर इलाज कराने के लिए आए, अभी किस लोगों की जान गई, उनमें से 18 विदेशी नागरिक हैं, वो बच नहीं सके। क्या वो भारत सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? हम क्या बताएंगे, कैसे मर गए हो? एक होटल जिससे 6 कमरों की परमिशन थी, जो B&B था, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट था, वहां पर 25 कमरे बन गए। लेकिन अब इसी बीच में इसी घटना का, इसी हादसे का एक हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक महिला जद्दोजहद करते हुए इस वीडियो में दिखाई देगी, वो जिंदगी की तलाश में किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश में आपको दिखाई देगी। इसी तरह कोशिश करते करते करते करते 21 लोग मर गए, 21 लोगों की जान चले गए, 15 ICU में, वेंटिलेटर पे अभी कई लोग हैं जो जिंदगी की उम्मीद में कि क्या पता एक सांस मिल जाए तो बच जाए, और फिर उसके बाद देखेंगे दूसरी परेशानियां। देश की राजधानी दिल्ली में इतने इंजन काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब फेल। दिल्ली को बदलने की तस्वीर के बीच में ये तस्वीर आप देखिए कि तमाम दावे एक तरफ और ये तस्वीर एक तरफ। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े करती है, सिर्फ और सिर्फ सवालों के साथ। वो सिस्टम जिसको बदलने के इतने तरह के दावे, लेकिन इतने दावे थे, लेकिन ये तस्वीर भ्रष्टाचार को बयां करती है, पूरे के पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। कोई NOC नहीं, जब NOC नहीं था तो होटल कैसे चल रहा था? हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, और मेरे दूसरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं, शिवानी भी हमारे साथ है। लेकिन अरविंद, सुबह आग लगी थी और इतने घंटों के बाद क्या कार्रवाई की है अब तक दिल्ली सरकार ने और सिस्टम ने?
2: देखिए, कार्रवाई लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो मालिक है, इसका नाम लोकेश बजाज है, और जहां इस वक्त हम आप खड़े हैं, यहीं आसपास इसके 3 होटल है, लेकिन सबके बीच जो आज तक के पास 3 बड़ी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर लगी है, वो हम दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे के वक्त मंजर आखिर रहा कैसा होगा। चीख पुकार मची हुई है, और जिस होटल, जिस खूनी होटल की तस्वीर हमने पहले दिखाई थी, जिसको एक्सपोज किया था ऑन द स्पॉट हमने, उस खूनी होटल से जब आग लगी थी तो खिड़की से तोड़कर लोग लटके हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। महिला चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, सीढ़ियों से निकल रहे हैं। तो ये आज तक पर उस वक्त की तस्वीर है जब आग लगी थी, और आग लगने के कुछ मिनटों के बाद की ये तस्वीर है जो एक चश्मदीद ने बनाकर हमें भेजी है, जब बनाई थी उसके बाद भेजी है। तो 3 तस्वीर लगी है, और इन 3 तस्वीरों के जरिए हम इस पूरे सिस्टम को, राजीव, एक्सपोज कर रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें, जो जिस होटल में NOC नहीं था, और क्यों NOC नहीं था, क्योंकि जब आग लगी तो इस तरह का मंजर था, खिड़की पर महिला लटकी हुई है, सीढ़ी से निकल रही है, खिड़की को तोड़ा गया है। दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो महिला कूदी है, उसको लोग लेकर जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में महिला चीख रही है, चिल्ला रही है। तो ये तीन तस्वीरें हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम कितना नकारा
1: था। तस्वीर सवाल खड़े करती है बिल्कुल अरविंद, अब अधिकारियों को पता चल गया कि यहाँ पर एनओसी नहीं है। आप इनको सारी जानकारी है, घटना के बाद इनको सब पता चल जाता है, लेकिन घटना से पहले इनको कुछ पता नहीं होता। एक्चुअल रियलिटी यह है कि घटना से पहले भी इनको सब पता होता है, लेकिन सब अपना मुंह बंद रखते हैं और उसके पीछे भिन्न भिन्न कारण होते हैं। हिमांशु दीक्षित भी मेरे सहयोगी मेरे साथ है। हिमांशु, खिड़की से लटकती हुई जिंदगियां, जिंदगी की आस में इस प्रशासन ने मजबूर कर दिया उनको लटकने के लिए। कुछ लोग तो कूद गए, किसी की टांगे टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी की जिंदगी चले गई, इतना मजबूरी सिस्टम ने कर दिया।
3: मजबूर सिस्टम ने कर दिया है और हालात किस तरह के हो गए, मैं जरा एक तो आपको ये बता रहा हूँ कि अभी क्या यहाँ पर काम चल रहा है, सारे वायरिंग हटाई जा रही है क्योंकि तार यहाँ पर पूरी तरह से जल चुके हैं। लेकिन एक तस्वीर आपने बताई राजीव, और हम आज तक पे लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे महिला खिड़की से कूदते हुए कोशिश कर रही है और क्या हालात वहां पर हो गए। लेकिन अब मैं एक रियलिटी आपको दिखाना चाहता हूं जो किसी चैनल ने दिखाई कुछ नहीं दिखाया। मैं आपको उस जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज थोड़ी सी जगह दीजिए। मैं आपको उस जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर हम आपको बताएंगे कि हालात क्या है। अब आप देखिए, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं ये वही मालवीय नगर की एक छोटी सी बस्ती है, कॉलोनी, और ठीक मेरे पीछे आपने देखा वो जो होटल जो अवैध तरीके से जिसको बनाया गया वो है। अब उसके बाद एक छोटी सी गली मैं यहां पर इसलिए ले जाना चाह रहा हूं क्योंकि ये हकीकत है दिल्ली की। ये तारों का जाल देखिए, अब एक छोटी गली में इस तरह आप देखिए जगह पर आग लगी है, उस जगह से मुश्किल 20 या 30 मीटर। अब इधर देखिए, प्लीज इधर देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब आप एक ये तस्वीर देखिए, ये उस छोटी सी बस्ती का हाल है, छोटी सी जो मालवीय पौशला का कहा जाता है। वीआईपी अमीरों की बात तो सब करते हैं, लेकिन जहां पर कुछ लोग रहते हैं। आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए, यहां पर कितनी मंजिल का आपको यहां पर घर दिखाई दे रहा है, ये मेरी हाइट आप देखिए और ये वायर देखिए, ये देखिए यहां पर ये तार ऐसे लटके हुए हैं जो मेरी हाइट से भी नीचे आ रहे हैं। दूसरी चीज, थोड़ा और आप आगे आके देखेंगे, ये देखिए यहां पर ये पहली मंजिल है, ये पहली मंजिल है। मैं एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है, ये पहली मंजिल है, यहां पर अगर कोई भी बच्चा बड़ा बुजुर्ग पूरा तार यहां पर खुले पड़े हैं, ये छोटी छोटी गलियां। अच्छा ये बताइए, आप यहीं पे रहते हैं, आपको कभी डर नहीं लगता इस तरह के तारों के मकर जाल से?
4: बचपन गुजार दिया यहां पे, क्या करें
3: बचपन गुजार, लेकिन अभी आग लगी।
4: हाँ लगी है, ये तो
3: अभी आग लगी, आपने एक तस्वीर ये देख ली। अब और छोटी सी आप देखिए, यहां पर कितना स्पेस है, मैं चाह रहा हूं ये सारी तस्वीरें आपको देखना। ये सीवर का पानी यहां पर निकल रहा है, ये सीवर का पानी यहां पर निकल रहा है। राजीव आप भी थोड़ी देर पहले यहां से निकल के आए हैं, ये छोटी सी गली अब यहां पर देख ली। मैं ये हकीकत दिखाना चाह रहा हूं, ये हकीकत बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी, आपने दिल्ली में देखा होगा। ये देखिए गटर का पानी, सीवेज का पानी, ये आप देखिए, और ये फिर से वही
1: हिमांशु,
3: इतना हिमांशु
1: मैं आपको बता दूं, हिमांशु
3: आ रहा है,
1: मैंने
3: और कितना
1: मतलब
3: स्पेस है?
1: एक साल
3: मुश्किल
1: पहले
3: मुश्किल आप देखिए, मुश्किल
1: जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे, बीजेपी के नेता भी कई जगहों पर मेरे साथ थे, मैं उनके साथ था, उनके कैंपेनिंग को कवर करने के लिए साथ में जा रहा था, तो ये बिजली के तारे वो मुझे दिखा रहे थे कि ये देखिए आम आदमी पार्टी के समय में तारे हैं, इन तारों को हम हटा देंगे, लेकिन क्या हटी? बाकी दूसरी समस्याएं तो हैं, जस की तस है, लेकिन यहाँ तो 21 लोगों की जिंदगी चली गई है। शिवानी, कौन किसको दोषी ठहराया जाए, किसको कहा जाए कि ये जिम्मेदार है, ये लापरवाही, यहाँ तो हर विभाग की लापरवाही है, किसी एक की नहीं।
5: देखिए राजीव, लापरवाही हर विभाग की है, और जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं यहां पर वो होटल है जो जला है, जिसमें 21 लोगों की जाने गई हैं, और लोकेश बजाज इस होटल का मालिक है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। और उसी लोकेश बजाज के इस विसिनिटी में तीन होटल हैं। दूसरा होटल जहां मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं, जिसका नाम है लेमन ग्रीन, ये वही होटल है, उसी मालिक का होटल है जिसका ये होटल था जो जला है, फ्लोरिश इन, फ्लोरिश स्टे और लेमन ग्रीन इन। किसी भी होटल के पास एनओसी नहीं है राजीव। यहां आप देखिए, इस होटल को बंद कर दिया क्योंकि जब कार्रवाई हुई आनंद फानंद में, यहां पर तमाम होटल्स हैं जिनके पास एनओसी नहीं है।
1: और शिवानी, अगर लोकेश बजाज जो कि मालिक है, अगर उनके बारे में कोई भी अपडेट आपके पास है, थोड़ा उनका इतिहास, उनका व्यापारिक इतिहास, कहां के रहने वाले, अगर आपको मालूम है प्लीज तो दर्शकों को जरूर बताएं।
5: देखिए राजीव, लोकेश बजाज होटलियर है, वो यहाँ पर काफी समय से इन प्रॉपर्टीज के मालिक हैं और यहाँ पर होटल चला रहे हैं। जो सबसे नई प्रॉपर्टी थी, वो जहाँ पर आग लगी है वो सबसे नई प्रॉपर्टी थी, क्योंकि 2 से 3 साल पहले इसे होटल बनाया गया था। इससे पहले यहाँ पर तमाम दुकानें थी, फोटोकॉपी मशीन की दुकानें थी। जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हमें पता चला। एक और तस्वीर जरूर दिखाऊंगी, ये जो लेमन ग्रीन इन है, इसके बगल में आप ये देखिए, मेरे कैमरा पर्सन प्रेम आपको दिखाएंगे, प्रेमचंद, किस तरह से ये एक पतली सी गली है, एक आउटलेट है होटल का, इसी होटल का, जिसमें बेसमेंट भी है। 25 कमरे यहाँ पर भी चलाए जा रहे थे और 6 कमरों का इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था। तो 60 से 70 लोग उस होटल में मौजूद थे जहां पर आग लगी, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए छत पर जाना पड़ा, खिड़कियों से कूदना पड़ा, उनके दम घुटे।
1: शिवानी बिल्कुल, अब आप देखिए, ये भी जानकारी मिल रही है कि बहुत सारी BNV, सो कॉल्ड BNV के नाम पर होटल चलाने वाले अपने दुकानें बंद करके इधर उधर निकल गए कि कहीं हमारे यहाँ ये पुलिस वाले अपना पहुंचाएं। हमारे साथ अरविंद भी, अरविंद के पास कुछ नई तस्वीर, अरविंद अभी अभी कौन सी नई तस्वीर है, प्लीज दिखाएं, बताएं।
2: हाँ, बिल्कुल, देखिए राजीव, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो 3 तस्वीरें आई हैं हादसे के बाद की, उससे काफी कुछ समझा जा सकता है और ये भी समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही है ये। पहली तस्वीर जो आज तक को लगी हादसे के ठीक बाद की है, जब जो खिड़की है उसको तोड़ा गया है, उस पर लोग लटके हुए हैं, एक महिला सीढ़ी से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हादसे के ठीक बाद की है कि किस तरह से लोग चीख पुकार रहे थे, और दूसरी तस्वीर में महिला चीख रही है, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। शुरुआती जो मदद थी स्थानीय लोगों ने की, बाद में फायर डिपार्टमेंट की टीम और लोकल पुलिस की टीम आई है। लेकिन ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो जो खिड़की है, जो पैक्ड है, उसको तोड़ा गया है, उससे लटकते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में एक महिला खिड़की से कूद गई है, स्थानीय लोग उसे उठाकर लेकर जा रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में चीखने पुकारने की आवाज आ रही है। ये तीनों तस्वीरें आज तक
1: अरविंद दी है, जो हर तस्वीर में बेबस जिंदगी दिखाई दे रहे हैं। अरविंद आप जो है दिल्ली में इससे पहले जो अग्निकांड हुए हैं, आपने उन अग्निकांड की तस्वीरों को भी दर्शकों को दिखाया है, इससे पहले जो सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई आग लगने की वजह से, वो भी आपने दिखाई है, लेकिन ये सिस्टम तो जगह ही नहीं। अगर मान लीजिए करोल बाग में जो हुआ था, जो आग वहां लगी थी, उसके बाद से सिस्टम ने क्या बदला अपने आप में? कुछ भी नहीं।
2: अरविंद जगता है ना, अभी इस जो होटल में FIR दर्ज हुई है गैर इरादतन हत्या की, उसमें आरोपी जो लोकेश है, जो आरोपी, राजीव मैं ही बता रहा था, सिस्टम जगता है, गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज होगी, लोकेश बजाज गिरफ्तार होगा, अदालत से उसको कुछ दिन बाद जमानत मिल जाएगी, कुछ इंजीनियर सस्पेंड कर दिए जाएंगे, उसके बाद सिस्टम फिर से गहरी नींद में सो जाएगा, फिर इस तरह के कुछ हादसे होंगे, फिर सिस्टम जगेगा। जरूरी यह है कि वो तमाम लोग जिनको फायर NOC देने की जिम्मेदारी है, वो MCD का अधिकारी जो इस तरह की तहकीकात जांच करता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उन सब पर FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तब जाकर जो अधिकारी है उनकी
1: अरविंद अरविंद अरविंद हमें हमें हमें इस तो नहीं, हमें इस पर बात करने की आवश्यकता है। अरविंद मुझ पर अरविंद, क्या ये फैक्ट है? सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन वो जो सिस्टम, कमाई का सिस्टम है, वो कमाई का सिस्टम कोई बदलना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को कमाई करनी है। क्या
2: बिल्कुल, देखिए, और इसमें लोग भी दोषी हैं, सिर्फ सिस्टम को नहीं, ये आखिर होटल कुछ लोग ही बनाते हैं। यहाँ आसपास कई होटल हैं, मैं आपको कई होटल की हम लोग वहां पर जाकर स्पेशल ड्राइव भी चला रहे हैं, लगभग यहाँ पर जितने होटल हैं किसी को फायर की NOC नहीं है। ये खुलासा भी हमने सबसे पहले एक चश्मदीद के जरिए आज तक पर किया, उसके बाद हमारे से हिमांशु, हमारे सहयोगी यहाँ पर, हिमांशु यहाँ आइए, अभी अभी लोकेश बजाज जिस होटल में आग लगी उसके दूसरे होटल पर हिमांशु होकर आए, उस होटल में क्या फायर की NOC है? दूसरे होटल में आप गए थे लोकेश?
6: NOC कैसे हो सकती है? NOC मिलेगी जब आपके पास 6 कमरे होंगे, 6 कमरे होंगे, बेसमेंट नहीं होगा, रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जितने भी बने हुए हैं, आप सोचिए 20 से कम कमरे नहीं है, बेसमेंट प्लस 5 फ्लोर बने हुए हैं, तो NOC आपको मिली नहीं सकती, ना आपको फायर की NOC मिलेगी।
2: और आपको बताऊं, बड़ा खुलासा ये है, और आज तक तीनों लोकेश बजाज के तीनों होटल पर गया है, आसपास है, तीनों होटल गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। एक में आग लग गई, 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 18 विदेशी नागरिक हैं। लोकेश बजाज कहाँ है, कहाँ फरार चल रहा है,
7: उसकी भी जांच होगी, लेकिन आज तक पूरी ग्राउंड से तहकीकात कर रहा है उस होटल की, पूरी हमने तहकीकात की खुलासा किया। उस खुलासे पर जो डिप्टी फायर चीफ है उन्होंने मोहर लगा दी कि एनओसी नहीं है, एनओसी मिल भी नहीं सकती। दूसरा खुलासा हमने कि आसपास जितने होटल है उसको एनओसी नहीं मिले, उस पर भी मोहर लगा दी। तो कहाँ है सिस्टम, कहाँ है एमसीडी के अधिकारी, कहाँ है दिल्ली सरकार के तमाम वो सिस्टम, क्यों नहीं इन इलाकों में पहले से ड्राइव चलाया गया, चेकिंग किया गया। दरअसल सभी को
8: लेकिन पैसा चाहिए, लेकिन अरविंद और पैसे कमाने की चक्कर में ये कितना आसान है सिस्टम के लिए या सरकार के लिए, अब सब लाक्षाग्रह एक तरह से बना हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल है अरविंद, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे दूसरे सहयोगी जो जुड़े थे सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ है, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं राजीव ढोंडियाल, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
12: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: सीबीएसई 12वीं परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल और सियासत का सामना कर रहा है।
1: सरकार को ये बता रहे हैं सीबीएसई के दफ्तर के बाहर बैठ के आंखों को बंद करके जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
0: एक तरफ छात्रों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का हवाला देता विपक्ष लगातार हमलावर है। सीबीएसई के बहाने उनके निशाने पर सरकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं।
2: And how many questions normally will someone apply for?
3: I guess abhi jo problem aa rahi hai, they can apply for all the questions.
2: So how many total questions?
3: 30-35 around right. Questions hote hain.
2: So huge amount of money.
3: Huge amount of money is involved. If evaluation is not happening properly, why I have to give money for re-evaluation?
0: CBSE 12वीं के जिन छात्रों के रिजल्ट इस बार आए हैं, उनकी कई शिकायतें रही हैं। दरअसल मूल्यांकन के लिए कॉपी की स्कैनिंग सही से नहीं की गई। कई मामलों में कॉपी अदला बदली की भी शिकायत है। कुछ छात्रों का आरोप है कि उनके उत्तर सही थे फिर भी नंबर कम आए। और बड़ी शिकायत डिजिटल मार्किंग के लिए जिस कंपनी COEMPT को टेंडर दिया गया उस पर है। तमाम सवालों के बीच आज CBSE ने अपना पोर्टल शुरू कर दिया। दो बार तारीख टाले जाने के बाद आखिरकार पोर्टल की शुरुआत हो गई। छात्र 6 जून तक शिकायत या आवेदन कर सकते हैं। CBSE ने बताया कि गायब पेज, गायब सप्लीमेंट्री शीट या मैप ग्राफिक्स, ब्लर पेज या गलत उत्तर पुस्तिका को लेकर शिकायत की जा सकती है। मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने संसद भवन एनेक्सी में मीटिंग की। इसमें 12वीं की परीक्षा में OSM तकनीक का इस्तेमाल और उससे बड़ी मुश्किलों को लेकर समीक्षा की गई। पैनल की मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सचिव और CBSE के चेयरमैन भी जवाब देने पहुंचे। छात्रों के कुछ प्रतिनिधि भी बैठक में बुलाए गए थे। खबर तो ये भी है कि ऑनलाइन मार्किंग प्रक्रिया पर उठे सवालों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने COEMPT कंपनी को दिए ठेके पर रिपोर्ट तलब की। साथ ही कंपनी की तकनीकी पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। छात्रों की नाराजगी, सियासत और सुधार की पहल के बीच ये मामला अदालत में पहुंच गया। गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में NSUI ने जनहित याचिका दाखिल की है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।

0: कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने डीके शिवकुमार, जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ, राहुल और खड़गे मौजूद। दिल्ली में मालवीय नगर के एक होटल में भीषण अग्निकांड, मरने वाले 21 लोगों में कई विदेशी, 23 घायल, एलजी ने शाम 5 बजे बुलाई मीटिंग। आज तक से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ का खुलासा, इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं, 6 कमरों की बनी थी लेकिन 25 कमरे बने थे और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में खलबली, 58 बागी विधायकों ने नेता विपक्ष के लिए ऋतव्रत बैनर्जी के समर्थन की चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी, पार्टी के सभी कमेटी को भी किया गया भंग। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देसी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड का ऐलान, दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए भी नई स्कीम बनाई गई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में जगह जगह मौजूद लाक्षागृहों को लेकर है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे ही एक लाक्षागृह में आज 21 जिंदा लोगों की आग हादसे में मौत हो गई। बेहद अफसोसजनक है कि मरने वालों में 18 विदेशी मेहमान थे जो किसी न किसी कारण से दिल्ली में आए हुए थे। नाइजीरिया, मोजम्बिक, बांग्लादेश, लाइबेरिया जैसे तमाम अफ्रीकी देशों से लेकर आसपास के मुल्कों से आए मेहमान दिल्ली में इसलिए जलकर मर गए क्योंकि देश की राजधानी में लोगों के ठहरने के लिए जो इंतजाम है वो लाक्षागृह से कम नहीं है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हौज रानी गांव के अंदर जो हादसा हुआ है उसमें चश्मदीदों और पीड़ितों का आरोप है कि 5 मंजिला इमारत में अवैध रूप से बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था। 2 साल पहले 6 कमरे के गेस्ट हाउस का लाइसेंस दिया गया था, 2 दर्जन कमरों में मेहमान ठहरे हुए थे। आग लगी तो आने जाने का एक ही रास्ता था, पुलिस को फोन करने और दमकल के पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लग गया और तब तक कुछ लोग दम घुटकर मर चुके थे, कुछ जल

0: अब होटल मालिक मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस की अंदरूनी जांच शुरू हो चुकी है। दमकल विभाग के लाइसेंस की जांच भी हो रही है। लेकिन सवाल जांच और जिम्मेदारी को सजा देने भर का नहीं है। एक तरफ विदेशी मंचों पर हमारे प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब दिल्ली की नाकाम हुकूमत और सिस्टम ने इतने विदेशी माल डाले कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप भर में सरकारी नाकामी, अनदेखी और भ्रष्टाचार की बदनामी फैला कर रख दी है। तो असली सवाल तब्दीली का है, जिस दिल्ली में आज पार्षद से प्रधानमंत्री तक न जाने बदलाव और विकास के कितने इंजनों के दावे किए जाते हैं, वहां क्या बदला? 2 साल पहले 11 मरे थे, उससे 2 साल पहले 27 लोग मरे थे, लेकिन आज फिर 21 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो सवाल यही है कि क्या हमारे देश में सिस्टम ऐसे ही चलता है और क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या तब्दीली, सुशासन, तरक्की, सुरक्षा, ये तमाम बातें सिर्फ जुमला बनकर रह गई है? दंगल में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा ये अग्निकांड पर रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: भीषण अग्निकांड, घंटों तक रिहायशी इमारत सुलगती रही जिसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत रजिस्टर्ड होटल चलता था, वो पूरा फूक गया। 21 लोगों की जान चली गई, ज्यादातर विदेशी। इलाज कराने आने वाले ये लोग थे। आग का धुआं झेलने वाले 11 पुलिसकर्मी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। 7 से 8 घायल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे।
2: और से थर्ड फ्लोर से 3 नाइजीरियन, 4 नाइजीरियन कूदे थे, जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
3: स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। 8 बजे से फोन करना चालू किया, यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की।
4: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी। ये बात रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
5: हम बाहर निकले, नीचे देखा तो अंदर से आवाजें आ रही थी रोने की और हेल्प है।
6: पी का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए।
7: उसमें साउथ अफ्रीकन दिखे, सोमालिया के लोग दिखे, ईरान के लोग दिखे। तो
1: ज्यादातर रेस्क्यू आसपास के फौजरानी गांव के लोगों ने किया। पुलिस एम्बुलेंस से मरीजों को पास के ही मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।
0: तो 21 में से 18 विदेशी नागरिक है और इसी के वजह से यह मामला और भी संगीन हो जाता है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर इलाज करवाने के लिए जो विदेशी नागरिक दिल्ली में आए हुए थे वो वहां पर अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि दिल्ली के प्रशासन ने ठीक तरीके से इंतजाम नहीं रखे थे। गैर कानूनी तरीके से वहां पर एक गेस्ट हाउस चल रहा था और उस पर दिल्ली सरकार का कोई भी ध्यान नहीं था। चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि क्या सिस्टम कभी ना कभी बदलेगा या बदलाव की बातें सिर्फ चुनाव में होती रहे। हमारे साथ राजीव बब्बर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हरिशंकर गुप्ता है, कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता पूर्व सीनियर कंसल्टेंट है NDIM के, ये न्यू दिल्ली की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। उनसे भी हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इस पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिसिस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी अनमोल इस चर्चा में शामिल होंगे। पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की थी और इसी वादे के साथ बीजेपी वहां पर सरकार में आई थी कि कुछ बदलाव किया जाएगा। दोनों से सवाल पूछा जाएगा क्योंकि यहां पर लोगों की जान लगातार जारी। अनमोल पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से भी। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, दिल्ली में आग हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि मामला बड़ा दिलचस्प निकल रहा है। बिल्डिंग किसी और के नाम पर है और जो लाइसेंस इशू किया गया था BNB के तहत, दिल्ली सरकार से उनको लाइसेंस मिला था, वो कोई श्रीनिवास श्रीनारायण साहा है और जय मिश्रा है, उनके नाम पर यह लाइसेंस दिया गया था। अब कार्रवाई कब होगी? दूसरा सवाल, क्या पुलिस नगर निगम की मिलीभगत से अवैध गेस्ट हाउस चल रहा था? क्योंकि जो डिप्टी फायर ऑफिसर है वो आज तक से बात करते हुए कह चुके हैं कि वहां सिर्फ उसी गेस्ट हाउस में नहीं, आसपास के किसी भी इमारत को फायर सेफ्टी का NOC नहीं मिला हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों की मौत से दुनिया में भारत

0: की बदनामी हुई है क्योंकि अब विदेशी नागरिक मरे हैं, अफ्रीकी देशों से नागरिक मरे हैं, लाइबेरिया भी उसमें शामिल है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन भी गया था। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जरा संवाददाताओं के पास चलते हैं क्योंकि सुबह से लगातार आज तक पर इस हादसे का हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं और जो कार्रवाई की हम बात कर रहे थे, जो मकान मालिक है उनके घर वहां पर पुलिस पहुंची हुई है, कोई बजाज है जो मकान मालिक है, सॉरी लोकेश मिश्रा के नाम से, लोकेश बजाज इनके नाम से यह मकान था, वहां पर उनके घर में दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। दिल्ली आग हादसे में मकान मालिक के घर पहुंची हुई है। बीएनबी का जो लाइसेंस दिया गया था श्रीनारायण साह और जय मिश्रा के नाम से, इस बीएनबी का लाइसेंस दिया गया था अरविंद ओझा, दिल्ली पुलिस मकान मालिक के घर पहुंची है लेकिन लाइसेंस जो है वो श्रीनारायण साह और जय मिश्रा के नाम से दिया गया था। अरविंद, क्या जानकारी इसके बारे में, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, मकान मालिक की जिम्मेदारी या जिनके नाम पर लाइसेंस था उनकी भी जिम्मेदारी है?
1: देखिए साहिल, जो आज तक को दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी ने बताया कि जो होटल जिसमें आग लगी 21 लोगों की मौत हुई उसके मालिक का नाम लोकेश बजाज है, आलिशान कोठी है, ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D140। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलिशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है, उसके कई होटल हैं। और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है, जो जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है, जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। सुबह भी यहां पर टीम आई थी, क्या दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहां पर आई थी?
2: हाँ आई थी सुबह।
1: लोकेश बजाज यही रहता है
2: सुनने में आया, हम तो वैसे जानते नहीं है उसको पहले से, तो लेकिन अभी बताया कि यहाँ रहता है।
1: यहाँ रहता है, तो ये लोकेश बजाज की कोठी है जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी। और लोकेश बजाज फिलहाल फरार चल रहा है, ये देखिए आलिशान कोठी है और कई होटल है इसके, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इसने होटल खड़ा किया और उसकी फायर की एनओसी नहीं ली और नतीजा यह हुआ कि जब आग लगी तो आग में झुलसने से 21 लोगों की मौत हो गई जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। तो हम वो
0: अरविंद दो जानकारी और मुझे चाहिए,
1: इंडिया टुडे की टीम पहुंची
0: लोकेश बजाज की इस मकान के जिसमें ये गेस्ट हाउस बनाया गया था उसके मालिक है, लेकिन उसके साथ साथ जो दो दो और लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे जिनका मैंने जिक्र किया है, श्रीनारायण साहा और जय मिश्रा, जिनके नाम से लाइसेंस इश्यू किया गया था ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का दिल्ली सरकार की तरफ से, उनकी क्या जानकारी है? और जो FIR दर्ज किया गया है क्या उसमें गैर इरादतन मामला का मामला दर्ज है या कोई और मामला दर्ज किया गया है, क्या FIR दर्ज किया गया है?
1: देखिए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर आई थी वेरिफिकेशन करके चली गई, सुबह से एक टीम और आई यहां पर आई थी। और जैसा आपने पूछा, जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी उनका कहना है कि होटल का जो एक मालिक है उसका नाम लोकेश बजाज है, फिलहाल उसी पर दिल्ली पुलिस का फोकस है, जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने आज तक को बताया, और उसी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार रेड चली। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस होटल के तीन पार्टनर है, लेकिन जहां जिस होटल में आग लगी उसके आसपास दो और होटल है जहां पर आज तक की टीम पहुंची, रियलिटी चेक किया और उन होटलों को भी फायर की एनओसी नहीं है, जबकि इन सबके बीच वो जिस पर सबसे बड़ा आरोप है 21 मौतों का वो लोकेश बजाज, जरा ये कोठी देखिए और इसी कोठी में किसी फ्लोर पर लोकेश बजाज रहता है, जब से आग लगी है वो यहां से फरार चल रहा है, उसको गिरफ्तार करने के लिए मल्टीपल टीमें जो दिल्ली पुलिस की वो लगातार रेड कर रही हैं, लेकिन लोकेश बजाज कहां है? क्या होटल में जब आग लगी लोकेश बजाज वहां पर पहुंचा लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि होटल तो इस तरह का बनाया था कि एग्जिट एंट्री गेट वो बिल्कुल नहीं था वहां पर, और इस और एकदम पैक था, लेआउट होटल का ऐसा था, खुद जो फायर चीफ है उन्होंने बताया कि होटल इस तरह का बना हुआ था कि अगर उसमें कोई आग लगती तो वो आग बहुत आसानी से फैलती, विकराल रूप अख्तियार करती, और हुआ भी यही, जब आग लगी एग्जिट एंट्री गेट एक था। आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं साहिल, अब से कुछ देर पहले हमने भेजी है, जब होटल में आग लगी तो खिड़कियों से लोग कूद रहे थे, जो चार फ्लोर था, नीचे बेसमेंट था, खिड़की से लोग कूद रहे थे, महिलाएं चीख रही थी, पुकार रही थी जान बचाने के लिए। और लोकेश बजाज कहां था? क्या लोकेश बजाज वहां पर गया आग बुझाने के लिए? अभी जो यहां का सर्वेंट था उससे मेरी बात हुई, किसी ने गेट खोलने की बात करने की हमने कोशिश की, कोई बात नहीं कर रहा है। लोकल पुलिस यहां पर आई थी, लेकिन लोकेश बजाज को फिलहाल दिल्ली पुलिस तलाश रही है। उस वो जब गिरफ्त में आएगा तब आगे की पूछताछ होगी। लेकिन हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आज तक, चूंकि हम सुबह से ही आज तक की अलग अलग टीमें पल पल
0: बड़ी बात एक है, एक पुलिस अगर लोकेश बजाज को ढूंढ रही है,
1: जिस होटल में,
0: लेकिन लोकेश बजाज सुबह 8:48 पर आग लग जाती है, थोड़ी ही देर में पुलिस को पता चल जाता है कि उस पूरे गेस्ट हाउस को किसी भी तरीके से फायर एनओसी नहीं है, रूल्स वहां पर पूरी तरीके से फ्लाउट किए गए हैं, कोई भी रूल को फॉलो नहीं किया गया है। 6 कमरों की इजाजत दी गई थी, 21 कमरे वहां पर चलाए जा रहे थे, यह भी बात वहां पर साफ हो चुकी है। और पुलिस शाम को 5 बजे अब लोकेश बजाज के घर वहां पर पहुंच रही है। सुबह से वहां पर मामला चल रहा है, दोपहर से आज तक पर लगातार खबर चल रही है कि किस तरीके से किसी भी नियम को ये गेस्ट हाउस या होटल चलाने के लिए फॉलो नहीं किया गया था, किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, लेकिन शाम को 5 बजे जाकर 2 पुलिस के जो कर्मी है वहां पर पहुंचते हैं और उनकी तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद जांच होगी, शायद उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। लेकिन 2 सवाल और मुझे पूछने हैं, क्योंकि आप वहां पर स्पॉट पर थे अरविंद, आपने यह भी कहा कि आसपास के किसी भी होटल में फायर एनओसी नहीं दी गई है, क्या लोगों ने वहां पर कहा कि फायर डिपार्टमेंट के लोग आकर वहां पर इंस्पेक्शन करते हैं या नहीं करते हैं? फायर डिपार्टमेंट जो डिप्टी फायर सर्विस फायर चीफ है दिल्ली के, उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले में कोई भी फायर एनओसी नहीं दी गई है, तो क्या उनके डिपार्टमेंट के तरफ से इस होटल की समीक्षा की गई थी, क्या इसका मुआयना किया गया था, क्या इंस्पेक्शन किया गया था, इसके बारे में कोई जानकारी दी है क्या उन्होंने?
1: देखिए साहिब, सबसे पहले बताऊं, ये सवाल खुद आज तक पर डिप्टी फायर चीफ से मैंने पूछा, क्योंकि सवाल सिर्फ जिस होटल में आग लगी थी उसका था, उस पर उन्होंने कहा कि एनओसी नहीं है। लेकिन चूंकि पहले ही ऑन कैमरा एक सबसे बड़े चश्मदीद ने हमारे कैमरे पर यह बताया था कि आसपास जितने होटल हैं उसके एनओसी नहीं है, हमने इस जो चश्मदीद था उसके जवाब को कन्फ्रंट किया जब डिप्टी फायर चीफ से, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यहां आसपास जितने होटल हैं उनको फायर की एनओसी नहीं है। रियलिटी चेक किया है आज तक ने, लोकेश बजाज का ही 3 होटल है, उन 3 होटल पे आज तक की टीम गई है, तीनों को एनओसी नहीं है। और एनओसी मिलेगी भी कब? जब एग्जिट एंट्री गेट नहीं होगा, परमिशन 2 मंजिल की होगी लेकिन 6 मंजिल बना दिए जाएंगे, तो फिर आखिर फायर की एनओसी कैसे मिलेगी? अब जो आपने सवाल पूछा कि क्या जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो विजिट करती है क्या, क्या जो एमसीडी की टीम है वो विजिट करती है क्या, 20 सालों से तो मैं दिल्ली में देख रहा हूं, जब कुछ हादसा होता है खाना पूर्ति जरूर होती है, लेकिन अधिकारी इस तरह की अवैध इमारतों में क्यों विजिट करते हैं साहिल, ये सभी को मालूम होता है, आम जनता को मालूम होता है। अगर अधिकारी सही नियत से विजिट करें, चालान काटने के लिए, सील करने के लिए, लोगों पर शिकंजा कसने के लिए, तो इस तरह के हादसे होते ही क्यों? लेकिन अधिकारी विजिट क्यों करते
0: हैं? कोई भी इस तरीके का इंस्पेक्शन बदलाव के नजर से होना चाहिए, ना कि उसके पीछे कोई और कारण होगा, तो बार बार इस तरीके के हादसे होते रहेंगे और हर बार इसी तरीके से पुलिसिया एक्शन जरूर होगी, लेकिन पुलिसिया एक्शन के बाद वहां की स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, आप पूरे चीज पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अभी भी और भी चीजों पर हमें ध्यान देना है। लेकिन राजीव बब्बर, जो बात यहां पर अरविंद ओझा कहने की कोशिश कर रहे थे, मैंने थोड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की है। मैं मई 2026 में दिल्ली सरकार के तरफ से यह कहा गया है कि अब थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाएगा, जो इससे पहले दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी किया करते थे। हर 3 साल के बाद दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों पर की यह जिम्मेदारी होती थी कि जहां भी इस तरीके के गेस्ट हाउस चलते हैं उनका मुआयना करना चाहिए, वहां पर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन मई 2026 में थर्ड पार्टी ऑडिट को मंजूरी दी गई है और जो हर 3 साल में जो ऑडिट होता था वह रुक गया है। यह ऐसा क्यों किया गया? क्या कोई
3: नहीं, देखिए ऐसा है, इसको थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। ऑडिट ऑडिट रुका नहीं है, ऑडिट को रोका नहीं गया है, ऑडिट को और इफेक्टिव बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट का ऑर्डर किया गया। दोनों में बहुत फर्क है। ऑडिट रोकने का मतलब है कि आपने कह दिया कि ऑडिट होगा ही नहीं, तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिसमें ऑडिट नहीं होगा। और कुल मिला के देखिये, सबसे पहले तो जो लोगों की मृत्यु हुई है, हमारी सबकी और आपकी भी, मेरी भी, सबकी संवेदना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, हम नमन करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है, ये कोई छोटा हादसा नहीं है, क्योंकि जब जान चली जाए तो उससे ऊपर तो क्या होता है, तो ये दुख की बात है। लेकिन एक चीज ये भी है कि दिल्ली में हमारे साथ एक बड़ी समस्या ये है कि 27 साल की एक बड़ी लेगेसी के लिए हम लड़ रहे हैं, इतने सालों से जो ये सब चल रहा है और जिस तरीके से पेनिट्रेशन हो रहा है, जिस तरीके से बनाया जा रहा है चीजों को, उसमें कहीं ना कहीं जो चूक इतने सालों से होती चली गई है उसका ये परिणाम जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि इस सब पे तुरंत एक्शन किया जाए और तुरंत एक्शन करके जो भी बेस्ट सोल्यूशन इसका है वो निकाला जाए, और पूरी तरीके से पूरे एक्टिविज्म के साथ हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। ये बात सही है क्योंकि अभी सिर्फ हमें दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में आए सिर्फ 10 महीने हुए हैं, 11 महीने हुए हैं, तो ये एक चैलेंजिंग काम है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऑडिट का मतलब है कि हम चीजों को और इफेक्टिव करना चाहते हैं।
0: जिस बीएनबी का, जिस गेस्ट हाउस का हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं, उन्हें 2 साल पहले मंजूरी दी गई थी, यानी 1 साल वो आम आदमी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में बिता चुका है और 1 साल आपकी पार्टी के कार्यकाल के सरकार में वो बिता चुके हैं। दोनों साल में वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जिस तरीके से अरविंद ओझा कह रहे थे, ये लोकेश बजाज जो है, इनके और भी 3 इस तरीके के गेस्ट हाउसेस चलते हैं इनके इसमें, और कहीं भी फायर एनओसी नहीं दी गई है। अब ये थर्ड पार्टी ऑडिट में क्या होता है ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। कई बार सहूलियत के लिए भी ये कहा जाता है कि लोगों के लिए सहूलियत भरा ये काम होगा ताकि जल्द से जल्द उन्हें इस तरीके की एनओसी मिल सके, लेकिन थर्ड पार्टी ऑडिट से कुछ होता नहीं है, ये भी आपको पता है इस मामले में। बहरहाल एक बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से आ रही है, माफ करिए जी राजू बब्बर, मैं आता हूं आपके पास राजू बब्बर जी, लेकिन बंगाल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वहां पर जाना होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 धड़े साफ हो चुके हैं। ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका, लेकिन इस बार झटका पश्चिम बंगाल की असेंबली के स्पीकर ने दिया हुआ है। 60 विधायकों के बागी गुट को एक तरीके से मंजूरी दी है, क्योंकि बागी गुट ने किसी और ऋतव्रत बनर्जी को वहां पर अपना नेता चुना था, और वहां पर वो नेता विपक्ष के तौर पर, जबकि ममता बनर्जी की तरफ से किसी और नेता का नाम भेजा गया था, जबकि ऋतव्रत बनर्जी ने
4: निश्चित भावे तार परामर्श पेले गठनमूलक एवं सदर्थक विरोधी भूमिका ভালোভাবে পালন করতে পারবো, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা তার কাছে অনুরোধ জানাই, এবং আমরা যে কথা শুরুতেই বলেছি যে আমরা এই বিধানসভার অভ্যন্তরে সদর্থক এবং গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা পালন করব, বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে আমরা কোনো অবস্থায় কোনো বিলে ভোট, যখন ভোট হবে আমাদের যদি মনে হয় আমরা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো তো বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো, ওয়াক আউট করে অন্য কাউকে সুযোগ সুবিধা করে দেবো না। বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে আমি আবারও বলছি যে হয় বিলকে সমর্থন দেবো বা বিলকে বিরোধিতা করব, কিন্তু এই অবস্থান হবে না যে ওয়াক আউট করে গিয়ে অ্যাবসলিউট নাম্বার কমিয়ে দেবো, এটা এই রাজনীতি আমরা করব না। স্বাভাবিকভাবে সদর্থক এবং গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা আমরা পালন করতে চাই, এবং অনেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি একটা চিঠির কথা, এই 18 পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 18 পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দূর দূরান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে 80 বিধায়ক তারা নির্বাচিত হয়েছেন, তার মধ্যে 60 বিধায়ক আপাতত মনে করেছেন রীতিনীতি মেনে যে এটাই হচ্ছে এই 18 বিধানসভার ভেতরে প্রিন্সিপাল অপোজিশন, এবং আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করছি, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে রয়েছে,
5: পার্টি হি প্রিন্সিপাল অপোজিশন হ্যায় অর হাম হি তৃণমূল কংগ্রেস কো রিপ্রেজেন্ট করতে হ্যায়।
4: এটাই হচ্ছে মূল কথা, আমরা অনুরোধ করব যে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের পরামর্শ,
5: ইহি মুখ্য বাত হ্যায় হামারি,
4: গাইড করবার জন্য তার গাইডেন্স নিয়ে আমরা আমাদের বিধানসভা এলাকার মানুষের মতামতকে নিয়ে কিভাবে উন্নয়ন করা যায়।
5: হাম মমতা বনর্জি কো হি আপনি নেতা চুন রহে হ্যায় অর মমতা বনর্জি সে চাহতে হ্যায় কি ও হামে গাইড করে।
4: আমাদের এই কথাগুলো রাজ্য প্রশাসনের কাছে, আমরা রাজ্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানাবো যে আমাদের বিভিন্ন যে জেলা রয়েছে যেখানে বিরোধী বিধায়করা রয়েছেন, সেই
5: আমাদের বাতে
4: প্রয়োজনে প্রশাসনের সঙ্গে বিরোধী বিধায়কদের আমাদের
5: রাজ্য প্রশাসন কো হাম বাতায়েঙ্গে
4: দেখে যেটা অনুরোধ করলে হবে, প্রশাসনের সঙ্গে বিরোধী বিধায়কদের মিটিং প্রয়োজন, এবং আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারি আমাদের এই যে 60 ব্লক বিরোধী বিধায়করা যারা আছেন
5: प्रशासन के साथ विरोधी दलों की मीटिंग होगी और इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में हम लोग शामिल रहेंगे।
4: তাদের উন্নয়নের প্রশ্নে আমি দেখুন আমরা আজকে যেটা হয়েছে যে 28,25,000 অ্যাকাউন্টে যে টাকা ঢুকেছে রাজ্য সরকার যেটা ঢুকিয়েছেন আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই, এটা পজিটিভ পদক্ষেপ। আজকে আমাদের বিধায়করা বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ
5: ये पॉजिटिव बात है, हम साधुवाद जनाते हैं।
4: সেখানে যে সমস্যা পিএইচই পিএইচই দপ্তর, সেই দপ্তর নিয়ে বিধায়কদের যে অভিজ্ঞতা, সেই দপ্তর নিয়ে জল নিয়ে যে সমস্যা এবং জল ঢোকাতে গিয়ে রাস্তা কেটে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া, আমরা সরকারকে
5: পানি কি যে সমস্যা হ্যায় যে রাস্তো কি সমস্যা হ্যায় বো সব সব সরকার সে হাম বাত করতে হ্যায় অর হাম সরকার কি প্রশংসা করতে হ্যায় কি উননে হামারে ইয়ে বাত শুনি।
4: এবং পিএইচই এর যে রাস্তা গুলো যে কাটা হয়ে গেছে মাঝখানে,
5: মুখ্যমন্ত্রী সে হামনে সারি বাতে কি হ্যায় কহি হ্যায়
4: কাটা হয়েছে, সেখানেও তিনি মিটিংটা লাইভ হয়েছে সবাই দেখেছেন, যে যারা ঠিকাদারদের ডিপোজিট আছে
5: কই জায়গা রাস্তে কটে হুয়ে হ্যায়
4: বিলম্বে আমাদের
5: হাওড়া এই মিটিং লাইভ চল রহি থি।
4: রাজা সেন বিধায়ক বাগনান
5: হাওড়া গ্রামীণ জেলা কে তৃণমূল কে সভাপতি বাগনান এলাকে কে উনহোনে ইয়ে বাত উঠাই থি।
4: আজকে যে আমরা রিপোর্ট আনসার পেয়েছি সেটা সদর স্বাভাবিক ভাবে
5: মিউনিসিপ্যালিটি কি বাতে হামনে বাতাই হ্যায়
4: আমাদের এই বিধায়করা রয়েছেন, আমরা সরকারের কাছে
5: सभी जिलों में जहां जहां हमारे विधायक हैं हम मांग रखेंगे कि प्रशासनिक बैठक में विरोधी विधायकों को शामिल किया जाए और उनका मत लिया जाए।
4: দেখুন আমি যখন ওটা বলেছিলাম আমি ইন্ডিভিজুয়াল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় হিসেবে বলেছিলাম, ইন্ডিভিজুয়াল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছিল সেটা ইন্ডিভিজুয়াল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়িত্ব, আমি সেটা থেকে সরছি না। কিন্তু যেহেতু আমরা এখনো মিটিং করিনি মানে আমাদের পদক্ষেপ কি হবে, আমি টিম ফাংশনিং এর বাইরে এক পা বেরোবো না, কালকে মিটিং হওয়ার আগে আমি এই নিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবো না। ইন্ডিভিজুয়াল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কালেকটিভের মতামত। দেখুন আমাদের চিফ হুইপ শ্রী আকরুজ্জামান, আচ্ছা কি করে আমি একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কি করে আরেকটা প্রশ্ন হবে, আমি আবার উত্তর দেবো আলাদা করে। আমাদের মাননীয় চিফ হুইপ শ্রী আকরুজ্জামান এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে, আমরা একদম ক্লিয়ার করেছি, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ করবো আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে থাকার জন্য। আর সংসদীয় যে রীতিনীতি রয়েছে আমরা ইনটোটো তাই ফলো করে আমাদের ক্লেম আজকে করেছিলাম, ক্লেম চেক করবার পর আমাদের ক্লেম গৃহীত হয়েছে স্বাভাবিকভাবে, যে সংসদীয় রীতিনীতির বাইরে আমরা কিচ্ছু করিনি। এবং আবার যেটা বলছি যে দেখুন বাংলার মাটিতে মানুষ একটা রায় দিয়েছেন, ম্যান্ডেট দিয়েছেন, এবার সেই ম্যান্ডেট হচ্ছে আমাদের বিরোধী আসনে বসার ম্যান্ডেট। কিভাবে তাকে কাউন্টিং সেন্টারের বাইরে মারা হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবে সে লড়াই থেমে থাকবে না।
0: আমি ঝটকা তৃণমূল কংগ্রেস ঝটকা ঝটকে পে ঝটকা, এক তরফ রবীন্দ্র বোস पश्चिम बंगाल असेंबली के स्पीकर, उन्होंने मान लिया है कि ऋतव्रत बैनर्जी ये लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, जबकि ममता बैनर्जी ने जिनका नाम लिया था उसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी के घर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। ममता बैनर्जी को एक और एक बड़ा झटका, अभिषेक बैनर्जी के घर ईडी की टीम पहुंची है, इससे पहले भी सीआईडी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया था। ऋतव्रत बैनर्जी और दो विधायकों ने शिकायत की थी कि उनके जो हस्ताक्षर है लीडर ऑफ अपोजिशन शोभन देव चट्टोपाध्याय को चुनने के लिए वो गलत तरीके से लिए गए और वो फर्जी हस्ताक्षर उनके लिए गए हैं। अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहली बड़ी खबर पर। अनुपम, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि रविंद्र बोस ने किस मुद्दे के आधार पर ऋतिव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष चुन लिया। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र के मामले में, महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष के मामले में चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे तब 5 जजेस के बेंच ने यह फैसला दिया था कि अगर 2 गुट पैदा होते हैं विधायक दल के भीतर तो स्पीकर को सबसे पहले यह तय करना पड़ता है कि असली पॉलिटिकल पार्टी किसकी है, क्योंकि चीफ व्हिप और विधायक दल का नेता ये दोनों चुनने का अधिकार ये पॉलिटिकल पार्टी को है। विधायक किसके पास ज्यादा है उसके आधार पर यह नहीं चुना जा सकता। लेकिन रविंद्र बोस ने मान लिया है कि ऋतिव्रत बैनर्जी जो दावा कर रहे हैं वही असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, और ऋतिव्रत बैनर्जी ने भी माना है कि ममता बैनर्जी ही उनकी नेता है उस पार्टी की। हालांकि ममता बैनर्जी ने अपने अध्यक्षता वाली तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही एक दस्तावेज लेटर रविंद्र बोस को सौंप चुके हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि शोभन देव चट्टोपाध्याय ये विधायक दल के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और उसके साथ साथ फराद हकीम ये चीफ व्हिप रहेंगे। लेकिन रविंद्र बोस ने उनकी बात नहीं मानी है, जबकि ऋतिव्रत बैनर्जी ने जो 60 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उनको सौंपी है उसी को मान लिया गया है। अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, 2 बड़ी खबरें इस वक्त कोलकाता से चल रही है। एक तरफ ऋतिव्रत बैनर्जी दावा कर रहे हैं कि रविंद्र बोस ने उनकी बात मान ली है। क्या रविंद्र बोस ने इस बात को माना है कि ऋतिव्रत बैनर्जी ने जो दावा किया है वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आया हुआ है कि वही नेता विपक्ष बनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साफ कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी कि पार्टी का विधायक दल का नेता कौन होगा।
5: जी बिल्कुल, देखिए इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्योंकि देखिए जो अगर वो बोल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस है, उनकी नेता ममता बनर्जी है, तो अगर जिस पैड पे चिट्ठी दी गई होगी वो पैड तो तृणमूल कांग्रेस का होना चाहिए, और जहां तक मेरी जानकारी है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और सुब्रत बख्शी, इन तीनों को हक है वो चिट्ठी लिखने का, उनके पैड पर होने का। लेकिन यहां पर अभी तक जो बात सामने आ रही है, जो ऋतिव्रतो बोल रहे हैं कि उनको विरोधी दल का नेता मान लिया गया है और उनको चाबी भी दे दी गई है। अब तक असेंबली में, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये पश्चिम बंगाल असेंबली है, असेंबली के भीतर में जो विरोधी दल का चैम्बर हुआ करता था, विरोधी दल नेता का, वो अब तक बंद पड़ा हुआ था। और जो तकनीकी गड़बड़ी आई थी, जो चिट्ठी को लेकर मामला भी चल रहा है, उस मामले के बाद तक अब तक बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज उसकी चाबी ऋतिव्रतो बैनर्जी को सौंप दी गई और वो भीतर भी गए, प्रवेश किया, वो चेयर पर भी बैठे और इसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें विरोधी दल का नेता मान लिया गया है, हमारे पास नंबर्स हैं, 58 लोग हैं हमारे, जो चिट्ठी दी गई है उसमें 58 उनके पास है, 2 लोग
0: इस अनुपम बड़ी दिलचस्प बात है
5: जो बाद में,
0: देखिए ये स्क्रिप्ट मैंने पहले भी सुनी है अनुपम, ये स्क्रिप्ट मैंने पहले भी सुनी है। 2022 में एकनाथ शिंदे ऐसे ही स्क्रिप्ट लेकर आए थे स्पीकर के सामने, ये कहते हुए कि मेरे पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है। तभी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरीके से फैसला नहीं होगा किसके पास ज्यादा विधायक है, राजनीतिक पार्टी वही तय करेगी कि विधायक दल का नेता कौन बनेगा। और थोड़ी देर पहले कल्याण बैनर्जी ने ट्वीट किया हुआ है, पश्चिम बंगाल असेंबली के स्पीकर को टैग करते हुए ट्वीट किया हुआ है और उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी हैज मेड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स विद दिस रिगार्ड। उन्होंने कहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सोहद देव चट्टोपाध्याय रहेंगे, चीफ व्हिप फरहाद हकीम रहेंगे और इसी तरीके से 2021 में शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष बनाए गए थे। इससे पहले 2011 में नेता विपक्ष इसी तरीके से चुना गया था, 2006 में नेता विपक्ष इसी तरीके से चुना गया था। पार्टी के तरफ से जो कम्युनिकेशन स्पीकर के पास किया जाता है उसी के आधार पर नेता विपक्ष या लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी यानी विधायक दल का नेता वहां पर चुना जाता है। ऐसी सूरत में रविंद्र बोस जो कह रहे हैं उसका लीगल आधार क्या है, क्या उस बारे में उन्होंने कोई साफ किया है इस मामले में, स्पीकर के दफ्तर की तरफ से इसके बारे में कुछ साफ शब्दों में कहा गया है?
5: देखिए स्पीकर रथिंद्र बोस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई है। चिट्ठी किस पैट पर दी गई है, किसके पैट पर दी गई है, ये भी अभी तक उसमें सफाई नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर तकनीकी गड़बड़ी, जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं हुआ है, इतना तो तय है। 58 लोगों की चिट्ठी दी गई है, अब वो किसके पैट पर दी गई है? क्या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी, सुब्रत बख्शी या अभिषेक बनर्जी, जिनको हक है चिट्ठी देने का, जो पैड पे, जिनका पैड है, क्या उस पर दी गई है या इन्होंने खुद से चिट्ठी दी है? तो इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और ये जो क्लैरिटी है ये अभी हो सकता है कि थोड़ी देर में हमें क्लैरिटी मिले कि किस चिट्ठी किस पे दी गई है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है और जो जो विरोधी दल नेता का जो रूम था, जो चैम्बर था, जो ऑफिस था विधानसभा में, वो जो बंद पड़ा हुआ था, उसकी चाबी लेकिन स्पीकर की ओर से अब दे दी गई है, जो ऋतुब्रतो बनर्जी को, जिन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन कहा गया है, और वो खुद दावा कर रहे हैं कि हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं और हमारी नेता ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी से वो गाइडेंस मांगेंगे, ममता बनर्जी से उन्होंने मतलब यहाँ पर अपील भी की है कि ममता बनर्जी
0: ने अपना गाइडेंस पहले दिया हुआ है। तो ममता बनर्जी की तरफ से ऋतुब्रत बनर्जी को पार्टी से निष्कासित किया गया था, दो विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया था, जब ऋतुब्रत बनर्जी और उनके साथ एक और विधायक ने जाकर शिकायत की थी कि उनके हस्ताक्षर गलत तरीके से किए गए या फर्जी से हस्ताक्षर किए गए। दूसरी बात दर्शकों की जानकारी के लिए, यह बड़ी दिलचस्प बात है, स्पीकर के सामने जब दो दावे किए जाते हैं एक ही पार्टी के तरफ से, तो सबसे पहले तो स्पीकर को प्राइमा फेसी, प्राथमिक दृष्टि से यह तय करना होता है कि असली राजनीतिक पार्टी किसकी है, यानी तृणमूल कांग्रेस का नेता असली कौन है। यहां पर ऋतुब्रत बनर्जी खुद भी यही दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ही उनकी पार्टी के नेता है, असली पॉलिटिकल पार्टी के नेता ममता बनर्जी ही है, और उनके तरफ से ही यहां पर वो अपना दावा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्पीकर ने इस बात की किसी भी तरीके से पुष्टि की है ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता है, क्योंकि कोई भी हियरिंग यहां पर नहीं हो पाई है। विधायक दल का नेता विधायकों की संख्या के आधार पर नहीं चुना जाता। अनुपम मिश्रा आपके साथ कोई है मेरे ख्याल से, आप जरा उनसे बात करिए, पूछिए जो मैंने सवाल पूछा है। जी
5: हमारे साथ संदीपन साहा है हमारे साथ,
6: एक बार और लाइव में हैं। एक बार और, ये जो पैट जिस पे दिया गया, या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से दिया गया, कैसे दिया गया?
7: देखिए एक रेजोल्यूशन बनाया गया था जिसमें एलओपी कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, डिप्टी लीडर कौन होगा, ये एक रेजोल्यूशन दिया गया था। फिर बाद में पता चला इसमें ऐसे ऐसे विधायक गण के सिग्नेचर है जो उस दिन उपस्थित नहीं थे, और उनके सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में कर दिया गया है। इसके कारण एक कानूनी जटिलता यहाँ पे तैयार हुआ था। हम लोग, मैं और ऋतुब्रत बनर्जी, जब ये जान पाए हम लोग, ये स्पीकर माननीय स्पीकर को ही हम लोग उनके नॉलेज में लाए, और उनके नॉलेज में लाने के बाद ये कार्रवाई हुई और देखी गई कि हाँ सचमुच ऐसे कुछ विधायक गण के सिग्नेचर किए गए हैं जो उपस्थित नहीं था। तो नैतिक एंगल से ये करना हम लोगों ने जरूरी समझा। इस सदन में हम लोगों ने शपथ लिया था, उस शपथ रक्षा के कारण हम लोगों ने ये किया। और फिर बाकी
0: आप नेता विपक्ष नहीं है,
7: 80 में
0: शोभन देव चट्टोपाध्याय नेता विपक्ष है,
7: फैसला
0: और स्पीकर को सबसे पहले ये तय करना होता है कि असली राजनीतिक पार्टी किसकी है।
7: अपोजिशन के
0: इतने जल्दी ये फैसला कैसे हुआ, ये भी जरा पूछिए उनको।
7: चीफ व्हिप बन के काम करेंगे
5: स्पीकर, तो ये तय करते हैं स्पीकर कैसे तय कर सकते हैं कि आप लोगों की पार्टी ही असली तृणमूल कांग्रेस है या ममता बनर्जी?
7: माननीय स्पीकर ये तय नहीं करते हैं, परिषदीय दल ये तय करते हैं, जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो तय करते हैं। मोर देन 2/3 ऑफ द MLAs वो आज सपोर्ट कर रहे हैं ऋतुब्रत बनर्जी एज LOP और अकरुज जमान एज चीफ व्हिप।
0: नहीं,
7: ये तो अधिकार संविधान में दिया हुआ
0: शब्दों में कहा है,
7: 2/3 से अगर ज्यादा होता है उसको मान्यता देना है।
0: सबसे पहले ये तय करना होगा विधानसभा राजनीतिक पार्टी किसकी है, उसी के आधार पर वो ये तय कर सकते हैं।
5: जब हुआ था 2022
0: महाराष्ट्र वाले मामले में फैसला हुआ
5: था, मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके से नहीं हो सकता है।
7: महाराष्ट्र में क्या हुआ था मुझे पता नहीं, यहाँ पे जो हुआ है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ।
5: देखिए मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि अभी भी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। मैंने साफ पूछा कि किसके पैट पर चिट्ठी दी गई थी, उस पर अभी जवाब नहीं आ रहा है। तो काफी कुछ बातें हैं जो अभी तक जिनका खुलासा नहीं हो पा रहा है साहिल। तो ऐसे में अब थोड़ा और वक्त लगेगा, देखना होगा कि क्या हुआ है। लेकिन एक गुट यहाँ पर अलग हो गया है, इतना साफ है। 58 लोग एक साथ हैं जिनमें ममता बनर्जी के साथी सहयोगी रहे, पुराने लोग भी हैं, नए लोग जो अभिषेक बनर्जी ने जिनको टिकट दिया था वो भी हैं उनमें। तो ऐसे में ये लोग एक साथ होकर साथ आ गए हैं। ऋतुब्रतो को इन्होंने अपना नेता चुन लिया है, नेता लीडर ऑफ द अपोजिशन जो असेंबली में काम करेंगे। 4 लोगों को डेप्यूटी लीडर चुना गया है और चीफ व्हिप एक चुना गया है अकरुज जमान को। तो ये फिलहाल अभी तक का जो डेवलपमेंट है, और इसके बाद जो स्पीकर हैं, स्पीकर ने विरोधी दल नेता की जो चैम्बर होता है, जो रूम होता है असेंबली में, जो बंद पड़ा हुआ था, उसकी चाबी दे दी है। अब इनका कहना है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं, हमने
0: अनुपम
5: टू थर्ड मेजोरिटी हमारी है, आपके पीछे हमने तय कर लिया है।
0: जरा उन्हें जाकर बताइएगा अनुपम, जरा आपके पीछे संदीपन सहाय, जरा उनको जाकर बताइएगा जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारे रिसर्च ने यह बात एकदम साफ शब्दों में कही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ruled that the political party, not the legislative party, appoints the leader of legislative party. यानी राजनीतिक पार्टी तय करती है कि पार्टी का विधायक दल का नेता किसी भी विधानसभा में क्या होगा। उनको पूछिए, ममता बनर्जी पार्टी की लीडर है, उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी का विधायक दल का नेता नहीं माना है। ऐसी सूरत में स्पीकर इस बात को कैसे मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि अब टू थर्ड मेजोरिटी से यह तय नहीं होता है। टेंथ शेड्यूल भारत में जो पार्टी पार्टी को बदलने का जो कानून है उसके मुताबिक, डिफेक्शन का जो कानून है उसके मुताबिक, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद टू थर्ड जब बाहर निकले तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा था, ऐसी सूरत में वो पार्टी के विधायक दल के नेता पद पर कैसे दावा कर सकते हैं और स्पीकर ने इस बात को कैसे माना है, ये भी जरा पूछ लीजिएगा, क्योंकि रिसर्च साफ शब्दों में इस बात को की पुष्टि कर रहा है जिस बात का जिक्र मैं इससे पहले कर रहा था। और उसके साथ साथ इस बात का भी जवाब कि क्या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस बारे में जो स्पीकर का फैसला आया हुआ है।
5: जी, अभी तक तृणमूल कांग्रेस का स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया है, लेकिन जो बातें अभी सामने आ रही हैं, जिस तरह के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक यहां पर कितना हद तक काम हुआ है, नहीं हुआ है, इसके बारे में क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पा रही है। चिट्ठी दी गई है, एक रेजोल्यूशन बनाया गया, रेजोल्यूशन बना के स्पीकर को दिया गया, उसमें 58 लोगों ने साइन किया, लेकिन वो क्या तृणमूल कांग्रेस की ओर से उस पर कोई मान्यता थी, नहीं थी, इस बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बार बार पूछने के बाद भी इस विषय पर जो साफ जवाब आना चाहिए वो अभी तक जो 58 लोगों के लीडर्स हैं ऋतुव्रतो और ये क्या बोलते संदीपन, उनकी ओर से नहीं आ पा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे उनसे, और भी कई लोग हैं यहाँ पर बात करने की।
0: तो अनुपम, और एक बड़ी खबर इस वक्त चल रही है, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी के घर पे आज ही के दिन ईडी की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। ये कौन सा मामला है जो ईडी की टीम पहुंची है, जिसके लिए ईडी ने इससे पहले कोलकाता में रेड की थी आईपैक के दफ्तर पर, जहां पर ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई थी, वही मामला या कोई और मामला है यहां पर?
5: जी देखिए, अभी अभी ईडी की टीम थोड़ी देर पहले पहुंची है अभिषेक बनर्जी के दफ्तर ऑफिस में, तो ये अभी उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था वो वही मामला था जो आईपैक वाला मामला था, तो ऐसे में उसी के रिलेशन में पहुंची है या नहीं वो देखने वाली बात होगी।
0: क्या क्या अनुपम, ये मानकर हम चले कि
8: उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है, अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे, जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया, फिर बोल रहे थे वहां पिकनिक खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा, इधर सब समर मुखर्जी जैसे आदमी हैं, अकृत जमान है, यहां पर जावेद खान है, किसी का भी पायलट नहीं है, सिक्योरिटी भी लिमिटेड है, एक या दो, हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसे पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे।
9: दादा, आप ममता बनर्जी को, आप लोग ममता बनर्जी को चीफ एडवाइजर मांगते हैं, ममता बनर्जी खुद आप लोगों को चीफ एडवाइजर नहीं देंगे तो क्या होगा?
8: वो जब देंगे नहीं तब दिखा जाएगा, कल क्या होगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, आई लिव फॉर दिस डे ओनली। मैं क्या बोला बांग्ला में, बांग्लाए बोलेछी जे बांग्ला में बोले थे कि अभी तक, तो अभी तक का मतलब है अभी तक, कल सवेरे क्या होगा कैसे बोलेंगे?
10: तो ममता
8: बंदोपाध्याय বহিষ্কার যে করা হয়েছে গঠনতন্ত্র মেনে তো করতে হবে, আমি এই বিষয়ে ডিটেলে আর যাবো না, আপনি একটু গঠনতন্ত্রটা পড়ে দিন, আপনি খুঁজতে অসুবিধা হবে, না পেলে আমায় বলবেন, আমি ইলেকশন কমিশন থেকে আনিয়ে গঠনতন্ত্রটা পড়ে দেখেছি, আমি পাচ্ছিলাম না।
0: অনুপম यहां पर ऋतव्रत तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी उनकी चीफ एडवाइजर बनी रहेगी, ममता बनर्जी पार्टी की अध्यक्ष है, क्या पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश हम मान सकते हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी क्या यही बात नजर आ रही है, यानी सत्ता भी बीजेपी की और विपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित तृणमूल कांग्रेस का धड़ा वहां पर विपक्ष के तौर पर बैठा रहेगा। ऋतव्रत बैनर्जी जितने हमले ममता बैनर्जी या अभिषेक बैनर्जी पर कर रहे हैं उतना तो वो बीजेपी के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। रविन्द्र बोस साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ऋतव्रत बैनर्जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहेंगे, यह बड़ी दिलचस्प बात यहां पर हो रही है। तो ममता बनर्जी की स्थिति ऋतव्रत बनर्जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये तो चीफ एडवाइजर है, ये बड़ा उलटफेर।
5: जी देखिए जी, ऋतव्रतो या संदीपन साहा की ओर से साफ कहा जा रहा है कि उनकी जो नेता है वो ममता बनर्जी ही हैं और ममता बनर्जी के गाइडेंस में वो काम करेंगे। लेकिन आपको बताऊं, ममता बनर्जी, मुझे नहीं लगता कि इस अपील को, जो अपील यहां से की गई है फिलहाल, उस अपील को ममता बनर्जी मानेंगी। और ये उसी तरफ बढ़ रहा है कि एक जो तृणमूल कांग्रेस, असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, इस पर ये मामला जाएगा। और जो ये धड़ा है 58 लोगों का ये धड़ा है, ये क्लेम करेगा कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था, लगभग उसी दिशा में ये पूरा मामला जाता दिख रहा है। फिलहाल तो ये लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी नेत्री हैं, हम उनसे गाइडेंस चाहते हैं। अब ये ममता बनर्जी क्या इसको मानेंगी, क्या वो इसको सहमति देंगी, कॉन्सेंट देंगी कि नहीं, हाँ ये जो किया गया है मेरी सहमति से हुआ है और इनको ऐसा रहने दिया जाए, या ये इस पर मेरी सहमति है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ होगा, और ये इस धड़े को भी शायद मालूम है कि वैसा कुछ नहीं होगा, और इस वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में मामला पूरी तरह से साफ हो जाए और मामला उसी ओर जाए जहां पर 58 लोगों का जो ये दल है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि दो लोग और हैं जो आउट ऑफ स्टेट हैं, वो भी आ जाएंगे हमारे साथ 60 लोग, तो ये लोग असली तृणमूल कांग्रेस का दावा ठोकें, जो मामला कोर्ट में भी जाने वाला है, इतना तय है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह का मामला कोर्ट में गया था महाराष्ट्र वाले केस में, तो ये इस वाले मामले में भी मामला कोर्ट में जाना ही है, इतना लगभग तय माना जा रहा है फिलहाल।
0: अनुपम, कभी ऐसा लगा था
5: कोर्ट में क्या फैसला होता है,
0: उसके पत्तों के महल की तरह तृणमूल कांग्रेस एक महीने के भीतर ही 4 तारीख को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, आज 5 तारीख है, एक महीना सिर्फ हुआ है, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के 60 विधायक ममता बनर्जी से अलग होकर एक नया गुट बनाकर यह दावा कर रहे हैं कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है, कभी किसी ने सोचा था? और दूसरी बात, पार्टी के भीतर इन लोगों को कितना समर्थन है, क्योंकि फिलहाल तो पार्टी ने सारी कमिटीज बर्खास्त कर दी है, बाकी लोग क्या पार्टी के लोग भी इनके साथ कुछ खड़े होंगे, सांसदों में भी क्या यह मामला जा सकता है? काकोली दस्तदार पहले ही कह चुकी है कि वो पार्टी के जो पद है उससे इस्तीफा दे चुकी है, पार्टी के खिलाफ बात कर चुकी है, राज्यसभा सांसद एक है वो भी पार्टी के खिलाफ बात कर चुके हैं।
5: जी साहिल, सबसे बड़ी बात है कि आज 3 तारीख है और एक महीना लगभग आप मान सकते हैं कि एक महीना पूरे होने जा रहा है, और एक महीने के भीतर इस तरह पार्टी बिखरेगी, मुझे नहीं लगता है कि ये अंदाजा किसी को भी रहा होगा। हालांकि 10-12 दिन पहले से एक अंदाजा जरूर होना शुरू हो गया था कि कुछ इस तरह की घटना जरूर हो सकती है, क्योंकि जब हमने देखा कि जो TMC के जो मीटिंग्स बुलाई जा रही थी, सबसे पहले जो 6 या 7 जून को मीटिंग बुलाई गई थी ममता के आवास पर, 9 जो विधायक थे वो अनुपस्थित थे, 19 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई उसमें लगभग 30 से 35 विधायक अनुपस्थित हो गए, तभी से लगा था कि मामला गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। और इसके बाद जब पिछले संडे को जो कालीघाट में आवास पे मीटिंग बुलाई गई थी, वहां पर लगभग सिर्फ एक बार मैं ऋतव्रतो को पकड़ने की कोशिश करता हूं।
10: अरे बाबा
0: जी, ऋतव्रत बनर्जी से बात कर रहे हैं, जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा, ऋतव्रत बनर्जी बाहर आकर बात कर रहे हैं अनुपम से।
11: There is no place in I in this 2/3 strong legislative team of the Trinamool Congress inside the 18th West Bengal Legislative Assembly. This legislative party doesn't believe in I, it believes in we. Whatever norms are framed out. We have followed every norm, and that's why we have been accepted as the are framed out. We have followed every norms, and that's why we have been accepted as the principal opposition in this 18th West Bengal Legislative Assembly.
10: Is this Trinamool Congress or is this a new front? What is it?
11: No, this is. I am categorically telling you. I have inside also told you. We want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the Speaker has accepted that. So the point is that 2/3 of the members, 80 members were elected by in Trinamool Congress of symbol. 2/3 of them, more than 2/3 of them, has given a our claim, and the claim has been accepted.
0: रितिव्रत बनर्जी यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है उसका तो जवाब नहीं दे रहे हैं. ये बड़ी दिलचस्प बात है. ये चौथी बार इस देश के इतिहास में दिखाई दे रहा है. पूरी पार्टी नेता के खिलाफ खड़ी हो रही है. पूरी पार्टी नेता के खिलाफ खड़ी हो रही है. इससे पहले एनटी रामाराव के खिलाफ इसी तरीके से बगावत हुई थी, पूरी पार्टी अपने पास ले ली थी. इसी तरीके से उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे खड़े हुए और शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार. और यही चीज रितिव्रत बनर्जी के रूप में ममता बनर्जी के खिलाफ हमें दिखाई दे रही है. इस पर हमारी नजर बनी रहेगी. लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे. देखना है इस बार कौन सा नया कानूनी दाव चला जाता है. अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: In association with
4: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
6: Summer cool cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
3: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
9: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: पेट में है।
1: किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और पत्रों पैदा कर दे। माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
2: शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम।
3: उत्तर प्रदेश के चुनावी हवन कुंड में सीएम योगी की आहुति के दो सबसे बड़े मंत्र हैं, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व, जिनके अनवरत जब से सत्ता के महासमर में बीजेपी को लगातार दो बार विजय का आशीष मिला है। और तीसरी बार चुनावी रणभूमि में उतरने से पहले सीएम योगी ने अपने आयुध तैयार कर लिए हैं, जिसमें सख्त कानून व्यवस्था की मिसाल पेश करने के लिए सीएम कभी वोट की ताकत से माफिया को मिट्टी में मिलाने का दावा करते हैं तो कभी दुष्ट के संहार के लिए शस्त्र उठाने की प्रेरणा देते हैं। और जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार सूबे में दुर्जनों का इंसाफ कर रही है, वो कहीं बुलडोजर की शक्ल में तो कहीं एनकाउंटर की शक्ल में नजर आता है। और यही मिसाल गाजियाबाद में बकरीद का न्योता देकर सूर्या चौहान की हत्या करने वाले कातिल के मामले में भी नजर आया, जब यूपी पुलिस ने सूर्या चौहान की हत्या के 72 घंटों के अंदर मुख्य आरोपी के एनकाउंटर से लेकर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और अब पूरी कॉलोनी में ऑपरेशन क्लीन स्वीप वाली बुलडोजर तैयारी कर रखी है। उससे यूपी सरकार और पुलिस के सुशासन मंत्र का साफ अंदाजा लगता है। सीएम योगी इन दिनों देश और समाज के अपराधियों को रावण कंस से लेकर घर दूषण तक के सर्वनामों से नवाज रहे हैं, उनके विनाश के लिए हिंसा पथ को भी अख्तियार करने से नहीं चूकने की बातें कह रहे हैं। और उनकी ये बातें चुनिंदा मामलों में शासन प्रशासन की शैली में नजर भी आती है। लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है, जब गाजियाबाद में सूर्या के कातिल का एनकाउंटर 72 घंटे के अंदर कर दिया जाता है और गाजीपुर में विनीत राय के कातिलों की नामजद रिपोर्ट के बावजूद आरोपियों तक पुलिस पहुंच नहीं पाती और पुलिस को सीएम योगी की तरफ से खुली छूट है कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिस सख्ती तक जाना हो जा सकते हैं। यही वजह है कि आज जब देश में अपराध दर की बात होती है तो यूपी का स्तर 11वें से सुधरकर 18वें पायदान पर नजर आती है। आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

देश की संसद से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर धू धू कर जलती यह इमारत नहीं, ये वो बिल्डिंग है जो बताती है कि जनता की जान को आग में झोंक देने का खुल्लम खुल्ला लाइसेंस देने वाला खेल देश की राजधानी में चलती दिल्ली की सरकार, सरकारी विभाग और विभाग के अफसर करते हैं। जहां दिल्ली की विधानसभा से केवल 24 किलोमीटर दूर चादरों में लपेटकर उन नागरिकों को ले जाया जा रहा है जिन्हें भरोसा होता है कि कम से कम सरकारों के दावे भारत की राजधानी में तो दम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली के मालवीय नगर से सटे हौजरानी गांव में 6 मंजिला इमारत में ऐसी आग लगी, चंद मिनट के भीतर मौत का आंकड़ा 20 के पार पहुंच जाता है। ये तस्वीर विचलित कर देती है, लेकिन देखना आपको जरूरी, जहां जलती हुई इमारत से जान बचाने को लोग ऊपर से नीचे उन गद्दों पर आखिरी बार कूदते रहे जो गद्दे स्थानीय लोगों ने बचाने के लिए ने रखे। मौत की आग से जिंदगी बचाने की ये छलांग शर्मनाक धब्बा है उस सरकार के दावों के लिए जहां जनता की जान की फिक्र किसी को नहीं थी। फिक्र अगर सरकार को होती तो जरा इस चेहरे को देखिए। आशीष सूद दिल्ली के एक गृह मंत्री लाल रंग के चमचमाते सुरक्षा हेलमेट पहनकर घटना स्थल पर पहुंचे। इनके साथ खड़े अधिकारियों को देखिए, इनके सिर पर वो हेलमेट जो शायद पहले कभी ये लोग लगाकर ग्राउंड पर निकले तक नहीं होंगे। निकले होते तो इनके हेलमेट इतने चमचमाते नहीं। लेकिन दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद का झक सफेद कुर्ता और अधिकारियों की पैंट शर्ट की क्रीज तक जहां मुड़ी नहीं दिखती, ये तस्वीर बताती है कि जनता की जान जाने के बाद ही नींद इन लोगों की टूटती है जिन्हें सिंगल डबल और ट्रिपल इंजन की ताकत जनता ने दे दी। सुनिए अब जरा मंत्री आशीष सूद की बात को। अब जो कबूलनामा मंत्री सुन रहे हैं वही सच है, ऐसा सच जहां भारत की राजधानी में दिल्ली की सरकार और सरकारी विभाग ने ये हालात कर दिए कि आम आदमी लपटों में घिरा रहा। आप कहेंगे कैसे सरकार की गलती है, तो सुन लीजिए। दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग जिसने बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति के तहत गेस्ट हाउस चलाने का लाइसेंस दिया, नियम के तहत यहाँ 6 कमरे होने थे लेकिन 25 कमरे बनाकर चलते रहे। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा है जिनके विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर जूनियर असिस्टेंट तक 11 लोग काम करते हैं लेकिन सब सोते रहे और 6 कमरे की जगह 25 कमरे बनाकर चलता गेस्ट हाउस आग का गोला बनकर मौत बांट देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रिपल इंजन तो MCD तक में BJP का राज है। MCD के AE और JE सब सोते रहे क्योंकि पता चला इस बिल्डिंग का नक्शा तक पास नहीं था। सोता रहा दिल्ली का फायर विभाग जिसने कभी ये देखा ही नहीं कि NOC ली गई है या नहीं ली गई। सोती रही दिल्ली की पुलिस क्योंकि बिना NOC के रेस्टोरेंट तक यहाँ इसी बिल्डिंग में चलता रहा।

0: इस खबर को आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: व्रत बैनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष, 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। उधर अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ, राहुल और खड़गे मौजूद। पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में मालवीय नगर के एक होटल में भीषण अग्निकांड, मरने वाले 21 लोगों में कई विदेशी, 23 घायल। एलजी ने बुलाई बैठक। और आज तक से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ का खुलासा, इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं, 6 की जगह बने थे 25 कमरे। मालिक लवकेश की तलाश में घर पहुंची पुलिस। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देसी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए भी कई स्कीम्स।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Real principal opposition here. We will write to Honorable Mamata Banerjee. We will approach her to be the chief advisor of the Trinamool Congress Legislative Party.
3: Chagra aajke goddari korche Trinamool.

0: अगर पार्टी को बचाएंगी, टीएमसी को बचाएं या फिर अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी, क्योंकि ये जो धड़ा है ये किसी भी हाल में तैयार नहीं है अभिषेक बैनर्जी को स्वीकार करने के लिए। ममता बैनर्जी का भतीजा, ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ही उनके लिए सबसे बड़ी फांस अब बन रहे हैं। आज बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऋतव्रत बैनर्जी का नाम तय हो गया। उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कमरे की चाबी भी सौंप दी गई है। ऋतव्रत बैनर्जी का दावा है कि हमारे पास 58 विधायक हैं, दो अन्य टीएमसी विधायक जल्द साथ होंगे। ऋतव्रत बैनर्जी के इस दाव में पार्टी की नेता ममता बैनर्जी को ही बताया जा रहा है, लेकिन विरोध अभिषेक बैनर्जी का है। ये पूरा धड़ा अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ है। ऋतव्रत बैनर्जी क्या कह रहे हैं सुनिए।
1: আমি আবার বলছি, আমি মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের এই পরিষদীয় দলের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবার অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা নিশ্চিতভাবে তার পরামর্শ পেলে আমরা গঠনমূলক এবং সদর্থক বিরোধীর ভূমিকা ভালোভাবে পালন করতে পারব, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা তার কাছে অনুরোধ জানাই। বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে আমরা কোনো অবস্থায় কোনো বিলে ভোট, যখন ভোট হবে আমাদের যদি মনে হয় আমরা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো, তো বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো, ওয়াক আউট করে অন্য কাউকে সুযোগ সুবিধা করে দেবো না। বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে আমি আবারও বলছি যে হয় বিলকে সমর্থন দেবো বা বিলকে বিরোধিতা করবো, কিন্তু এই অবস্থা হবে না যে ওয়াক আউট করে গিয়ে অ্যাবসলিউট নাম্বার কমিয়ে দেবো, এটা এই রাজনীতি আমরা করব না।
0: तो बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं, जो इस बार चुनाव में नतीजे आए, अगर करीब 58-60 विधायकों का समर्थन ऋतव्रत के साथ है तो इसका मतलब यह है कि पार्टी पर ममता बैनर्जी का होल्ड नहीं रहा। गौरतलब है कि कल ममता बैनर्जी के धरना प्रदर्शन में सिर्फ 9 विधायक पहुंचे थे। इससे पहले 31 मई की टीएमसी की बैठक में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे, जबकि 19 मई की बैठक में 45, 6 मई की बैठक में 70 विधायक। कुल मिलाकर यह बड़ा झटका है ममता बैनर्जी के लिए, लेकिन उससे भी बड़ा झटका यह अभिषेक बैनर्जी के लिए है, क्योंकि यह पूरा का पूरा मोर्चा जो ऋतव्रत बैनर्जी ने संभाला है यह दरअसल अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ है। अब ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपनी पार्टी को बचाएंगी, इन विधायकों की बात मानेंगी, वो अभिषेक बैनर्जी को बिल्कुल नहीं चाहते हैं साथ रहे, या फिर वो अपने भतीजे के साथ अडिग खड़ी रहेंगी। तो यह बड़ा चैलेंज है जो अब ममता बैनर्जी के सामने खड़ा हो गया है। यानी बंगाल में ममता की हार के बाद हर बीतते दिन के साथ उनकी पार्टी पर पकड़ अब जरूर कमजोर हो रही है। पहले जनता के सामने ममता हारी और इसके बाद खुद की पार्टी में उनके साथ ऋतव्रत बैनर्जी ने बड़ा खेला कर दिया है। अब उन्हें यह तय करना है कि वो अभिषेक बैनर्जी के साथ अडिग खड़ी रहेंगी या फिर वो दूसरी तरफ इन विधायकों के साथ जाकर अपनी पार्टी को बचाएंगी। कोलकाता में ममता बैनर्जी के घर पर इस वक्त बड़ी बैठक की खबर आ रही है। अब सवाल यही है कि ममता बैनर्जी क्या कोई रास्ता निकाल पाती हैं, क्योंकि ये चैलेंज अब उनके लिए बड़ा है। उनको अपनी पार्टी को किसी तरह से बचाना है। जब से पार्टी हारी है तब से तमाम नेता उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें कि ये धड़ा भी ममता बैनर्जी को स्वीकार कर रहा है, बल्कि बाहर आकर तो यहां तक कहा ऋतव्रत बैनर्जी ने कि हम उनको अपना एडवाइजर चाहते हैं, हम चाहते हैं वो हमारे साथ बनी रहे, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अभिषेक बैनर्जी को पार्टी में रखा जाए। तो हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुपम मिश्रा का रुख करते हैं। अनुपम, अभिषेक बैनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका, पार्टी के 60 विधायक उनके खिलाफ विरोध करते हुए निकल पड़े हैं, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती जो है वो ममता बैनर्जी के सामने है। मतलब बड़ी बगावत, बुरा नतीजा, पार्टी बचाएंगी या भतीजा, उनको अब तय करना है।
2: बिल्कुल, ममता बनर्जी के लिए एक धर्म संकट जैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई है, और अभिषेक बनर्जी के लिए तो ये एक अप्रत्याशित झटका है, क्योंकि इतने सारे एमएलए, और आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग है अंजना, कि ये जो 60 विधायक हैं इनमें से 58 ने सिग्नेचर किया है, दो आउट ऑफ स्टेट हैं, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि इनके साथ हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अभिषेक बनर्जी को कुछ महीने पहले तक अपना नेता मानते थे, और उनमें से बहुतों को तो अभिषेक बनर्जी ने टिकट दिया। कई लोगों को हटाकर अभिषेक बनर्जी ने इन लोगों को टिकट दिया। आपको याद होगा 74 सिटिंग एमएलएज को बिठाया गया था जब टिकट दिया गया था टीएमसी की ओर से 2026 की विधानसभा में, तो इनमें से बहुत ज्यादा

0: बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको मतलब पुराने जो सिटिंग एमएलएज थे उनको बिठाकर अभिषेक बनर्जी ने टिकट दिया था। तो ममता बनर्जी के साथ पुराने लोग तो हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने ही जिनको तवज्जो दी पार्टी में, आज वही उनके खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं और उनको अपना नेता मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। तो एक तरह से ये अभिषेक बनर्जी के लिए तो एकदम से खेला हो गया है उनके खिलाफ पूरी तरह से, और ममता बनर्जी के लिए ये धर्म संकट की स्थिति है। उनका भतीजा है,
1: बड़ी खबर आ रही है अनुपम, अभी आप जब बता रहे कोलकाता मेयर पद से फिरहाद हाकिम का इस्तीफा हो गया। फिरहाद हाकिम करीबी ममता बनर्जी के, इनको लेकर भी कई लोगों की नाराजगी थी। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रो, आप मुझे बताया जा रहा है ममता बनर्जी के घर पर हैं, वहां पर भी बैठक चल रही है और बड़ी खबर फिराद हकीम का इस्तीफा, इसके मायने समझाएं।
2: काकुली घोष दस्तेदार ने इस्तीफा दे दिया पार्टी के पद से। अब फिराद हकीम ने यह कह दिया है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं मेयर के पद से। ममता बनर्जी से उन्होंने पूछा और ममता बनर्जी ने यह स्वीकार भी कर लिया है। तो औपचारिक तौर पे अब फिराद हकीम मेयर के पद से वो रिजाइन करेंगे। और आज महत्वपूर्ण डिसीजन ये भी हुआ है, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कमिटीज है पार्टी के, जितने भी मोर्चे हैं, सबको डिसॉल्व कर दिया गया। और मुझे पीछे मैं दिखा दूं, ममता बनर्जी का कालीघाट का घर है, यहां पे बहुत बार इतने सालों से हम लोग कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वहां का जो स्थिति है। लेकिन जो तांता लगा होता था लीडर्स का और तृणमूल कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप का, आज वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 80 में से 60 विधायक तो दूसरे खेमे में चले गए हैं। और यहां पे कुछ चुनिंदे कुणाल घोष, दोला सेन, चंद्रिमा भट्टाचार्य, इन जैसे कुछ चुनिंदे लीडर्स जो है, सीनियर एमएलए एमपीज और लीडर्स, वो अंदर है। अभिषेक बनर्जी भी अंदर है। और जब अभिषेक बनर्जी यहाँ पे आज आए शाम को 4 बजे मीटिंग करने ममता बनर्जी के साथ, तो उनका जो घर है यहीं पे बगल में कालीघाट में, वहां पे ईडी का छापा पड़ गया। अब उनको प्राइमरी जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है उसमें समन भेज दिया गया है, एक ही समय पर वो हो रहा है। तो अभिषेक बनर्जी के लिए समय तो बिल्कुल खराब जा रहा है, आज का दिन उनका बुरा जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के जितने भी विधायक है चुनिंदे, 2/3 मेजोरिटी, वो उनके खिलाफ वीटो कर दिया है। अब ममता बनर्जी का
1: अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 15 जून को बुलाया है। एक और खबर इस वक्त आ रही है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले में ये पूछताछ की जाएगी। पहले विधायकों के दस्तखत को लेकर एक बवाल मचा हुआ था, इस बीच ईडी ने अब उन्हें 15 जून को बुलाया है और अभिषेक बनर्जी एक तरह से लग रहा है कि एक चक्रव्यूह में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक के घर आज ईडी आई थी, उन्होंने 15 जून को उनको तलब किया है। और भर्ती घोटाला, हमने आपको बीते दिन भी तस्वीरें दिखाई थी, 2-3 जगहों से तस्वीरें आई थी कट मनी लौटाने की, और ऐसे में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जिन पर अब मामले चल रहे हैं, और ऐसे ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले में अब ईडी ने 15 जून को अभिषेक बनर्जी को समन किया है। वहीं दूसरी तरफ ये तमाम विधायक अड़ गए हैं, तो पार्टी से भी एक तरह से, अगर 60 विधायक 80 में से एक तरफा होकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खड़े हो जाएं, कहें कि ममता बनर्जी तो हमें स्वीकार है, वो हमारी एडवाइजर रहे, वो हमारी नेता रहे, कुछ हो रहा है क्या वहां पर, कोई सुबुगाहट है? इंद्रजीत जल्दी से बताएं, उसके बाद से मैं जाऊंगी, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, तापस के पास जाऊंगी।
2: देखिए, अंदर ममता बनर्जी के घर के अंदर मीटिंग का सिलसिला तो चल रहा है। सुबह से मैंने बहुत सारे सीनियर तृणमूल के नेताओं को फोन करने की कोशिश की, उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश, सब अपने घर में घुसे हुए थे। मदन मित्रा हो, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, अब उनका सोचिए क्या होने वाला है कि उनको ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए नॉमिनेट किया था, और जो साक्षर था उस चिट्ठी में अभिषेक बनर्जी का था। दो तिहाई जो लीडर्स है अभी एमएलएज है, उन्होंने ये फेंक दिया है, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको नहीं मानते। तो शोभनदेव चट्टोपाध्याय बहुत ही वेटरन लीडर, अब उनका क्या होगा किसी को नहीं पता। फिराद हकीम जो आज शुभेंदु अधिकारी से मीटिंग करने गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में, कुणाल घोष भी गए थे, शुभेंदु, अब फिराद हकीम ने रिजाइन कर लिया है। और जैसा कि आपने कहा, अभिषेक बनर्जी के घर में ईडी का छापा पर ईडी आ गई, नोटिस समन पकड़ाने 15 तारीख को उनको जाना है, 8 तारीख को उनको सीआईडी का समन है। तो सीआईडी ईडी सब इस वक्त अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उतर गई है प्रोब में। तो एक झटके में आप कह सकते हैं अभिषेक बनर्जी का जो साख था, पॉलिटिकल जो पावर था पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वो एक झटके में खत्म होता हुआ दिख रहा है। और अब ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा धर्म संकट है, वो अपना पार्टी को बचाए या अपने भतीजे को बचाए।
1: बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है। तापस, आपके पास क्या खबर है?
3: जी देखिए, एक के बाद एक जो जिस तरीके से लोग बगावत पर उतर आए हैं, ये कल सुबह क्या होने वाला है ये समझना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मेरी बात हो रही थी ऋतुव्रतों से, तो वो ऑफ रिकॉर्ड कह रहे थे कि और कई सारे नेता हैं जो बातचीत कर रहे हैं, तो अगर ये 60 की संख्या जो है यह और ऊपर जाती है तो फिर तृणमूल का जो अस्तित्व है वही संकट में आ जाएगा। एक वर्चस्व रहा है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के राजनीति में, लेकिन शायद ही किसी ने कभी सोचा था कि ममता बनर्जी के साथ भी ये हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक चुनौती है, एक तरफ भतीजा तो दूसरे पर अपनी पार्टी की जो अभी स्थिति है, ज्यादातर लोग ये कह रहे कि उनके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम एक नया तृणमूल कांग्रेस देखने वाले जिसकी अगुवाई शायद ऋतुव्रत बंदोपाध्याय करेंगे, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पे ये सारे जो 60 विधायक हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ही उनकी नेत्री है और वही उन्हें आगे लेकर जाएंगे, उन्हें एडवाइजर के तौर पर चाहती है। लेकिन कितना वो अभिषेक बनर्जी को चाहते हैं, ये जब मैंने जावेद खान से पूछा था जो एक बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, पुराने साथी है ममता बनर्जी के, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस पार्टी में
1: टीएमसी में उठापटक पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज, ममता की निर्ममता से टीएमसी तृण हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी वाले उप मुख्यमंत्री टीएमसी में उठापटक पर अपनी तरफ से टिप्पणी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। उनका ये कहना है कि ममता की निर्ममता की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अनुपम, जल्दी से आपसे कमेंट में इस पर चाहती हूं, क्योंकि अब बड़ा चैलेंज तो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैंने देखा ये ऋतुव्रत बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने ऋतुव्रत बैनर्जी ने कहा कि हम उनको अपना एडवाइजर चाहते हैं, ये किस भूमिका में अब ममता बैनर्जी को चाहते हैं ये लोग, इसका क्या अर्थ निकाले?
0: ये देखिए, इसका जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी शायद ही ये जो प्रपोजल है, ये जो अपील की गई है, इसको मानेंगी, और ऐसे में जब वो परिस्थिति आएगी जब ममता बनर्जी नहीं मान रही हैं, तो ये लोग खुद को, जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से 2022 में हमने देखा था कि एक धड़ा खुद को असली शिवसेना बता रहा था, तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला उसी दिशा में जा रहा है और कोर्ट में भी जाने वाला है ये मामला। अगर ममता बनर्जी नहीं मानती है तो कोर्ट में जाएगा, महाराष्ट्र के सिलसिले में भी यही हुआ था, अंत में सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला। तो ये फिलहाल तो ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि जिस तरह की अपील इन लोगों ने की है ममता बनर्जी से, एक तरह से उनके आदेश को डिफाई किया गया। सबसे पहले दो लोग जिनको निष्कासित किया गया था, संदीपन साहा और ऋतुव्रत, उनको तो पार्टी से ही निकाल दिया गया, लेकिन ऋतुव्रत को ही इस पूरे धड़े ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। अब यही धड़ा ममता बनर्जी से अपील कर रहा है कि आप हमें मान्यता दें और हमें गाइडेंस दें। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए बड़ा मुश्किल है इस बात को मानना, क्योंकि जिस उसमें इस पूरे धड़े ने काम किया है, और ममता बनर्जी ने जैसे शोभनदेव चट्टोपाध्याय को बनाया था लीडर ऑफ अपोजिशन, वो उनकी बात को पूरी तरह से नकार दिया गया है। तो अगर ममता यहाँ पे ये बात मान लेती है तो आने वाले दिनों में इसी धड़े की बात ममता बनर्जी को माननी होगी, और जहां तक ममता बनर्जी को मैं जानता हूं, संभवतः वो इस अपील पर राजी नहीं होंगी, और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस में असली तृणमूल कांग्रेस कौन है लड़ाई वो शुरू हो जाएगी।
1: बिल्कुल, असली तृणमूल कौन है इसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप तीनों बने रहिए, अगर कोई भी जानकारी होती है तो फौरन इशारा कीजिएगा। वहां पर खासतौर पर ममता बनर्जी के घर पर इंद्रो लग रहा है कि कुछ सुगबुगाहट है, कुछ होता है तो इशारा कीजिएगा। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय सरकार नेता टीएमसी के जुड़ गए हैं। मीता चक्रवर्ती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ने वाली है। हमारे साथ तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रसून आचार्य भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आपके पास आ रहे हैं, अब तो ममता बनर्जी को यह तय करना है कि अपने भतीजे को की तरफ जाएंगी या पार्टी बचाएंगी, क्योंकि ये नेता भी कह रहे हैं कि वो हमारी लीडर हैं, अभिषेक बनर्जी उनको स्वीकार नहीं है। क्या पार्टी और पार्टी के चुने हुए विधायकों की मंशा ज्यादा अहमियत नहीं रखती है ममता बनर्जी के लिए?
4: देखिए, ममता बनर्जी एक सिंबल है, ममता बनर्जी एक पार्टी है, दल है, ममता बनर्जी एक नेत्री है, और तृणमूल का मतलब जनता और जनता का मतलब ममता। मैं आपको खोल के बताता हूँ, ये जितना भी गया है ना, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी का सिंबल और दल का नाम, ये दोनों अगर हट जाएंगे तो इसको जमानत जब्त हो जाएंगे, मैं आपको एकदम खोल के बता रहा हूँ। और अगर पार्टी चला जाएंगे तो अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको ना उद्धव जी से हम लोग से रोने पड़ेंगे, ना शरद पवार जैसे रोने पर, हम लोग रोने की जरूरत नहीं। मेरे पार्टी का नेत्री वही एक, मतलब जब सिंबल है वही एक पार्टी है, वही एक नेत्री है, और तृणमूल का मतलब जनता, जनता का मतलब ममता। आपको मैं बताना क्यों चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं इस कारण में, आप जितना तोड़ेंगे हम उतना जोड़ेंगे। अब जितना तोड़ के जाओगे हम उतना नेता तैयार करेंगे, अपने प्रोडक्शन फैक्ट्री है नेताओं को तैयार करने के लिए, दीदी के पास में है। कल अब देखे कितना जनता, कल हजारों नहीं मतलब ये 10 से 15 हजार आदमी कल ये शॉर्ट नोटिस में आया है, तो ये तो सामान्य एक टेलर।
1: तो ये आप शहजाद जी को बता रहे हैं, अपने विधायकों को बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आप ही के विधायक, एक बार दिखा दीजिए, 3 बार ममता बनर्जी ने जब पार्टी के, संजय जी सवाल सुन लीजिए, अलग अलग टाइम पर उन्होंने पार्टी को बनाया, पहले बुलाया सब विधायकों को, तो पहली बार 10 नहीं आए, फिर 40 नहीं आए, फिर 60 नहीं आए, तो फिर चैलेंज तो उनके सामने विधायकों वाली है ना, वो नंबर दिखा दीजिए अगर हमारे पास है।
4: अगर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आज अगर सीएमसी सरकार भी बनाते थे ना, शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह जी को बात सही हो जाता था, हम सरकार बिल्कुल शपथ समारोह भी नहीं कर पाता, तो उसको पहले ही पार्टी टूट जाती, पहले से ये प्री प्लानिंग टूट से। क्यों? शुभेंदु अधिकारी भी बोला अगर दीदी पावर में आएंगे तो सरकार नहीं बनाना पाएंगे, अमित शाह भी ये बात बोले थे। कहां पर बोले थे मैं आपको ये भी बता दूं, तो नॉर्थ बंगाल में खड़ा होकर ये बात है, दीदी अगर सरकार में भी आएंगे तो सरकार बना नहीं पाएंगे, ये हकीकत आज जो है ना ये प्रूव हो चुका है। तो जिस तरह से खेला खेला, खेलो कोई बात नहीं, आप
1: ठीक है शहजाद जी, शहजाद जी
4: जनता को बीच में रहकर पार्टी खड़ा कर देंगे, आप लिख के रख दीजिए, हम दोबारा हुई
1: सर, लिख के कहाँ पे रखना है सर बताइए शहजाद जी बताइए, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इसके पीछे है।
5: पहले तो अंजना जी आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर और आपसे मेरा सवाल है कि ये कौन से टीएमसी फैक्शन से है भाई? कल मैंने देखा जो परसों तक आते थे प्रवक्ता वो बीजेपी की बोली बोलने लग गए, कल आपने बिठाया था किसी को, अब ये पता नहीं कौन सी फैक्शन से है। पहले नीचे डेजिग्नेशन तो डालिए कि ही इज फ्रॉम टीएमसी ममता और टीएमसी ऋतुव्रता, तो पहले पता तो चले अंजना जी। अच्छा देखिए अब जनता क्या बोल रही है, नहीं चाहिए ममता और अभिषेक के साथ नहीं हमारा चलता, ये बोल रही है जनता। और देखिए ना अब मैं आपको बताता हूँ, आज जो पूरा 10-15 मिनट आपने दिखाया ना, इसका एक निचोड़ निकालेंगे ना अंजना जी, और इतने मैंने आपके डिबेट देखे 6 बजे के, उसमें एक निचोड़ निकलता है, मत रहो इन एनी टाइप ऑफ भ्रम, जो करेगा परिवारवाद का दम वो पार्टी का होगा खेला खत्म। देखिए ना अंजना जी आप ही के 6 बजे के शो में कितने पार्टियों का अंतिम संस्कार हुआ, एनसीपी शरद पवार पुत्र मो पुत्री मो में गई, उद्धव सेना पुत्र मो पुत्री मो में गई, डीएमके पुत्र मो में गई, कांग्रेस पुत्र मो में गई, ये जो सन SON को राइज करने के चक्कर में पार्टी का SUN सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो ये सन राइज के चक्कर में ही सनसेट हो रहा है, और यही टीएमसी के साथ हुआ। अभी 2-3 में लॉजिकल और पॉइंटेड बात करना चाहता, एक तो अंजना जी आज की डिबेट में आप मुझे नहीं भी बुलाती तो भी चलता, क्योंकि मेरा क्या लेना या क्या देना, ये तो इंटरनल फैक्शन फाइट है इन दोनों के बीच में। अरे भाई बताइए कि जमीन चोरी जॉब चोरी के बाद अपने विधायकों का सिग्नेचर चोरी कर दिया, और ये आरोप बीजेपी ने नहीं लगाया है भाई, ये आरोप उनके साहा जी ने, ऋतुव्रता जी ने, और बाकी उनके बहरुल इस्लाम नाम के मुस्लिम विधायक ने लगाया है, 60-60 लोगों के सिग्नेचर फॉल्ज कर दिए। अभिषेक बैनर्जी एमपी है वो लेटर दे रहे कि मैं इनको नियुक्त कर रहा हूं एज ए LOP, वो कौन होते हैं नियुक्त करने वाले भाई, LOP नियुक्त करने के लिए वहां के विधायकों का सिग्नेचर और विधायकों का लेटर चाहिए, वो तो दिया नहीं इन्होंने, उन्होंने वहां पे फोर्जरी कर दी। अच्छा चलिए इसको भी एक सेकंड असाइड रख दीजिए, तो अंजना जी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था आपके डिबेट में ही आपके चैनल पे ही, ये काकोली घोष दस्तीदार, शांतनु सेन, सुखेंदु शेखर रॉय, इंद्रनील सेन, लेलबी राय, अरूप चक्रवर्ती और 100 से ज्यादा कॉर्पोरेटर टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और सब बीजेपी तो नहीं है, बीजेपी तो बोल रही है कि हमको कोई नहीं चाहिए, तो हमारा क्या लेना क्या देना। पर सवाल ये बनता है कि देखिए आज ममता बनर्जी उस पॉइंट पे खड़ी है, अभी आपके रिपोर्टर ने बोला ये पॉइंट पे खड़ी है और उस पॉइंट से आपको तय करना है, वो ऋतुव्रता बोल रहे हैं एडवाइजर बन जाइए पार्टी के साथ रहिए और वहां पे भतीजा, तो उनके पास एक यक्ष प्रश्न है, मैं भतीजा चुनू मैं पार्टी चुनू भाई, अगर आप पार्टी
1: ये हमने
5: के साथ
1: शो का भी नाम रखा है, संजय जी इस पर एक छोटा सा जवाब दीजिए ना, फिर अब मीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, मीता चक्रवर्ती प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद में तौसीफ खान और प्रसून जी के पास भी जाऊंगी। काकुली घोष आप बताइए कितने साल से थी वो ममता बनर्जी के साथ, आपको लगता है कि उनकी उनकी कोई वो नहीं है पार्टी के लिए, कोई भावना नहीं थी? काकुली घोष को तो कम से कम आप लोग मानेंगे ना कि भाई वो बड़ी लीडर थी, नेत्री थी, पार्टी का हित ही सोचेंगी, या आपको लगता है कि वो भी मतलब कल हमारे साथ बैठे हुए थे एक प्रवक्ता टीएमसी के, उन्होंने पुरोहित जी ने, उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे नेता ऐसे थे पपीता की तरह, बाहर से हरा अंदर से भगवा, पर काकुली घोष के लिए भी ऐसा बोलेंगे आप?
4: नहीं मैं एक चीज आपको बताने चाहता, जब मलाई खत्म हो जाता है ना, जब मलाई को उम्मीद नहीं रहता है तो दूसरी जगह मलाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और रह गया सजा पुनेवाला जी को, मैं एक बता, मादल विरपक्षप्पा भारतीय जनता पार्टी को विधायक 2023 मार्च महीने में 8 करोड़ उसको घर से मिला, और प्रशांत मादल को घर से 1,75,00,000 रुपया घर से कैश मिला। भ्रष्टाचार के मामले में मत बोलिए, ऊपर में थूकेंगे तो आपको शरीर में गिरेंगे, ऐसा मत थूकिए। और सीसा को घर में रह के दूसरे को घर में पत्थर मार मारिए, जो आपको आप ही उस नमूना के सामने आके खड़ा हो जाएंगे। भ्रष्टाचार तो क्या है, आप जिस दिन सरकार में जाएंगे सेंट्रल जितना जेल है तिहार जेल है एक्सटेंशन करने पड़ेंगे, और आपको आदत से नहीं 99% नेता भाग जाएंगे हिंदुस्तान छोड़ के। आप लिख के रख दीजिए, ज्यादा मत बोलिए हम कौन से टीएमसी, ममता टीएमसी में है, ममता जी का पार्टी ममता बनर्जी को साथ में है, चलिए कोई पार्टी में नहीं, हम ममता बनर्जी को साथ में है, हम सीधा तो आज तो आज नहीं आज
1: मतलब शिजाजी एक कमेंट जल्दी से इस पर।
5: हाँ देखिए अंजना जी, कल भी मैंने आज तक पे ही देखा था कि इतना भ्रष्टाचार क्या था कि जो 5-5, 10-10 हजार कट बनी लिया था, अब साउथ 24 परगना में टीएमसी के गुंडे वो लौटा रहे, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि क्या करते हैं भाई, अपने ही विधायकों का इंसल्ट, बोले मलाई खत्म हो गई तो चले गए। अरे भाई मतलब कि आपने बिकाऊ लोगों को बनाया था विधायक, टिकाऊ लोगों को नहीं बनाया था, ये क्या बोल रहे? और वो कौन सा बोल रहे, बीजेपी आ गए, ऋतुव्रता बोल रहे वी आर विद टीएमसी, आर एडवाइजर इज ममता, एडवाइजर ममता जी को बनाया है, तो क्या बोल रहे कि ममता बनर्जी के ही जो ये राजनीतिक चेले हैं वो सब मलाई खाने के लिए आए थे? मतलब ये खुद स्वीकार रहे हैं कि हमारी पार्टी मतलब द मलाई वाली कोकस, जो मलाई खाने वाली कोकस थी टीएमसी, ऐसे बोल रहे हैं आप? अपने लोगों का इंसल्ट मत कीजिए संजय सरकार, आपके नाम पे सरकार है पर कम से कम ऐसे तो मत बिहेव कीजिए।
4: तो मैं आपको बताना चाहता है, जब आपको पार्टी में भी मलाई खत्म हो जाएंगे ना तब भाग जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी लगेंगे बीजेपी।
1: देखिए नेताओं पर संजय जी, नेताओं पर आप इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं पर, मैं आपको यहीं पर रोक देती हूं, पता नहीं किस नेता को बुरा लग जाए और वो फिर इस पर बोलने लगे, लेकिन सवाल यही है कि भाई जा रहे हैं तो आप ही के विधायक जा रहे हैं, अभी अभी चुनकर आए हैं, चूंकि उन्होंने ये कहा। मीता जी मैं जल्दी से कमेंट आपसे लेती हूं, फिर तौसीफ जी के पास जाऊंगी। तौसीफ जी ये जरूर बताइएगा कि आप किस खेमे से हैं, क्योंकि अब पता करना पड़ेगा ऋतव्रत बैनर्जी या ममता बैनर्जी एंड अभिषेक बैनर्जी खेमा। लेकिन उससे पहले मीता जी आप इसको कैसे देख रही हैं, मीता जी कैसे देख रही है इसको कांग्रेस पार्टी, क्योंकि भाई विधायक तो उन्हीं के हैं, बड़े बड़े नेता गुस्सा कर जा रहे हैं, उनका कहना है अभिषेक बैनर्जी के हस्तक्षेप को लेकर नाराजगी है, पीएसी के इंटरवेंशन को लेकर नाराजगी है।
6: नमस्कार, नमस्कार अंजना जी,
1: नमस्कार।
6: पहले तो मैं ये चीज बता दूं कि कर्मा जो है ना, कर्मा इज अ वेरी फनी थिंग, यू नेवर नो व्हेन वन कैचेस अप विद वन्स कर्मा। ये ममता बैनर्जी थी जो यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुआ करती थी स्टेट वेस्ट बंगाल कांग्रेस में, ये ममता बनर्जी थी जो कांग्रेस को विधायक, कांग्रेस की सांसद, कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की कार्यकर्ता को कभी डर दिखा के, कभी कोई लोभ दिखा के, कभी ग्रीड, कभी डर, तोड़ तोड़ के उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की कांग्रेस बनाया, तृणमूल कांग्रेस को पावर में लाई। हाँ वो स्ट्रीट फाइटर है, वो लीडर है, पर क्या ये बात आप इनकार कर सकते हैं संजय जी कि ममता बनर्जी ने 98 में कांग्रेस को तोड़ के तृणमूल कांग्रेस का स्थापन किया था?
4: आपके एक भी विधायक नहीं आया
6: ये
4: था,
6: चीज आपके साथ हो रहा है,
4: आपके एक भी एमपी भी नहीं आया था, आपके एक भी विधायक भी नहीं आया था, एक भी एमपी नहीं। हम लोग खुद एमपी 7 MP जीते थे और बाई इलेक्शन में पहले पहले जीता था शोभम देव
6: चट्टोपाध्याय। इतने सालों में हमारी कोई विधायक कोई एमपी कितने नाम गिनाओ में, और कोई विधायक और कोई एमपी आपने नहीं लिया इतने सालों में, कांग्रेस की कोई विधायक और कोई एमपी आपने नहीं लिया।
4: विधायक अगर मलाई चाहिए तो हम क्या करेंगे?
1: अब संजय जी ने आज वर्ड ऑफ द डे चुन लिया है, इनके हिसाब से वर्ड ऑफ द डे है मलाई। पर मीता जी आप लोग कब तक इस बात की नाराजगी रखेंगे किसी से कि ये नेता हमारी पार्टी छोड़ के चली गई, ये नेता हमारी पार्टी छोड़कर चला गया, बड़ा बन गया। अनेकों ऐसे रीजनल क्षत्रप्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग पहचान बनाई, वो आपकी पार्टी को वहां पर खत्म करने में कामयाब हुए, अपना अस्तित्व उन्होंने इतना बड़ा कर लिया। किस किस का नाम लीजिएगा, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी, आज जितने बड़े रीजनल लीडर्स दिख रहे हैं सब कांग्रेस से निकले, उन्होंने अपनी जंग लड़ी। और ममता बनर्जी से आप ये नहीं ले सकते कि उन्होंने मतलब 3 बार वो लगातार सीएम रही, ये नो वन कैन टेक फ्रॉम हर।
6: एक्नॉलेज किया कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर थी, आज भी है, और पर ये बात भी सच है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को तोड़ के तृणमूल कांग्रेस का स्थापन किया था।
1: ठीक,
6: अभी आज अगर एक ही चीज उनके साथ हो रहा है तो शी इज गेटिंग पेड बैक, बट हाउएवर मुझे फिर भी ये बोलना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी का बेसिक एथॉस है, ये तमाम जो विधायक है इन्होंने कोई इंडिपेंडेंट विधायक की तरह चुन के नहीं आए, वो तृणमूल कांग्रेस के सिंबल से चुन के आए थे, ममता बनर्जी के नाम से चुन के आए थे। तो अगर आप इतिहास को छोड़ दे, इतिहास से जो मैंने पहले जो टिप्पणी की वो एक फिलोसॉफिकल टिप्पणी था, इट हैड अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पर आज के दिन में अगर आप देखें तो ये तमाम विधायक, अगर उनको सच में, अगर वो इंडिपेंडेंट विधायक होते तो मैं मान लेती, पर वो ममता बनर्जी के नाम पे तृणमूल कांग्रेस के सिंबल से जीते हुए विधायक है। आज जो हो रहा है वो बिल्कुल गणतंत्र के लिए और डेमोक्रेसी के लिए एक एक सैड डे है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक इथॉस के खिलाफ है। ठीक है, उनके पास 2/3 नंबर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनली दे कैन डू दिस, दे हैव द पावर, बट हाउएवर ये तमाम लोग, मुझे मुझे नहीं लगता ये लोग निर्दल और इंडिपेंडेंट होके चुन के आ सकते थे। वो ममता बनर्जी के सिंबल और उनके चेहरे के लिए उस सपोर्ट के साथ वो चुन के गए थे। तो आज जो दिन है वो डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल एक पॉजिटिव डे नहीं है।
7: ठीक है शहजाद जी, इसका एक जवाब आप दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि नाम तो ममता बनर्जी का था ना जिसके साथ ये चुन कर आए इस बार, और तब तो अभिषेक बनर्जी थे, अगर इतना ही बगावत करनी थी तो पहले करते, जीत के आए उसके बाद से।
5: अंजना जी, ये डीएमके के साथ लड़कर ही सीट लाए थे ना तमिलनाडु में, इनकी हैसियत थी अकेले लड़के लाने की, एक सीट नहीं मिलती इनको, और वहां पे धोखा दिया स्टालिन के पीठ में चूरा घोप के, तो अकेले लड़के जाते ना फिर स्टालिन के खिलाफ लड़ते और फिर लेकर जाके विजय को सपोर्ट करते। अच्छा, वो 6 BSP MLA ने सपोर्ट किया था राजस्थान में गहलोत सरकार, यू रिमेम्बर अंजना जी, और फिर क्या किया कि 6 BSP MLA सपोर्ट कर रहे थे, मायावती जी सपोर्ट कर रही थी, फिर भी उनको तोड़ के अपनी पार्टी में ले लिया, गजब। फिर MIM के 4 विधायक थे, RJD को सपोर्ट कर रहे थे, चारों को अपनी पार्टी में तोड़ के ले लिया, गजब। उद्धव सेना हमारे साथ लड़े, मोदी जी का बड़ा फोटो, फडणवीस जी का छोटा सा फोटो, दोनों लड़के वोट लिया, फिर हमारे पूरे अलायंस पार्टनर को लेकर भाग गए, गजब। ये हमको फिलोसफी सिखाएंगे। अच्छा अंजना जी, आखिरी कमेंट करना चाहता हूं मैं आज। देखिए अंजना जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज अगर आपके पास पार्टी है और पुत्र है, ये हर बार ये रही क्षेत्रीय दल, ये परिवारवादी दल केवल पुत्र और पुत्री को ही क्यों चुनते हैं, और यही इनका प्रॉब्लम है। हमारी पार्टी इंस्टीट्यूशनल पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा बेस्ड पार्टी।
7: शहजाद जी, कभी ये सवाल चिराग पासवान के लिए भी पूछ लेते, कभी ये सवाल अपना दल के लिए भी पूछ लेते, कभी ये सारों के साथ तो आप लोग मिलके चलते ही हैं, फिर इनसे क्या परहेज? अब तो ये पार्टियों का, तमाम पार्टियों का, रीजनल पार्टीज का यही हाल है।
5: देखिए अंजना जी, ऐसा है, मैं आपको कल पूछूंगा कि आप मीडिया के लिए जवाब दें, आप बोलेंगे नहीं मैं आज तक के लिए जवाब दूंगी, तो वैसे भी मैं बीजेपी के लिए जवाब दूंगा। अब मीडिया में कोई अगर कुछ गलत करता है तो उसका ठीकरा मैं आज तक और अंजना पे थोड़ी बोलूंगा। हाँ, पर ये बात सही है, उनको भी हमारी तरह चलना, सबको हमारी तरह चलना चाहिए, हमारी तरह इंस्टीट्यूशनल बने, मैं तो सबको बोलता हूँ, सब लोग आज तक की तरह फॉलो करें नॉर्म्स एंड गाइडलाइन, हमारी तरह भी फॉलो करें। पर मेरा सवाल ये है सिर्फ कि भाई आप करो तो चमत्कार, और कोई और करे तो, और हमारा तो इसमें ना लेना ना देना, ये केवल ये दिखाता है कि TMC जो है पहले जनता से रिजेक्ट हुई, अब जनप्रतिनिधि से रिजेक्ट हुई, और ममता बनर्जी के लिए ममता केवल अभिषेक के लिए है, नॉट फॉर द पार्टी। इसलिए अमूल इज कमिंग टू बंगाल, तृणमूल इज गोइंग आउट ऑफ बंगाल।
7: तौसीफ जी, तौसीफ जी, पहले ये बता दीजिएगा आप कौन से धड़े से हैं, ऋतव्रत बनर्जी या ममता बनर्जी?
8: अंजना जी, मैं उत्तर दूंगा, इस बात का भी उत्तर दूंगा। देखिए, बंगाल की राजनीति में एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। आप इस सिचुएशन को एकनाथ शिंदे फैक्शन से नहीं जोड़ सकते, जो शिवसेना में हुआ था, वहां पे तो बाल ठाकरे साहब स्वर्गवासी हो चुके थे, तो उनके दो गठ दोनों उनको क्लेम करते थे, एक तरफ उद्धव ठाकरे के मेरे पिता है वो मेरे लेगेसी है, एक तरफ एकनाथ शिंदे के वो मेरे नेता है वो मेरे लेगेसी है। यहां तो ममता बनर्जी अभी जीवित है, तो ऐसे में दोनों के साथ में जब आप एक तरफ, तो जब ऋतुपर्णा अपने आप को कहते हैं कि हम मेरी नेता तृणमूल, तो फिर ममता बनर्जी तो फिर नेता का बात मानी, वो मानते नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो जिद पे है कि भाई अभिषेक बनर्जी को वो इसके साइड वो छोड़ेंगी नहीं, तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। अब इसमें एक बहुत ही की फैक्टर देखिए क्या है अंजना जी, कि तृणमूल को मेजोरिटी वोट मुसलमानों का मिलता था, और ये सारे लोग जानते हैं।
7: एक सेकंड, आपको टोक रही हूं, कुणाल घोष कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, एक सेकंड।
9: एज कॉरपोरेशन प्रैक्टिकली दैट इज बीन डिफंक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, आज हमारा लीडर ममता बनर्जी उनको रिजाइन करने के लिए परमिशन दिया।
7: थैंक यू।
10: दीदी बोलवार पर गए थे तो लेट क्या ना बनी है तो आज
11: दीदी आज क्या दीदी जो लेके हुआ है क्या बोलेंगे जो नवान्न में सब जो मीटिंग
10: हमने पहले भी बोल चुके हैं कि हमको पता है तृणमूल कांग्रेस की मतलब है ममता जी और आम जनता तो आम जनता भी तृणमूल कांग्रेस में है ममता जी भी तृणमूल कांग्रेस में है
7: तो डॉला सेन को आप सुन रहे थे वो ये कह रही थी कि हमारे लिए ममता बनर्जी ही लीडर हैं जल्दी से आपको पहले सुना देते हैं ममता से बगावत करके करने वाले विधायक संदीपन साहा ने आज तक से बातचीत में क्या कहा है
12: देखिए 2/3 से ज्यादा एमएलए ने ये डिसाइड किया था तो आप पार्टी से निकाल रहे हो उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका विधायक पद खारिज हो जाता है अगर विधायकगण 2/3 से ज्यादा ये निर्णय लेते हैं कि ये विधायक एलओपी बनेंगे तो उसमें पार्टी का कोई से नहीं है ये परिषदीय दल का डिसीजन है जो आज लिया गया है
0: ममता जी अगर नहीं मानती है कहती है कि हम आप लोगों को नहीं मानेंगे तब क्या उस स्थिति में क्या करें
12: तब देखेंगे पहले उनको बोलने दीजिए कि नहीं मानेंगे ये तो उन विधायक जीते हुए विधायक तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो आज प्रिंसिपल ऑपोजिशन ब्लॉक बन चुका है वो ये डिसीजन लिए है
7: इधर जावेद अहमद भी क्या कह रहे हैं विधायक है वो भी और उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया है सुनिए
13: जिस दल में गणतंत्र नहीं रहे जिसमें डेमोक्रेसी नहीं रहे तो उस दल में रहना नहीं रहना एक ही बात है इसीलिए हम लोग जहां हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता जहां हमें बात नहीं सुनी जाती है जहां हमारे लोगों को मारा जाता है तृणमूल के कर्मियों को पिटाई किया जाता है और नेतृत्व चुप से बैठा रहता है उस दल के साथ नहीं रहना
14: टीएमसी का क्या भविष्य लगता है आपको
13: वो बताएंगे वो जो लोग वहां पर हैं अभी वो लोग बताएंगे
14: हमने अभिषेक बनर्जी का जो रोल रहा है उसे आप कैसे देखते आप तो कद्दावर
13: हम सुनिए ना हम अभिषेक बनर्जी को नहीं पहचानते हम ममता बनर्जी के साथ दल किया है ममता बनर्जी आज भी हमारी नेत्री हैं हम उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एडवाइजर होके हम लोग चीफ एडवाइजर के साथ बात कीजिए
7: तो जावेद अहमद खान कह रहे डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं हो तो रहने का फायदा नहीं इधर कोलकाता में ममता बनर्जी के घर पर बैठक खत्म हुई है जाहिर तौर पर ये एक इमरजेंसी बैठक ही समझिए क्योंकि अगर ऋत्विक बनर्जी जो कि अभिषेक बनर्जी विरोधी धड़ा है उसको उनको एलओपी बनाकर स्थापित कर दिया गया है और उनके साथ 59 विधायक हैं तो ये बहुत बड़ा इमरजेंसी सिचुएशन है ममता बनर्जी के लिए लेकिन उनको चूज करना है देखिए एक बार फिर से दिखाइए उनको तौसीफ जी एक छोटा सा जवाब जैसे ही हम रिपोर्टर जुड़ते हैं मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है बताएंगे हमारे सहयोगी इंद्रो वहां से जुड़ रहे हैं तौसीफ जी देखिए छोटा सा एक जवाब दीजिएगा हम लोग को आपकी बात से समझ में आ गया कि आप ममता बनर्जी सपोर्टर हैं लेकिन ममता बनर्जी को भी तो अपने विधायकों का सपोर्टर बनना चाहिए ना पार्टी उन्होंने विधायकों और नेताओं के साथ ही खड़ी की है ना भतीजे के साथ थोड़ी खड़ी की है तो आज सवाल है शी हैज टू चूज अपने विधायकों वो तो कह रहे हैं कि हमको वो चाहिए अपने नेता के तौर पर हालांकि वो भी लग रहा है मतलब मार्गदर्शक मंडल में डालना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि हमारी एडवाइजर बन जाएं
15: अंजना जी देखिए ये अभी ऐसा हो गया है कि माँ जीवित है और माँ के सारे बच्चे संपत्ति का बंटवारा करना चाह रहे हैं अब इस बंटवारे में माँ जो है भाईपो के पास जाएंगी या अपने पार्टी वर्कर के साथ साथ में जाएंगी या माँ ही फैसला कर सकती है भाई मैं आपको अपनी कहानी बताओ अंजना जी मैंने भी तो पार्टी से टिकट मांगा था बीच में तो ये लेकर के चले आए थे अभिषेक बनर्जी के द्वारा लाए गए वो सारे आईपैक वाले आज क्या हाल हुआ पार्टी का आईपैक से ही सारे लोगों को जो है शिकायत है अभिषेक बनर्जी से ही सारे लोगों को शिकायत है उम्मीद करता हूं कि ये जो हालत हुई है इसके बाद हो सकता है लेसन लर्न वाला सेशन हो रहा होगा अभिषेक बनर्जी को लेकर के लेकिन क्या फैसला है ये तो ममता बनर्जी खुद ही ले सकती है उनके उनके फैसले को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता हो टीवी डिबेट द्वारा या कोई नेता उनका दावत नेता चाहे वो जावेद खान हो या कोई और हो जाकर के उनके फैसले को इन्फ्लुएंस कर दे मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है वो एक मास लीडर रही थी उनके बीच में तो दीवार खड़ा कर दिया गया मास लीडर ऐसी होती थी वो कि मोहल्ले मोहल्ले में वो अपने वर्कर को नाम से जानती थी लेकिन क्या फिर उसी वर्कर को ममता बनर्जी से 2021 से 2026 तक बीच में मिलने दिया गया नहीं मिलने दिया गया 2021 से पहले वो मिलती थी
7: आपका भी वही हाल लग रहा है बिछड़े सभी बारी बारी आपका भी तौसीफ जी वही हाल लग रहा है बिछड़े सभी बारी बारी
15: मैंने तो इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किया हूँ मैं तो ना इस तरफ रहा ना उस तरफ रहा मैंने तो पार्टी इलेक्शन से पहले इंडिपेंडेंस कर लिया हूँ अब आगे क्या फैसला तो वो वक्त बताएगा।
7: प्रसून जी, पर इसका क्या अर्थ है, ये जो 59 विधायक है उनमें से आपने जावेद अहमद और सबको सुना ही किस तरह से वो बात करें, अभिषेक बैनर्जी को तो बिल्कुल वो लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, उनको कहना है हमारी बात ही नहीं सुनी जाती थी, वो कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं पार्टी में बचा था, वही पहचानते ही नहीं, वो सीधा इनकार कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि भाई एडवाइजरी रोल में आ जाए, तो वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी आए भी तो मार्गदर्शक मंडल में, कैसे देख रहे हैं आप इसको?
16: देखिए अंजना जी, पहले बात ऐसे है कि अभी तो विधायक दल टूट चुके हैं, अभी संसदीय दल टूटने का कगार पे है। कुछ दिन के तीन चार दिन के अंदर मेरा जो खबर है 10 संसद एमपी लोकसभा का वो टूटने का मूड में है। वो अगर यूसुफ पठान इस्तीफा दे दे किसी प्रकार से तो 18 जो पार्लियामेंटरी पार्टी है लोकसभा का वो भी टूट सकता है। ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं पता नहीं है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंटरी पार्टी है वो अगर टूट जाएगा, जिस प्रकार से विधायक दल टूट गया तब उसका सिंबल भी छिना जाएगा। तो ममता बनर्जी को अभी क्या करना है उसको ही तैयार करना है। दो सलाह उनका पास है, एक कांग्रेस के साथ मर्जर हो जाए क्योंकि तब वो पार्लियामेंटरी पार्टी बचा सकते हैं, दूसरा है अभिषेक बनर्जी को नकार कर दे और अभिषेक बनर्जी जहां भी जाए चाहे जेल चला जाए कुछ भी हो जाए उसको छोड़ करके कोई बैक चैनल से बाकी जो विधायक है उसके साथ बातचीत करके उसको माना ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुस्लिम विधायक भी है। ममता बनर्जी ये दोनों रास्ता अगर चुन लेगा तो पार्टी बच सकता है, अदरवाइज जो पार्टी बनाया था ममता बनर्जी और पार्टी बनने का दिन हम डेली मेरा ड्यूटी था उनके घर जाना, कोई नहीं आता था, शोभनदेव चटर्जी आते थे, मणिशंकर आयर भी आके बैठ जाता था, कोई नहीं था। तो उसी से आज जो पार्टी पावर में आया 15 साल वो एकदम बिल्कुल टूटने का मूड में है। और ऋतुव्रत बनर्जी जो है वो उसको मैं तो स्टूडेंट लाइफ से भी जानते हूँ, देखिए सीपीएम से भी उसको हटाया गया था लेकिन वो शेक्सपियर करते बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, लेकिन बहुत धुरंधर है पॉलिटिकल मामला में, उच्च दिल्ली जाके भी बातचीत करके ही आया, ऐसा नहीं है इधर बैठ के कुछ कर रहा है। उसका खिलाफ जो केस भी है तो लोग ये लोग डराया गया था, 7 साल पहले वाला मामला भी है, जो संदीपान का पिताजी का खिलाफ भी केस खुल सकता है, लेकिन बाकी विधायक जो है उसका अगेंस्ट भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाला केस, और ममता बनर्जी खुद कहा है जो सीआईडी जाके पुलिस जाके घर में धमका रहा है डरा रहा है। यहाँ का जो कॉर्पोरेटर है काउंसिलर है जिला पंचायत का लोग है, डेली 100 आदमी अरेस्ट होने जा रहा है। 2021 का पोस्ट वायलेंस का केस है, एक तो केस का डर है एक तो धन बचाने का डर है, तो सब लोग ऐसे दौड़ भाग चल रहा है शुरू हो गया।
7: और मुझे तो लगता है कि पब्लिक का सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं ये विधायक, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमें स्वीकार रहे हैं। अब देखिए अब शहजाद जी लेकिन वो मार्गदर्शक मंडल में भेजने की बात कर रहे हैं जो मैंने उनसे भी पूछा था। उससे पहले एक बार इंद्रो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या कोई फैसला लिया गया है, कोई खबर आ रही है अंदर से, बैठक खत्म हुई है ममता बनर्जी की?
17: देखिए बैठक तो खत्म हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय जिनको नॉमिनेट किया गया है तृणमूल कांग्रेस की ओर से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रोल के लिए, वो कुछ देर पहले निकले तो हमने उनसे पूछा, बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं कुछ कह नहीं चाहते हैं निकलने के बाद, लेकिन इतना शोभनदेव चटर्जी ने कह दिया है उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है कि अंदर मूड क्या है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी रहेगी और ममता बनर्जी जनता के लिए है, जनता के समर्थन से पार्टी चलेगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेंस ये निकल रहा है कि जिसको जाना है वो जाए, ममता बनर्जी जब तक है तब तक हम लोग उस पार्टी को उसी तरह से समझाएंगे संभाल लेंगे। लेकिन सवाल सबके जाने का नहीं है, सवाल है अभिषेक बनर्जी का जो नंबर 2 है, क्या वो पार्टी में रहेंगे क्या वो जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का जो धर्म संकट है वो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त तृणमूल के अस्तित्व के लिए होता हुआ दिख रहा है।
7: आप काफी दिन से उनके पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, छोटा सा 2 लाइन का जवाब, आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी का अगला मूव क्या हो सकता है? क्या वो वाकई मोह भंग कर सकती हैं अपने भतीजे से? ईडी की टीम पहुंची हुई है, 15 जून को तलब किया गया है, बहुत सारे मामले अभिषेक बनर्जी पर, क्या उनको वो पूरी तरह से छोड़ के इन विधायकों की तरफ जाएंगी? ये भी कह रहे हैं एडवाइजर बन के आए, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एक मार्गदर्शक मंडल में ही उनको रखना भी चाहते हैं।
17: देखिए अंजना, जितना मैं ममता बनर्जी को पहचानता हूं और मेरा गट फीलिंग ये मुझे लग रहा है कि वो अभिषेक बनर्जी को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ नहीं सकते। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में एयर अपरेंट थे और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें जिस तरह से तृणमूल के अंदरूनी जो इक्वेशंस है, जैसे उसको सजाया गया है, वो ऑलमोस्ट लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी को ही वो हैंडओवर करना चाहती हैं। 2024 का अगर आप रिजल्ट देखें उसमें वो फोटो सबको अभी याद होगा, 24 के चुनाव में जब तृणमूल कांग्रेस को 29 एमपीज मिले तो ममता बनर्जी का फोटो था, बगल में अभिषेक बनर्जी थे और प्रतीक जैन थे आईपैक, और अब अभिषेक बनर्जी और आईपैक प्रतीक जैन, इन दोनों को लेकर सबसे बड़ा सवाल या निशान तृणमूल के अंदर है।
7: बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस खबर के लिए। हमारे साथ इंद्रो हमारे सहयोगी बने हुए थे, तमाम प्रवक्ता बने हुए हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए, और प्रसून जी भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि धमकियां मिली है विधायकों को। आ रही हूँ संजय दादा, दादा आ रही हूँ एक सेकेंड। शहजाद जी वो कह रहे हैं कि धमकियों की वजह से ये हुआ है।
5: अंजना जी वो बोलते हैं ना, ताउम्र टीएमसी के लोग यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी वो आईना साफ करते रहे। भाई 60 विधायकों के खिलाफ केस है क्या? और मुझे बताइए यूसुफ पठान, अभी वो नाम ले रहे थे, यूसुफ पठान का क्या केस है भाई? तौसीफ तो खुद चुनाव लड़े टीएमसी के खिलाफ, 400 वोट मिला इनको, 2 मस्जिद के वोट मिले। अब बताइए तौसीफ पे कौन सा केस था? हमने डरा है तौसीफ को कि जाकर लड़ो चुनाव अलग से? ऐसा कैसे बोल देते हैं लोग? तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप मेरी ओरिजिनल पॉइंट पे एनालिसिस कीजिए कि इंस्टीट्यूशनल पार्टी लाइक बीजेपी, जहां पर जो भी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक नया युग आता है, नितिन नवीन जी का युग आया है, अभी हमारी पार्टी में बहुत जीते बहुत आ रहे। और दूसरी है कि एक व्यक्ति एक परिवार के सारे चलना चाहते हैं, और जहां पर एक कमिटेड व्यक्ति भी है जैसे कि ऋतुव्रता इन दिस केस, या सुवेदु अधिकारी भी थे टीएमसी में, उनको दरकिनार करके मेरा भतीजा मेरा भतीजा मेरा भतीजा, तो फिर भाई भतीजे को संभालो, पार्टी जाएगी आज से, इसमें मेरा क्या लेना देना? पर अंजना जी एक और चीज है, मैं आपको आसानी से बता दूं, ऋतुव्रता इज ओरिजिनल टीएमसी, असली टीएमसी, अभी संजय सरकार इज टीएमसी ऑन टीवी, और ये हमारे तौसीफ है, ये है एक्स टीएमसी, तो ऐसा आप डेजिग्नेशन करके रख सकते हो, एक्स टीएमसी, टीएमसी टीवी एंड असली टीएमसी।
7: ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। और संजय जी अच्छा है कि आप मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो इंद्रो ने भी बताया उस पर भी तो बोलिए। अगर आप ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पीएसी के, मतलब आप आईपैक के किसी व्यक्ति की फोटो लगाएंगे, मतलब बाकी नेताओं की कोई हैसियत ही नहीं है।
4: देखिए शकुनी दुर्योधन दुशासन से 100 गुना अच्छा है भीम, उसको अकेल नहीं लेकिन गद्दार नहीं है। मिर्जापुर से 100 गुना अच्छा था कौन? सिराजदौला को बतन के साथ धोखा नहीं किया था। जवेद खान का अवैध निर्माण जब तोड़ा गया तो उस समय उसको याद आया है पार्टी तृणमूल कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं माने डेमोक्रेसी नहीं है। रह गया साजाद पुनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के पहले कहा गया था रामविलास पासवान को, एक तरफ से पारस को, एक तरफ से यह को, चिराग को, क्या खेल खेले थे आपने, भयानक खेल खेले थे आपने। ठीक है कोई बात नहीं शाहजाद जी, वो खेल आपको साथ भी खेला जाएंगे, हम देखेंगे उस समय कौन से बीजेपी में आप रहेंगे, बीजेपी ए नरेंद्र मोदी, बीजेपी ए अमित शाह, बीजेपी आर।
7: मेरे सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया तौसीफ जी, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं। अरे मैंने कहा कि अभिषेक बनर्जी और आईपैक के जो फाउंडर मेंबर है उनकी फोटो लगाए, इस पर सवाल था। बाकी नेताओं की कुछ हैसियत है कि नहीं?
15: अंजना जी रस्ते में, अंजना जी रस्ते में सड़कों में लोग से आप बात करेंगे वो बोलेंगे कि ममता बनर्जी सड़क की आंदोलन करके आई हुई नेता, उन्हें आईपैक की क्या जरूरत पड़ गई? ममता बनर्जी को आईपैक की जरूरत नहीं थी, अभिषेक बनर्जी को आईपैक की जरूरत थी, क्योंकि ये सारा पार्टी को कॉर्पोरेट स्टाइल में लेकर आना था। और आप कहते हैं कि वो गद्दारी नहीं की, आप कैसे कह सकते हो गद्दारी नहीं किया? एलिगेशन लग रहे हैं कि डेटा शेयर किया गया है, कौन डेटा शेयर कर सकता है? आईपैक डेटा शेयर कर सकता है, एलिगेशन लग रहे हैं। आप कैसे आज आपको उसको क्लीन चिट दे सकते हैं? क्या उस पर कोई एक्शन हुआ, कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुआ? उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कि आईपैक का कितना रोल रहा है इस चुनाव को हारने में। जब तृणमूल जीतती है 2021 में, पूरा का पूरा क्रेडिट आईपैक को दिया जाता है। हाँ मैं भी मानता हूं कि हाँ दिया जाए, तो जब 26 में हारी है तो आप उसको ब्लेम भी तो दीजिए, आप ब्लेम दीजिए आईपैक को, आप ब्लेम दीजिए अभिषेक बनर्जी को, ऐसे नहीं होता है। जनता तो आखिरकार आपको जनता की अदालत में आना है वोट मांगने के लिए, जनता सब देख रही है।
4: 10 सेकंड सुनिए टॉपिक पर, 10 सेकंड सुनिए, उसका जवाब दीजिए। अगर आईपैक इतना बड़ा हैसियत रखता, मेरे यहाँ एसयूसीआई बोल के एक पार्टी है, उसको सत्ता में लेके दिखा दे तो हम मान जाएंगे आईपैक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। अगर बूथ में आपको एजेंट नहीं देंगे, 4-4, 10-10 कार्यकर्ता नहीं, किसी को सत्ता में आईपैक
7: गिरा सकता? अरे उनको टिकट नहीं मिला, वो कह रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला आईपैक की वजह से, और आप कह रहे हैं कि वो
15: 20 दिन पहले से आईपैक गायब हो गया।
4: सही बोल, हम तो बोल रहे हैं आईपैक का कोई मीता
7: जी,
4: मीता जी नहीं है,
7: मीता जी एक कमेंट जल्दी से आपसे।
6: देखिए देखिए ये बात सच है कि टीएमसी के जो तमाम विधायक थे, तमाम लीडर्स थे, उनके पास काफी लोगों के पास डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स रहा है। काफी लीडर्स के और काफी विधायक के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशंस चल रहा है, करप्शन की एलिगेशंस है, सीरियस करप्शन के एलिगेशंस है। तो मुझे नहीं लगता ये सब कुछ ऑर्गेनिकली हो रहा है। इसमें पीछे क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्या ऑपरेशनल सपोर्ट, क्या पुलिस का क्या भूमिका, क्या ईडी सीबीआई का क्या रोल, ये तमाम चीज देखना पड़ेगा। ये कोई ऐसे नहीं है कि एक महीने के अंदर टीएमसी टूट रहा है। लोग वल्नरेबल है, जो लीडर्स है उनके खिलाफ काफी सारे एलिगेशंस है, और ये एलिगेशंस को एक हथियार बना के, क्योंकि बीजेपी तो ईडी सीबीआई को एक टूल्स ऑफ नेगोशिएशन मानते हैं, ये तो अपने
7: लेकिन देखिए ना, अरे देखिए ना मीता जी, अधीर बाबू तो लगातार सवाल उठाते रहे, ऐसे लोगों को क्यों टिकट देना है जिन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं। ठीक है मीता जी, और अभी सबसे बड़ी बात है, 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी आ रही है, क्या कीजिएगा आप लोग?
6: हाँ जी फिर से बोलिए।
7: 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी आ रही है, अब उनके साथ विधायक ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करिएगा?
6: देखिए अगर ममता बनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो की तरह आ रही है तो वहां पर डिस्कशन होगा, वहां पर आलोचना होगा। ये तो ये सिचुएशन जो है हर रोज इवॉल्व हो रहा है, और जो रितोब्रत बनर्जी जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन को लेके बैठा हुआ है, आप पूरा इन्वेस्टिगेट करके देखिए उनके खिलाफ क्या क्या चार्जेस है।
7: ठीक है, मॉलेस्टेशन
6: और फीमेल,
7: आप लोग बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं मीता जी, यूसुफ पठान को लाकर अधीर बाबू को किस तरह से हटाया गया था उनकी सीट पर, मतलब इतने आपके कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। शहजाद जी सिर्फ 2 लाइन, टाइम खत्म हो चुका है।
5: इंदिरा गांधी ने खुद ने 1968-69 में अपनी पार्टी तोड़कर वो खुद अपनी पार्टी के फैक्शन की नेता बन गई, तब तो वो सब कुछ अच्छा था। और देखिए दूसरी बात, ये राहुल गांधी आज सबसे ज्यादा खुश है, डीएमके मुक्त, टीएमसी मुक्त, लेफ्ट मुक्त इंडिया अलायंस हो गया है। अंजना जी, मीता जी बहुत खुश है, इनके चेहरे पर मत बैठ जाइए,
7: बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा के लिए। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी को तय करना है कि विधायकों के साथ जाएंगी, 59 विधायक बागी होकर अपना एलओपी बना चुके हैं, या फिर अपने भतीजे को वो साथ देंगी। इस बीच आपको बता दें आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा मेरे साथ, आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी अब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगी या भतीजे के साथ नई पार्टी बनाएंगी। इसके बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली में 21 लोगों की जान लेने वाले गेस्ट हाउस की तरह और कितने हत्यागृह चल रहे हैं, और आखिर में आपको बताएंगे कि ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता बेपटरी क्यों हो गई और दोनों ने एक दूसरे पर फिर से हमले क्यों किए। देखते रहिए आज।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
20: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
21: Jack, come home. It's supper time.
20: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
22: Hey Jack, could you play that one song with the words?
20: Jack FM, playing what we want.
23: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
24: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
25: लायन डेट नट बाइट्स।
26: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
27: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: In association with Monte Carlo, it's the way you make me feel. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
15: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो CBI ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके CBI रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्विशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल CBI अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हादसा या हत्या, दिल्ली के भीषण अग्निकांड की एक और घटना के बाद उठा ये सवाल नया नहीं है, लेकिन अफसोस हर ऐसी घटना के बाद ये सवाल और बड़ा हो जाता है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के पास हौजा रानी गांव में बने जिस होटल फेरिश्टेन इन में आग लगी, वहां हर वो वजह मौजूद थी जिस पर किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति ने भी ध्यान दिया होता तो बेकसूर जिंदगियां मौत के मुंह में नहीं जाती। सिर्फ 6 कमरों के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस हासिल कर 25 कमरों का होटल चलाया जा रहा था। इसके बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट में फायर विभाग का एनओसी तक नहीं था। होटल के मेहमानों के लिए सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। कमरों की खिड़कियां पर्याप्त तौर पर बड़ी ही नहीं थी। हादसे के बाद हालात ये हुए कि स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए ताकि लोग नीचे कूदकर अपनी जान बचा सके। कोई आग और धुएं के बीच सीढ़ी के जरिए भी नीचे उतर सका तो एक तस्वीर में 6 मंजिला इमारत की छत पर एक व्यक्ति आग से बचने के लिए फंसा हुआ नजर आया। होटल फ्लरिश स्टे एंड इन में ज्यादातर आसपास के मैक्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने आए मरीजों के रिश्तेदार रुकते थे। इनमें बहुत सारे विदेशी नागरिक थे। मृतकों में विदेशियों की संख्या ही ज्यादा है, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आलम देखिए कि आरोपों के मुताबिक बेसमेंट में लगी ग्रिल का ताला बंद था जिससे बहुत सारे लोग बाहर निकल ही नहीं सके। यही नहीं, ये होटल जिस जगह पर मौजूद है वहां बिजली के तारों का जाल लटका हुआ था। वैसे तो प्रशासन का दावा है कि होटल में आग की सूचना मिलते ही आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन की फौरन कार्रवाई हुई, लेकिन स्थानीय लोग देरी का आरोप भी लगा रहे हैं। देश की राजधानी में हुए इस भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस घटनाओं की जिम्मेदारी कब और कौन लेगा। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री आशीष सूद घटना स्थल पर पहुंचे, वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए।
3: और जिनके अंदर जरा सी भी वायलेशन है, हमारा सरकार दिल्ली सरकार का पानी बिजली का कनेक्शन तो तुरंत कटवाइए।
2: दिल्ली में बीजेपी के ही शब्दों में ट्रिपल इंजन सरकार है। केंद्र, राज्य और MCD में बीजेपी सत्ता में है। स्थानीय विधायक भी दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय हैं, लेकिन सुनिए हादसे के बाद इनका तर्क क्या है। सवाल यही है कि ऐसा हादसा ना हो इसके जिम्मेदार लोग सोते क्यों रह गए, और क्या अब आगे जो कार्रवाई होगी वो एक नजीर बन सकेगी। आज तक ब्यूरो।

0: अपनी ही पार्टी के विधायकों से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका। इसी पर आप देख रहे थे बहस हल्ला बोल में, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। अब देखिए सात तक मारिया के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंगाल में ममता बैनर्जी को लगा बड़ा झटका। बागी गुट के नेता ऋतव्रता बैनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष। 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ। राहुल और खड़गे मौजूद। पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में मालविया नगर के एक होटल में भीषण अग्निकांड। मरने वाले 21 लोगों में कई विदेशी, 23 घायल। मेयर ने 3 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट। आज तक से दिल्ली के डेप्यूटी फायर चीफ का खुलासा। इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं। 6 की जगह बने थे 25 कमरे। मालिक लवकेश की तलाश में घर

0: तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। भयानक आग धधक रही है, धुएं का गुबार दम घोटने वाला है। और इस भयानक ज्वाला से बचने के लिए लोग इमारतों से कूद रहे हैं। किसी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, किसी ने चौथी मंजिल से छलांग लगाई, किसी ने पांचवी मंजिल से छलांग लगाई। ये दहला देने वाली तस्वीरें हैं। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है, लोग इमारत से गिरने वाले लोगों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। तबाही का मंजर है। दिल्ली के मालवीय नगर में 6 मंजिला होटल फ्लरिश में बुधवार की सुबह करीब 8:50 पर आग लगी। आग लगने की बात तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले आग ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी और फिर आग के जद में मिनटों में ही पूरी इमारत आ गई। होटल्स में रह रहे लोगों में चीख पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए इमारत से कूदने लगे।
1: यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन है वो काफी गंभीर है, क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग है ऊपर से लेकर के नीचे तक वो जल गई है। और इसके साथ साथ जो बेसमेंट में जहां पर रेस्टोरेंट की बात बताई जा रही है, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे एरिया में ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें नाइजीरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं या फिर दूसरे अन्य कंट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग यहां पर रुके हुए थे। और उसके बाद उनकी बॉडीज जो है यहां से निकली है, प्रत्यक्षदर्शी इस तरीके की जानकारी दे रहे थे।
0: किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जो था वो सिर्फ बर्बादी थी, तबाही थी और मौत का तांडव था। बाहर से लोग देख रहे थे कि कैसे होटल में रहने वाले राख हुए जा रहे हैं। कोई छत की ओर भागा था, कोई खिड़की से निकला था, किसी को तो मौका ही नहीं मिला बचने का।
2: फ्लरिश इन होटल दिखा रहे हैं, रितेश मिश्रा ये दिखाइए, ये होटल है, एग्जिट एंट्री गेट ही है। अब अगर अदर साइड दिखाएंगे, एग्जिट एंट्री गेट नहीं है। खिड़की दिखाइए जरा रितेश मिश्रा, हर खिड़की टूटी हुई है। ज्यादातर विदेशी नागरिक थे, नाइजीरियन थे, साउथ अफ्रीका के, सोमालिया के, वो इस होटल में थे। और जो हमें जानकारी मिली, जो तस्वीर आपने देखी छत पर, ये छत दिखाइए जरा आप, छत पर
3: इनका आग बेसमेंट में लगी है।
2: छत के ऊपर भी लोग खड़े थे,
3: छत के ऊपर भी लोग जान में चाह गए, पर वो कैसे आएंगे, वो कूद के ही आ रहे थे। और यहाँ पे बेसमेंट इन्होंने इल्लीगल तरीके से बनाया है।
0: हर कोई स्तब्ध था, हर कोई सहमा हुआ था, हर आदमी के चेहरे पर शिकन थी, हर आदमी दहशत में था, हर आदमी बदहवास। खौफ के साए में एक एक सांस पर आखिरी होने का शक हो गया था। आग थी ही ऐसी जिससे बचने के जतन नाकाफी नजर आ रहे थे। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची, तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी, कई लोग राख हो चुके थे।
4: और जो हमारी पहली टीम वहां पर पहुंची थी, उसने जाते ही फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों शुरू करा। और बेसमेंट से सबसे पहले उन लोगों ने 6 आदमियों को निकाला, उसके बाद आग पर काबू पाते हुए वो अंदर घुसे और जो ऊपर लोग फंसे हुए थे उनको भी फिर रेस्क्यू किया गया। टोटल 37 लोग इसमें दिल्ली फायर सर्विस ने रेस्क्यू किए हैं।
5: क्या आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअल्टी इसमें काफी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया।
0: सबसे दर्दनाक चीज ये हुई कि होटल में एग्जिट गेट नहीं था, यानी बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिन्होंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा वो हतप्रभ थे।
6: 8:20 पर जब मैं यहाँ पर आया अपनी शॉप खोलने के लिए, तो मुझे यहाँ दूर से धुएं का ऐसा आया कि मेरा दम घुट रहा था। मैंने फल वाले से पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, धुएं का गुबार? तो वहां पर उसने बोला कि आग लग गई है। तो फिर मैंने दुकान खोलना छोड़ करके मैं चला गया यहाँ पे, लोगों के साथ मिलके हमने लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। हमारे साथ दिनेश यादव बीट कांस्टेबल था, उसके हाथ में उसने हथौड़ी अरेंज करी, कहीं से हथौड़ी से हमने खिड़कियां तोड़ी और पत्थर मार मार के सारे विंडोज तोड़े। और जो विदेशी नागरिक हमारे यहाँ पे आए हुए थे उनको हमने बचाया यहाँ से, 15-20 लोगों को जंपिंग कराया, जिसमें एक छोटी बिटिया भी थी, 4-5 लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, अफ्रीका के, केन्या के, सोमालिया के, अलग अलग देश से लोग आए हुए थे मैक्स में अपना इलाज कराने के लिए, तो उन सबको यहाँ पे से बचाया गया।
0: बताया जा रहा है कि इस होटल में ज्यादातर वो लोग रुकते थे जो तीमारदार थे, क्योंकि पास ही मैक्स अस्पताल है, मरीज का इलाज कराने आए लोग इसी होटल में आसानी से रुक जाते थे।
7: हमारे परिवार में से आप तो एक लड़का मदर बिटिया

0: डे का अग्रवाली का कहानी है सर?
1: वाइफ तो अभी ढूंढ ही रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी, उनका पता ही नहीं चल रहा वाइफ का, छोटी बेटी का कहाँ है।
2: इस होटल में ज्यादातर विदेशी रुके हुए थे। मरने वालों में भी ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं, जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों से हैं। ये महिला कांगो से हैं। इनकी बहनें इसी होटल में थी।
3: How many persons with you?
2: इसे हादसा कह देना आसान है, लेकिन सच ये है कि लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ है। इस हादसे के कितने हत्यारे हैं, उन सब की तलाश जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
4: अब सवाल है कि होटल में हुए इस हादसे के कितने जिम्मेदार हैं, 21 लोगों की मौत के कितने गुनाहगार हैं? इस बात की जांच होगी, मगर अभी एक बड़ी खबर आ रही है। 21 मौतों के कसूरवारों में से एक हैं लवकेश बजाज, जो अब फरार हो गए हैं। आज तक की टीम करोड़पति होटल व्यापारी लवकेश बजाज के घर पहुंची है। आज तक के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी लवकेश के घर पहुंची और छानबीन करके चली गई। साकेत की आलिशान कोठी में बजाज परिवार रहता है। यहां एक फ्लोर पर लवकेश बजाज रहता है। मालविया नगर में लवकेश के तीन होटल हैं और तीनों होटल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। अब लवकेश की गिरफ्तारी के लिए रेड डाली जा रही है। अरविंद ओझा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कहां है लवकेश बजाज?
5: देखिए, लवकेश बजाज फिलहाल फरार चल रहा है और जिस तरह से हमने बताया कि सुबह से ही आज तक ने हर गुनाहगार को एक्सपोज किया, तो इस वक्त लवकेश बजाज, जिसे दिल्ली पुलिस तलाश रही है, सबसे पहले आज तक इंडिया टुडे की टीम यहां पर पहुंची। ये लवकेश बजाज का आलीशान कोठी है, साकेत इलाके में, साउथ दिल्ली का बेहद पॉश इलाका, और यहीं पर बजाज फैमिली रहती है, जिसमें एक फ्लोर पर लवकेश बजाज रहता है। जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक सुबह जब होटल में आग लगी उसके बाद लवकेश बजाज यहां से गायब हो गया। वो कहां है इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, दिल्ली पुलिस की जब टीम आई थी तो उस टीम से भी आज तक ने बातचीत की थी। उनका कहना था कि सुबह भी टीम आई थी लेकिन लवकेश बजाज नहीं मिला। सवाल यह है कि होटल में आग लगी तो क्या लवकेश बजाज वहां पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी भी छानबीन की जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। वैसे तो गुनाहगार कई हैं, क्योंकि फायर की एनओसी नहीं थी, एमसीडी के अधिकारी कहां है, टूरिज्म डिपार्टमेंट कहां है, लेकिन होटल का मालिक भी उन कसूरवारों में से एक है, लवकेश बजाज, उसका नाम बताया जा रहा है। यह भी बातें सामने आई हैं कि कुछ और भी पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन चीजों को वेरीफाई करेगी। लेकिन अभी जो जानकारी दिल्ली पुलिस के हवाले से आई है, लवकेश बजाज ही होटल का मालिक था और उसकी तलाश के लिए लगातार रेड की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए, 21 लोगों की अब तक इस मामले में मौत हुई है, दर्जन भर से लोग से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में एडमिट है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मारिया,
4: तीन होटल वो चलाते हैं और तीनों होटल बिना फायर एनओसी के वो कैसे चला रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। अरविंद, हमारे साथ जुड़े रहिए। होटल में आग लगने की तस्वीरें भयानक हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि लोग जान बचाने के लिए इमारत के अलग अलग फ्लोर से कूद रहे हैं। स्थानीय लोगों ने होटल में रुके लोगों की जान बचाने का जमकर प्रयास किया। जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस मौत के तांडव को देखा, सुनिए उन्होंने क्या कहा।

0: धू धू कर जलती इमारत, जान बचाने के लिए छत और खिड़कियों से कूदते लोग, चारों तरफ मची चीख पुकार, ऐसा लगा 6 मंजिला चिता जल रही हो जिसमें इंसानों को भर दिया गया हो। जिसने भी देखा उसका कलेजा मानो फट गया।
1: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प है, क्योंकि जो कफन गिलास था इनका खुल नहीं रहा था, और मेन इनका गेट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो रात में ही बंद कर देते। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आग लगी इलेक्ट्रिसिटी इनकी कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था।
0: मंजर ऐसा कि मदद के लिए बढ़े हाथ भी कांप उठे।
2: रूम से होटली टाइप का लग रहा है, अब हम अब इसमें श्योर तो है नहीं जल गया है, बट वो रूम्स के अंदर ही थे, कुछ भाग रहे थे, कुछ जीनों पे भी बेहोश मिले हमें, कुछ रूम के अंदर, कुछ बाथरूम के अंदर भी बेहोश मिले थे। मोस्टली फॉरेनर थे इधर, मोस्टली लोग यहाँ पे फॉरेनर थे।
3: हाँ, जो हमने सबसे लास्ट में 2 बंदों को निकाला है वो दोनों आई थिंक नाइजीरियन है, और वो वॉशरूम पे पोर्ट पे बैठे हुए थे एक दूसरे को सेव करने के लिए, और आई थिंक वो डेड थे। ग्राउंड फ्लोर है ना, उसमें आग बहुत ज्यादा थी, जब उसको तोड़ा गया शीशे को तो उससे आग ऊपर की तरफ गई है, जो इस धुएं की स्मोक की वजह से लोगों की अनकॉन्सियस हो गए हैं या अभी तक डिक्लेयर करा नहीं है, तो हम तो कर नहीं सकते।
0: कोई बाथरूम में घुसा, कोई छत पर भागा, कोई खिड़की से कूदा, जान बचाने के लिए जितनी कोशिश की जा सकती थी पूरा दम लगा दिया गया, लेकिन आग थी कि जिंदा जलाने पर आमादा थी।
4: ये हमारी अपनी दुकान है, हमारे अंकल है, इन्होंने गद्दे दिए तो वो पूरी रोड पे गद्दे बिछाए, तो थर्ड फ्लोर से बंदे कूदे हैं,
5: थर्ड फ्लोर से
4: कूदे हैं सीधे फोड़ के, और बाकी जो हम ऊपर पहुंचे, हम तीनों भाई ऊपर ही थे, ऊपर गेट जैसे ही खोला है तो 2-3 नाइजीरियन थे वो डेड कर गए थे।
2: काउंटिंग हमने करी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट सब जगह थे लोग, सब अनकॉन्शियस थे, बिल्कुल अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं।
5: धुएं की वजह से,
2: धुएं की वजह से मोस्टली अनकॉन्शियस थे, क्योंकि जब फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस टीम आ गई थी, फायर फाइटिंग टीम ने जब इसको बुझा दिया है, बुझने के बाद जब हम अंदर घुसे हैं टीम के साथ, तो हमसे भी घुसा नहीं जा रहा था,
6: पाइप पकड़ के लटक रहा था और हेल्प मांग रहे थे। तो यहाँ पर जितने भी लोकल बंदे थे उन्होंने हेल्प किया, वो गद्दा बिछाया, उसको बोला जंप करो नीचे आप, कितना जंप किया, किसी में सर में चोट लगा, किसी का हाथ टूट गया, बहुत कम से कम 10-12 आदमी जंप करके बचाया उसको, और कुछ आदमी छत के ऊपर गया, वो पल्ली तरफ उधर में लकड़ी का जीना लगा के उस तरफ पार हो गया।
0: स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन जो तस्वीर उन्होंने देखी वो शायद ताउम्र वो नहीं भूल सकेंगे। जो चीखें उन्होंने सुनी जिंदगी भर उन्हें बेचैन करती रहेंगी। आज तक ब्यूरो।
7: ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस होटल में रुकने वाले ज्यादातर लोग विदेशी थे। बताया जा रहा है कि ये सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के नागरिक थे। बताया जा रहा है कि जिन 21 लोगों की जान गई उसमें 6 विदेशी हैं। और ये सारे डिटेल्स हमारे साथ ला रहे हैं अरविंद ओझा, जो जुड़ गए हैं। अरविंद, बताइए इनके बारे में।
8: देखिए, कई साउथ अफ्रीका के थे, उसके अलावा नाइजीरियन मूल के भी लोग थे इसमें शामिल, सोमालियंस भी थे। जो अभी जानकारी आई है, 6 जो विदेशी नागरिक है उनकी पहचान पुख्ता हो गई है, धीरे धीरे करके ये पहचान पुख्ता होगी। लेकिन जो 21 लोगों की मौत हुई है उसमें कई विदेशी नागरिक है, उसके अलावा जो घायल है उनमें भी कई विदेशी नागरिक है। माना यही जा रहा है कि चूंकि जो होटल है उसके बेहद करीब मैक्स अस्पताल है, तो कुछ लोग इलाज कराने के लिए भी मैक्स अस्पताल आए थे जो इस होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन ये बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की है जिनकी मौत हुई है, साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनमें भी कई विदेशी नागरिक हैं। जो पूरा डेटा है, चूंकि दिल्ली के 3 अलग अलग अस्पतालों में जो पेशेंट थे उनको ले जाया गया था, सभी का डेटा दिल्ली पुलिस कलेक्ट कर रही है। FIR इस मामले में दर्ज कर ली गई है, गैर इरादतन हत्या का मामला इस पूरे घटना में दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उन सब से भी डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं, पुख्ता केस इस मामले में बनाया जाएगा, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वो लापरवाह ऑफिसर उन पर क्या मुकदमा दर्ज होगा या फिर ट्रांसफर, उसके अलावा निलंबन, इसी पर बात रुक जाएगी, क्योंकि बीते दिनों दिल्ली में इस तरह के हादसे होते रहे, होता यही है कि आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है, गिरफ्तार हो जाता है वो, कुछ दिन बाद जमानत मिल जाती है अदालत से और उसके बाद फिर सब कुछ भूल जाते हैं लोग। तो एक एक नजीर जरूर जो सरकार है उसको पेश करनी होगी, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है हमारे यहाँ।
7: चलिए अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अब इस भीषण अग्निकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है, सरकार जांच की बात कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार गैर जिम्मेदार है। लेकिन जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया वो कह रहे हैं कि सियासत नहीं, उन्हें इंसाफ चाहिए।

0: इस धधकती आग में राख हो गए लोगों के लोग सवाल कर रहे हैं कि किसने दिया था उनके परिजनों की जान से खेलने का अधिकार इन होटल वालों को, किसने दिया था हक कि जाओ उखाड़ लो हमारे अपनों के सीने से सांसें, किसके आदेश पर होटल वाले हत्यारे हो गए, किसके?
1: ऑलरेडी उसके लिए कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक भी इमारत को छोड़ेंगे नहीं, और जो दोषी जी गिरफ्तार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है, सब पे कार्रवाई हो रही है। आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए।
0: हाँ कीजिए कार्रवाई, करनी ही पड़ेगी, मगर काश मंत्री जी ये कार्रवाई पहले कर दिए होते, काश दिल्ली के सरकार का कोई नुमाइंदा पहले ही पड़ताल कर चुका होता कि जिंदगी की कीमत पर आबाद है ये होटल, तो इतने लोगों की जान न जाती, इतने लोग अस्पताल में न होते, इतने लोगों ने अपनों को न खोया होता, काश सब कुछ पहले हो जाता।
2: जिन्होंने नॉर्म्स को ब्रेक किया है उनको गिरफ्तार, इमीडिएटली गिरफ्तार करने के लिए हमने कहा, और इस तरह के जो भी बीएनबी या होटल या गेस्ट हाउस जो नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं उनको सीलिंग के लिए भी कहा है कि उनको तुरंत सील करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन कब कहां लाइसेंस 4 कमरों का लिया हुआ है लेकिन उसमें 20 कमरों में करके काम कर रहे हैं।
0: वही तो, सरकार पहले क्यों नहीं जागी, क्यों नहीं जागी एमसीडी, क्यों नहीं जागे पुलिस वाले, क्यों नहीं जागा प्रशासन, सब सोए रहे, और उसका आलम यह है कि लोग जलकर मर गए, धुएं से घुटकर मर गए।
3: बहुत ही दर्दनाक हादसा है, हम बहुत समय से इस तरह की घटना सुने नहीं थे, कोशिश है कि इस तरह की घटना न हो, मगर अब एक जांच की बात है कि इसमें क्या ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण इतना भीषण दर्दनाक आग लगने का हादसा हो गया।
0: सिर्फ दुख जताने से क्या होगा, क्या होगा ये कहने से कि पीड़ा हुई, क्या होगा आंख नम कर लेने से, जो गए वो तो गए। हाँ कुछ बाकी हैं अस्पतालों की चारपाइयों पर कच्ची पक्की जिंदगी के बीच, लेकिन सबका सवाल तो वही है कि लापरवाही क्यों हुई।
4: फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी, फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया, सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं, सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।
0: सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, सवाल ये है कि इन हत्याओं के कितने जिम्मेदार हैं, गैर कानूनी किश्तों से पटा हुआ अपराधियों का संयुक्त परिवार है। आज तक ब्यूरो।
5: एक और बड़ी खबर आ रही है, जो विदेशी हादसे में मारे गए हैं उनके परिजनों से विदेश मंत्रालय संपर्क में है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय जिसको कहा जाता है, वो सारे एम्बेसीज से टच में है और जो नेसेसरी असिस्टेंस है उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cool Stylish Fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से. विमल, बोलो जुबां केसरी.
1: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी. वेयर आर यू?
4: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था, दरअसल वो नकली था. अब बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी. शरद कुमार, जयपुर आज तक.
5: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं. आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है? कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजटेक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स. यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव किए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है. जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच. मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिजटेक पर.

0: OSM प्रक्रिया, जिसकी वजह से छात्रों के रिजल्ट खराब हुए, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई, छात्रों के सामने कई मुश्किलें आईं, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम के लिए जिम्मेदार कंपनी पर सवाल उठे। छात्रों की चिंता और सियासी शोर शराबे के बाद सरकार ने मामले में बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। नए चेयरमैन के रूप में लोखंडे प्रशांत सीताराम की नियुक्ति कर दी गई, तो वहीं वरुण भारद्वाज नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। खबर है कि पीएम मोदी की दखल के बाद ये एक्शन लिया गया। लगातार नाकामी को लेकर पीएम ने तुरंत अफसरों को हटाने के निर्देश दिए, साथ ही पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात भी कही है। CBSE मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी की प्रमुख एस राधा चौहान बनाई गई हैं। सरकार के एक्शन के बीच CBSE ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के बाद से बीती रात 10 बजे तक 28,000 से ज्यादा छात्रों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
1: जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भारी बारिश के बाद बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। ये तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं, जहां बादल फटने के बाद पानी की बेकाबू रफ्तार ने कई आशियाने तबाह कर दिए। सबसे ज्यादा असर किश्तवाड़ डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर हुआ है, जो फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर बंद हो गया है। कई गाड़ियां भी फ्लैश फ्लड की चपेट में आई हैं। पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट ली है और कई शहरों में बादल मुसीबत बनकर बरस रहे हैं। कुपवाड़ा में भी तेज आंधी तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरे। बारिश और आंधी तूफान इतना तेज था कि श्रीनगर में बड़े बड़े दरखत जमींदोज हो गए हैं, जिससे कई अहम रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां कैलाश मानसरोवर मोटर मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टाने दरक कर सड़क पर आने लगी। लोग अपनी जान बचाकर गाड़ियों से निकलकर भागते नजर आए। मौसम की मार और दहशत की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: बंगाल में ममता को लगा बड़ा झटका। बागी गुट के नेता ऋतव्रता बैनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष। 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने ली शपथ। राहुल और खड़गे मौजूद। पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में मालविया नगर के एक होटल में भीषण अग्निकांड। मरने वाले 21 लोगों में कई विदेशी, 23 घायल। मेयर ने 3 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट। आज तक से दिल्ली के डेप्यूटी फायर चीफ का खुलासा। इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं। 6 की जगह बने थे 25 कमरे। मालिक लफकेश की तलाश में घर पहुंची पुलिस। गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड के बाद अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन। डासना में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर। ऑपरेशन क्लीन स्वीप में 2 मदरसे सील्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
3: तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है।
4: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
5: फोन करना चालू किया यहाँ पे 940 पे लोग फायर ब्रिगेड आई तब उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की।
6: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प जो कफन ग्लास था इनका खुल नहीं रहा था।
7: ऊपर का सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है यहाँ से लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद रहे थे।
8: सुबह से ये लगे हुए इन्होंने मदद की लोगों की।
9: आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है।
0: नमस्कार विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। दिल्ली में आग की लपटों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। बिल्डिंग से जान बचाने के लिए कूदते लोग। चारों तरफ मची चीख पुकार और लाचार नजर आता सिस्टम। आज विशेष में हम उसी सिस्टम से पूछेंगे आखिर बार बार दिल्ली को हादसों में क्यों झोंका जाता है। सवाल सरकार से भी कि तमाम दावे करने वाले मंत्री जी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। मालविया नगर अग्निकांड में गुनाहगारों की एक लंबी लिस्ट है जिसका काला चिट्ठा खोलती ये विशेष की रिपोर्ट। देखिए
10: सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारी बदल जाते हैं लेकिन नहीं बदलती तो देश की राजधानी की किस्मत। जहां इंसानों की जान की कीमत चंद भ्रष्ट अधिकारी तय करते हैं, नेताओं के दावे जुबान पर होते हैं, कागजों में लिखा कानून नोटों के बंडल के नीचे दम तोड़ देता है। दिल्ली में ऐसी न जाने कितनी इमारत चिता की सेज की तरह सजी हुई है, बस इंतजार है चिंगारी। दिल्ली वालों को अंदाजा भी नहीं कि जिन बस्तियों में वो रहते हैं वो किसे श्मशान से कम नहीं है। ये आग दिल्ली ने पहली बार नहीं देखी। ये चीखें दिल्ली में पहली बार नहीं सुनाई दी और न ही दिल्ली के आसमान पर ऐसा धुआं पहली बार उड़ा है। एक पूरा सिस्टम है जिसमें नेता हैं, अधिकारी हैं, विभाग हैं, जहां चेहरे बदलते हैं लेकिन सिस्टम इतना मजबूत कि कोई हिला तक नहीं सकता। इस सिस्टम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं जहां शुरुआत ऑपरेटर या मालिक से होती है जिससे पैसे और जुगाड़ के साथ बाजार में उतरता है, फिर भवन का मालिक, लाइसेंस देने वाली एजेंसियां, निरीक्षण करने वाले विभाग और फिर स्थानीय प्रशासन, सब कुछ सेट किया जाता है और आम लोगों की जान का सौदा होता है। मालवीय नगर में हुए इस हादसे को इसे सिस्टम के जिम्मेदार लोगों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली जिम्मेदारी एमसीडी की। बताया जा रहा है कि लाइसेंस सिर्फ रेस्टोरेंट का था लेकिन इस पर होटल अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। अब एमसीडी बताए कि बिल्डिंग का नक्शा किसने पास किया, 6 कमरों के लाइसेंस में 25 कमरों का होटल कैसे चल रहा था, इमारत में बेसमेंट बनाने की इजाजत किसने दी, अवैध निर्माण पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, बिल्डिंग के अतिरिक्त फ्लोर की परमिशन कहां से मिली, और अगर इसकी इजाजत नहीं ली गई, तो फिर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पिछले 5 सालों से चल रहा था, जहां हर साल रिन्यू का प्रावधान है।
11: सिर्फ एक डिपार्टमेंट की यह मिली भगत तो नहीं हो सकती एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिली भगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। अवैध तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
10: दूसरी जिम्मेदारी दिल्ली फायर सर्विस। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 6 मंजिला इमारत में एक ही एंट्री एग्जिट था जो इतनी मौत की वजह बना। बिल्डिंग जब आग की लपटों में थी तो लोग छत और खिड़की से कूदने को मजबूर थे क्योंकि निकासी का कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे में फायर सर्विस की एनओसी पर भी सवाल उठते हैं, जिसके बगैर ये रेस्टोरेंट चल रहा था। दिल्ली फायर सर्विस को जवाब देना होगा कि आखिर जब होटल चल रहा था तो फिर फायर एग्जिट क्यों नहीं था, फायर अलार्म क्यों नहीं लगे थे, एक ही एंट्री एग्जिट क्यों था, आग बुझाने के बेसिक इंतजाम क्यों नहीं थे।
12: पूरी बिल्डिंग को इनिशियल इंक्वायरी में बताया जा रहा है कि एग्जिट एंट्री महज एक थी, बहुत छोटी छोटी विंडोज आप देख सकते हैं इस इमारत में, जिसकी वजह से जब आग लगी तो धुआं निकलने की जगह नहीं थी। तो फायर एनओसी किस तरह से मिला, इतने इस इमारत में इतने सारे कमरे बनाए गए, और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है नेहा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि इसको परमिशन थी लगभग 6 कमरों की, लेकिन यहां पर बेसमेंट को मिलाकर और तमाम अलग अलग इलाकों को मिलाकर और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन सबको मिलाकर लगभग 3 दर्जन कमरे यहां पर बनाए गए।
10: तीसरा जिम्मेदार दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग। रेस्टोरेंट बिना वैध खाद्य लाइसेंस के चल रहा था, ऐसे में इस विभाग को भी किचन में आग की सुरक्षा को लेकर इजाजत देनी होती है, लेकिन ना मालिक ने इसकी जरूरत समझी और ना ही विभाग ने एक्शन लेने को काम समझा। होटल मालिक के पास पीएनबी यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस था, जिसमें नई सरकार ने कमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, लेकिन यहां बाकायदा 25 कमरों का होटल चल रहा था। बीएनबी लाइसेंस कोई एक ही लाइसेंस नहीं होता, बल्कि ये कई विभागों की अनुमति का सेट होता है, जिसमें पहले बताए गए विभागों के अलावा दिल्ली पुलिस की एनओसी भी रहती है, जहां यहां रुकने वाले मेहमानों का ब्यौरा होता है। दिल्ली पुलिस बताए कि रेस्टोरेंट और होटल चलाने की इजाजत किसने दी, विदेशी मेहमानों को रुकने की जानकारी क्या दिल्ली पुलिस को नहीं थी, क्या मेहमानों का रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस नहीं मांग रही थी?
11: न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से, बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं, और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को। और यकीन जानिए, जैसा आपने पूछा, अगर मेगा ड्राइव चलाया जाएगा तो कई रिहायशी इलाकों में जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, वो बंद किए जा सकते हैं। कई की जो एनओसी है वो नहीं मिली है, लेकिन जब हादसा हो जाता है उसके बाद कवरेज होती है, तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका।
10: सवाल फिर वही है, क्या दिल्ली इस अग्निकांड से सबक लेगी या फिर एक्शन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी? आज तक ब्यूरो।
0: इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली आग हादसे की जिम्मेदारी तय करने के लिए मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। एलजी तरनजीत सांधू ने फायर सेफ्टी का पालन ना करने वाली जगहों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई का आदेश दे दिया है। फायर सर्विस पुलिस और पुलिस को शहर में फायर टेंडर के लिए चोक पॉइंट्स को पहचान करने के लिए एक सर्वे का निर्देश दिया गया है। So, ये सब सारे निर्देश आए हैं एलजी ऑफिस से। मैं सीधे जाऊंगी अरविंद ओझा के पास। अरविंद, सवाल ये है कि ये सब निर्देश हादसे के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता है ताकि हादसा टल सके?
11: देखिए, मैंने इस तरह के कई हादसे देखे हैं बवाना से लेकर साउथ दिल्ली तक, और जब इस तरह के हादसे होते हैं, दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, तब सोशल मीडिया पर इस तरह से, चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे दिल्ली के सीएम हो, और तमाम अधिकारियों इस तरह से पोस्ट करते हैं, लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी दिल्ली एलजी ने जिस तरह का पोस्ट किया है और ये बताया है कि जो अवैध तरीके से जिनको फायर की एनओसी नहीं है उनको सील किया जाएगा, और अगर ये जो दावा किया है एलजी साहब ने अगर ये सही होता है तो एक बड़ा कदम माना जाएगा। और कहीं ना कहीं सुबह से जो आज तक ऑन द स्पॉट ये खुलासा पहले ही से कर रहा था कि आसपास के सारे होटल को एनओसी नहीं है, अवैध तरीके से चल रहे हैं, बाद में दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की के जो डिप्टी हेड है उन्होंने उस पर मुहर भी लगाई, तो एक आज तक की मुहिम का खबर मुहिम का असर भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि एलजी ने साफ साफ ये कहा है कि उन होटल्स को रेस्टोरेंट को जिसको एनओसी नहीं है उनको सील किया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर ये कदम होते हुए दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके कंजेस्टेड इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर होटल रेस्टोरेंट ओपन कर लिए जाते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि जब इस तरह के कंजेस्टेड इलाके में कोई दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी वहां कैसे पहुंचे। हालांकि फायर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग तरह के इक्विपमेंट है, टू व्हीलर भी है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी देरी हो जाती है, तो एक साथ तमाम डिपार्टमेंट को मिलकर इस तरह का ड्राइव चलाना चाहिए,
13: बहुत जरूरी है अरविंद।
11: साथ जिम्मेदारी फिक्स भी होनी चाहिए,
13: जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। गाइडलाइंस हम देख चुके हैं, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं दिल्ली में। अरविंद ओझा जैसा कह रहे थे, ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली ने आग की ऐसी तस्वीरें देखी हैं। देश की राजधानी में ऐसे अग्निकांड आम हो चुके हैं जिसमें डील करने का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक्शन के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है।
10: ये आग लोगों को जिंदा जला सकती है, लेकिन देश की राजधानी के सिस्टम पर आंच तक नहीं ला सकती। ये धुआं आसमान को काला कर सकता है, लेकिन सरकारों की सफेद पोशाक पर दाग नहीं लगा सकता। ये चीखें आपको झकझोर सकती हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग सकती। ये आंसू आपका दिल पिघला सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों के माथे पर पसीना तक नहीं ला सकते। ये आग दिल्ली के इतिहास को नहीं जला सकती, जिसे दिल्ली का लाचार सिस्टम हर सरकार में बुझाता आया है। 1997 में दिल्ली उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ, 59 लोगों की जान चली गई, मालिक के खिलाफ FIR हुई, जेल गया, अधिकारियों पर एक्शन हुआ, सस्पेंड हुए और तबादले हुए, लेकिन मंत्री पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 2018 में बवाना पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, 17 लोगों की जान चली गई, फिर अधिकारियों पर एक्शन हुआ, MCD के कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, लेकिन मंत्री पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 2019 में अनाज मंडी अग्निकांड हुआ, 43 लोगों की जान चली गई, MCD के कुछ अधिकारी सस्पेंड हुए, मगर मंत्री पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 2019 में होटल अर्पित पैलेस में आग लगी, 17 लोगों की जान चली गई, मालिक के खिलाफ केस हुआ, जूनियर ऑफिसर्स को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन मंत्री पर फिर कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी घूम फिर कर दिल्ली में अग्निकांड पर एक्शन का एक फॉर्मेट बन गया है, जिसके आधार पर ही एक्शन लिया जाता है। इस सिस्टम के पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कैसे होती है? अधिकारी पर एक्शन होता है, सस्पेंड किया जाता है, विभागीय जांच की जाती है, तबादला किया जाता है, और इसके बाद क्या होता है वो भी जान लीजिए। बहुत कुछ मामलों में टर्मिनेशन होता है, कुछ केस में आपराधिक लापरवाही के आरोप लगते हैं, अधिकतर मामलों में विभागीय क्लोजर होता है। यानी किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं होता कि वो दोबारा इस तरह की लापरवाही के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए। ज्यादातर मामलों में एक्शन के नाम पर मालिक को पकड़ा जाता है, लेकिन वहां भी एक्शन पूरी तरह से सेट पैटर्न में लिया जाता है। FIR होती है, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है, कोर्ट में ये केस लापरवाही में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद चंद सालों की सजा के बाद मालिक बाहर आ जाता है, कई मामलों में केस भी नहीं होता। यानी घूम फिर कर जिम्मेदारी ज्यादातर मालिक, MCD, फायर डिपार्टमेंट पर डाली जाती है, और ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं जो कि कोर्ट में दम तोड़ देते हैं। जहां तक मंत्री और नेताओं की बात है, तो उनकी इस तरह के मामलों में कोई जवाबदेही नहीं तय होती है, जिस पर राजनीति का भी एक पैटर्न है। नेताओं की ओर से बयान आता है कि जिम्मेदारी तय होगी, जांच कमेटी बनेगी, और विपक्ष इस्तीफे की मांग करता है। अब सोचिए, जब हर चीज का सिस्टम बना हुआ है, तो फिर दिल्ली को जलने से कौन रोक सकता है, कौन हादसों पर लगाम लगा सकता है। अगर मालवी नगर की बात करें, तो यह हादसा लाल डोरा गांव में हुआ है, जहां इस तरह की लापरवाही आम है और एक बड़ी संख्या में जान को खतरे में डाला जाता है। दिल्ली के अगर अर्बन इलाकों की बात करें तो लाल डोरा में करीब 150 गांव आते हैं, जो कि दिल्ली का करीब 15% इलाका है। वहीं यहां दिल्ली की करीब 15% आबादी रहती है। इन गांवों में एमसीडी ध्यान नहीं देती और नियमों को ताक पे रखा जाता है। आज तक ब्यूरो।
13: दिल्ली में कैसे नियमों को ताक पे रखकर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की ये रिपोर्ट।
14: जो इजाजत है, जिस तरीके से जिस होटल में आग लगी, 6 कमरों की इजाजत थी टोटल, लेकिन बनाए गए थे 25। अगर आप यहां देखेंगे, अब यहां पर आइए कि ग्राउंड फ्लोर पर भी 3 कमरों की इजाजत है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक रूम है, यहां पे आपको नजर आएगा ये 102, दूसरा कमरा नंबर नजर आएगा और ये एक तीसरा कमरा आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर आप अगर आपने देखा कि 3 कमरे वहाँ हैं और 4 और ये 5, 105, यानी कि इस फ्लोर पर भी 5 कमरे, जबकि इजाजत जो है वो 3 कमरों की है। इसके अलावा इससे ऊपर भी चलेंगे 5 कमरे, यहाँ पर 6 कमरों की इजाजत है, 5 कमरे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर, 3 कमरे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर। अब इसके बाद इससे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको रूम नंबर 201, 202, 203 में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं बकायदा कि इस सेकंड फ्लोर पर भी तकरीबन जो इजाजत है 3 कमरों की, वहां पर भी इस तरीके से 5-5 कमरे जो है वो बनाए गए हैं, 204, 205। अब आप देखिए कि अगर कोई फायर का इंसिडेंट हो जाए, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ओपन वायर आपको यहाँ पर नजर आएगी, अगर कहीं आग लग जाए तो ये जो रूम है इसके बाहर बैल्कनी होगी, उस बैल्कनी से भी आप बाहर जो है वो नहीं निकल सकते, ये रूम भी पूरी तरीके से लॉक है। किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग घूमने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं, उनके लिए किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम है, इसको कौन देखेगा, किसकी जिम्मेदारी है, किसी को नहीं पता। अब इसके बाद इसके ऊपर फ्लोर पे जाते हैं, इस फ्लोर पर भी आपको इतने ही कमरे जो हैं वो नजर आएंगे, 5 कमरे यहां पर हैं, इजाजत सिर्फ 6 कमरों की है, यहाँ पेंट्री जो है वो बनाई गई है और अभी आप देखेंगे एक पर्सन है वो यहाँ पर गेस्ट जो है वो रह रहे हैं, उसके पीछे विंडो है। और आप देखिए कि अगर कोई हादसा इस पूरी बिल्डिंग में हो जाए तो किसी प्रकार के फायर के कहीं से भी कोई इंतजाम जो है वो यहाँ पर नहीं किए गए हैं।
13: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
16: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
18: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today. Beautiful.

एक फोन कॉल और साजिश नाकाम। कराची से आए कॉल से मिला सुराग। कॉल से खुला हमले के प्लान का राज। दाऊद इब्राहिम के प्लान पर पानी। करीब एक महीने पहले कराची से आए कॉल को आईबी ने इंटरसेप्ट किया। इसके बाद कॉल की डिटेल को दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ शेयर किया गया। कॉल में इंटरसेप्ट हुई बातचीत ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए, क्योंकि मामला दिल्ली और मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश से जुड़ा था। आनंद फानंद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। टीम को कराची से रची गई साजिश का पर्दाफाश करने का जिम्मा सौंपा गया। जांच टीम के पास सबसे बड़ी लीड एक मोबाइल नंबर था, जिस पर कराची से फोन आया था। जैसे ही जांच टीम के हाथ उस आतंकी तक पहुंचे, साजिश का पर्दाफाश हो गया। जानकारी के मुताबिक करीब एक महीने की तफ्तीश के दौरान एक बात साफ हो गई कि सभी आतंकियों को कराची में बैठा मुन्ना झिंगाड़ा निर्देश दे रहा था, जो दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी गुर्गा है। पूरा ऑपरेशन करीब एक महीने तक चला। मल्टी स्टेट ऑपरेशन में अब तक 8 खतरनाक गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
2: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
4: Money, money, money, money, every month.
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: जगह दिल्ली. ये वही धमाका है जिसका बारूद पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार हुआ. प्लान था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर दिल्ली और मुंबई को दहलाना. हमलावर तैयार थे, गोला बारूद तैयार था, हमले की तारीख और जगह तय थी, लेकिन आईएसआई और दाऊद की नापाक साजिश पर देश की खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते पानी फेर दिया. वरना कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी के नेटवर्क के जरिए एक बार फिर देश को दहलाने की खतरनाक साजिश रची थी. दाऊद और आईएसआई की साजिश का बड़ा खुलासा. आईएसआई के इशारे पर दिल्ली मुंबई को दहलाना था. दाऊद ने मुन्ना झिंगाड़ा को सौंपा था जिम्मा. मेड इन पाकिस्तान गोला बारूद आ चुके थे. दाऊद इब्राहिम का प्लान दिल्ली मुंबई. देश के दुश्मन नंबर एक दाऊद की नई आतंकी साजिश का खुलासा हुआ. दरअसल चंद हफ्तों पहले आईबी के कान कराची के क्लिफ्टन रोड पर बने दाऊद के इसी व्हाइट हाउस पर अचानक बढ़ी गतिविधियों ने खड़े कर दिए. वजह थी टॉम दाऊद के व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडरों के साथ साथ आईएसआई अफसरों की बढ़ी आवाजाही. दाऊद के घर पर बढ़ी हलचल पर नजर रखी गई तो पता चला कि दाऊद इब्राहिम के व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर दूर एक 5 सितारा होटल से भारत में मौजूद कुछ लोगों को लगातार कॉल की गई. जानकारी को आगे बढ़ाया गया तो चौंकाने वाली जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी. होटल से आ रही कॉल कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद सैयद मुदस्सर हुसैन कर रहा था. जैसे ही सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सलीम की मूवमेंट को ट्रैक किया गया तो आईएसआई और दाऊद की डी कंपनी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया. दिल्ली स्पेशल सेल ने कराची के टेरर कंट्रोल रूम में मौजूद दाऊद के शार्प शूटर रहे मुन्ना झिंगाड़ा के इशारे पर आतंकी हमलों को अंजाम देने निकले 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार हुए आतंकियों की लिस्ट में शामिल है उत्तर प्रदेश का विजय उर्फ शूटर, झारखंड का नीतीश पासवान, महाराष्ट्र का तौकीर रिजवान, अहमद शेख और साजिद, पंजाब का हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मनजीत सिंह और नेपाल का आंग कामी लामा शामिल हैं. आतंकियों के पास से स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियार बरामद किए हैं. पाकिस्तान में बने ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल को एनएसजी की मदद लेनी पड़ी.

0: विशेष में बस अब इतना ही। देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: बंगाल में ममता को लगा बड़ा झटका, बागी गुट के नेता ऋतव्रता बैनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष, 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने ली शपथ, राहुल और खड़गे मौजूद, पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में मालवीय नगर के एक होटल में भीषण अग्निकांड, मरने वाले 21 लोगों में कई विदेशी, 23 घायल, मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी, एलजी ने भी की बैठक। आज तक से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ का खुलासा, इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं, मालिक लवकेश की तलाश में घर पहुंची पुलिस। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन, दासना में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर, ऑपरेशन क्लीन स्वीप में 2 मदरसे सील।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जहां सबसे पहले बात होगी ममता बनर्जी की। कहा तो 4 मई से पहले ममता बनर्जी मोदी सरकार को गिराने के दावे करते फिर रही थी, और अब वही ममता बनर्जी सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गई है। ममता बनर्जी किसे चुनेंगी, इस बात से पश्चिम बंगाल की राजनीति और उससे ज्यादा ममता की पार्टी का भविष्य तय होगा। ममता बनर्जी की पार्टी से बगावत करने वाले बागी गुट का कहना है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व मंजूर नहीं है।

0: I know that majority of the Trinamool Congress MLAs will be attending the administrative meetings held by Honorable Chief Minister Sri Shubhendu Adhikari.
1: तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 58 बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को साइन करके चिट्ठी सौंपी है। तृणमूल से निष्कासित ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता बताया गया है। बागी विधायकों ने स्पीकर के सामने तीन मुद्दे उठाए हैं। पहला कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतुव्रत होंगे ना कि शोभन देव। और तीसरा, हमारे पास दो तिहाई बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए।
2: अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया, सुन रहा हूँ, लेकिन
1: आपने किया है?
2: मेरा भी सिग्नेचर है,
1: आपने कर दिया?
2: जी जी।
1: तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये?
2: नहीं, मेरा पर्सनल उसे
1: विरोध मेनली अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक के,
2: नहीं नहीं, दल के खिलाफ नहीं है। मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर, वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए, इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में सुविधा होगा।
0: दिस लेजिस्लेटर पार्टी डजंट बिलीव इन आई, इट बिलीव्स इन वी। व्हाटएवर नॉर्म्स आर फ्रेम्ड आउट, वी हैव फॉलोड एवरी नॉर्म्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव बीन एक्सेप्टेड एज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन इन दिस 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली।
1: बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायक हैं। नए गुट को मान्यता के लिए दो तिहाई यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। इस तरह नए गुट को मान्यता की पहली शर्त तृणमूल के ये बागी विधायक पूरी कर चुके हैं, जिन्हें लेकर ममता ये दावा करती है।
3: एमपी लोगों को डर दिखाता है, बोलता है पार्टी तोड़ो, पुलिस को देके, उसके बाद बीजेपी का फोन जाता है। पुलिस कहता है एमएलए को, अगर आप निकालेंगे तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, ईडी आएंगे, सीबीआई आएंगे, आपको घर से हम निकालने नहीं देंगे। और कहते हैं बीजेपी जिसको रिकमेंड किया है, जिसको हम एक्सपेल कर दिया आज पार्टी से, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी, उसको नेतृत्व में जाके आप पार्टी तोड़ो।
1: ममता भले ही अपनी पार्टी में फूट के लिए बीजेपी पर उंगली उठाएं, लेकिन बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने टीएमसी के बागियों से दूरी बना ली, जिससे सारा फोकस ममता बनर्जी की पार्टी में हो रही इस सबसे बड़ी टूट पर आ गया। क्योंकि सबने देखा कि ममता बनर्जी के धरने में मुट्ठी भर सांसद और विधायक पहुंचे, जबकि पार्टी के 80 विधायक और 42 सांसद हैं। इस तस्वीर के सहारे ये दावा किया गया कि ममता का धरना फ्लॉप रहा। पहले उन्हें जनता ने हराया और अब उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसदों ने उनसे किनारा कर लिया। हालांकि टीएमसी की अपनी दलीलें हैं।
4: एक जो अभी बात सामने आ रही है, बहुत कम जो विधायक हैं वो शामिल हो रहे हैं। आज भी देखा गया कि काफी कम विधायक शामिल हुए, शनिवार को भी देखा गया।
5: आज का कोई इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन कोई एमएलए को नहीं दिया। हम लोग मास मीटिंग है, नहीं दिया है। देखने दीजिए ना, ममता बनर्जी आउट हुए, प्रोग्राम करने का बाद क्या होता है।
1: ममता के करीबियों के इस दावे को उन्हीं की पार्टी के बागी विधायकों ने कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि जो बागी विधायक स्पीकर के पास पहुंचे, उनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक में हिस्सा लेने नाबन्ना सचिवालय पहुंचे, जिसमें कुणाल घोष भी शामिल रहे, जो मंगलवार को धरने के दौरान बीमार होकर गिर गए थे और जिन्हें ममता बनर्जी हवा करती दिखी। सवाल उठा कि क्या ममता के चेहरे पर जीत कराए इन नेताओं को तृणमूल कांग्रेस डूबता जहाज लगती है? क्या इसीलिए विधायकों ने बगावत कर दी? कारण चाहे जो हो, लेकिन बंगाल जीतने वाली बीजेपी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
6: ছবি পাঠিয়েছিল, এত দুরাবস্থা আমি জানতাম, এত দুরাবস্থা, এক ঝুড়ি লোক, 150টা লোক আসেনি। আপনারা তো সাংবাদিকরা গেছেন 200 জন, আপনার 200টা সাংবাদিক না থাকলে তো আর করুণ অবস্থা হয়ে। তারপরে রাজ্যসভা লোকসভা মিলে এতগুলো এমপি শুনলাম, 3টে এমপি গেছে, 6 জন এমএলএ গেছে। ও দলটার অবস্থা ফলতার মতো হয়ে গেছে চতুর্থ।
1: ममता बनर्जी जो भी दावा करें, लेकिन वो अपनी सबसे बड़ी सियासी चुनौती का अब सामना कर रही हैं। इसमें पहला चैलेंज अब किसी तरह पार्टी को बचाने का ही है।
7: पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया।

0: लिया है। इन्होंने सुबह विधानसभा में स्पीकर रथेंद्र बोस को समर्थन पत्र सौंपा और शाम होते होते स्पीकर ने ऋतुव्रत को विपक्ष का नेता मान लिया। ऋतुव्रत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दो और विधायक उनके साथ हैं। बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार किया है। अभिषेक बनर्जी की विधानसभा में कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनके साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है, मतलब ममता से बैर नहीं, अभिषेक मंजूर नहीं। बागी गुट ने ममता बनर्जी को मार्गदर्शक मंडल में रखने की बात कही है, मतलब ममता का रोल पार्टी के मुख्य सलाहकार तक सीमित करने का बागी गुट का रुख है। ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए पार्टी के भीतर बगावत के बीच राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। पार्टी अब पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी, मतलब ममता अब नए सिरे से अपने भरोसेमंद नेताओं को पार्टी में लाएंगी, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? टीएमसी के बागी कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह मिले, लेकिन ममता बनर्जी पार्टी में नए सिरे से सफाई करने में जुट गई हैं, ताकि संगठन के स्तर पर इस तरह का विरोध न हो।
1: वी वांट ममता बनर्जी टू बी आवर चीफ एडवाइजर, टू गिव अस एडवाइजेस दैट विल हेल्प अस इन स्ट्रेंथनिंग आवर पोजीशन एज एन ऑपोजिशन एज फार एज द वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंसर्न। This, only this, which has been given, the speaker has accepted that. So the point is that two-thirds of the members, 80 members were elected by in Trinamool Congress's symbol. Two-thirds of them, more than two-thirds of them, has given our claim and the claim has been accepted.
2: Gholadi, party ka jo hal hai, kya kahenge? Abhishek Banerjee kya abhi bhi party ka general secretary hai?
3: Trinamool Congress to
4: Trinamool mane hoche Mamata Banerjee aur manush.
0: और बड़ी खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में विपक्ष के नेता के विवाद को लेकर कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार कर रही है। पार्टी अभी भी सुवनदेव चैटर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में नामित करने वाले अपने औपचारिक पत्र पर विधानसभा अध्यक्ष की औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। यानी विपक्ष के नेता के तौर पर पार्टी की तरफ से नाम का प्रस्ताव गया था, लेकिन ऋतुव्रत का नाम जब सामने दिया गया और समर्थन में 58 विधायकों की बात हुई तो उनको स्पीकर की तरफ से हरी झंडी दे दी गई विपक्ष के नेता के तौर पर, लेकिन ममता बनर्जी कानूनी विकल्प पर विचार कर रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि तृणमूल पर किसका कब्जा होगा? भले ही बागी विधायकों के नेता को पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष के नेता का पद दे दिया हो, लेकिन क्या ये बागी गुट तृणमूल कांग्रेस पर भी दावा कर सकता है? संविधान इस बारे में क्या कहता है? पहला सवाल यह है कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन सी? इसका जवाब यह है कि विधायक दल और सियासी दल अलग अलग होते हैं। स्पीकर केवल विधायक दल को मान्यता दे सकता है, राजनीतिक दल पर कब्जे का फैसला चुनाव आयोग करता है। तो भले ही बागी गुट 80 में से 60 विधायकों के समर्थन का दावा करे, वो ये दावा नहीं कर सकते कि असली तृणमूल कांग्रेस उनकी है। दूसरा सवाल यह है कि तृणमूल पर इस टूट के बाद किसका कब्जा रहेगा? मौजूदा हालात में चुनाव आयोग के फैसले तक ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी। वो अपनी मर्जी से पार्टी में फेरबदल कर पाएंगी, जैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया है। एक सवाल यह भी है कि क्या बागी गुट को तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मिल सकता है, जैसी मांग उनकी तरफ से स्पीकर से की गई है? इसका जवाब यह है कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर बागी गुट का दावा तब मजबूत होगा जब 80 में से 60 विधायकों की तरह 19-20 लोकसभा सांसद भी बागियों से जा मिले। ऐसी स्थिति में अगर फैसला उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों की तरह हुआ तो फिर यह अहम हो जाएगा कि किसके पास ज्यादा विधायक, सांसद और संगठन का समर्थन है। मतलब तृणमूल कांग्रेस तभी ममता के हाथ से जाएगी जब विधायकों की तरह सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी बड़े पैमाने पर बगावत कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बागी गुट का क्या होगा? इसका जवाब यह है कि 60 विधायकों के समर्थन की वजह से विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद तो ऋतुव्रत बनर्जी को मिल जाएगा, लेकिन पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं मिलेगा। शाम को 6 बजे के करीब ममता बनर्जी के घर पर तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई। अभिषेक बनर्जी भी इसमें शामिल हुए। इसी दौरान ईडी की टीम अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची और पूछताछ के लिए 15 जून का नोटिस दे दिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक को यह नोटिस दिया गया है, मतलब पार्टी के अंदर अभिषेक के खिलाफ बागियों ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं बाहर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
3: तृणमूल कांग्रेस सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी के लिए मुसीबत बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां एक ओर पार्टी में बगावत शुरू हो गई है उनके नेतृत्व को लेकर, वहीं दूसरी ओर आज उनके घर में ईडी का नोटिस आ गया जहां पे उनको तलब किया गया है 15 जून हाजिरा देने के लिए। दरअसल जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम का इन्वेस्टिगेशन पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उसके तहत अभिषेक बनर्जी को ईडी ने आज समन कर लिया। उनके कालीघाट स्थित घर में ईडी की अफसरों की एक टीम पहुंच गई और उनको एक नोटिस दिया गया है जहां पे उनको कहा गया है कि 15 जून तक वो हाजिरा दे दे। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले सीआईडी की भी एक टीम ने उनको हाजिरा देने के लिए कह दिया है, क्योंकि जो सिग्नेचर फ्रॉड का केस चल रहा है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, जहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने के लिए शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम जब अभिषेक बनर्जी ने चिट्ठी देकर भेजा था, उन्होंने खुद दस्तखत किया था, उसके साथ जिन पार्टी एमएलएज के सिग्नेचर वहां पे थे उसमें फॉर्जरी हुई थी, इसको लेके पुलिस कंप्लेन हुआ है। अब उसकी भी छानबीन चल रही है जहां पे सीआईडी ने उनको 8 जून को हाजिरा देने के लिए कहा है और उसके साथ साथ अब ईडी का भी समन आ चुका है। 15 जून को अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने पेश होना है। कैमरा पर्सन तापस के साथ इंद्रजीत आज तक कोलकाता।
0: अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी के विधायक बगावत कर रहे हैं तो ममता बनर्जी के खिलाफ उनके भाई ने मोर्चा खोल दिया है। ममता सरकार से नाराजगी रखने वालों में खुद उनके भाई स्वपन बनर्जी शामिल हैं। आज तक से बातचीत में उनका दर्द खुलकर सामने आया।
3: आप कह रहे थे कि 2013 से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तृणमूल के साथ।
5: ना, हम 1981 साल से पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं,
3: लेकिन 2013 से आपको काम नहीं करने दिया।
5: 2013 साल से मेरा को काम करने नहीं देते हैं।
3: क्यों
5: काम करने नहीं देता है? कोई काम में नहीं देता। मैं बंगाल ओलंपिक का सेक्रेटरी था, चिट्ठी देता है चिट्ठी फेंक देता है। मैं 2020 साल में चिट्ठी दिया चिट्ठी छोड़ा दिया, 2022 में दिया, 23 में दिया, 24 में मेरा को बैठा के हटा दिया। ये ठीक नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत गलती हुआ। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं पार्टी पॉलिटिक्स का काउंसलर नहीं है, मैं एमएलए नहीं है, मैं एमपी नहीं है, मैं कोई कुछ नहीं है,
3: लेकिन आप स्पोर्ट्स
5: एडमिनिस्ट्रेटर है। इसको लेके काम करना। मैं इंडियन ओलंपिक का मेंबर था, मैं बंगाल ओलंपिक का प्रेसिडेंट था, मैं बंगाल ओलंपिक का सेक्रेटरी था, मैं बंगाल ओलंपिक का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। तो हमारे लिए क्या किया ये लोग, हमारा बहुत खराब लगा है। उसलिए हम इन लोग के बारे में सोचेगा। हमको छोड़ा के अपना भाई सौरभ विश्वास को लेके चल रहा है बंगाल ओलंपिक में, गए क्या हुआ? ये कोई दिन वो ही नहीं था, पोस्ट कोड मान के नहीं आया, वो आईएफए का वाइस प्रेसिडेंट था, यहाँ पे लेके सब कुछ काम करा है।
3: तो ये दीदी को पता नहीं था?
5: देखिए दीदी के बारे में हम पोस्ट के बारे में क्रीड़ा मंत्री को बताएगा, हम दीदी को कैसे बताएं?
3: क्रीड़ा मंत्री तो ममता बनर्जी को ही रिपोर्ट करती थी,
5: बोलना जरूरी है। 100% सबको मालूम है इस बारे में।
0: पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि जो भी पार्टी सत्ता से बाहर होती है वो खत्म हो जाती है, उसके नेता पाला बदल लेते हैं, राजनीतिक हिंसा होती है। बंगाल में इस बार सियासी परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ताजा हमला एक पूर्व विधायक पर हुआ जिन पर आज अंडे और पत्थर फेंके गए। तृणमूल कांग्रेस जहां सियासी मुसीबत में फंसी दिख रही है, वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं।
6: If I am alone, I'll go alone.
7: We are the real principal opposition here.
8: तृणमूल कांग्रेस में बगावत को देखकर तो यही लग रहा है कि ममता को उन्हीं के विधायकों ने फिलहाल अकेला छोड़ दिया है। ममता बनर्जी का नाम लेना भले ही उनकी सियासी मजबूरी हो, लेकिन ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका उन्हीं के विधायक दे चुके।
9: अभी आवार बोलछी, अभी माननीय মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের এই পরিষদীয় দলের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবার অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা নিশ্চিতভাবে তার পরামর্শ পেলে আমরা গঠনমূলক এবং সদর্থক বিরোধীর ভূমিকা ভালোভাবে পালন করতে পারব, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই।
8: এস বগাওয়াত কে বাদ মমতা বনর্জি কি পার্টি কা বিপক্ষ কা নেতা নহি হোগা। तृणमूल अगर टूटी तो फिर 20 विधायक ममता की विधानसभा में बैठी, उसमें भी आगे कितने साथ रहेंगे कौन जाने, क्योंकि जिस तरह से बंगाल का माहौल है, टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उससे टीएमसी के नेताओं का हौसला जरूर टूट सकता है। ये तस्वीर उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी की है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सनत डे को विरोध का सामना करना पड़ा। ममता के पूर्व विधायक सनत डे जैसे ही नैहाटी के अपने पार्टी कार्यालय से बाहर निकले तो उन पर अंडे और पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। ये देखिए पार्टी कार्यालय का जैसे ही चैनल खुलता है, ममता बनर्जी के पूर्व विधायक पर अंडे और पत्थर बरसाए जाने लगते हैं। दावा है कि लोगों का यह गुस्सा सनत के टीएमसी ऑफिस में बैग को लेकर दाखिल होने की खबर के बाद फूटा। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग टीएमसी कार्यालय के बाहर जमा हो गए। लोगों को लगा कि सनत ने कुछ दस्तावेज छिपा रहे, इसलिए वो अपने साथ बैग लेकर आए। लोगों ने उन पर अंडे और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस और केंद्रीय बलों ने बात बिगड़ने नहीं दी, लेकिन लोग इस बात से नाराज दिखे कि पुलिस वालों ने टीएमसी के पूर्व विधायक को क्यों जाने दिया। बीजेपी जहां इसे जनता का गुस्सा बताती है, वही ममता बनर्जी का कहना है कि उनके नेताओं पर दबाव डालने के लिए धमकाया जा रहा है।
6: वॉट एवर यू थ्रेट द तृणमूल कांग्रेस एमएलए एमपी काउंसिलर्स पंचायत, इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक द पार्टी लाइक महाराष्ट्र, प्लीज रिमेम्बर देयर विल बी ए बिग बोल्ट एंड बिग जोर फॉर यू ऑल्सो, बी प्रिपेयर फॉर दैट। You will be the get loser, not we are.
8: ममता बनर्जी जहां अपनी पार्टी को बचाने में लगी, वहीं कभी उनके से फसालार रहे और उनसे बगावत करके बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के एजेंडे को तेजी से लागू करते देखते हैं।
10: जो घुसपैठिया है उनको तो रुपया नहीं मिलेगा, ये लोग को नहीं रुपया मिल सकता है। जो देश के कानून का उल्लंघन करता है, वैक्सीन नहीं लेता है, स्कूल में नहीं दाखिल करता है, कहाँ कहाँ दूसरा स्कूल में भेजता है, जहाँ दूसरा तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सब लोग को तो नहीं मिल रहा है।
11: वंदे मातरम भी अब तो हर जगह
10: हर स्कूल में वंदे मातरम चालू कर दिया। देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है।
8: शुभेंदु अधिकारी हुगली के प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है, जिसमें उन्होंने मंदिर को लेकर बड़ा दावा किया।
10: आशीर्वाद करे, अच्छा काम करे।
12: प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं दादा,
10: यहाँ बहुत काम करना पड़ेगा। तारकेश्वर धाम मेरा बड़ा धाम है, पहले तो इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, वो नील सादा नहीं चलेगा। बाबा का धाम में भगवा कलर होगा, भगवा होगा।
12: इस तरह से लोगों का प्यार मिला, लोग आ रहे हैं ज्यादा।
10: ये सरकार तो उनका ही सरकार है ना, ये लोग की तो जीता है हम लोग, ये तो जागरण हुआ ना बंगाल में।
8: तो शुभेंदु अधिकारी तारकेश्वर मंदिर के रंग रूप को बदलने का प्लान बना रहे हैं, जो अभी नीला और सफेद, लेकिन धर्म के आधार तारकेश्वर मंदिर को अब भगवा रंग में रंगने की योजना है।
10: ये तारकेश्वर बंगाली बंगाल का हिंदू होमलैंड का बड़ा मायना करता है, इसको सामने लाने का काम और इसको यहाँ से और भी विकास तरक्की का काम ये सरकार करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
8: बंगाल में बीजेपी ने जीत दर्ज कर भले ही इतिहास बनाया, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है और शुभेंदु अधिकारी बंगाल को बीजेपी के आधुनिक प्रयोगशाला बनाने में जुट गए हैं। उनकी सरकार बनने के बाद सड़कों पर नमाज बंद हो चुकी है। बंगाल में बकरीद पर गाय की कुर्बानी रोक कर वो पहले ही खूब चर्चा बटोर चुके हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना, गौ माता की सेवा करना, तारकेश्वर जैसे प्रसिद्ध मंदिर का कायाकल्प करने का ऐलान करना बताता है कि शुभेंदु की योजना लंबे समय तक बंगाल की सियासत में कमल को स्थापित करने की है।
0: पश्चिम बंगाल भर में कहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, कहीं तृणमूल के दफ्तर से देसी बम बरामद हो रहे हैं। इस बरामदगी को बीजेपी की तरफ से टीएमसी की हिंसा की वो खेप बताया जा रहा है, जिसके दम पर वो विरोधियों को डराकर शासन करती रही।
8: चार मई को नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस नेताओं के सरेआम पिटते हुए तस्वीरें बंगाल से आ रही। सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर यह हमले राजनीति से प्रेरित है या फिर इस गुस्से की कोई दूसरी वजह भी है। दावा है कि इस सवाल का जवाब विपक्ष के खिलाफ हिंसा, उसे डराने धमकाने का इस्तेमाल होने वाले इन देसी बमों से जुड़ा है, जिसका इस्तेमाल दावा है साल 2021 में नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर किया गया। ऐसे ही गाच बम यानी देसी बम हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के एक क्लब से मिले। इसके अलावा यहां से सरकारी राहत सामग्री भी बरामद हुई है, जो इस अलमारी के भीतर रखी हुई थी, जिसका दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। देसी बमों की इस बरामदगी के मामले में हावड़ा के नारना ग्राम पंचायत के उप प्रधान बुबाई चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई आम लोगों की शिकायत के बाद, जिन्होंने देसी बमों को हटाने की इस कोशिश का पर्दाफाश कर दिया। जैसे ही गांव के लोग तृणमूल के इस क्लब के बाहर इकट्ठा हुए, दावा है कि तृणमूल के नेता इससे घबरा गए और मौके पर ये सामान छोड़कर फरार हो गए और देसी बमों की ये बड़ी खेप मिली, जिससे सवाल उठता है तृणमूल के क्लब के भीतर इतनी बड़ी मात्रा में बम किस मकसद से रखे गए थे। इसे समझने के लिए अब 8 मई की ये तस्वीरें देखिए, जब हावड़ा के शिवपुर के चौड़ बस्ती इलाके में बमबाजी होती है, जिसमें बीजेपी के दो कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। इस वायरल वीडियो में हमलावर अल्लाहु अकबर और नाराए तकबीर का नारा लगाते सुने गए। बीजेपी ने इस बमबाजी के लिए इलाके के टीएमसी नेता शमीम अहमद को दोषी ठहराया, जिनके इशारे पर दावा है टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर फेंके गए, बमबाजी होती रही। बीजेपी ने इस घटना के बाद विरोध में थाने का घेराव किया। पुलिस कार्रवाई में आरोपी शमीम अहमद की परेड निकाली गई। पुलिस ने शमीम अहमद को नंगे पैर उसी के इलाके में घुमाकर उसका डर खत्म करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी के दफ्तर से देसी बम मिलते आए। ये नादिया में मिले देसी बम हैं, जिन्हें रविवार रात को पुलिस ने शांतिपुर के फुलिया इलाके में एक खेत से बरामद करके फिर सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया। बंगाल के हुगली में भी टीएमसी ऑफिस से ऐसे ही बम मिल चुके हैं, जिसके बारे में बीजेपी का दावा है कि टीएमसी इसका इस्तेमाल विपक्षी दलों को धमकाने में करती आई। बंगाल के बारे में अक्सर कहा जाता रहा है कि वहां राजनीतिक हिंसा आम बात है, वहां की राजनीति का हिस्सा है, लेकिन सत्ता बदलने के बाद पहली बार देश देख रहा है कि किस तरह से देसी बम बनाने का धंधा कुटीर उद्योग बन चुका है, जिनका इस्तेमाल दावा है विपक्ष को डराने धमकाने में होता था। बीरभूम में ये 32 बम एक तालाब से मिले। बंगाल में शुभेंदु सरकार लगातार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में हिंसा की परपाटी को खत्म करने के लिए सरकार लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे ही एक छापे में कोलकाता में टीएमसी के यूनियन रूम में दीमक से चट गए लाखों नोट मिलने पर कॉलेज के अधिकारी भौचक्के रह गए। दीमक से नष्ट हो चुके ये नोट अब किसी काम के नहीं, लेकिन सुरेंद्र नाथ कॉलेज में करोड़ों रुपए के ये नोट किसने रखे, यही सवाल है।
13: তৃণমূলের ছাত্র নেতারা, যদিও তাদের বেশিরভাগের বয়স 60-এর বেশি, তারা ইউনিয়ন রুমে আলমারির ভেতর লাখ লাখ টাকা এবং সেই টাকাও উইয়ে খেয়েছে। ভাবতে পারেন কত টাকা থাকলে পরে টাকা উইতে খায়।
8: इस छापेमारी में पास के यूनियन रूम को खोला गया, जहां अंदर के सभी लॉकर की जांच की गई। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा छत पर बने इस कमरे को लेकर हुआ। कॉलेज की छत पर इस कमरे को लेकर भी सवाल गहरा गया कि आखिर कॉलेज की छत पर अलग से कमरा क्यों बना। इस तरह पूरे बंगाल में लगातार होती छापेमारी में कहीं देसी बम मिल रहे हैं, कहीं सरकारी मदद में दिया जाने वाला सामान, ये सब बताता है कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी और सरकारी विभागों में कोई भेद नहीं बचा था।
0: और अब आपको हम देश की राजधानी दिल्ली में सुबह एक होटल में लगी आग से 21 मौत के गुनहगारों से खबरदार करते हैं, जहां अब तक दावा है कि 6 विदेशी नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। सोचिए पूरी दुनिया में इस खबर को जो सुनेगा वो दिल्ली के बारे में क्या कहेगा, जहां कभी अवैध बिल्डिंग बन जाती है, कभी अवैध बिल्डिंग गिर जाती है, कभी अस्पताल में आग लग जाती है, कभी किसी रेस्टोरेंट होटल में आग लग जाती है, हर बार एक ही चीज सामने आती है, अरे इसका तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं मिला था। यही तो आज दिल्ली में भी हुआ है। जिस होटल में आग लगी उसे नक्शे को लेकर एनओसी नहीं मिली थी, जिस रेस्टोरेंट से आग भड़की उसे फायर से एनओसी नहीं थी, जिस बेसमेंट में लोग फंसे उसे एनओसी नहीं थी, जिस बिल्डिंग से कूद कूद कर लोग बचने की कोशिश करते रहे वहां बने कमरों की एनओसी नहीं थी। ऐसे होटल के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता नहीं है, जिन्हें दावा है कि नो ऑब्जेक्शन ऑन करप्शन की नीति के तहत चलने दिया जाता है। आंखें बंद कर लेती है सरकार और सरकारी विभाग। नतीजा, जनता को आज पूछना पड़ता है क्या जिंदा रहने के लिए भी अब खुद एनओसी मांगनी पड़ेगी।
14: सावधान, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन आपको देखना जरूरी है क्योंकि 21 लोगों की जान विचलित कर देने वाली सरकारी व्यवस्था ने ले ली है। धुएं के बीच शीशा फोड़कर खिड़की से सीढ़ी पर आकर जान बचाती एक लड़की। कैमरा ऊपर घूमता है, दो खिड़कियों पर 2 से 3 लोग टंगे हुए आग के बीच अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। कैमरा दाएं जाता है, सामने शीशा फोड़कर मदद की गुहार लगाती एक विदेशी महिला लटकी हुई दिखती है। कैमरा फिर दूसरी तरफ गया, सीढ़ी से एक शख्स किसी तरह एक बुजुर्ग को धुएं के बीच से निकालते बचाते दिखता। इसी खिड़की से एक और लड़की को बचाया जाता है। इस बीच अचानक आग की लपटों के साथ धुआं निकलता है, शीशा तोड़कर निकलता एक विदेशी नागरिक सामने टंगा हुआ नजर आता है।
15: अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह।
14: सच में क्या ऊपर वाले के ही भरोसे आम आदमी को छोड़ दिया गया? वरना कोई सोच सकता है कि देश की राजधानी में बिना इजाजत नियम तोड़कर सरकारी नींद बेहोशी और सरकारी सिस्टम की कुंभकर्णी नींद के कारण चलते होटल के भीतर से लोगों को यूं आग लगने पर कूद कर बचना होगा। एक शख्स कूदता है, कुछ ही देर में यहां से दूसरा आदमी भी छलांग लगा देता है। मौत की आग से कूदते ऐसे आम लोग जिन्हें लगा होगा कि जिस दिल्ली से पूरे देश के लिए नियम कायदे कानून बनकर चलते हैं, कम से कम वहां तो उनको फॉलो कराया जाता होगा। लेकिन नहीं, दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे नाम के होटल में आग लगती है तो बचने के लिए 6 मंजिला होटल की अलग अलग मंजिलों से आम आदमी कूदता रहा। जिनके लिए नेता वादा करते हैं कि जिता दो तो फूल बिछा देंगे रास्ते में, उनके लिए आग लगने पर स्थानीय लोग किसी तरह गद्दा बिछा कर कहते रहे बचना है तो कूदो। और लोग कूदते रहे क्योंकि नीचे से बिजली के तारों में उठता शोला डराता रहा। देश में प्रति व्यक्ति आय में 3रे नंबर पर रहने वाले राज्य दिल्ली में पता चला कि सरकारी विभागों के भरोसे जीवन बचने के पायदान पर बहुत नीचे दिल्ली है, जहां आपकी लपटे होटल को घेरती हैं और लोग ऊपर तक जान बचाने का रास्ता खोजते नजर आते हैं। 21 जिंदगी इस इमारत में जलकर खाक हो गई, जिस इमारत से आग के शोलों और दम घोट देने वाले धुएं के बीच लोग कूद कूद कर बचने की कोशिश करते रहे।
16: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी, क्या देखा, कैसे पूरा?
17: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
16: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, ये होटल है और इसके ठीक मत तकरीबन एक फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
17: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
16: फोर्थ फ्लोर
17: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे
16: देखिए
17: ये खिड़की, देखिए खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके।
14: फिर थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँचती है।
18: पूरा हो गया, आग लग गया, अच्छी तरीके से तब आया है, इतने लोग मर गए। तब
14: जो कूदे वो बचे, जो नहीं कूद पाए यूं लाश बनकर चद्दर में समेट कर बाहर लाए गए। इस सवाल को जिंदा करके क्या जीवित रहना है तो सरकार से कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में आग भड़की वो अवैध था, जिस होटल में आग लगी वो अवैध था। एंट्री एग्जिट का रास्ता एक ही था, न एमसीडी का एनओसी था, न फायर विभाग का एनओसी था, न ही खाद्य विभाग की एनओसी थी। बिना एनओसी होटल से लेकर रेस्टोरेंट चलता रहा। मानो सरकार और सरकारी विभागों ने तय कर लिया है कि जनता की जान जाए तो जाए, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब कहा है कि दिल्ली के होटलों, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर्स और रिजॉर्ट्स में आग से सुरक्षा नियमों के पालन के लिए एक महीने का अभियान चलाया जाएगा। सवाल तो यही है कि इतना बोलने करने के लिए क्या 21 लोगों की मौत का इंतजार था? आगे ऐसा न हो इसीलिए जरूरी है कि हर मुजरिम को जांच कर सजा दी जाए। जैसे इस कांड का पहला जिम्मेदार है वो होटल मालिक जिसका नाम लवकेश बजाज है। इसके तीन होटल मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टे, फ्लोरिश इन, लेमन ग्रीन नाम से चलते हैं। फ्लोरिश स्टे आज आग के हवाले हुआ, बाकी दो होटल भी नियम तोड़कर ही बने हैं। ये होटल मालिक अभी फरार चल रहा है।
14: बजाज D140 साकेत दिल्ली, जिसके घर को खोज कर खबरदार करने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा पहुंच चुके हैं।
16: लोकेश बजाज जी कहाँ इस वक्त?
19: इस वक्त नहीं है, उधर ही होगा सर।
16: कहाँ पे?
19: सुबह ही निकले हैं होटल के तरफ।
16: अच्छा, चलिए एक सेकंड गेट खोलिएगा
19: सर, एक मिनट, मैम को
16: बुलाइए।
14: दिल्ली की आग का गुनहगार नंबर एक लवकेश बजाज है, जिसका पहला गुनाह है 6 कमरे वाले होटल का लाइसेंस लेकर 25 कमरे का होटल चलाना। गुनाह नंबर दो, बिना नक्शा पास कराए होटल बनाकर चलाते रहे। गुनाह नंबर तीन, अवैध रूप से होटल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलवाना। गुनाह नंबर चार, आग से बचाव की जगह आग लगने पर मरने देने वाली कुव्यवस्था रचना। गुनाह नंबर पांच, बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट गेट एक ही होना, यानी बचने का कोई रास्ता ना छोड़ना। गुनाह नंबर छह, जो एक नहीं बल्कि दिल्ली में मौत की आग का न्योता देते कई होटल का मालिक। आज तक संवाददाता पहले इस गुनहगार नंबर वन के घर तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद इसको तलाशते दो पुलिस वाले यहां दिखते हैं। मानो इसे खोजने से ज्यादा ये देखने आए हैं कि वो सुरक्षित है या नहीं। जो लोकेश बजाज जनता को 2,000 से 3,000 रुपए में प्रतिदिन कमरा देता था, उसने ऐसा होटल बनाया कि आग लगने पर उनका बचना नामुमकिन हो जाए। लेकिन इसका खुद का आलीशान घर देखिए, 3 मंजिल का घर, करोड़ों का घर अपने लिए बनवाकर जनता को ऐसे होटल में रखता था जहां सब कुछ अवैध था।
16: मालवीय नगर में होटल में लगी आग और 21 लोगों की मौत के कसूरवारों में से एक लवकेश बजाज के घर पर आज तक की टीम पहुंची हुई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये एक आलीशान कोठी है जिसमें बजाज फैमिली रहती है और इसी एक फ्लोर पर लवकेश बजाज रहता है। करोड़पति लवकेश बजाज के कई होटल हैं मालवीय नगर में। जिस होटल में आग लगी उसके आसपास दो होटल हैं, दोनों ही गैर कानूनी तरीके से बिना एनओसी के चलाए जा रहे हैं। लवकेश बजाज आग लगने के बाद से कहां अंडरग्राउंड हो गया, ये जांच का विषय है।
14: लवकेश बजाज ने बड़ा खेल किया है। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत जांच पड़ताल के बाद जिन लोगों को मंजूरी दी गई, उसमें फ्लोरिश स्टे नाम का होटल भी है जो मकान नंबर 269 C2 हौज रानी मालवीय नगर में जय मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड है।
20: सिल्वर कैटेगरी में रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट नंबर 2181 वाली इस फैसिलिटी में 6 कमरों को 2 मई 2027 तक गेस्ट हाउस चलाने की इजाजत मिली।
21: हम फ्लरिश्ते के टेरेस में है, ये सामने अगर देखें ये मैक्स हॉस्पिटल ये आपके सामने है, आपको यहाँ से बल्कि इमरजेंसी की एंट्री सब कुछ यहीं से दिख जाएगा। सो बेसिकली ये सामने की तरफ जो है ये आपका साकेत के अपार्टमेंट है।
20: दूसरों के नाम पर लाइसेंस लेकर होटल चलवाता लोकेश बजाज पकड़ा जाएगा, तब पता चलेगा कि आखिर किस किस को इसने पैसा खिलाकर सरकार और सिस्टम में ऐसा सेट किया जिसके बाद सब चुप्पी साधे रहे और होटल अवैध रूप से चलता रहा।
0: लवकेश कुमार को पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि इसने किस किस को पैसा खिला कर रखा होगा ताकि कोई देखे नहीं। इसीलिए नाम लेकर आज हम बोलेंगे कि सबके रोल की जांच हो। ये सब आरोपी हैं, जिसमें राकेश कुमार डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन एमसीडी हैं, सत्या शर्मा प्रमुख स्टैंडिंग कमिटी एमसीडी हैं, जितेंद्र कुमार एसडीएम, संजय सिन्हा डिप्टी हेल्थ ऑफिसर एमसीडी, आशीष रॉय जूनियर इंजीनियर एमसीडी। इन सब की जांच जरूरी है क्योंकि बिना नक्शा होटल कैसे बना, बिना हेल्थ ऑफिसर की मंजूरी रेस्टोरेंट कैसे खुला तो फिर कोई देखने वाला क्यों नहीं था। एमसीडी के लोग क्या इतने बड़े होटल बीच दिल्ली में नहीं देख पा रहे थे, जहां अवैध रूप से 6 कमरे की जगह 25 कमरे का होटल चलता रहा और अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि न जाने कितनी सख्त कार्रवाई कर देंगे।
14: नाम आशीष सूद है, दिल्ली के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली में इन्हीं का माना जाए। लाल रंग की चमचमाते सुरक्षा हेलमेट पहनकर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। इनके साथ खड़े अधिकारियों को देखिए, इनके सिर पर वो हेलमेट है जो शायद पहले कभी ये लोग पहनकर निकले तक फील्ड पर नहीं होंगे। निकले होते तो इनके हेलमेट इतने चमचमाते नहीं दिखते, लेकिन दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद का झक सफेद कुर्ता और अधिकारियों के एकदम करीने से बिना क्रीज मुड़ी पैंट शर्ट बताती है कि जनता की जान जाने के बाद नींद इन लोगों की टूटी। अब जरा आशीष सूद की बात को सुनिएगा।
22: और जिनके अंदर जरा सी भी वॉयलेशन है, हमारा सरकार दिल्ली सरकार का पानी बिजली का कनेक्शन तो तुरंत कटवाइए। इस बिल्डिंग को एनओसी की जरूरत थी, एनओसी दी हुई है इसने।
14: शर्म नहीं आती जब जान चली जाती है, तब एनओसी एनओसी का राग सबके सामने अलापते हो।
22: या नहीं थी इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में बीएनबी चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है।
14: तो फिर सरकार ये बताए क्या केवल आम आदमी की मौत के बाद कागज खोजे जाएंगे? बाकी कागज देखने के लिए खोजने के लिए जितने विभाग हैं, क्या वो केवल सैलरी लेने के लिए?
23: अब तक क्या किया गया? आशीष जी, स्टिकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, एसएसबी का दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, उनके साथ ही होंगे। इस तरह आप बोल रहे हैं कि कितने और बच गए,
22: जो अब बीएनपी का लाइसेंस को 3-3.5 साल के लिए वैलिड होता है, कब मिला, कैसे मिला? अभी आग के बीच में न वो मालिक यहाँ है, न कागजात
23: अधिकारी कहाँ है, अधिकारी कहा जिनको देखना था, एक इंट्री एग्जैक्ट छोटे कमरे,
22: जो जानकारी अभी है
23: जी
22: उसके बारे में मैंने आपसे बताया, और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
14: दोषी को छोड़ेंगे तो तब जब उन्हें पकड़ पाएंगे। दिल्ली की मौत की आग में दूसरी गुनहगार है एमसीडी, जहां बीजेपी की सत्ता, राकेश कुमार डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन एमसीडी, सत्या शर्मा प्रमुख स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी, जितेंद्र कुमार एसडीएम, संजय सिन्हा डिप्टी हेल्थ ऑफिसर, आशीष रॉय जूनियर इंजीनियर। इन सबसे सवाल होना जरूरी है क्योंकि बिना नक्शा पास किए होटल चलता रहा एमसीडी को पता नहीं, बिना हेल्थ लाइसेंस रेस्टोरेंट चलता रहा एमसीडी को पता नहीं, बेसमेंट में रेस्टोरेंट किचन चलता रहा एमसीडी को हवा नहीं। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा जब मौतों के बाद इस जगह पहुंची तो अपनी जिम्मेदारी पर जवाब देने से बचने लगी, पूरे सरकारी सिस्टम के कुएं में भांग पड़ी होने की बात कबूलने लगी।
24: लापरवाही हुई है एमसीडी से?
25: एमसीडी से नहीं, सभी डिपार्टमेंट
24: सबसे एक्शन लेंगे आप।
1: अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पर जरूर कार्रवाई होगी। कब से यहाँ पर होटल चल रहा था ये जांच के बाद ही पता चल पाएंगी सारी चीज।
0: दिल्ली के होटल में आज आग नहीं लगती अगर दमकल विभाग भी जाग रहा होता। दमकल विभाग जो दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के ही अधीन आता है, अगर दमकल वाले जागते होते तो ये गेस्ट हाउस होटल बहुत पहले बंद हो जाता, क्योंकि यहाँ किसी के पास कोई फायर एनओसी नहीं थी, होटल में आग से बचाव का इंतजाम नहीं था। लेकिन दमकल विभाग कहता है हमको किसी ने बताया ही नहीं।
2: जब माननीय मंत्री जी वहाँ आ गए सीन पर, तब हमें ये पता लगा कि ये एक BNB कोई लाइसेंस है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट देता है, वो उन्होंने लिया हुआ था और ये उसके अंतर्गत इसको चला रहे थे। फायर की NOC के लिए हमारे पास इसका रेफरेंस ना तो बिल्डिंग अथॉरिटी से आया, ना ही लाइसेंसिंग एजेंसी की तरफ से कोई हमारे पास रेफरेंस बिल्डिंग का कभी आया। बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे। इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियाँ थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को एनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: ये होटल दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट सरकारी स्कीम के तहत चल रहा था, जहां सरकार 1 कमरे से लेकर 6 कमरे तक को रहने के लिए दूसरों को देने की अनुमति देती है। इसीलिए दिल्ली का पर्यटन विभाग इस मौत की आग का मुजरिम नंबर 4 है, जिसकी जिम्मेदारी है कि जब लाइसेंस दिया जाता है उस दौरान टूरिज्म विभाग के अधिकारी को मौके पर जाकर इंस्पेक्शन करना होता है, चेक करना होता है कि 6 से ज्यादा कमरे तो नहीं बनाए गए, उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। कहने को ये बोलकर कपिल मिश्रा का विभाग और उनके अधिकारी बच सकते हैं कि लाइसेंस तो 2024 में दिया गया था जब केजरीवाल की सरकार थी, पर हकीकत में नियम ये भी है कि टाइम टू टाइम पर्यटन विभाग के अधिकारियों को यह भी चेक करना होता है कि कहीं कमरों की संख्या बढ़ा तो नहीं दी गई, लेकिन किसी अधिकारी ने जांच नहीं की। जबकि लवकेश बजाज ने 1 नहीं बल्कि 3-3 होटल इसी तरह नियम तोड़कर खड़े कर रखे हैं।
3: फ्लोरिश इन के अंदर भी अगर आप देखेंगे जो लाइसेंस की परमिशन दी गई है वो 6 रूम की इजाजत जो है वो दी गई है, 3 रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर, 3 रूम सेकंड फ्लोर पर इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया है। अब आपको ग्राउंड रियलिटी चेक कराते हैं कि ये हौज रानी का जो फ्लोरिश इन रेस्टोरेंट जो होटल है जिसको बेड एंड ब्रेकफास्ट का अगर आप देखेंगे, आप देखिएगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली सरकार की तरफ से ये बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस जो है वो दिया जाता है। फ्लोर पर कितने रूम्स हैं ये आप चेक कीजिए, रूम नंबर 101, इसके बाद रूम नंबर 102 यानी 2 कमरे, रूम नंबर 03 यानी 3 कमरों तक की इजाजत है। लेकिन अब आप देखेंगे एक कमरा आपको यहां पर नजर आएगा, एक कमरा मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि यहां पर नजर आएगा, एक कमरा आपको यहां पर नजर आएगा, एक कमरा यहां पर नजर आएगा, यहां पर गेस्ट नजर आएंगे और यहां पर भी आपको इसी तरीके से रूम जो है वो नजर आएंगे, यानी हर फ्लोर पे आपको 4 से 5 कमरे जो है वो नजर आएंगे, 5 कमरे, इजाजत 3 कमरों की। बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे हैं, किस लिए आप पहुंचे हैं यहां पर?
4: मीटर चेक कर रहे हैं सर, मीटर सही जगह में लगा है या गलत जगह में लगा है, गेट पे लगा है बाहर लगा है वो चेक कर रहे हैं।
3: क्या आपने पाया यहां पर?
4: अनसेफ जगह में लगा हुआ है, गेट के आगे लगा हुआ है। अच्छा। तो ये ठीक नहीं है।
3: अच्छा, सारे होटल्स को आपने चेक किया?
4: हाँ, अभी 6-7 होटल को चेक कर लिया सर।
3: सब में क्या स्थिति है?
4: वही स्थिति है, अनसेफ की है, सेफ नहीं। हाँ बिल्कुल।
3: ये आज आप जागे हैं, इससे पहले क्यों नहीं जागे जब हादसा हुआ?
4: ये तो हमारे बड़े अफसर बताएंगे ना, हम थोड़ी बताएंगे, हम तो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं सर।
0: जांच तो मालवीय नगर के इलाके में बड़े से लेकर छोटे पुलिस वाले की भी होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस अग्निकांड में पाक साफ नहीं है। स्थानीय पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि कोई होटल 6 कमरे का लाइसेंस लेकर 25 कमरे का चला रहा है तो पर्यटन विभाग MCD को जानकारी दे। पुलिस का काम है निगरानी रखना, लेकिन पुलिस तब निगरानी नहीं रख रही जब आज तक इस खबर पर खबरदार करने लगा तो संवाददाता अरविंद ओझा को रोकने जरूर पहुंच गई।
16: देखिए, चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल DCP है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि होटल से हम बेहद दूर हैं, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए? तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से। यहाँ पर जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद बात बीत जाती है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुंच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुंचे भाई साहब?
5: घर है इनका, पर्सनल घर है,
16: पर्सनल घर है, तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर। और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
9: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
11: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
25: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज किए।
11: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
26: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
27: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
28: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
29: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद
12: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए 80 बनाम 20 वाले सियासी नैरेटिव को धार देना बहुत तेजी से शुरू कर दिया? जहां अखिलेश यादव की पीडीए और राहुल गांधी के पिछड़ों को लेकर साधी जाति सियासत के विरुद्ध में एक तरफ योगी आदित्यनाथ, रावण कंस जैसी दुर्गति, खरदूषण के खिलाफ अस्त्र उठाओ, माफिया हिंदू को धमका नहीं सकता, जो बोली से नहीं मानता गोली से मानेगा ऐसे बयान देते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ विस्थापित हिंदू सिख बौद्ध को जमीन देते हैं, दंगा पीड़ित हिंदुओं को जमीन दिलाते हैं और मुस्लिम पहचान से जुड़े इलाके का नाम बदल देते हैं। तो क्या ये सारे दांव पेच योगी के 80 बनाम 20 वाली सियासी जमीन को मजबूत करते हैं? जैसे कुशीनगर में मुख्यमंत्री के इस बयान पर ध्यान दीजिएगा। जिस वक्त कुशीनगर में शहीदों और अपराधियों को गोली नहीं तो गोली से समझाने की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, तभी कुशीनगर से 830 किलोमीटर दूर की तस्वीर देखिए, हाथ में पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा। इनके पोस्टर पर गौर करिएगा, एक पर लिखा है हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में अपराध नहीं करेंगे, बगल में दूसरे के पोस्टर पर लिखा है हम हमेशा कानून का पालन करेंगे कभी अपराध नहीं करेंगे, योगी जी हमें माफ कर दो। तीसरा पोस्टर कहता है कि हम कानून का पालन करेंगे कभी अपराध नहीं करेंगे। चौथे पोस्टर पर लिखा गया कि मुझे क्षमा कर दे अब मैं अपराध नहीं करता ना ही भविष्य में करूंगा। बगल में पांचवा पोस्टर लिए शख्स खड़ा है, इस पर लिखा है कि योगी जी मुझे माफ कर दो मैं भविष्य में कोई अपराध ना करने की कसम खाता हूं। क्योंकि पोस्टर पर सारी लिखावट एक है तो हो सकता है कि यह सब कुछ पुलिस ने ही लिख कर दिया, लेकिन बात लिखावट नहीं दिखावट की है। पुराने अपराध वाले ये लोग गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसलिए खड़े किए गए क्योंकि पुलिस इस मिशन में जुटी है कि जो पुराने अपराधी हैं वो नए अपराध करने की गलती ना करें और जो नए अपराध करने की सोचते हैं वो कानून का डर जान जाए। ये सब कुछ ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गाजियाबाद में होता है। असल में खबर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से जुड़ी है जहां भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद के इसी खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन असद ने अपने पिता के कहने पर साथियों के संग मिलकर सूर्या नाम के नाबालिग लड़के को दावा है कि चाकू घोप कर मार दिया। असद का बाद में एनकाउंटर हुआ। अब खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलने लगा ताकि समाज के दुश्मन को कानून का मतलब बताया जा सके, और ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: आखिर में आपको बता दें कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सबसे पहले आपको दिल्ली में भ्रष्टाचार की भट्टियां दिखाएंगे जिनमें जलकर 21 लोगों की मौत हो गई। नियमों की धज्जियां उड़ाकर 6 कमरों की जगह 25 कमरों का अवैध गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था और हमारा प्रशासन गहरी नींद में सोया था। इस लापरवाही ने आज 21 लोगों को जिंदा जला दिया, जिसमें कम से कम 6 विदेशी थे। जान बचाने के लिए कोई तीसरी मंजिल से कूद रहा था, कोई जिंदा जलते हुए खिड़की से छलांग लगा रहा था। भ्रष्टाचार की वजह से हर बार आग लगती है, हर बार लोग मरते हैं, हर बार हंसते खेलते परिवार खत्म हो जाते हैं। किसी का बेटा, किसी का सुहाग, किसी की मां इस सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे गेस्ट हाउस में आज जो हुआ, अगर आप उसे हादसा कहते हैं तो ये उन 21 बेगुनाहों के साथ सबसे बड़ा मजाक होगा। सच तो ये है कि ये हादसा नहीं, व्यवस्था द्वारा किया गया कत्ल है। सोचिए, पुलिस स्टेशन से 4 मिनट, फायर स्टेशन से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर ये मौत की भट्टी धड़ल्ले से चल कैसे रही थी। इसके बाद आपको बंगाल की तस्वीर दिखाएंगे जहां ममता बनर्जी का सियासी वजूद खतरे में है। उनके सामने चुनौती है कि वो पार्टी बचाए या भतीजा बचाए। बंगाल में ममता के पैरों के नीचे से सत्ता की जमीन खिसकने के बाद अब पार्टी भी उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। टीएमसी के 60 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए ऋतव्रत बनर्जी को अपना नया नेता चुन लिया है और विधानसभा स्पीकर ने भी इस बागी गुट को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दे दी है। विरासत की इस जंग में बागियों ने ममता बनर्जी को ही मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी की। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि क्या ममता अपनी पार्टी को बचा पाएंगी या सिर्फ भतीजा ही उनके साथ बचेगा। और इसके बाद आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका में शुरू हुई नई जंग के बारे में, जिसमें ईरान ने कुवैत और बहरीन पर जोरदार हमला किया है, तो इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर भीषण बमबारी शुरू कर दी है। इस बमबारी में बातचीत धुआं धुआं होती दिखाई दे रही है और एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता यही कि अगर ये युद्ध फिर से भड़कता है, अगर अमेरिका और ईरान में फिर से फुल फ्लेज्ड वॉर होता है, तो खामियाजा हम तक पहुंचेगा। लेकिन आज सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि कब तक हमें यही सुनना होगा कि बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हर बार आग लगती है, हर बार लोग मरते हैं, हर बार परिवार उजड़ते हैं, हर बार किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी की मां, किसी का पति, किसी बुजुर्ग का सहारा राख में बदल जाता है और हर बार सिस्टम माइक के सामने आकर कह देता है कि फायर एनओसी नहीं था। लेकिन आज सवाल यह है कि कब तक हमें यही सुनना होगा और कब तक ये लाइन हमारे सिस्टम की नाकामी का आधिकारिक बहाना बनी रहेगी। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि एनओसी था या नहीं था, असली सवाल यह है कि अगर एनओसी नहीं था तो इतने दिन तक किसी को पता क्यों नहीं चला। अगर एनओसी नहीं था तो यह होटल चल कैसे रहा था? अगर एनओसी नहीं था तो वहां लोग रह कैसे रहे थे? अगर एनओसी नहीं था तो बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मिले? अगर एनओसी नहीं था तो स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? अगर एनओसी नहीं था तो फायर विभाग के अधिकारी किस बात की तनख्वाह ले रहे थे? और आखिर में इस देश में फायर विभाग का काम क्या है? क्या उसका काम सिर्फ दुर्घटना होने के बाद मलबे के बीच खड़े होकर यह बता

0: मार रहे पानी मार देगा ना।
1: रुको रुको
2: मालवे नगर के जिस गेस्ट हाउस में ये आग लगी उसका नाम था फ्लरिश स्टे। हम इसकी ऐसी पोल खोलेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर देखिए तो इस फ्लरिश स्टे में ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था और ऊपर एक गेस्ट हाउस बना हुआ था। अफसोस की बात यह है कि इसमें 50 से ज्यादा लोग ठहरे हुए थे, लेकिन इस गेस्ट हाउस के पास फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC नहीं था। और होता भी कैसे, इस गेस्ट हाउस में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था। सोचिए, नेशनल बिल्डिंग कोड और डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली फायर सर्विसेज के नियम कहते हैं कि अगर व्यावसायिक और बहुमंजिली इमारतों में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता हो तो उसे NOC नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में उस बिल्डिंग को सील किया जाता है और उस पर भारी जुर्माना लगता है। लेकिन सोचे यहां क्या हो रहा था। यहां इस गेस्ट हाउस से सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर मालवीय नगर का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। 4 मिनट, 1 मिनट की दूरी पर पुलिस चौकी है, 3 मिनट की दूरी पर इलाके का सबसे बड़ा फायर स्टेशन है, 3 मिनट की दूरी पर इलाके का सबसे बड़ा फायर स्टेशन, फिर भी ये बिल्डिंग बिना NOC का, बिना फायर NOC के धड़ल्ले से चलता रहा, किसी ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया। दुख की बात तो यह है कि ऐसे मामलों में यह घनघोर लापरवाही हर बार की जाती है और हर बार वही रिकॉर्डेड संदेश चला दिया जाता है कि फायर NOC नहीं था, ताकि अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाए। और यह भी ऐसे बताया जाता है कि जैसे यह काम आम जनता को करना था, भाई जो लोग मरे हैं उनको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना था। साल 2024-25 में दिल्ली में कुल 7,312 आग दुर्घटनाएं हुई, 98% से ज्यादा दुर्घटनाओं में फायर NOC नहीं था। इनमें भी जिन 693 दुकानों, वेयर हाउसेस, शोरूम्स, होटल्स में आग लगी उनमें 691 के पास फायर NOC था ही नहीं। जिन 450 फैक्ट्रियों और कारखानों में आग लगी उनमें 446 के पास फायर NOC नहीं था। और जिन 200 गोदामों में ऐसी घटनाएं हुई उनमें भी 199 के पास फायर NOC नहीं था। और सोचिए, जब हर 100 में से 98% दुर्घटनाओं में फायर NOC होता ही नहीं है, तो फिर हम क्यों नहीं इन दुर्घटनाओं को सरकार द्वारा निर्मित दुर्घटनाएं माने। अब एक बार फिर से दिल्ली के इस अग्निकांड की ये तस्वीरें देखिए, जिनमें इस गेस्ट हाउस में फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने अपने कमरों की खिड़कियां तोड़ी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल से नीचे कूद गए और इनमें भी कई लोग तो ऐसे थे जो जिंदा जल रहे थे। और जलते हुए इन लोगों ने बिल्डिंग की खिड़कियों से छलांग लगाई। देखिए, इस मामले में फायर डिपार्टमेंट पर एक और आरोप यह लग रहा है कि उसने आग बुझाने के लिए बहुत ज्यादा तत्परता नहीं दिखाई। जो लोग इस गेस्ट हाउस के पड़ोस में रहते हैं उनका कहना है कि फायर स्टेशन को पहली कॉल 8:40 पर गई, लेकिन उसकी पहली गाड़ी मौके पर पहुंचती है 9:40 पर, यानी पूरा एक घंटे की देरी। और दावा है कि अगर ये देरी ना होती तो इस आग को बहुत पहले ही बुझा लिया गया होता। सुनिए,

0: ये जो खिड़की है इसको तोड़ा गया है पूरी तरह से और इसके अंदर से लोगों को निकाला गया है। न सिर्फ निकाला बल गया है बल्कि लोग कूद भी रहे थे। एक आई विटनेस हमारे साथ मौजूद,
1: पाइप पकड़ के लटक रहता और हेल्प मांग रहे थे। हाँ। तो यहाँ पर जितने भी लोकल बंदे थे उन्होंने हेल्प किया, वो गद्दा बिछाया, उसको बोला जंप करो नीचे आप। हाँ। कितना जंप किया, किसी में सर में चोट लगा, किसी का हाथ टूट गया।
2: यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
0: खुलासा,
3: हालांकि इन आरोपों को फायर डिपार्टमेंट गलत बता रहा है। उसका कहना है कि उसके पास कुल 3 कॉल्स आई थी। इनमें पहली कॉल 8:50 की गई, दूसरी 8:55 पर और तीसरी 9:16 पर की गई। और क्योंकि ये गेस्ट हाउस एक घनी आबादी वाले इलाके में मौजूद है और वहां गलियां भी काफी सक्रिय हैं, इसलिए इसके रेस्क्यू ऑपरेशंस में कई दिक्कतें आई और सुबह 11 बजे तक इस आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका। सोचिए कैसी आग रही होगी या कैसे लगी, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि यह आग बेसमेंट से फैली, जहां ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद रेस्टोरेंट का एक बड़ा किचन था। जबकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी और क्योंकि इस गेस्ट हाउस में लकड़ी का फर्नीचर ज्यादा था, इसलिए यह आग बहुत ज्यादा फैल गई। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें एक विदेशी नागरिक अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के छज्जे पर चढ़ा हुआ है। और यह तो सिर्फ एक तस्वीर है। जो लोग अपने कमरों से बाहर निकल पाए या जो घटना के वक्त सो रहे थे वहीं पर फंसे रह गए। मतलब उस समय की कल्पना करके भी जैसे इंसान कांप जाता है। इनमें जिन कमरों में बाहर की तरफ खिड़कियां लगी थी, उन कमरों में फंसे लोगों ने उन्हें तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, जबकि जिन कमरों में खिड़कियां नहीं थी वो लोग जिंदा जलकर और आग के धुएं में दम घुटने से मर गए। कुल 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिनमें 6 विदेशी नागरिक हैं, 9 भारतीय हैं, 6 लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अब इस पूरी घटना में सबसे गंभीर बात यह है कि यह गेस्ट हाउस पूरी तरह अवैध था। उसका पंजीकरण 2007 की बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत हुआ था, जो गोवा की तर्ज पर शुरू की गई थी। इसमें यह तय हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति के पास दिल्ली में एक घर है, एक कोठी है या फ्लैट है और उसमें कुछ अतिरिक्त कमरे हैं, तो लोग उन्हें पर्यटकों को किराए पर दे सकते हैं, वहां पर वो होम स्टे चला सकते हैं। अब स्कीम का सबसे पहला नियम क्या था? सबसे पहला नियम यही था कि जिस बिल्डिंग में इस तरह का होम स्टे खोला जाएगा वहां 12 बेड और 6 से ज्यादा कमरे नहीं हो सकते। मतलब ये घर की तरह होगा, 6 कमरे से ज्यादा नहीं होंगे, 12 ही बेड होंगे। लेकिन इस मामले में इस नियम की खूब धज्जियां उड़ी है। इस गेस्ट हाउस में 6 की जगह 25 कमरे थे, परमिशन कितने की थी, 6 की, सिर्फ 6 बेड कमरे की, लेकिन 25 कमरे चला रहा था ये आदमी। और इसका संचालन एक होटल की तरह हो रहा था, जबकि नियमों के तहत ये होटल बन ही नहीं सकता। इस गेस्ट हाउस ने कैसे हमारी सरकारों, हमारी सिस्टम की पोल खोली, उसका एक और नमूना मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि ये किस तरह से लोगों को मूर्ख बना रहा था। तो सबसे पहले हम आपको इस फ्लरिश स्टे के, वापस जाइए पिछले पेज पर, इसका ओपनिंग पेज दिखाते हैं। ये देखिए, कहीं भी आपको उस होटल का बाहर से तस्वीर दिख रही है, थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा, यहां पे आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये उसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर वो सामने फोटो किसकी डालता है, मैक्स अस्पताल की। ये मैक्स अस्पताल की फोटो यहां पर डालता है, ये आप देख रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल। ये अपनी बाहर से कोई भी तस्वीर फ्लरिश स्टे अपनी वेबसाइट पर डालता ही नहीं है। सोचिए लोगों की आंख में, एक बार फिर से आप प्रीवियस पेज पर आ जाइए, एक बार फिर से प्रीवियस पेज पर आइए, अपने दर्शकों को फिर से दिखाते हैं। ये जब आप वेबसाइट जैसे ही फ्लरिश स्टे का खोलेंगे, मतलब कोई भी विदेशी सैलानी आ रहा है, लिखते हैं मेडिकल टूरिज्म, कंफर्टेबल रूम्स एंड किचन फैसिलिटीज आल्सो, परफेक्ट स्टे फॉर मेडिकल टूरिज्म, यानी जो लोग विदेशों से यहां पर पहुंचते थे ना अपना इलाज कराने के लिए, ये उनके लिए बता रहा है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए अच्छी जगह है। और सामने तस्वीर किसकी डाल रहा है, मैक्स हॉस्पिटल की। ये अपनी बिल्डिंग की तो बाहर से तस्वीर डालता ही नहीं है अपनी वेबसाइट पर, हमने पूरी वेबसाइट को खंगाला है। कई अन्य जो वेबसाइट्स हैं जो आपको रूम स्टे के लिए, कई सारे जो एग्रीगेटर्स हैं जो रूम स्टे बताते हैं, वहां पर तो इसकी रात की एक फोटो है भी बाहर से, लेकिन अपनी वेबसाइट पर इसने बड़ी चालाकी से अपनी बिल्डिंग की तस्वीर ही नहीं लगाई, ये मैक्स हॉस्पिटल का, ताकि जो लोग यहां पर साकेत में इलाज कराने आते हैं मैक्स हॉस्पिटल में, उसको इसने फोटो में लगा दिया और यहां पर लिख दिया परफेक्ट स्टे फॉर मेडिकल टूरिज्म, यानी जो लोग यहां पर आते हैं वो। अब देखिए ये बाकी क्या तस्वीरें डालता है, रूम के अंदर की तस्वीर डालता है, ये रूम की अंदर की तस्वीर इस तरह से एक बेडरूम की डालता है, एक दूसरे बेडरूम की दिखाता है, इसमें ये दिखा रहा है कि एसी है इनके पास, और इस तरह से ये किचन की भी पूरी व्यवस्था यहां पर इस तस्वीर में दिखा रहा है। और सबसे ज्यादा ऑपोजिट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, इसका सारा का सारा वेबसाइट इसी बताने पर जोर देता है कि भाई हम मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने में है। अब आ जाइए इस हिस्से में जहां पर ये जानकारियां दे रहा है कि हमें क्यों आप चूज कीजिएगा, क्यों आप हमारे होटल में रहने आइए, जिसको वो अपनी तरफ से फ्लरिश स्टे सिर्फ कह रहा है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नहीं। मैक्स हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी, सबसे बड़ी चीज जो ये बताता है, मैक्स हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी। फिर आ जाइए, ये बताता है आरामदायक कमरे, फिर ये बताता है किफायती, मतलब कीमत कम है सस्ता पड़ेगा, आ जाइए। सेल्फ कुकिंग, खुद से आप खाना बना सकते हैं, यानी आपको किचन मिल रहा है, आपको कुकिंग स्टोव मिल रहा है, आपको सब कुछ की व्यवस्था मिल रही है। आसान कनेक्टिविटी जिसकी वो बात करता है, और अच्छी मेहमान नवाजी का भी वो यहां पर जिक्र करता है। लेकिन ये कहीं नहीं बताता है, मेरे साथ पढ़िए, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि इमरजेंसी गेट नहीं है। उसने ये कहीं नहीं बताया लोगों को जो उसके कमरे में आ रहे हैं रहने के लिए कि आपके पास एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट होगा, जो कि तमाम नियमों की अनदेखी है। फायर एग्जिट नॉर्म्स ये कहते हैं कि एक तरफ अगर लिफ्ट है तो आपको दूसरी तरफ सीढ़ियों से भी एग्जिट देना है, एक एंट्री है तो एक एग्जिट भी आपको देना है, लेकिन इतनी बड़ी चीज वो अपने लोगों से छिपा लेता है जो लोग आते हैं, और इस तरह से वो लोगों को ठगता है, ठगता है अपने वेबसाइट पर लाकर, मैक्स हॉस्पिटल की चमचमाती हुई तस्वीर लगाता है, मेडिकल टूरिज्म का बखान करता है, अस्पताल के बगल में ये दिखाता है, कमरे की अच्छी सी तस्वीर लगा देता है, लेकिन अपनी बिल्डिंग नहीं दिखाता है। अब आइए आपको अब अगली जानकारी इस फ्लरिश स्टे के बारे में देते हैं। कमरों के अंदर कुकिंग बर्नर, ये जो फोटो है उसमें हमने जूम इन किया और ये देखिए क्या स्थिति है। एक ही एग्जिट है और इसके बावजूद, मतलब एंट्री एग्जिट एक ही है, ये जब आप देखें तो कुकिंग बर्नर लगाने की इजाजत नहीं होने के बावजूद, जूम इन किया है हमने आपके लिए, कमरों के अंदर वो इस तरह से बर्नर लगाने की इजाजत लगा देता है। तो ये फ्लरिश स्टे की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किसकी वजह से आज ये सवालों के घेरे में है और किसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी है। तो हमने आपको उसका वेबसाइट दिखाया, चमचमाता हुआ वेबसाइट जिसमें वो मैक्स हॉस्पिटल का पूरा बखान कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच किसी को नहीं बता रहा कि हमारे पास एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है। अब अगर कोई होम स्टे इतनी मनमानी करता है, 6 कमरों की जगह 25 कमरों में होटल चलाने लगता है, ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रेस्टोरेंट भी खोल लेता है, ये देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं लेता है, अवैध तरीके से बेसमेंट में कमरे बना लेता है, तो इस मनमानी का हमारी सरकारों के पास क्या जवाब है? ये दो तस्वीरें हैं। बहुत ढूंढने के बाद कुछ अन्य वेबसाइट्स पर इस फ्लरिश स्टे की पिक्चर्स मिली है। ये जो स्नैक्स एंड बाइट आप देख रहे हैं ना, ये उसी रेस्टोरेंट का प्रचार है जो ये नीचे चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी आज की ये धधकती हुई तस्वीरें देखिए, जिसमें लोग जिंदा चले हैं। अगर इस देश में कानून है, कानून का पालन कराने के लिए पूरी व्यवस्था है, तो व्यवस्था हमें दिखाई क्यों नहीं देती? और सोचिए, ये तो होमस्टे की कहानी है, ऐसा ना जाने कितने होमस्टे और कितने गेस्ट हाउस होंगे जो इस तरह की मनमानी कर रहे होंगे। यहां आप ये भी देखिए कि ये गेस्ट हाउस लगभग सभी ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, इसके बारे में इन प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर की जानकारियां लिखी हैं, ये बताया गया है कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, लेकिन इनमें कहीं ये नहीं लिखा कि इस गेस्ट हाउस में एंट्री एग्जिट के लिए एक रास्ता है। इसके पास फायर एनओसी नहीं है, ये असल में एक होटल भी नहीं है। ज्यादातर ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर 85% से ज्यादा होटल और होमस्टे ऐसे हैं जिनमें यह बताया ही नहीं जाता कि इमरजेंसी गेट है या नहीं, या वहां दुर्घटनाओं से निपटने को लेकर क्या इंतजाम है। हमारे देश में लोग भी ये चेक नहीं करते, जिसका ऐसे लोगों द्वारा फायदा उठाया जाता है। और सवाल है कि यहां तो विदेशी सैलानी भी आ रहे थे अपना इलाज कराने के लिए, उनकी आंखों में मैक्स हॉस्पिटल की चमचमाती हुई तस्वीर डालकर धूल झोंका गया।
4: बहुमंजिला इमारत है, इसमें भीषण आग लगी और किस तरीके से वहां पर लोगों ने भागने की कोशिश की। वहां पे पड़े हैं कुछ गद्दे भी जो ये बयां करते हैं कि लोग इतनी ऊंचाइयों से कूदकर भागने को तैयार थे अपनी जान बचाने के लिए, वो इस वक्त ये भी ना उन्होंने सोचा कि ये कितनी ऊंचाई है।
0: ये जो पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जब आग लगी तो उसके बाद पैनिक फैल गया, जिसमें लोग बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान बचाने लगे। तब नीचे गद्दा लोकल लोग हैं, उन्होंने बिछाया ताकि लोगों को चोट न लगे।
5: ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे एरिया में ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें नाइजीरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं या फिर दूसरे अन्य कंट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग यहां पर रुके हुए थे और उसके बाद उनकी बॉडीज जो है यहां से निकली है।
6: लोगों का हाल क्या था उस समय?
7: हाल मतलब अभी मैं आपको बता नहीं सकता, शुरू मतलब हम ही थे यहां, सब आग थी, हमने यहां रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्ची को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया, फिर बच्ची को कुदाया, सात लोगों को हमने ऊपर से कुदाया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से। उसके बाद आग हम जब कोशिश करें जाने की हम जा नहीं पाए।
8: मालवीय नगर की ये 5 मंजिला इमारत जलकर खाक हुई, लोग मारे गए, लेकिन इसके आसपास आग के कई ऐसे कारण दिखाई देते हैं जो फिर भविष्य में इस तरह की घटना दे सकते हैं। पूरा मालवीय नगर का ये जो इलाका है तारों का एक जंजाल दिखाई देता है, पूरा तारों से घिरा हुआ, बिजली के तार हैं, केबल्स हैं, और वो इस कदर भी हैं कि इमारतों के पास तो ऐसी स्थिति है कि अगर कोई कबूतर मुंह से तार का एक छोटा टुकड़ा लेकर के आके वहां गिरा दे तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए।
3: पिछले हफ्ते ही दिल्ली की बीजेपी सरकार बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम का एक नया ड्राफ्ट लेकर आई थी, जिसमें यह प्रस्ताव था कि अब इस तरह के होमस्टे और गेस्ट हाउस में 6 की जगह 8 कमरे और 12 की जगह 16 बेड बनाए जा सकेंगे। और सोचिए, यह प्रस्ताव अभी लागू भी नहीं हुआ है, अगर लागू हो भी गया तब भी इन होमस्टे और गेस्ट हाउस में 6 कमरों की जगह 8 कमरे हो सकते हैं, जबकि मालवीय नगर के गेस्ट हाउस पहले से ही 25 कमरों में अवैध तरीके से चल रहा था और न सरकार इसे रोक पाई, ना गेस्ट हाउस ने नियमों का पालन करना जरूरी समझा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग में जो बेसमेंट बनाया गया था उसमें बाहर निकलने के लिए एक अलग से रास्ता था, और अगर उस गेट पर ताला ना होता तो वहां से नीचे फंसे लोग कम से कम बाहर निकल सकते थे, कुछ लोगों की तो जान बचती, कम से कम 6 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन यहां भी इस गेट पर एक ताला होने के कारण कई लोगों का अंदर ही दम घुट गया, और जिस तरह बाद में उनके शव बाहर निकाले गए वो तस्वीरें तो खैर हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। यकीन नहीं होगा आपको कि दिल्ली में हर दिन औसतन 20 आग हादसे होते हैं, इनमें 92% मामलों में कोई ना कोई लापरवाही होती है, लेकिन हमारी सरकारें हर बार ये कहकर निकल जाती हैं कि जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। याद कीजिए मई 2024 में इसी दिल्ली में क्या हुआ, उस वक्त पूर्वी दिल्ली के एक अवैध नर्सिंग होम में आग लग गई, 7 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। उस मामले में भी यही पता चला था कि इस अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं था, उसके पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था। अरे भाई, ये सुन सुनकर हम लोग क्या करें, फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान आग बुझाने के लिए एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था और अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई रास्ता नहीं, यानी लगभग वैसी ही स्थिति थी जैसी कि आज की घटना में। उस वक्त भी यही कहा गया था कि मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके अलावा दिल्ली में कुछ नहीं बदला। यही कारण है कि आज हम आपको उन सभी नेताओं अधिकारियों के नाम गिनाना चाहते हैं जो अगर अपना काम ईमानदारी से करते तो शायद इस दुर्घटना में इतने लोगों को जिंदा जलकर मरना नहीं पड़ता। सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद की है, जिनके अधीन दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट आता है। अगर फायर डिपार्टमेंट अपना काम ईमानदारी से करता तो शायद ये गेस्ट हाउस कब का बंद हो जाता। इसके बाद दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष डी वैद का नाम आता है, जिनके पास फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग होती है। कपिल मिश्रा दिल्ली के पर्यटन मंत्री हैं और ऐसे तमाम ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट को लाइसेंस पर्यटन मंत्रालय से ही मिलता है। फिर दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर ए निंदू चिज्यान भी इस घटना के लिए पूरी तरह जवाबदेह हैं। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा घटना के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे क्योंकि स्कीम जो है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की वो उन्हीं के पर्यटन विभाग से मिलता है। अगर इस पूरे विभाग में आप देखें तो कपिल मिश्रा का विभाग अपने पोर्टल पर रजिस्टर्ड इन गेस्ट हाउसेस का ऑडिट करता, उनकी जांच करता, तो 25 कमरे मिलने पर यह गेस्ट हाउस बहुत पहले ही बंद हो गया होता, ये घटना नहीं होती। दिल्ली में सिर्फ 432 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो स्कीम में रजिस्टर्ड है। इनका ऑडिट करना पर्यटन विभाग के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद स्थानीय प्रशासन एमसीडी के जे आशीष रॉय इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें अपने इलाके में चल रही अवैध गतिविधियों की निगरानी करनी थी, इसे रोकना था, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। और आखिर में दक्षिणी दिल्ली में एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर राकेश कुमार भी इस घटना के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, जिन्होंने अपना काम नहीं किया। बड़ी बात यह है कि राकेश कुमार वही अधिकारी हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने साकेत के उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, जहां एक जर्जर इमारत गिरने से कई लोग मारे गए थे। हमारे देश में अगर होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस का किराया प्रतिदिन 3,000 रुपए तक हो तो उस पर सरकारों को 5% का जीएसटी मिलता है। फिर जब ये होम स्टे अपना रजिस्ट्रेशन सरकार की स्कीम में कराते हैं तब भी इनका शुल्क इनको एक शुल्क देना होता है। बाकी सुविधाओं और सेवाओं पर भी ग्राहकों से टैक्स लिया जाता है, सरकारों के पास ये टैक्स जाता है। इसीलिए सरकारों की जिम्मेदारी उनको समझनी चाहिए, ऐसे हाथ से रोकनी चाहिए।
6: ओवरलोड के कारण आ गया क्या है? और जिनके अंदर जरा सी भी वॉयलेशन है, हमारा सरकार दिल्ली सरकार का पानी बिजली का कनेक्शन तो तुरंत कट जाएगा। इस बिल्डिंग को एनओसी की तरफ थी, एनओसी दी हुई है इसके,
3: रोमन इतिहासकार टैसिटस ने एक बार कहा था कि जितना भ्रष्ट समाज होगा वहां उतने ही अधिक कानून होंगे, और ये बात आज हमारे देश के लोगों को बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। ये बात सही है कि हमारी सरकारें नियम कानूनों का पालन कराने में नाकाम रहती हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे देश में जिन अमीरों को मौका मिलता है वो आम लोगों का खून चूसने, नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ते। आप जुलाई 24 की उस घटना को याद कीजिए जब दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। मौत का कारण यह था कि जिस कोचिंग संस्थान में ये पढ़ते थे वो इन्हें नियमों का उल्लंघन करके बेसमेंट में ठूस देता था, और जब एक दिन इस बेसमेंट में पानी भरा उस पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इस तरह के कोचिंग संस्थानों की असली हनक सामने आई और एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कैसे, यहां पर बात सिर्फ कोचिंग संस्थानों की नहीं है, होटल मालिकों को मौका मिलता है नियम तोड़ते हैं, मकान मालिकों को मौका मिलता है वो नियमों की धज्जियां उड़ाकर माचिस जैसे डिब्बों में कई छात्रों को ठूस ठूस कर रखते हैं, उनसे महंगा किराया वसूला जाता है। अनेकों ऐसे छात्र आपको इसी मालवीय नगर के इलाके में मिलेंगे जो इन तंग गलियों में बिजली के तार जो बड़े बड़े खंभों से लटक रहे हैं उनके बीच में बनी हुई इन इमारतों में रहने को मजबूर हैं। गेमिंग जोन वालों को मौका मिलता है तो वो भी कानून को ठेंगा दिखाकर राजकोट के अग्निकांड की तरह कई बच्चों की जान ले लेते हैं। ठेकेदारों को मौका मिलता है तो वो अपनी मनमानी करते हैं, नियमों का कोई सम्मान नहीं करता, सिलसिला रुकता नहीं है। और जो इलाके का जेई होता है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जब ये अवैध इमारतें बन रही होती हैं, जब नियम तोड़े जा रहे होते हैं, जब कोई नया वहां पर निर्माण किया जाता है, आखिर 6 से 25 कमरे कैसे बने, किसी को दिखाई नहीं। जिसके पास हनक है, जिसकी ऊपर तक पहुंच है, जो नेता बड़े अफसरों को जानता है, पैसे वाला है, जिसकी सिस्टम में सेटिंग है, वो अपने अपने तरीके से कानून को तोड़ता रहता है। आप पुणे के उस सड़क हादसे को याद कीजिए जहां एक रईस बाप के 17 साल के लड़के ने नशे की हालत में अपनी पोशे कार से दो बाइक सवार लोगों को मार दिया था। उसके बाद उसके पिता ने उसे बचाने के लिए ब्लड सैंपल्स है उसको बदलवाने की साजिश रची थी ताकि शराब पीने के सबूत मिटाए जा सके। अनेकों ऐसे मामले हैं। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी देश तभी अनुशासित बनता है जब वहां की सरकार जिम्मेदार बने, समाज में हनक दिखाने वाले लोग भी जिम्मेदार बने और कानून को अपनी बपौती कोई ना समझ पाए। दिल्ली के इस अग्निकांड में भी जो लोग इस गेस्ट हाउस के मालिक थे वो भी तो सब जानते हुए नियम तोड़ रहे थे। आज देखिए ये आरोपी फरार है, शायद आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी इस शख्स की हो जाएगी। लेकिन एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस घटना में जिंदा जलकर मरे हैं और ये मौत सबसे बुरी मौत होती है। इसमें इंसान को दो बार जलकर मरना पड़ता है और जो वेदनाएं इससे फूटती है ना उन्हें शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें गुरुग्राम के उस परिवार की हैं जिसने इस अग्निकांड में अपने 8 लोगों को खो दिया है। 80 साल के राधेश्याम अग्रवाल फेफड़ों की बीमारी के लिए साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और उनके इलाज के कारण परिवार के बाकी लोग भी गुरुग्राम से दिल्ली के साकेत आ गए थे और उन्होंने यहां यह सोचा था कि जब तक उनका इलाज नहीं हो जाता वो इस गेस्ट हाउस में रहेंगे। लेकिन आज ये घटना हुई, इसमें अस्पताल में भर्ती राधेश्याम अग्रवाल के बेटे विवेक अग्रवाल, दो छोटी पोतियां, पत्नी, सब 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। और सोचिए इस परिवार ने तो सपना सब कुछ खो दिया। जानते हैं अस्पताल में भर्ती राधेश्याम अग्रवाल को खबर तक नहीं है कि इस अग्निकांड ने उनके पूरे परिवार को निगल लिया और इसलिए ऐसी घटनाएं सिर्फ हादसों तक सीमित नहीं होती। इनका दर्द समझना है तो इनमें मरने वाले लोगों के घर जाकर देखिए जहां उदासी है, दुख है, सन्नाटा पसरा है।
9: दिल्ली के मालवीय नगर के उस होटल के अग्निकांड में जिन 21 लोगों की मौत हुई है उनमें 5 से 6 लोग गुरुग्राम के बताए जा रहे हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 46 के विवेक अग्रवाल जी के मकान के बिल्कुल सामने हूं जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है। परिजनों को नहीं पता कि विवेक अग्रवाल उनका परिवार कहां है, लेकिन जानकारी के मुताबिक विवेक अग्रवाल के पिता मैक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में एडमिट थे। विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, अपनी माँ और दोनों बच्चों के साथ उस होटल में रुके थे जहां पे ये अग्निकांड हुआ जिसमें 21 लोगों की मौत सामने आई थी। हालांकि परिजन ये बताने में लगे हैं कि 4 लोगों के शव उन्हें दिखाए गए हैं मैक्स हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी के 2 से 3 लोग परिजन कहां हैं उसका उन्हें पता नहीं लग पा रहा। जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है।
10: परिवार में से आप तो एक लड़का, मदर, बिटिया, वाइफ तो भी ढूंढ ही रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी, उनका पता ही नहीं चल रहा वाइफ और छोटी बेटी का कहाँ है।
11: ये तो बहुत ही दुखद समाचार, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह की चीज।
12: भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूंगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तक ये नहीं है कि वो भाई इस तरह की उनके साथ हादसा हुआ है, कोई गलती नहीं।
3: आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में आग हादसों के कारण हर साल 16 लोगों की मौत होती है। 2024 में 5,888, 2023 में 6,891, 22 में 7,435 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर मामलों में नियमों का उल्लंघन ही वजह था। दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा आग की के हाथ से यहीं पर होते हैं। देश में कमर्शियल बिल्डिंग से जुड़े हर एक आग हादसे पर औसतन 0.9 मौतें होती हैं, जबकि दिल्ली में हर एक आग हादसे 1.33 मौतें होती हैं। दिल्ली में आग हादसे इतने खतरनाक क्यों बनते हैं? 60% घटनाओं में घटिया, पुराने सब स्टैंडर्ड वायरिंग बड़ा कारण, शॉर्ट सर्किट इनकी वजह से होता है। दूसरा बड़ा कारण बिजली के सिस्टम पर ज्यादा लोड पड़ना। तीसरा है गैस सिलेंडर्स का खराब इस्तेमाल और इनमें सबसे अहम है सब स्टैंडर्ड वायरिंग। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कैसे, अगर आप देखिए तारें लटकी होती है, भारी भारी तार आप दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल जैसे टेरेस के बगल से गुजर रही हैं। ये तारे ऐसे ही लटकी रहती हैं और यही आग हादसों का सबसे बड़ा कारण बनती है। अगर यहां शॉर्ट सर्किट हो जाए, देखिए इस घर में आग फैलना कितना आसान है। कोई सरकार अब तक इसका समाधान ढूंढ ही नहीं पाई है, कितने लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। और यहां ये याद रखिएगा कि दिल्ली देश की राजधानी है, लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं और वो भी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, तो इससे हमारे देश की छवि को धक्का लगता है। इस अग्निकांड के बाद होटल फ्लरिश स्टेज के मालिक लवकेश बजाज को खोजा जा रहा है। लवकेश बजाज यही शख्स वो मुजरिम है जो अब भागता फिर रहा है। ऐसे अनेकों अग्निकांड इस देश में हुए हैं और आपने देखा होगा कि उसके बाद से मालिक भाग जाता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। जमीन है पश्चिम बंगाल की इस बार। जिस बंगाल में 4 मई तक ममता बनर्जी का एक छत्र राज था, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, बंगाल की जमीन पर किसी की हिम्मत नहीं थी जो ममता बनर्जी को चुनौती दे सके, लेकिन 4 मई को सत्ता की जमीन ममता बनर्जी के पैरों तले ऐसी खिसकी, ऐसे खिसकी कि अब पार्टी भी हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी है। महाराष्ट्र का शिंदे कांड अब बंगाल की धरती पर दोहराया जा चुका है। टीएमसी के 60 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। सोमवार को पार्टी से निकाले गए ऋतव्रत बनर्जी को बागी गुट ने अपना नया विधायक दल का नेता चुन लिया। और सबसे बड़ी खबर यह है कि विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस ने इस बागी गुट को मान्यता दे दी है, चाबी सौंप दी है। यह सबसे बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। और अगर इस पूरी खबर को समझे तो आज बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी को आज ये तय करना है, उन्हें एक हिस्सा चुनना है। एक तरफ है उनके 60 विधायक जो ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी का भतीजा हमें स्वीकार नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी नेता है, वो हमारा मार्गदर्शन करें। और दूसरी तरफ है अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे, आज ममता बनर्जी को चुनना है। पार्टी बचाना चाहती है तो विधायकों की तरफ जाना होगा, और भतीजे के साथ रहना चाहती है तो उनके पास भतीजा बचेगा। बागीकुट ने ममता बनर्जी को चुनौती देने के साथ उन्हें अपना नेता बताया, गेंद उन्हीं के पाले में डाल दिया। सवाल बड़ा है, दीदी भतीजा चुनेंगी या पार्टी बचाएंगी। ये बगावत अचानक नहीं हुई, कटमनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली, आईपैक को लेकर विधायकों की नाराजगी, आईपैक की दखलअंदाजी पर दीदी का भतीजा प्रेम ने टीएमसी में असंतोष पैदा किया जो सत्ता जाते ही ज्वालामुखी बनकर फूट गया। इस बगावत को एक मौके की तलाश थी, वो तब मिल गया जब अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को एक पत्र भेजा गया था जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान था। यहीं पर दाव उल्टा पड़ गया। टीएमसी के दो कद्दावर चेहरे ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि इस लेटर पर उनके हस्ताक्षर फर्जी यानी जाली। जैसे ही यह शिकायत स्पीकर तक पहुंची, ममता बनर्जी ने बिना वक्त गवाए इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल बाहर किया। लेकिन ममता बनर्जी भी चूक कर बैठी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिन दो विधायकों को वो बाहर कर रही हैं, उनके पास 60 विधायकों की ताकत है, जबकि ममता ने उन्हें बेहद हल्के में लिया था। निष्कासन के ठीक 48 घंटे के अंदर बुधवार को ऋतव्रत बनर्जी ने वो कर दिखाया जो तृणमूल कांग्रेस के 28 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ममता बनर्जी की आंखों के सामने ही उनके हाथ से पार्टी फिसल रही है। अब उन्हें तय करना है कि वो बागियों की बात मानते हुए उनकी सलाहकार मार्गदर्शक बनती हैं, यानी मार्गदर्शक मंडल का रास्ता चुनती हैं, या फिर भतीजे के साथ पार्टी बचाने की लड़ाई शुरू करती हैं या नई पार्टी बनाती हैं। क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी उनकी मार्गदर्शक बने। आज ममता बनर्जी को अपना वो बयान जरूर याद आ रहा होगा जब उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें आडवाणी जी के लिए बुरा लग रहा है, ये अपमानजनक है कि आप सीनियर का सम्मान नहीं कर रहे, हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना है। और आज ममता की पार्टी के नेता उन्हीं को पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहते।
13: A lot of MLAs are listening to me. I'm a backbencher. I'm a backbencher, literally in every sense of the term. If so many MLAs are listening to me, then I'm very, very powerful. But this has nothing to do with reality. It's devoid of reality. So I won't answer this question. I know that majority of the Trinamool Congress MLAs will be attending the administrative meeting held by Honorable Chief Minister Shri Shubhendu Adhikari.
3: Mamata Banerjee ne bagiyon ki kshamta ko halke mein aaka. दरअसल रुद्रत बैनर्जी सिर्फ हवा में दावे नहीं कर रहे थे। आज जब वो विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस के चेंबर में दाखिल हुए तो उनके हाथ में 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक समर्थन पत्र था। दो और विधायक जो इस वक्त राज्य के बाहर हैं, उन्होंने भी फोन पर अपनी सहमति दे दी। यानी 80 विधायकों वाली टीएमसी के कुल 60 विधायक अब ममता और अभिषेक के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। इस बगावत ने ममता बनर्जी को कानूनी रूप से बेबस बना दिया है। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक किसी भी पार्टी को कानूनी रूप से तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों का साथ होना जरूरी है। बागी गुट के पास जादुई आंकड़े 54 से 6 विधायक ज्यादा हैं। इसलिए स्पीकर रथिंद्र बोस ने बिना किसी देरी के रुद्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। इतना ही नहीं, रुद्रत को बाकायदा नेता प्रतिपक्ष के कमरे की चाबियां भी सौंप दी गई हैं। यानी सदन के भीतर अब ममता बनर्जी की टीएमसी नहीं बल्कि रुद्रत का यह बागी गुट असली बॉस बन चुका है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि विधानसभा स्पीकर का विशेषाधिकार सिर्फ विधानसभा तक सीमित है, यानी वो नियमों के तहत यहां नेता प्रतिपक्ष और सदस्यता को लेकर फैसला ले सकते हैं। चूंकि अभी बागी विधायकों के पास नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी संख्या बल है, इसलिए उन्हें यह पद मिल गया, साथ ही 2/3 संख्या। 2/3 संख्या होने की वजह से उनकी सदस्यता फिलहाल संकट में नहीं है। लेकिन इससे यह तय नहीं हो जाता कि तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर भी उन्हीं का अधिकार होगा, पार्टी किसकी रहेगी यह तय नियमों के आधार पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। यह तो तय है कि बागी अलग रास्ता पकड़ चुके हैं, पार्टी पर भी दावा कर चुके हैं, और दूसरी तरफ ममता भी बागियों को गद्दार कह चुके हैं। यानी पार्टी सिंबल को लेकर एक खींचतान मचना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बताते हैं कि तृणमूल पर किसका कब्जा हो सकता है। पार्टी सिंबल पर कब्जे का फैसला चुनाव आयोग करता है। 80 में से 60 विधायक होने पर भी बागी पार्टी सीधे नहीं कब्जा सकते। फिलहाल की स्थिति में ममता बनर्जी ही टीएमसी की अध्यक्ष बनी रहेंगी, पार्टी में फेरबदल कर सकेंगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी कमिटीज और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए यह साबित भी कर दिया है। सवाल यह है कि बागी पार्टी पर कब्जा करना चाहें तो क्या होगा। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग से मांग करनी होगी, जिसके लिए कई पैमाने हैं। जिस तरह बागियों के पास ज्यादा विधायक हैं, उसी तरह ज्यादा सांसद भी उनके साथ आने चाहिए, साथ ही संगठन में भी ज्यादा समर्थन होना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों की तरफ फैसला ले सकता है। वो ये जानने की कोशिश कर सकता है कि किसके पास विधायक, सांसद और संगठन में किसके पास ज्यादा समर्थन है। ममता के हाथ से पार्टी तभी जाएगी जब विधायकों के साथ सांसद और संगठन के लोग बगावत करते हैं, और यह लंबी प्रक्रिया है क्योंकि अक्सर ऐसे मामले चुनाव आयोग के साथ साथ कोर्ट में पहुंच जाते हैं। फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता जरूर रुद्रत बनर्जी को मिल गई है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अभी भी ममता बनर्जी हैं। सिंबल पर विवाद की स्थिति में फैसला चुनाव आयोग या कोर्ट ही कर सकता है। इस बगावत की सबसे दिलचस्प और रणनीतिक बात यह है कि बागियों ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला नहीं किया है। रुद्रत बनर्जी ने क्या दाव खेला? उनके अलावा उपनेता बने जावेद खान, संदीपन साहा, स्यूली साहा, चीफ विप बने अखरुजमान, इन सब ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि ममता बनर्जी ही उनकी सर्वोच्च नेता है। यानी लड़ाई नीति की नहीं, लड़ाई विरासत की है। यानी इन लोगों ने टीएमसी पर दावा कर दिया, ममता को अपना नेता बना दिया, टीएमसी के कोर वोटर ममता के कट्टर समर्थकों को भी नाराज नहीं किया। यानी ये बगावत सीधे तौर पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लामबंदी है। बागी विधायकों का साफ कहना है कि पार्टी को कुछ इनसाइडर नेताओं ने मजाक बना दिया था, वो टीएमसी को बचाने के लिए आ गया है। इधर ममता बनर्जी ने अपने धड़े के नेताओं और विधायकों के साथ एक लंबी बैठक की। इस बैठक के बाद दिग्गज नेता मदन मित्रा ने बागी गुट पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग के बाद बाहर निकले मदन मित्रा ने रुद्रत बनर्जी और उनके साथ गए विधायकों को कचरा कहा, कचरा बताया, और कहा कि जो लोग पार्टी से निकाले जा चुके हैं वो असली टीएमसी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि रुद्रत बनर्जी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर रहे बल्कि वो पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बागी नेताओं में इतना दम नहीं है कि ये खुलकर बीजेपी में शामिल हो सके, इसलिए ये टीएमसी के नाम का इस्तेमाल करके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उन्होंने इस लड़ाई को सड़क से लेकर अदालत तक राजनीतिक कानूनी दोनों तरीके से लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने रुद्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलने पर तीखे सवाल उठाए। मदन मित्रा ने सीधे सीधे स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए इस पर पूरे घटनाक्रम को गैर कानूनी बताया।
14: हाउ कैन एक्सपेल रीडर एन इंडिपेंडेंट लीडर द मोमेंट ही इज एक्सपेल्ड समबडी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम ए पार्टी ही इज इंडिपेंडेंट सो हाउ कैन एन इंडिपेंडेंट लीडर ही बिकम्स अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी इग्नोरिंग द हाइस्ट ऑफिस सो द एंटायर प्रोसेस इज इलीगल एंड एब्सोल्युटली इट इज ए गेम ऑफ ट्रेड हॉर्स ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ बीजेपी
15: ब्रीथोप्रत इज बींग फंडेड बाई द बीजेपी
14: एब्सोल्युटली इट इज ए बीजेपी कंसर्न गेम बट ओके लॉ इज स्टिल देयर लेट अस सी बट वी विल गो अप टू लास्ट
15: सो यू विल फाइट दिस लीगल
14: पॉजिटिवली
3: अब बात करेंगे ईरान की जहां एक बार फिर से युद्ध की आग धधक उठी है ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अटैक किया जिसके जवाब में अमेरिका ने केशन द्वीप पर बमबारी शुरू कर दी है कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि शांति लंबे समय तक शायद कायम रहेगी लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी ऐसा लग रहा है इन हमलों के बीच एक और बड़ी खबर आई है इस साल 28 फरवरी के बाद से एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही थी कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का क्या हुआ उनकी अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा अब इन सवालों का ठोस जवाब मिलने लगा है ईरान के सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा 16 जून से 26 जून के बीच किसी एक दिन निकाली जाएगी हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं है लेकिन खबरों के मुताबिक इसी महीने मुहर्रम के दौरान अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा IRNA की खबर के मुताबिक अली खामनेई के जनाजे के लिए ईरान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग जितने शहर हैं तमाम शहरों में शोक सभाएं भी आयोजित की जाएंगी अनुमान है कि उनके जनाजे में करीब 2 करोड़ लोग शामिल होंगे खबर के मुताबिक अली खामनेई का जनाजा तेहरान के अलावा देश के 2 प्रमुख धार्मिक शहर कोम और मशहद में भी गुजरेगी योजना के मुताबिक मशहद में अली खामनेई के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा क्योंकि यह शहर उनका घर था दुनिया के ज्यादातर धार्मिक परंपराओं में व्यक्ति की मृत्यु के कुछ ही दिनों के अंदर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है लेकिन अली खामनेई के मामले में करीब 3 महीने बाद जनाजा उठेगा अली खामनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों में हुई थी और उसी के बाद से ईरान के वरिष्ठ नेता और सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके शव को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा की तैयारियों के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता को फिलहाल रोक दिया है और अटैक शुरू कर दिए हैं ईरान की फार्स और तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान की तरफ से शांति वार्ता के मीडिएटर्स से बातचीत बंद कर दी गई है और बातचीत बंद करने की वजह इसराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमले हैं युद्ध विराम के पहले शर्त यह रखी गई कि इसराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा लेकिन हमने आपको बीते दिन बताया लेबनान पर हमले करने के लिए ट्रंप कह रहे हैं नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है दोनों के बीच बकझक हो गई लेकिन हिजबुल्ला की ओर से किए गए हालिया हमलों के बाद इसराइल ने फिर से लेबनान में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिए और दक्षिण लेबनान और बेरूत पर जबरदस्त बमबारी की है इसी सैन्य ऑपरेशन को आधार बनाते हुए ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ उसने बातचीत को बंद कर दिया है हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन दावों को झूठा बताया गया है उनके मुताबिक ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है और अब समय आ गया है कि किसी न किसी तरह के एक समझौता किया जाए लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर और ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए उसे देखते हुए दोनों देशों में शांति बहाली की उम्मीद कम होती जा रही है कल अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी के दौरान ईरान की ओर जा रहे एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल फायर किए थे यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी को पार करके एक शिप खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था कई चेतावनी दी गई कई चेतावनियों के बाद भी जब जहाज को नहीं मोड़ा गया तब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शिप के इंजन पर हेल फायर मिसाइल्स दाग दी जिसके बाद जहाज को काफी नुकसान हुआ 13 अप्रैल के बाद से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाई हुई है और वहां जाने वाले 100 से ज्यादा जहाजों को वापस

0: आ गया, तब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शिप के इंजन पर हेल फायर मिसाइल्स दाग दी, जिसके बाद जहाज को काफी नुकसान हुआ। 13 अप्रैल के बाद से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाई हुई है और वहां जाने वाले 100 से ज्यादा जहाजों को वापस भेजा गया है। जहाज को रोकने से ईरान भड़क गया, जिसके जवाब में उसने कुवैत, बहरीन पर मिसाइल, ड्रोन अटैक किए। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि IRGC ने कुवैत एयरपोर्ट के अलावा दावा है कि इस हमले में काफी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सभी हमले को समय रहते हुए इंटरसेप्ट किया गया, नाकाम कर दिया गया। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। ईरान ने 2 मिसाइलें कुवैत पर, 3 मिसाइलें बहरीन पर दागी, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट में खबरें और भी, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
5: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
4: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
6: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेटकीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FD, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
7: PNB वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: कोई ऐसा कूलर दिखा,
10: पूरी फैमिली बोले वाह।
11: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
9: ज्यादा बड़ी ना है,
11: छोटे। ऑन कर दे,
12: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
9: पैक कर दे समर कूल।
11: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: in association with
1: cool stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से. विमल, बोलो जुबां केसरी.
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी. वेयर आर यू?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जगह दिल्ली, ये वही धमाका है जिसका बारूद पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार हुआ। प्लान था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर दिल्ली और मुंबई को दहलाना। हमलावर तैयार थे, गोला बारूद तैयार था, हमले की तारीख और जगह तय थी, लेकिन आईएसआई और दाऊद की नापाक साजिश पर देश की खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते पानी फेर दिया। वरना कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी के नेटवर्क के जरिए एक बार फिर देश को दहलाने की खतरनाक साजिश रची थी। दाऊद और आईएसआई की साजिश का बड़ा खुलासा। आईएसआई के इशारे पर दिल्ली मुंबई को दहलाना था। दाऊद ने मुन्ना झिंगाड़ा को सौंपा था जिम्मा। मेड इन पाकिस्तान गोला बारूद आ चुके थे। दाऊद इब्राहिम का प्लान दिल्ली मुंबई। देश के दुश्मन नंबर एक दाऊद की नई आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल चंद हफ्तों पहले आईबी के कान कराची के क्लिफ्टन रोड पर बने दाऊद के इसी व्हाइट हाउस पर अचानक बढ़ी गतिविधियों ने खड़े कर दिए। वजह थी डॉन दाऊद के व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडरों के साथ साथ आईएसआई अफसरों की बढ़ी आवाजाही। दाऊद के घर पर बढ़ी हलचल पर नजर रखी गई तो पता चला कि दाऊद इब्राहिम के व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर दूर एक 5 सितारा होटल से भारत में मौजूद कुछ लोगों को लगातार कॉल की गई। जानकारी को आगे बढ़ाया गया तो चौंकाने वाली जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी। होटल से आ रही कॉल कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद सैयद मुदस्सर हुसैन कर रहा था। जैसे ही सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सलीम की मूवमेंट को ट्रैक किया गया तो आईएसआई और दाऊद की डी कंपनी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो गया। दिल्ली स्पेशल सेल ने कराची के टेरर कंट्रोल रूम में मौजूद दाऊद के शार्प शूटर रहे मुन्ना झिंगाड़ा के इशारे पर आतंकी हमलों को अंजाम देने निकले 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए आतंकियों की लिस्ट में शामिल है उत्तर प्रदेश का विजय उर्फ शूटर, झारखंड का नीतीश पासवान, महाराष्ट्र का तौकीर रिजवान, अहमद शेख और साजिद, पंजाब का हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मनजीत सिंह और नेपाल का आंग कामी लामा शामिल हैं। आतंकियों के पास से स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तान में बने ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए दिल्ली की स्पेशल सेल को एनएसजी की मदद लेनी पड़ी।

0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और कुछ तूफान आपको मिटाने नहीं बल्कि आपकी ताकत याद दिलाने आते हैं। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नेता ऋतुव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष, 60 एमएलसी एमएलए साथ होने का दावा, अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने ली शपथ, राहुल खड़गे मौजूद, पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी, मरने वाले 21 लोगों में कई विदेशी, हिरासत में मालिक लवकेश बजाज। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन, 300 गिरफ्तार लोगों में 160 के बांग्लादेशी होने के मिले सबूत, पूरे गुजरात में घुसपैठियों के विरुद्ध मेगा ऑपरेशन। रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र, आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई चौथी स्क्वाड्रन, राजस्थान में हो सकती है तैनाती, नवंबर में आएगी अंतिम खेप।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं 10 तक। दिल्ली नगरी चौपट सिस्टम, जी हां, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आज जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला है, और सवाल उठाता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गढ़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे दिल्ली के मालवीय नगर इलाके का होटल धधकते हुए तंदूर में तब्दील हो गया, 21 लोग जिंदा जल गए जिनमें कई विदेशी मेहमान भी शामिल हैं। नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, लाइबेरिया, ऐसे विभिन्न अफ्रीकी देशों से लेकर आसपास के देशों से आए मेहमान जलकर मर गए, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस है, प्रशासन है, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार है, मंत्री कौन? लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली अग्निकांड में आरोपी लवकेश बजाज को पकड़ लिया है दिल्ली पुलिस ने। पकड़ा गया है लवकेश, दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक आरोपी लवकेश बजाज को पकड़ लिया है, उसे हिरासत में ले लिया है। ये फरार हो गया था, जैसे ही इसके होटल में आग लगी लवकेश बजाज फरार हो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सफेद दाढ़ी वाला सूट पहना हुआ शख्स यही है जिसने सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए थे, जिसने दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन, सभी अधिकारियों को रिश्वत देकर यहां पर ये अवैध रूप से अपना होटल चला रहा था। 6 कमरों की इसे अनुमति मिली थी लेकिन 25 कमरे चला रहा था। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अरविंद, कैसे पकड़ा गया ये, और दिल्ली सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है? कितना बड़ा भ्रष्टाचार था ये जो 21 लोगों की, अरविंद, जान चली गई?
3: बिल्कुल, देखिए, और अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले, लवकेश बजाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने हमें कंफर्म भी कर दिया है, उसे हिरासत में लिया गया है और अब उसे मालवीय नगर पुलिस स्टेशन पर लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जा रही है सहित। लेकिन इसके पहले आज तक की टीम पहुंच गई थी लवकेश बजाज के उस करोड़ों के कोठी पर जो साउथ दिल्ली के साकेत इलाके में

0: दिल्ली का अग्निकांड, कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल।
1: कैसे मर रहे हैं,
2: आग बहुत भयंकर थी।
3: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे।
0: इक्कीस लोग जिंदा जल गए, होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
4: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
5: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें।
0: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग, मच गई चीख पुकार।
6: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
0: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग, फैलता धुआं, मरते लोग। छह मंजिला होटल में भयंकर आग, 21 मौतों का गुनहगार कौन। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्टे नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर। दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर। होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग, चीख पुकार और आग की लपटें। सिहरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर एक, ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है। और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर दो, और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संकरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई। और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
7: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी। उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
8: चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
9: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्चों को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया फिर बच्चों को कुदाया, 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
0: वीडियो नंबर 3, और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
1: कैसे मर रहे हैं।
0: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।

0: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था, डेड बॉडी साथ मैंने निकाली है नीचे से,
1: साथ
0: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं ना नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
2: उतना पैनिक माहौल था कि करें क्या, तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर से फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई, और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
3: वीडियो नंबर 4। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
4: देखिए, बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे, और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे, और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे स्टे के लिए, और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज़ कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हीट, स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
3: वीडियो नंबर 5। वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।
5: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी, क्या देखा, कैसे पूरा?
6: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं, देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसी, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
5: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, क्योंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे
6: अंदर? आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
5: दिखाइए, फोर्थ फ्लोर
6: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह, बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है, जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
7: इतना बड़ा अग्निकांड सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण है, कोई नियम नहीं, कायदा नहीं, कानून नहीं, पैसे खिलाओ। सरकार तो आंख बंद करके, दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार बैठी हुई है। दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं, कई लोग अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सब भ्रष्टाचार में लिप्त। आज दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी, भवन कानून के पालन पर बड़ा सवाल खड़ा है। होटल संचालक को कागज पर सिर्फ 6 कमरों के होटल की अनुमति मिली थी, लेकिन चला रहा था वो 25 कमरों का होटल, और सारे सरकारी अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए थे रिश्वत लेकर। ये बिना सरकारी मिली भगत के बिल्कुल संभव नहीं है। रेखा गुप्ता को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब सवाल यही है, 21 मौतों का जिम्मेदार सिर्फ होटल मालिक है या फिर वो दिल्ली के सरकारी अधिकारी भी हैं जिन्होंने नियमों की अनदेखी कर अपनी आंखें मूंद रखी थी, पैसे खा लिए थे। क्या 21 मौत के बाद दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की नींद टूटेगी, रेखा गुप्ता जागेंगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई रेखा गुप्ता करेंगी और ऐसी कार्रवाई जो भविष्य के लिए उदाहरण बनेगी, या फिर जांच की फाइलों में एक बार फिर से इंसाफ की आवाज दम तोड़ देगी, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आंख मूंद लेंगी।
3: हादसे की वजह नंबर एक, फ्लोरिस्टे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर दो, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी, लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर तीन, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे, लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है, लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था, लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था, लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया, और तो और लाइसेंसधारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी, मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
5: आराम, मेरा घर है। ये पुलिस है, अब देखिए, चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी है, यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिली भगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिली भगत तो नहीं हो सकती, एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिली भगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, अवैध तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खानापूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
3: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी, लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके, 21 मौतों के एक एक गुनहगार की पोल खोलते रहे।
5: तस्वीर दिखाई जाती है एक-एक के, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
0: घर है इनका, पर्सनल घर है इनका।
5: पर्सनल घर है तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर, और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
3: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
5: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं, ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका, लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
3: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, न ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और न ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
7: दिल्ली अग्निकांड के गुनहगारों का हिसाब होगा या नहीं, ये अब सवाल है। शुरुआती जांच में अग्निकांड को लेकर बिल्डिंग का मालिक एमसीडी और दिल्ली पुलिस कटघरे में है, दिल्ली सरकार कटघरे में। क्या हादसे से सबक लेते हुए जिम्मेदारों पर बड़ा और कड़ा एक्शन होगा?
3: जिम्मेदार नंबर एक, बिल्डिंग का मालिक लवकेश बजाज। जिम्मेदार नंबर दो, बीएनबी का लाइसेंसधारी जय मिश्रा। जिम्मेदार नंबर तीन, एमसीडी साउथ जोन के डीसी राकेश कुमार। जिम्मेदार नंबर चार, मालवीय नगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार। जिम्मेदार नंबर पांच, एमसीडी के जेई आशीष रॉय। जिम्मेदार नंबर छह, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजय सिन्हा। जिम्मेदार नंबर सात, मालवीय नगर की लोकल पुलिस। इसी इमारत की बेसमेंट से उठी चिंगारी आग के शोले में ऐसी बदली कि 21 लोगों की मौत हो गई। मारे गए ज्यादातर लोगों में विदेशी नागरिक हैं जो इलाज कराने के लिए भारत आए थे। अग्निकांड की शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट से आग भड़की, उसी आग से पूरी इमारत खाक हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से अवैध था और एमसीडी की मिली भगत से चल रहा था। रेस्टोरेंट के लिए न तो एमसीडी से कोई अनुमति दी गई थी और न ही फायर डिपार्टमेंट से। अग्निकांड के लिए एमसीडी सीधे तौर पर क्यों जिम्मेदार है समझिए। दरअसल किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एमसीडी की तरफ से हेल्थ लाइसेंस की जरूरत होती है, उसका जोनल हेड डीएचओ होता है। इस वक्त डीएचओ डॉक्टर संजय है। संजय की जिम्मेदारी थी कि किसी भी बेसमेंट में रेस्टोरेंट किचन न हो, लेकिन उनकी नाक के नीचे रेस्टोरेंट चलता रहा और वो आंखें मूंदे बैठे रहे। संजय की तरह एमसीडी के दूसरे अफसरों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।
7: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का अंत हो चुका है और महायुद्ध का आरंभ हो चुका है। आप देखते रहिए दस्तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
8: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: बहुत टायर्ड हो गई।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: AU सोच बदलो और बैंक भी।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहां खबर वहां खबरदार।
17: इन एसोसिएशन विद
18: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: कानपुर की धरती से उठेगी यूपी के विकास की आवाज, जनता के सवालों का सीधा और सटीक जवाब, हर क्षेत्र के दिग्गजों से आमने सामने होगी बातचीत। यूपी तक बैठक कानपुर जल्द आ रहा है, सिर्फ यूपी तक पर।
20: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
21: ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक हाकिमपुर।

0: ये तस्वीरें खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर की हैं। देर शाम कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर पर हमला कर दिया। हमले के वक्त खान सर कोचिंग सेंटर में मौजूद थे।
1: इन लोगों का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो गया।
2: लगभग कितना राउंड गोली चला है?
1: 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर
3: गोलीबारी भी हुई है।
1: देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है, जो मेन हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको।
0: हमले में कोचिंग सेंटर पर तैनात गार्ड घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खान सर का आरोप है कि उन पर यह हमला सस्ती फीस की वजह से हुआ है। कोचिंग संचालक खान सर और उनके पड़ोस में स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और इसी विवाद में यह हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: शुभेंदु के सत्ता में आने से पहले बीजेपी का वादा और इरादा बेहद साफ था, ममता की सियासत को मटिया मेट करने की सियासी चुनौती दे डाली थी। भ्रष्टाचार पर चोट का वादा भी बीजेपी ने पहले ही किया था और शुभेंदु सरकार ने सत्ता संभालते ही उन वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। 11 मई को पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार किए गए। 20 मई को विधाननगर में टीएमसी पार्षद रंजन पोद्दार की गिरफ्तारी हुई। 23 मई को विधाननगर में ही टीएमसी पार्षद समर्थ बरुआ को भी पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप हिंसा और जबरन उगाही का था। 26 मई को बदुरिया नगर निगम के चेयरमैन टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी होती है। उनके आवास से 80 लाख कैश मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई। 27 मई को गोबरडांगा से टीएमसी नेता अजीत साह गिरफ्तार किए गए। 2 जून को पार्टी नेता आशीष चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो गई। एक्सटॉर्शन और धमकाने का आरोप है। ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से टीएमसी में हड़कंप मच गया है। पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पार्टी नेताओं में अपने ऊपर कार्रवाई का डर सता रहा है, तो कई नेता माहौल भांप कर रुख बदल रहे हैं। पार्टी को लगे झटके के बीच ममता आरोप लगा रही है कि राज्य में अत्याचार बढ़ा है। ऐसी बयानबाजी के बीच टीएमसी में टूट की आशंकाओं को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी में टीएमसी के बागियों की नो एंट्री है, लेकिन ऐसे संकट में अब ममता क्या करेंगी? चुनाव में करारी शिकस्त और अब अंदरूनी कलह की खबरों के बीच ममता 8 जून को दिल्ली पहुंच रही हैं। ममता के साथ अभिषेक बनर्जी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बंगाल के नतीजों के बाद से इंडिया गठबंधन के दल लगातार ममता का समर्थन करते रहे हैं। ऐसे में 8 जून को दिल्ली में होने वाली गठबंधन की बैठक कई मायनों में अहम है। तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत है एक बार फिर से। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की संभावना अब ना के बराबर है। एक बार फिर से युद्ध के मैदान में अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। ताजा हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अब तनाव चरम पर पहुंच गया। अब अगले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि महायुद्ध का सायरन बजने लगा है।

0: هذا الحريق.
1: أمريكي ठिकानों पर ईरान का ड्रोन अटैक. ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया. अमेरिका का केशम आइलैंड पर अटैक. ईरान के ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया. अगले 48 घंटे भारी हमलों का दौर जारी. अब युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध की घड़ी करीब. अभी ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर आती, उससे पहले ही दोनों मुल्कों के बीच नए सिरे से हमलों का दौर शुरू हो गया है. यानी अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुआ अस्थाई युद्ध विराम अब करीब करीब टूट चुका है. पीस डील की संभावना बहुत कम बची है, क्योंकि अमेरिका ने शांति वार्ता के बीच ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, तो ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद कुवैत को अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था. कुवैती सेना के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग जख्मी हो गए. दरअसल ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. IRGC का दावा है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों पर हमला किया. IRGC की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने होर्मुज के पास एक ईरानी ऑयल टैंकर पर भी हमला किया था. ईरान ने पलटवार करते हुए एक जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया है. इससे पहले अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड पर ईरान के कम्युनिकेशन टावर और मिसाइल सेंटर को निशाना बनाया था. अमेरिकी सेना की माने तो बहरीन और कुवैत पर ईरान की तरफ से किए गए हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया गया. अमेरिका के हमलों को देखते हुए ईरानी सांसदों ने अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनई से व्हाइट हाउस पर हमले की मांग की है. सांसदों ने बयान में कहा, हम अपने सैन्य बलों और रक्षा उद्योगों का तब तक समर्थन करते रहेंगे जब तक कि हमारी मिसाइलों की मारक क्षमता खामिनई के हथियारों के कार्यालय तक नहीं पहुंच जाती. IRGC ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि आक्रामकता की स्थिति में प्रतिक्रिया अलग और अधिक गंभीर होगी, और हमने उसी के अनुसार कार्रवाई की. हमारे खिलाफ होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा. जो भी हमला करेगा उसे जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. ईरान की तरफ से अमेरिका को यही संदेश दिया गया है कि हमला हुआ तो पलटवार भी होगा. अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने शांति वार्ता को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. ईरान का कहना है कि तनाव के बीच अमेरिका के साथ किसी तरह की वार्ता की संभावना नहीं है. ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि खाड़ी के देशों ने अमेरिका की मदद की तो अंजाम बहुत बुरा होगा. कुवैत और बहरीन इन हमलों के लिए सीधे और साफ तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके इलाके और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में किया गया. अगर कोई देश अपनी जमीन या वहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करने देगा तो ईरान उसी जगह जवाबी कार्रवाई करेगा. वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और UAE ने कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की निंदा की है. अब सवाल यही है कि शांति वार्ता के बीच ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी सेना ने अचानक ईरान के केशम आइलैंड पर हमला कर दिया. डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान के लिए केशम आइलैंड सैन्य लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि ये ईरान का अहम सैन्य ठिकाना है. माना जाता है कि ईरान ने केशम आइलैंड में मिसाइलों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रखा है. जमीन के नीचे सुरंगों का बड़ा नेटवर्क है, जहां ईरान ने तकिए मिसाइल सिस्टम और तेज हमला करने वाली नौकाएं छिपाकर रखी हैं. पहले भी अमेरिका ने केशम द्वीप पर IRGC के ठिकानों और कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमले किए थे. तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान हमले का फैसला उनका था, हमले के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री ने उन्हें उकसाया नहीं था. ईरान पर हमला मेरा फैसला था, मुझे नेतन्याहू ने नहीं उकसाया, यानी किसी ने मुझे बहकाया नहीं, ये फैसला मेरा अपना था. हाँ, इसराइल के लेबनन पर हमले को लेकर मैं परेशान था. मुझे नेतन्याहू बहुत पसंद है और मैं उनके साथ बहुत अच्छे से काम करता हूँ. मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. मैं अपने पहले कार्यकाल से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहा हूँ. इसी वजह से मैंने 2015 में हुए परमाणु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया. इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहस की खबरें सामने आई थीं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस हुई, जिसमें ट्रंप ने लेबनन पर इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा किया गया है कि ट्रंप इस बात से बेहद नाराज थे कि हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायली हमलों से ईरान के साथ चल रही पीस डील की चर्चा पटरी से उतर सकती है। बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को अपने तमाम एहसान याद दिलाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम कर क्या रहे हो? मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन अब हर कोई तुमसे नाराज है, हर कोई इसराइल से नाराज है। हालांकि इसराइल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। अब सवाल यही है कि नेतन्याहू को लेकर ट्रंप ने अपना स्टैंड बदला, ठीक इसी तरह ईरान के साथ पीस डील को लेकर ट्रंप का कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान पर हमले से चंद घंटे पहले ही ट्रंप ने दावा किया था कि चंद दिनों में पीस डील पर मोहर लग सकती है। मुझे विश्वास है कि अमेरिका और ईरान अगले एक हफ्ते के अंदर युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक हमारे बीच एक समझौता हो जाएगा। ट्रंप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। अगर पीस डील को लेकर सब कुछ ठीक था तो अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या ये दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, या फिर ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करना चाहते हैं?
0: And I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
1: भले ही ईरान को लेकर ट्रंप कभी नरम तो कभी गर्म रुख अपनाते हैं, लेकिन ट्रंप को लेकर ईरान के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईरान की नीति एकदम स्पष्ट है, वो युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन ट्रंप के दबाव में युद्ध विराम नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध होगा। आज तक ब्यूरो।
2: ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध फिर से भड़क रहा है तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब रूस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी रूस के डावोस सम्मेलन के समय यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला कर सबको दहला दिया। इस हमले में कई लोग घायल हुए, साथ ही एक तेल डिपो में आग लग गई। आइए आपको दिखाएं आखिर रूस और यूक्रेन के दिमाग में चल क्या रहा है।

0: रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने क्यों किया ड्रोन अटैक? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक के पीछे यूक्रेन का मकसद क्या है? 29वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में यूक्रेन के हमले से हलचल। क्या यूक्रेन ने कीव पर रूस के हमले का बदला ड्रोन अटैक से लिया? रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध जारी, आखिर ये युद्ध कब रुकेगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में उठता हुआ ये काले धुएं का गुबार दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, यूक्रेन ने ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल और पास के नौसैनिक अड्डे पर ड्राई डॉक में खड़े एक युद्ध पोत को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक ऐसे वक्त में किया है जब सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आर्थिक मंच का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों से करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले को पुतिन को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने की स्पष्ट कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गृह नगर में ये हमला एक बड़ा मैसेज है।
1: सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम आज शुरू होने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक काला धुआं सा उठ रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए ऑयल टर्मिनल में बाल्टिक पोर्ट के आसपास, जो हमको बताया जा रहा है। बट अभी तक सेंट पीटर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसको रशियन डायवोस भी कहते हैं, उस पर अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। प्रेसिडेंट पुतिन 6 जून को यहीं पर आके प्लेनरी सेशन अटेंड करेंगे और अपनी स्पीच भी देंगे। बट हाँ, मॉस्को के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि रशिया रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए अदर कंट्रीज से भी। इंडिया रशिया ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन और काफी एजेंडा, इंपॉर्टेंट एजेंडा एंड स्पीकर्स लाउंज में भी तैयार बैठे हैं और इनॉग्रेशन सेरेमनी भी शुरू होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है और काला धुआं लगभग पिछले 2-3 घंटे से दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो हम बताते रहेंगे अपने दर्शकों को क्या क्या डेवलपमेंट है, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि कोई भी एजेंडा या कोई भी स्पीकर या फिर कोई भी सेशन अभी तक कैंसिल किया है। एज पर स्केड्यूल ही चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम।
0: रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 3 जून से 6 जून तक चलने वाले 29वें इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी रूस के दावोस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर रोजडेंको के अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास स्थित लेनिनग्राद क्षेत्र में रात भर में कम से कम 59 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। उन्होंने बताया कि मलबे के गिरने से कुछ घरों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पिछले 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी रूस हमले करता है तो कभी यूक्रेन हमले करता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। कीव के साथ साथ खार्किव और निप्रो जैसे कई शहरों पर भी रूस ने 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों के भीषण अटैक किए। पूरी रात आसमान में मिसाइलों का शोर गूंजता रहा। विनाशकारी मिसाइलों के हमले से कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। कहीं सायरन बज रहे थे तो कहीं लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूसी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हमला इतना भीषण था और मिसाइलें इतनी तेजी से आ रही थीं कि यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। इन पर हुए हमलों में भारी नुकसान के बाद ज्यादातर इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। रूसी हमलों से पहले यूक्रेन का बड़ा प्रहार। यूक्रेन के हमले में रूस की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान। कीव पर रूसी हमलों से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने उसकी रिफाइनरी को तबाह कर दिया। यूक्रेन तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इन हमलों से रूस की एक रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, ऑयल पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों से रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि ड्रोन हमलों में वोल्गा नदी के किनारे बनी सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले से रिफाइनरी परिसर के बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन जानता है कि उसके पास सैन्य संसाधनों की कमी हो रही है। वो चुन चुन कर रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऑयल रिफाइनरी पर हमले यूक्रेन की इसी योजना का नतीजा है। हमलों के बाद इनमें लगी आग तो मशक्कत के बाद बुझा ली गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने में महीनों लग जाते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: आइए हम इस समय आपको सीधे मॉस्को लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता गीता मोहन वहां मौजूद हैं। गीता, सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के डावोस सम्मेलन के समय यूक्रेन ने जिस तरह से ड्रोन हमला किया, इसके पीछे यूक्रेन का उद्देश्य क्या है, हमें पूरी तरह से समझाइए गीता।
3: जी, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम होस्ट किया जा रहा है रूस में, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन की कोशिश है कि वो रूस को वल्नरेबल और वीक दिखाए कि हाँ, यहाँ पर अटैक्स हो सकते हैं। करीब 50 अटैक्स ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग के अराउंड और सेंट पीटर्सबर्ग में हुए हैं। कुछ को इंटरसेप्ट किया गया, कुछ फैसिलिटीज को अटैक कर दिया गया। तो यूक्रेन रूस को एम्बैरेस करने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन रूस भी अपने तरीके से सिक्योरिटी को बिल्कुल बनाए हुए है। अगर आप देखें तो जब जब सिक्योरिटी अलर्ट आता है, थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क बंद कर दिया जाता है। आज कुछ समय तक तो एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया था। तो काफी सारे इंटरनेशनल गेस्ट जिनको सेंट पीटर्सबर्ग आना है, वो मॉस्को की फ्लाइट नहीं आए, कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया, कुछ ट्रेन के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच रहे हैं। तो काफी सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद सेंट पीटर्सबर्ग फोरम को कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन नहीं किया, रीशेड्यूल नहीं कर रहे हैं, इसको बरकरार रखा है। और यहाँ पर इवेंट बहुत ही मैसिव स्केल में 130 देश यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें से इस बारी अमेरिकन पार्टिसिपेंट्स भी है। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो क्या बोलेंगे, क्योंकि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन भी है इस बारी। तो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और बावजूद इसके हमने मारिया ज़ाखारोवा, जो यहाँ के विदेश मंत्री की स्पोक्स पर्सन है, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये कीव रेजिम का काम है, यानी कि ज़ेलेंस्की का, और कहा कि ज़ेलेंस्की वेस्ट के क्रिएशन है। ये एंटी रशिया जो एक मुहिम वेस्ट ने चला रखा है, उसको बंद करने की जरूरत है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि ये जो पीटर्सबर्ग फोरम है उस पर कोई असर पड़ने वाला है। बहुत ही ज्यादा एहतियात बरत रहा है रूस, और कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक्स और इन सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद ये फोरम अच्छी तरीके से खत्म हो, कंक्लूड हो। और राष्ट्रपति पुतिन भी यहाँ पर शिरकत करेंगे, यहाँ पर वो स्पीच देने वाले हैं। प्लेनरी सेशन में बहुत बड़ा सेशन होने वाला है। आप देखेंगे कि इंडिया टुडे आज तक का बहुत बड़ा रोल होगा इस पूरे सेंट पीटर्सबर्ग फोरम में, क्योंकि हम इकलौता भारतीय नेटवर्क है जो आज यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग फोरम से रिपोर्ट।
2: बहुत धन्यवाद गीता। गीता मोहन हमारी संवाददाता। दशक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
7: Weather. the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो रोज करीब 8 से 10 हजार लोगों के इलाज की सुविधा देता है, वो यूनिवर्सिटी जहां हर साल 10 हजार से अधिक कैंसर के मरीज इलाज कराते हैं, जहां रोज 300 से 400 कैंसर मरीज दवा और इलाज के लिए आते हैं, उस अस्पताल में कैंसर की दवा का घोटाला हो गया। फिलहाल मामले की जांच यूनिवर्सिटी स्तर पर कराई जा रही है। शुरुआती जानकारी ये सामने आई है कि यूरोलॉजी विभाग में करीब 40 कैंसर मरीजों के नाम पर कैंसर की महंगी दवाओं, इंजेक्शंस, प्रोटीन और आयरन सप्लीमेंट्स का घोटाला हुआ। शुरुआती जांच में करीब 2 करोड़ रुपए की दवाओं के घोटाले का पता चला। अस्पताल के अंदर इन दवाओं की कीमत 8 से 10 हजार रुपए प्रति डोज थी, जो बाजार में 50 हजार से 1 लाख रुपए प्रति डोज बिकती है। इसमें मरीजों को कई कई बार भर्ती दिखाकर खरीदी की गई। कई ऐसे मरीजों के नाम पर दवाएं ली गई जो कैंसर के मरीज ही नहीं थे। कई ऐसे मरीज थे जिनकी मौत हो चुकी थी। मरीजों को 6 महीने में एक बार दी जाने वाली दवा महीने में 4-4 बार दी हुई दिखाई गई। 10 लाख रुपए की दवाओं वाली औसत खपत जब 45 लाख रुपए तक हो गई तो प्रशासन को शक हुआ और जांच में इस फर्जीवाड़े का पता चला। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 5 सदस्यों की कमेटी से कराई गई शुरुआती जांच के बाद यूरोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर अपुल गोयल को उनके पद से हटा दिया। इसके अलावा घोटाले में सीधे तौर पर शामिल आउटसोर्सिंग कर्मचारी पी सिंह, एच श्रीवास्तव और एस तिवारी की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गयी। वही यूरोलॉजी विभाग के लोकल परचेज काउंटर पर तैनात रेगुलर फार्मासिस्ट अरशद वासी को सस्पेंड कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि पुलिस जांच के बाद इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
1: You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae.
5: Exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip-hop.
7: Exclusively on TuneIn.
0: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: हादसा या हत्या? दिल्ली के भीषण अग्निकांड की एक और घटना के बाद उठा ये सवाल नया नहीं है, लेकिन अफसोस हर ऐसी घटना के बाद ये सवाल और बड़ा हो जाता है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के पास हौजा रानी गांव में बने जिस होटल फेरिस्टेन इन में आग लगी, वहां हर वो वजह मौजूद थी जिस पर किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति ने भी ध्यान दिया होता तो बेकसूर जिंदगियां मौत के मुंह में नहीं जाती। सिर्फ 6 कमरों के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस हासिल कर 25 कमरों का होटल चलाया जा रहा था। इसके बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट में फायर विभाग का एनओसी तक नहीं था। होटल के मेहमानों के लिए सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। कमरों की खिड़कियां पर्याप्त तौर पर बड़ी ही नहीं थी। हादसे के बाद हालात ये हुए कि स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए ताकि लोग नीचे कूदकर अपनी जान बचा सके। कोई आग और धुएं के बीच सीढ़ी के जरिए भी नीचे उतर सका तो एक तस्वीर में 6 मंजिला इमारत की छत पर एक व्यक्ति आग से बचने के लिए फंसा हुआ नजर आया। होटल फ्लरिश स्टे एंड इन में ज्यादातर आसपास के मैक्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने आए मरीजों के रिश्तेदार रुकते थे। इनमें बहुत सारे विदेशी नागरिक थे। मृतकों में विदेशियों की संख्या ही ज्यादा है, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आलम देखिए कि आरोपों के मुताबिक बेसमेंट में लगी ग्रिल का ताला बंद था जिससे बहुत सारे लोग बाहर निकल ही नहीं सके। यही नहीं, ये होटल जिस जगह पर मौजूद है वहां बिजली के तारों का जाल लटका हुआ था। वैसे तो प्रशासन का दावा है कि होटल में आग की सूचना मिलते ही आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन की फौरन कार्रवाई हुई, लेकिन स्थानीय लोग देरी का आरोप भी लगा रहे हैं। देश की राजधानी में हुए इस भीषण अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस घटनाओं की जिम्मेदारी कब और कौन लेगा। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री आशीष सूद घटना स्थल पर पहुंचे। वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए।
9: और जिनके अंदर जरा सी भी कोलिशन है, हमारा सरकार दिल्ली सरकार का पानी बिजली का कनेक्शन तो तुरंत कटवाइए।
8: दिल्ली में बीजेपी के ही शब्दों में ट्रिपल इंजन सरकार है। केंद्र, राज्य और MCD में बीजेपी सत्ता में है। स्थानीय विधायक भी दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय हैं, लेकिन सुनिए हादसे के बाद इनका तर्क क्या है। सवाल यही है कि ऐसा हादसा ना हो इसके जिम्मेदार लोग सोते क्यों रह गए, और क्या अब आगे जो कार्रवाई होगी वो एक नजीर बन सकेगी। आज तक ब्यूरो।

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: झटका। बागी गुट के नेता ऋतुव्रता बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता। विपक्ष 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राहुल अखड़गे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। मरने वाले 21 लोगों में 12 विदेशी शामिल। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। 300 गिरफ्तार लोगों में 166 बांग्लादेशी होने के मिले सबूत। पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र। आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई चौथी स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती। नवंबर में आएगा आखिरी खेप।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। प्रयागराज में एक घर के अंदर 3 लोगों का कत्ल होता है। शक घर के छोटे बेटे पर जाता है, लेकिन बाद में छोटे बेटे की भी लाश मिल जाती है। अब पुलिस की उलझन बढ़ जाती है। इसी बीच घर की दीवार और गत्ते पर 2 लाइन लिखी मिलती है। पुलिस की उलझन और बढ़ जाती है। खैर, किसी तरह पुलिस कातिल तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जैसे ही कातिल मुंह खोलता है, अब पुलिस के उलझन की कोई इंतहा ही नहीं थी। तो पेश है 4 कत्ल की ये सिर चकरा देने वाली पूरी कहानी।
2: जब नोएडा की आरुषि का कत्ल हुआ था, तब पुलिस समेत हरेक को यही लगा कि घरेलू नौकर हेमराज आरुषि का कत्ल कर भाग गया, क्योंकि आरुषि के कत्ल के बाद खुद हेमराज गायब था। नोएडा पुलिस की एक टीम हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल तक रवाना कर दी गई थी, पर तभी अगले दिन पुलिस को ख्याल आया कि घर की अच्छे से तलाशी ली जाए, और उसी तलाशी के दौरान आरुषि के कत्ल के एक दिन बाद उसी घर की छत से हेमराज की लाश मिली। यानी जिसे नोएडा पुलिस कातिल मान रही थी, खुद उसका कत्ल हो चुका था। मतलब साफ था कि आरुषि और हेमराज का असली कातिल कोई और था। कौन था यह खैर आज 18 साल बाद भी किसी को नहीं पता। नोएडा वाले इसी यूपी के प्रयागराज में लगभग आरुषि की यही कहानी दोहराई जाने वाली थी। एक घर से 3 लोगों की लाश मिलती है और उस घर का चौथा मेंबर यानी घर का बेटा गायब।

0: रिश्तेदारों से ये पता चलते ही पुलिस को लगा कि केस आसान है। अभिषेक ने ही तीनों का कत्ल किया और भाग गया। लेकिन तभी घर के अंदर से पुलिस को दो ऐसी चीजें मिली जिसके बाद पुलिस को लगा कि वो खामखा अभिषेक पर शक कर रही। असल में एक जगह दीवार पर लिखा था बेटा बहु, और उसी घर में एक गत्ते पर लिखा मिला बंटी बबली और बहू ने मारा। पुलिस का दिमाग चकरा गया। कहानी में अचानक बंटी और बबली की अब एंट्री हो चुकी थी। असल में बंटी कोई और नहीं, वीरेंद्र का बड़ा बेटा अश्वनी वैश्य है और अश्वनी की पत्नी रितु वैश्य। इन दोनों का नाम बंटी बबली इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों ही एक नंबर के ठग हैं। फ्रॉड के कई केस इनके सर पर है, यहाँ तक कि पुलिस ने इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। अश्वनी इस वक्त जेल में है जबकि उसकी पत्नी यानी बबली जेल से बाहर। वीरेंद्र वैश्य ने दोनों की इसी करतूत के चलते अपने दूसरे बेटे को भी बेदखल कर रखा है। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि तीनों कत्ल अगर बंटी बबली ने किए तो अभिषेक कहां गायब है। आरुषि केस वाली गलती न दोहराई जाए इसलिए अब पुलिस ने वीरेंद्र और अभिषेक की दुकानों की तलाशी लेने की सोची। अभिषेक की दुकान बंद थी, ताला खोलकर पुलिस अंदर गई। अंदर जाते ही पुलिस एक बार फिर हैरान, जिस अभिषेक को शुरुआत में पुलिस ने कातिल माना वो खुद अंदर मुर्दा पड़ा था।
1: ये पहले संदेह हम लोगों को जब तीन बॉडी मिली थी तो हमें संदेह हुआ था कि अभिषेक ने इनका मर्डर किया होगा जैसा सभी लोगों ने बताया, और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन उसी समय हम लोगों को ये लगा कि पूरा घर सर्च करना चाहिए, चूंकि अभिषेक की दुकान का ताला लगा हुआ था जो इसने लगाया था। तो हमने दुकान को भी सर्च करने का उठानी, और उसके जस्ट बाद दुकान को जब सर्च किया तो अभिषेक की भी बॉडी वहां मिली। तो हमारे लिए और स्थिति वैसी हो गई कि भाई अभिषेक को जिसपे हम लोग शक कर रहे थे उसकी भी बॉडी मिली है।
0: इस तरह अब लाशों की गिनती चार तक जा पहुंची। अभिषेक की लाश मिलने के बाद जब पुलिस को पता चला कि वीरेंद्र का दूसरा बेटा यानी अश्वनी उर्फ बंटी पहले से ही जेल के अंदर है तो फिर वो कत्ल कैसे कर सकता है, लिहाजा पुलिस ने अब नए एंगल के साथ अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को तसल्ली से खंगालने का फैसला किया। आनन फानन में 20 टीमें बनाई गई। अभिषेक समेत घर वालों के कॉल डिटेल निकाले गए। इन्हीं सारी कवायद के दौरान दो चीजें हुई। पहली, एक सीसीटीवी कैमरे में 1 जून की सुबह 5 बजे एक शख्स वीरेंद्र के घर से बाहर निकलते दिखा। जब उसकी शिनाख्त कराई गई तो पता चला उसका नाम सनी गुप्ता है। सनी की अभिषेक की दुकान के पास ही समोसे और कचौरी की दुकान है। इसके बाद जब अभिषेक के मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले गए तो पता चला कि 31 मई की शाम तक अभिषेक और सनी ने कई बार फोन पर बातचीत की थी। पुलिस की एक टीम सनी के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है।
1: उसके बाद हम लोगों ने पूरा सीसीटीवी सर्वेलांस के माध्यम से 20 टीमें बनाई और सीसीटीवी सर्वेलांस से सीसीटीवी देखा। वो सीसीटीवी में और इसके मोबाइल कॉल डिटेल में यह पाया कि अभिषेक जो है वो इससे बात करता है सनी से और उसको बुलवाता है। उसके बाद इसके बाद सुबह 5 बजे इसका सीसीटीवी मिलता है मॉर्निंग वाला। उसके बाद में इसको अरेस्ट करने के बाद पूछताछ की जाती है, इसने अपनी घटना स्वीकार करी है पूरी।
0: गिरफ्तारी के बाद अब जैसे ही सनी मुंह खोलता है पूरी कहानी ही पलट जाती है। कहानी का पूरा क्लाइमेक्स ही बदल जाता है। असल में वो वीरेंद्र का बेटा अभिषेक ही था जिसने सनी के साथ मिलकर अपने माँ बाप और बहन का कत्ल किया था। तो फिर अभिषेक का कत्ल किसने किया? तो चलिए अब सिलसिलेवार हर साजिश से पर्दा उठाते हैं। असल में जब अभिषेक को उसके पिता ने बेदखल किया तभी से वो नाराज था, कर्ज में भी डूबा था। इसी के बाद उसने सनी के साथ मिलकर अपने माँ बाप और बहन के कत्ल की साजिश रची। अभिषेक ने तय किया 31 मई की शाम वो इस कत्ल को अंजाम देगा। 31 मई की दोपहर से अभिषेक और सनी पहले बियर पीते हैं, कचौरी खाते हैं और फिर घर में दाखिल होते हैं।
1: 31 तारीख को संडे के दिन 5 बजे अभिषेक ने इसको बुलाया है मृतक को। अभिषेक जो मृतक का बेटा है और बाद में वो भी मर गया। अभिषेक ने सनी गुप्ता को बुलाया बियर और कचौरी लेकर के, बियर और कचौरी लेकर के वहां पहुंचा है और शटर बंद किया है। जैसा आपने घटना स्थल देखा, बाहर वाला शटर या चैनल बंद कर दिया, ताला लगा दिया और अभिषेक की दुकान पे जाके दोनों बैठ गए। वहीं 3 से 5 बजे तक इन्होंने बियर पिए है और कचौरी आदि खाई है। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग करी है क्योंकि इसका फादर, अभिषेक का फादर जो है, जो वीरेंद्र वैश्य है और उसकी पत्नी, दोनों ने अभिषेक को बेदखल कर दिया था। अभिषेक कर्जे में डूबा हुआ था, अभिषेक क्रिमिनल माइंड का आदमी था, तो उसको संपत्ति से बेदखल करने की वजह से और उसके पैसे की तंगी होने की वजह से, क्योंकि फादर उसको पैसे नहीं देता था, तो उसकी पर भी लड़ाई चलती थी जहां

0: के लोग, आसपास के लोग भी बताए, जिनकी दुकान है उन्होंने भी बताया। उस घटना को लेकर के अभिषेक परेशान रहता था। अभिषेक और सनी गुप्ता ने मिलकर के प्लान बनाया कि हम इसको फादर मदर को मार देते हैं और बहन को भी मार देते हैं, उसके बाद जो सामान है सोना आदि है उसके पास जो मुझे जानकारी है, जैसी उसको अभिषेक को जानकारी थी, उसको हम लोग आपस में आधा आधा बांट लेंगे।
1: घर में घुसते ही सबसे पहले अभिषेक को अपनी बहन मीनाक्षी सीढ़ियों पर नजर आई। इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ समझ पाती, अभिषेक और सनी ने अपने साथ लाए लोहे के रॉड और बियर की बोतल से उस पर हमला कर दिया।
0: इस प्लान के तहत जैसे ही 5 बजते हैं तो जीने से जो मृतक लड़की है वो नीचे आती है हमेशा अपनी दुकान खोलने के लिए। जैसे ही वो नीचे आई है, जीने के नीचे आई है, वैसे ये दोनों लोग गए हैं। अच्छा, इससे बियर की बोतल और उसके साथ उसने रॉड भी मंगाई थी, रॉड हमने बरामद करी है, जिस रॉड से उन्होंने घटना कारित करी। और उसके बाद में ये ऊपर जीने से जैसे ही चढ़ते हैं, जीने पर जैसे ही लड़की आती है मीनाक्षी मृतक जो है, उसको ये लोग दोनों लोग मार देते हैं। मारने के बाद उसको घर के ऊपर ले जाते हैं और वहां पर सीढ़ियों पर उसकी बॉडी को छोड़ देते हैं।
1: इसके बाद दोनों उस कमरे में गए जहाँ वीरेंद्र और उनकी पत्नी मौजूद थी। दोनों ने उन दोनों के सिर पर भी लोहे के रॉड से हमला किया और दोनों को मार डाला। 3 कत्ल करने के बाद दोनों घर में रखे करीब 1 किलो जेवरात, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा है, एक बैग में भरते हैं। फिर लोहे का रॉड, बियर की बोतल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हथौड़ा, सब कुछ उसी घर में पानी की टंकी में डाल देते हैं।
0: जेवरात लगभग 1 किलो के जेवरात है, जेवरात पूरे भरा लेते हैं लोग, बाकी फाइल्स, मोबाइल, लैपटॉप और जो भी सामान है पूरा का पूरा वो ऊपर सिंटेक्स की पानी की टंकी होती है उसमें डाल देते हैं, हथौड़ा आदि भी उसमें डाल देते हैं।
1: अब लूट के सामान के साथ दोनों नीचे आते हैं। अभिषेक और सनी अब अभिषेक की दुकान में बैठे थे। अब बारी लूटे गए जेवरात का हिस्सा करना था। अभिषेक ने सनी को लूटे गए जेवर में से सिर्फ 5 कंगन दिए। सनी को ये बुरा लगा। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि जो शख्स अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो उसका क्या होगा। सनी को ये भी ख्याल आया कि अगर वो अभिषेक को ही मार दे तो सारे जेवर उसके हो जाएंगे। बस इसी के बाद अभिषेक की दुकान में ही सनी ने अब अभिषेक को भी मार डाला।
0: अभिषेक और ये दोनों नीचे आते हैं वापस अभिषेक की दुकान पे और अभिषेक की दुकान के अंदर बैठ करके बंटवारे के लिए बात करना शुरू करते हैं। तो अभिषेक इसको कहता है कि 5 कंगन तुम ले जाओ, यहाँ से जाओ, बाकी बात में दूंगा। ये कहकर के इनके बीच बंटवारे को लेकर के वाद बात शुरू हो जाता है। वहां यह चूंकि इसको ये लगता है कि जो माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या साथ निभाएगा, मुझे क्या वादा देगा, मुझे भगा देगा, तो इसने उसी रॉड से उसको मारना शुरू किया। 15-20 मिनट में इसको मार देता है। वहां जब ये मर जाता है तो उसके बाद ये सरफ की सरफ और जो वहां पर पड़े रहते हैं टॉयलेट के जो क्लीनर्स है जिसका वो बिजनेस करता था अभिषेक, उसको उसके दुकान से लेकर के उसके ऊपर बॉडी पे डाल देते हैं। ऊपर बॉडी पे जो ऊपर भी बॉडी है उनपे भी डाल देते हैं।
1: अभिषेक का कत्ल करने के बाद सनी उसी दुकान में बैठा रहा। उसने खून साफ किया, लाश पर तेजाब जैसी चीज डाली, फिर वापस वीरेंद्र के घर गया। पूरी रात वहीं रहा। चूंकि कपड़े खून से सने थे लिहाजा उसी घर में नहाया, फिर वीरेंद्र के ही कपड़े निकाल कर पहने, वीरेंद्र के जूते भी पहने। इसके बाद सुबह होने से पहले घर से निकल गया, पर कुछ सोचकर वो फिर वापस घर आया।
0: 5 से 6 बजे के बीच 31 तारीख को घटना हो जाती है। 5 से 6 बजे के बाद ये पूरे टाइम दिन भर वहीं रहता है, पूरी रात वहीं रहता है और रात भर जो ब्लड निकला होता है उसकी सफाई करता है। और ऊपर जब वो घटना कर रहे होते हैं अभिषेक और ये, तो अभिषेक की जो बनियान होती है वो पूरी ब्लड से छन जाती है। वो बनियान हमने बरामद भी करी है, बनियान भी सिंटेक्स की टंकी से बरामद करी है हमने, और इसके कपड़े भी अभिषेक के दुकान से बरामद किए हैं, इसका पैंट और शर्ट। फिर ये ऊपर जाता है, वहां पर पूरी साफ सफाई करता है, खुद नहाता है पूरा, और वीरेंद्र मृतक के ही कपड़े और जूते पहन करके नीचे आता है सुबह 5 बजे। 5 बजे जब बाहर निकलता है, इससे चैनल को खोल करके बाहर निकलता है, उस समय ये देखता है कि मैंने जो है जूते वीरेंद्र के पहन के आ गया, तो ये वापस जाता है तत्काल वापस जा करके और वीरेंद्र के जूते जो है वो खोलता है और अपने चप्पल पहनता है और जो सामान लूटा हुआ सामान जो है वो पीछे बारजे में रख देता है अपनी दुकान पे। इसकी दुकान भी उसी कॉम्प्लेक्स में उसी बारजे में रख देता है।
1: वो सनी ही था जिसने बताया कि कत्ल के बाद घर की दीवार और गत्ते पर बंटी, बबली और बहू की कहानी क्यों लिखी गई थी। असल में अभिषेक को पता था कि उसका बड़ा भाई घोषित क्रिमिनल है, लिहाजा कत्ल का सारा शक उसी पर जाएगा और वो अपने पिता की सारी मिल्कियत का इकलौता वारिस बन जाएगा।
2: तो अभिषेक अपने माँ बाप को जब मार रहा था तब उनको यह हुआ कि भाई पुलिस हमें पकड़ ना ले, इसलिए पुलिस की पुलिस पर, पुलिस की दिशा को या जांच की दिशा को घुमाने के लिए उसने दीवार पर भी बहू और बेटा शब्द लिख दिया, साथ ही एक तख्त पर, एक कार्डबोर्ड पर उसने बंटी, बबली और बहू ने मारा इस तरह के शब्द लिख दिए ताकि पुलिस उस उन पर, उस अभिषेक पे शक ना करे, क्योंकि बंटी और बबली जो इसके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं अश्विनी वैश्य, मृतक वीरेंद्र वैश्य के दूसरे बेटे अश्विनी वैश्य और उसकी बेबहू, दोनों क्रिमिनल है और पहले कई बार जेल जा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स में और पब्लिक के साथ फ्रॉड में, 25,000 का इनाम रहा है। वर्तमान में अश्विनी जो है वो कौशाम्बी जेल में बंद है और उसकी बीबी, जो बीबी है वो बाहर है, उसकी गैंग भी है, हालांकि उस पर भी हमने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों की सही दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इनको सही को पकड़ा। और अभिषेक ये चाहता था कि बंटी और बबली पे, जो इसका दूसरा बेटा और बहू है, उस पर पुलिस का शक जाएगा क्योंकि वो क्रिमिनल है और पुलिस शायद उन्हीं को अरेस्ट करेगी, और इस वजह से चूंकि अकेला वारिस था ये, बाकी भाई जेल में है, अकेला वारिस था तो पूरी प्रॉपर्टी और दुकानों पे इसका बलालच था और अपने बाप इससे चूंकि इसको भी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, पहले बेटे को बेदखल किया था, अब इसको भी बेदखल कर दिया था और इसके पास पैसे की तंगी थी, इसी को लेकर के इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है और मानवीय रिश्तों को शर्मसार किया।
3: इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस दोस्त की मदद से अभिषेक ने कृत्य किया, बड़े बेटे ने कृत्य किया, उसकी दुकान आपको हम दिखा दें, गुप्ता जी समोसे वाले, यानी कि एक समोसे वाला, उसकी दुकान भी इसी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा थी। दो दिन तीन दिन पहले जो व्यक्ति यहाँ समोसे तल रहा था, उसकी मदद से पूरे परिवार को घर के ही बड़े बेटे ने खत्म कर दिया है। बड़ी बात यह है, पुलिस को भटकाने के लिए तख्ती पर बंटी, बबली, बहू ने किया लिखकर पूरी कोशिश की गई, जिससे आरोप छोटे बेटे और उसकी प्रेमिका पर लग जाए, लेकिन पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया।
1: जब इस चार कत्ल के खुलासे के लिए प्रयागराज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सनी लगातार पीछे खड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब उसे ले जाया जा रहा था, तब सनी ने कहा कि असल में तीन कत्ल करने के लिए अभिषेक ने ही उसे उकसाया था और अभिषेक का कत्ल उसने इसलिए किया क्योंकि उसने उसका हिस्सा नहीं था।
4: सर, हमारा कोई क्राइम नहीं था, उसने उकसाया हमको, उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया, अच्छी तरह से सब सोना चांदी नीचे लेके आया, हमको सब बोला इतना दे, फिर नहीं दिया।
1: माँ बाप और बहन का कातिल भी बन गया, खुद भी मारा गया, न दौलत मिली न जायदाद, और क्या पता अब सब कुछ उसी बंटी बबली के हिस्से आ जाए, जिसका नाम दीवार और गत्ते पर लिखकर अभिषेक ने पुलिस को उलझाने की कोशिश की थी। वो एक लाइन है ना, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, यह अभिषेक पर पूरी तरह फिट बैठ रही है। पंकज श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। दिल्ली के एक चार मंजिला होटल में बुधवार सुबह आग लग गई। इस आग में झुलसकर 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 विदेशी थे। सब यही कहेंगे कि इस होटल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन यह झूठ है क्योंकि असल में यह आग सिस्टम के एक खेल की वजह से लगी। आग बेशक इस होटल में लगी हो, लेकिन इसकी आंच से न दिल्ली सरकार खुद को बचा सकती है, न एमसीडी और ना ही फायर ब्रिगेड। असल में इन सब की कुंभकर्णी नींद और दीमक की तरह चाट चुकी इनकी लालची आदतों ने उन्हें किस लोगों की जान ले ली जो बस सुबह सुबह नींद से जागे थे। आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये होटल कब बना, कैसे बना, होटल बनाते वक्त किन किन नियमों का पालन हुआ, नहीं हुआ, होटल का मालिक कौन, इन सारे सवालों पर सब चीखें। गुनहगार पकड़ भी लिए जाएंगे, होटल सील भी कर दिया जाएगा, बहुत हुआ तो बुलडोजर से गिरा भी दिया जाएगा, पर क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कोई आग नहीं लगेगी, फिर कोई जान नहीं जाएगी। अगर सच में ऐसा होता तो 97 के उपहार में जो आग लगी थी और उस आग की तपिश में दिल्ली समेत पूरा देश जब तप गया था, उसके बाद तो दिल्ली में फिर ऐसा हादसा होना ही नहीं चाहिए था। पर जब तक लालच का दीमक लालची अफसरों और कर्मचारियों को चाटता रहेगा, या बुझने वाली नहीं। चार मंजिला ये बिल्डिंग तो इस वक्त इसलिए सबकी नजरों में खटक रही है क्योंकि इसने एक साथ 21 लोगों को मार डाला। बस इसीलिए अब इस बिल्डिंग की कुंडली निकाली जा रही है। सरकारी दस्तावेज निकाल कर बताया जा रहा है कि हमने तो इसे सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाजत दी थी, पर इसने 25 कमरे बनाए। हमने तो 2 मंजिल बनाने के लिए कहा था, इसने तो 4 मंजिल बना डाला। उधर फायर ब्रिगेड कह रही है कि इन्होंने तो हमसे एनओसी ही नहीं लिया, यानी सारी गलती बस इसे बिल्डिंग और बिल्डिंग के मालिक की है। सरकारी डिपार्टमेंट और उनके अफसर सब मासूम हैं। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्डिंग या होटल चंबल के बीहड़ में बनी थी, जहाँ कभी किसी सरकारी बाबू ने जाकर इसे देखा ही नहीं, इसीलिए पता ही नहीं चला कि कब 6 कमरा 25 कमरे में बदल गया। 2 मंजिल जादू से 4 मंजिल हो गए। सारी गलती सब इसी बिल्डिंग वाले की है, पर असल सच कुछ और है। दिल्ली में बिल्डिंग बनाने के कुछ नियम कायदे हैं जिन्हें अलग अलग एजेंसियां देखती हैं, मसलन MCD, NDMC, फायर ब्रिगेड और दिल्ली सरकार। अब जरा इन तमाम एजेंसियों के कारनामे देखें। दिल्ली में लगभग 3800 से 4000 छोटे बड़े होटल, लॉज, क्लब और नाइट क्लब है, पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से सिर्फ 52 होटल और 38 क्लब या नाइट क्लब के पास ही फायर डिपार्टमेंट का NOC है, यानी कुल 2-3% होटल या लॉज को फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बाकी के 97-98% होटल या लॉज लालच और रिश्वत के सर्टिफिकेट पर चल रहे हैं। इमारतों में लालच का दीमक कैसे घुसता है, चलिए इसका पूरा खेल भी आपको समझाता हूँ। नियम कहता है कि दिल्ली की हर वो इमारत जिसकी ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा हो, उसे फायर डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ेगी। यानी अगर उस इमारत की ऊंचाई 12 मीटर से कम है तो NOC की जरूरत नहीं, और बस इसी ऊंचाई और नीचाई से खेल शुरू होता है। दिल्ली में जितने भी होटल या गेस्ट हाउस या लॉज है, उन्हें पता है कि फायर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं कर सकते। क्या था वो इमारत इस तरह बनाते हैं कि ऊंचाई 12 मीटर से कम, ऐसे जाहिर है उन्हें कोई NOC चाहिए ही नहीं। यही शुरुआती नक्शा वो MCD और बाकी एजेंसियों के सामने रखते हैं। उस नक्शे में बाकायदा एंट्री, एग्जिट, सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़की सभी अच्छे अच्छे दिखाए जाते हैं, पर सिर्फ कागजों पर, क्योंकि बाकी का काम नोटों वाले कागज से पूरा हो जाता है। एक बार नक्शा पास हुआ फिर क्या, वही 10-11 मीटर वाली बिल्डिंग 12 मीटर कब पार कर जाती है कोई देखने ही नहीं आता। सबूत आपके सामने है, आग और धुआं उगलती ये बिल्डिंग। 6 कमरे बनने थे, 25 कमरे बन गए, 4 मंजिल खड़ी हो गई, ऊंचाई 12 फीट पार कर गई, पर क्या मजा जो किसी को नजर आ जाता। NOC लेने के दौरान हमेशा एक खेल और होता है, तब बाकायदा आग बुझाने वाली मशीनें, वाटर पंप सब लगा दिया जाता है। इंस्पेक्शन के लिए आई टीम को सब दिखाया भी जाता है, फिर उनके जाते ही सारी चीजें गायब हो जाती है क्योंकि ये सब किराए पर लाकर रखा जाता है। कई बार तो बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट ही झूठा होता है, सरकारी एजेंसियों को दिखाया कुछ जाता है, बनाया कुछ। सबसे ज्यादा हेरफेर तो NOC मिलने के बाद तब होता है जब उसी बिल्डिंग को मनमर्जी से जितना बढ़ाना हो बढ़ा लिया जाए। पैसे के अलावा इन सारे गलत कामों में खासतौर पर दिल्ली में राजनीतिक रसूख भी बड़ा काम आती है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये दिल्ली फायर सर्विस का हेडक्वार्टर है। इस फायर हेडक्वार्टर के तहत पूरी दिल्ली में करीब 2.5 करोड़ की आबादी के लिए कुल 71 फायर स्टेशन आते हैं, जिनमें 323 आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं। कुल 2500 फायर फाइटर्स हैं। मैन पावर की इतनी कमी है कि एक एक फायर फाइटर्स को लगातार 24 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। खुद फायर सर्विस के मुताबिक दिल्ली की आबादी को देखते हुए दिल्ली में कम से कम 12,000 फायर फाइटर्स की जरूरत है, साथ ही 50 नए फायर स्टेशन। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में हर साल आग लगने की 36,000 से ज्यादा घटनाएं होती हैं। सिर्फ पिछले 5 सालों में इसी आग की वजह से 1100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खासतौर पर मई जून का ये वो महीना है जब सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती है। आज तक ब्यूरो।
5: तो वारदात में फिलहाल इतना ही।
1: मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए।
5: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
7: What you got for me, Jack?
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
1: आप देखते रहिए आज तक।
8: गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, कहाँ गई है ये भी साफ नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पूर्व जज त्रिशा की सास समर्थ की माँ गिरिबाला सिंह को फिलहाल सीबीआई अपने साथ लेकर के अब फरार हो चुकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

बड़ा झटका, बागी गुट के नेता ऋतव्रता बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष, साठ टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राहुल अखड़े मौजूद, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। मरने वाले 21 लोगों में 12 विदेशी शामिल। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। 300 गिरफ्तार लोगों में 166 बांग्लादेशी होने के मिले सबूत।

0: पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र, आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई चौथी स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती, नवंबर में आएगा आखिरी खेप।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: मैं हूं शशि शर्मा, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है? क्या एमएलसी चुनाव में महायुति में कथित तनाव की वजह से शिंदे और उद्धव के एक साथ आने के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता हाईवे पर गले मिल रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव और शिंदे भी गिले शिकवे भुलाकर आपस में दिल मिला पाएंगे।

0: या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव के दिल मिलेंगे? क्या शिवसेना के बागी बढ़ाएंगे शिंदे की मुश्किल? एमएलसी चुनाव, महायुति में बढ़ा तनाव। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर के पास समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के बागी नेता अब्दुल सत्तार के बीच ये मुलाकात का वीडियो वायरल है। जिस तरह दोनों गुट के नेता सार्वजनिक तौर पर गले मिलते दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं। अब ये महज सियासी संयोग है या प्रयोग कि दोनों नेता खुलेआम दोनों गुटों के एक होने की वकालत कर रहे हैं? अंबादास दानवे चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी शिंदे गुट को खत्म करने की तैयारी में है।
1: देखो, आता शिंदेचा गट संपायला तर भारतीय जनता पार्टी ते काम करते, जी बाळासाहेबांच्या विचाराने उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हिला कोणी संपू शकत नाही वाटतं, बऱ्याच वेळेस वाटतं, पण ते मला एकट्याला वाटून काय फायदा नाही।
0: जबकि शिवसेना शिंदे गुट में बागी तेवर अपनाने वाले अब्दुल सत्तार ने संकेत दिए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे हरी झंडी दे दें तो दोनों गुटों के बीच सुलह तुरंत हो जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों में सुलह की चर्चा तब आई जब एमएलसी चुनाव में महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब्दुल सत्तार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी विस्तारवादी नीति से शिवसेना का सियासी रूप से सिर कलम कर रही है।
2: इसमें आरोप का कोई सवाल ही नहीं, फॉर्म भरा गया है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेता लेंगे।
3: जी, आखिर क्यों ऐसी नाराजगी? आप
2: कोई नाराजगी का सीधा और सिंपल मामला है कि जो हमारी नगर पालिका है दोनों भी, उसके अंदर जो निधि नहीं मिलता, इसके लिए ये परिस्थिति निर्माण हुई और ये परिस्थिति निर्माण होने की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेताओं का इसके अंदर बहुत बड़ा ये है, हमारी शिवसेना के पालक मंत्री है उनके तरफ से भी जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय जब नहीं मिलता है और पक्ष में एक इसको लगता है कि यहाँ शिवसेना खत्म हो जाएगी वहां शिवसेना खत्म हो जाएगी, तो शिवसेना को ये कहीं तो भी इस तरह से लोगों के बीच में उनके काम नहीं होना, उनके हिसाब से नाम नहीं होना, उनको निधि नहीं मिलना, उनके जो मतदार संघ के जो चुनाव क्षेत्र के छोटे छोटे मसले हैं उसके लिए, समझो हमारा जिला नियोजन मंडल का 800 कोटी रुपए का नियोजन है, हमको 800 कोटी में से दोनों नगर पालिका को 8 रुपए भी नहीं मिले, तो फिर ये तो पार्टी है हमारी, हमारी खुद की पार्टी में भी हमारे पे अन्याय हो रहा, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक एक पद एक एक जो सत्ता की जगह है, जिला परिषद होगी, महापालिका होगी, कई छोटे जगहों पे ऊपर बड़ी जगहों के ऊपर वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वहीं एकनाथ शिंदे ने दोनों गुटों के मिलन की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि उनके पास ही बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत है और उन्हें महाराष्ट्र की जनता दो बार आशीर्वाद दे चुकी है।
4: आम्ही बाळासाहेबांचा विचार हिंदुत्वाचा विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार देखील आम्ही स्थापन केलं, एकदा केलं, दोनदा केलं आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेनेला धनुष्य बाणाला बाळासाहेब आनंदगे साहेबांच्या विचाराला आणि आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला आशीर्वाद

0: दिलेले आहे, त्यामुळे आमची घोडदौड विजयी अशीच पुढे चालू।
1: दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत शिंदे पर तंज कस रहे हैं कि जिन लोगों ने दगाबाजी करके पार्टी तोड़कर दूसरा गुट बनाया था वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, तो उन्हें मातोश्री लौटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए।
2: असं मत व्यक्त केले ना, मग आम्ही मातोश्रीवर बसलेलो उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली। मी काली म्हणालो होतो तुम्हाला पश्चाताप झाला असेल तर पश्चाताप व्यक्त करण्याची जागा ही हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं निवासस्थान मातोश्री, तिथे या आणि पश्चाताप व्यक्त करा, मग आम्ही चर्चा करू। कशाला कशाला निमंत्रण द्यायचं, कशाला निमंत्रण
3: मातोश्रीवर या, जे शिंदेच्या शिवनेते ज्यांनी वक्तव्य केलं त्यांना तुम्ही एक प्रकारे निमंत्रण देत
2: आहे। आता मी दत्ताजी गायकवाडना सांगतो निमंत्रण पत्रिका छापा, दुसरं काय सांगू शकतो मी।
3: अंबादास दानवेंनी पण अशा पद्धतीची इच्छा व्यक्त केली होती,
2: बरोबर आहे ना, त्यासाठी त्यांना मातोश्रीवर येऊन पश्चाताप व्यक्त करावा लागेल।
1: हालांकि अभी तक दोनों गुटों के बीच कोई भी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाईवे पर दोनों गुटों के नेताओं के बीच हुई रणनीतिक मुलाकात से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है।
4: महाराष्ट्र की सियासी हलचल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने उभर कर नजर आ रही है। जहां एक तरफ दोनों गुट आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह जरूरी होगा कि एमएलसी चुनाव के बीच जो बगावत हो रही है या तो फिर जो नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: महाराष्ट्र विधान परिषद की कुल 17 सीटों पर हो रहे चुनाव में सत्ताधारी महायुति गठबंधन के तहत बीजेपी 11 सीटों पर, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 4 सीटों पर और एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसी बीच शिवसेना के बागी विधायक अब्दुल सत्तार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना के साथ अन्याय कर रही है और हर चुनाव में हमें ही दबा रही है। अब्दुल सत्तार यहीं तक नहीं कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे को कई साल के लिए सीएम बनाया जाए वो ये भी मांग कर रहे हैं।
6: महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 17 सीटों पर चुनाव है, इसमें महायुति में जो कैंडिडेट्स हैं उसके ऊपर आप कह सकते हैं शिवसेना के कुछ नेताओं ने यह भूमिका ली है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें कॉर्नर कर रही है। इस वक्त शिवसेना के सिल्लोड से एमएलए अब्दुल सत्तार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन की तरह शिवसेना को, अपने ही जो घटक पक्ष है, जो अलायंस पार्टनर है, उनको कम कर रही है, ऐसा आपको क्यों लगता है?
7: नहीं नहीं, ये जो लगता मुझे, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट में इसकी मालूमात दूंगा। हमारे पास महापालिका के चुनाव हुए, महापालिका के चुनाव में आखिर तक युति युति बताएं और युति नहीं हुई। जो पार्टी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब के पास से 1 नंबर की थी उसको 2 नंबर की कर दिए। वहां का हमारा एक जो सत्ता बरसों से थी वो बरसों की सत्ता छीन ली। दूसरी सत्ता जो थी जिला परिषद थी वो भी छीन लिए। तीसरी सत्ता अभी विधान परिषद है उसको भी छीन लिए। तो ऐसा जो जो हमारी शिवसेना मजबूत क्यों है कि शिवसेना के नीचे से जो हमारा जमीन लेवल का जो कार्यकर्ता है वो मजबूत है, उसको कैसा ढीला करने का है? तो ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है इसको खत्म करने का काम चालू है। इसलिए मैंने ये बात जो सारी मीडिया के सामने रखी है, हमारे नेताओं के सामने रखी है, सबके सामने रखा मैंने कि ये हमारे को अगर शिवसेना का जहां 6 एमएलए हैं, 1 एमपी है, वहां की सारी सत्ता हमारी है और वहां हमको ही दूसरे नंबर पे, जहां बरसों से हम 1 नंबर पे रहते थे, तो इसलिए हमको ये लग रहा है कि ये कोई कुटिल राजनीति है क्या, कोई राजनीति है क्या? ये हमारे जिला लेवल पे चल रही है कि ये राज्य लेवल पे तो इसके परिणाम नहीं होंगे। इसके लिए हमने हमारे जिले में जो चल रहा है उसकी मालूमात दी। ये कोई देवेंद्र जी के खिलाफ नहीं है, ये कोई एकनाथ राव जी शिंदे साहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पुढ़ारी जिस हिसाब से वहां का नियोजन कर रहे हैं, पार्टी देखो जब तक का शिवसेना खत्म नहीं होगी तब तक भाजपा आगे नहीं बढ़ने वाली। और पहले तो विरोधी पक्ष वहां नहीं है और हम जो सत्ताधारी है हम ही एक दूसरे के विरोध करेंगे तो आपस में नुकसान होगा। ये पूरी मालूमात हमने हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब को दी, उसके ऊपर वो उपाय करने वाले।
6: तो इसी भी गठबंधन में ऊंच नीच चलती है, किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो इसमें क्या खराब बात?
7: नहीं, कितनी जब वो सर रहा तो पगड़ी बांधी जाएंगी ना, जब सर ही नहीं रहा तो पगड़ी कहां बांधेंगे? वो हमारे में बोलते हैं अपने में सर सलामत तो पगड़ी हजार, जब सर ही नहीं रहेगा तो पगड़ी कहाँ बांधेंगे। जिला परिषद चलेगी, महापालिका चलेगी, विधान परिषद चलेगी, ये टप्पे टप्पे से सारी संस्थाएं चली जाएंगी तो सत्ता चली जाएंगी। सत्ता गई तो कॉम्प्रोमाइज एक आधी जगह जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा पार्टी खत्म करने का नियोजनबद्ध काम कभी नहीं होता है। आप सोचो कि जिस तरह से ये हमारे आज देश में बड़े भाई है, राज्य में बड़े भाई है, हम कम से कम एक जिले में बड़े थे, वहां भी हमको छोटा कर देंगे तो कैसे चलेगा। ये बातचीत के लिए ये जो मैंने जो मालूमात दी, ये हर एक चुनाव क्षेत्र के अलग अलग मसले हैं, वो सारे मसले के ऊपर हमारे नेता इसके ऊपर उपाय करेंगे।
6: कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ, शिवसेना यूबीड के साथ भी यही देखा गया कि उनको खत्म किया गया, उनकी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन इतना किया गया कि आज महाराष्ट्र में अपोजिशन देखने के लिए मिलता है। तो अब उसके बाद अलायंस पार्टनर्स का नंबर ऐसा आपका मानना?
7: करेक्ट, बस मैंने ही बोल दिया, मेरा जो सवाल था वो आपके ही सवाल में आपने ही जवाब दे दिया कि हमारे पास दुश्मन खत्म हो गया तो दोस्ती आप दुश्मनी का काम कर ले रहे, ये जो चीज चल रही है ये नहीं होना चाहिए।
5: पुणे में एक आईटी भर्ती घोटाले का खुलासा किया गया है। आरोप अब यह है कि एक आईटी कंपनी ने सैकड़ों युवाओं को नौकरी, स्टाइपेंड और इंसेंटिव देकर सपना दिखाया, करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। कंपनी के सीईओ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में, और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए, हमारे संवाददाता ओमकार बाबले आप तक पहुंचाएंगे।
8: डिजिटल का स्कैम भी बहुत बड़ा है। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में से कम 3 से 4 हजार लोगों के पास से 500-500 भर के लिए।
9: 5 महीने का सैलरी तो हुई नहीं अभी तक, और डिपॉजिट तो गया वो अलग से।
10: इनके पास ना प्रोजेक्ट्स है, ना कोई रोड मैप है, ना ही देने के लिए सैलरी है।
11: हजारों सपनों के साथ पुणे पहुंचे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और फ्रेशर्स को क्या पता था कि जिस कंपनी में उनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, वही कंपनी उनकी उम्मीदों पर ताला लगा देगी। पुणे के हिंजवाड़ी फेस 2 इलाके में थिंक टेक्नोलॉजी इंडिया नाम की कंपनी पर आरोप है कि उसने 700 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी का झांसा देकर आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया।
12: पुणे के हिंजवाड़ी स्थित आईटी पार्क में लगभग 700 से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉयज है जिन्हें रातों रात वहां से निकाल दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि इसमें से सबसे ज्यादा फ्रेशर्स थे जो अपने करियर की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन थिंक टेक्नोलॉजीज कंपनी ने इन्हें निकाल दिया गया है जनवरी से। ना ही उनकी कोई सैलरीज हुई थी, ना ही अब उन्हें उनसे जो डिपॉजिट लिया गया है वो उन्हें वापस मिलने की कोशिश हो रही है। हम अभी पुणे के हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में खड़े हैं जहां कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है।
11: ये कंपनी अचानक बंद हो गई और कर्मचारियों को ना वेतन मिला ना कोई जवाब। शिकायतें सामने आने के बाद आरोपी हर्षल ठाकरे नासिक भाग गया था। बाद में फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉयज के अध्यक्ष पवनजीत माने ने उसे लेबर कोर्ट में घसीटने की धमकी दी और आखिरकार पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
13: ये थिंकटेक टेक्नोलॉजी जो हिंजवाड़ी में है और ऑलमोस्ट 500-600 फ्रेशर्स यहाँ पे इम्पैक्ट हुए, और ये चीज़ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो भी इम्पैक्टेड है वो मेजोरिटी फ्रेशर्स है जिनका अभी प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो रहा है। और अगर स्टार्ट में अगर कोई तो उनको ऐसी कंपनी मिलती है जहाँ पे उनका पेमेंट नहीं होता या फिर उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। और यहाँ पे हमें ये पता चला कि जनवरी से इस कंपनी ने उनको पेमेंट नहीं दिया, और पुणे जैसे बड़े शहर में अगर एम्प्लॉयज को पेमेंट नहीं है 4-4, 5-5 महीने तो उनको यहाँ पे रहना भी काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे कैसा है कि ये कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स है उस हिसाब से उन्होंने फ्रेशर्स हायर करने चाहिए थे। यहाँ पे 400-500 फ्रेशर्स उन्होंने हायर किए और उनके पास देने के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, सैलरी नहीं है। तो ये ऐसा जो मिस प्लानिंग कर रहे हैं, स्कैम रन कर रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने 15,000 रुपए एम्प्लॉय से लिए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर लैपटॉप, ये हमने कभी आईटी में देखा नहीं है।
11: अब तक करीब 80 पीड़ितों ने लिखित शिकायत दी है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर हिंजवाड़ी पुलिस ने हर्षल ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया है।
14: ऑफर लेटर पहले आया था, उसमें सब लिखा था कि तुमको 5.5 LPA ऐसा तुमको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा और तुमको 15,000 डिपॉजिट करना है, वो भी लिखा है लास्ट में, और लैपटॉप का मॉडल नंबर सब मेंशन है ऑफर लेटर में। तो वो ऑफर लेटर और विद डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट किया हुआ, हाँ सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिटेड है।
12: तो कंपनी में क्या बताते आपको, कुछ प्रोजेक्ट मिलते थे करने के लिए?
14: एक्चुअली मेरा 2 मंथ्स ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद ये सब हो गया तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं। पर मैं एक्चुअली ट्रेनिंग में अपने को सबको इंडिविजुअली एक प्रोजेक्ट बनाना था और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन होगा, उस बेसिस में इंटर्नशिप अपना स्टार्ट होगा।
11: जांच में सामने आया है कि कंपनी का एचआर सौम्या सिंह और मैनेजर ध्रुविल पारेख फिलहाल फरार है।
15: सौरव राजन नायर जो आईटी इंजीनियर है उसका कंप्लेन हमारे पास 15 दिन पहले मिला था, तो उसके इंक्वायरी में 25 से 30 स्टेटमेंट हमारे पास हुआ है। उसमें जो एक्यूज है हर्षल वर्णोज ठाकरे मेन एक्यूज है, उसने कंपनी लॉक करके चला गया और उस बहुत से जो आईटी इंजीनियर्स है उनका जो पेमेंट था तो पेमेंट नहीं दिया है सर, 2 से 3 महीने का लोगों का पेमेंट नहीं दिया है और लैपटॉप रिपेयर बोल के उनसे 15,000 पर हेड लिया था, वो लैपटॉप रिपेयर भी उसने वापस नहीं दिया है, ऐसा कंप्लेन हमारे पास आया था। उसमें एक्यूज ने भी कोई फोन बंद करके नासिक चला गया था ऐसा इन्फॉर्मेशन था और चौकसी में उसने कोऑपरेट नहीं किया था, तो प्राइम ऑफिसी ऑफेंस रजिस्टर हमने किया है और उसमें अक्यूज को भी अरेस्ट किया है, उसका अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। अभी एग्जैक्ट हमारे पास तो 25 से 30 लोग आए, लेकिन लोगों का कहना है कि 100-200 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं इसमें, तो जितना कंप्लेन आते हैं हमने सबको जो ये किया है कि कोई भी इधर आके कंप्लेन कर सकता है, सबको हमने आह्वान जारी किया है।
11: ये कंपनी कई बड़े इंजीनियरिंग और आईटी कॉलेज से टाइप होने का दावा करके छात्रों को लुभाती थी। इतना ही नहीं, कंपनी लैपटॉप देने के एवज में 15,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा कराती थी।
9: जब ज्वाइनिंग थी हमारी, एचआर थी सौम्या सिंह करके नाम था उसका, उसने हमको प्रॉपर सब चीज़ें क्लियर की थी कि आपका ऐसा ऐसा रहेगा, आपको 15,000 रुपये डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया उनसे कि मैम क्यों ले रहे हैं ना, 15,000 रुपये डिपॉजिट नहीं लेते आप क्यों ले रहे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखिए हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, कई स्टूडेंट जो थे हमारे वो पैसे लेके भाग गए हैं, तो इसकी वजह से हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके आपके पास रहने के चाहे या हमारे पास रहेंगे और हमें आपको रिटर्न कर देंगे जब आप जॉब छोड़ देंगे या फिर हम आपको निकाल देंगे, ऐसा उसने बोला था उस टाइम पे, ठीक है। और मैंने बोला फिर उसके बाद क्या, तो बोला कि जैसे ही 4 महीने के लिए आपको 6,000 रुपये से स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद 2 महीने आपका इवोल्यूशन में होगा, उसका भी 15,000 रुपये डिपॉजिट आपको सैलरी मिलेगा, उसके बाद आपको पीपीओ मिलेगा 7-9 एलपीए, ऐसा करके उन्होंने हमको पूरा विश्वास में लिया और उसके बाद फिर उन्होंने ज्वाइनिंग करा के लिया हमारी। जब पेमेंट हुआ तब ऑफर लेटर रिलीज किया।
11: पुलिस के मुताबिक इस कंपनी ने कई वेंडर से 350 से ज्यादा लैपटॉप लिए थे। एक वेंडर ने भी हिंजवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके करीब 8.5 लाख रुपए लेकर कंपनी फरार हो गई।
12: जब खबरें बाहर आने लगी तब इस पूरे मामले में अब शिकायत दर्ज हो रही है, क्योंकि 50 से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉयज है जहां इस कंपनी में काम करते थे जो अब आके यहां एफआईआर दर्ज करेंगे। उन्होंने अपने जो इससे पहले की कंप्लेंट्स थी वो तो दे चुके हैं, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने का जो ऑफिशियल काम है वो अभी चालू है। अहम बात यह है 700 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने दफ्तर गए और जाके वहां ताला देखा और उसके बाद उन्हें पता चला कि अब से हमारे यहाँ कोई काम नहीं बचा।
11: आरोप है कि उड़ान नाम के एक कथित फ्रॉड ऐप के जरिए अलग अलग जिलों से पैसे इकट्ठे किए गए थे।
8: कंपनी कॉलेज में आई थी तो हमने इसीलिए हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ और हमने 15,000 एज अ डिपॉजिट दिए, तो बेसिकली इसमें 2 महीने बेसिक ट्रेनिंग रहती थी जो कि घर पे होती थी और 2 महीने के बाद वो इवैल्यूएशन लेते थे और हर चीज़ के लिए बार बार इंटरव्यू इवैल्यूएशन होता रहता था, तो इवैल्यूएशन लेने के बाद ऑन फील्ड लेते थे और ऑन फील्ड लेने के बाद फिर 15,000 स्टाइफन का उन्होंने मतलब ऐसे मेंशन किया था पूरा, और उस इंटर्नशिप ऑफर लेटर में ये भी मेंशन था कि अगर वो हमें एज अ फुल टाइम लेते हैं तो 5.5 का पैकेज देंगे
12: ईयरली, 5.5 लाख का पैकेज,
8: 5.5 अगर हम वहाँ पे 1 साल टिकते हैं तो 8.5 का होगा, ऐसे मेंशन किया था उन लोगों ने। और बाद में हम काम पे भी गए, फिर स्टार्ट में हमें थोड़ा डाउट भी था लेकिन फिर वो धीरे धीरे ट्रस्ट इशू और बढ़ता गया क्योंकि चीज़ें हमारे आगे धीरे धीरे आती गई। जब हम स्टार्ट में काम करते थे एक भी प्रोजेक्ट था उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, और हम जब गए थे उड़ान डिजिटल बोल के लॉन्च हुआ था, उड़ान डिजिटल का स्कैम भी बहुत बड़ा है।
11: फिलहाल पुलिस नाराज कर्मचारियों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा देकर शांत करा रही है।
12: अलग अलग जगहों से मतलब महाराष्ट्र नहीं बल्कि अलग अलग देश के भी जो स्टूडेंट्स पुणे में सीखने के लिए आते हैं वो स्टूडेंट्स इस पूरे फ्रॉड में शामिल थे। हुआ ऐसा है कि ना उनकी पिछले 6-7 महीने से सैलरी आई है, ना उन्हें एक्सपीरियंस लेटर मिला है, और बल्कि लैपटॉप जो उनके पास थे उसके लिए 15,000 डिपॉजिट के अलग से जब वो ज्वाइनिंग हुआ तभी लिए गए थे। अब इस पे कॉलेजेस भी शामिल है क्योंकि कॉलेज से रिक्रूटमेंट हुई थी और आरोपी का ये कहना है कि हमारे कॉलेज का साथ टाइप भी थे। और दूसरी अहम बात यह है एचआर और जो और एक मैनेजर है ये दोनों अभी फोन स्विच ऑफ करके गायब है। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ ओमकार वाबले आज तक पुणे।
5: अभिनेता आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्पेट के साथ तीसरी शादी करने जा रहे हैं। 61 साल की उम्र में आमिर खान की यह शादी बॉलीवुड में भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। हालांकि यह शादी निजी समारोह के तौर पर होगी जिसमें पारिवारिक मित्र और बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार शामिल हो सकते हैं।

0: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर दूल्हे का सेहरा पहने दिखेंगे। आमिर खान ने 5 जुलाई को मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से शादी करने का ऐलान किया है। शादी में सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल होंगे। 61 साल की उम्र में आमिर एक बार फिर अपना घर बसाने जा रहे हैं। दोनों अपने घर एक रजिस्ट्रेशन और साइनिंग सेरेमनी करके अपने रिश्ते को नाम देने वाले हैं। आमिर ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। एक निजी समारोह में बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार के दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मेहमानों की लिस्ट अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन चर्चा है कि सलमान खान और शाहरुख खान भी उनके जश्न में शरीक होंगे।
1: आमिर खान के घर पे बजने वाली है फिर से शहनाई की गूंज। हाँ, 5 जुलाई को आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने वाली है। जी हाँ, ये न्यूज बिल्कुल फैंस को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर चुका है। और ये आज ही ये खबर आई है कि आमिर खान, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को पिछले साल एक बहुत ही प्यारे से सेरेमनी में अपने बर्थडे के 2 दिन पहले उन्होंने मीडिया को बुलाया था और अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस किया था, और एक ऑफिशियली जो एक अनाउंसमेंट होता है जिसे आजकल हम हार्ड लॉन्च कहते हैं, वो किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो अपने रिश्ते को छुपाए नहीं रखना चाहते। और शायद यही प्यार है जो अब तीसरी बार आमिर खान शादी कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने चूज किया है एक बहुत ही क्लोज नेट इंटीमेट शादी। 5 जुलाई को मुंबई में आमिर खान अपने जो है वाउज लेंगे गौरी स्प्रैट के साथ, और ये माना जा रहा है कि बहुत ही एक सिंपल फंक्शन होने वाला है जिसमें उनके सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल होंगे। ये शादी एक ऑफिशियली कहते हैं ना कि आप अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, बस वही है, क्योंकि सोर्सेस की माने तो ये दोनों बहुत ही एक सिक्योर कपल है और काफी समय से साथ है, और वो चाहते थे कि अपने रिश्ते को एक सेलिब्रेट करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और शायद इसीलिए डिसीजन लिया गया कि वो 5 जुलाई को शादी करेंगे। और ऑफ कोर्स गेस्ट लिस्ट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बट सलमान खान और शाहरुख खान जो कि आमिर के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वो भी डेफिनेटली आ सकते हैं। बट हमें ये भी नहीं पता है कि वो शायद शूटिंग कर रहे होंगे, तो उनकी अवेलेबिलिटी पे ये डिपेंड करेगा कि वो ये शादी पे आएंगे कि नहीं, बट आमिर डेफिनेटली उन्हें इन्वाइट तो जरूर करेंगे।
0: आमिर के करीबी दोस्तों ने बताया कि इस कपल ने हाल ही में अपने रिश्ते को शादी के रूप में कबूल करने का फैसला किया है। दोनों ही अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर हैं और बस अपने रिश्ते का जश्न मनाना चाहते हैं। ये आमिर खान की तीसरी शादी होगी। आमिर और रीना ने 1986 में भागकर शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, आयरा और जुनैद। हालांकि 16 साल तक साथ रहने के बाद 2002 में दोनों अलग हो गए। इसके 3 साल बाद आमिर ने फिल्म डायरेक्टर किरण राव से शादी की और 2011 में बेटे आजाद का स्वागत किया, लेकिन 2021 में ये रिश्ता भी टूट गया। बताया जा रहा है कि आमिर और गौरी करीब 1 साल से परिवार की तरह साथ रह रहे थे और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब दोनों इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं।
1: और आमिर खान के अगर रिश्ते की बात करें तो ऑफकोर्स कयामत से कयामत तक उनकी पहली फिल्म जो आई थी उसके रिलीज से पहले उन्होंने रीना दत्ता से शादी की थी, जो कि उनकी काफी पुरानी मित्र थी। कुछ साल बाद उन्होंने उनसे डिवोर्स हुआ। फिर लगान के सेट पे किरण राव से मिले, जो कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर थी, और 2-3 साल के रिलेशनशिप के बाद उन्होंने उनसे शादी की। और रीना दत्ता के साथ ऑफकोर्स उनके 2 बच्चे हैं, जुनैद और ईरा। जुनैद जो कि आप सबको पता है कि वो एक एक्टर है, और ईरा मेंटल हेल्थ के लिए वो काम करती हैं। और किरण राव के साथ उनका एक बेटा है आजाद खान, जो कि अभी काफी छोटा है। और गौरी स्प्रैट जो है उनकी पुरानी दोस्त थी, और बीच में ऑफकोर्स कुछ सालों तक उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। और आमिर खान ने जब अपनी गर्लफ्रेंड से मीडिया को इंट्रोड्यूस किया था तो उन्हें इन्फॉर्म किया था कि वो एक किसी काम के सिलसिले में बैंगलोर गए थे, जहां उन्हें गौरी फिर से मिली, और वो जब रिकनेक्ट किए तो वो दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हो गई। और आज के टाइम पे वो एक बहुत ही स्ट्रांग कपल है, और क्योंकि एक मैच्योरिटी वाला रिलेशनशिप है, इसलिए आमिर का ये मानना है कि बहुत ही ग्रोथ और इवॉल्व जो आप कहते हैं एक रिश्ते में होते हैं, वो गौरी के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। और आज फाइनली 5 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया है कि वो शादी करेंगे। ऑफ कोर्स फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है कि किस तरह की शादी होगी, क्या पहनने वाले हैं, गेस्ट कौन होंगे, और ऑफ कोर्स खाने में क्या रहेगा। बट ये सब हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। बट फिलहाल अब के लिए सिर्फ हम यही सेलिब्रेट कर सकते हैं कि आमिर खान एज दूल्हा 5 जुलाई को हमें दिखेंगे, जब वो गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते को एक ऑफिशियली शादी का नाम देंगे।
0: आमिर ने अपने 60वें बर्थडे पर गौरी को मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद कई इवेंट्स में दोनों साथ नजर आने लगे। सना फरजीन, मुंबई आज तक।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
5: Jack, come home. It's supper time.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
6: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
4: Jack FM, playing what we want.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में वैसे तो साल भर भक्तों का सैलाब रहता है, लेकिन आज पुरुषोत्तम मास की संकष्टी चतुर्थी के मौके पर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज मंदिरों में विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया।
7: पुरुषोत्तम मास और संकटी चतुर्थी के दिन मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में। मेरे साथ कोषाध्यक्ष पवन जी हैं और इनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया। सर थोड़ा सा बताएं आज का दिन क्या खास है और मंदिर की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं और क्या कुछ होने वाला है?
8: देखिए आज श्री सिद्धिविनायक पवित्र मंदिर में, चूंकि यह पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो पवित्र पुरुषोत्तम मास की आज संकष्टी चतुर्थी है और आज बुधवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस समय के में आज के शुभ मुहूर्त में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर के दर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग लाइनें लगी हुई हैं। चार लाइनें ऐसी हैं जो सीधे गर्भगृह में जाती हैं, एक जो है मुख दर्शन की लाइन है, और चूंकि यह गर्मी का समय है तो किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान जो है श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट बोर्ड रख रहा है। जैसे सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग लाइन है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए अलग लाइन है, जो छोटे बच्चे लेकर के आ रहे हैं उनके लिए अलग है, और जो लोग असमर्थ हैं दर्शन करने में, चल करके आने में लाइन लगने में, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे व्हील चेयर भी व्यवस्था है ट्रस्ट की तरफ से। तो जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जैसे दादर रेलवे स्टेशन है वहाँ से एसी बस की सुविधा की गई है जो सीधे श्री सिद्धिविनायक मंदिर आएगी। तो पूरा ध्यान रखा गया है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो।
7: कुछ देर पहले हमने देखा मंत्र उच्चारण किया गया, कई महंत कई पंडित यहाँ बैठे हुए थे, आरती भी रोजाना ही होती है, आज स्पेशल कौन कौन सी चीज़ें होने वाली?
8: देखिए आज संकष्टी के दिन में आज यहाँ पर श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आज विशेष पूजन अर्चन और स्तोत्र का पाठ किया गया है। सभी के मंगल की कामना श्री सिद्धि विनायक मंदिर की तरफ से की गई है और निश्चित रूप से आज उसका ही आयोजन किया गया है।
2: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
10: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बड़ा झटका बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली राहुल और खड़गे मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई चौथी स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती नवंबर में आएगी आखिरी खेप
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की जान गई, कई विदेशी नागरिक भी जान गंवा बैठे, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। हादसे पर एलजी ने बुलाई है बड़ी बैठक, अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, सभी सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। दिल्ली अग्निकांड के होटल के फरार मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर नोटिस। आज तक से दिल्ली के डेप्यूटी फायर चीफ एके मलिक का खुलासा, इलाके में किसी भी होटल को एनओसी नहीं। मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों के 12 विदेशी नागरिकों के शामिल होने की खबर, अस्पताल में कई घायलों की हालत नाजुक है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया गया निरातन हत्या का मामला, उपराज्यपाल ने सभी होटल और नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की जांच के लिए 1 महीने का अभियान चलाने का आदेश दिया। अग्निकांड पर एक्शन में दिल्ली सरकार, बनाई गई ज्वाइंट कमेटी, आज हो सकती है कई इलाकों में सीलिंग की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में मंत्री आशीष सूद का बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कहा हर लापरवाही की जांच की जाएगी। मेयर प्रवेश वाही ने एमसीडी को दिए जांच के आदेश, 3 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जताई संवेदना, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा। आग हादसे पर दिल्ली के मैक्स अस्पताल साकेत का बयान, हमारे यहां 18 लोग मृत अवस्था में लाए गए थे, 8 घायल अभी भी वेंटिलेटर पर। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम योगी ने जताई संवेदना, अखिलेश यादव बीजेपी सरकार के नियम कानून और कामकाज पर उठाए सवाल। मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, सरकार के से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की, रेखा सरकार में पिछली घटनाओं का भी जिक्र किया। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, सभी अस्पताल में भर्ती अपने परिजन से मिलने के लिए आए हुए थे। विदेशी नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, दूतावासों के साथ संपर्क में, विदेश मंत्रालय दी जा रही है तमाम जानकारी। बंगाल में ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, बागी गुट के नेता ऋतुव्रता बनर्जी को स्पीकर ने बनाया है नेता विपक्ष, सौंपी गई नेता विपक्ष के कमरे की चाबी। ऋतुव्रता बनर्जी ने 60 टीएमसी एमएलए होने का दावा किया है, कहा हमारा गुट असली तृणमूल है, ममता बनर्जी का लेते रहेंगे मार्गदर्शन। टीएमसी में खलबली पर ममता बनर्जी के घर बड़ी बैठक, अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे, ममता के करीबी भी मीटिंग में शामिल हुए। टीएमसी के राज्यसभा सांसद और ममता की खास डोला से इनका बयान, तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता और आम आदमी दीदी के साथ है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई मुश्किलें, घर पर ईडी की टीम, प्राइमरी टीचर स्कैम का मामला 15 जून को पेश होने का समन जारी किया गया। बिहार सरकार की बड़ी पहल, सीएम ने सभी 38 जिलों में 11 मेगा पार्क और फूड पार्क बनाने के

जाएगा सफर। उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों को मिली है बड़ी सौगात। सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में 50% तक भारी बढ़ोतरी को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से एनसीआर जिलों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया जाएगा। जल्दी नो पीयूसीसी नो फ्यूल व्यवस्था लागू करेगी सरकार। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। देसी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए भी कई स्कीम्स। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। 300 और गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिल गए हैं। पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र। आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई 4th स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती। नवंबर में आएगी आखिरी खेप। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन। डासना में सरकारी जमीन पर बने हुए मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। ऑपरेशन क्लीन स्वीप में 2 मदरसे सील किए गए। वैभव सूर्यवंशी का समस्तीपुर के अपने पैतृक गांव में जबरदस्त स्वागत हुआ। बिहार विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन वैभव को सम्मानित करते नजर आए। यूपी के महोबा में ट्रिपल मर्डर के अहवान पति को फांसी दी गई। पत्नी और 2 मासूम बेटियों को सिलबट्टे से कुचल डाला था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी मौत की सजा। एमपी के सिडनी में 9वीं की छात्रा से स्कूल में शिक्षक ने छेड़छाड़ की। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। सूरत में शराब के नशे में धुत कार चालक का कहर। 5 लोगों को रौंदने वाले चालक को भीड़ ने पकड़कर जमकर पीटा। गुजरात के जामनगर राजकोट रोड पर युवक पर जानलेवा हमला। सिर में आई थी गंभीर चोटें। मथुरा में पेट्रोल भरवाकर बिना नंबर प्लेट वाली थार गाड़ी फरार हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पंजाब के मोगा में दिनदहाड़े डेयरी पर आए शख्स की 2.5 तोले की सोने की चेन छीनकर लुटेरे फरार हुए। पुलिस ने जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। सूरत SBI बैंक में 50 लाख रुपए की डकैती के मामले में बिहार की कुख्यात कुंदन भगत गैंग का एक और साथी गिरफ्तार। लूट की रकम अभी भी नहीं हुई बरामद। बिजनौर में पुलिस के सामने निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी। लाठी डंडों से हमला, 10 के खिलाफ FIR दर्ज। अलवर में युवक की सड़क हादसे में मौत हुई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। हरिद्वार के रानीपुर में स्टंट करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। कार की गई सीज। हरिद्वार में युवक को रस्सियों से बांधकर पीटने वाला वीडियो वायरल हुआ। युवक पर चोरी करने के आरोप थे। रोहतास में अभिषेक गोस्वामी हत्याकांड की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। बिहार की मधुबनी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हुई। पानी भरे गड्ढे में नहाने के दौरान हादसा हुआ। एक ही परिवार के सभी मृतक बच्चे। उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल ट्रक से लापता रामनगर की 24 साल की ट्रक बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है। पीड़ित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। 6 दिन से लापता। बिहार के कोसी क्षेत्र में DIG की सहरसा सुपौल और मधेपुरा में कार्रवाई जारी। अब तक 41,000 लीटर अवैध शराब, 2200 किलो गांजा, 4 किलो स्मैक, 3,000 नशीली सुई समेत ड्रग्स को जब्त किया गया। करनाल में रहने वाली सीता ने पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल। ड्रोन पायलट बनकर अब किसानों के खेतों में करती हैं स्प्रे। 350 रुपए प्रति एकड़ की कमाई। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को बड़ा सम्मान। ग्रैमी अवार्ड के लिए सम्मानित किए गए। अमरावती में दिखा मलखम का अनोखा रोमांच। हाथों में जलते मशाल लेकर छात्रों ने दिखाया अद्भुत करतब। मुंबई के सिद्धिविनायक में पुरुषोत्तम मास विभुवंश संकष्टी चतुर्थी का रौनक विधि विधान के साथ मनाया गया धार्मिक उत्सव। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को रिकॉर्ड चढ़ावा। दान में मिले हैं करीब 30 लाख रुपए। डॉलर और नेपाली रुपए भी इसमें शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर कही बड़ी बात। कहा अभी ईरान में जमीनी सैनिकों की जरूरत नहीं। साथ ही कहा ईरान ने दी है सहमति, सभी कभी नहीं रखेगा परमाणु हथियार। ईरानी सेना का कुवैत के हवाई अड्डों पर भीषण ड्रोन और मिसाइल से हमला। एयरपोर्ट परिसर को किया गया नुकसान। 1 शख्स की मौत हुई, 7 से ज्यादा लोग घायल। गाजा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। कहा गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर कब्जा करने की नहीं है योजना। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लगाने का बनाया प्लान। नए प्रस्ताव के अनुसार इन देशों के प्रोडक्ट पर लगेगा 10 से 12.5% तक का अतिरिक्त टैरिफ। यूक्रेनी सेना ने रूसी नियंत्रण वाले डोनेत्स्क इलाके पर किया है भीषण हमला। 8 लोगों की मौत हुई, 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा 1000 किलोमीटर दूर मौजूद तेल टर्मिनल को यूक्रेनी सेना ने बनाया था निशाना। यूक्रेन के कीव पहुंचे नेटो प्रमुख मार्क रूट। युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात। 1 दिन पहले ही रूस ने कीव पर किया था भीषण हमला। अमेरिकी कंपनी गूगल को यूरोपीय यूनियन ने दी है बड़ी चोट। अब EU की संसद में गूगल की जगह फ्रांसीसी सर्च इंजन क्वेड का उपयोग किया जाएगा।

अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता कम करने को लेकर लिया गया फैसला। पुर्तगाल में प्रस्तावित श्रम सुधारों के विरोध में कर्मचारियों ने की देशव्यापी 24 घंटे की हड़ताल। परिवहन, स्कूलों और अस्पतालों समेत अधिकांश सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई। जापान की राजधानी टोक्यो में भारी बारिश के साथ ही चल रही तेज हवाएं, बड़े पैमाने पर सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई, ट्रेन सेवाएं भी निलंबित। श्रेयस अय्यर को बनाया जा सकता है भारत की T20 टीम का कप्तान। विदेशी धरती पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होनी है सीरीज। सूर्य कुमार यादव को लेकर जल्द होगा फैसला। हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम मैनेजमेंट करेगी सलाह। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का इकलौता टेस्ट। न्यू चंडीगढ़ में होगा मुकाबला। 13 जून से वनडे सीरीज की शुरुआत। ओपन, फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे जर्मनी के ज्वेरेव। फाइनल में पहुंचने के लिए चेक गणराज्य के जाकोव मेंसिक से मुकाबला होगा। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर। 25वीं वरीयता प्राप्त श्राइडर ने नंबर वन रैंक सबालेंका को क्वार्टर फाइनल में हराया। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से जल्द तेल कंपनियां बढ़ा सकती हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। क्रिसिल का दावा है कि अब तक 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, और महंगे होंगे। महंगे होते पेट्रोल डीजल से बढ़ी सीएनजी इलेक्ट्रिक और स्ट्रांग हाइब्रिड कारों की भी बिक्री। बीते महीने सीएनजी इलेक्ट्रिक और स्ट्रांग हाइब्रिड कारों की बिक्री का हिस्सा बढ़कर 32% हुआ है। बुधवार से शुरू हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुक्रवार को करेगी रेपो रेट पर फैसला। इस बार भी ब्याज दरों में कटौती नहीं होने का जताया जा रहा है अनुमान। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि इस बार अलनीनो के आने से 80% संभावना है। भारत में कम बारिश और सूखे के खतरे से किसानों को इनकम घटने और महंगाई बढ़ने की आशंका और तेज हुई। बाजारों में जारी गिरावट से घबराकर छोटे निवेशकों ने एसआईपी को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन पुराने निवेशकों की तरफ से रकम बढ़ाने के बाद एसआईपी में कुल निवेश 31,115 करोड़ रुपए नए रिकॉर्ड पर पहुंचा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सबसे पहले आपको दिल्ली में भ्रष्टाचार की भट्टियां दिखाएंगे जिनमें जलकर 21 लोगों की मौत हो गई। नियमों की धज्जियां उड़ाकर 6 कमरों की जगह 25 कमरों का अवैध गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था और हमारा प्रशासन गहरी नींद में सोया था। इस लापरवाही ने आज 21 लोगों को जिंदा जला दिया, जिसमें कम से कम 6 विदेशी थे। जान बचाने के लिए कोई तीसरी मंजिल से कूद रहा था, कोई जिंदा जलते हुए खिड़की से छलांग लगा रहा था। भ्रष्टाचार की वजह से हर बार आग लगती है, हर बार लोग मरते हैं, हर बार हंसते खेलते परिवार खत्म हो जाते हैं। किसी का बेटा, किसी का सुहाग, किसी की मां इस सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे गेस्ट हाउस में आज जो हुआ, अगर आप उसे हादसा कहते हैं तो ये उन 21 बेगुनाहों के साथ सबसे बड़ा मजाक होगा। सच तो ये है कि ये हादसा नहीं, व्यवस्था द्वारा किया गया कत्ल है। सोचिए, पुलिस स्टेशन से 4 मिनट, फायर स्टेशन से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर यह मौत की भट्टी धड़ल्ले से चल कैसे रही थी। इसके बाद आपको बंगाल की तस्वीर दिखाएंगे जहां ममता बनर्जी का सियासी वजूद खतरे में है। उनके सामने चुनौती है कि वो पार्टी बचाएं या भतीजा बचाएं। बंगाल में ममता के पैरों के नीचे से सत्ता की जमीन खिसकने के बाद अब पार्टी भी उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। टीएमसी के 60 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए ऋतव्रत बनर्जी को अपना नया नेता चुन लिया है और विधानसभा स्पीकर ने भी इस बागी गुट को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दे दी है। विरासत की इस जंग में बागियों ने ममता बनर्जी को ही मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी की। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि क्या ममता अपनी पार्टी को बचा पाएंगी या सिर्फ भतीजा ही उनके साथ बचेगा। और इसके बाद आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका में शुरू हुई नई जंग के बारे में, जिसमें ईरान ने कुवैत और बहरीन पर जोरदार हमला किया है, तो इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर भीषण बमबारी शुरू कर दी है। इस बमबारी में बातचीत धुआं धुआं होती दिखाई दे रही है और एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता यही कि अगर ये युद्ध फिर से भड़कता है, अगर अमेरिका और ईरान में फिर से फुल फ्लेज्ड वॉर होता है, तो खामियाजा हम तक पहुंचेगा। लेकिन आज सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि कब तक हमें यही सुनना होगा कि बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हर बार आग लगती है, हर बार लोग मरते हैं, हर बार परिवार उजड़ते हैं, हर बार किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी की मां, किसी का पति, किसी बुजुर्ग का सहारा राख में बदल जाता है और हर बार सिस्टम माइक के सामने आकर कह देता है कि फायर एनओसी नहीं था। लेकिन आज सवाल यह है कि कब तक हमें यही सुनना होगा और कब तक ये लाइन हमारे सिस्टम की नाकामी का आधिकारिक बहाना बनी रहेगी। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि एनओसी था या नहीं था, असली सवाल यह है कि अगर एनओसी नहीं था तो इतने दिन तक किसी को पता क्यों नहीं चला। अगर एनओसी नहीं था तो यह होटल चल कैसे रहा था? अगर एनओसी नहीं था तो वहां लोग रह कैसे रहे थे? अगर एनओसी नहीं था तो बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मिले? अगर एनओसी नहीं था तो स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? अगर एनओसी नहीं था तो फायर विभाग के अधिकारी किस बात की तनख्वाह ले रहे थे? और आखिर में इस देश में फायर विभाग का काम क्या है? क्या उसका काम सिर्फ दुर्घटना होने के बाद मलबे के बीच खड़े होकर यह बताना है कि इस घटना में भी फायर एनओसी नहीं था, या दुर्घटना होने से पहले खतरे को पहचानना, उसे रोकना उनकी जिम्मेदारी है? हर साल हमारे देश में हजारों अग्निकांड होते हैं, हर साल सैकड़ों नहीं हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन हर हादसे के बाद जवाब लगभग एक जैसा होता है और ऐसा लगता है कि मानो पूरा तंत्र एक रिकॉर्डेड संदेश पर चल रहा हो कि फायर एनओसी नहीं था, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर किसी भी आग के बाद आप इनकी ये बात चला सकते हैं, वो अमर अजर है। दिल्ली के मालवीय नगर में आज जो दुर्घटना हुई उसे अगर हादसा कहा गया तो ये मरने वाले लोगों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। सच तो ये है कि इन सब लोगों को हमारी व्यवस्था ने मारा है और इस तरह मारा है कि इन दृश्यों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए,
1: मार रहे, पानी मार देगा ना।
2: रुको रुको,
0: मालवीय नगर के जिस गेस्ट हाउस में ये आग लगी उसका नाम था फ्लरिश स्टे। हम इसकी ऐसी पोल खोलेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर देखिए तो इस फ्लरिश स्टे में ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था और ऊपर एक गेस्ट हाउस बना हुआ था। अफसोस की बात यह है कि इसमें 50 से ज्यादा लोग ठहरे हुए थे, लेकिन इस गेस्ट हाउस के पास फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC नहीं था। और होता भी कैसे, इस गेस्ट हाउस में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था। सोचिए, नेशनल बिल्डिंग कोड और डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली फायर सर्विसेज के नियम कहते हैं कि अगर व्यावसायिक और बहुमंजिली इमारतों में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता हो तो उसे NOC नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में उस बिल्डिंग को सील किया जाता है और उस पर भारी जुर्माना लगता है। लेकिन सोचिए यहां क्या हो रहा था। यहां इस गेस्ट हाउस से सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर मालवीय नगर का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। 4 मिनट, 1 मिनट की दूरी पर पुलिस चौकी है, 3 मिनट की दूरी पर इलाके का सबसे बड़ा फायर स्टेशन है, 3 मिनट की दूरी पर इलाके का सबसे बड़ा फायर स्टेशन, फिर भी ये बिल्डिंग बिना NOC का, बिना फायर NOC के धड़ल्ले से चलता रहा। किसी ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया। दुख की बात तो यह है कि ऐसे मामलों में यह घनघोर लापरवाही हर बार की जाती है और हर बार वही रिकॉर्डेड संदेश चला दिया जाता है कि फायर NOC नहीं था, ताकि अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाए। और यह भी ऐसे बताया जाता है कि जैसे ये काम आम जनता को करना था, भाई जो लोग मरे हैं उनको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना था। साल 2024-25 में दिल्ली में कुल 7312 आग दुर्घटनाएं हुई, 98% से ज्यादा दुर्घटनाओं में फायर NOC नहीं था। इनमें भी जिन 693 दुकानों, वेयर हाउसेस, शोरूम्स, होटल्स में आग लगी उनमें 691 के पास फायर NOC था ही नहीं। जिन 450 फैक्ट्रियों और कारखानों में आग लगी उनमें 446 के पास फायर NOC नहीं था, और जिन 200 गोदामों में ऐसी घटनाएं हुई उनमें भी 199 के पास फायर NOC नहीं था। और सोचिए, जब हर 100 में से 98% दुर्घटनाओं में फायर NOC होता ही नहीं है, तो फिर हम क्यों नहीं इन दुर्घटनाओं को सरकार द्वारा निर्मित दुर्घटनाएं माने। अब एक बार फिर से दिल्ली के इस अग्निकांड की ये तस्वीरें देखिए, जिनमें इस गेस्ट हाउस में फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने अपने कमरों की खिड़कियां तोड़ी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल से नीचे कूद गए, और इनमें भी कई लोग तो ऐसे थे जो जिंदा जल रहे थे, और जलते हुए इन लोगों ने बिल्डिंग की खिड़कियों से छलांग लगाई। देखिए, इस मामले में फायर डिपार्टमेंट पर एक और आरोप यह लग रहा है कि उसने आग बुझाने के लिए बहुत ज्यादा तत्परता नहीं दिखाई। जो लोग इस गेस्ट हाउस के पड़ोस में रहते हैं उनका कहना है कि फायर स्टेशन को पहली कॉल 8:40 पर गई, लेकिन उसकी पहली गाड़ी मौके पर पहुंचती है 9:40 पर, यानी पूरा एक घंटे की देरी। और दावा है कि अगर ये देरी ना होती तो इस आग को बहुत पहले ही बुझा लिया गया होता। सुनिए।
3: Hello.
1: तो ये जो खिड़की है इसको तोड़ा गया है पूरी तरह से और इसके अंदर से लोगों को निकाला गया है। न सिर्फ निकाला बल गया है बल्कि लोग कूद भी रहे थे। एक आई विटनेस हमारे साथ मौजूद,
2: पाइप पकड़ के लटक रहता और हेल्प मांग रहे थे। हाँ। तो यहाँ पर जितने भी लोकल बंदे थे उन्होंने हेल्प किया, वो गद्दा बिछाया, उसको बोला जंप करो नीचे आप। हाँ। कितना जंप किया, किसी में सर में चोट लगा, किसी का हाथ टूट गया।
0: यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
1: खुलासा
0: कि इन आरोपों को फायर डिपार्टमेंट गलत बता रहा है। उसका कहना है कि उसके पास कुल 3 कॉल्स आई थी। इनमें पहली कॉल 8:50 की गई, दूसरी 8:55 पर और तीसरी 9:16 पर की गई। और क्योंकि ये गेस्ट हाउस एक घनी आबादी वाले इलाके में मौजूद है और वहां गलियां भी काफी सक्रिय हैं, इसलिए इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दिक्कतें आई और सुबह 11 बजे तक इस आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका। सोचिए कैसी आग रही होगी या कैसे लगी, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि यह आग बेसमेंट से फैली, जहां ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद रेस्टोरेंट का एक बड़ा किचन था। जबकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी और क्योंकि इस गेस्ट हाउस में लकड़ी का फर्नीचर ज्यादा था, इसलिए यह आग बहुत ज्यादा फैल गई। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें एक विदेशी नागरिक अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के छज्जे पर चढ़ा हुआ है। और यह तो सिर्फ एक तस्वीर है। जो लोग अपने कमरों से बाहर निकल पाए या जो घटना के वक्त सो रहे थे वहीं पर फंसे रह गए, मतलब उस समय की कल्पना करके भी जैसे इंसान कांप जाता है। इनमें जिन कमरों में बाहर की तरफ खिड़कियां लगी थी, उन कमरों में फंसे लोगों ने उन्हें तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, जबकि जिन कमरों में खिड़कियां नहीं थी वो लोग जिंदा जलकर और आग के धुएं में दम घुटने से मर गए। कुल 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिनमें 6 विदेशी नागरिक हैं, 9 भारतीय हैं, 6 लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अब इस पूरी घटना में सबसे गंभीर बात यह है कि यह गेस्ट हाउस पूरी तरह अवैध था। उसका पंजीकरण 2007 की बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत हुआ था, जो गोवा की तर्ज पर शुरू की गई थी। इसमें यह तय हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति के पास दिल्ली में एक घर है, एक कोठी है या फ्लैट है और उसमें कुछ अतिरिक्त कमरे हैं, तो लोग उन्हें पर्यटकों को किराए पर दे सकते हैं, वहां पर वो होम स्टे चला सकते हैं। अब स्कीम का सबसे पहला नियम क्या था? सबसे पहला नियम यही था कि जिस बिल्डिंग में इस तरह का होम स्टे खोला जाएगा वहां 12 बेड और 6 से ज्यादा कमरे नहीं हो सकते। मतलब ये घर की तरह होगा, 6 कमरे से ज्यादा नहीं होंगे, 12 ही बेड होंगे। लेकिन इस मामले में इस नियम की खूब धज्जियां उड़ी है। इस गेस्ट हाउस में 6 की जगह 25 कमरे थे, परमिशन कितने की थी, 6 की, सिर्फ 6 बेड कमरे की, लेकिन 25 कमरे चला रहा था यह आदमी। और इसका संचालन एक होटल की तरह हो रहा था, जबकि नियमों के तहत यह होटल बन ही नहीं सकता। इस गेस्ट हाउस ने कैसे हमारी सरकारों, हमारी सिस्टम की पोल खोली, उसका एक और नमूना मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि ये किस तरह से लोगों को मूर्ख बना रहा था। तो सबसे पहले हम आपको इस फ्लरिश स्टे के, वापस जाइए पिछले पेज पर, इसका ओपनिंग पेज दिखाते हैं। ये देखिए, कहीं भी आपको उस होटल का बाहर से तस्वीर दिख रही है, थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा, यहां पे आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये उसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर वो सामने फोटो किसकी डालता है, मैक्स अस्पताल की। ये मैक्स अस्पताल की फोटो यहां पर डालता है, ये आप देख रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल। ये अपनी बाहर से कोई भी तस्वीर फ्लरिश स्टे अपनी वेबसाइट पर डालता ही नहीं है। सोचिए लोगों की आंख में, एक बार फिर से आप प्रीवियस पेज पर आ जाइए, एक बार फिर से प्रीवियस पेज पर आइए, अपने दर्शकों को फिर से दिखाते हैं। ये जब आप वेबसाइट जैसे ही फ्लरिश स्टे का खोलेंगे, मतलब कोई भी विदेशी सैलानी आ रहा है, लिखते हैं मेडिकल टूरिज्म, कंफर्टेबल रूम्स एंड किचन फैसिलिटीज ऑल्सो, परफेक्ट स्टे फॉर मेडिकल टूरिज्म। यानी जो लोग विदेशों से यहां पर पहुंचते थे ना अपना इलाज कराने के लिए, ये उनके लिए बता रहा है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए अच्छी जगह है। और सामने तस्वीर किसकी डाल रहा है, मैक्स हॉस्पिटल की। ये अपनी बिल्डिंग की तो बाहर से तस्वीर डालता ही नहीं है अपनी वेबसाइट पर। हमने पूरी वेबसाइट को खंगाला है। कई अन्य जो वेबसाइट्स हैं जो आपको रूम स्टे के लिए, कई सारी जो एग्रीगेटर्स हैं जो रूम स्टे बताते हैं, वहां पर तो इसकी रात की एक फोटो है भी बाहर से, लेकिन अपनी वेबसाइट पर इसने बड़ी चालाकी से अपनी बिल्डिंग की तस्वीर ही नहीं लगाई। ये मैक्स हॉस्पिटल का, ताकि जो लोग यहां पर साकेत में इलाज कराने आते हैं मैक्स हॉस्पिटल में, उसको इसने फोटो में लगा दिया और यहां पर लिख दिया परफेक्ट स्टे फॉर मेडिकल टूरिज्म। यानी जो लोग यहां पर आते हैं वो, अब देखिए ये बाकी क्या तस्वीरें डालता है, रूम के अंदर की तस्वीर डालता है। ये रूम की अंदर की तस्वीर इस तरह से एक बेडरूम की डालता है, एक दूसरे बेडरूम की दिखाता है। इसमें ये दिखा रहा है कि एसी है इनके पास, और इस तरह से ये किचन की भी पूरी व्यवस्था यहां पर इस तस्वीर में दिखा रहा है। और सबसे ज्यादा ऑपोजिट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, इसका सारा का सारा वेबसाइट इसी बताने पर जोर देता है कि भाई हम मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने में है। अब आ जाइए इस हिस्से में जहां पर ये जानकारियां दे रहा है कि हमें क्यों आप चूज कीजिएगा, क्यों आप हमारे होटल में रहने आइए, जिसको वो अपनी तरफ से फ्लरिश स्टे सिर्फ कह रहा है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नहीं। मैक्स हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी, सबसे बड़ी चीज जो ये बताता है, मैक्स हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी। फिर आ जाइए, ये बताता है आरामदायक कमरे, फिर ये बताता है किफायती, मतलब कीमत कम है सस्ता पड़ेगा, आ जाइए। सेल्फ कुकिंग, खुद से आप खाना बना सकते हैं, यानी आपको किचन मिल रहा है, आपको कुकिंग स्टोव मिल रहा है, आपको सब कुछ की व्यवस्था मिल रही है। आसान कनेक्टिविटी जिसकी वो बात करता है, और अच्छी मेहमान नवाजी का भी वो यहां पर जिक्र करता है। लेकिन ये कहीं नहीं बताता है, मेरे साथ पढ़िए, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि इमरजेंसी गेट नहीं है। उसने ये कहीं नहीं बताया लोगों को जो उसके कमरे में आ रहे हैं रहने के लिए कि आपके पास एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट होगा, जो कि तमाम नियमों की अनदेखी है। फायर एग्जिट नॉर्म्स ये कहते हैं कि एक तरफ अगर लिफ्ट है तो आपको दूसरी तरफ सीढ़ियों से भी एग्जिट देना है, एक एंट्री है तो एक एग्जिट भी आपको देना है, लेकिन इतनी बड़ी चीज वो अपने लोगों से छिपा लेता है जो लोग आते हैं, और इस तरह से वो लोगों को ठगता है, ठगता है अपने वेबसाइट पर लाकर। मैक्स हॉस्पिटल की चमचमाती हुई तस्वीर लगाता है, मेडिकल टूरिज्म का बखान करता है, अस्पताल के बगल में ये दिखाता है, कमरे की अच्छी से तस्वीर लगा देता है, लेकिन अपनी बिल्डिंग नहीं दिखाता है। अब आइए आपको अब अगली जानकारी इस फ्लरिश स्टे के बारे में देते हैं। कमरों के अंदर कुकिंग बर्नर, ये जो फोटो है उसमें हमने जूम इन किया, और ये देखिए क्या स्थिति है। एक ही एग्जिट है और इसके बावजूद, मतलब एंट्री एग्जिट एक ही है, ये जब आप देखें तो कुकिंग बर्नर लगाने की इजाजत नहीं होने के बावजूद, जूम इन किया है हमने आपके लिए, कमरों के अंदर वो इस तरह से बर्नर लगाने की इजाजत लगा देता है। तो ये फ्लरिश स्टे की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किसकी वजह से आज ये सवालों के घेरे में है और किसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी है। तो हमने आपको उसका वेबसाइट दिखाया, चमचमाता हुआ वेबसाइट जिसमें वो मैक्स हॉस्पिटल का पूरा बखान कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच किसी को नहीं बता रहा कि हमारे पास एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है। अब अगर कोई होम स्टे इतनी मनमानी करता है, 6 कमरों की जगह 25 कमरों में होटल चलाने लगता है, ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रेस्टोरेंट भी खोल लेता है। ये देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं लेता है, अवैध तरीके से बेसमेंट में कमरे बना लेता है, तो इस मनमानी का हमारी सरकारों के पास क्या जवाब है। ये दो तस्वीरें हैं। बहुत ढूंढने के बाद कुछ अन्य वेबसाइट्स पर इस फ्लरिश स्टे की पिक्चर्स मिली है। ये जो स्नैक्स एंड बाइट आप देख रहे हैं ना, ये उसी रेस्टोरेंट का प्रचार है जो ये नीचे चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी आज की ये धधकती हुई तस्वीरें देखिए, जिसमें लोग जिंदा चले हैं। अगर इस देश में कानून है, कानून का पालन कराने के लिए पूरी व्यवस्था है, तो व्यवस्था हमें दिखाई क्यों नहीं देती? और सोचिए, ये तो होमस्टे की कहानी है। ऐसा ना जाने कितने होमस्टे और कितने गेस्ट हाउस होंगे जो इस तरह की मनमानी कर रहे होंगे। यहां आप ये भी देखिए कि ये गेस्ट हाउस लगभग सभी ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। इसके बारे में इन प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर की जानकारियां लिखी हैं। ये बताया गया है कि यहां क्या क्या सुविधाएं हैं, लेकिन इनमें कहीं ये नहीं लिखा कि इस गेस्ट हाउस में एंट्री एग्जिट के लिए एक रास्ता है। इसके पास फायर एनओसी नहीं है, ये असल में एक होटल भी नहीं है। ज्यादातर ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर 85% से ज्यादा होटल और होमस्टे ऐसे हैं जिनमें यह बताया ही नहीं जाता कि इमरजेंसी गेट है या नहीं, या वहां दुर्घटनाओं से निपटने को लेकर क्या इंतजाम है। हमारे देश में लोग भी ये चेक नहीं करते, जिसका ऐसे लोगों द्वारा फायदा उठाया जाता है। और सवाल है कि यहां तो विदेशी सैलानी भी आ रहे थे अपना इलाज कराने के लिए, उनकी आंखों में मैक्स हॉस्पिटल की चमचमाती हुई तस्वीर डालकर धूल झोंका गया।
3: बहुमंजिला इमारत है, इसमें भीषण आग लगी और किस तरीके से वहां पर लोगों ने भागने की कोशिश की। वहां पे पड़े हैं कुछ गद्दे भी जो ये बयां करते हैं कि लोग इतनी ऊंचाइयों से कूदकर भागने को तैयार थे अपनी जान बचाने के लिए। वो इस वक्त ये भी ना उन्होंने सोचा कि ये कितनी ऊंचाई है।
1: ये जो पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जब आग लगी तो उसके बाद पैनिक फैल गया, जिसमें लोग बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान बचाने लगे। तब नीचे गद्दा लोकल लोग हैं, उन्होंने बिछाया ताकि लोगों को चोट न लगे।
4: ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे एरिया में ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें नाइजीरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं या फिर दूसरे अन्य कंट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग यहां पर रुके हुए थे और उसके बाद उनकी बॉडीज जो है यहां से निकली है।
5: लोगों का हाल क्या था उस समय?
6: हाल मतलब अभी मैं आपको बता नहीं सकता, शुरू मतलब हम ही थे यहां, सब आग थी, हमने यहां रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्ची को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया, फिर बच्ची को कुदाया, सात लोगों को हमने ऊपर से कुदाया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से। उसके बाद आग हम जब कोशिश करने जाने की हम जा नहीं पाए।
7: मालवीय नगर की ये 5 मंजिला इमारत जलकर खाक हुई, लोग मारे गए, लेकिन इसके आसपास आग के कई ऐसे कारण दिखाई देते हैं जो फिर भविष्य में इस तरह की घटना दे सकते हैं। पूरा मालवीय नगर का ये जो इलाका है, तारों का एक जंजाल दिखाई देता है, पूरा तारों से घिरा हुआ, बिजली के तार हैं, केबल्स हैं, और वो इस कदर भी हैं कि इमारतों के पास तो ऐसी स्थिति है कि अगर कोई कबूतर मुंह से तार का एक छोटा टुकड़ा लेकर के आके वहां गिरा दे तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए।
0: पिछले हफ्ते ही दिल्ली की बीजेपी सरकार बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम का एक नया ड्राफ्ट लेकर आई थी, जिसमें यह प्रस्ताव था कि अब इस तरह के होमस्टे और गेस्ट हाउस में 6 की जगह 8 कमरे और 12 की जगह 16 बेड बनाए जा सकेंगे। और सोचिए, यह प्रस्ताव अभी लागू भी नहीं हुआ है। अगर लागू हो भी गया तब भी इन होमस्टे और गेस्ट हाउस में 6 कमरों की जगह 8 कमरे हो सकते हैं, जबकि मालवीय नगर के गेस्ट हाउस पहले से ही 25 कमरों में अवैध तरीके से चल रहा था और ना सरकार इसे रोक पाई, ना गेस्ट हाउस ने नियमों का पालन करना जरूरी समझा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग में जो बेसमेंट बनाया गया था उसमें बाहर निकलने के लिए एक अलग से रास्ता था, और अगर उस गेट पर ताला ना होता तो वहां से नीचे फंसे लोग कम से कम बाहर निकल सकते थे। कुछ लोगों की तो जान बचती, कम से कम 6 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन यहां भी इस गेट पर एक ताला होने के कारण कई लोगों का अंदर ही दम घुट गया। और जिस तरह बाद में उनके शव बाहर निकाले गए, वो तस्वीरें तो खैर हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यकीन नहीं होगा आपको कि दिल्ली में हर दिन औसतन 20 आग हादसे होते हैं। इनमें 92% मामलों में कोई ना कोई लापरवाही होती है, लेकिन हमारी सरकारें हर बार ये कहकर निकल जाती हैं कि जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। याद कीजिए मई 2024 में इसी दिल्ली में क्या हुआ। उस वक्त पूर्वी दिल्ली के एक अवैध नर्सिंग होम में आग लग गई, 7 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। उस मामले में भी यही पता चला था कि इस अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं था, उसके पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था। अरे भाई, ये सुन सुनकर हम लोग क्या करें? फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान आग बुझाने के लिए एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था और अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई रास्ता नहीं, यानी लगभग वैसी ही स्थिति थी जैसी कि आज की घटना में। उस वक्त भी यही कहा गया था कि मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके अलावा दिल्ली में कुछ नहीं बदला। यही कारण है कि आज हम आपको उन सभी नेताओं अधिकारियों के नाम गिनाना चाहते हैं जो अगर अपना काम ईमानदारी से करते तो शायद इस दुर्घटना में इतने लोगों को जिंदा जलकर मरना नहीं पड़ता। सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद की है, जिनके अधीन दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट आता है। अगर फायर डिपार्टमेंट अपना काम ईमानदारी से करता तो शायद ये गेस्ट हाउस कब का बंद हो जाता। इसके बाद दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष डी वैद का नाम आता है, जिनके पास फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग होती है। कपिल मिश्रा दिल्ली के पर्यटन मंत्री हैं और ऐसे तमाम ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट को लाइसेंस पर्यटन मंत्रालय से ही मिलता है। फिर दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर ए निंदू चिज्यान भी इस घटना के लिए पूरी तरह जवाबदेह हैं। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा घटना के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि स्कीम जो है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की, वो उन्हीं के पर्यटन विभाग से मिलता है। अगर इस पूरे विभाग में आप देखें तो कपिल मिश्रा का विभाग अपने पोर्टल पर रजिस्टर्ड इन गेस्ट हाउसेस का ऑडिट करता, उनकी जांच करता, तो 25 कमरे मिलने पर यह गेस्ट हाउस बहुत पहले ही बंद हो गया होता, यह घटना नहीं होती। दिल्ली में सिर्फ 432 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो स्कीम में रजिस्टर्ड है। इनका ऑडिट करना पर्यटन विभाग के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद स्थानीय प्रशासन एमसीडी के जे आशीष रॉय इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें अपने इलाके में चल रही अवैध गतिविधियों की निगरानी करनी थी, इसे रोकना था, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। और आखिर में दक्षिणी दिल्ली में एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर राकेश कुमार भी इस घटना के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, जिन्होंने अपना काम नहीं किया। बड़ी बात यह है कि राकेश कुमार वही अधिकारी हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने साकेत के उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, जहां एक जर्जर इमारत गिरने से कई लोग मारे गए थे। हमारे देश में अगर होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस का किराया प्रतिदिन 3,000 रुपए तक हो तो उस पर सरकारों को 5% का जीएसटी मिलता है। फिर जब ये होम स्टे अपना रजिस्ट्रेशन सरकार की स्कीम में कराते हैं तब भी इनका शुल्क इनको एक शुल्क देना होता है। बाकी सुविधाओं और सेवाओं पर भी ग्राहकों से टैक्स लिया जाता है, सरकारों के पास ये टैक्स जाता है। इसीलिए सरकारों की जिम्मेदारी उनको समझनी चाहिए, ऐसे हाथ से रोकनी चाहिए।
5: ओवरलोड के कारण आ गया क्या है?
8: सर पुराना केस में जो
5: मीडिया में कितनी साफ रखी और जिनके अंदर जरा सी भी वॉयलेशन है, हमारा सरकार दिल्ली सरकार का पानी बिजली का कनेक्शन तो तुरंत कटवाई है। इस बिल्डिंग को एनओसी की जरूरत थी, एनओसी दी हुई है इस पे।
0: रोमन इतिहासकार टैसिटस ने एक बार कहा था कि जितना भ्रष्ट समाज होगा वहां उतने ही अधिक कानून होंगे, और ये बात आज हमारे देश के लोगों को बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। ये बात सही है कि हमारी सरकारें नियम कानूनों का पालन कराने में नाकाम रहती हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे देश में जिन अमीरों को मौका मिलता है वो आम लोगों का खून चूसने, नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ते। आप जुलाई 24 की उस घटना को याद कीजिए जब दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। मौत का कारण यह था कि जिस कोचिंग संस्थान में ये पढ़ते थे वो इन्हें नियमों का उल्लंघन करके बेसमेंट में ठूस देता था, और जब एक दिन इस बेसमेंट में पानी भरा उस पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इस तरह के कोचिंग संस्थानों की असली हनक सामने आई और एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कैसे, यहां पर बात सिर्फ कोचिंग संस्थानों की नहीं है, होटल मालिकों को मौका मिलता है नियम तोड़ते हैं, मकान मालिकों को मौका मिलता है वो नियमों की धज्जियां उड़ाकर माचिस जैसे डिब्बों में कई छात्रों को ठूस ठूस कर रखते हैं, उनसे महंगा किराया वसूला जाता है। अनेकों ऐसे छात्र आपको इसी मालवीय नगर के इलाके में मिलेंगे जो इन तंग गलियों में बिजली के तार जो बड़े बड़े खंभों से लटक रहे हैं उनके बीच में बनी हुई इन इमारतों में रहने को मजबूर हैं। गेमिंग जोन वालों को मौका मिलता है तो वो भी कानून को ठेंगा दिखाकर राजकोट के अग्निकांड की तरह कई बच्चों की जान ले लेते हैं। ठेकेदारों को मौका मिलता है तो वो अपनी मनमानी करते हैं, नियमों का कोई सम्मान नहीं करता, सिलसिला रुकता नहीं है। और जो इलाके का जेई होता है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जब ये अवैध इमारतें बन रही होती हैं, जब नियम तोड़े जा रहे होते हैं, जब कोई नया वहां पर निर्माण किया जाता है, आखिर 6 से 25 कमरे कैसे बने, किसी को दिखाई नहीं। जिसके पास हनक है, जिसकी ऊपर तक पहुंच है, जो नेता बड़े अफसरों को जानता है, पैसे वाला है, जिसकी सिस्टम में सेटिंग है, वो अपने अपने तरीके से कानून को तोड़ता रहता है। आप पुणे के उस सड़क हादसे को याद कीजिए जहां एक रईस बाप के 17 साल के लड़के ने नशे की हालत में अपनी पोशे कार से दो बाइक सवार लोगों को मार दिया था। उसके बाद उसके पिता ने उसे बचाने के लिए ब्लड सैंपल्स है उसको बदलवाने की साजिश रची थी ताकि शराब पीने के सबूत मिटाए जा सके। अनेकों ऐसे मामले हैं। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी देश तभी अनुशासित बनता है जब वहां की सरकार जिम्मेदार बने, समाज में हनक दिखाने वाले लोग भी जिम्मेदार बने और कानून को अपनी बपौती कोई ना समझ पाए। दिल्ली के इस अग्निकांड में भी जो लोग इस गेस्ट हाउस के मालिक थे वो भी तो सब जानते हुए नियम तोड़ रहे थे। आज देखिए ये आरोपी फरार है, शायद आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी इस शख्स की हो जाएगी। लेकिन एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस घटना में जिंदा जलकर मरे हैं और ये मौत सबसे बुरी मौत होती है। इसमें इंसान को दो बार जलकर मरना पड़ता है और जो वेदनाएं इससे फूटती है ना, उन्हें शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें गुरुग्राम के उस परिवार की हैं जिसने इस अग्निकांड में अपने 8 लोगों को खो दिया है। 80 साल के राधेश्याम अग्रवाल फेफड़ों की बीमारी के लिए साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और उनके इलाज के कारण परिवार के बाकी लोग भी गुरुग्राम से दिल्ली के साकेत आ गए थे और उन्होंने यहां यह सोचा था कि जब तक उनका इलाज नहीं हो जाता वो इस गेस्ट हाउस में रहेंगे। लेकिन आज ये घटना हुई, इसमें अस्पताल में भर्ती राधेश्याम अग्रवाल के बेटे विवेक अग्रवाल, दो छोटी पोतियां, पत्नी, सब 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। और सोचिए इस परिवार ने तो सपना सब कुछ खो दिया। जानते हैं अस्पताल में भर्ती राधेश्याम अग्रवाल को खबर तक नहीं है कि इस अग्निकांड ने उनके पूरे परिवार को निगल लिया और इसलिए ऐसी घटनाएं सिर्फ हादसों तक सीमित नहीं होती। इनका दर्द समझना है तो इनमें मरने वाले लोगों के घर जाकर देखिए जहां उदासी है, दुख है, सन्नाटा पसरा है।
8: दिल्ली के मालवीय नगर के उस होटल के अग्निकांड में जिन 21 लोगों की मौत हुई है उनमें 5 से 6 लोग गुरुग्राम के बताए जा रहे हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 46 के विवेक अग्रवाल जी के मकान के बिल्कुल सामने हूं जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है। परिजनों को नहीं पता कि विवेक अग्रवाल उनका परिवार कहां है, लेकिन जानकारी के मुताबिक विवेक अग्रवाल के पिता मैक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में एडमिट थे। विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, अपनी माँ और दोनों बच्चों के साथ उस होटल में रुके थे जहां पे ये अग्निकांड हुआ जिसमें 21 लोगों की मौत सामने आई थी। हालांकि परिजन ये बताने में लगे हैं कि 4 लोगों के शव उन्हें दिखाए गए हैं मैक्स हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी के 2 से 3 लोग परिजन कहां हैं उसका उन्हें पता नहीं लग पा रहा, जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है।
9: परिवार में से आप तो एक लड़का, मदर, बिटिया, वाइफ तो भी ढूंढ ही रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी, उनका पता ही नहीं चल रहा वाइफ और छोटी बेटी का कहाँ है।
10: ये तो बहुत ही दुखद समाचार, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह की चीज।
11: भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूँगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तक ये नहीं है कि वो भाई इसने कि उनके साथ हादसा हुआ है, कोई गलती नहीं।
0: आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में आग हादसों के कारण हर साल 16 लोगों की मौत होती है। 2024 में 5,888, 2023 में 6,891, 22 में 7,435 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर मामलों में नियमों का उल्लंघन ही वजह था। दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा आग की हादसे यहीं पर होते हैं। देश में कमर्शियल बिल्डिंग से जुड़े हर एक आग हादसे पर औसतन 0.9 मौतें होती हैं, जबकि दिल्ली में हर एक आग हादसे 1.33 मौतें होती हैं। दिल्ली में आग हादसे इतने खतरनाक क्यों बनते हैं? 60% घटनाओं में घटिया, पुराने सब स्टैंडर्ड वायरिंग बड़ा कारण, शॉर्ट सर्किट इनकी वजह से होता है। दूसरा बड़ा कारण बिजली के सिस्टम पर ज्यादा लोड पड़ना। तीसरा है गैस सिलेंडर्स का खराब इस्तेमाल और इनमें सबसे अहम है सब स्टैंडर्ड वायरिंग। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कैसे, अगर आप देखिए, तारे लटकी होती, भारी भारी तार आप दिख रहा होगा आपको बिल्कुल जैसे टेरेस के बगल से गुजर रही हैं। ये तारे ऐसे ही लटकी रहती हैं और यही आग हादसों का सबसे बड़ा कारण बनती है। अगर यहां शॉर्ट सर्किट हो जाए, देखिए इस घर में आग फैलना कितना आसान है। कोई सरकार अब तक इसका समाधान ढूंढ ही नहीं पाई है, कितने लोगों की जिंदगियां खतरे में है। और यहां ये याद रखिएगा कि दिल्ली देश की राजधानी है, लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं और वो भी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, तो इससे हमारे देश की छवि को धक्का लगता है। इस अग्निकांड के बाद होटल फ्लरिश स्टेज के मालिक लवकेश बजाज को खोजा जा रहा है। लवकेश बजाज यही शख्स वो मुजरिम है जो अब भागता फिर रहा है। ऐसे अनेकों अग्निकांड इस देश में हुए हैं और आपने देखा होगा कि उसके बाद से मालिक भाग जाता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। जमीन है पश्चिम बंगाल की इस बार। जिस बंगाल में 4 मई तक ममता बनर्जी का एक छत्र राज था, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, बंगाल की जमीन पर किसी की हिम्मत नहीं थी जो ममता बनर्जी को चुनौती दे सके, लेकिन 4 मई को सत्ता की जमीन ममता बनर्जी के पैरों तले ऐसी खिसकी कि अब पार्टी भी हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी है। महाराष्ट्र का शिंदे कांड अब बंगाल की धरती पर दोहराया जा चुका है। टीएमसी के 60 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। सोमवार को पार्टी से निकाले गए ऋतव्रत बनर्जी को बागी गुट ने अपना नया विधायक दल का नेता चुन लिया। और सबसे बड़ी खबर यह है कि विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस ने इस बागी गुट को मान्यता दे दी है, चाबी सौंप दी है। ये सबसे बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। और अगर इस पूरी खबर को समझे तो आज बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी को आज ये तय करना है, उन्हें एक हिस्सा चुनना है। एक तरफ है उनके 60 विधायक जो ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी का भतीजा हमें स्वीकार नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी नेता है, वो हमारा मार्गदर्शन करें। और दूसरी तरफ है अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे, आज ममता बनर्जी को चुनना है। पार्टी बचाना चाहती है तो विधायकों की तरफ जाना होगा, और भतीजे के साथ रहना चाहती है तो उनके पास भतीजा बचेगा। बागी गुट ने ममता बनर्जी को चुनौती देने के साथ उन्हें अपना नेता बताया, गेंद उन्हीं के पाले में डाल दिया। सवाल बड़ा है, दीदी भतीजा चुनेंगी या पार्टी बचाएंगी? ये बगावत अचानक नहीं हुई, कटमनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली, आईपैक को लेकर विधायकों की नाराजगी, आईपैक की दखलअंदाजी पर दीदी का भतीजा प्रेम ने टीएमसी में असंतोष पैदा किया जो सत्ता जाते ही ज्वालामुखी बनकर फूट गया। इस बगावत को एक मौके की तलाश थी, वो तब मिल गया जब अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को एक पत्र भेजा गया था जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान था। यहीं पर दाव उल्टा पड़ गया। टीएमसी के दो कद्दावर चेहरे ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि इस लेटर पर उनके हस्ताक्षर फर्जी यानी जाली है। जैसे ही यह शिकायत स्पीकर तक पहुंची, ममता बनर्जी ने बिना वक्त गवाए इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल बाहर किया। लेकिन ममता बनर्जी भी चूक कर बैठी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिन दो विधायकों को वो बाहर कर रही हैं उनके पास 60 विधायकों की ताकत है, जबकि ममता ने उन्हें बेहद हल्के में लिया था। निष्कासन के ठीक 48 घंटे के अंदर बुधवार को ऋतव्रत बनर्जी ने वो कर दिखाया जो तृणमूल कांग्रेस के 28 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और ममता बनर्जी की आंखों के सामने ही उनके हाथ से पार्टी फिसल रही है। अब उन्हें तय करना है कि वो बागियों की बात मानते हुए उनकी सलाहकार मार्गदर्शक बनती हैं, यानी मार्गदर्शक मंडल का रास्ता चुनती हैं, या फिर भतीजे के साथ पार्टी बचाने की लड़ाई शुरू करती हैं या नई पार्टी बनाती हैं। क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी उनकी मार्गदर्शक बने। आज ममता बनर्जी को अपना वो बयान जरूर याद आ रहा होगा जब उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें आडवाणी जी के लिए बुरा लग रहा है, ये अपमानजनक है कि आप सीनियर का सम्मान नहीं कर रहे, हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना है। और आज ममता की पार्टी के नेता उन्हीं को पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहते।
12: A lot of MLAs are listening to me. I am a backbencher. I am a backbencher, literally in every sense of the term. If so many MLAs are listening to me, then I am very, very powerful. But this has nothing to do with reality. It's devoid of reality. So I won't answer this question. I know that majority of the Trinamool Congress MLAs will be attending the administrative meetings held by ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शुभेंदु अधिकारी।
0: ममता बैनर्जी ने बागियों की क्षमता को हल्के में आंका। दरअसल रुद्रत बैनर्जी सिर्फ हवा में दावे नहीं कर रहे थे। आज जब वो विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस के चेंबर में दाखिल हुए तो उनके हाथ में 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक समर्थन पत्र था। दो और विधायक जो इस वक्त राज्य के बाहर हैं, उन्होंने भी फोन पर अपनी सहमति दे दी। यानी 80 विधायकों वाली टीएमसी के कुल 60 विधायक अब ममता और अभिषेक के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। इस बगावत ने ममता बनर्जी को कानूनी रूप से बेबस बना दिया है। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक किसी भी पार्टी को कानूनी रूप से तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों का साथ होना जरूरी है। बागी गुट के पास जादुई आंकड़े 54 से 6 विधायक ज्यादा है, इसलिए स्पीकर रथीन्द्र बोस ने बिना किसी देरी के रुद्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। इतना ही नहीं, रुद्रत को बाकायदा नेता प्रतिपक्ष के कमरे की चाबियां भी सौंप दी गई हैं। यानी सदन के भीतर अब ममता बनर्जी की टीएमसी नहीं बल्कि रुद्रत का यह बागी गुट असली बॉस बन चुका है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि विधानसभा स्पीकर का विशेषाधिकार सिर्फ विधानसभा तक सीमित है, यानी वो नियमों के तहत यहां नेता प्रतिपक्ष और सदस्यता को लेकर फैसला ले सकते हैं। चूंकि अभी बागी विधायकों के पास नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी संख्या बल है, इसलिए उन्हें ये पद मिल गया, साथ ही 2/3 संख्या। 2/3 संख्या होने की वजह से उनकी सदस्यता फिलहाल संकट में नहीं है, लेकिन इससे यह तय नहीं हो जाता कि तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर भी उन्हीं का अधिकार होगा, पार्टी किसकी रहेगी यह तय नियमों के आधार पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। यह तो तय है कि बागी अलग रास्ता पकड़ चुके हैं, पार्टी पर भी दावा कर चुके हैं, और दूसरी तरफ ममता भी बागियों को गद्दार कह चुके हैं। यानी पार्टी सिंबल को लेकर एक खींचतान मचना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बताते हैं कि तृणमूल पर किसका कब्जा हो सकता है। पार्टी सिंबल पर कब्जे का फैसला चुनाव आयोग करता है। 80 में से 60 विधायक होने पर भी बागी पार्टी सीधे नहीं कब्जा सकते। फिलहाल की स्थिति में ममता बनर्जी ही टीएमसी की अध्यक्ष बनी रहेंगी, पार्टी में फेरबदल कर सकेंगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी कमिटीज और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए ये साबित भी कर दिया है। सवाल यह है कि बागी पार्टी पर कब्जा करना चाहें तो क्या होगा। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग से मांग करनी होगी, जिसके लिए कई पैमाने हैं। जिस तरह बागियों के पास ज्यादा विधायक हैं, उसी तरह ज्यादा सांसद भी उनके साथ आने चाहिए, साथ ही संगठन में भी ज्यादा समर्थन होना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों की तरफ फैसला ले सकता है। वो ये जानने की कोशिश कर सकता है कि किसके पास विधायक, सांसद और संगठन में किसके पास ज्यादा समर्थन है। ममता के हाथ से पार्टी तभी जाएगी जब विधायकों के साथ सांसद और संगठन के लोग बगावत करते हैं, और ये लंबी प्रक्रिया है क्योंकि अक्सर ऐसे मामले चुनाव आयोग के साथ साथ कोर्ट में पहुंच जाते हैं। फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता जरूर रुद्रत बनर्जी को मिल गई है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अभी भी ममता बनर्जी है। सिंबल पर विवाद की स्थिति में फैसला चुनाव आयोग या कोर्ट ही कर सकता है। इस बगावत की सबसे दिलचस्प और रणनीतिक बात यह है कि बागियों ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला नहीं किया है। रुद्रत बनर्जी ने क्या दाव खेला? उनके अलावा उपनेता बने जावेद खान, संदीपन साहा, सियुली साहा, चीफ विप बने अखरुजमान, इन सब ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि ममता बनर्जी ही उनकी सर्वोच्च नेता है। यानी लड़ाई नीति की नहीं, लड़ाई विरासत की है। यानी इन लोगों ने टीएमसी पर दावा कर दिया, ममता को अपना नेता बना दिया। टीएमसी के कोर वोटर ममता के कट्टर समर्थकों को भी नाराज नहीं किया। यानी ये बगावत सीधे तौर पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लामबंदी है। बागी विधायकों का साफ कहना है कि पार्टी को कुछ इनसाइडर नेताओं ने मजाक बना दिया था, वो टीएमसी को बचाने के लिए आ गया है। इधर ममता बनर्जी ने अपने धड़े के नेताओं और विधायकों के साथ एक लंबी बैठक की। इस बैठक के बाद दिग्गज नेता मदन मित्रा ने बागी गुट पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग के बाद बाहर निकले मदन मित्रा ने रुद्रत बनर्जी और उनके साथ गए विधायकों को कचरा कहा, कचरा बताया, और कहा कि जो लोग पार्टी से निकाले जा चुके हैं वो असली टीएमसी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि रुद्रत बनर्जी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर रहे बल्कि वो पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बागी नेताओं में इतना दम नहीं है कि ये खुलकर बीजेपी में शामिल हो सके, इसलिए ये टीएमसी के नाम का इस्तेमाल करके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उन्होंने इस लड़ाई को सड़क से लेकर अदालत तक राजनीतिक कानूनी दोनों तरीके से लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने रुद्रदत्त बैनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलने पर तीखे सवाल उठाए। मदन मित्रा ने सीधे सीधे स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए इस पर पूरे घटनाक्रम को गैर कानूनी बताया।
13: हाउ कैन एक्सपेल रीडर an independent leader, the moment he is expelled, somebody is expelled from a party, he is independent. So how can an independent leader, he becomes a leader of the opposition of a political party, ignoring the highest office? So the entire process is illegal and absolutely it is a game of trade, horse trading, is a game of BJP.
14: Well, the Brithobrat is being funded by the BJP, you are saying?
13: Absolutely. It is a BJP concern game. But okay, law is still there. Let us see. But we will go up to last.
14: So you will fight this legally?
13: Positively.
0: अब बात करेंगे ईरान की, जहां एक बार फिर से युद्ध की आग धधक उठी है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अटैक किया, जिसके जवाब में अमेरिका ने केशम द्वीप पर बमबारी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि शांति लंबे समय तक शायद कायम रहेगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी ऐसा लग रहा है। इन हमलों के बीच एक और बड़ी खबर आई है। इस साल 28 फरवरी के बाद से एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही थी कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का क्या हुआ, उनके अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। अब इन सवालों का ठोस जवाब मिलने लगा है। ईरान के सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा 16 जून से 26 जून के बीच किसी एक दिन निकाली जाएगी। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक इसी महीने मुहर्रम के दौरान अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। IRNA की खबर के मुताबिक अली खामनेई के जनाजे के लिए ईरान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग जितने शहर हैं तमाम शहरों में शोक सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। अनुमान है कि उनके जनाजे में करीब 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। खबर के मुताबिक अली खामनेई का जनाजा तेहरान के अलावा देश के 2 प्रमुख धार्मिक शहर कोम और मशहद में भी गुजरेगी। योजना के मुताबिक मशहद में अली खामनेई के शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा, क्योंकि ये शहर उनका घर था। दुनिया के ज्यादातर धार्मिक परंपराओं में व्यक्ति की मृत्यु के कुछ ही दिनों के अंदर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन अली खामनेई के मामले में करीब 3 महीने बाद जनाजा उठेगा। अली खामनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों में हुई थी और उसी के बाद से ईरान के वरिष्ठ नेता और सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके शव को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा की तैयारियों के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता को फिलहाल रोक दिया है और अटैक शुरू कर दिए हैं। ईरान की फार्स और तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान की तरफ से शांति वार्ता के मीडिएटर्स से बातचीत बंद कर दी गई है और बातचीत बंद करने की वजह इसराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमले हैं। युद्ध विराम के पहले शर्त यह रखी गई कि इसराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा, लेकिन हमने आपको बीते दिन बताया लेबनान पर हमले करने के लिए ट्रंप कह रहे हैं नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच बकझक हो गई, लेकिन हिजबुल्ला की ओर से किए गए हालिया हमलों के बाद इसराइल ने फिर से लेबनान में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिए और दक्षिण लेबनान और बेरूत पर जबरदस्त बमबारी की है। इसी सैन्य ऑपरेशन को आधार बनाते हुए ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ उसने बातचीत को बंद कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन दावों को झूठा बताया गया है। उनके मुताबिक ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है और अब समय आ गया है कि किसी ना किसी तरह के एक समझौता किया जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर और ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए, उसे देखते हुए दोनों देशों में शांति बहाली की उम्मीद कम होती जा रही है। कल अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी के दौरान ईरान की ओर जा रहे एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल फायर किए थे। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी को पार करके एक शिप खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था। कई चेतावनी दी गई, कई चेतावनियों के बाद भी जब जहाज को नहीं मोड़ा गया, तब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शिप के इंजन पर हेल फायर मिसाइल्स दाग दी, जिसके बाद जहाज को काफी नुकसान हुआ। 13 अप्रैल के बाद से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाई हुई है और वहां जाने वाले 100 से ज्यादा जहाजों को वापस भेजा गया है। जहाज को रोकने से ईरान भड़क गया, जिसके जवाब में उसने कुवैत, बहरीन पर मिसाइल, ड्रोन अटैक किए। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि IRGC ने कुवैत एयरपोर्ट के अलावा बहरीन में मौजूद US नेवी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। IRGC का दावा है कि इस हमले में काफी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सभी हमले को समय रहते हुए इंटरसेप्ट किया गया, नाकाम कर दिया गया। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। ईरान ने 2 मिसाइलें कुवैत पर, 3 मिसाइलें बहरीन पर दागी, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और कुछ तूफान आपको मिटाने नहीं बल्कि आपकी ताकत याद दिलाने आते हैं। नमस्कार। आपको मिटाने नहीं बल्कि आपकी ताकत याद दिलाने आते हैं। नमस्कार।

0: दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है। और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है।
1: दिल्ली का अग्निकांड, कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल।
2: अल्लाह कैसे मर रहे हैं,
3: आग बहुत भयंकर थी।
4: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे।
1: 21 लोग जिंदा जल गए, होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें।
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग, मच गई चीख पुकार।
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग, फैलता धुआं, मरते लोग। मंजिला होटल में भयंकर आग, 21 मौतों का गुनहगार कौन। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्टे नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय

0: से हिरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर एक, ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है, और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर दो, और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संतरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई, और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
1: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी। उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी, और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए, तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
2: चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद गए, जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
3: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए, सारे डाले ऊपर से बच्चों को, नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया, फिर बच्चों को कुदाया, 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
0: वीडियो नंबर 3, और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
4: कैसे मर रहे हैं।
0: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
3: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी 7 मैंने निकाली है नीचे से,
5: 7
3: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं ना नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
6: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या, तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर से, फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई, और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
0: वीडियो नंबर 4, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
7: देखिए बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे, और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे, और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे स्टे के लिए, और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज़ कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन

0: नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: वीडियो नंबर 5। वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिस कर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।
2: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी, क्या देखा, कैसे पूरा हादसा हुआ?
3: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं। देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
2: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, क्योंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
3: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस 4th फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
2: दिखाइए 4th फ्लोर
3: से लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है, जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
4: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
1: हादसे की वजह नंबर 1, फ्लोरिस्ट डे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर 2, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरखधंधे की पूरी भनक थी, लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर 3, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। MCD की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे, लेकिन MCD के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर 4, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है, लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी NOC और MCD से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था, लेकिन MCD ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था, लेकिन जय मिश्रा ने B&B के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया, और तो और लाइसेंस धारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी। मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, MCD और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
2: आराम, आराम,
5: मेरा घर है।
2: हाँ, आराम, घर है। ये पुलिस है, अब देखिए चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी है। यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिली भगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिली भगत तो नहीं हो सकती एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिली भगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है अवैध तरीके से। होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
1: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी, लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके, 21 मौतों के एक एक गुनहगार की बोल खोलते रहे।
2: तस्वीर दिखाई जाती है, एक एक दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
6: घर है इनका, पर्सनल घर है इनका,
2: पर्सनल घर है, तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर। और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
1: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
2: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने की इसके लिए रोका। लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया, क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक हैं और कई ऐसे घायल हैं जो विदेशी हैं।
1: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, न ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और न ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
4: दिल्ली अग्निकांड के गुनहगारों का हिसाब होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि शुरुआती जांच में अग्निकांड को लेकर बिल्डिंग का मालिक एमसीडी और दिल्ली पुलिस कटघरे में है। क्या हादसे से सबक लेते हुए जिम्मेदारों पर बड़ा और कड़ा एक्शन होगा?
1: जिम्मेदार नंबर एक, बिल्डिंग का मालिक लवकेश बजाज। जिम्मेदार नंबर दो, बीएनबी का लाइसेंसधारी जय मिश्रा। जिम्मेदार नंबर तीन, एमसीडी साउथ जोन के डीसी राकेश कुमार। जिम्मेदार नंबर चार, मालवीय नगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार। जिम्मेदार नंबर पांच, एमसीडी के जेई आशीष रॉय। जिम्मेदार नंबर छह, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजय सिन्हा। जिम्मेदार नंबर सात, मालवीय नगर की लोकल पुलिस। इसी इमारत की बेसमेंट से उठी चिंगारी आग के शोले में ऐसी बदली कि 21 लोगों की मौत हो गई। मारे गए ज्यादातर लोगों में विदेशी नागरिक हैं जो इलाज कराने के लिए भारत आए थे। अग्निकांड की शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट से आग भड़की, उसी आग से पूरी इमारत खाक हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से अवैध था और एमसीडी की मिली भगत से चल रहा था। रेस्टोरेंट के लिए न तो एमसीडी से कोई अनुमति दी गई थी और न ही फायर डिपार्टमेंट से। अग्निकांड के लिए एमसीडी सीधे तौर पर क्यों जिम्मेदार है समझिए। दरअसल किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एमसीडी की तरफ से हेल्थ लाइसेंस की जरूरत होती है। उसका जोनल हेड डीएचओ होता है। इस वक्त डीएचओ डॉक्टर संजय हैं। संजय की जिम्मेदारी थी कि किसी भी बेसमेंट में रेस्टोरेंट किचन ना हो, लेकिन उनकी नाक के नीचे रेस्टोरेंट चलता रहा और वो आंखें मूंदे बैठे रहे। संजय की तरह एमसीडी के दूसरे अफसरों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही प्रशासनिक अफसर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
5: बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे, इन पे एक्शन लिया जाए। अभी एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने उनका दे, ताकि उनकी चेकिंग रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे किस तरह के रूटीन कार्रवाई अपने करते रहेंगे।
1: हादसे के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी। बड़े और कड़े एक्शन के दावे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा पाएगा?
6: अभी अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पे जरूर कार्रवाई होगी। जो भी उस पे कार्रवाई होगी, सभी पर कार्रवाई
7: लग रहा है। कब तक जांच पूरी हो जाएगी? कब तक एक्शन लिया जाएगा?
6: विद इन वीक।
8: देखिए, ये तो सीधे तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था?
6: बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जब भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी पुरानी बिल्डिंग है और कब से यहाँ पर होटल चल रहा था। ये जांच के बाद ही पता चल पाएंगी सारी चीजें।
8: अच्छा, ये बताएं कि एंट्री एग्जिट को लेकर के फायर एनओसी भी नहीं है?
6: नहीं, अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना फायर एनओसी अच्छा, है या नहीं है।
8: कि अब आगे इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्या एमसीडी इंश्योर करती है कि तमाम होटल को अब कोई
6: अपनी जिम्मेदारी? बिल्कुल इंश्योर करती है, एमसीडी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से करेगी।
1: जांच और सिर्फ जांच, अब जिम्मेदारों की जुबान पर यही शब्द है। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई गंभीर सवालों का आईना है। क्या 21 मौतों के असल जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होगा? क्या सिर्फ होटल मालिक पर कार्रवाई काफी है? बड़े हादसे के बाद कार्रवाई का वादा क्यों? पहले रोकथाम क्यों नहीं?
9: क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है? क्या एमएलसी चुनाव में महायुति में कथित तनाव की वजह से शिंदे और उद्धव एक साथ आने के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता हाईवे पर गले मिल रहे हैं, उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव और शिंदे के दिल भी मिल जाएंगे?

0: या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव के दिल मिलेंगे? क्या शिवसेना के बागी बढ़ाएंगे शिंदे की मुश्किल? एमएलसी चुनाव, महायुति में बढ़ा तनाव। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर के पास समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के बागी नेता अब्दुल सत्तार के बीच ये मुलाकात का वीडियो वायरल है। जिस तरह दोनों गुट के नेता सार्वजनिक तौर पर गले मिलते दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं। अब ये महज सियासी संयोग है या प्रयोग कि दोनों नेता खुलेआम दोनों गुटों के एक होने की वकालत कर रहे हैं? अंबादास दानवे चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी शिंदे गुट को खत्म करने की तैयारी में है।
1: देखो, आता शिंदेचा गट संपायला तर भारतीय जनता पार्टी ते काम करते, जी बाळासाहेबांच्या विचाराने उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हिला कोणी संपू शकत नाही वाटतं, बऱ्याच वेळेस वाटतं, पण ते मला एकट्याला वाटून काय फायदा नाही।
0: जबकि शिवसेना शिंदे गुट में बागी तेवर अपनाने वाले अब्दुल सत्तार ने संकेत दिए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे हरी झंडी दे दें तो दोनों गुटों के बीच सुलह तुरंत हो जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों में सुलह की चर्चा तब आई जब एमएलसी चुनाव में महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब्दुल सत्तार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी विस्तारवादी नीति से शिवसेना का सियासी रूप से सिर कलम कर रही है।
2: इसमें आरोप का कोई सवाल ही नहीं, फॉर्म भरा गया है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेता लेंगे।
3: जी, आखिर क्यों ऐसी नाराजगी?
2: ऐसी कोई नाराजगी का सीधा और सिंपल मामला है कि जो हमारी नगरपालिका है दोनों भी, उसके अंदर जो निधि नहीं मिलता, इसके लिए ये परिस्थिति निर्माण हुई और ये परिस्थिति निर्माण होने की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं का इसके अंदर बहुत बड़ा ये है, हमारी शिवसेना के पालक मंत्री है उनके तरफ से भी जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय जब नहीं मिलता है और पक्ष में एक इसको लगता है कि यहाँ शिवसेना खत्म हो जाएगी वहां शिवसेना खत्म हो जाएगी, तो शिवसेना को ये कहीं तो भी इस तरह से लोगों के बीच में उनके काम नहीं होना, उनके हिसाब से नाम नहीं होना, उनको निधि नहीं मिलना, उनके जो मतदार संघ के जो चुनाव क्षेत्र के छोटे छोटे मसले हैं उसके लिए, समझो हमारा जिला नियोजन मंडल का 800 कोटी रुपए का नियोजन है, हमको 800 कोटी में से दोनों नगर पालिका को 8 रुपए भी नहीं मिले, तो फिर ये तो पार्टी है हमारी, हमारी खुद की पार्टी में भी हमारे पे अन्याय हो रहा, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक एक पद एक एक जो सत्ता की जगह है, जिला परिषद होगी, महापालिका होगी, कई छोटे जगहों पे और बड़ी जगहों के ऊपर वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वहीं एकनाथ शिंदे ने दोनों गुटों के मिलन की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि उनके पास ही बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत है और उन्हें महाराष्ट्र की जनता दो बार आशीर्वाद दे चुकी है।
4: आम्ही बाळासाहेबांचा विचार हिंदुत्वाचा विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार देखील आम्ही स्थापन केलं, एकदा केलं, दोनदा केलं आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेनेला, धनुष्यबाणाला, बाळासाहेब आनंदगे साहेबांच्या विचाराला आणि आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला आशीर्वाद दिलेले आहेत, त्यामुळे आमची घोडदौड विजयी अशीच पुढे चालू।
0: दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत शिंदे पर तंज कस रहे हैं कि जिन लोगों ने दगाबाजी करके पार्टी तोड़कर दूसरा गुट बनाया था वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, तो उन्हें मातोश्री लौटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए।
5: असं मत व्यक्त केले ना, मग आम्ही मातोश्रीवर बसलेलो आहोत उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, मी कालही म्हणालो होतो तुम्हाला पश्चाताप झाला असेल तर पश्चाताप व्यक्त करण्याची जागा ही हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं निवासस्थान मातोश्री, तिथे या आणि पश्चाताप व्यक्त करा, मग आम्ही चर्चा करू, कशाला कशाला निमंत्रण द्यायचं, कशाला निमंत्रण
6: मातोश्रीवर या, जे शिंदेच्या शिवनेते ज्यांनी वक्तव्य केलं त्यांना तुम्ही एक प्रकारे निमंत्रण देताय।
5: आता मी दत्ताजी गायकवाडना सांगतो निमंत्रण पत्रिका छापा, दुसरं काय सांगू शकतो मी।
6: अंबादास दानवेंनी पण अशा पद्धतीची इच्छा व्यक्त केली होती की तुम्ही शिवसेना जायची,
5: बरोबर आहे ना, त्यासाठी त्यांना मातोश्रीवर येऊन पश्चाताप व्यक्त करावा लागेल।
0: हालांकि अभी तक दोनों गुटों के बीच कोई भी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाईवे पर दोनों गुटों के नेताओं के बीच हुई रणनीतिक मुलाकात से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है।
7: महाराष्ट्र की सियासी हलचल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने उभर कर नजर आ रही है। जहां एक तरफ दोनों गुट आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह जरूरी होगा कि एमएलसी चुनाव के बीच जो बगावत हो रही है या तो फिर जो नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
8: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल में ममता को लगा बड़ा झटका। बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष। 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राहुल और खड़गे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र। आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई 4th स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती। नवंबर में आएगी आखिरी खेप। दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है। और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है।
1: दिल्ली का अग्निकांड कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल।
2: कैसे मर रहे हैं।
3: आग बहुत भयंकर थी।
4: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे।
1: 21 लोग जिंदा जल गए। होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें।
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग। मच गई चीख पुकार।
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग। फैलता धुआं। मरते लोग। छह मंजिला होटल में भयंकर आग। 21 मौतों का गुनहगार कौन। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्ट नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर। दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर। होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग। चीख पुकार और आग की लपटें। सिहरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर 1। ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है। और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर 2। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संकरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
2: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
8: 4 नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद गए जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
9: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्ची को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया फिर बच्ची को कुदाया 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
1: वीडियो नंबर 3 और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
10: कैसे मर रहे हैं।
1: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
9: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी, फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी 7 मैंने निकाली है नीचे से,
11: 7
9: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं नाथ नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
12: उतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करें क्या, तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर से फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किस से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
1: वीडियो नंबर 4, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
13: देखिए बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे स्टे के लिए और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज़ कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: वीडियो नंबर 5, वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिस कर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।
14: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी, क्या देखा, कैसे पूरा हादसा हुआ?
15: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं। देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
14: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
15: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
14: दिखाइए फोर्थ फ्लोर,
15: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए बुरी तरह, बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये खिड़की, देखिए खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस है जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
0: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं, कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
1: हादसे की वजह नंबर एक, फ्लोरिस्ट डे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर दो, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर तीन, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया और तो और लाइसेंस धारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी, मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
14: आराम घर है, ये पुलिस है। अब देखिए, चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी, यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं। होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिली भगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिली भगत तो नहीं हो सकती एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिली भगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है अवैध तरीके से। होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
1: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके। 21 मौतों के एक एक गुनहगार की पोल खोलते रहे।
14: तस्वीर दिखाई जाती है एक एक दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
10: घर है इनका, पर्सनल घर है इनका।
14: पर्सनल घर है तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर, और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
1: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
14: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका, लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
1: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, न ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और न ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
0: दिल्ली अग्निकांड के गुनहगारों का हिसाब होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि शुरुआती जांच में अग्निकांड को लेकर बिल्डिंग का मालिक, एमसीडी और दिल्ली पुलिस कटघरे में है। क्या हादसे से सबक लेते हुए जिम्मेदारों पर बड़ा और कड़ा एक्शन होगा?
1: जिम्मेदार नंबर एक, बिल्डिंग का मालिक लवकेश बजाज। जिम्मेदार नंबर दो, बीएनबी का लाइसेंसधारी जय मिश्रा। जिम्मेदार नंबर तीन, एमसीडी साउथ जोन के डीसी राकेश कुमार। जिम्मेदार नंबर चार, मालवीय नगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार। जिम्मेदार नंबर पांच, एमसीडी के जेई आशीष रॉय। जिम्मेदार नंबर छह, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजय सिन्हा। जिम्मेदार नंबर सात, मालवीय नगर की लोकल पुलिस। इसी इमारत की बेसमेंट से उठी चिंगारी आग के शोले में ऐसी बदली कि 21 लोगों की मौत हो गई। मारे गए ज्यादातर लोगों में विदेशी नागरिक हैं जो इलाज कराने के लिए भारत आए थे। अग्निकांड की शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट से आग भड़की, उसी आग से पूरी इमारत खाक हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से अवैध था और एमसीडी की मिली भगत से चल रहा था। रेस्टोरेंट के लिए न तो एमसीडी से कोई अनुमति दी गई थी और न ही फायर डिपार्टमेंट से। अग्निकांड के लिए एमसीडी सीधे तौर पर क्यों जिम्मेदार है समझिए। दरअसल किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एमसीडी की तरफ से हेल्थ लाइसेंस की जरूरत होती है, उसका जोनल हेड डीएचओ होता है। इस वक्त डीएचओ डॉक्टर संजय है। संजय की जिम्मेदारी थी कि किसी भी बेसमेंट में रेस्टोरेंट किचन ना हो, लेकिन उनकी नाक के नीचे रेस्टोरेंट चलता रहा और वो आंखें मूंदे बैठे रहे। संजय की तरह एमसीडी के दूसरे अफसरों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही प्रशासनिक अफसर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
11: बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इंटेक्शन लिया जाए। भी एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुआ आपने उनका दे, ताकि उनकी एक चेकिंग रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे किस तरह के रूटीन कार्रवाई अपने करते रहे।
1: हादसे के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी, बड़े और कड़े एक्शन के दावे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे, क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा पाएगा?
10: अभी अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पे जरूर कार्रवाई होगी, जो भी
16: जो जिम्मेदार
10: उस पे कार्रवाई होगी, सभी पर कार्रवाई
17: लग रहा लापरवाही है। कब तक जांच पूरी हो जाएगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा?
10: विद इन वीक, विद इन वीक।
18: ये तो सीधे तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था?
10: बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जब भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी पुरानी बिल्डिंग है और कब से यहाँ पर होटल चल रहा था, ये जांच के बाद ही पता चल पाएंगे सारी चीजें।
18: अच्छा ये बताएं कि एंट्री एग्जिट को लेकर के फायर एनओसी भी नहीं है?
10: नहीं, अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना फायर एनओसी अच्छा, है या नहीं है।
18: कि अब आगे इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्या एमसीडी इंश्योर करती है कि तमाम होटल को अब कोई
10: अपनी जिम्मेदारी? बिल्कुल इंश्योर करती है, एमसीडी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से करेगी।
1: जांच और सिर्फ जांच, अब जिम्मेदारों की जुबान पर यही शब्द है। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई गंभीर सवालों का आईना है। क्या 21 मौतों के असल जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होगा? क्या सिर्फ होटल मालिक पर कार्रवाई काफी है? बड़े हादसे के बाद कार्रवाई का वादा क्यों, पहले रोकथाम क्यों नहीं?
0: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की संभावना अब 9 के बराबर है। एक बार फिर युद्ध के मैदान में अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, तो ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ताजा हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है।

0: هذا الحريق.
1: أمريكي ठिकानों पर ईरान का ड्रोन अटैक. ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया. अमेरिका का केशम आइलैंड पर अटैक. ईरान के ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया. अगले 48 घंटे भारी हमलों का दौर जारी. अब युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध की घड़ी करीब. अभी ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर आती, उससे पहले ही दोनों मुल्कों के बीच नए सिरे से हमलों का दौर शुरू हो गया है. यानी अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुआ अस्थाई युद्ध विराम अब करीब करीब टूट चुका है. पीस डील की संभावना बहुत कम बची है, क्योंकि अमेरिका ने शांति वार्ता के बीच ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, तो ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद कुवैत को अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था. कुवैती सेना के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग जख्मी हो गए. दरअसल ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. IRGC का दावा है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों पर हमला किया. IRGC की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने होर्मुज के पास एक ईरानी ऑयल टैंकर पर भी हमला किया था. ईरान ने पलटवार करते हुए एक जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया है. इससे पहले अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड पर ईरान के कम्युनिकेशन टावर और मिसाइल सेंटर को निशाना बनाया था. अमेरिकी सेना की माने तो बहरीन और कुवैत पर ईरान की तरफ से किए गए हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया गया. अमेरिका के हमलों को देखते हुए ईरानी सांसदों ने अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनई से व्हाइट हाउस पर हमले की मांग की है. सांसदों ने बयान में कहा, हम अपने सैन्य बलों और रक्षा उद्योगों का तब तक समर्थन करते रहेंगे जब तक कि हमारी मिसाइलों की मारक क्षमता खामिनई के हथियारों के कार्यालय तक नहीं पहुंच जाती. IRGC ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि आक्रामकता की स्थिति में प्रतिक्रिया अलग और अधिक गंभीर होगी, और हमने उसी के अनुसार कार्रवाई की. हमारे खिलाफ होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा. जो भी हमला करेगा उसे जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. ईरान की तरफ से अमेरिका को यही संदेश दिया गया है कि हमला हुआ तो पलटवार भी होगा. अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने शांति वार्ता को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. ईरान का कहना है कि तनाव के बीच अमेरिका के साथ किसी तरह की वार्ता की संभावना नहीं है. ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि खाड़ी के देशों ने अमेरिका की मदद की तो अंजाम बहुत बुरा होगा. कुवैत और बहरीन इन हमलों के लिए सीधे और साफ तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके इलाके और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में किया गया. अगर कोई देश अपनी जमीन या वहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करने देगा तो ईरान उसी जगह जवाबी कार्रवाई करेगा. वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और UAE ने कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की निंदा की है. अब सवाल यही है कि शांति वार्ता के बीच ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी सेना ने अचानक ईरान के केशम आइलैंड पर हमला कर दिया. डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान के लिए केशम आइलैंड सैन्य लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि ये ईरान का अहम सैन्य ठिकाना है. माना जाता है कि ईरान ने केशम आइलैंड में मिसाइलों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रखा है. जमीन के नीचे सुरंगों का बड़ा नेटवर्क है. यहाँ ईरान ने तटीय मिसाइल सिस्टम और तेज हमला करने वाली नौकाएं छिपा कर रखी हैं. पहले भी अमेरिका ने केशम द्वीप पर IRGC के ठिकानों और कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमले किए थे. तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान हमले का फैसला उनका था, हमले के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री ने उन्हें उकसाया नहीं था. ईरान पर हमला मेरा फैसला था, मुझे नेतन्याहू ने नहीं उकसाया, यानी किसी ने मुझे बहकाया नहीं, ये फैसला मेरा अपना था. हाँ, इसराइल के लेबनन पर हमले को लेकर मैं परेशान था. मुझे नेतन्याहू बहुत पसंद है और मैं उनके साथ बहुत अच्छे से काम करता हूँ. मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. मैं अपने पहले कार्यकाल से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहा हूँ. इसी वजह से मैंने 2015 में हुए परमाणु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया. इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहस की खबरें सामने आई थी। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस हुई, जिसमें ट्रंप ने लेबनन पर इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा किया गया है कि ट्रंप इस बात से बेहद नाराज थे कि हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायली हमलों से ईरान के साथ चल रही पीस डील की चर्चा पटरी से उतर सकती है। बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को अपने तमाम एहसान याद दिलाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम कर क्या रहे हो? मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन अब हर कोई तुमसे नाराज है, हर कोई इसराइल से नाराज है। हालांकि इसराइल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। अब सवाल यही है कि नेतन्याहू को लेकर ट्रंप ने अपना स्टैंड बदला। ठीक इसी तरह ईरान के साथ पीस डील को लेकर ट्रंप का कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान पर हमले से चंद घंटे पहले ही ट्रंप ने दावा किया था कि चंद दिनों में पीस डील पर मोहर लग सकती है। मुझे विश्वास है कि अमेरिका और ईरान अगले एक हफ्ते के अंदर युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक हमारे बीच एक समझौता हो जाएगा। ट्रंप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। अगर पीस डील को लेकर सब कुछ ठीक था तो अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या ये दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, या फिर ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करना चाहते हैं?
0: And I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
1: भले ही ईरान को लेकर ट्रंप कभी नरम तो कभी गर्म रुख अपनाते हैं, लेकिन ट्रंप को लेकर ईरान के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईरान की नीति एकदम स्पष्ट है, वो युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन ट्रंप के दबाव में युद्ध विराम नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध होगा। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल में ममता को लगा बड़ा झटका। बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष। 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राहुल और खड़गे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र। आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई 4th स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती। नवंबर में आएगी आखिरी खेप। दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है। और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है।
1: दिल्ली का अग्निकांड कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल।
2: अल्लाह कैसे मर रहे हैं।
3: आग बहुत भयंकर थी।
4: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे।
1: इक्कीस लोग जिंदा जल गए। होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए। इसमें
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग। मच गई चीख पुकार।
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग, फैलता धुआं, मरते लोग। छह मंजिला होटल में भयंकर आग। 21 मौतों का गुनहगार कौन। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्टे नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर। दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर। होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग। चीख पुकार और आग की लपटें। सिहरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर 1। ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है। और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर 2। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संकरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
2: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
8: 4 नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद गए जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
9: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्चों को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया फिर बच्चों को कुदाया 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
1: वीडियो नंबर 3 और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
10: कैसे मर रहे हैं।
1: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
11: मंजर ऐसा था सर, जहां आप खड़े हो अभी यहां नहीं खड़े हो सकते।

0: उतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करें क्या, तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे कि खुदवा रहे ऊपर से, फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई, और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
1: वीडियो नंबर 4, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
2: देखिए, बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे, और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे, और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे स्टे के लिए, और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज़ कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हीट, स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: वीडियो नंबर 5, वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिस कर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।
3: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी, क्या देखा, कैसे पूरा?
4: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं। देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
3: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
4: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस 4th फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
3: दिखाइए 4th फ्लोर
4: से लोग इतने कूदे, और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है, जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
5: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
1: हादसे की वजह नंबर 1, फ्लोरिस्ट डे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर 2, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी, लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर 3, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। MCD की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे, लेकिन MCD के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती

0: में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है, लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था, लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर पाँच, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था, लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया, और तो और लाइसेंस धारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी। मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
1: आराम,
2: मेरा घर है।
1: हाँ, आराम
2: घर
1: है। ये पुलिस है, अब देखिए चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी है। यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिलीभगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिलीभगत तो नहीं हो सकती, एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिलीभगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। अवैध तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
0: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी, लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके, 21 मौतों के एक एक गुनहगार की बोल बोलते रहे।
1: तस्वीर दिखाई जाती है, एक एक दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
3: घर है इनका, पर्सनल घर है,
1: पर्सनल घर है, तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर, और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं, और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
0: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था, क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
1: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं, आसपास के लोगों को जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने की इसके लिए रोका, लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया, क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
0: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, न ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता, और न ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
2: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की संभावना अब न के बराबर है। एक बार फिर युद्ध के मैदान में अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है तो ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ताजा हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है।

0: هذا الحريق.
1: أمريكي ठिकानों पर ईरान का ड्रोन अटैक. ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया. अमेरिका का केशम आइलैंड पर अटैक. ईरान के ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया. अगले 48 घंटे भारी हमलों का दौर जारी. अब युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध की घड़ी करीब. अभी ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर आती, उससे पहले ही दोनों मुल्कों के बीच नए सिरे से हमलों का दौर शुरू हो गया है. यानी अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुआ अस्थाई युद्ध विराम अब करीब करीब टूट चुका है. पीस डील की संभावना बहुत कम बची है, क्योंकि अमेरिका ने शांति वार्ता के बीच ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए तो ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद कुवैत को अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था. कुवैती सेना के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग जख्मी हो गए. दरअसल ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. IRGC का दावा है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों पर हमला किया. IRGC की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने होर्मुज के पास एक ईरानी ऑयल टैंकर पर भी हमला किया था. ईरान ने पलटवार करते हुए एक जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया है. इससे पहले अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड पर ईरान के कम्युनिकेशन टावर और मिसाइल सेंटर को निशाना बनाया था. अमेरिकी सेना की माने तो बहरीन और कुवैत पर ईरान की तरफ से किए गए हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया गया. अमेरिका के हमलों को देखते हुए ईरानी सांसदों ने अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनई से व्हाइट हाउस पर हमले की मांग की है. सांसदों ने बयान में कहा, हम अपने सैन्य बलों और रक्षा उद्योगों का तब तक समर्थन करते रहेंगे जब तक कि हमारी मिसाइलों की मारक क्षमता खामिनई के हथियारों के कार्यालय तक नहीं पहुंच जाती. IRGC ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि आक्रामकता की स्थिति में प्रतिक्रिया अलग और अधिक गंभीर होगी और हमने उसी के अनुसार कार्रवाई की. हमारे खिलाफ होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा. जो भी हमला करेगा उसे जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. ईरान की तरफ से अमेरिका को यही संदेश दिया गया है कि हमला हुआ तो पलटवार भी होगा. अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने शांति वार्ता को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. ईरान का कहना है कि तनाव के बीच अमेरिका के साथ किसी तरह की वार्ता की संभावना नहीं है. ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि खाड़ी के देशों ने अमेरिका की मदद की तो अंजाम बहुत बुरा होगा. कुवैत और बहरीन इन हमलों के लिए सीधे और साफ तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके इलाके और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में किया गया. अगर कोई देश अपनी जमीन या वहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करने देगा तो ईरान उसी जगह जवाबी कार्रवाई करेगा. वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और UAE ने कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की निंदा की है. अब सवाल यही है कि शांति वार्ता के बीच ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी सेना ने अचानक ईरान के केशम आइलैंड पर हमला कर दिया. डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान के लिए केशम आइलैंड सैन्य लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि ये ईरान का अहम सैन्य ठिकाना है. माना जाता है कि ईरान ने केशम आइलैंड में मिसाइलों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रखा है. जमीन के नीचे सुरंगों का बड़ा नेटवर्क है. यहाँ ईरान ने तटीय मिसाइल सिस्टम और तेज हमला करने वाली नौकाएं छिपा कर रखी हैं. पहले भी अमेरिका ने केशम द्वीप पर IRGC के ठिकानों और कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमले किए थे. तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान हमले का फैसला उनका था. हमले के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री ने उन्हें उकसाया नहीं था. ईरान पर हमला मेरा फैसला था. मुझे नेतन्याहू ने नहीं उकसाया, यानी किसी ने मुझे बहकाया नहीं. ये फैसला मेरा अपना था. हाँ, इसराइल के लेबनन पर हमले को लेकर मैं परेशान था. मुझे नेतन्याहू बहुत पसंद है और मैं उनके साथ बहुत अच्छे से काम करता हूँ. मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. मैं अपने पहले कार्यकाल से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहा हूँ. इसी वजह से मैंने 2015 में हुए परमाणु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया. इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहस की खबरें सामने आई थी। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस हुई, जिसमें ट्रंप ने लेबनान पर इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा किया गया है कि ट्रंप इस बात से बेहद नाराज थे कि हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायली हमलों से ईरान के साथ चल रही पीस डील की चर्चा पटरी से उतर सकती है। बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को अपने तमाम एहसान याद दिलाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम कर क्या रहे हो? मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन अब हर कोई तुमसे नाराज है, हर कोई इसराइल से नाराज है। हालांकि इसराइल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। अब सवाल यही है कि नेतन्याहू को लेकर ट्रंप ने अपना स्टैंड बदला। ठीक इसी तरह ईरान के साथ पीस डील को लेकर ट्रंप का कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान पर हमले से चंद घंटे पहले ही ट्रंप ने दावा किया था कि चंद दिनों में पीस डील पर मोहर लग सकती है। मुझे विश्वास है कि अमेरिका और ईरान अगले एक हफ्ते के अंदर युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक हमारे बीच एक समझौता हो जाएगा। ट्रंप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। अगर पीस डील को लेकर सब कुछ ठीक था तो अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या ये दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, या फिर ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करना चाहते हैं?
0: I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
1: भले ही ईरान को लेकर ट्रंप कभी नरम तो कभी गर्म रुख अपनाते हैं, लेकिन ट्रंप को लेकर ईरान के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईरान की नीति एकदम स्पष्ट है, वो युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन ट्रंप के दबाव में युद्ध विराम नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध होगा। आज तक ब्यूरो।
2: ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जंग फिर से भड़क रही है, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब रूस ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमले से सबको चौंका दिया है।

0: रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने क्यों किया ड्रोन अटैक? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक के पीछे यूक्रेन का मकसद क्या है? 29वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में यूक्रेन के हमले से हलचल। क्या यूक्रेन ने कीव पर रूस के हमले का बदला ड्रोन अटैक से लिया? रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध जारी, आखिर ये युद्ध कब रुकेगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में उठता हुआ ये काले धुएं का गुबार दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, यूक्रेन ने ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल और पास के नौसैनिक अड्डे पर ड्राई डॉक में खड़े एक युद्ध पोत को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक ऐसे वक्त में किया है जब सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आर्थिक मंच का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों से करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले को पुतिन को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने की स्पष्ट कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गृह नगर में ये हमला एक बड़ा मैसेज है।
1: सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम आज शुरू होने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक काला धुआं सा उठ रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए ऑयल टर्मिनल में बाल्टिक पोर्ट के आसपास, जो हमको बताया जा रहा है। बट अभी तक सेंट पीटर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसको रशियन डायवोस भी कहते हैं, उस पर अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। प्रेसिडेंट पुतिन 6 जून को यहीं पर आके प्लेनरी सेशन अटेंड करेंगे और अपनी स्पीच भी देंगे। बट हाँ, मॉस्को के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि रशिया रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए अदर कंट्रीज से भी। इंडिया रशिया ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन और काफी एजेंडा, इंपॉर्टेंट एजेंडा एंड स्पीकर्स लाउंज में भी तैयार बैठे हैं और इनॉग्रेशन सेरेमनी भी शुरू होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है और काला धुआं लगभग पिछले 2-3 घंटे से दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो हम बताते रहेंगे अपने दर्शकों को क्या क्या डेवलपमेंट है, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि कोई भी एजेंडा या कोई भी स्पीकर या फिर कोई भी सेशन अभी तक कैंसिल किया है। एज पर स्केड्यूल ही चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम।
0: रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 3 जून से 6 जून तक चलने वाले 29वें इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी रूस के दावोस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर रोजडेंको के अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास स्थित लेनिनग्राद क्षेत्र में रात भर में कम से कम 59 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। उन्होंने बताया कि मलबे के गिरने से कुछ घरों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पिछले 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी रूस हमले करता है तो कभी यूक्रेन हमले करता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। कीव के साथ साथ खार्किव और निप्रो जैसे कई शहरों पर भी रूस ने 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों के भीषण अटैक किए। पूरी रात आसमान में मिसाइलों का शोर गूंजता रहा। विनाशकारी मिसाइलों के हमले से कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। कहीं सायरन बज रहे थे तो कहीं लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूसी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हमला इतना भीषण था और मिसाइलें इतनी तेजी से आ रही थीं कि यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। इन पर हुए हमलों में भारी नुकसान के बाद ज्यादातर इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। रूसी हमलों से पहले यूक्रेन का बड़ा प्रहार। यूक्रेन के हमले में रूस की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान। कीव पर रूसी हमलों से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने उसकी रिफाइनरी को तबाह कर दिया। यूक्रेन तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इन हमलों से रूस की एक रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, ऑयल पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों से रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि ड्रोन हमलों में वोल्गा नदी के किनारे बनी सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले से रिफाइनरी परिसर के बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन जानता है कि उसके पास सैन्य संसाधनों की कमी हो रही है। वो चुन चुन कर रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऑयल रिफाइनरी पर हमले यूक्रेन की इसी योजना का नतीजा है। हमलों के बाद इनमें लगी आग तो मशक्कत के बाद बुझा ली गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने में महीनों लग जाते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बड़ा झटका बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली राहुल और खड़गे मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई चौथी स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती नवंबर में आएगी आखिरी खेप दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है
1: दिल्ली का अग्निकांड कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल
2: अल्लाह कैसे मर रहे हैं
3: आग बहुत भयंकर थी
4: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे
1: इक्कीस लोग जिंदा जल गए होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग मच गई चीख पुकार
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग फैलता धुआं मरते लोग छह मंजिला होटल में भयंकर आग 21 मौतों का गुनहगार कौन देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्ट नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग चीख पुकार और आग की लपटें सिहरन सी दौड़ने लगती है वीडियो नंबर एक ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है वीडियो नंबर दो और अब ये दूसरा वीडियो देखिए ये और भी खौफनाक है आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं आग भड़की तो संतरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं होटल अग्निकांड में एक मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई और गली में बिछे गर्तों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
8: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
9: 4 नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद गए जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
10: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्ची को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया फिर बच्ची को कुदाया 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
1: वीडियो नंबर 3 और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
2: कैसे मर रहे हैं।
1: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
10: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी 7 मैंने निकाली है नीचे से।
11: 7
10: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं नाथ नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
12: उतना पैनिक माहौल था कि करें क्या तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर थे। फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
1: वीडियो नंबर 4, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
13: देखिए बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे स्टे के लिए और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज़ कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: वीडियो नंबर 5, वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।
14: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी क्या देखा, कैसे पूरा हादसा हुआ?
15: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं। देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
14: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन एक फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
15: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
14: दिखाइए फोर्थ फ्लोर,
15: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये खिड़की, देखिए खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
0: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं, कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
1: हादसे की वजह नंबर एक, फ्लोरिस्ट डे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर दो, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर तीन, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया और तो और लाइसेंस धारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी, मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
14: आराम घर है, ये पुलिस है। अब देखिए, चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी यहाँ पर, करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर हैं, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिली भगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिली भगत तो नहीं हो सकती, एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिली भगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, अवैध तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
1: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र, पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके। 21 मौतों के एक एक गुनहगार की पोल खोलते रहे।
14: तस्वीर दिखाई जाती है एक एक के, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
11: घर है इनका, पर्सनल घर है इनका।
14: पर्सनल घर है तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर, और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
1: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
14: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका, लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
1: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, ना ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और ना ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
0: क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है? क्या एमएलसी चुनाव में महायुति में कथित तनाव की वजह से शिंदे और उद्धव एक साथ आने के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता हाईवे पर गले मिल रहे हैं, उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव और शिंदे के दिल भी मिल जाएंगे।

0: या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव के दिल मिलेंगे? क्या शिवसेना के बागी बढ़ाएंगे शिंदे की मुश्किल? एमएलसी चुनाव, महायुति में बढ़ा तनाव। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर के पास समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के बागी नेता अब्दुल सत्तार के बीच ये मुलाकात का वीडियो वायरल है। जिस तरह दोनों गुट के नेता सार्वजनिक तौर पर गले मिलते दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं। अब ये महज सियासी संयोग है या प्रयोग कि दोनों नेता खुलेआम दोनों गुटों के एक होने की वकालत कर रहे हैं? अंबादास दानवे चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी शिंदे गुट को खत्म करने की तैयारी में है।
1: देखो, आता शिंदेचा गट संपायला तर भारतीय जनता पार्टी ते काम करते, जी बाळासाहेबांच्या विचाराने उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हिला कोणी संपू शकत नाही वाटतं, बऱ्याच वेळेस वाटतं, पण ते मला एकट्याला वाटून काय फायदा नाही।
0: जबकि शिवसेना शिंदे गुट में बागी तेवर अपनाने वाले अब्दुल सत्तार ने संकेत दिए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे हरी झंडी दे दें तो दोनों गुटों के बीच सुलह तुरंत हो जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों में सुलह की चर्चा तब आई जब एमएलसी चुनाव में महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब्दुल सत्तार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने विस्तारवादी नीति से शिवसेना का सियासी रूप से सिर कलम कर रही है।
2: इसमें आरोप का कोई सवाल ही नहीं, फॉर्म भरा गया है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेता लेंगे।
3: जी, आखिर क्यों ऐसी नाराजगी? आप
2: कोई नाराजगी का सीधा और सिंपल मामला है कि जो हमारी नगर पालिका है दोनों भी, उसके अंदर जो निधि नहीं मिलता, इसके लिए ये परिस्थिति निर्माण हुई और ये परिस्थिति निर्माण होने की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेताओं का इसके अंदर बहुत बड़ा ये है, हमारी शिवसेना के पालक मंत्री है उनके तरफ से भी जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय जब नहीं मिलता है और पक्ष में एक इसको लगता है कि यहाँ शिवसेना खत्म हो जाएगी वहां शिवसेना खत्म हो जाएगी, तो शिवसेना को ये कहीं तो भी इस तरह से लोगों के बीच में उनके काम नहीं होना, उनके हिसाब से नाम नहीं होना, उनको निधि नहीं मिलना, उनके जो मतदार संघ के जो चुनाव क्षेत्र के छोटे छोटे मसले हैं उसके लिए, समझो हमारा जिला नियोजन मंडल का 800 कोटी रुपए का नियोजन है, हमको 800 कोटी में से दोनों नगर पालिका को 8 रुपए भी नहीं मिले, तो फिर ये तो पार्टी है हमारी, हमारी खुद की पार्टी में भी हमारे पे अन्याय हो रहा, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक एक पद एक एक जो सत्ता की जगह है, जिला परिषद होगी, महापालिका होगी, कई छोटे जगहों पे और बड़ी जगहों के ऊपर वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वहीं एकनाथ शिंदे ने दोनों गुटों के मिलन की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि उनके पास ही बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत है और उन्हें महाराष्ट्र की जनता दो बार आशीर्वाद दे चुकी है।
4: आम्ही बाळासाहेबांचा विचार हिंदुत्वाचा विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार देखील आम्ही स्थापन केलं, एकदा केलं, दोनदा केलं आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेनेला धनुष्यबाणाला बाळासाहेब आनंदगे साहेबांच्या विचाराला आणि आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला आशीर्वाद दिलेले आहेत, त्यामुळे आमची घोडदौड विजयी अशीच पुढे चालू।
0: दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत शिंदे पर तंज कस रहे हैं कि जिन लोगों ने दगाबाजी करके पार्टी तोड़कर दूसरा गुट बनाया था वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, तो उन्हें मातोश्री लौटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए।
5: असं मत व्यक्त केले ना, मग आम्ही मातोश्रीवर बसलेलो आहोत उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, मी काल ही म्हणालो होतो तुम्हाला पश्चाताप झाला असेल तर पश्चाताप व्यक्त करण्याची जागा ही हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं निवासस्थान मातोश्री, तिथे या आणि पश्चाताप व्यक्त करा, मग आम्ही चर्चा करू, कशाला कशाला निमंत्रण द्यायचं, कशाला निमंत्रण
6: मातोश्रीवर या, जे शिंदेच्या शिवसेनेचे ज्यांनी वक्तव्य केलं त्यांना तुम्ही एक प्रकारे निमंत्रण देताय।
5: आता मी दत्ताजी गायकवाडना सांगतो निमंत्रण पत्रिका छापा, दुसरं काय सांगू शकतो मी।
6: अंबादास दानवेंनी पण अशा पद्धतीची इच्छा व्यक्त केली होती की दोन्ही शिवसेना
5: बरोबर आहे ना, त्यासाठी त्यांना मातोश्रीवर येऊन पश्चाताप व्यक्त करावा लागेल।
0: हालांकि अभी तक दोनों गुटों के बीच कोई भी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाईवे पर दोनों गुटों के नेताओं के बीच हुई रणनीतिक मुलाकात से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है।
7: महाराष्ट्र की सियासी हलचल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने उभर कर नजर आ रही है। जहां एक तरफ दोनों गुट आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह जरूरी होगा कि एमएलसी चुनाव के बीच जो बगावत हो रही है या तो फिर जो नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
8: ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जंग फिर से भड़क रही है, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब रूस ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमले से सबको चौंका दिया है।

0: रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने क्यों किया ड्रोन अटैक? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक के पीछे यूक्रेन का मकसद क्या है? 29वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में यूक्रेन के हमले से हलचल। क्या यूक्रेन ने कीव पर रूस के हमले का बदला ड्रोन अटैक से लिया? रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध जारी, आखिर ये युद्ध कब रुकेगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में उठता हुआ ये काले धुएं का गुबार दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, यूक्रेन ने ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल और पास के नौसैनिक अड्डे पर ड्राई डॉक में खड़े एक युद्ध पोत को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक ऐसे वक्त में किया है जब सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आर्थिक मंच का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों से करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले को पुतिन को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने की स्पष्ट कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गृह नगर में ये हमला एक बड़ा मैसेज है।
1: सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम आज शुरू होने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक काला धुआं सा उठ रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए ऑयल टर्मिनल में बाल्टिक पोर्ट के आसपास, जो हमको बताया जा रहा है। बट अभी तक सेंट पीटर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसको रशियन डाइवोस भी कहते हैं, उस पर अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। प्रेसिडेंट पुतिन 6 जून को यहीं पर आके प्लेनरी सेशन अटेंड करेंगे और अपनी स्पीच भी देंगे। बट हाँ, मॉस्को के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि रशिया रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए अदर कंट्रीज से भी। इंडिया रशिया ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन और काफी एजेंडा, इंपॉर्टेंट एजेंडा एंड स्पीकर्स लाउंज में भी तैयार बैठे हैं और इनॉग्रेशन सेरेमनी भी शुरू होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है और काला धुआं लगभग पिछले 2-3 घंटे से दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो हम बताते रहेंगे अपने दर्शकों को क्या क्या डेवलपमेंट है, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि कोई भी एजेंडा या कोई भी स्पीकर या फिर कोई भी सेशन अभी तक कैंसिल किया है। एज पर स्केड्यूल ही चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम।
0: रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 3 जून से 6 जून तक चलने वाले 29वें इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी रूस के दावोस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर रोजडेंको के अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास स्थित लेनिनग्राद क्षेत्र में रात भर में कम से कम 59 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। उन्होंने बताया कि मलबे के गिरने से कुछ घरों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पिछले 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी रूस हमले करता है तो कभी यूक्रेन हमले करता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। कीव के साथ साथ खार्किव और निप्रो जैसे कई शहरों पर भी रूस ने 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों के भीषण अटैक किए। पूरी रात आसमान में मिसाइलों का शोर गूंजता रहा। विनाशकारी मिसाइलों के हमले से कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। कहीं सायरन बज रहे थे तो कहीं लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूसी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हमला इतना भीषण था और मिसाइलें इतनी तेजी से आ रही थीं कि यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। इन पर हुए हमलों में भारी नुकसान के बाद ज्यादातर इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। रूसी हमलों से पहले यूक्रेन का बड़ा प्रहार। यूक्रेन के हमले में रूस की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान। कीव पर रूसी हमलों से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने उसकी रिफाइनरी को तबाह कर दिया। यूक्रेन तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इन हमलों से रूस की एक रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, ऑयल पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों से रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि ड्रोन हमलों में वोल्गा नदी के किनारे बनी सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले से रिफाइनरी परिसर के बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन जानता है कि उसके पास सैन्य संसाधनों की कमी हो रही है। वो चुन चुन कर रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऑयल रिफाइनरी पर हमले यूक्रेन की इसी योजना का नतीजा है। हमलों के बाद इनमें लगी आग तो मशक्कत के बाद बुझा ली गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने में महीनों लग जाते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बड़ा झटका बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली राहुल और खड़गे मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई चौथी स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती नवंबर में आएगी आखिरी खेप दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है
1: दिल्ली का अग्निकांड कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल
2: अल्लाह कैसे मर रहे हैं
3: आग बहुत भयंकर थी
4: इतना पैनिक कॉल था कि करेंगे
1: 21 लोग जिंदा जल गए होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग मच गई चीख पुकार
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग फैलता धुआं मरते लोग छह मंजिला होटल में भयंकर आग 21 मौतों का गुनहगार कौन देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्टे नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग चीख पुकार और आग की लपटें सिहरन सी दौड़ने लगती है वीडियो नंबर 1 ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है वीडियो नंबर 2 और अब ये दूसरा वीडियो देखिए ये और भी खौफनाक है आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं आग भड़की तो संकरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं होटल अग्निकांड में एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई। और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
2: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से

0: भी क्या है जो सेफ है।
1: चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
2: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्चों को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया फिर बच्चों को कुदाया सात लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
3: वीडियो नंबर 3। और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
4: भैया गिरो, भैया गिरो, भैया गिरो।
5: अल्लाह, कैसे मर रहे हैं।
3: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
2: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी साथ मैंने निकाली है नीचे से।
6: सात
2: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं नाथ नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
7: उतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करें क्या, तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर से फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे। कोई अपने चम्मच से या कोई किसी से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
3: वीडियो नंबर 4। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
8: देखिए बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे स्टे के लिए और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज़ कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
3: वीडियो नंबर 5। वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिस कर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने PNB रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।
9: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी क्या देखा, कैसे पूरा हादसा हुआ?
10: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं, देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
9: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
10: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
9: दिखाइए, फोर्थ फ्लोर
10: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके।
9: अच्छा,
10: उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं, इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोज है जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम

0: 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
1: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
2: हादसे की वजह नंबर एक, फ्लोरिस्टे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर दो, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर तीन, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया और तो और लाइसेंसधारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी। मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
3: आराम, मेरा घर है। ये पुलिस है, अब देखिए चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी यहाँ पर, करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिलीभगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिलीभगत तो नहीं हो सकती, एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिलीभगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है अवैध तरीके से। होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खानापूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
2: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके, 21 मौतों के एक एक गुनहगार की बोल बोलते रहे।
3: तस्वीर दिखाई जाती है एक-एक, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
4: घर है इनका, पर्सनल घर है,
3: पर्सनल घर है तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर, और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर, और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को एमसीडी को।
2: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
3: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका। लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
2: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, न ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और न ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
1: क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है? क्या एमएलसी चुनाव में महायुति में कथित तनाव की वजह से शिंदे और उद्धव एक साथ आने के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता हाईवे पर गले मिल रहे हैं उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव और शिंदे के दिल भी मिल जाएंगे।

0: या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव के दिल मिलेंगे? क्या शिवसेना के बागी बढ़ाएंगे शिंदे की मुश्किल? एमएलसी चुनाव, महायुति में बढ़ा तनाव। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर के पास समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के बागी नेता अब्दुल सत्तार के बीच ये मुलाकात का वीडियो वायरल है। जिस तरह दोनों गुट के नेता सार्वजनिक तौर पर गले मिलते दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं। अब ये महज सियासी संयोग है या प्रयोग कि दोनों नेता खुलेआम दोनों गुटों के एक होने की वकालत कर रहे हैं? अंबादास दानवे चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी शिंदे गुट को खत्म करने की तैयारी में है।
1: देखो, आता शिंदेचा गट संपायला तर भारतीय जनता पार्टी ते काम करते, जी बाळासाहेबांच्या विचाराने उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हिला कोणी संपू शकत नाही वाटतं, बऱ्याच वेळेस वाटतं, पण ते मला एकट्याला वाटून काही फायदा नाही।
0: जबकि शिवसेना शिंदे गुट में बागी तेवर अपनाने वाले अब्दुल सत्तार ने संकेत दिए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे हरी झंडी दे दें तो दोनों गुटों के बीच सुलह तुरंत हो जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों में सुलह की चर्चा तब आई जब एमएलसी चुनाव में महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब्दुल सत्तार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी विस्तारवादी नीति से शिवसेना का सियासी रूप से सिर कलम कर रही है।
2: इसमें आरोप का कोई सवाल ही नहीं, फॉर्म भरा गया है, कार्यकर्ताओं की जो नाराज किए है उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेता लेंगे।
3: जी, आखिर क्यों ऐसी नाराजगी?
2: ऐसी कोई नाराजगी का सीधा और सिंपल मामला है कि जो हमारी नगरपालिका है दोनों भी, उसके अंदर जो निधि नहीं मिलता, इसके लिए ये परिस्थिति निर्माण हुई और ये परिस्थिति निर्माण होने की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेताओं का इसके अंदर बहुत बड़ा यह है, हमारी शिवसेना के पालक मंत्री है उनके तरफ से भी जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय जब नहीं मिलता है और पक्ष में एक इसको लगता है कि यहाँ शिवसेना खत्म हो जाएगी वहां शिवसेना खत्म हो जाएगी, तो शिवसेना को ये कहीं तो भी इस तरह से लोगों के बीच में उनके काम नहीं होना, उनके हिसाब से नाम नहीं होना, उनको निधि नहीं मिलना, उनके जो मतदार संख्या जो चुनाव क्षेत्र के छोटे छोटे मसले हैं उसके लिए, समझो हमारा जिला नियोजन मंडल का 800 कोटी रुपए का नियोजन है, हमको 800 कोटी में से दोनों नगर पालिका को 8 रुपए भी नहीं मिले, तो फिर ये तो पार्टी है हमारी, हमारी खुद की पार्टी में भी हमारे पे अन्याय हो रहा, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक एक पद एक एक जो सत्ता की जगह है, जिला परिषद होगी, महापालिका होगी, कई छोटे जगहों पे और बड़ी जगहों के ऊपर वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वहीं एकनाथ शिंदे ने दोनों गुटों के मिलन की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि उनके पास ही बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत है और उन्हें महाराष्ट्र की जनता दो बार आशीर्वाद दे चुकी है।
4: आम्ही बाळासाहेबांचा विचार हिंदुत्वाचा विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार देखील आम्ही स्थापन केलं, एकदा केलं, दोनदा केलं आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेनेला धनुष्यबाणाला बाळासाहेब आनंदगे साहेबांच्या विचाराला आणि आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला आशीर्वाद दिलेले आहेत, त्यामुळे आमची घोडदौड विजयी अशीच पुढे चालू।
0: दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत शिंदे पर तंज कस रहे हैं कि जिन लोगों ने दगाबाजी करके पार्टी तोड़कर दूसरा गुट बनाया था वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, तो उन्हें मातोश्री लौटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए।
5: असं मत व्यक्त केले ना, मग आम्ही मातोश्रीवर बसलेलो आहोत उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली। मी कालही म्हणालो होतो तुम्हाला पश्चाताप झाला असेल तर पश्चाताप व्यक्त करण्याची जागा ही हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं निवासस्थान मातोश्री, तिथे या आणि पश्चाताप व्यक्त करा, मग आम्ही चर्चा करू। कशाला निमंत्रण द्यायचं?
6: मातोश्रीवर या, जे शिंदेच्या शिवनेते ज्यांनी वक्तव्य केलं त्यांना तुम्ही एक प्रकारे निमंत्रण देताय।
5: आता मी दत्ताजी गायकवाडना सांगतो निमंत्रण पत्रिका छापा, दुसरं काय सांगू शकतो मी।
6: अंबादास दानवेंनी पण अशा पद्धतीची इच्छा व्यक्त केली होती की तुम्ही शिवसेना,
5: बरोबर आहे ना, त्यासाठी त्यांना मातोश्रीवर येऊन पश्चाताप व्यक्त करावा लागेल।
0: हालांकि अभी तक दोनों गुटों के बीच कोई भी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाईवे पर दोनों गुटों के नेताओं के बीच हुई रणनीतिक मुलाकात से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है।
7: महाराष्ट्र की सियासी हलचल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने उभर कर नजर आ रही है। जहां एक तरफ दोनों गुट आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह जरूरी होगा कि एमएलसी चुनाव के बीच जो बगावत हो रही है या तो फिर जो नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
8: ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जंग फिर से भड़क रही है, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब रूस ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमले से सबको चौंका दिया है।

0: रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने क्यों किया ड्रोन अटैक? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक के पीछे यूक्रेन का मकसद क्या है? 29वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में यूक्रेन के हमले से हलचल। क्या यूक्रेन ने कीव पर रूस के हमले का बदला ड्रोन अटैक से लिया? रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध जारी, आखिर ये युद्ध कब रुकेगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में उठता हुआ ये काले धुएं का गुबार दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, यूक्रेन ने ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल और पास के नौसैनिक अड्डे पर ड्राई डॉक में खड़े एक युद्ध पोत को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक ऐसे वक्त में किया है जब सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आर्थिक मंच का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों से करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले को पुतिन को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने की स्पष्ट कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गृह नगर में ये हमला एक बड़ा मैसेज है।
1: सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम आज शुरू होने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक काला धुआं सा उठ रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए ऑयल टर्मिनल में बाल्टिक पोर्ट के आसपास, जो हमको बताया जा रहा है। बट अभी तक सेंट पीटर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसको रशियन डाइवोस भी कहते हैं, उस पर अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। प्रेसिडेंट पुतिन 6 जून को यहीं पर आके प्लेनरी सेशन अटेंड करेंगे और अपनी स्पीच भी देंगे। बट हाँ, मॉस्को के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि रशिया रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए अदर कंट्रीज से भी। इंडिया रशिया ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन और काफी एजेंडा, इंपॉर्टेंट एजेंडा एंड स्पीकर्स लाउंज में भी तैयार बैठे हैं और इनॉग्रेशन सेरेमनी भी शुरू होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है और काला धुआं लगभग पिछले 2-3 घंटे से दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो हम बताते रहेंगे अपने दर्शकों को क्या क्या डेवलपमेंट है, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि कोई भी एजेंडा या कोई भी स्पीकर या फिर कोई भी सेशन अभी तक कैंसिल किया है। एज पर स्केड्यूल ही चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम।
0: रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 3 जून से 6 जून तक चलने वाले 29वें इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी रूस के दावोस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर रोजडेंको के अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास स्थित लेनिनग्राद क्षेत्र में रात भर में कम से कम 59 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। उन्होंने बताया कि मलबे के गिरने से कुछ घरों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पिछले 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी रूस हमले करता है तो कभी यूक्रेन हमले करता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। कीव के साथ साथ खार्किव और निप्रो जैसे कई शहरों पर भी रूस ने 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों के भीषण अटैक किए। पूरी रात आसमान में मिसाइलों का शोर गूंजता रहा। विनाशकारी मिसाइलों के हमले से कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। कहीं सायरन बज रहे थे तो कहीं लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूसी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हमला इतना भीषण था और मिसाइलें इतनी तेजी से आ रही थीं कि यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। इन पर हुए हमलों में रूसी हमलों से पहले यूक्रेन का बड़ा प्रहार। यूक्रेन के हमले में रूस की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान। कीव पर रूसी हमलों से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने उसकी रिफाइनरी को तबाह कर दिया। यूक्रेन तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है।
2: इन हमलों से रूस की एक रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, ऑयल पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों से रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि ड्रोन हमलों में वोल्गा नदी के किनारे बनी सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले से रिफाइनरी परिसर के बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन जानता है कि उसके पास सैन्य संसाधनों की कमी हो रही है। वो चुन चुन कर रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऑयल रिफाइनरी पर हमले यूक्रेन की इसी योजना का नतीजा है। हमलों के बाद इनमें लगी आग तो मशक्कत के बाद बुझा ली गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने में महीनों लग जाते हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल में ममता को लगा बड़ा झटका, बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष, 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा, अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली, राहुल और खड़गे मौजूद, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी, मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल, होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन, 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले, पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र, आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई 34 स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती, नवंबर में आएगी आखिरी खेप। दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है। और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है।
1: दिल्ली का अग्निकांड कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल?
2: अल्लाह कैसे मर रहे हैं,
3: आग बहुत भयंकर थी,
4: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे।
1: 21 लोग जिंदा जल गए, होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प,
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें।
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग, मच गई चीख पुकार।
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग, फैलता धुआं, मरते लोग। छह मंजिला होटल में भयंकर आग, 21 मौतों का गुनहगार कौन? देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्ट नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर। दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर। होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग, चीख पुकार और आग की लपटें। सिहरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर 1, ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है, और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर 2, और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संतरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई। और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
8: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
9: 4 नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
10: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्चों को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया फिर बच्चों को कुदाया 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
1: वीडियो नंबर 3। और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
2: कैसे मर रहे हैं।
1: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
10: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी 7 मैंने निकाली है नीचे से।
11: 7
10: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं नाथ नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
12: उतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करें क्या, तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर थे। फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किस से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
1: वीडियो नंबर 4। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
13: देखिए बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज कर रहे थे स्टे के लिए और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को एनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: वीडियो नंबर 5। वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिस कर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।
14: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी क्या देखा, कैसे पूरा हादसा हुआ?
15: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं। देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड वालों को 8 बजे से फोन करना चालू किया। यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
14: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन एक फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
15: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस फोर्थ फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
14: दिखाइए, फोर्थ फ्लोर
15: से लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है, जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोस है जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
0: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं, कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
1: हादसे की वजह नंबर एक, फ्लोरिस्ट डे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर दो, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर तीन, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया और तो और लाइसेंसधारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी, मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
14: आराम घर है, ये पुलिस है। अब देखिए, चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी, यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर हैं, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिली भगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिली भगत तो नहीं हो सकती एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिली भगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, अवैध तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खानापूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
1: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी, लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके। 21 मौतों के एक एक गुनहगार की बोल खोलते रहे।
14: तस्वीर दिखाई जाती है एक-एक की, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
11: घर है इनका, पर्सनल घर है इनका।
14: पर्सनल घर है तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर, और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
1: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था, क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
14: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका, लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
1: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, ना ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और ना ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
0: क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है? क्या एमएलसी चुनाव में महायुति में कथित तनाव की वजह से शिंदे और उद्धव एक साथ आने के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता हाईवे पर गले मिल रहे हैं, उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव और शिंदे के दिल भी मिल जाएंगे।

0: या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव के दिल मिलेंगे? क्या शिवसेना के बागी बढ़ाएंगे शिंदे की मुश्किल? एमएलसी चुनाव, महायुति में बढ़ा तनाव। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर के पास समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के बागी नेता अब्दुल सत्तार के बीच ये मुलाकात का वीडियो वायरल है। जिस तरह दोनों गुट के नेता सार्वजनिक तौर पर गले मिलते दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं। अब ये महज सियासी संयोग है या प्रयोग कि दोनों नेता खुलेआम दोनों गुटों के एक होने की वकालत कर रहे हैं? अंबादास दानवे चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी शिंदे गुट को खत्म करने की तैयारी में है।
1: देखो, आता शिंदेचा गट संपायला तर भारतीय जनता पार्टी ते काम करते, जी बाळासाहेबांच्या विचाराने उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हिला कोणी संपू शकत नाही वाटतं, बऱ्याच दिवस वाटतं, पण ते मला एकट्याला वाटून काय फायदा नाही।
0: जबकि शिवसेना शिंदे गुट में बागी तेवर अपनाने वाले अब्दुल सत्तार ने संकेत दिए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे हरी झंडी दे दें तो दोनों गुटों के बीच सुलह तुरंत हो जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों में सुलह की चर्चा तब आई जब एमएलसी चुनाव में महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब्दुल सत्तार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी विस्तारवादी नीति से शिवसेना का सियासी रूप से सिर कलम कर रही है।
2: इसमें आरोप का कोई सवाल ही नहीं, फॉर्म भरा गया है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेता लेंगे।
3: जी, आखिर क्यों ऐसी नाराजगी? आप
2: कोई नाराजगी का सीधा और सिंपल मामला है कि जो हमारी नगरपालिका है दोनों भी, उसके अंदर जो निधि नहीं मिलता, इसके लिए ये परिस्थिति निर्माण हुई और ये परिस्थिति निर्माण होने की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेताओं का इसके अंदर बहुत बड़ा ये है, हमारी शिवसेना के पालक मंत्री है उनके तरफ से भी जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय जब नहीं मिलता है और पक्ष में एक इसको लगता है कि यहाँ शिवसेना खत्म हो जाएगी वहां शिवसेना खत्म हो जाएगी, तो शिवसेना को ये कहीं तो भी इस तरह से लोगों के बीच में उनके काम नहीं होना, उनके हिसाब से नाम नहीं होना, उनको निधि नहीं मिलना, उनके जो मतदार संकेत जो चुनाव क्षेत्र के छोटे छोटे मसले हैं उसके लिए, समझो हमारा जिला नियोजन मंडल का 800 कोटी रुपए का नियोजन है, हमको 800 कोटी में से दोनों नगर पालिका को 8 रुपए भी नहीं मिले, तो फिर ये तो पार्टी है हमारी, हमारी खुद की पार्टी में भी हमारे पे अन्याय हो रहा, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक एक पद एक एक जो सत्ता की जगह है, जिला परिषद होगी, महापालिका होगी, कई छोटे जगहों पे ऊपर बड़ी जगहों के ऊपर वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वहीं एकनाथ शिंदे ने दोनों गुटों के मिलन की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि उनके पास ही बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत है और उन्हें महाराष्ट्र की जनता दो बार आशीर्वाद दे चुकी है।
4: आम्ही बाळासाहेबांचा विचार हिंदुत्वाचा विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार देखील आम्ही स्थापन केलं, एकदा केलं, दोनदा केलं आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेनेला धनुष्यबाणाला बाळासाहेब आनंदगे साहेबांच्या विचाराला आणि आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला आशीर्वाद दिलेले आहेत, त्यामुळे आमची घोडदौड विजयी अशीच पुढे चालू।
0: दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत शिंदे पर तंज कस रहे हैं कि जिन लोगों ने दगाबाजी करके पार्टी तोड़कर दूसरा गुट बनाया था वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, तो उन्हें मातोश्री लौटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए।
5: असं मत व्यक्त केले ना, मग आम्ही मातोश्रीवर बसलेलो आहोत उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली। मी कालही म्हणालो होतो तुम्हाला पश्चाताप झाला असेल तर पश्चाताप व्यक्त करण्याची जागा ही हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं निवासस्थान मातोश्री, तिथे या आणि पश्चाताप व्यक्त करा, मग आम्ही चर्चा करू। कशाला निमंत्रण द्यायचं, कशाला निमंत्रण?
6: मातोश्रीवर या, जे शिंदेच्या शिवनेते ज्यांनी वक्त केलं त्यांना तुम्ही एक प्रकारे निमंत्रण देताय।
5: आता मी दत्ताजी गायकवाडना सांगतो निमंत्रण पत्रिका छापा, दुसरं काय सांगू शकतो मी?
6: अंबादास दानवेंनी पण अशा पद्धतीची इच्छा व्यक्त केली होती की शिवसेना जे एकत्र
5: या, बरोबर आहे ना, त्यासाठी त्यांना मातोश्रीवर येऊन पश्चाताप व्यक्त करावा लागेल।
0: हालांकि अभी तक दोनों गुटों के बीच कोई भी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाईवे पर दोनों गुटों के नेताओं के बीच हुई रणनीतिक मुलाकात से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है।
7: महाराष्ट्र की सियासी हलचल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने उभर कर नजर आ रही है। जहां एक तरफ दोनों गुट आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह जरूरी होगा कि एमएलसी चुनाव के बीच जो बगावत हो रही है या तो फिर जो नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
8: ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जंग फिर से भड़क रही है, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब रूस ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमले से सबको चौंका दिया है।

0: रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने क्यों किया ड्रोन अटैक? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक के पीछे यूक्रेन का मकसद क्या है? 29वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में यूक्रेन के हमले से हलचल। क्या यूक्रेन ने कीव पर रूस के हमले का बदला ड्रोन अटैक से लिया? रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध जारी, आखिर ये युद्ध कब रुकेगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में उठता हुआ ये काले धुएं का गुबार दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, यूक्रेन ने ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल और पास के नौसैनिक अड्डे पर ड्राई डॉक में खड़े एक युद्ध पोत को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक ऐसे वक्त में किया है जब सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आर्थिक मंच का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों से करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले को पुतिन को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने की स्पष्ट कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गृह नगर में ये हमला एक बड़ा मैसेज है।
1: सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम आज शुरू होने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक काला धुआं सा उठ रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए ऑयल टर्मिनल में बाल्टिक पोर्ट के आसपास, जो हमको बताया जा रहा है। बट अभी तक सेंट पीटर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसको रशियन डाइवोस भी कहते हैं, उस पर अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। प्रेसिडेंट पुतिन 6 जून को यहीं पर आके प्लेनरी सेशन अटेंड करेंगे और अपनी स्पीच भी देंगे। बट हाँ, मॉस्को के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि रशिया रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए अदर कंट्रीज से भी। इंडिया रशिया ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन और काफी एजेंडा, इंपॉर्टेंट एजेंडा एंड स्पीकर्स लाउंज में भी तैयार बैठे हैं और इनॉग्रेशन सेरेमनी भी शुरू होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है और काला धुआं लगभग पिछले 2-3 घंटे से दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो हम बताते रहेंगे अपने दर्शकों को क्या क्या डेवलपमेंट है, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि कोई भी एजेंडा या कोई भी स्पीकर या फिर कोई भी सेशन अभी तक कैंसिल किया है। एज पर स्केड्यूल ही चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम।
0: रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 3 जून से 6 जून तक चलने वाले 29वें इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी रूस के दावोस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर रोजडेंको के अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास स्थित लेनिनग्राद क्षेत्र में रात भर में कम से कम 59 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। उन्होंने बताया कि मलबे के गिरने से कुछ घरों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पिछले 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी रूस हमले करता है तो कभी यूक्रेन हमले करता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। कीव के साथ साथ खार्किव और निप्रो जैसे कई शहरों पर भी रूस ने 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों के भीषण अटैक किए। पूरी रात आसमान में मिसाइलों का शोर गूंजता रहा। विनाशकारी मिसाइलों के हमले से कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। कहीं सायरन बज रहे थे तो कहीं लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूसी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हमला इतना भीषण था और मिसाइलें इतनी तेजी से आ रही थीं कि यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। इन पर हुए हमलों में भारी नुकसान के बाद ज्यादातर इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। रूसी हमलों से पहले यूक्रेन का बड़ा प्रहार। यूक्रेन के हमले में रूस की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान। कीव पर रूसी हमलों से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने उसकी रिफाइनरी को तबाह कर दिया। यूक्रेन तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इन हमलों से रूस की एक रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, ऑयल पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों से रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि ड्रोन हमलों में वोल्गा नदी के किनारे बनी सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले से रिफाइनरी परिसर के बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन जानता है कि उसके पास सैन्य संसाधनों की कमी हो रही है। वो चुन चुन कर रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऑयल रिफाइनरी पर हमले यूक्रेन की इसी योजना का नतीजा है। हमलों के बाद इनमें लगी आग तो मशक्कत के बाद बुझा ली गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने में महीनों लग जाते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बड़ा झटका बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता। विपक्ष 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राहुल और खड़गे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र। आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई चौथी स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती। नवंबर में आएगी आखिरी खेप। दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है। और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है।
1: दिल्ली का अग्निकांड कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल।
2: कैसे मर रहे हैं।
3: आग बहुत भयंकर थी।
4: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे।
1: इक्कीस लोग जिंदा जल गए। होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए। इसमें
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग। मच गई चीख पुकार।
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग, फैलता धुआं, मरते लोग। छह मंजिला होटल में भयंकर आग। 21 मौतों का गुनहगार कौन। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्ट नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर। दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर। होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग। चीख पुकार और आग की लपटें। सिहरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर 1। ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है। और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर 2। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संतरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
2: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया।

0: वीडियो नंबर 3। और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
1: भैया गिरो, भैया गिरो, भैया गिरो।
2: अल्लाह, कैसे मर रहे हैं।
0: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
3: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी साथ मैंने निकाली है नीचे से।
4: सात
3: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं नाथ नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
5: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करें क्या, तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर थे। फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई। और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
0: वीडियो नंबर 4। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
6: देखिए, बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज कर रहे थे स्टे के लिए और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हीट, स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: वीडियो नंबर 5। वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई। ये होटल दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे।
7: सबसे बड़ी चश्मदीद इस अग्निकांड की अंजुम जी हमारे साथ मौजूद। अंजुम जी, क्या देखा, कैसे पूरा?
8: यहाँ पे मेरे फादर का जो रूम है इसके रोड के साइड में ही है, तो मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक भी है, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं। देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है। फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे फायर ब्रिगेड वाले, तो हम उनको सुबह सुबह खाली पेट कुछ देने जाते हैं। देने गए तो यहाँ पे स्मेल आ रही थी, यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है। फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे फायर ब्रिगेड वालों को। 8 बजे से फोन करना चालू किया, यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी।
7: खुलासा आज तक पर हम आपको कर रहे हैं अंजुम जी, चूंकि बिल्डिंग बेहद करीब है, सटा हुआ है इस होटल से, आपको ये फासला भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रितेश मिश्रा दिखाएंगे। ये होटल है और इसके ठीक तकरीबन 1 फुट से भी कम होगा जहां हम इस वक्त आज तक की टीम खड़ी है। अंजुम जी, अंदर जब आग लगी तो क्या हालात थे?
8: अंदर आज लोग बहुत खिड़की से कूद रहे थे बाहर, किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई जला हुआ, कोई आधी जली हालत में, शोर मचा रहे। देखिए इस 4th फ्लोर पे, ये जो यहाँ से कितने लोग कूदे, देखिए
7: दिखाइए, 4th फ्लोर
8: लोग इतने कूदे और आगे नीचे जाके भी वो इंजर्ड हो गए, बुरी तरह बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी है जो अंदर थे इनके।
7: अच्छा,
8: उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं, इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोज है जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं, कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने

0: खुद काउंट करी है।
1: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
2: हादसे की वजह नंबर एक, फ्लोरिस्ट डे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर दो, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर तीन, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया और तो और लाइसेंस धारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी, मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
3: आराम, मेरा घर है। ये पुलिस है, अब देखिए चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिली भगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिली भगत तो नहीं हो सकती एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिली भगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है अवैध तरीके से। होटल, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
2: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके, 21 मौतों के एक एक गुनहगार की बोल बोलते रहे।
3: तस्वीर दिखाई जाती है एक-एक दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
4: घर है इनका, पर्सनल घर है इनका,
3: पर्सनल घर है तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर। और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर, और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को एमसीडी को।
2: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
3: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका। लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक हैं और कई ऐसे घायल हैं जो विदेशी हैं।
2: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, न ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और न ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
1: क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है? क्या एमएलसी चुनाव में महायुति में कथित तनाव की वजह से शिंदे और उद्धव एक साथ आने के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता हाईवे पर गले मिल रहे हैं उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव और शिंदे के दिल भी मिल जाएंगे।

0: या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव के दिल मिलेंगे? क्या शिवसेना के बागी बढ़ाएंगे शिंदे की मुश्किल? एमएलसी चुनाव, महायुति में बढ़ा तनाव। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर के पास समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के बागी नेता अब्दुल सत्तार के बीच के मुलाकात का वीडियो वायरल है। जिस तरह दोनों गुट के नेता सार्वजनिक तौर पर गले मिलते दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं। अब ये महज सियासी संयोग है या प्रयोग कि दोनों नेता खुलेआम दोनों गुटों के एक होने की वकालत कर रहे हैं? अंबादास दानवे चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी शिंदे गुट को खत्म करने की तैयारी में है।
1: देखो, आता शिंदेचा गट संपायला तर भारतीय जनता पार्टी ते काम करते, जी बाळासाहेबांच्या विचाराने उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हिला कोणी संपू शकत नाही वाटतं, बऱ्याच दिवस वाटतं, पण ते मला एकट्याला वाटून काय फायदा नाही।
0: जबकि शिवसेना शिंदे गुट में बागी तेवर अपनाने वाले अब्दुल सत्तार ने संकेत दिए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे हरी झंडी दे दें तो दोनों गुटों के बीच सुलह तुरंत हो जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों में सुलह की चर्चा तब आई जब एमएलसी चुनाव में महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब्दुल सत्तार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी विस्तारवादी नीति से शिवसेना का सियासी रूप से सिर कलम कर रही है।
2: इसमें आरोप का कोई सवाल ही नहीं, फॉर्म भरा गया है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेता लेंगे।
3: जी, आखिर क्यों ऐसी नाराजगी? आप
2: इसी नाराजगी का सीधा और सिंपल मामला है कि जो हमारी नगरपालिका है दोनों भी, उसके अंदर जो निधि नहीं मिलता, इसके लिए ये परिस्थिति निर्माण हुई और ये परिस्थिति निर्माण होने की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेताओं का इसके अंदर बहुत बड़ा ये है, हमारी शिवसेना के पालक मंत्री है उनके तरफ से भी जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय जब नहीं मिलता है और पक्ष में एक इसको लगता है कि यहाँ शिवसेना खत्म हो जाएगी वहां शिवसेना खत्म हो जाएगी, तो शिवसेना को ये कहीं तो भी इस तरह से लोगों के बीच में उनके काम नहीं होना, उनके हिसाब से नाम नहीं होना, उनको निधि नहीं मिलना, उनके जो मतदार संकेत जो चुनाव क्षेत्र के छोटे छोटे मसले हैं उसके लिए, समझो हमारा जिला नियोजन मंडल का 800 कोटी रुपए का नियोजन है, हमको 800 कोटी में से दोनों नगर पालिका को 8 रुपए भी नहीं मिले, तो फिर ये तो पार्टी है हमारी, हमारी खुद की पार्टी में भी हमारे पे अन्याय हो रहा, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक एक पद एक एक जो सत्ता की जगह है, जिला परिषद होगी, महापालिका होगी, कई छोटे जगहों पे और बड़ी जगहों के ऊपर वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वहीं एकनाथ शिंदे ने दोनों गुटों के मिलन की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि उनके पास ही बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत है और उन्हें महाराष्ट्र की जनता दो बार आशीर्वाद दे चुकी है।
4: आम्ही बाळासाहेबांचा विचार हिंदुत्वाचा विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार देखील आम्ही स्थापन केलं, एकदा केलं, दोनदा केलं आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील या महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेनेला धनुष्यबाणाला बाळासाहेब आनंदगे साहेबांच्या विचाराला आणि आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला आशीर्वाद दिलेले आहेत, त्यामुळे आमची घोडदौड विजयी अशीच पुढे चालू।
0: दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत शिंदे पर तंज कस रहे हैं कि जिन लोगों ने दगाबाजी करके पार्टी तोड़कर दूसरा गुट बनाया था वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, तो उन्हें मातोश्री लौटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए।
5: असं मत व्यक्त केले ना, मग आम्ही मातोश्रीवर बसलेलो आहोत उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली। मी कालही म्हणालो जर तुम्हाला पश्चाताप झाला असेल तर पश्चाताप व्यक्त करण्याची जागा ही हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं निवासस्थान मातोश्री, तिथे या आणि पश्चाताप व्यक्त करा, मग आम्ही चर्चा करू। कशाला निमंत्रण द्यायचं?
6: मातोश्रीवर या, जे शिंदेच्या शिवनेते ज्यांनी वक्तव्य केलं त्यांना तुम्ही एक प्रकारे निमंत्रण देताय।
5: आता मी दत्ताजी गायकवाडना सांगतो निमंत्रण पत्रिका छापा, दुसरं काय सांगू शकतो मी।
6: अंबादास दानवेंनी पण अशा पद्धतीची इच्छा व्यक्त केली होती शिवसेना एकत्र यावं,
5: बरोबर आहे ना, त्यासाठी त्यांना मातोश्रीवर येऊन पश्चाताप व्यक्त करावा लागेल।
0: हालांकि अभी तक दोनों गुटों के बीच कोई भी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाईवे पर दोनों गुटों के नेताओं के बीच हुई रणनीतिक मुलाकात से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है।
7: महाराष्ट्र की सियासी हलचल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने उभर कर नजर आ रही है। जहां एक तरफ दोनों गुट आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना ये जरूरी होगा कि एमएलसी चुनाव के बीच जो बगावत हो रही है या तो फिर जो नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
8: ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जंग फिर से भड़क रही है, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब रूस ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमले से सबको चौंका दिया है।

0: रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने क्यों किया ड्रोन अटैक? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक के पीछे यूक्रेन का मकसद क्या है? 29वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में यूक्रेन के हमले से हलचल। क्या यूक्रेन ने कीव पर रूस के हमले का बदला ड्रोन अटैक से लिया? रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध जारी, आखिर ये युद्ध कब रुकेगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में उठता हुआ ये काले धुएं का गुबार दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, यूक्रेन ने ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल और पास के नौसैनिक अड्डे पर ड्राई डॉक में खड़े एक युद्ध पोत को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक ऐसे वक्त में किया है जब सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आर्थिक मंच का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों से करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले को पुतिन को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने की स्पष्ट कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गृह नगर में ये हमला एक बड़ा मैसेज है।
1: सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम आज शुरू होने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक काला धुआं सा उठ रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए ऑयल टर्मिनल में बाल्टिक पोर्ट के आसपास, जो हमको बताया जा रहा है। बट अभी तक सेंट पीटर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसको रशियन डाइवोस भी कहते हैं, उस पर अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। प्रेसिडेंट पुतिन 6 जून को यहीं पर आके प्लेनरी सेशन अटेंड करेंगे और अपनी स्पीच भी देंगे। बट हाँ, मॉस्को के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि रशिया रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए अदर कंट्रीज से भी। इंडिया रशिया ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन और काफी एजेंडा, इंपॉर्टेंट एजेंडा एंड स्पीकर्स लाउंज में भी तैयार बैठे हैं और इनॉग्रेशन सेरेमनी भी शुरू होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है और काला धुआं लगभग पिछले 2-3 घंटे से दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो हम बताते रहेंगे अपने दर्शकों को क्या क्या डेवलपमेंट है, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि कोई भी एजेंडा या कोई भी स्पीकर या फिर कोई भी सेशन अभी तक कैंसिल किया है। एज पर स्केड्यूल ही चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम।
0: रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 3 जून से 6 जून तक चलने वाले 29वें इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी रूस के दावोस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर रोजडेंको के अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास स्थित लेनिनग्राद क्षेत्र में रात भर में कम से कम 59 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। उन्होंने बताया कि मलबे के गिरने से कुछ घरों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पिछले 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी रूस हमले करता है तो कभी यूक्रेन हमले करता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। कीव के साथ साथ खार्किव और निप्रो जैसे कई शहरों पर भी रूस ने 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों के भीषण अटैक किए। पूरी रात आसमान में मिसाइलों का शोर गूंजता रहा। विनाशकारी मिसाइलों के हमले से कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। कहीं सायरन बज रहे थे तो कहीं लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूसी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हमला इतना भीषण था और मिसाइलें इतनी तेजी से आ रही थीं कि यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। इन पर हुए हमलों में भारी नुकसान के बाद ज्यादातर इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। रूसी हमलों से पहले यूक्रेन का बड़ा प्रहार। यूक्रेन के हमले में रूस की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान। कीव पर रूसी हमलों से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने उसकी रिफाइनरी को तबाह कर दिया। यूक्रेन तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इन हमलों से रूस की एक रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, ऑयल पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों से रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि ड्रोन हमलों में वोल्गा नदी के किनारे बनी सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले से रिफाइनरी परिसर के बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन जानता है कि उसके पास सैन्य संसाधनों की कमी हो रही है। वो चुन चुन कर रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऑयल रिफाइनरी पर हमले यूक्रेन की इसी योजना का नतीजा है। हमलों के बाद इनमें लगी आग तो मशक्कत के बाद बुझा ली गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने में महीनों लग जाते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल में ममता को लगा बड़ा झटका। बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष। 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राहुल और खड़गे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र। आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई 4th स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती। नवंबर में आएगी आखिरी खेप। दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है। और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है।
1: दिल्ली का अग्निकांड कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल।
2: कैसे मर रहे हैं।
3: आग बहुत भयंकर थी।
4: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे।
1: इक्कीस लोग जिंदा जल गए होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए। इसमें
1: जान बचाने के लिए 21 लोग जिंदा जल गए। होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए। इसमें
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग। मच गई चीख पुकार।
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग, फैलता धुआं, मरते लोग। छह मंजिला होटल में भयंकर आग। 21 मौतों का गुनहगार कौन। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्टे नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर। दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर। होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग। पुकार और आग की लपटें। सिहरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर 1। ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है। और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर 2। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संकरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न देके कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर घिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जा और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर घिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई। और गली में बिछे गद्दों की वजह से मां और बच्चे की जान बच गई।
2: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहां से आग लगी थी। उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
8: 4 नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद गए जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
9: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्चों को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया फिर बच्चों को कुदाया 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
1: वीडियो नंबर 3। और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
10: कैसे मर रहे हैं।
1: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
9: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी 7 मैंने निकाली है नीचे से।
11: 7
9: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं नाथ नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
12: उतना पैनिक माहौल था कि करें क्या तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर से फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे। कोई अपने चम्मच से या कोई किससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
1: वीडियो नंबर 4। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल की आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
13: देखिए बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे स्टे के लिए और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज़ कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: वीडियो नंबर 5। वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का।
0: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
1: हादसे की वजह नंबर एक, फ्लोरिस्ट डे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर दो, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी, लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर तीन, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे, लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है, लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था, लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर पाँच, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था, लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया, और तो और लाइसेंस धारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी, मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
11: आराम, आराम,
14: मेरा घर है।
11: हाँ, आराम,
14: घर है।
11: ये पुलिस है, अब देखिए चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी यहाँ पर, करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिली भगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिली भगत तो नहीं हो सकती एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिली भगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, अवैध तरीके से होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
1: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी, लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके, 21 मौतों के एक एक गुनहगार की बोल बोलते रहे।
11: तस्वीर दिखाई जाती है एक एक के, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
15: घर है इनका, पर्सनल घर है इनका,
11: पर्सनल घर है, तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर, और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
1: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
11: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका, लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
1: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, न ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और न ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
0: दिल्ली अग्निकांड के गुनहगारों का हिसाब होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआती जांच में अग्निकांड को लेकर बिल्डिंग का मालिक एमसीडी और दिल्ली पुलिस कटघरे में है। क्या हादसे से सबक लेते हुए जिम्मेदारों पर बड़ा और कड़ा एक्शन होगा?
1: जिम्मेदार नंबर एक, बिल्डिंग का मालिक लवकेश बजाज। जिम्मेदार नंबर दो, बीएनबी का लाइसेंसधारी जय मिश्रा। जिम्मेदार नंबर तीन, एमसीडी साउथ जोन के डीसी राकेश कुमार। जिम्मेदार नंबर चार, मालवीय नगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार। जिम्मेदार नंबर पांच, एमसीडी के जेई आशीष रॉय। जिम्मेदार नंबर छह, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजय सिन्हा। जिम्मेदार नंबर सात, मालवीय नगर की लोकल पुलिस। इसी इमारत की बेसमेंट से उठी चिंगारी आग के शोले में ऐसी बदली कि 21 लोगों की मौत हो गई। मारे गए ज्यादातर लोगों में विदेशी नागरिक हैं जो इलाज कराने के लिए भारत आए थे। अग्निकांड की शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट से आग भड़की, उसी आग से पूरी इमारत खाक हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से अवैध था और एमसीडी की मिलीभगत से चल रहा था। रेस्टोरेंट के लिए न तो एमसीडी से कोई अनुमति दी गई थी और न ही फायर डिपार्टमेंट से। अग्निकांड के लिए एमसीडी सीधे तौर पर क्यों जिम्मेदार है समझिए। दरअसल किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एमसीडी की तरफ से हेल्थ लाइसेंस की जरूरत होती है, उसका जोनल हेड डीएचओ होता है। इस वक्त डीएचओ डॉक्टर संजय है। संजय की जिम्मेदारी थी कि किसी भी बेसमेंट में रेस्टोरेंट किचन ना हो, लेकिन उनकी नाक के नीचे रेस्टोरेंट चलता रहा और वो आंखें मूंदे बैठे रहे। संजय की तरह एमसीडी के दूसरे अफसरों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही प्रशासनिक अफसर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
14: बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इंटेक्शन लिया जाए। अभी एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने उनका दे, ताकि उनकी एक चेकिंग रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे किस तरह के रूटीन कार्रवाई अपने करते रहे।
1: हादसे के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी, बड़े और कड़े एक्शन के दावे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे, क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा पाएगा?
15: अभी अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पे जरूर कार्रवाई होगी, जो भी उस पे कार्रवाई होगी, सभी पर कार्रवाई लग रहा
16: लापरवाही है। कब तक जांच पूरी हो जाएगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा?
15: विद इन वीक।
17: देखिए ये तो सीधे तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था?
15: बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जब भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी पुरानी बिल्डिंग है और कब से यहाँ पर होटल चल रहा था, ये जांच के बाद ही पता चल पाएंगी सारी चीजें।
17: अच्छा ये बताएं कि एंट्री एग्जिट को लेकर के फायर एनओसी भी नहीं है?
15: नहीं, अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना फायर एनओसी अच्छा, है या नहीं है।
17: कि अब आगे इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्या एमसीडी इंश्योर करती है कि तमाम होटल को अब कोई
15: अपनी जिम्मेदारी? बिल्कुल इंश्योर करती है एमसीडी, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से करेगी।
1: जांच और सिर्फ जांच, अब जिम्मेदारों की जुबान पर यही शब्द है। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई गंभीर सवालों का आईना है। क्या 21 मौतों के असल जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होगा? क्या सिर्फ होटल मालिक पर कार्रवाई काफी है? बड़े हादसे के बाद कार्रवाई का वादा क्यों? पहले रोकथाम क्यों नहीं?
0: ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जंग फिर से भड़क रही है, तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब रूस ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमले से सबको चौंका दिया है।

0: रूस के दावोस सम्मेलन के वक्त यूक्रेन ने क्यों किया ड्रोन अटैक? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक के पीछे यूक्रेन का मकसद क्या है? 29वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में यूक्रेन के हमले से हलचल। क्या यूक्रेन ने कीव पर रूस के हमले का बदला ड्रोन अटैक से लिया? रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध जारी, आखिर ये युद्ध कब रुकेगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में उगता हुआ ये काले धुएं का गुबार दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, यूक्रेन ने ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल और पास के नौसैनिक अड्डे पर ड्राई डॉक में खड़े एक युद्ध पोत को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक ऐसे वक्त में किया है जब सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख आर्थिक मंच का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों से करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले को पुतिन को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने की स्पष्ट कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गृह नगर में ये हमला एक बड़ा मैसेज है।
1: सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम आज शुरू होने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक काला धुआं सा उठ रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए ऑयल टर्मिनल में बाल्टिक पोर्ट के आसपास, जो हमको बताया जा रहा है। बट अभी तक सेंट पीटर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, जिसको रशियन डाइवोस भी कहते हैं, उस पर अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। प्रेसिडेंट पुतिन 6 जून को यहीं पर आके प्लेनरी सेशन अटेंड करेंगे और अपनी स्पीच भी देंगे। बट हाँ, मॉस्को के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि रशिया रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए अदर कंट्रीज से भी। इंडिया रशिया ब्रिक्स और डीडॉलराइजेशन और काफी एजेंडा, इंपॉर्टेंट एजेंडा एंड स्पीकर्स लाउंज में भी तैयार बैठे हैं और इनॉग्रेशन सेरेमनी भी शुरू होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक हुआ है और काला धुआं लगभग पिछले 2-3 घंटे से दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो हम बताते रहेंगे अपने दर्शकों को क्या क्या डेवलपमेंट है, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि कोई भी एजेंडा या कोई भी स्पीकर या फिर कोई भी सेशन अभी तक कैंसिल किया है। एज पर स्केड्यूल ही चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम।
0: रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 3 जून से 6 जून तक चलने वाले 29वें इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी रूस के दावोस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर रोजडेंको के अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास स्थित लेनिनग्राद क्षेत्र में रात भर में कम से कम 59 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। उन्होंने बताया कि मलबे के गिरने से कुछ घरों को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पिछले 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी रूस हमले करता है तो कभी यूक्रेन हमले करता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। कीव के साथ साथ खार्किव और निप्रो जैसे कई शहरों पर भी रूस ने 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों के भीषण अटैक किए। पूरी रात आसमान में मिसाइलों का शोर गूंजता रहा। विनाशकारी मिसाइलों के हमले से कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। कहीं सायरन बज रहे थे तो कहीं लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूसी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हमला इतना भीषण था और मिसाइलें इतनी तेजी से आ रही थीं कि यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। इन पर हुए हमलों में भारी नुकसान के बाद ज्यादातर इलाके रात भर अंधेरे में डूबे रहे। रूसी हमलों से पहले यूक्रेन का बड़ा प्रहार। यूक्रेन के हमले में रूस की रिफाइनरी को बड़ा नुकसान। कीव पर रूसी हमलों से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने उसकी रिफाइनरी को तबाह कर दिया। यूक्रेन तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इन हमलों से रूस की एक रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, ऑयल पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों से रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि ड्रोन हमलों में वोल्गा नदी के किनारे बनी सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले से रिफाइनरी परिसर के बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन जानता है कि उसके पास सैन्य संसाधनों की कमी हो रही है। वो चुन चुन कर रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऑयल रिफाइनरी पर हमले यूक्रेन की इसी योजना का नतीजा है। हमलों के बाद इनमें लगी आग तो मशक्कत के बाद बुझा ली गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने में महीनों लग जाते हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बड़ा झटका बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता। विपक्ष 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राहुल और खड़गे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र। आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई चौथी स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती। नवंबर में आएगी आखिरी खेप। दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है। और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है।
1: दिल्ली का अग्निकांड कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल।
2: कैसे मर रहे हैं।
3: आग बहुत भयंकर थी।
4: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे।
1: इक्कीस लोग जिंदा जल गए। होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए। इसमें
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग। मच गई चीख पुकार।
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग। फैलता धुआं। मरते लोग। छह मंजिला होटल में भयंकर आग। 21 मौतों का गुनहगार कौन। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्टे नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर। दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर। होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग। चीख पुकार और आग की लपटें। सिहरन सी दौड़ने लगती है। वीडियो नंबर 1। ये देखिए कैसे एक महिला खिड़की से लटकी हुई है और ये दूसरी महिला को भी देखिए जो खिड़की से निकलकर पाइप के सहारे लटकी हुई है। होटल की खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। एक महिला को सीढ़ी के सहारे होटल की खिड़की से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे जिंदगी और मौत की ये जंग चल रही है। वीडियो नंबर 2। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये और भी खौफनाक है। आप देख सकते हैं होटल के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं। इसी के बीच लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की हर मुमकिन जद्दोजहद करते हैं। आग भड़की तो संकरी गली में लटके हुए बिजली के तारों ने भी लपक ली। आप छोटे छोटे धमाके सुन सकते हैं। इस भड़कती और धधकती आग के चलते खिड़कियों से कूदते हुए लोगों को देखकर आसपास के लोगों ने दिमाग लगाया और जमीन पर गद्दे डाल दिए ताकि खिड़कियों से कूदने वाले लोगों को चोटें न लगे और उनकी जान बचाई जा सके। और ये देखिए कैसे एक व्यक्ति होटल की खिड़की से गद्दे पर आकर गिरता है। गली से गुजरते तारों में उलझकर इस व्यक्ति के कपड़े तक फट जाते हैं। होटल अग्निकांड में एक मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई और गली में बिछे गद्दों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच गई।
2: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है।
8: 4 नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद गए जिन्होंने अपनी जान बचाई थी।
9: हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए सारे डाले ऊपर से बच्चों को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया फिर बच्चों को कुदाया 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया।
1: वीडियो नंबर 3। और ये ऐसा वीडियो है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इसको देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। ये देखिए कैसे लोग खिड़कियों से लटके हुए हैं। आपको वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। इस महिला ने होटल में गुजरते मौत के खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद किया।
10: कैसे मर रहे हैं।
1: होटल के आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं।
9: मंजर ऐसा था सर, जहाँ आप खड़े हो अभी यहाँ नहीं खड़े हो सकते थे। आग बहुत भयंकर थी। फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला गेट है वहाँ ताला लगा हुआ था। डेड बॉडी 7 मैंने निकाली है नीचे से।
11: 7
9: नीचे से निकाली है क्योंकि नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। फ्रंट से लॉक करा हुआ होटल का क्या होता, पीछे दरवाजा होगा कोई, क्योंकि मैं नाथ नीचे लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे ही।
12: उतना पैनिक माहौल था कि करें क्या तो गद्दे वद्दे बिछाएंगे क्योंकि खुदवाने ऊपर थे। फिर वो कांच तड़पड़ा रहे थे, कोई अपने चम्मच से या कोई किससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि आग लग गई और धुआं इज लाइक वेरी डार्क, मतलब ब्लैक था धुआं।
1: वीडियो नंबर 4। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में आग बुझाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे होटल के बेसमेंट में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। कुल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया।
13: देखिए बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं, जिसमें कि ग्राउंड के ऊपर 2 कमरे थे, बेसमेंट में 2 कमरे थे और हर फ्लोर के ऊपर 5-5 कमरे थे और टेरेस के ऊपर भी 4 कमरे थे, जिसमें से कि 2 कमरे ये गेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे स्टे के लिए और 2 कमरे ये स्टोर के लिए यूज़ कर रहे थे। चैलेंजेस तो हमें हर सीन पर आते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन चैलेंजेस उन लोगों के लिए था जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं हीट स्मोक ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इंगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर, तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: वीडियो नंबर 5। वीडियो में आप देख सकते हैं अस्पताल में पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस होटल अग्निकांड में लोगों को बचाने के चक्कर में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। आग 6 मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ देर बाद होटल में ऊपर की तरफ फैल गई।

0: बैडली इंजर्ड। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये खिड़की देखिए, खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से भी लोग इतना गिरे। ये सारी जो खिड़कियां ये लोगों ने तोड़ी हैं, जो अंदर थे इनके, उन्होंने तोड़ के बेचारे नीचे गिरे हैं। इतने डेड बॉडीज है, मेरे पास सारे वीडियोज है जहाँ पे डेड बॉडीज को ले जाके गए हैं। कम से कम 20 तो मिनिमम मैंने खुद काउंट करी है।
1: दिल्ली अग्निकांड सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं बल्कि सरकारी अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है। होटल में लगी आग में 21 जिंदगियां खत्म हो गईं। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारी महकमों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और भवन कानूनों के पालन पर बड़ा सवाल है।
2: हादसे की वजह नंबर एक, फ्लोरिस्टे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदे रखी। हादसे की वजह नंबर दो, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों का होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी लेकिन पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे की वजह नंबर तीन, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहा था। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। हादसे की वजह नंबर चार, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है लेकिन लवकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव कराए बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी। इमारत का निर्माण अवैध था लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, न तो इमारत के निर्माण के दौरान और न ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहराने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया, लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया। और तो और, लाइसेंसधारी को इसी इमारत में रहना होता है। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी। मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का परिणाम है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो 21 लोग बेमौत नहीं मारे गए होते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का रवैया है। दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज बंद करने की पूरी कोशिश की।
3: आराम से,
4: मेरा घर है।
3: हाँ, आराम
4: से।
3: ये पुलिस है, अब देखिए, चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी यहाँ पर, करीब से कोई नहीं दिखा सकता क्योंकि होटल से हम बेहद दूर है, यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जी, बताइए क्यों, किस लिए नीचे आ जाए। तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है, आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिलीभगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की यह मिलीभगत तो नहीं हो सकती, एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिलीभगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है अवैध तरीके से। होटल, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता, कभी हादसा हो जाता है उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खानापूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है।
2: यही है दिल्ली पुलिस का चाल और चरित्र। पुलिस आज तक को कवरेज से रोकना चाहती थी लेकिन अरविंद ओझा न तो रुके और न ही झुके, 21 मौतों के एक एक गुनहगार की बोल बोलते रहे।
3: तस्वीर दिखाई जाती है एक-एक, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अब पहुँच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुँचे भाई साहब?
5: घर है इनका, पर्सनल घर है,
3: पर्सनल घर है, तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर। और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके।

0: इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर और ये आम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को।
1: आज तक संवाददाता के सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं था, क्योंकि ये आवाज बंद करने की सीधी कोशिश थी। पुलिस यही चाहती थी कि अपनी नाकामी पर किसी तरह पर्दा डाल सके।
0: तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं, ये आने लगते हैं आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने की इसके लिए रोका। लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक है और कई ऐसे घायल है जो विदेशी है।
1: अगर दिल्ली पुलिस ने इतनी मुस्तैदी वक्त रहते दिखाई होती तो ना तो ये अवैध बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई होती, ना ही अवैध तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा होता और ना ही 21 लोग बेमौत मारे जाते।
2: दिल्ली अग्निकांड के गुनहगारों का हिसाब होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआती जांच में अग्निकांड को लेकर बिल्डिंग का मालिक, एमसीडी और दिल्ली पुलिस कटघरे में है। क्या हादसे से सबक लेते हुए जिम्मेदारों पर बड़ा और कड़ा एक्शन होगा?
1: जिम्मेदार नंबर एक, बिल्डिंग का मालिक लवकेश बजाज। जिम्मेदार नंबर दो, बीएनबी का लाइसेंसधारी जय मिश्रा। जिम्मेदार नंबर तीन, एमसीडी साउथ जोन के डीसी राकेश कुमार। जिम्मेदार नंबर चार, मालवीय नगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार। जिम्मेदार नंबर पांच, एमसीडी के जेई आशीष रॉय। जिम्मेदार नंबर छह, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजय सिन्हा। जिम्मेदार नंबर सात, मालवीय नगर की लोकल पुलिस। इसी इमारत की बेसमेंट से उठी चिंगारी आग के शोले में ऐसी बदली कि 21 लोगों की मौत हो गई। मारे गए ज्यादातर लोगों में विदेशी नागरिक हैं, जो इलाज कराने के लिए भारत आए थे। अग्निकांड की शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट से आग भड़की, उसी आग से पूरी इमारत खाक हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से अवैध था और एमसीडी की मिली भगत से चल रहा था। रेस्टोरेंट के लिए ना तो एमसीडी से कोई अनुमति दी गई थी और ना ही फायर डिपार्टमेंट से। अग्निकांड के लिए एमसीडी सीधे तौर पर क्यों जिम्मेदार है समझिए। दरअसल किसी भी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एमसीडी की तरफ से हेल्थ लाइसेंस की जरूरत होती है, उसका जोनल हेड डीएचओ होता है। इस वक्त डीएचओ डॉक्टर संजय है। संजय की जिम्मेदारी थी कि किसी भी बेसमेंट में रेस्टोरेंट किचन ना हो, लेकिन उनकी नाक के नीचे रेस्टोरेंट चलता रहा और वो आंखें मूंदे बैठे रहे। संजय की तरह एमसीडी के दूसरे अफसरों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक ऐसे ही प्रशासनिक अफसर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
3: बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे, इंटेक्शन लिया जाए। एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुआ आपने उनका दे, ताकि उनकी एक चेकिंग रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे किस तरह के रूटीन कार्रवाई अपनी करते रहे।
1: हादसे के बाद दिल्ली सरकार की नींद टूटी, बड़े और कड़े एक्शन के दावे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे, क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा पाएगा?
4: अभी अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पे जरूर कार्रवाई होगी, जो भी उस पे कार्रवाई होगी, सभी पर कार्रवाई
5: होगी। कब तक जांच पूरी हो जाएगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा?
6: विद इन वीक। ये तो सीधे तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था?
4: बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें जब भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी पुरानी बिल्डिंग है और कब से यहाँ पर होटल चल रहा था, ये जांच के बाद ही पता चल पाएंगी सारी चीजें।
6: अच्छा ये बताएं कि एंट्री एग्जिट को लेकर के फायर एनओसी भी नहीं है?
4: नहीं, अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना फायर एनओसी अच्छा, है या नहीं है।
6: कि अब आगे इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्या एमसीडी इंश्योर करती है कि तमाम होटल को अब कोई
4: अपनी जिम्मेदारी? बिल्कुल इंश्योर करती है एमसीडी, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से करेगी।
1: जांच और सिर्फ जांच, अब जिम्मेदारों की जुबान पर यही शब्द है। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई गंभीर सवालों का आईना है। क्या 21 मौतों के असल जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होगा? क्या सिर्फ होटल मालिक पर कार्रवाई काफी है? बड़े हादसे के बाद कार्रवाई का वादा क्यों? पहले रोकथाम क्यों नहीं?
2: क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है? क्या MLC चुनाव में महायुति में कथित तनाव की वजह से शिंदे और उद्धव एक साथ आने के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह शिवसेना के दोनों ही गुटों के नेता हाईवे पर गले मिल रहे हैं, उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव और शिंदे के दिल भी मिल जाएंगे।

0: या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव के दिल मिलेंगे? क्या शिवसेना के बागी बढ़ाएंगे शिंदे की मुश्किल? एमएलसी चुनाव, महायुति में बढ़ा तनाव। ये सवाल इसलिए क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर के पास समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और शिंदे गुट के बागी नेता अब्दुल सत्तार के बीच के मुलाकात का वीडियो वायरल है। जिस तरह दोनों गुट के नेता सार्वजनिक तौर पर गले मिलते दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शिवसेना के दोनों गुट एक होने वाले हैं। अब ये महज सियासी संयोग है या प्रयोग कि दोनों नेता खुलेआम दोनों गुटों के एक होने की वकालत कर रहे हैं? अंबादास दानवे चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी शिंदे गुट को खत्म करने की तैयारी में है।
1: देखो, आता शिंदेचा गट संपायला तर भारतीय जनता पार्टी ते काम करते, जी बाळासाहेबांच्या विचाराने उद्धवजीच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हिला कोणी संपू शकत नाही वाटतं, बऱ्याच दिवस वाटतं, पण ते मला एकट्याला वाटून काय फायदा नाही।
0: जबकि शिवसेना शिंदे गुट में बागी तेवर अपनाने वाले अब्दुल सत्तार ने संकेत दिए हैं कि अगर एकनाथ शिंदे हरी झंडी दे दें तो दोनों गुटों के बीच सुलह तुरंत हो जाएगी। शिवसेना के दोनों गुटों में सुलह की चर्चा तब आई जब एमएलसी चुनाव में महायुति के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब्दुल सत्तार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी विस्तारवादी नीति से शिवसेना का सियासी रूप से सिर कलम कर रही है।
2: इसमें आरोप का कोई सवाल ही नहीं, फॉर्म भरा गया है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेता लेंगे।
3: जी, आखिर क्यों ऐसी नाराजगी? आप
2: कोई नाराजगी का सीधा और सिंपल मामला है कि जो हमारी नगरपालिका है दोनों भी, उसके अंदर जो निधि नहीं मिलता, इसके लिए ये परिस्थिति निर्माण हुई और ये परिस्थिति निर्माण होने की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक नेताओं का इसके अंदर बहुत बड़ा ये है, हमारी शिवसेना के पालक मंत्री है उनके तरफ से भी जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय जब नहीं मिलता है और पक्ष में एक इसको लगता है कि यहाँ शिवसेना खत्म हो जाएगी वहां शिवसेना खत्म हो जाएगी, तो शिवसेना को ये कहीं तो भी इस तरह से लोगों के बीच में उनके काम नहीं होना, उनके हिसाब से नाम नहीं होना, उनको निधि नहीं मिलना, उनके जो मतदार संकेत जो चुनाव क्षेत्र के छोटे छोटे मसले हैं उसके लिए, समझो हमारा जिला नियोजन मंडल का 800 कोटी रुपए का नियोजन है, हमको 800 कोटी में से दोनों नगर पालिका को 8 रुपए भी नहीं मिले, तो फिर ये तो पार्टी है हमारी, हमारी खुद की पार्टी में भी हमारे पे अन्याय हो रहा, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा एक एक पद एक एक जो सत्ता की जगह है, जिला परिषद होगी, महापालिका होगी, कई छोटे जगहों पे ऊपर बड़ी जगहों के ऊपर वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वहीं एकनाथ शिंदे ने दोनों गुटों के मिलन की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि उनके पास ही बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत है और उन्हें महाराष्ट्र की जनता दो बार आशीर्वाद दे चुकी है।
4: आम्ही बाळासाहेबांचा विचार हिंदुत्वाचा विचार घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातलं सरकार देखील आम्ही स्थापन केलं, एकदा केलं, दोनदा केलं, आणि बाळासाहेब आनंदगे साहेबांच्या विचाराला आणि आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला आशीर्वाद दिलेले आहेत, त्यामुळे आमची घोडदौड विजयी अशीच पुढे चालू।
0: दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत शिंदे पर तंज कस रहे हैं कि जिन लोगों ने दगाबाजी करके पार्टी तोड़कर दूसरा गुट बनाया था वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं, तो उन्हें मातोश्री लौटकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए।
5: असं मत व्यक्त केले ना, मग आम्ही मातोश्रीवर बसलेलो आहोत उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली। मी कालही म्हणालो होतो तुम्हाला पश्चाताप झाला असेल तर पश्चाताप व्यक्त करण्याची जागा ही हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं निवासस्थान मातोश्री, तिथे या आणि पश्चाताप व्यक्त करा, मग आम्ही चर्चा करू। कशाला निमंत्रण द्यायचं, कशाला निमंत्रण?
6: मातोश्रीवर या, जे शिंदेच्या शिवनेते ज्यांनी वक्तव्य केलं त्यांना तुम्ही एक प्रकारे निमंत्रण देताय।
5: आता मी दत्ताजी गायकवाडना सांगतो निमंत्रण पत्रिका छापा, दुसरं काय सांगू शकतो मी।
6: अंबादास दानवेंनी पण अशा पद्धतीची इच्छा व्यक्त केली होती की दोन्ही शिवसेना एकत्र
5: यावं, बरोबर आहे ना, त्यासाठी त्यांना मातोश्रीवर येऊन पश्चाताप व्यक्त करावा लागेल।
0: हालांकि अभी तक दोनों गुटों के बीच कोई भी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाईवे पर दोनों गुटों के नेताओं के बीच हुई रणनीतिक मुलाकात से ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है।
7: महाराष्ट्र की सियासी हलचल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने उभर कर नजर आ रही है। जहां एक तरफ दोनों गुट आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना ये जरूरी होगा कि एमएलसी चुनाव के बीच जो बगावत हो रही है या तो फिर जो नेता मुलाकात कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
8: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: का रत्न पीला पुखराज कितना महत्वपूर्ण है? क्या पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है? क्या पीला पुखराज पहनने से आदमी के ध्यान और आध्यात्म में लाभ होता है? क्या है पीले पुखराज को धारण करने के लाभ और हानि? जानिए मेरे साथ सिर्फ भागीचा।
1: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.

OSM प्रक्रिया, जिसकी वजह से छात्रों के रिजल्ट खराब हुए, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई, छात्रों के सामने कई मुश्किलें आईं, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम के लिए जिम्मेदार कंपनी पर सवाल उठे। छात्रों की चिंता और सियासी शोर शराबे के बाद सरकार ने मामले में बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। नए चेयरमैन के रूप में लोखंडे प्रशांत सीताराम की नियुक्ति कर दी गई, तो वहीं वरुण भारद्वाज नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। खबर है कि पीएम मोदी की दखल के बाद ये एक्शन लिया गया। लगातार नाकामी को लेकर पीएम ने तुरंत अफसरों को हटाने के निर्देश दिए, साथ ही पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात भी कही है। सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी की प्रमुख एस राधा चौहान बनाई गई है। सरकार के एक्शन के बीच सीबीएसई ने जानकारी दी है कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के बाद से बीती रात 10 बजे तक 28,000 से ज्यादा छात्रों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।

0: बंगाल में ममता को लगा बड़ा झटका। बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी को स्पीकर ने बनाया नेता विपक्ष। 60 टीएमसी एमएलए साथ होने का दावा। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। डीके शिव कुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। जी परमेश्वर समेत 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राहुल और खड़गे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दिल्ली में मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। मरने वाले 21 लोगों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। 300 गिरफ्तार लोगों में 166 के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। पूरे गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। और रूस से भारत पहुंचा सुदर्शन चक्र। आज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आई 4th स्क्वाड्रन राजस्थान में हो सकती है तैनाती। नवंबर में आएगी आखिरी खेप। दिल्ली अग्निकांड का आरोपी होटल मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अग्निकांड हुआ वो वाकई में खौफनाक और दिल को दहलाने वाला है। और अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गड़ा हुआ है, जो जिंदगी को मौत की भट्टी में झोंक देता है।
1: दिल्ली का अग्निकांड कैसे तंदूर में तब्दील हो गया होटल।
2: कैसे मर रहे हैं।
3: आग बहुत भयंकर थी।
4: इतना पैनिक माहौल था कि करें क्या करेंगे।
1: 21 लोग जिंदा जल गए। होटल में ठहरे विदेशियों की भी मौत।
5: अंदर से आवाज आ रही थी रोने की और हेल्प।
6: नीचे ग्राउंड फ्लोर पे से आग शुरू हुई और फिर एकदम लपटे शुरू हो गए इसमें।
1: जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग। मच गई चीख पुकार।
7: लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए।
1: बेसमेंट से लेकर टॉप तक भड़की आग, फैलता धुआं, मरते लोग। छह मंजिला होटल में भयंकर आग। 21 मौतों का गुनहगार कौन। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लोरिस्ट नाम के होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी मौत की आग में झुलस गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दिल्ली में धधकते हुए होटल की तस्वीरें देखकर। दिल दहल जाता है होटल के इस अग्निकांड को देखकर। होटल की खिड़कियों से जान बचाकर कूदते लोग। चीख पुकार और आग की लपटें।